बनने का पुरुषार्थ करते हैं। श्रेष्ठ पुरुषार्थी सदा फ्लॉलेस बनने का पुरुषार्थ करते हैं, किसी भी बात में फेल नहीं होते। आज का स्लोगन है, साधन कमल पुष्प बनकर यूज करो, न्यारे होकर यूज करो, क्योंकि ये आपके कर्म योग का फल है। साधन कमल पुष्प बनकर यूज करो, क्योंकि ये आपके कर्म योग का फल है। तो उसमें आसक्ति को ला करके यूज नहीं करना है, न्यारे होकर यूज करना है। आज का व्यक्त इशारा है, सदा हर्षित रहने के लिए अपनी नेचर को सरल बनाओ, सहनशील बनो। उसके अंतर्गत बाबा कहते, सर्वस्व त्यागी बच्चों में मुख्य सरलता और सहनशीलता का गुण अवश्य होगा। ऐसे बच्चे स्वयं हर्षित रहते और सर्व को आकर्षित करते हैं। वे एक दो के स्नेही बन जाते हैं। अगर सरलता नहीं तो स्नेह भी नहीं हो सकता। जैसे साकार रूप में देखा, जितना ही नॉलेजफुल उतना ही सरल स्वभाव, बुजुर्ग का बुजुर्ग, बचपन का बचपन। अच्छा, ओम शांति।

ओम शांति। संगम युग पर हम सभी ब्रह्मावत्सों को जो कुछ मिला है वो चारों युगों में अन्य किसी को नहीं मिलता, चाहे सतयुग के देवी देवता हों, विश्व महाराजन हों या द्वापर युग के अन्य कोई सम्राट। हम सबको इन सब से कहीं ज्यादा प्राप्तियां हुई हैं। अगर हम अपनी प्राप्तियों को याद रखें तो सारा दिन खुशियों में झूमते रहेंगे, मन अंदर से गाता रहेगा, वाह मेरे जैसा कोई नहीं, पाना था सो पा लिया, अब काम क्या बाकी रहा। सोचो अपनी प्राप्तियों पर एक नजर डालो और अपने पास्ट को एक बार निहारो, कितना सुंदर था वो दिन जब तुम प्रभु के द्वार पर आए थे, जब उसका सत्य ज्ञान तुम्हें मिला था, जब उससे तुम्हारा मिलन हुआ था। कितना खुशियों से भर गया था ये जीवन, मन आनंद में झूम उठा था, वाह जन्म जन्म की इच्छा पूरी हो गई, जन्म जन्म की भक्ति का फल मिला और फिर दौड़ प्रारंभ हुआ अनेक प्राप्तियों का। सत्य ज्ञान ने हमारे जन्म जन्म की गुत्थियां सुलझा दी, हमारे जीवन में खुशियों के द्वार खुल गए, शांति का मार्ग मिल गया, प्रेम आ गया, एक विशेष तरह की दिव्य अनुभूति जीवन में प्रारंभ हो गई। रोज योग अभ्यास होने लगा, प्रभु मिलन होने लगा, उससे वरदान और शक्तियां मिलने लगी, एक सुंदर परिवार मिला, जो देव कुल की आत्माएं थी वो इकट्ठी होने लगी और एक निश्चल निर्मल प्रेम का आदान प्रदान हुआ। कितनी प्राप्तियां हुई है हम सबको, खोया हुआ स्वराज हमारे द्वार पर आने लगा, हमें एक लक्ष्य मिल गया, तुमने अपना जो स्वराज खोया था वो अब पाने का समय आ गया है, भगवान की गाइडेंस में हम चलने लगे। ये तो हुई यहाँ की प्राप्ति, लेकिन वो प्राप्तियां तो और भी सुंदर रही हरेक की, जो हरेक को योग युक्त होने पर सुंदर अनुभव प्राप्त हुए। किसी को कैसा अनुभव, किसी को कैसा अनुभव, किसी को बाबा के भिन्न भिन्न तरह के साक्षात्कार, किसी को दुखों से मुक्ति, किसी को समस्याओं का समाधान मिला, किसी के सामने बाबा आकर खड़ा हो गया, मैं तुम्हारे साथ हूँ चिंता न करो, किसी की उसने सारी चिंताएं और बोझ हर ली। तो जरा गंभीर होकर संगम युग की प्राप्तियों पर एक नजर डालें, प्राप्ति स्मृति स्वरूप हो जाएं। तो जब प्राप्तियां बहुत होती हैं तो मन खुशियों में झूमता रहता है, साथ ही साथ हम याद रखें जहां निश्चय है वहीं विजय है। निश्चय मनुष्य को निश्चिंत भी करती है और निश्चय मनुष्य को विजय भी दिलाती है, हर चीज में निश्चय। आप स्टूडेंट हैं तो एग्जाम के रिजल्ट में आपका निश्चय होना चाहिए, स्वयं में निश्चय होना चाहिए, हम ये कार्य करेंगे ही, हमें इसमें सफलता मिलेगी ही, भगवान हमारा साथी है, हमें आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकेगा, इसमें बहुत ज्यादा निश्चय की जरूरत होती है। आप कारोबार में भी हैं, उसमें भी निश्चय हो इतना हमें मिलेगा ही, हमारा कारोबार ऐसा सुंदर चलेगा ही, सफलता हमें प्राप्त होगी ही, ऐसा निश्चय हमारी विजय को बिल्कुल सरल कर देता है। निश्चय के वाइब्रेशन ही हमें विजय की ओर ले चलते हैं, चाहे विजय माया पर हो, क्रोध पर हो, काम पर हो, हमारी विजय निश्चित है, मैं विजय रतन हूँ। ऐसी आज सारा दिन स्मृति रखेंगे, मैं कल्प कल्प की विजयी आत्मा हूँ, अनेक बार मैंने इस माया को जीता है, इन विघ्न समस्याओं को पार किया, हजारों बार लाखों बार करोड़ों बार अब भी मुझे ही पार कर लेना है, ये तो जस निमित्त हाथ बढ़ाना है, कदम बढ़ाने हैं, मेरी विजय तो होनी निश्चित ही है। और अभ्यास करेंगे, मैं फरिश्ता हूँ,
कमल आसन पर विराजमान हूँ, पवित्रता का फरिश्ता हूँ, मेरे अंग अंग से पवित्र किरणें फैल रही हैं। बस सारा दिन खाते पीते नहाते धोते कर्म करते फरिश्ते स्वरूप की स्मृति प्रैक्टिस और मैं विजय रतन हूँ ये स्वमान याद करे।

0: ओए रुको ओए रुको ओए रुको ओए त्रिदेव त्रिमूर्ति एक बाइक पे तीन हैं और तुम लोगों को शर्म नहीं आती? और बाइक एक और एक साथ तीन चढ़े जा रहे हो और तीन लोगों का जाना अलाउड नहीं है बाइक पे, मालूम नहीं तुमको? ओए अपनी नहीं तो इस बाइक की सोचो बेचारी, तीन के बोझ की मारी।
1: सर बहुत जरूरी मैच है सर आज।
0: ओए तुम्हारे मैच की तो, ओए एक बाइक पे तीन जा रहे हो और कुछ हो गया तो सीधे हमेशा के लिए क्लीन बोल्ड हो जाओगे, ओए जिंदगी के स्टंप उखड़ जाएंगे। ओए ये ट्रैफिक है भाई, यहाँ तो कोई फ्री हिट भी नहीं मिलती, ठोको ताली। ओए मुझसे कोई नहीं बच सकता क्योंकि ये है मेरी सड़क और मुझे कहते हैं हवलदार सड़क।
2: याद रखें, एक बाइक पर कभी दो से ज्यादा लोग एक साथ न जाएं, यह एक दंडनीय अपराध है। सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करें। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी, सुनते रहो मुस्कुराते रहो।
3: सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। सुप्रभात में आपका स्वागत रेडियो मधुबन पर। प्राचीन काल में हफ्ते का सातवां दिन धार्मिक विश्राम का दिन माना जाता था। जीवन के वे सबसे महत्वपूर्ण विषय जिनकी साधारणतः हम अवहेलना कर देते हैं, जिनमें परिवार के साथ समय व्यतीत करना, वह समय जिसमें हम गहन चिंतन करते हैं और अपने नूतनीकरण पर ध्यान देते हैं, यह मेहनती लोगों को अपनी शक्ति नवीनीकरण करने में और जीवन का एक दिन और संतुष्टता के साथ जीने का अवसर देता है। परंतु जैसे जीवन की भागदौड़ बढ़ी, अनेक गतिविधियों ने लोगों का ध्यान खींचना शुरू कर दिया और विलक्षण लाभों वाली यह अद्भुत परंपरा खो कर रह गई। तनाव अपने आप में कोई बुरी चीज नहीं है, हम अक्सर इसकी वजह से अपना कार्य संपादन सर्वोत्तम तरीके से करते हैं और अपनी सीमाओं से बाहर निकलकर उन चीजों को हासिल कर पाते हैं जो खुद भी आश्चर्यचकित कर देती हैं। किसी भी बढ़िया खिलाड़ी से पूछे, असली परेशानी इस बात में है कि विश्वव्यापी तनाव के युग में हमें अपनी चिंताओं से छुटकारा नहीं मिल पाता है। अतः अपने आप को पुनर्जीवित करने के लिए और अपने अंतर मन को पोषित करने के लिए हफ्ते का कुछ समय शांति के लिए रखिए। एक साप्ताहिक विश्राम जिसमें आप जीवन की छोटी खुशियों तक पहुंच सके, वे खुशियां जिन्हें आपने अपने जीवन की व्यस्तता और जटिलताओं के कारण छोड़ दिया था। यह आसान तरीका तनाव को कम करेगा, आपकी सृजनात्मकता के साथ जुड़ेगा और आप अपने जीवन के हर कर्तव्य का पालन अधिक प्रसन्नता के साथ करेंगे। आपका साप्ताहिक विश्राम पूरे दिन इसके लिए हो यह आवश्यक नहीं है, आपको सिर्फ कुछ घंटे अपने लिए अलग चाहिए। शायद रविवार की शांत सुबह इसके लिए ठीक रहेगी। जब आप अपना कुछ समय अपनी पसंद की चीजें करने में व्यतीत कर सकते हैं, इसमें अपनी पसंदीदा किताब की दुकान में समय व्यतीत करना, सूर्योदय को देखना, समुद्र के किनारे एकांत में टहलना और अपनी दैनिक डायरी में लिखना जैसी बातें शामिल हैं। अपने जीवन को इस प्रकार संगठित करना जिससे आप खुद को प्रसन्नता देने वाली चीजें बहुतायत में कर सकें, यह आपके आत्म सुधार की ओर पहला कदम है। इस बात की फिक्र न करें अगर दूसरे लोग यह नहीं समझते हैं कि आप साप्ताहिक विश्राम को अपने जीवन का आवश्यक हिस्सा बनाकर क्या हासिल करने वाले हैं। अपने लिए यह कीजिए क्योंकि आप इसके लायक हैं।

थॉरों के शब्दों में, अगर एक व्यक्ति अपने साथियों के साथ कदम मिलाकर नहीं चलता तो इसका अर्थ है कि वह किसी और ढोल की आवाज सुन रहा है। उसे उस संगीत में प्रवेश करने दीजिए जो वह सुन रहा है, चाहे वह जितना भी धीमा हो और दूर से आ रहा हो।

0: नमस्कार मैं हूँ हरमीत सिंह.
1: दुनिया बनाई मैंने हाथों से.
0: वन ऑफ द मीत ब्रदर्स अंजन म्यूजिक डायरेक्टर्स एंड सिंगर्स फ्रॉम द फिल्म ओ माई गॉड.
1: मिट्टी से नहीं जज्बातों से.
0: और आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन. सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए.

हम अपने परिवारों के साथ हंसना, प्यार से रहना और उनके साथ प्रसन्नता बांटना भूल गए हैं, क्योंकि काम की चुनौतियों ने हमें निगल डाला है। अधिकतर लोग अपने जीवन के सर्वोत्तम काल को हर समय चिंता करने में बिता देते हैं। वे अपनी नौकरी, रसीदों, वातावरण और बच्चों के लिए परेशान रहते हैं। जैसा कि हम सब अपने दिलों में जानते हैं कि ज्यादातर बातें जिनके बारे में हम फिक्र करते हैं वे घटते ही नहीं हैं। यह मार्क के इस कथन की तरह है, मेरे जीवन में बहुत सी कठिनाइयां आईं और उनमें से कई सही में घटी भी। संस्कृत चिन्हों में चिता और चिंता में बहुत समानता है। एक मृतक को जलाती है और दूसरी जीवित को जलाती है। एक अत्यंत सरल विधि है जो चिंता करने की आदत को जीतने के लिए सीखी जा सकती है, वह है एक समय निर्धारित करके चिंता करना, जिसमें चिंता करने का अंतराल आप निश्चित करेंगे। अगर हम किसी परेशानी का सामना कर रहे हैं तो दिन के सारे समय अपना ध्यान उस परेशानी पर केंद्रित करना बहुत आसान होगा। इसके बजाय आप अपना चिंता करने का समय निर्धारित कीजिए, जैसे कि शाम के वक्त आधा घंटा। अपने इस चिंता की सभा में आप अपनी परेशानियों में डूब सकते हैं और अपनी कठिनाइयों पर दुखी हो सकते हैं, परंतु जब वह वक्त समाप्त हो जाता है उसके बाद आपको अपने को प्रशिक्षित करने की आवश्यकता है, जिससे आप अपनी मुश्किलों को पीछे छोड़कर परिणामदायक कार्य कर सकें, जैसे कि किसी प्राकृतिक वातावरण में घूमना, कोई प्रेरक किताब पढ़ना या किसी प्रिय मित्र के साथ गुफ्तगु करना। अगर दिन में किसी और वक्त आपको लगता है कि मनन की आवश्यकता है तो अपनी पुस्तिका में लिख लीजिए जिसके बारे में आप अपनी अगले चिंता के समय में भी विचार कर सकते हैं। यह साधारण परंतु शक्तिशाली विधि आपको धीरे धीरे अपने चिंता करने के समय को कम करने में मदद करेगी और धीरे धीरे आपको अपनी इस आदत से हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाएगी। तो कहने का भाव यही है कि आप दिन भर अपनी परेशानियों के बारे में चिंता करते रहते हैं, जिस कारण से आप अपने कार्य के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते हैं और फिर वह कार्य पूरा करने में आपको असुविधा होती है, समय ज्यादा लग जाता है। इसके बजाय आप कुछ समय ऐसा निश्चित कर लें जिसमें आप अपने परेशानियों के बारे में, समस्याओं के बारे में कुछ मनन चिंतन करें, चिंता करें, तो फिर धीरे धीरे आप अपने समय को सही कार्यों में लगाने में अपना ध्यान केंद्रित कर पाएंगे और फिर धीरे धीरे आपका चिंता करने का समय भी कम होता जाएगा और निश्चित रूप से आप चिंता

0: रेडियो मधुबन पर आइए सुनते हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी के प्रेरणादायी विचार।
1: 24 घंटे का व्रत रखें, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे सामने वाले का व्यवहार कैसा भी हो, मेरा मन वाणी और व्यवहार शांत और प्रेम से भरपूर। सिर्फ 24 घंटे का व्रत रखें तो भी हमने सृष्टि की कितनी सेवा की, और जो चीज़ हम एक दिन कर सकते हैं हम उसको हर रोज कर सकते हैं, क्योंकि वो हमारे पास पावर है।
0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

पिता अपने 4 वर्ष के पुत्र कॉल्बी को दोपहर के भोजन के लिए इटालियन रेस्टोरेंट में ले गया। वह शरद ऋतु का एक सुंदर दिन था और हमेशा की तरह वह पुत्र ऊर्जा और प्रसन्नता से भरा हुआ था। दोनों ने मुख्य भोजन के रूप में पास्ता मंगवाया और उसके बाद वेटर द्वारा लाई हुई ताजी डबल रोटी के मजे लेने शुरू कर दिए। पिता को जरा सा भी एहसास नहीं था कि कॉल्बी अपने पिता को जीवन कला का एक और पाठ सिखाने जा रहा है। डबल रोटी को पूरा खाने के बजाय, जैसा कि सब बड़े करते हैं, कॉल्बी ने एक दूसरे और बेहतर सृजनात्मक तरीके का प्रयोग किया। उसने रोटी का गर्म और मुलायम भाग निकालकर पहले खाया और कड़ा भाग पड़ा रहने दिया। दूसरे शब्दों में यह बुद्धिमत्ता थी कि वह डबल रोटी के सबसे बढ़िया हिस्से पर ध्यान केंद्रित करके बाकी को छोड़ सके। बच्चे बड़ों से ज्यादा बेहतर तरीके से हमें वह शिक्षा देते हैं जो हमें सीखने की आवश्यकता है। और उस सुंदर दिन में उस छोटे बच्चे ने यह याद दिला दिया कि हम बड़े लोग अपना बहुत सारा समय पूरे दिन की अच्छी बातों को छोड़कर जीवन के ऊपरी रूप पर ध्यान देने में बिता देते हैं। हम अपने कार्य क्षेत्र की चुनौतियों, उन बिलों के गठर पर जो हमें भरने हैं और समय की कमी जिसका हम सामना करते हैं उस पर ध्यान देते हैं, फिर भी इन कार्यों को पूरा नहीं कर पाते हैं। हमारे विचार हमारे संसार का निर्माण करते हैं और हम जैसा सोचते हैं वही हमारे जीवन में विकसित होता है। जिस पर हम अपना ध्यान केंद्रित करते हैं वह हमारी किस्मत को निर्धारित करता है। इसी कारण हमें अच्छी बातों पर ध्यान देना चाहिए। आगे के हफ्तों में अपने बाल स्वभाव को उजागर करने की कोशिश कीजिए और अपने अंदर के बालक के साथ संबंधित होने की कोशिश करिए। बच्चों के सकारात्मक गुणों को समझने का प्रयत्न करके उनके स्फूर्तिदायक, सृजनात्मक और हर क्षण पूर्ण रूप से जीने की काबिलियत को अपना आदर्श बनाने की कोशिश करिए। जब आप ऐसा करेंगे, लियो रोस्टोन के शब्दों को याद करिएगा जिसमें लिखा है, आप ज्यादातर लोगों को बेहतर समझ सकते हैं और उनसे रिश्ता बना सकते हैं, चाहे वे जितने भी प्रभावशाली हों, अगर आप उन्हें बच्चों की तरह समझें। क्योंकि हम में से ज्यादातर लोग वास्तविक रूप से वयस्क नहीं होते हैं, सिर्फ कद में लंबे हो जाते हैं और इसका प्रमाण देने के लिए हम कम हंसते हैं, कम खेलते हैं और बड़े होने का असुविधाजनक रूप धारण करते हैं। परंतु उस मुखौटे के पीछे एक बच्चा होता है जिसकी जरूरतें सरल होती है और जिसका हर दिन अभी भी परी कथाओं का बयान

रेड लाइट होने पर हमेशा अपनी गाड़ी रोक लेना चाहिए और उसे ग्रीन होने पर ही आगे बढ़ाना चाहिए। ऐसा ना करके हम अपनी और दूसरों की जान खतरे में डाल सकते हैं। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।

महान आविष्कारक थॉमस एडिसन को इस वक्तव्य के लिए जाना जाता है, प्रतिभा 1% प्रेरणा और 99% मेहनत होती है। लेकिन यह बात भी सच है कि कठिन परिश्रम वास्तविक सफलता और संतोष के लिए आवश्यक होता है। गहन प्रेरणा और इस दुनिया में बदलाव लाने का दृढ़ संकल्प इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण गुण है। दुनिया के सबसे महान प्रतिभाशाली लोग दूसरों की जिंदगियों को समृद्ध बनाने की अभिलाषा से प्रेरित होते हैं। उनके जीवन का अध्ययन करेंगे तो पाएंगे कि यह इच्छा उनके जीवन की जरूरत बन गई थी। उनकी यह इच्छा उनके अस्तित्व का हिस्सा बन गई और उनके दिमाग की हर कोशिका उस ध्येय को पाने में जुट गई। एडिसन अपनी उस कल्पना को वास्तविक रूप में साकार करने के लिए उत्सुक थे। जोनास सॉल्क, जिन्होंने पोलियो के टीके की खोज की, वह दूसरों को इस खतरनाक बीमारी से ग्रसित होने से बचा सकी। नोबेल पुरस्कार विजेता महान वैज्ञानिक मैरी क्यूरी, मानव जाति की सेवा अपनी रेडियम की खोज से करना चाहते थे। जैसा कि वुडरो विल्सन ने कहा है, आप यहाँ सिर्फ जिंदा रहने के लिए नहीं हैं, आप यहाँ इस दुनिया में जीवन को भरपूर तरह से जीने में समर्थ बनाने के लिए हैं। जो बेहतर दृष्टिकोण, आशा की कोमल भावना और उपलब्धि के साथ जिया जा सके। आप दुनिया को परिपूर्ण बनाने के लिए हैं और आप कमजोर साबित होंगे अगर आप इस उद्देश्य को भूल जाते हैं। आप अपने स्वयं के जीवन में कितनी उमंग से भरे हुए हैं? क्या आप सोमवार की सुबह बिस्तर से स्फूर्ति के साथ उठते हैं या फिर चुपचाप खालीपन की भावना में डूबे हुए पड़े रहते हैं? अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी प्रेरणा का स्तर जैसा होना चाहिए उससे नीचे है, तो कोई आत्म सहायता की पुस्तक पढ़िए या किसी प्रेरणादायक कार्यक्रम को सुनिए, किसी के सार्वजनिक भाषण में जाइए जिससे आप प्रभावित हो सकते हैं, या कुछ घंटे अपने पसंदीदा वीर या आदर्श व्यक्तित्व के बारे में पढ़ने में लगाइए। ऐसे लोगों के साथ समय व्यतीत करिए जो अपने कार्य को दिल से करते हैं और जिन्होंने अपना जीवन सर्वोत्तम कार्यों में लगाने की दिशा में समर्पित कर दिया है। प्रेरणा की पौष्टिक खुराक से आप अपने जीवन को बहुत जल्द जीने के एक नए धरातल पर ले आएंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लेते हैं। फिर मिलेंगे सुप्रभात में रेडियो मधुबन पर। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: पांच YouTube वीडियो को लाइक करके पांच लोगों को स्क्रीनशॉट भेजने से पर वीडियो 500 रुपए अर्न करे।
1: क्या बात कर रहा है?
0: हाँ देख,
1: तुझे क्या लगता है ये जेन्यून है?
0: अरे हमें कहाँ पैसे देने हैं, ट्राई करके देखते हैं ना। ला देख। अरे हाँ यार, मुझे 500 रुपए मिल गए, इट मींस ये जेन्यून है।
1: अरे अब तो मुझे भी ये करना है।
0: 20,000 रुपए में प्राइम मेंबरशिप लेने से 50,000 तक अर्न कर सकते हैं। क्या बात है यार।
2: अरे ठहरो, ये क्या करने जा रहे हो?
0: ऑनलाइन टास्क से पैसे कमा रहे हैं।
2: अननोन लिंक पर क्लिक करके पैसे देकर ऐसा नहीं करना चाहिए। SMS, WhatsApp, ईमेल या टेलीग्राम पर आने वाले किसी भी अननोन लिंक को क्लिक ना करें। ऑनलाइन टास्क के जरिए ज्यादा पैसा कमाने के लालच देने वाले विज्ञापनों से दूर रहें। आपकी सुरक्षा आपके हाथ में।
3: अभी बजे हैं सुबह के 7। स्वयं को 1 मिनट दें, मन से कहें सुबह।

0: आज का संसार दुख एवं पीड़ा की अग्नि में जल रहा है, लेकिन मैं मधुबन कितना भाग्यशाली हूं कि यहां सुख एवं शांति का वायुमंडल प्रत्येक मानव के मन को शीतल बनाए रखता है, उन्हें दैवी अनुभूतियां कराता रहता है। यज्ञ के वरिष्ठ भाई बहनों के सानिध्य में रहकर आध्यात्मिक उन्नति करने का ऐसा अवसर कहीं और नहीं मिलता। मेरा ये अहोभाग्य है कि ब्रह्मा बाबा की पालना एवं शिक्षाओं को श्वासोश्वास धारण करने वाली दादी रत्न मोहिनी जैसी विभूति का साया आज भी इस आंगन में बना हुआ है। आयु उनकी बेशक 100 के आंकड़े को स्पर्श कर चुकी है, लेकिन 5 तत्वों से बने शरीर की हर बीमारी अथवा व्याधि से वे उपराम रहती हैं। अपने आत्मिक बल से दादी जी किसी भी प्रकार के कार्य व सेवा को संपन्न करती व कराती हैं। चाहे कुछ भी हो जाए, ज्ञान मुरली अर्थात परम पिता परमात्मा के महावाक्यों के अध्ययन मनन चिंतन के बिना उनकी दिनचर्या पूर्ण नहीं होती। शक्ति वंदन की इस कड़ी में ब्रह्मा कुमारी सुमन दीदी से सुनेंगे दादी रत्न मोहिनी जी की उन अन्य विशेषताओं के बारे में जो हमारे आपके लिए किसी प्रेरणा से कम नहीं।
1: शक्ति वंदन में आइए सुनते हैं उन महानुभावों से जिन्होंने दादी रतन मोहिनी जी के अंग संग रहकर उनके सानिध्य में उनके मार्गदर्शन में अनेक शिक्षाएं प्राप्त की, उनके जीवन से ओतप्रोत होकर अपने आप को धन्य महसूस किया। सुनते हैं उनके अनुभव उन्हीं के मुखारविंद से।
2: उनके शरीर में अभी तक ना कोई ऑपरेशन ना कोई काट पोट कुछ नहीं, एकदम जैसे बोलते ना दैवी शरीर है वैसा है। दादी अपने आप को यानी अभी जो भी है बीमारी तो नहीं कहेंगे, बीमारी माना क्या है कि भाई अपना सुख चैन सब मार देता है, तो दादी का तो कभी ऐसा हुआ नहीं है। दादी तो हमेशा अपने मस्ती में रहते खुश रहते हैं, तो वो कोई लाइफस्टाइल से या कोई खाने पीने से या कोई गलत सोचने से जो हमारे कॉमन बीमारी आती है उस तरह का नहीं है। दादी का एज रिलेटेड है, अभी 100 साल हो रहा है तो प्रकृति का शरीर है जो अपने ऑटोमेटिक अपने अपने ऑर्गन्स जो है ना उसकी कैपेसिटी कम होती है, तो उस तरह का उनका है, लेकिन वो कोई बीमारी की तरह नहीं है। तो उसको हमें बस थोड़ा मैनेज करना पड़ता है, जो भी साइंस के साधन मिलते हैं उस हिसाब से हमें मैनेज करना पड़ता है। उसके अलावा उनको कोई ऐसे बीमारी करके नहीं है कि भाई 20 साल में 30 साल में कोई ऐसी बीमारी आ गई, तो कहते हैं ना कि जो सोचते हैं वो शरीर पर, तो दादी उनको सोचना ही इतना श्रेष्ठ है तो शरीर कितना फिर ये होता है। और दादी के पास देखा हमने कि योग से कैसे अपनी आयु को बढ़ा सकते हैं, तो दादी जैसे योग करते हैं यानी इतने सालों से भी किया हुआ उनके पास भरपूर है, तो वो जो है उनको शरीर से डिटैच कर देता है। जैसे उनको कोरोना भी हुआ था तो हमने सोचा था कि दादी को जैसे लीला दीदी है उनके साथ में तो उनको ज़्यादा याद करेंगे कहाँ, क्योंकि वो भी दूसरे हॉस्पिटल में एडमिट थे, तो यहाँ आते तो हमने सोचा था कि दादी डिस्टर्ब होगी या पूछेंगे मुझे क्लास में जाना है कोई क्यों नहीं मिलने आ रहे, ऐसा कोई थोड़ा ये करेंगे। लेकिन जैसे ही वो रिपोर्ट आ गया और हमें घर में रख के ट्रीटमेंट, पहले यानी इतने VIP थे जो घर में रखे, क्योंकि फर्स्ट जो लहर आया था वो बहुत पैनिक था कि कोई समझ ही नहीं पाते थे कि घर में रख सकते हैं ये कर सकते, तो वो मैंने इतना

0: जो मैंने लीला दीदी ने बहुत साथ दिया, जो आपको ठीक लगे उसको मैं साथ देती हूँ। तो मैंने बोला कि मुझे हॉस्पिटल ले जाने का बिल्कुल 1% भी ये नहीं है। तो घर में ही रखा, तो घर में सब आईसीयू का सारा सेटिंग कर लिया, क्योंकि कोई अंदर तो आने वाले है नहीं, जो भी बताना है मुझे ही बताना पड़ेगा, वीडियो कॉल से बताना पड़ेगा। तो हमने घर में रख लिया। तब दादी पूरा जो कल तक थे वो दूसरे दिन पूरा उपराम हो गए, इतनी उपराम, यानी जो आप बोलोगे दादी बैठो बैठेंगे, दादी खाओ वो खाएंगे, वो कोई भी बात में अपनी बुद्धि नहीं लगाते। वो पहली बार देखा हमने दादी में कि कल तक दादी हर बात पूछती थी, ये क्या है, वो क्या है, कौन आए हैं, क्यों नहीं आ रहे, ये सब पूछते थे हर बात का, उनको इन्फॉर्मेशन लेने का है। और दूसरे दिन से वो पूरा छोड़ दिया, यानी इतना कमाल हो गया, हमें सिर्फ ट्रीटमेंट करना है और दादी को, क्योंकि 14 दिन हमें उसी एक इसमें ही रखना था, कहीं और जाना भी नहीं था। और जैसे ही वो ट्रीटमेंट पूरा हो गया फिर दादी और नॉर्मल थी, नॉर्मल आए। तो वो देखने को मिलता है कि भाई कब न्यारा होना है और कब हमें शरीर को लेकर चलाना है, यानी योग से वो कैसे अपने आप को बहुत मेंटेन किया है, बहुत आगे बढ़ाया है।
1: जैसे आप मेडिकल फील्ड से हैं, पढ़ाई करते समय और लौकिक में भी आपने नर्सिंग प्रोफेशन की काम की, और अभी आप एक स्पिरिचुअल लीडर्स के साथ काम कर, अभी बहुत सारी चीज़ें तो आपने बताई है, फिर भी एक नॉर्मल पेशेंट्स को आप जब देखते हैं और दादियों को देखते हैं, क्या फील होता है आपको?
0: बहुत बहुत अंतर है। नॉर्मल इंसान बीमार रहते हैं, उनकी स्थिति मानसिक हो या शारीरिक हो, और जो स्पिरिचुअल स्टडी करता है उसमें कोई पारंगत हुआ है, उनकी स्थिति और शारीरिक है बहुत बहुत अंतर है। और ट्रीट करते टाइम हमें भी वही होता है, वो कभी उनको हम कोई इंजेक्शन लगाने जा रहे हैं या मेडिसिन देने, तो वो हाय हाय करते रहते हैं, हाय हाय करते रहते, दादियाँ तो वाह वाह करते रहते कि भाई ये भी एक कोई सेवा का साधन है, जो भी हुआ है शरीर के लिए, कहीं भी जाना हो तो एक सेवा का साधन समझते हैं, उसके अलावा और कुछ उसके बारे में सोचते हैं। और एक है, हम ज़्यादा कॉमन जो ये रहते हैं रोगी, वो ज़्यादा सोचता है उस बीमारी के बारे में, क्यों आया, कैसे जाएगा कि नहीं पता नहीं, कितना ये घर, यानी बहुत बहुत जो ज़रूरी से भी ज़्यादा ओवर थिंकिंग होता। दादी नहीं, बिल्कुल नहीं, उसके बारे में एक बार बताया, अभी तो वो भी नहीं बताते, बस आप सामने बैठो या उनके हाथ टच करो तो हमें पता चल जाता है कि उनको कोई शरीर में तकलीफ हो रही है। वो कभी मुझसे बोलते भी नहीं, तो कभी बोलना भी है तो वो सिर्फ डॉक्टर से बताते हैं या साथियों से, एक बार एक सेंटेंस में बस हो गया, फिर उसके बाद वो ना सोचते हैं ना उसका कोई वर्णन करते। ये बहुत बड़ा अंतर है कि जब बीमारी का हम एक्सप्लेन जितना करते हैं, भले डॉक्टर के पास एक बार बताना अलग बात है, लेकिन 100 बार हम दिन भर उसको रिपीट करते रहते, उसकी वजह से हम वो बीमारी में ऐसे जकड़े रहते हैं कि हम बाहर नहीं निकल पाते। लेकिन जो स्पिरिचुअलिटी स्टडी करते हैं उनको पता चल जाता है कि शरीर अलग है और आत्मा अलग है, आत्मा में इतनी पावर है, उसको जागृत करने से ऑटोमेटिक शरीर की हीलिंग हो जाती है, ट्रीटमेंट हो जाता है। तो उसका जीवनते का उदाहरण है दादी, तो वो लोग ऐसे ही करते हैं, ऑटोमेटिक उसका एक्सप्लेनेशन बंद कर देते। अगर उनके सामने कोई आप बता भी रहे हो ना, वो ऐसे देखेंगे जैसे किसी और का सुन रहे हैं, किसी और का सुन, नहीं तो हमेशा हमें लगता है कि मेरा सुने, मेरी बीमारी के बारे में सब लोग सुने, उसका डिस्कशन करे और मुझे कोई थोड़ा दया दिखावे या केयरिंग करे, वो नहीं रहता है दादा। दादी डॉक्टरों को भी पहले पूछेगी आप कैसे हो, डॉक्टर आके पेशेंट को पूछता है, लेकिन दादी पूछेगी कि भाई आप कैसे हो, तो वो ऑटोमेटिक वो लोग एनर्जेटिक हो जाते हैं कि पहला पेशेंट है जो हमें पूछता है कि आप कैसे हो।
1: लगभग सभी दादियों के साथ ऐसे ऐसे
0: इनके साथ मेरा लंबा समय रहा है, लेकिन कईयों के पास 1 महीना 2 महीना कभी 15 दिन इस तरह का, लेकिन सभी दादियों में ये सब सिमिलर है, बाबा के प्रति पूरा डेडिकेशन और मुरली की स्टडी, और कुछ भी होता है तो उसका नो एक्सप्लेनेशन, ये सभी दादियों में था। तो इनके साथ मुझे 7 साल से है, और मैं तब से जुड़ी इनसे कि वो सब चलते फिरते अपना रूटीन करते, तो उस तब से जुड़ी हूँ, तो ऑटोमेटिक सभी दादियों का भी पता चल जाता है।
1: मेडिकल साइंस के हिसाब से आप जब देखते हैं, ये कहते हैं ना, स्पिरिचुअलिटी इज़ बियॉन्ड साइंस, आपको क्या महसूस होता है?
0: दादी तीन मेडिसिन बिल्कुल पसंद नहीं करती, एक है पेन किलर, दूसरा एंटीबायोटिक, तीसरा है नींद के लिए, ये बिल्कुल पसंद नहीं करती। पेन किलर माना वो कोई हमें सहन शक्ति बढ़ाने के लिए या भगवान को याद करने के लिए या अपने में कोई करेक्शन कराने के लिए आया हुआ है, तो उसको हमें कराना है, सहन करना है, अपने टॉलरेंस की परीक्षा देनी है। और दूसरा है एंटीबॉडी। एंटी माना क्या है, मेरे शरीर को चाहिए ही नहीं है, एंटीबॉडी है तो मेरे में जनरेट कर सकते ना अगर वो बीमारी को ये करना है, तो ये नॉलेज दादी को है। और स्लीपिंग का, वो तो घर गृहस्थी वाले, इतने मामले उनके सिर पर रहते हैं, वो लोग नींद की गोली लेते हैं, हमें क्या ज़रूरत है, हम तो योगी लोग हैं, तपस्वी लोग हैं, हमारे कौन से टेंशन से नींद उड़ रही है जो गोली लेके सोने की ज़रूरत पड़े। तो दादी को ये तीन मेडिसिन बिल्कुल पसंद नहीं है। अभी कभी हार्ट की या कुछ प्रॉब्लम हुआ था तो हम उनको कन्विंस करके देते भी थे थोड़ा नींद की गोली वगैरह, लेकिन वो गोली भी ऐसी अमृत वेले में 3 बजे 4 बजे नहीं लगेगी, उस टाइम वो उठेंगे ही उठेंगे, अपना मेडिटेशन करेंगे, अपनी मुरली पढ़ेंगे, उसके बाद चाहिए तो थोड़ा रेस्ट करेंगे। यानी उनका माइंड इतनी पावरफुल हो गया है कि वो मेडिसिन उसको डिस्टर्ब नहीं करेगी, वो भी उनके अनुसार चलेगी, वो जो बोलेगी अभी सो जाओ तो सोएंगे, अभी उठना है तो उठना है, तो वो हमने देखा है। तो मेडिसिन थोड़ा काम करते हैं अपने हिसाब से, लेकिन दादी उसको चलाती है।
1: और कोई किस्सा आपको याद आता है दादी को लेकर के?
0: हाँ, ऐसे बहुत सारे हैं।
1: सुनाए।
0: दादी को ऐसे अगर सेवा करना है, वो सेवा इम्पोर्टेंट रहती है, वो कोई साधन कैसे जा रहे हैं, अभी इतने बड़े दादी हैं, इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ होती है, इतने सब सेवाधारी होती है, लेकिन दादी को वो सभी कोई मायने नहीं रखता है, मुझे टाइम पे वहाँ जाके पहुँचना है, ऐसा होता है। तो एक बार क्या हुआ था, हम बॉम्बे में थे, तो दादी को जहाँ वो दादी गामदेवी सेंटर में जहाँ हम रहे थे वहाँ से कुछ दूर में क्लास करने जाना था, हॉल कहीं और था और दादी को मुरली क्लास में जाना था, तो हम सेकेंड फ्लोर से नीचे आ गए रोड पे, ताकि वहाँ पार्किंग का बहुत प्रॉब्लम है इसलिए अपनी गाड़ियाँ वहाँ सामने नहीं रख सकते, कई और रखते हैं, तो भाई को फ़ोन किया तो वो लेके आया। तो दादी ने पूछा टाइम कितना हो रहा है, 7 बजने को ऐसे 5 मिनट वगैरह बाकी है, तो बोल के 7 बजे तक वहाँ कोई हमारा इंतज़ार कर रहा है, हम उनका इंतज़ार नहीं कराना है, समय पर हमें पहुँचना है। तो दादी आके नीचे खड़ी रही 2 मिनट, गाड़ी नहीं आई, तुरंत दादी बोलती कि ऑटो को बुलाओ। तो मैंने बोला कि अभी इतनी बड़ी दादी मैं ऑटो में कैसे लेके जाऊँ, और मैं अकेली हूँ और साथ में मेरे कोई पैसे भी नहीं है, ना पर्स है, बस एक मोबाइल था। लेकिन दादी बोलती कि नहीं आप खड़ा करो, रिक्शा वालों को बुलाओ बुलाओ। तो मैं हिचकिचा रही थी मैं कैसे ये करूँ, तो दादी खुद मुझे खींच के ले जाके यानी रोड पर खड़ी हो के ऐसे हाथ कर रही है ऑटो वालों को, तो एक ऑटो खड़ी हो गई, तो मैं तो बैठ गई दादी को लेके। मुझे इतना उस टाइम ये लगा कि मेरे हाथ पैर जैसे कोई मैं हूँ ही नहीं है, मेरे पास ना कोई वो बोलते पैसे नहीं, कोई बात ना, हम तो ईश्वरीय सेवा कर रहे हैं ना, वहाँ पैसों की क्या ज़रूरत है, हम पहले ऐसे ही जाते थे, ऐसे बोला, मेरे पास एक बैड के अलावा और कुछ नहीं। तो फिर चलते फिर भाई को बोला कि भाई वहाँ जाना है, तो भाई ना हाँ बोला और उसके आंखों से ऐसे आंसू बह रहे थे, मैंने मिरर में देखा, फिर मैंने पूछा कि वो भी बताया था मेरे पास पैसे नहीं हैं, तो बोला कि वो नए नए जुड़ा हुआ था और उनको बताया था कि कोई मधुबन से दादी आ रही है, बड़ी दादी आ रही, तो उनको मिलने के लिए वो खुद आ रहा था, तो वहाँ लेके गया। तो ऐसा हुआ कि वहाँ जो टर्निंग में सभी बीके भाई लोग खड़े थे, दादी की गाड़ी आ रही है फूल वगैरह लेके, और दूसरे जो गाड़ियों को साइड कर रहे थे, तो हमारी गाड़ी एन जो रिक्शा को भी साइड कर रहे थे, फिर मैंने बोला कि भाई दादी इसी में बैठी है, तो ऑटो वालों को हॉल तक अंदर लेके गए, फिर फूल वगैरह डाला, ऐसे यानी समय पे पहुंचना है। ऐसे दादी का वही है बस सेवा, अगर वो सोए भी हैं ये किए हैं तो हम बोलते थे कि भाई जानकी दादी से मैसेज है आपको मिलना चाहते, वो तुरंत उठ जाते थे, बड़ों ने बोला है, बड़ों ने बोला है तो तुरंत, ऐसे यानी बड़ों को रिगार्ड देना वो दादी में ऐसे भरा हुआ है। उसके बाद जैसे मोदी जी है, उनका कोई आता है स्पीच वगैरह, तो दादी खटिया से ऐसे उठ के बैठेगी और किसी को बात करने नहीं, बोलेगी ये देश का बड़ा है, उसका हमें सुनना है, ऐसे बीच में बातें वगैरह नहीं करना है। कहते हैं कि अगर आपको बात करना है तो बाहर जाके बात करो। इतना उनको रिस्पेक्ट से कि वो बड़ा है देश का, तो हम उसका रिस्पेक्ट देना है। अभी भी अगर हम कुछ बात करते हैं तो नींद में है, अभी उनको उठाना है तो हम बोलते हैं मोदी जी की बातें कि दादी मोदी जी यहाँ गए हैं, वहाँ गए, ये कर रहे हैं, तो उनको बहुत खुशी होती है, हाँ देश का कोई बड़ा है, कुछ कर रहा है ऐसे। तो बहुत है, बड़ों को रिगार्ड देने का बहुत है।
1: दादी कभी अपनी बचपन की बातें या पुरानी बातें सुनाती है?
0: हाँ सुनाते हैं, यानी ऐसे कोई बातें करते करते हैदराबाद की सुना, वो हैदराबाद से, सिंध हैदराबाद के, तो वहाँ की बातें सुनाते हैं, उनका घर जो है कैसा रहता था, यानी पुराने ज़माने का, वेंटिलेशन का, वो सभी ऐसे कभी कभी बताते हैं, बहुत कम बताते हैं लेकिन बताते हैं। फिर किसी किसी के नेचर से वो फ्रेंड्स में नाम रखते थे, जैसे ज़्यादा बात करने वाले हैं तो उनको ऐसे चुलबुली और क्या चटनी, ऐसे कुछ कुछ नाम रखते थे, वो बताते कि ऐसे होता था। और बाबा के प्रति इतना विश्वास और इतना ये है, वो कोई हिला नहीं सकते। जैसे वो कभी नींद से हमें उठाना है, कोई करना है, तो मुरली जो है ना, हम ऐसे ही दादी दादी बोले तो नहीं उठेंगे, तो मुरली लेके तो हम उसमें बोलते कि बाबा मीठे बच्चे, तो हम उसको उल्टा पढ़ने का, कड़वे बच्चे, वो तुरंत आँख खोल देंगे, नहीं बाबा ऐसे कभी बोल ही नहीं सकता है। तो बोलते कि बाबा जैसे सुखधाम स्थापन करने आए, हम बोलते कि बाबा दुख धाम से, वो तुरंत उठ के कान पकड़ेंगे हमारे। तो हमारा उनको उठाने का तरीका है कि वो उल्टा बोलो तो नींद में भी उसका सुलटा करेगी दादी, इतना बाबा पर इतना विश्वास, इतना बहुत। और मुरली पे पर, मुरली कभी भी एक एक शब्द से भी वो करेक्शन नहीं चाहते, जैसी है वैसी, तो वो देखा है।
1: पुरानी बातें क्या सुनाते थे वो सुनाइए ना।
0: यानी वो बहुत छोटे थे, तो वो जो छोटे यानी 13 साल के कुछ थे वो, और उनके माताजी के साथ आए थे, तो उनको लगता था कि मैं लेट आई हूँ और ये सब बड़े हैं, ये बहुत, इनसे मुझे सीखना है, ये उनको कहते कि चंद्रमणि दादी का, बड़ी दादी का ऐसे सुनाती, वो लोग हमारे टीचर है, उनसे मुझे सीखना है, उनसे सीखना है। तो वो भाव उनको अभी भी लगता है कि मैं यज्ञ में छोटी हूँ और मुझे रोज़ सीखना है। कोई कुछ भी ऐसे बताते हैं तो बोलेगी हाँ ठीक है, उनको अभी टीवी में सभी क्लासेस चलते रहती है, कभी राजू भाई का क्लास चल रहा है, कभी गुप्ता जी का क्लास। वो दादी डायरी पेन लेके बैठती है कि वो जो पॉइंट्स निकालने के लिए, कोई भी बहनों का क्लास चल रहा है तो बोलेगी डायरी पेन दे दो, उसके पॉइंट्स निकालेंगे। और राजू भाई का तो बहुत पसंद करते हैं कि भाई वो एक्यूरेट ज्ञान देते हैं, स्ट्रेट देते हैं ऐसे बोलते हैं, और वो लिखते हैं। तो ऐसे बहुत बचपन के कम सुनाते, लेकिन बहुत रेयर अभी सुना लेते हैं। बस अभी की जो बातें हैं वही बता सकते हैं, दादी का भोजन करने का, दादी का
1: रहने, दादी का डाइट कैसा रहता है बीमारी के टाइम पे या फिर नॉर्मल डेज।
0: वो डॉक्टर्स कहते हैं इनको कोई चेंजेस की ज़रूरत नहीं है, ये इनसे तो हमें सीखना है, क्योंकि हम तो दूसरों को बताते हैं कि भाई पीका खाओ, फ्रूट खाओ, जूस पियो, और जो भी है डायरेक्शन देते हैं, लेकिन हम भी नहीं फॉलो करते हैं, घर जाके हम भी कोई फॉलो नहीं करते, लेकिन बताते हैं। इनको तो बताने की ज़रूरत ही नहीं है, इनका तो ऑलरेडी यानी पटरी पे ही है, नियम पे चलते हैं ऐसा, तो डॉक्टर लोग कोई भी इनको करेक्शन नहीं करते। तो हम कहते हैं कि कोई परहेज़ करना है, पूछते हैं तो नहीं नहीं इनको कोई परहेज़ की ज़रूरत नहीं, क्योंकि दादी का खाने का सभी बहुत लाइट है। वो थाली लेंगे तो उसमें जितना चाहिए उतना ही लेंगे, उससे ज़्यादा नहीं लेंगे, अगर ज़्यादा भी होते तो वो कभी फेंकेंगे नहीं, वेस्ट नहीं करेंगे। तो इस तरह उनका यानी अगर वो खाना खा के भी पूरा हो गया तो आपको पहचान नहीं पाओगे कि वो खाना खाया हुआ थाली है या अभी फ्रेश रखा हुआ, इतना नीट एंड क्लीन। और फ्रूट बहुत पसंद करते हैं, फ्रूट जूस नेचुरल चीज़ें है वो बहुत पसंद करते हैं। उसके बाद और दूसरा जो भी है वो ऑयली तीखा खट्टा ये कभी नहीं, बहुत लाइट रहता है उनका भोजन, ऐसा रहता है कि कभी हम भी नहीं खा सकते हैं। और खाने का भी ऐसे कभी भोजन को नाम नहीं रखेंगे कि ऐसा हुआ है वैसा हुआ है। एक बार ऐसा हुआ था, वो सिंगी का जो सूप बनाते हैं ऐसे, जो भाई बनाता है वो टेस्ट करके देता है, लेकिन बाय मिस्टेक एक दिन वो किया नहीं था, तो हमने दादी को पिला दिया, फिर बाद में जो बचा था वो दूसरी बहन पी रही थी, तब पता चला कि वो इतना कड़वा है, यानी सिंगी कड़वी होगी तो उसके साथ पूरा सूप कड़वा हुआ था, लेकिन दादी ने कभी एक मुख से नहीं बताया कि ये कड़वा है। अगर कोई कड़वी भी चीज़ हम कोई काढ़ा ये वो पिलाते हैं ना, जैसे हमें हमारे चेहरे सब चेंज हो जाते हैं, वो इतना कड़वा है, उनमें कोई चेंज नहीं होता है, वो इतना ही प्यार से लेते जैसे कि गुड़ खा रहे हैं। तो वो देखा है कि वो बताएंगे नहीं कि ये है वो है करके, सभी उनमें कम रहता है, जैसे तीखा भी कम, एकदम तीखा भी नहीं रहेगा लेकिन कम रहेगा, खट्टा भी कम रहेगा, ऑयली तो खाते नहीं हैं, तो इस तरह का ही उनका है। तो और कोई भी चीज़ है तो एक स्पून लेंगे, अभी चावल भी कितना खाएंगे, वो एक स्पून, अभी एक डॉक्टर कौन मना कर सकता है कि एक छोटे स्पून के लिए। तो कोई भी उनका परहेज उनके खुद ही, दादी ने खुद अपने आप को इतना अच्छा मेंटेन किया है।
2: अथक सेवाधारी, समय की पाबंद, अनुशासन प्रिय दादी रत्न मोहनी जी ने सदैव ध्यान रखा कि मधुबन की धरनी पर पांव रखने वाली प्रत्येक आत्मा को वह सब मिले जिसके लिए वह संसार में भटकता रहता है। दादी जी ने समय समय पर अपनी मधुर वाणी, व्यवहार एवं शिक्षाओं से उनकी आस को फलीभूत किया। वे जहां कहीं भी सेवाओं पर जाते वहां परमात्म ज्ञान वर्षा एवं अपनी नजरों से सबको निहाल कर देते। उनकी सादगी बेमिसाल है, वैभव नाम मान शान के आकर्षण से न्यारा कैसे रहते हैं ये दादी जी से बेहतर कोई नहीं जानता। मैं मधुबन धन्य हूं कि दादी रत्न मोहनी जी जैसा हीरा इस धरा को सुशोभित कर रहा है।

मैं जानकी हिमलानी, मैं अध्यापिका हूँ, कुछ कहना चाहती हूँ। लेफ्ट साइड में ही हमें चलना चाहिए और हमेशा तेज आते वाहनों से स्वयं को बचाना चाहिए। जो कार चलाते हैं उनसे भी मेरा ये निवेदन है कि जब भी आप कार चलाएं तो बेल्ट दे रखी है, सीट बेल्ट का उपयोग करें, इससे सुरक्षा बनी रहेगी। जान है तो जहान है। रेडियो मधुबन

0: ओम शांति। अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी में आज फिर आप सबका स्वागत करते हैं। हमने, अगर आपको याद हो, पिछली कड़ी में बात की थी कि सिचुएशंस हमारी जिंदगी में बहुत बड़ी हो जाती हैं और नो डाउट वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स लगती हैं। और जिस तरह से हमने देखा था कि आने वाला वक्त ये भी कह रहा है कि सिचुएशंस तो आती ही जाएंगी, और वो अगर हम एक चीज़ जिसे हमने धारण करने को कहा था, जिसे कहा था कि अपने जीवन में ज़रूर इम्प्लीमेंट करें, वो ये कि उन्हें सिचुएशन फील कैसे किया, वो मैंने क्रिएट किया। तो यहाँ
1: दिस इज इम्पोर्टेंट, दिस होल लाइन इज वेरी इम्पोर्टेंट, वो मैंने क्रिएट किया। आई जस्ट हैव टू रिमेम्बर ओनली दिस। अभी तक ये हो रहा था कि हाँ, दर्द क्रिएट हुआ, टेंशन क्रिएट हुई या गुस्सा क्रिएट हुआ, लेकिन वो परिस्थिति ने क्रिएट किया।
0: सिचुएशन ऐसी थी,
1: या आई अंडरस्टूड दैट द पेन इज गेटिंग क्रिएटेड। वो तो मुझे, क्योंकि वो मेरे अंदर क्रिएट होता है, तो मुझे एक्सपीरियंस हो रहा है कि वो पेन क्रिएट हो रहा है क्योंकि आई एम गोइंग थ्रू द पेन। लेकिन क्रिएटर कौन था उसका? सो समवेयर व्हाई आई वाज फोकसिंग आउटसाइड, क्योंकि मेरे को लगा क्रिएटर बाहर बैठा है, यू नो दैट्स व्हाई यू सेड पेन हिट्स अस, बिकॉज क्रिएटर वाज आउटसाइड। लेकिन जो आपने अभी कहा, मैंने क्रिएट किया, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी कहाँ आ गई? सारी मेरे ऊपर आ गई। तो जो हमने, कई बार हम ऐसी थॉट्स क्रिएट करते हैं, हमें पता भी नहीं चलता कि वो नेगेटिव हैं, लेकिन वो नेगेटिव थॉट फिर वो मेरे सारे दर्द का कारण बन जाती हैं उस सिचुएशन को फेस करने में। तो अगर हमें अपने आप को उस सिचुएशन से क्रॉस करना है और बहुत स्टेबिलिटी से क्रॉस करना है, तो कुछ एक बातें जो हमें बहुत मदद करती हैं वो है पॉजिटिव थिंकिंग। आई नो इट्स अ वेरी क्लीशेड वर्ड, वेरी रेड, वेरी हर्ड, but still not practiced. What is the need of the hour? Let's start now. Let's not wait for the pain to
0: come in,
1: go out of control. Kyunki wo jo emotional pain hai, fir wo sirf emotional pain na rehkar mere par physical effect bhi le leta hai, meri relationships pe effect karta, koi na koi ailment sharir mein bimari ho jati hai, fir doctor kehta hai tension nahi lena, hoga, it won't happen at that time. To jabki ab मालूम है सिचुएशंस बाहर है, बट स्टिल इट्स नॉट दैट बैड, इट्स स्टिल नॉट बैड, आई कैन स्टिल टेक आउट सम टाइम टू वर्क ऑन माय सेल्फ, प्रोवाइडेड आई रिमूव दिस वन थॉट कि मेरे पास टाइम नहीं है। सी, आई एम नॉट रेडी टू टेक आउट दैट लिटिल बिट ऑफ टाइम। हाउ मच टाइम? 10 मिनट्स, 15 मिनट अपने लिए निकालना, 15 मिनट जिससे आपके पूरे दिन की, आपके पूरे जीवन की नींव खड़ी हो सकती है। अगर हम 15 मिनट निकाल कर सिर्फ साइलेंस में बैठकर अपने आप को देखें, अपनी थॉट्स को देखें, फिर आगे मेडिटेशन जब करते हैं तो परमात्मा से कनेक्शन जोड़े, अगर ये 15 मिनट में मेरा इतना क्लीनिंग और चार्जिंग प्रोसेस हो सकता है जिससे मैं बड़ी से बड़ी सिचुएशन को फेस कर सकती हूँ, हाउ मच इज 15 मिनट्स नाउ?
0: लेकिन ऑलरेडी जब सिचुएशन है, जैसा आपने कहा कि अब सिचुएशन आ गई है, और
1: लेकिन अभी भी उतनी बड़ी नहीं है, अभी भी उतनी बड़ी नहीं है कि मैं अपने ऊपर काम करना नहीं शुरू कर सकती, क्योंकि अभी भी मुझे क्या करना है, फर्स्ट स्टेज तो यही देखनी है कि आई एम क्रिएटिंग द रिस्पॉन्स। लेकिन अगर मैं अपने लिए समय निकाल कर थोड़ी देर साइलेंस में बैठकर उस पर कॉन्टम्पलेट नहीं करूँ, मनन नहीं करूँ, तो मुझे तो ये फैक्ट भी नहीं पता चलता कि आई एम क्रिएटिंग द रिस्पॉन्स। मुझे तो ये रियलाइजेशन भी नहीं है कि आई एम क्रिएटिंग द पेन। क्यों रियलाइजेशन नहीं? आई एम गोइंग वेरी फास्ट, ये इसलिए द फर्स्ट स्टेप हैज़ टू बिगिन विद टेकिंग आउट सम टाइम फॉर माई सेल्फ। बैठे, भले वो परिस्थिति ही है, लेकिन बैठकर अपने बारे में जब सोचें कि व्हाट डू आई हैव अ चॉइस टू फेस दिस सिचुएशन, दिस कुड बी कॉल्ड द फर्स्ट स्टेज ऑफ मेडिटेशन, नो प्रॉब्लम। परमात्मा से कनेक्शन अभी नहीं जुड़ रहा है, नो प्रॉब्लम, अपने से तो जोड़ना शुरू करें। अपने से जुड़ेगा, हीलिंग होगी, तो परमात्मा से तो जुड़ना ही है, बिकॉज ही इज फाइनली द वन who's going to, you know, give me the power to change. Lekin time to nikalna padega. Ilaj karwana hai, to doctor ke paas jana to padega na ilaj karne ke liye. Uske saath connection jodna to padega. Kahin doctor ke paas jane ke liye time nahi hai. Lekin hai main bimar hoon. Now who's responsible for this? Who's responsible? आप खुद ही अपने आप को कहते हैं कि मेरे पास अपनी बीमारी का इलाज कराने के लिए टाइम नहीं है, और फिर कह रहे हैं हाय मैं क्या करूं, मेरी किस्मत, मेरा भाग्य, अगेन द ब्लेम विल गो एवरीवेयर आउटसाइड। तो मेडिटेशन इज डेफिनेटली दैट कनेक्शन, जिससे मैं अपने आप को देखना शुरू करती हूँ, अपनी हीलिंग, क्योंकि मेडिटेशन कम्स फ्रॉम द वर्ड हीलिंग, अपने आप को हील करना शुरू करती हूँ, अपने थॉट्स को देखना शुरू करती हूँ कि हाँ देखेंगे ही नहीं तो क्वेश्चन ही नहीं है कि नेगेटिव है या पॉजिटिव है, वो तो पता ही नहीं चलेगा। बाहर सिर्फ अपने एक्शंस को देख सकते हैं, थॉट्स को नहीं देख पाते हैं। तो थोड़ा सा समय अगर हम अपने लिए रोज निकालें, भले अभी भी कितनी भी बड़ी सिचुएशन है, बहुत बड़ी नहीं है, अभी भी उतना समय निकल सकता है, और अभी भी समय निकालेंगे तो उस सिचुएशन को राइट पर्सपेक्टिव में देख पाएंगे। समय नहीं निकालते।
0: एक बात मैं यहाँ कहना चाहती हूँ, अभी जो हम बात ही कर रहे हैं ना शिवानी की, जब सिचुएशन आती है तो हमारा कोई थॉट क्रिएट होता है, लेकिन अगर अवेयरनेस के साथ देखूं, मैं भी अगर देखूं, हमने जो हम कई दिनों से काम कर रहे हैं, हमारे सारे दर्शक और मैं शामिल होकर, समटाइम्स व्हेन द सिचुएशन, कई बार तो हम हैंडल करते हैं अपने आप को देखते हुए, कई बार देखते हैं कि वो फीलिंग पहले जनरेट होती है, थॉट की जहाँ फीलिंग ने हिट किया, चाहे वो हर्ट का था, चाहे वो एंगर का था, चाहे वो पेन का था, या चाहे वो रिजेक्शन का था, कोई भी एक फीलिंग ने हिट किया, उसके बाद थॉट आया कि
1: फीलिंग बिना थॉट के नहीं आएगी,
0: नहीं आ सकती।
1: हर्ट पेन, जितने भी आपने फीलिंग्स बताई, हर्ट पेन एंगर रिजेक्शन, उसने मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, हर्ट, उसे मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, एंगर, वन थॉट हैज टू गेट क्रिएटेड फर्स्ट।
0: लेकिन वो थॉट हमें दिख नहीं पाता,
1: पर फास्ट प्रोसेस है ना।
0: हाँ।
1: क्योंकि मेरा एक स्पीड, इतनी फिफ्थ गियर में आपकी गाड़ी अगर सारा दिन चल रही है तो आपको कितना क्लैरिटी से दिखाई देगा सब कुछ। कभी तो स्लो डाउन करेंगे थोड़ा सा तो दिखाई देगा कि क्या प्रोसेस है अंदर जो चलता है। देखो इतना फास्ट होता कि ये भी नहीं रियलाइज होता कि पहले थॉट या पहले फीलिंग, ये भी नहीं रियलाइज होता अंदर से आ रहा है या बाहर से आ रहा है। यू नो लाइक यू सेड, द फीलिंग हिट्स, अगेन फीलिंग डजंट हिट, आई क्रिएट, लेकिन बाय प्रोडक्ट ऑफ माय थॉट। इसलिए जहां मेहनत करने वाली बात है वो उस सीड पर है, उस बीज पर है। थॉट एक बार राइट क्रिएट हो गया, फीलिंग अपने आप राइट क्रिएट होगी, एक्शन अपने आप उसके बाद राइट होगा, लेकिन वो थॉट स्टेज तो हम इतनी फास्ट फॉरवर्ड में चले जाते हैं, पता नहीं चलता। तो अगर हम थोड़ा सा समय रोज बैठकर अपने थॉट्स को देखें तो हमें पता चलने लगेगा कि वी आर क्रिएटिंग द थॉट। तो इसलिए थिंकिंग को परिवर्तन करने के लिए, पॉजिटिव थिंकिंग में लाने के लिए मेडिटेशन इज द सॉल्यूशन। Because meditation means first thing self introspection, अपने आप को देखना। जब तक हम वो नहीं करेंगे तो उसको तो फिर हम और डिटेल में डिस्कस करेंगे कि इसको कैसा करना है। लेकिन नॉर्मली क्या होता है कि जब भी परिस्थिति आती है, माई फर्स्ट रिस्पॉन्स विच हैज़ बिकम वेरी कॉमन, हियर इज अ चेंज, what is the first response that gets created automatically? What is it?
0: Resistance.
1: Resistance. यहाँ से सिचुएशन आई, मैंने रेजिस्ट किया क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे कोई ना कोई डर है। फियर एक बहुत डीप रूटेड,
0: क्या होगा,
1: डीप रूटेड। अब जो आपने कहा क्या होगा, अब हम नॉर्मली समझते कि जब भी परिवर्तन होता है कुछ ना कुछ तो हमें डर लगता है, फियर इज वेरी डीप रूटेड। लेकिन डर ये लगता है हमें कि अब क्या होगा। एक्चुअली अगर आप और उसको गहराई से अपने आप को कभी भी देखना, नेक्स्ट टाइम जब डर लगेगा, फियर, इट्स नॉट फियर ऑफ व्हाट विल हैपन नेक्स्ट, इट इज फियर ऑफ व्हाट विल आई लूज आउट ऑफ व्हाट आई हैव नाउ।
0: यस, लूजिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट,
1: बिकॉज वी ऑलवेज थॉट दैट चेंज मींस फियर ऑफ अननोन, यू नो कि आई डोंट नो कि इस चेंज से क्या होने वाला है। लाइक आई रिमेम्बर कि जब कंप्यूटराइजेशन वॉज इंट्रोड्यूस्ड, यू नो, इन टू द ऑफिसेज, इन टू द स्कूल सिस्टम एंड एवरीथिंग, ओ इट वॉज फियर, फियर एवरीवेयर,
0: सो मच ऑफ रेजिस्टेंस,
1: सो मच ऑफ रेजिस्टेंस के जिस तरह से चल रहा है, ठीक चल रहा है ना, ये किस लिए, अब ये क्यों
0: कर, ह्यूमन को रिप्लेस कर देंगे, मशीन जो है, मशीन विल टेक ओवर, कितनी उनकी फिल्म्स बनी थी, कितना कुछ बना था।
1: तो ये फियर किस बात का था? फियर इस बात का नहीं था कि ये क्या होगा इससे, फियर इस बात से था कि मेरी जो वर्तमान समय पोजिशन है, मेरी जो अथॉरिटी है, मेरी जो पावर है, कहीं वो तो नहीं
0: लूज
1: कम हो जाएगी। तो वो फियर की वजह से मैं उस चेंज को रेजिस्ट करती हूँ, मुझे नहीं चाहिए, मैं जैसे हूँ वैसे ठीक हूँ। सो फियर ऑफ लूजिंग समथिंग, एंड नॉर्मली हम किस चीज़ों को खोने का डर रहता है हमें, पीपल, फियर ऑफ लूजिंग पीपल, पावर, यू नो, एनी रिलेशनशिप, एनी ऑफिस, एनी वेयर चेंज इज इंट्रोड्यूस्ड, fear of losing power.
0: Mm. My position, power.
1: Position, mm-hmm. Yes. Prestige, my personality, people, money, pay. Mm. All these, we call them the P's. Power, position, prestige, people, pennies. Dar. Aur ye dar mujhe us change ko resist karne ke liye karta hai. Aur jaise hi maine resist kiya, to kaun si energy flow hone wali hai?
0: Negative. Of course.
1: Negative. So, if I resist change, there is no way I'll be able to think positive now. To maine resist kiya. Kyunki mujhe andar koi na koi dar hai ki meri ye saari jo hai, position, power, log jo hai, inme se koi mere se kho na jaye. To wo dar hame rokta hai. To agar hame is situation ko bahut aasani se cross karna hai, first step comes to acceptance.
0: Acceptance of the situation.
1: Acceptance. Swikar karna ke ye hona hai. Like, jaise ye saari baate humne ki. Ab ye hamare jeevan ka ek hissa hai na. All these things, people, money, position, whatever. It's a part of my life. This is also all energy, like it's flowing in my life. Ye ek river ki tarah hai, jo flow karta rehta hai. Hum us river ko kya karne ki koshish karte hai?
0: Ruk
1: jaye, ye yahan ruk jaye. Aur wo river ko rokne ki koshish jo hum ye jeevan mein hamara jo behta, ye sari cheeze behti hain. That's why it's change. Because a river flowing, not even a single, you know, moment, it's going to be two moments the same. Flowing river means har pal
0: alag.
1: Alag. Har pal parivartan. To ye jeevan mein ye jo sari baate hain, ye parivartan hain. 10 saal pehle mere jeevan mein jo log the, आज परिवर्तन है. 10 साल पहले जो मेरी पोजीशन थी, आज परिवर्तन है. वी आर नॉट क्वेश्चनिंग गुड और बैड. क्वेश्चन इज हैज इट रिमेंड कॉन्स्टेंट? नो. तो हम उसको क्यों रोकने की कोशिश करते हैं?
0: यहाँ आपने कहा एक्सेप्टेंस. प्रॉब्लम ये आती है, जैसे ही एक्सेप्टेंस कहती हूँ, मेरे जो सारे फियर्स थे, मैं उसको एक्सेप्ट करने लग जाती हूँ. कि अच्छा ठीक है, फिर मेरी अपनी पोजीशन तो जाएगी ही जाएगी. कोई आगे मेरे पैसा तो जा ही रहा है. ये जो फियर, ये जो एक्सेप्टेंस है, ये एक्चुअली एक्सेप्टेंस ना लाइक रहकर कई बार, मतलब जैसे एक्सेप्टेंस आप कहो कि सिचुएशन की एक्सेप्टेंस, तो उसके साथ के फियर के साथ जो लूज को, चीज़ों को लूज करने वाला फियर था, उसको एक्सेप्टेंस की बात सोच
1: लेते हैं. तो फिर हमने फियर को एक्सेप्ट किया, सिचुएशन को थोड़ी एक्सेप्ट किया. सिचुएशन को नहीं एक्सेप्ट किया, मैंने ये एक्सेप्ट कर लिया कि इस सिचुएशन में डर लगना तो नेचुरल है. हम अपने रिस्पॉन्स को भी नहीं कहेंगे, रिएक्शन को एक्सेप्ट कर लेते हैं, अगेन बाय सेइंग कि ये सिचुएशन में ये तो नेचुरल ही है ना. सो वी
0: ऐसा तो होगा ही, ये होगा. अब चलो मैं एक्सेप्ट, उसको रेजिस्ट नहीं करता हूँ. ठीक है, अब हो गया है ये तो. ठीक है, मेरी नौकरी भी जाएगी, मेरी पोजिशन चली जाएगी.
1: सो दिस इज अ होल सीरीज ऑफ नेगेटिव थॉट्स व्हिच हैज स्टार्टेड. तो ये जो रिवर जो फ्लो कर रहा है, If I try to stop it, it's like एक डैम बिल्ड कर देना. यू नो, ये यहीं रुक जाए पानी, जैसा आगे नहीं फ्लो करे, ये यहीं का यहीं रुक जाए. अब जैसे ही हम उस पर एक डैम बिल्ड करने की कोशिश करेंगे, तो डैम के दूसरे तरफ क्या क्रिएट होगा? प्रेशर. और ये प्रेशर जो है, दिस आई एम क्रिएटिंग. दैट इज वाई वी से सेल्फ क्रिएटेड. अपना प्रेशर खुद ही क्रिएट किया हुआ है इन्होंने. क्यों क्रिएट किया हुआ है? क्योंकि ये बहती हुई चीज़ों को रोकने की कोशिश कर रहे हैं. अब बह रही हैं चीज़ें. वट कैन आई डू? हाउ डू आई एक्सेप्ट? एंड वाई शुड आई एक्सेप्ट? मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज एक्सेप्ट करना. लेकिन क्यों एक्सेप्ट करना? अगर मुझे पसंद नहीं आ रही है सिचुएशन, तो क्यों एक्सेप्ट करना? हैव यू सीन अ रेस्टलिंग मैच? हाँ, तो वो जूडो या सुमो या जो भी वो रेस्टलर्स होते हैं, आप कभी भी देखना उनकी जो मैच होता है वो कैसे स्टार्ट होता है. दैट इज चेंज फिलोसफी. दो लोग सामने से आते हैं. First they bow down, right? This is a sign of respect. Then they embrace each other. Kabhi bhi dekhna. Always the match will start like that. Pehle aap bow down karte hain, phir aap embrace karte hain, phir aapka aage shuru hota hai, jo game aapne karni hai. This is basic change philosophy. Ke jab bhi aapke samne wo parivartan aaye, wo situation aaye, pehle aap usko embrace karte hain. दिस जूडो और रेस्लिंग, वॉट डू दे डू? आप पहले एम्ब्रेस करते हो, और एम्ब्रेस करने से आप कैच कर लेते हो कि इसका मोमेंटम क्या है,
0: इसकी ताकत कितनी है.
1: और फिर उस ताकत को मैं कैसे फेस करने वाला हूँ? अगर ये यहाँ से करेंगे ना इसको, I wouldn't know how to handle
0: fear
1: this.
0: Fear of unknown remains.
1: Fear of that. So normally the change philosophy goes, ki first you embrace, right? Then you catch the momentum. Ki iske andar kya hai? Lekin agar aap usko resist karenge, to aapko uska momentum to pata hi nahi chalega ki wo kis flow se aa raha hai. Aur jab tak hum uske momentum ko catch nahi karenge, tab tak hume ye nahi samajh mein aayega ki ab isko maine किस तरह से
0: अपने शत्रु से पहले हाथ मिलाओ उसके बाद उसका जांचो कि कितना है उसमें पोटेंशियल
1: एंड देन सी व्हाट आई कैन डू बिकॉज़ फाइनली लाइफ इज व्हाट इट्स लाइक दिस ओनली ना ये जो सिचुएशंस हम बोल रहे हैं ये क्या है हमारा मैच ही तो चल रहा है ना सारा दिन इनके अंदर लेकिन जब हम वो सिचुएशन को ही
0: बड़ा
1: इतना बड़ा मान लेते हैं और अपने आप को एकदम छोटा कर लेते हैं दैट मीन्स वन साइड हैज सेड सॉरी मैं आपके साथ नहीं मैच खेल सकता आई हैव ऑलरेडी एक्सेप्टेड डिफीट मेरे जीवन में तो यही लिखा है तो मतलब क्या किया मैंने तो उसके साथ ट्राई भी नहीं किया
0: गिव अप कर
1: ट्राई ही नहीं किया सो ऑलवेज एक्सेप्टेंस एंड एक्सेप्टेंस मीन्स ये है दिस इज इट नाउ व्हाट आवर प्रॉब्लम इज ऐसा क्यों ऐसा कैसे अभी हमारे बोलने से या हमारे उस तरह से सोचने से क्या हो जाता है जैसे ही वो क्यों क्या कैसे इसमें चले जाते हैं परमात्मा शिव बाबा हमेशा हमें बताते कि ये जो क क क हर टाइम खड़ा करते हो ना इसको पहले फुल स्टॉप करो क्यों क्या कैसे कब कहाँ तो पूरा माइंड कहाँ किस तरफ चला गया क्वेश्चंस क्वेश्चंस क्वेश्चंस क्वेश्चंस एंड देन बाबा ऑलवेज सेज क्वेश्चन मार्क बहुत क्रुकेड मात्रा है बहुत टेढ़ी है फुल स्टॉप ऐसा है नाउ व्हाट नाउ व्हाट लेट्स से आप मेरे से अच्छी तरह से बात नहीं कर रहे छोटी सी सिचुएशन है आई नो सिचुएशंस आर वेरी बिग बट लेट्स टेक अ वेरी स्मॉल सिचुएशन आप मेरे से ठीक से बात नहीं कर रहे आप मुझे अब्यूज भी कर सकते हैं आप बुरा भला कह रहे हैं शायद 10 लोग आसपास सुन रहे हैं आप इंसल्ट कर रहे हैं नाउ ये ऐसा क्यों कर रहे हैं ऐसा करना चाहिए इनको यही बात कहनी थी अलग से कह देते ये कोई बोलने का तरीका है क्या इस तरह से बात की जाती है सो हु एम आई ट्राइंग टू कंट्रोल आई एम ट्राइंग टू कंट्रोल यू एंड आई एम गोइंग इनटू क्यों क्या कैसा द नेक्स्ट एक्सेप्टेंस मीन्स हाँ जी ये इस तरह से मेरे से बात कर रहे हैं अब मेरा रिस्पॉन्स क्या आपसे बुद्धि हटाऊंगी तब तो बुद्धि को अपने ऊपर लेकर आऊंगी कि हाँ हाउ एम आई सपोज टू फेस दिस लेकिन जब तो मेरा मन आपके अंदर ही अटका हुआ है कि आप ऐसे क्यों आप ऐसे कैसे आप
0: और आपने मेरी इंसल्ट कर दी इतने सारे लोगों के सामने कर दी आपने मुझे ये कह दिया आपने मुझे ये कह दिया मुझे ये समझ लिया मुझे ये समझ यू नो किसने समझा
1: आपने किया आपने किया जो सही है या गलत है वी आर नॉट गोइंग इन टू दैट बिकॉज बाई गोइंग इन टू दैट देर इज नो रिजल्ट अगर मैं समझू के ओके यू आई फील आई शुड टेल यू आई टेल यू कि आई डोंट थिंक कि जो आपने मेरे साथ किया वो ठीक लेकिन वो मैसेज भी आप तक कन्वे करने के लिए पहले मेरी स्टेट ऑफ माइंड कैसे होनी चाहिए लेकिन अगर मैंने आपको रेजिस्ट किया तब मेरे अंदर आपके प्रति इतनी कहें घृणा भर जाती है इतनी नफरत भर जाती है कि बैठ कर क्लैरिटी से फिर उसको वो
0: नहीं हो पाता
1: तो इसलिए अगेन आई विल हैव टू कम बैक टू माई सेल्फ लेकिन आपसे हटकर मतलब सिचुएशन से हटकर अपने तक आने का जो प्रोसेस है वो सिर्फ तब होता है कि मैं पहला वो फुल स्टॉप जो आपने कहा ना फुल स्टॉप लगाना फुल स्टॉप इज एक्सेप्टेंस तो जो वो रिवर फ्लो कर रहा है आई ओनली हैव अ फ्यू ऑप्शंस विद दैट एक तो उसको रोकने की कोशिश करें प्लीज मत जाओ यू नो आई ट्राई टू स्टॉप यू या प्लीज बदल जाओ प्लीज अच्छे हो जाओ प्लीज मेरे से ठीक से बात करो दिस इज वॉट वी आर ट्राइंग टू डू वी आर ट्राइंग टू स्टॉप द रिवर कि हम दूसरों को ब्लॉक करते हैं दूसरा है कई बार ऐसे हो जाता है कि आप जैसे हैं मैं आपके प्रभाव में
0: वैसी होती जाऊं
1: बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड हो जाते हूँ तो देन व्हाट हैपेंड कि रिवर वाज फ्लोइंग मैं रिवर के साथ ही फ्लो होकर चली गई जैसे आपने कहा ना एक्सेप्टिंग द पेन दिस इज फ्लोइंग विद द रिवर हाँ सिचुएशन खराब है तो मेरा भी खराब होना उसके साथ ये जायज है दूसरा गुस्सा कर रहा है तो मेरा भी गुस्सा करना जायज है ये क्या हुआ flowing with the river.
0: Oh, so you have to continue to stand and let it go.
1: Yeah.
0: I would have said otherwise, ki flow with the river.
1: No, flow with the river is then that means always getting influenced. फ्लो विद द रिवर, मतलब फिर मेरी आइडेंटिटी कुछ भी नहीं हुई ना, मेरे पास फिर भी कोई कंट्रोल नहीं हुआ. सामने रिवर जो जो लेकर आता गया मैं उसके साथ ही बहती गई. आज रिवर इस तरफ जा रहा है, कल उस तरफ जा रहा है, परसों उस तरफ जा रहा है, तो मैं भी उसके साथ.
0: और मैं बेचारी अपने आप को कहती गई, मजबूर, कॉम्प्रोमाइज सब कुछ करती गई मैं. Oh, so I stand wherever I was standing.
1: And I let the river flow.
0: Oh, yes.
1: Neither stop the river, kyunki wo mere bas ki baat nahi hai. Neither flow with the river, because that's not good for me. I don't know where I will
0: reach. And that's not what I wanted.
1: That's not what I want.
0: You know, it's very important. If I wanted to flow with the river, if this was the right direction I was feeling, I should go. Otherwise, I should stay where.
1: So, if I can look at that river flowing, na lekin. मुझे ये दिखाई देना चाहिए ना अपने जीवन के अंदर, चाहे वो परिस्थिति है, वो परिस्थिति चाहे लोग हैं, चाहे कुछ भी है, मुझे ये दिखाई देना पड़ेगा कि ये है स्थिति, ये है परिस्थिति. परिस्थिति के साथ मुझे स्थिति को बह नहीं जाना है, मुझे परिस्थिति को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करनी क्योंकि वो भी मेरे हाथ में नहीं है. मुझे अपनी स्थिति को परिस्थिति के प्रभाव से न्यारा रखना पड़ेगा. और वो तभी समझ में आएगा, तभी कर पाएंगे, जब पहले फंडामेंटल ये रियलाइजेशन बैठ जाएगी कि ये है परिस्थिति, ये है मेरी स्थिति. ये परिस्थिति अलग, मेरी स्थिति मैं क्रिएट करता हूँ. परिस्थिति स्थिति नहीं क्रिएट करती, स्थिति आई एम द क्रिएटर. इवन दिस वन थॉट इफ आई कीप टेलिंग माई सेल्फ एवरी टाइम, डे इन एंड डे आउट, एवरी मॉर्निंग एवरी इवनिंग टेल माई सेल्फ एवरी थॉट, I am the creator. I am the creator. I am the creator. And I have a choice. हर संकल्प मेरी रचना है, तो मेरे पास choice है कैसे संकल्प create करने हैं. क्योंकि जो संकल्प मैं create करूंगा उसके बाद
0: feeling. बिल्कुल
1: feeling. हमने पहले भी देखा था, but I think it's good to always go over it all over again. कि जैसे ही हम एक संकल्प create करेंगे, it always starts with the thought. लेकिन जो हमने पहले भी डिस्कस किया कि ऑटोमैटिक, जो आपने कहा ऑटोमैटिक हो जाता है, दैट इज अ फीलिंग. कि संकल्प क्रिएट हुआ और मुझे उसका फीलिंग या उसका अनुभव होना शुरू हो जाता है. और जो फीलिंग्स मेरी आपके प्रति, परिस्थिति के प्रति या पूरी दुनिया के प्रति, जो फीलिंग्स मैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम क्रिएट करती आई हूँ, दैट डिवेलप्स माई एटीट्यूड. सो एटीट्यूड या कहें वृत्ति जो मेरी है कि दुनिया ऐसी ही है, ये तो ऐसे ही है, ये एटीट्यूड कैसे बना? क्योंकि कई बार मैंने वो थॉट क्रिएट किया, बार बार मुझे वो फीलिंग आई आपसे मिलने के बाद या आपके कोई व्यवहार से, तो मेरा एटीट्यूड क्रिएट हुआ, ये तो ऐसे ही है, मुझे पसंद नहीं है. तो थॉट, फीलिंग और एटीट्यूड. और ये जो एटीट्यूड मेरा क्रिएट हो गया, उसके बाद आई कम इन टू एक्शन. अब हम सिर्फ एक्शन वाली स्टेज को देखते हैं कि मैंने ऐसा बोला या मैंने ऐसा व्यवहार किया. हम ये थ्री स्टेजेस को, जो इनर प्रोसेस है, ये स्किप कर जाते हैं कि ये एक्शन बना कैसे. इट वॉज बेस्ड ऑन थॉट, फीलिंग एंड एटीट्यूड. और फिर जो एक्शन हम बार बार रिपीट करते हैं, एक पर्टिकुलर बात करने का तरीका, यू नो, जैसे कई लोगों को आदत है ऊंची आवाज में जोर से बोल दिया या जोर से किसी को ऐसे डांट दिया, उनको अगर कभी आप कहो के And the same thing could have been said in a probably a different way, they will say, oh, it's my nature. Because they don't even realize now whether this is useful for me or it is damaging for me. It's my nature. And nature matlab, main aisa hoon. Ab mujhe change hone ke liye nahi kehna. Toh ye nature kaise bani? Bachpan se thodi aise the. Lekin kai baar gusse se bola, phir gusse se bola, phir unchi awaaz mein bola. Thode din ke baad. वो मेरी हैबिट. तो जो एक्शन हम बार बार रिपीट करते वो मेरी हैबिट. नाउ ऑल योर हैबिट्स पुट टुगेदर इज योर
0: पर्सनालिटी. आई रिमेंबर दैट.
1: यस, ऑफ कोर्स. दिस इज अ डीप प्रोसेस विच शुड ऑलवेज बी देयर ऑन द स्क्रीन ऑफ द माइंड. कि ये जो मेरी ओवरऑल पर्सनालिटी है, दिस इज बिगिनिंग विद माई थॉट. मेरा पूरा जो आज व्यक्तित्व है वो मेरी सोच से स्टार्ट होता है. और ये व्यक्तित्व, ये पर्सनालिटी संबंधों में आता, कर्म क्षेत्र पर आता, व्यवहार में आता, संबंध संपर्क में आता. एट एवरी स्टेप आई एम क्रिएटिंग माई डेस्टिनी. वाई माई डेस्टिनी? बिकॉज जो मेरा व्यक्तित्व होगा वैसे मेरा कर्म होगा, वैसे मेरा आपसे बात करने का तरीका होगा. और जैसा कर्म मैं करूँगी
0: response.
1: उसी का रिजल्ट मुझे मिलेगा. Now we know this. I mean, we don't need to learn it for the new time. बचपन से मुझे सिखाया गया कि जैसा कर्म हम करेंगे उसका रिजल्ट हमें मिलेगा, और हमारा कर्म किस आधार पर बेस्ड है? सोच पर. हमें किसी ने ये तो बता दिया कि जैसा कर्म आप करोगे वैसा आपको रिजल्ट मिलेगा, लेकिन ये नहीं किसी ने बताया कि आपका कर्म आपके सोच से स्टार्ट होता है. और फिर किसी ने यही नहीं सिखाया कि राइट तरीका सोचने का क्या है. And I was talking to someone and they said, why didn't they teach us how to think? How to think. And then we were just discussing and we said, as a child, we are taught how to talk, how to drink, how to eat, how to walk, not taught how to think. No one taught us. तो वो अपने आप ही develop होता गया. And फिर आज जब हम उसको सीखने की कोशिश करते हैं तो हमें लगता है, ओह ये तो बहुत मुश्किल है, ये तो over a period of time सेट हो गया. बट इट्स नॉट ट्रू. आज भी हम स्टार्ट करें तो इट विल चेंज.
0: तो हमारा एक थॉट कि हम थिंकिंग को शुरू करें, हमारी
1: ये भी हमारी डेस्टिनी को चेंज कर देगा.
0: बिल्कुल. और जिस तरह से हमने आज सिचुएशन को देखते हुए किया कि बिंदी लगाने वाली बात थी कि फुल स्टॉप. थैंक यू सो मच. ओम शांति.
1: ओम शांति.
0: वंडरफुल. सो लेट्स ट्राई टू एक्सपीरियंस इन द रियल सेंस व्हाट इज मेंट बाय पॉजिटिव थिंकिंग. पॉजिटिव थिंकिंग सुनते आए हैं, पढ़ते आए हैं, जैसा कि कह रही है शिवानी, लेकिन इम्प्लीमेंट और अनुभव नहीं कर रहे थे. लेट्स ट्राई टू डू दैट. अगर कोई समस्या आती है, कोई सवाल है आपके पास, आपके जीवन में कोई सिचुएशन है जिसका हल आप तलाश रहे हैं, साथ मिलकर भी कर सकते हैं. आपका स्वागत करते हैं. आप हमें फ़ोन पर संपर्क करें या फिर ईमेल भी कर सकते हैं. हमारे फ़ोन नंबर है 09993446 09873555 09997445. हमारा ईमेल आईडी है omshantistudio@bkmail.org. अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी में आज इतना ही, लेकिन अभी हमें वो एम्पावरमेंट का सोर्स से जुड़ने का तरीका एक बार फिर जानना है. हमें देखना है कि जो भी सिचुएशन है उसमें जैसे हम हैंडल करेंगे उसके लिए हमें ताकत कहाँ से चाहिए. और इसके लिए आपके साथ हम अगली कड़ी में जरूर होंगे. फिलहाल आपसे विदा ले रहे हैं. ओम शांति.

ओम शांति। मैं हूं ब्रह्मा कुमारी प्रेमलता और आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहो मुस्कुरा।

नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। गुड मॉर्निंग राजस्थान, गुड मॉर्निंग गुजरात, गुड मॉर्निंग आप सभी को जो इस वक्त रेडियो मधुबन को सुन रहे हैं। नई किरण में स्वागत है। आ गए हम भूल जाओ गम। जी हां साथियों, 19 जून 2026 आज का तारीख है और भारतीय समय के अनुसार देखा जाए तो राष्ट्रीय शके 1948, शके 29, गते 5, शुद्ध ज्येष्ठ शुक्रवार आज है। विक्रम संवत 2083, ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष पंचमी शुक्रवार अश्लेषा आज है। इस्लामी इजरी 1448, 3 मुर्हम जुम्मा तरफा आज है। सुदर्शन विश्व एक एथनिक दिवस भी आज है। तो विश्व एथनिक दिवस क्या है इसके बारे में समझेंगे और फिर से एक बार आप सभी को आज के दिन की ढेरों शुभकामनाओं के साथ माँ शक्ति की, अम्बे माँ की, संतुष्टि मैया की कृपा आप पर बनी रहे, ऐसी मंगल कामना के साथ मैं आपको ले चलूँगा एक बहुत ही खूबसूरत गीत की तरफ जो आपके दिल को, मन को छू लेगा, है ना। तो आइए, अब आज शुक्रवार का दिन है तो संतुष्टि मैया को बड़े प्यार से, खुशी से याद करते हैं। सुनते रहो, मुस्कराते रहो।

0: हे युवा जा।
1: नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार। 8:25 हो रहे हैं, शुक्रवार का दिन है। बहुत ही प्यारा सा गीत भी आपने सुना और निश्चित तौर पे आपको बड़ा अच्छा लग रहा होगा। आइए इसके साथ ही मैं आपको जोड़ना चाहूँगा, आज विश्व एथनिक दिवस है। ये 19 तारीख को मनाया जाता है, वर्ल्ड एथनिक डे, और ये प्रतिवर्ष 19 जून को मनाया जाने वाला एक दिन है। विश्व सांस्कृतिक और संरक्षण तथा उसे सुरक्षित रखने के उद्देश्य से इस दिवस को मनाया जाने का घोषणा था। और भारत में आप देखेंगे हिंदी फिल्मों की सुप्रसिद्ध अभिनेत्री विद्या बालन, इनको विशेष रूप से वर्ल्ड एथनिक डे का एम्बेसडर बनाया गया था। अपने एथनिक उत्पादों की ऑनलाइन कंपनी craftsevilla.com ने इस दिवस का ब्रांड एम्बेसडर उनको बनाया गया था। अभिनेत्री विद्या बालन ने एक बयान में कहा कि विश्व एथनिक दिवस के माध्यमों से हमें अपने जड़ों से दोबारा जुड़ने का अवसर मिलता है। मैं हमारी धूमिल हो रही हथकरघा की कला और कलाकारों के पलायन के दर्द को महसूस करती हूं। मैं खुश हूं कि मुझे इस क्षेत्र में जागरूकता फैलाने का अवसर मिला और विश्व एथनिक दिवस विश्व भर में अलग अलग क्षेत्रों की ऐतिहासिक विरासत, सभ्यता, मानव जाति, विज्ञान, कला और संस्कृति के रक्षण और उनको संजोए रखने के लिए जागरूकता फैलाने का उद्देश्य से ये दिन मनाया जाता है। तो चलिए, मैं चाहूँगा कि आप भी इस कार्यक्रम के माध्यम से आप अपने यहाँ की विरासत, सभ्यता और जो ऐतिहासिक चीज़ें हैं और मानव विज्ञान, कला और संस्कृति, इसके बारे में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, आपके यहाँ कौन सी ऐतिहासिक विरासत आपके पास है, सभ्यता क्या है, मानव जाति विज्ञान क्या है, कला और संस्कृति, और उसकी रक्षण के लिए आप क्या करते हैं और उसको संजोए रखने के लिए आपका क्या योगदान है, ये हमें आपको फ़ोन करके बताना है 94-14-15-14-15 इस नंबर पर। तो चलिए एक और सुंदर माँ संतोषी का गीत आपके नाम।

0: नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 107.8 FM पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। गुड मॉर्निंग राजस्थान, गुड मॉर्निंग गुजरात, गुड मॉर्निंग आप सभी को जो इस वक्त रेडियो मधुबन को सुन रहे हैं। और बहुत ही प्यारा सा इमोशनल गीत, आप भक्ति गीत सुन रहे थे, मदद करो संतोषी माँ। जी, हमारे साथ कमलेश जी भी आ गई हैं, स्वागत है आपका भी।
1: जी नमस्कार रमेश भाई जी, और सुनने वालों को भी मेरा प्यार भरा नमस्कार। ओम शांति,
0: ओम शांति।
1: जी मदद करो संतोषी माँ, ये मैं भजन अभी सुन रही थी। तो हम परमात्मा को ना हर समय याद नहीं रखते, जब हमें जरूरत होती ना, संकट में होते हैं, भारी संकट में,
0: याद करते हैं,
1: तब हमें याद आती है कि मदद करो। हैं
0: बिल्कुल।
1: तो अगर सुख में भी उसको याद रखें तो दुख में फिर वो अपने आप हमारी हेल्प करता है। और आज का दिन, नया दिन हमारे जीवन में आया, इस जीवन में, इस दिन में हमने क्या करना है और क्या क्या प्लानिंग है, अच्छे अच्छे कामों की प्लानिंग।
0: जी जी जी।
1: तो हमारी तो प्लानिंग आज फिक्स है ना, शाम तक रेडियो पे है ना।
0: बिल्कुल।
1: तो सुनने वाले आएंगे आज प्रोग्राम में रमेश भाई जी?
0: देखो कौन कौन पहुंचता है।
1: अच्छा, कुछ खास लोग तो आते ही आते हैं।
0: जी जी।
1: और यहाँ पे पहुंचना कोई आसान काम नहीं है, जो आते हैं वो बहुत मेहनत करके आते हैं, घंटों वो फोन पे लगे रहते हैं, तब जाके लाइन जो इतनी बिजी चल रही होती है उसमें उनका आना होता है, इस प्रोग्राम में हमारे से बात होती है, तो उनका शुक्रिया है, क्योंकि सुनने वालों के बगैर तो हमारा प्रोग्राम अधूरा है ना।
0: बिल्कुल बिल्कुल अधूरा।
1: तो आज कोई खास दिन है आज का?
0: आज विरासत वाली दिन है, एथनिक डे है, जिसमें खास करके ये विश्व में खास अलग अलग क्षेत्रों में ऐतिहासिक विरासत, सभ्यता, मानव जाति, विज्ञान, कला और संस्कृति को बचाने के लिए एथनिक डे। हाँ, ये विश्व एथनिक डे है।
1: तो हर देश की कल्चर जो होता है ना वो।
2: नमस्कार बाबूजी, नमस्कार।
0: नमस्कार गोडीलाल जी, बोलिए कैसे हैं आप?
2: बहुत ही बढ़िया हो, सुबह सुबह कार्यक्रम चल रहा हो, रेडियो फोन बंद था।
0: अच्छा, चालू कर दिया हमने।
2: अपने आवाज आई है, बहन जी आए हैं, कमला बहन जी, तो उनसे भी मेरे को प्रणाम हो।
0: जी जी,
1: शुक्रिया
0: जी।
1: शुक्रिया आपको भी।
2: हो, और मेरा भी एक गाना है सर।
0: जी,
2: वो गाना सुना दे, अच्छा रहेगा,
0: बहुत ही अच्छा रहेगा।
2: बेकाहे को बेर करे इंसान, दो दिन की है दुनिया में, चार दिन की है काया और माया।
1: बाबा गुड्डी लाल जी, आप तो सुबह सुबह हमारा गुड्डी गुड्डी कर देते हो प्रोग्राम को फोन में आके।
2: दुनिया के अंदर आए, क्या लेके आए, क्या लेके जाएंगे सर?
1: सही बात है,
2: खाली जाएंगे तो दुनिया को छोड़ के चले जाएंगे, दो दिन की जिंदगी नहीं है। और क्या है, दो दिन की बात करेंगे हम छोड़ेंगे, हम बात करेंगे तो आप छोड़ेंगे, एक दूसरे के साथ में फोन से मिल सकते हैं, फिर आत्मा से भी मिल नहीं सकते हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
2: फिर आकाशवाणी है जो हमारे जीवन साथी है, जीवन साथी के साथ में आप आते हैं तो हमारे को अच्छा लगता है। आप बातें करते हो, आपके अनुभव के हम बात करते हैं, हमारे अनुभव जितना भी एक दूसरे है उनको साझा करते हैं तो अच्छा लगता है सर।
0: बिल्कुल
1: बिल्कुल। और रेडियो
2: सुनकर के हमारे को आनंद और मजा आ जाता है, हमारे समय पास हो जाता है।
0: अच्छा गुड़ीलाल जी, आज विश्व एथनिक डे है, विरासत, आपके गांव में कौन कौन से ऐसी पुरानी ऐतिहासिक चीजें हैं उसके बारे में बताइए, या कोई कला है जिसके लिए लोग काम करते हैं वहाँ पर, उनके बारे में बताइए।
2: जी हमारे यहाँ एक मंदिर है, शिला माता का मंदिर है सर, बहुत पुराना खंडर है। तो वो गौशाला हमारे यहाँ थोड़ा निर्माण किया, निर्माण करने से वहाँ माँ बार बार के यात्री आते हैं और उनकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है।
0: अच्छा।
2: दूसरी बात क्या है, हमारे यहाँ एक फुलवारी का जंगल है, वहाँ भी एक माता जी का मंदिर, वहाँ भी खंजर है, तो वहाँ का कोई निर्माण नहीं हुआ, लेकिन वहाँ की एक ब्रह्मी करके पौधा है
0: ना,
2: तो उसका यूज लेने से क्या किसी का भी माइंड खराब है या कोई किसी के दिमाग
0: ब्राह्मी पेड़ है,
2: ये निकल जाती है, ये खास बात चीज, खास चीज है सर।
1: किस तरह का दिमाग खराब हो,
2: किसी का मन के अंदर कोई भी किसी भी प्रकार के बजे से ना, उस जड़ी बूटी को काम
1: लोगों के लिए
2: सारे मनोकामना पूर्ण हो जाती है।
0: ब्राह्मी पेड़ है, ब्राह्मी बटी,
2: ब्राह्मी पेड़ जैसे आपका ये जो पेड़ आती है, इसके उसको गाल कर उसको उबाल करके फिर पीना पड़ता है।
1: बहुत अच्छी। और ये जड़ी बूटियां बहुत सी और भी होंगी, ब्रह्मी बूटी जो है वो आपको मानसिक तौर पर जो एक एनर्जी देती है, अगर उसको आप काढ़ा
0: बना के शक्ति को बढ़ाती भी
1: है, शक्ति को बढ़ाती है।
2: इसको हमने भी यूज में नहीं है, लेकिन हमारा भी थोड़ा हमारे भी काम तो करता है बढ़िया।
0: तो आप अभी रोज लिया करो भाई।
1: चलिए
0: ओके जी,
1: बहुत अच्छा,
0: बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।
1: वैसे बच्चों को पिलाना चाहिए, इसका बहुत फायदे होते हैं
0: जी जी, छोटे बच्चों को ज्यादा करके पिलाते हैं। ब्राह्मी काढ़ा भी आता है जो थोड़ा थोड़ा करके पिलाते हैं या मध में मिला के देते हैं,
1: जो बच्चे पढ़ाई करते हैं उनके लिए बहुत जरूरी है ये चीजें।
0: सही बात है।
1: और गुड्डी लाल जी तो गुड्डी गुड्डी करके चले गए,
0: तो आई उनका एक
1: बजे खुश होते हैं, बात माहौल चेंज हो जाता है।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: सुनते हैं उनकी पसंद का ये भजन।

0: नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर आप सभी का फिर एक बार स्वागत है। कबीर बाग के खूबसूरत भजन आप सुन रहे थे और कंचन गुरीलाल जी ने जो गाने याद कराए थे शायद उनको पसंद आया हो। और
1: गठरी बांधे पाक की क्यों फिरता मारा मारा तो कबीर जी ने बड़े सिंपल और सादे शब्दों में हमें समझाया जीवन का रहस्य। तो अगले कॉलर आ चुके हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल। अजी नमस्ते, ओम शांति, स्वागत है आपका।
2: ओम शांति, नमस्ते जी, गुड मॉर्निंग।
0: नमस्ते, गुड मॉर्निंग। बढ़िया बढ़िया
1: जी, जी जी, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। आप बताइए।
2: बस हम भी बढ़िया है, बहुत अच्छे हैं। और आप आ गए तो और अच्छी हो गए, क्योंकि आप आते तो हमको भी खुशी रहती है आपसे बात करने की। नए नए कुछ आप सुझाव लाते हो, अच्छे अच्छे कोई टिप लाते हो और अच्छी बातें हम सुन पाते हैं तो हमको भी अच्छा लगता है। अच्छे गाने भी सुना देते हैं आपको तो ये भी हमारे लिए खास होता है।
1: तो आज आप क्या खास बताना चाहते हैं इस प्रोग्राम में?
0: आपका विरासत के बारे में बताइए, गांव का सभ्यता, संस्कृति, कला, इनके बारे में।
2: आपकी बात बताऊं सर तो हमारा पूरा गांव ऐतिहासिक है, पूरा गांव।
0: अच्छा।
2: हाँ, आप हमारी जब हमारी वो जमीन पर आप पैदल रखोगे ना, कदम रखोगे तो आपका जीवन को परिवर्तन हो जाएगा। ऐसा हमारे गाँव में कई सारे ऐसे मंदिर है, कई सारी ऐसी जगह है, आश्रम है। बताऊं तो हमारे गांव में एक बड़ा आश्रम है सर, वो अभी जो हरिद्वार में है और हमारे गांव में भी एक आश्रम है हरिद्वार
0: जी, जी। अच्छा।
2: तो हाँ, हम यहां से जाते हैं हरिद्वार तो हम बोलते हैं कि भाई हम जटाना से आए हैं तो हमको तुरंत जगह मिल जाती है, हमका हमारा किराया भी नहीं लेते वहाँ। तो ये हमारे लिए खास वहाँ जब कंखन में है जो हरिद्वार में, तो वहाँ सूरत गिरी बंगला है, वहाँ बड़ा आश्रम है अंथल में। तो हम गए थे तो 10 दिन रुके थे लेकिन एक पैसा भी किराया नहीं लिया था क्योंकि वहाँ का जो आश्रम हमारे काम में थी।
1: जी, और तो जिताना गांव का काफी नाम सुना है हमने। और हाँ, वहाँ पे ना अलग अलग जो स्टेट से लोग आते हैं, बहुत दूर दूर से आते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार का उनका पहरावा, उनका खान पान।
2: और एक दूसरी बात बताऊ मैं कि हमारे गाँव में एक बार किसी का कोई प्रसंग था, वह प्रसंग में वो घी है कि घी का जो घी खलास हो गया था तो जो हमारे सारेग्राम बाबू है वहाँ जो जोताना में से हो गए तो उसने बोला कि भाई कुएं में से ले लो, आप अभी कुएं में से ले लो, बार बार मत ले जाओ, दैनिक जाओ। तो कुएं में से घी लिया, पानी का घी हो गया और जब आप वापस आओगे तो कुएं में डाल देना घी। तो ऐसा भी चमत्कार हमारे गाँव में हुआ है।
1: और जो हमारी जो विरासत है ना उसको संभालने का हमारा ही जिम्मा होता है अच्छे से, है ना। जो हमारी संस्कृति है, देखिए इस दिन को मनाने का मकसद यही होता है कि जो हमारे गांव में शहर में जो इतना मतलब मेहनत करके चीजें बनाई गई हैं, खास खास चीजें, ऐतिहासिक बिल्डिंग्स हैं जिनका बहुत महत्व है, धार्मिक बिल्डिंग्स भी हैं इवन, तो उनकी संभाल करना, उनकी साफ सफाई रखना और आने वाले बच्चों को उनके बारे में बताना, समझाना कि ये क्यों बनाई गई, इसकी

0: क्या इम्पोर्टेंस है
1: ये हमारे,
0: तो ये
1: तो मैं
0: चीज़ें
1: बताऊँ तो
0: जरूरी
1: हमारे छोटे से बच्चों को ये पता है, क्योंकि पूरा गांव को ये बात सही है। और दूसरी बात बताऊँ तो वहाँ जो बापू था, वो सारे ग्राम बापू था, उसका भी एक जगह बनाई है वहाँ, वो उसकी बड़ी मूर्ति रखी है। और खास बात दीदी और बताऊँ कि हमारे गाँव में कोई पथरी का प्रॉब्लम होता है, कि किसी को पथरी का दर्द होता है तो उसकी मन्नत मानते हैं तो पथरी गायब हो जाती है। ये सत्य घटना हमने भी सुनी है और हमने भी जानी है, और हमने भी जो हमारे एक बार पथरी हमारे प्रॉब्लम हुआ था।
0: बिल्कुल, आपका विश्वास ही है रमेश भाई, है ना, ऐसी चीजों में अगर आप विश्वास है किसी चीज को मान लेते हो तो ये चीजें हो भी जाती होंगी। तो ज्यादा इन चीजों में वहम में भ्रम में नहीं पड़ना, लेकिन विश्वास करना बहुत जरूरी है ना।
1: बिल्कुल, तो ये इसे जो हम मन्नत मानते हैं तो ये पथरी का दर्द मिल जाता है। बाद में आप जाइए दवाखाने, ऐसी बात नहीं, लेकिन तुरंत आपको ये दर्द में राहत हो जाती है। ऐसा कई सारे लोगों को अनुभव हुआ है, और कहाँ कहाँ से लोग आते हैं और मन्नत मानते हैं, और ये मन्नत पूरी करने के लिए हमारे वहाँ जगह पे आते हैं
0: जी।
1: तो ये भी एक ऐतिहासिक बात है हमारे गाँव में। पूरा मंदिर भी, हमारे गाँव में कितने सारे मंदिर है, कम से कम 50 मंदिर तो होगा।
0: अच्छी बात है, उनकी साफ सफाई का ध्यान रखना जरूरी है बस, सबसे ज्यादा तो। और जो उनकी इम्पोर्टेंस है उसके बारे में सभी को पता होना, है ना, क्योंकि ये चीजें ना हमें हमारे दिमाग को फ्रेश करती हैं, हमें अपनी पिछली पीढ़ी से जोड़कर रखती हैं, क्योंकि उन्होंने हमारे लिए ये चीजें बनाई हैं ताकि आने वाले लोग, बच्चों को पता चले कि हमारा रहन सहन क्या था, हमारी भावना क्या थी, हमारी सोच क्या थी, हमने कितनी मेहनत की, है ना। बहुत से कारीगरों ने उसको बड़े अच्छे मेहनत से बनाया होता है रमेश भाई। और चीजें देखिए, स्कूल कॉलेजेस में इस दिन पे बहुत खास प्रोग्राम होते हैं।
1: हाँ, और एक बात बताते हैं, हमारे गांव में कई सारे स्कूल भी नए, स्कूल का नाम का एक का नाम है श्री राम सर्व विद्यालय, और दूसरी जो कन्याओं की जो स्कूल है इसका नाम है जानकी कन्या विद्यालय। तो कई सारी ऐसे स्कूल भी है, कॉलेज भी है। और एक बात बताओ तो हमारे गांव में मिर्ची का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट चलता है। हमारे गांव में मिर्ची, आप दुनिया भर से मिर्ची हमारे चौटाना में जाती है, इतनी सारी मिर्ची का यहाँ चलता है। कई सारी मशीनें, बड़ी बड़ी मशीन चलती है, इसके भी देते हैं इधर, और बहुत स्वच्छ एकदम फर्स्ट क्लास क्वालिटी की मिर्ची है फिर हमारे। तो ये भी हमारे मिर्ची का बहुत बड़ा कारखाना, अलग अलग जगह पे कम से कम 15 से 20 बड़ा बड़ा कारखाना है मिर्ची
0: का। बहुत बड़ी जानकारी है रमेश जी कि अगर लाल मिर्ची आपको खानी है तो जताना तो
1: जरूर हम आपको भी कागज देना, आपको भी भिजवा देंगे, आप चाहे तो आप भी, मैं बताऊँ तो आपके लिए मैं स्पेशल मिर्ची लेके आऊंगा। मिर्ची एक प्रकार के नहीं है, अलग अलग होती है, कुछ कश्मीरी होती है, देसी होती है,
0: वो
1: कई सारी 5-6 जाति मिर्ची आती है। तो ये भी हमारे गांव में खास है। कभी कभी आओ तो रमेश भाई आप जरूर आइए, आपको मैं सभी कुछ दिखवा दूंगा इधर, और आप रिकॉर्डिंग करके भी वहां ले जा सकते हो, और फिर कार्यक्रम आप अच्छी तरह से पेश कर सकते हो हमारे गांव का।
0: क्या बात है, बहुत ज्यादा नॉलेज आप रमेश भाई के साथ रहकर बहुत समझदार हो गए आप।
1: हम रहते हैं किसके पास, जो हमारा कहते हैं ना कि हमारा जो लीडर, हमारा जो बहुत बड़े कहने के कहते हैं ना कि बहुत बड़े धनी जाने के ज्ञान के, तो
0: ज्ञान का जो भंडार है मधुबन रेडियो
1: धनिक होता है ना। हाँ, ज्ञान का धनिक होता है ना, वो बहुत पैसे से बड़ा होता है।
0: सच्ची सच्ची, तो चलिए बहुत बहुत शुक्रिया,
1: शुभकामनाएं आपको हमारी तरफ से।
0: कोई गीत सुनना चाहे,
1: और संतोषी माँ का गाना सुना देना, क्योंकि आज शुक्रवार है। और कमलेश जी, आपको शायद पता होगा कि जब शुक्रवार का दिन होता था, पहले की बात कर रहा हूँ मैं, जब छोटा मैं छोटा था बिल्कुल, तो ये शुक्रवार की जो माताओं बहुत करती थी, और पूरे गांव में मोहल्ले में गुड़ चढ़ा खाने का ही मिलता था शुक्रवार के दिन सुबह में 9 बजे। तो ये गुड़ चढ़े की तो बात बहुत है, क्योंकि हर माता से वो शुक्रवार का संतोषी माता व्रत करती थी, अभी नहीं करते, अभी पता नहीं बंद हो गए हैं।
2: बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, गुड़ चना जो है बहुत ही फेमस प्रसाद था शुक्रवार के दिन। हाँ,
0: शुक्रवार दोनों एनर्जी गिविंग है ना, आयरन बनता है उससे बॉडी में। तो माता रानी जो है शुक्र के दिन, जो हम जिस माता की पूजा, संतोषी माँ की पूजा करते हैं, तो वो बुद्धि देती है, एनर्जी देती है सोचने और समझने की, गलत और सही की पहचान करवाती है।
1: चना भी हमारे बॉडी के लिए अच्छा है और गुड़ भी,
2: गुड़ भी
1: अच्छा है। पहले लोग गुड़ खाते थे, कितने बार तो गुड़ भी खाते नहीं है, गुड़ ऐसे रहते हैं।
0: अब सब चेंज,
2: आज तो पिज्जा बर्गर का जमाना है,
1: मजबूत हो जाएंगे, मजबूत हो जाएंगे। नमस्ते, बहुत समय हो गया है आपको
2: जी,
1: हमारे
2: नमस्ते, नमस्ते, ओम शांति, स्वागत
0: है। फरमाइश का ये भजन सुनिए
2: और आइए आगे बढ़ते हैं, वक्त हो गया है अभी समाचारों का, समाचार
0: 9 बज के पता ही नहीं चला, इतनी लंबी बातचीत हो गई।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, वैश्विक अनिश्चितता और व्यवधान के बीच भारत विश्व के एक विश्वसनीय और स्थायी साझेदार के रूप में उभर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी आज नई दिल्ली में पीएम विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि वितरित करेंगे। सरकार ने तमिलनाडु, गुजरात, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य पर दालों और तिलहन की बड़े पैमाने पर खरीद को मंजूरी दी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर में अंतर्राष्ट्रीय सिकल सेल दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में भाग लेंगी। अमेरिका ने ईरान के साथ हुए समझौते के बाद ईरानी बंदरगाहों पर लगी नौसैनिक नाकाबंदी हटाई। और हॉकी में भारत ने FIH महिला नेशंस कप में उरुग्वे को 3-2 से हराकर लगातार तीसरी जीत दर्ज करते हुए सेमीफाइनल में प्रवेश किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वैश्विक अनिश्चितता और व्यवधान के बीच भारत विश्व के एक विश्वसनीय और स्थायी साझेदार के रूप में उभर रहा है। कल रात पेरिस में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि एक समय था जब देशों के बीच संबंध केवल व्यापार पर आधारित होते थे, लेकिन आज व्यापार के साथ साथ विश्वास भी उतना ही महत्वपूर्ण हो गया है। श्री मोदी ने कहा कि देश उन सभी क्षेत्रों में निवेश कर रहा है जो आने वाली पीढ़ियों के लिए विकास, नवाचार और अवसर प्रदान करेंगे।
1: आज का भारत भविष्य का पूरा इकोसिस्टम बना रहा है। भारत एक साथ हर उस क्षेत्र में निवेश कर रहा है जो आने वाले दशकों की दिशा तय करेगा।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि G7 शिखर सम्मेलन में भारत का संदेश स्पष्ट था कि वैश्विक शासन तभी प्रभावी होगा जब वो समावेशी होगा। श्री मोदी ने कहा कि जब उनकी सरकार के 12 वर्ष पूरे हुए तब वे फ्रांस पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि भारत ने पिछले 12 वर्षों में सभी क्षेत्रों में अभूतपूर्व विकास देखा है।
1: 12 साल के इस कालखंड में भारत का GDP 2 गुना हुआ है, एयरपोर्ट की संख्या 2 गुनी हुई है, यूनिवर्सिटीज की संख्या भी 2 गुनी हो गई है, हाईवे कंस्ट्रक्शन की स्पीड 3 गुना बढ़ गई है और मेट्रो नेटवर्क 4 गुना बड़ा हो गया है।
0: प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस की सफल यात्रा के बाद स्वदेश के लिए रवाना हो गए हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि आने वाले समय में भारत और फ्रांस की मित्रता और भी मजबूत होगी। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने प्रधानमंत्री मोदी के फ्रांस यात्रा के समापन पर हिंदी में विशेष विदाई वीडियो संदेश रिकॉर्ड किया है।
2: प्रिय मित्र नरेंद्र, मुझे बहुत खुशी हुई आपका निस एवियन पेरिस मैं इसे साथ वे दौरे के लिए स्वागत करके फ्रांस और भारत की दोस्ती हमारा।
0: हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा से भारत को

0: मोदी आज नई दिल्ली में पीएम विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि वितरित करेंगे। श्रम और रोजगार मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने बताया कि अगस्त 2025 से शुरू हुई इस योजना के अंतर्गत अब तक 63 लाख से अधिक कर्मचारियों को औपचारिक कार्यबल में शामिल किया गया है, जिनमें लगभग 30% महिलाएं हैं। उन्होंने बताया कि इस योजना से देशभर में 15 लाख से रोजगार के अवसर सृजित होंगे। प्रधानमंत्री मोदी कल पश्चिम बंगाल के हुगली जिले के तारकेश्वर से पीएम किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त जारी करेंगे। इसके अंतर्गत देशभर में 94 करोड़ से अधिक किसानों के बैंक खातों में सीधे 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की राशि अंतरित की जाएगी। इस किस्त से 2 करोड़ 18 लाख से अधिक महिला किसानों को लाभ मिलेगा। इस अवसर पर श्री मोदी पश्चिम बंगाल में कई महत्वपूर्ण कृषि पहल का भी शुभारंभ करेंगे। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने चार राज्यों तमिलनाडु, गुजरात, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी पर दालों और तिलहनों की बड़े पैमाने पर खरीद को मंजूरी दे दी है। इन राज्यों में ये खरीद मूल्य समर्थन योजना के अंतर्गत की जाएगी। उत्तर प्रदेश के लिए 48,298 मीट्रिक टन मूंग, 97,970 मीट्रिक टन उड़द और 41,718 मीट्रिक टन मूंगफली की खरीद को मंजूरी दी गई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर में अंतर्राष्ट्रीय सिकल सेल दिवस के कार्यक्रम में भाग लेंगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ओंकारेश्वर के बाद राष्ट्रपति उड़ीसा के रायरंगपुर में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज रायरंगपुर में वो एम्स भुवनेश्वर द्वारा आयोजित एक स्वास्थ्य शिविर का दौरा करेंगी और एक बड़े इंटीग्रेटेड ग्रामीण पाइप आधारित जल पूर्ति प्रोजेक्ट का उद्घाटन करेंगी। वो ब्रह्मा कुमारी के मातृशक्ति भवन, एक नए स्पेशल सर्किट हाउस रायरंगपुर पुणे जिले का भी उद्घाटन करेगी। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मयूरभंज में राष्ट्रपति के साथ शामिल होंगे। दोनों नेता उड़ीसा सरकार के 2 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में रायरंगपुर में एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे और विकास परियोजना को जनता को समर्पित करेंगे। आकाशवाणी समाचार के लिए रायरंगपुर से मैं प्रकाश दास।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर एक विशेष श्रृंखला 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के प्रस्तुत कर रहा है। आज के अंक में हम पूर्वोत्तर में बदलाव के लिए सरकार के महत्वपूर्ण कदमों के बारे में जानकारी दे रहे हैं।
2: नए भारत में राष्ट्र निर्माण की बात हो और पूर्वोत्तर क्षेत्र को नजरअंदाज किया जाए, यह संभव नहीं है। एक समय था जब पूर्वोत्तर को हिंसा, नाकाबंदी और उपेक्षा के लिए जाना जाता था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने इस तस्वीर को बदल दिया है। पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री ने स्वयं 83 से अधिक बार पूर्वोत्तर राज्यों का दौरा किया है। इस दौरान दूर दराज और पहाड़ी इलाकों की देश के बाकी हिस्सों से कनेक्टिविटी बेहतर हुई है। इससे पर्यटन को बढ़ावा मिला है और स्थानीय लोगों के लिए आय के नए अवसर पैदा हुए हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत पूर्वोत्तर क्षेत्र में 47,270 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किए गए हैं और 46,290 किलोमीटर से ज्यादा ग्रामीण सड़कों का निर्माण किया गया है। पिछले 12 वर्षों में 8 नए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे विकसित किए गए हैं। वर्ष 2014 में पूर्वोत्तर राज्यों में 9 हवाई अड्डे थे, जिनकी संख्या अब बढ़कर 17 हो गई है। उड़ान योजना के तहत 90 हवाई मार्गों तथा 12 हवाई अड्डों और हेलीपोर्ट को चालू किया गया है। पूर्वोत्तर क्षेत्र में 4,170 किलोमीटर से अधिक रेलवे लाइनों का विद्युतीकरण किया गया है। अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा और मिजोरम में रेलवे का 100% विद्युतीकरण पूरा हो चुका है। आजादी के बाद पहली बार वर्ष 2022 में मणिपुर तक पहली मालगाड़ी पहुंची। वर्ष 2023 में पहली मालगाड़ी मेघालय पहुंची और वर्ष 2025 में पहली ट्रेन मिजोरम पहुंची। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में ईटानगर के डेरा नानतुंग सरकारी कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर एम क्यू खान ने कहा कि अरुणाचल प्रदेश में हवाई संपर्क में काफी सुधार हुआ है।
3: 2014 के पहले एयर कनेक्टिविटी नहीं थी, वो अभी एयर कनेक्टिविटी आ गई है और लोग 2.5 घंटे में ईटानगर से दिल्ली पहुंच रहे हैं। तो होलंगी एयरपोर्ट से कलकत्ता जाइए, कलकत्ता से कहीं भी जा सकते हैं, दिल्ली डायरेक्ट फ्लाइट्स है।
2: वहीं पूर्वोत्तर के विकास को गति देने के लिए पीएम डिवाइन योजना के तहत कुल 6,600 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में गुवाहाटी के एक स्थानीय निवासी ने कहा कि क्षेत्र में सड़क और हवाई संपर्क पहले की तुलना में काफी बेहतर हुआ है।
4: मोदी गवर्नमेंट का ये 10 साल बहुत अच्छा से पार हुआ है और ये जो हम लोगों का आसाम का नया एयरपोर्ट बन गया है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नया टर्मिनल बन गया और सड़कों का भी हालत काफी सुधर गया है। अभी बहुत जल्द से जल्द हम लोग बहुत दूर तक जा सकते हैं और गांव का कनेक्टिविटी भी अच्छा हुआ है।
2: आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूर्वोत्तर के 8 राज्य, जिन्हें अष्टलक्ष्मी भी कहा जाता है, विकास की नई कहानी लिख रहे हैं। सुपर्णा सैकिया।

0: रिपोर्ट के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: अमरीका ने ईरान के बंदरगाहों और तटीय क्षेत्रों में जहाजों के आवागमन पर लगाई गई समुद्री नाकाबंदी हटा ली है। सोशल मीडिया पोस्ट में अमरीकी केंद्रीय कमान ने कहा है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के निर्देश अनुसार ईरान के विरुद्ध चलाए जा रहे अमरीकी नौसैनिक अभियान समाप्त कर दिए गए हैं। हालांकि नाकाबंदी हटाए जाने के बावजूद समझौते के अनुपालन की निगरानी के लिए अमरीकी नौसैनिक आसपास तैनात रहेंगे। खेलों में भारत ने कल न्यूजीलैंड में एफआईएच महिला नेशंस कप में पूल ए के मैच में उरुग्वे को 3-2 से हराकर लगातार तीसरी जीत दर्ज की। भारत ने पूल ए में शीर्ष स्थान हासिल कर सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। सेमीफाइनल में भारत का मुकाबला कल चिली से होगा। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
2: धन्यवाद फरहत। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेस्कियन के समझौते पर हस्ताक्षर करने के साथ ही अमरीका ईरान युद्ध के अंत होने का समाचार आज सभी समाचार पत्रों ने अपने पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है। राजस्थान पत्रिका लिखता है, महंगाई पर लगेगी लगाम, बाजार से घर गृहस्थी तक राहत की उम्मीद। लोकसत्य के शब्द हैं, जंग खत्म, होर्मोज खुला, तत्काल कम नहीं होंगे पेट्रोल और डीजल की कीमतें, दैनिक जागरण की खबर है। वहीं नीट यूजी पुनर्परीक्षा से पहले टेलीग्राम पर लगी अस्थाई रोक के खिलाफ दाखिल याचिका पर फैसला सुरक्षित रखने से जुड़ी खबर पर अमर उजाला ने केंद्र सरकार के शब्द प्रकाशित किए हैं। आतंकी गतिविधियों के लिए टेलीग्राम मुफ्त, सरकार ने प्रतिबंध को बताया उचित। हिंदुस्तान ने पर्दाफाश शीर्षक से बच्चों की तस्करी पर खबर प्रकाशित की है। बच्चों के सौदागर गिरफ्तार, नवजातों की खरीद फरोख्त करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह दबोचा। वहीं जनसत्ता ने अपने संपादकीय पन्ने पर हाल ही में जारी राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के आंकड़ों से जुड़ा लेख प्रकाशित किया है। शीर्षक है, बच्चों में कुपोषण का कुचक्र।
1: धन्यवाद वैष्णवी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत विश्व के एक विश्वसनीय और स्थायी साझेदार के रूप में उभर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी आज नई दिल्ली में पीएम विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को प्रोत्साहन राशि वितरित करेंगे। सरकार ने तमिलनाडु, गुजरात, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य पर दालों और तिलहन की बड़े पैमाने पर खरीद को मंजूरी दी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर में अंतर्राष्ट्रीय सिकल सेल दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में भाग लेंगी। और हॉकी में भारत ने एफआईएच महिला नेशंस कप में उरुग्वे को हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: नमस्कार, मैं हूं गौरव आसुदानी टेक ईगल से। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर। नई किरण, इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। समाचारों के बाद आशा करता हूँ आप सभी बिल्कुल, आज जो है एथनिक डे है, विश्व विरासत दिवस है, जिसके बारे में हम लोग बातें कर रहे हैं। आप अपने गांव के कुछ खास चीजों के बारे में बताइए या कुछ कलाओं के बारे में बताइए, सभ्यता के बारे में बताइए, ताकि हमें पता चले। जैसे सुरेश जी ने अपने गाँव की विशेषताओं के बारे में बताया, उनके यहाँ हरिद्वार जैसा एक जो है आश्रम है हरिद्वार का ही, तो वहाँ के लोगों को, उनका हरिद्वार जाते हैं तो रेंट वगैरह देना नहीं पड़ता, सब कुछ उनको जल्दी से मिल जाता है
1: जी।
0: और दूसरा उन्होंने बताया एक मंदिर के बारे में, और गुड़ीलाल जी ने मंदिर के बारे में बताया, दो मंदिर, जो ब्रह्म एक मंदिर है जंगल में, जिसमें उस मंदिर के पास में खंडर है लेकिन ब्राह्मी पेड़ है, जिसकी जो है छाल या जड़ लेकर उसका रस बना के पीने से बुद्धि अच्छी हो जाती है, मन शांत हो जाता है। तो ऐसे ही कुछ आपके आसपास में भी कोई विरासत हो, कोई चीज हो, कोई कलाकार हो या कोई कला हो आपके यहाँ के, कुछ बनाने वाली चीजें हैं जो आपके यहाँ खास बनती हो, तो उसके बारे में जरूर जिक्र कीजिएगा। जी कमलेश जी।
1: जी रमेश जी, ऐसा है कि विश्व विरासत दिन की अगर बात करें तो हम, जैसे हमें बाहरले देशों में भी जाने का मौका मिलता है ना, आजकल तो दुनिया बड़ी छोटी हो गई है, कहीं से भी आपको फ्लाइट मिल जाती है, कहीं भी आप घंटों में पहुंच जाते हो, तो हमने देखा कि वहाँ पे लोग, उन्होंने अपनी विरासत को बड़े अच्छे से संभाल कर रखा है, और हर नागरिक इस बात का ध्यान रखता है कि वहाँ कोई तोड़ फोड़ ना हो,
0: बिल्कुल
1: कोई आप गंदगी ना फैलाएं, और वहाँ पे लोग अच्छे अच्छे कमेंट्स लिखकर जाते हैं कि यहाँ पे आके हमें अच्छा लगा
0: अच्छा लगा करके।
1: और बड़े बड़े किले उन्होंने संभाल कर रखे हुए हैं, हजारों साल पुराने, मतलब 500-700-800 साल का जो है ना, वो आमतौर पे आपको वहाँ पे ये चीजें मिलेंगी, जिनको ने बहुत ज्यादा मेंटेन किया हुआ है। सरकार तो मेंटेन करती है और लोग भी उसमें फाइनेंशियली योगदान डालते हैं, कुछ ना कुछ वहाँ पे दे के जाते हैं, ताकि जब हम दोबारा आए, जब हमारे बच्चे घूमने फिरने आए, घूमने फिरने की जगह है वो उन्होंने बहुत ज्यादा संभाल के रखी है। और किले बड़े बड़े जो अंदर से इतने खूबसूरती से सजाए हुए हैं, और आपको 100 साल 200 साल पहले की वहाँ पे पिक्चर्स मिलेंगी, जो फैमिलीज वहाँ रहती थी उनका खान पान क्या था, उनका रहन सहन क्या था, और आपका जो माइंड है ना वो एक्सपोजर होता है आपको, आपको भी लगता है कि जो उनका स्टैंडर्ड था रहने का, या उनका, जैसे जयपुर में आप देखिए ये किला जो राजाओं महाराजाओं के हैं, वहाँ पे लोगों ने उनको बर्तन तक संभाल के रखे हुए हैं, जिन बर्तनों में खाना खाते थे, है ना, तो हमारी वो पुराने वो डिजाइन देख के मन खुश हो जाता है। कोई कोई बर्तन उस डिजाइन का हमारे घरों में भी हमें मिलता था, और लोगों ने उनको अभी आजकल ड्रॉइंग रूम की शो पीस बनाकर रखा हुआ है ना। और मुझे याद है मेरी सहेली थी, कर्नल की वाइफ थी वो, मैं उनके घर मुझे जाने का मौका मिला, तो वहां पे ना उन्होंने पुराना संदूक जिसपे वो पीतल के लोहे के कील लगे हुए थे, बड़ी खूबसूरती से उसको सजाया होता था, छोटा सा उसमें दरवाजा होता था, और उसमें घुस के लोग सामान अपना, जो घर बार का जो शादियों में संभालते थे, है ना, तो मुझे देख के इतना अच्छा लगा, उसने उसको पेंट करके और अच्छे से सजा के उसको अपने ड्राइंग रूम में रखा हुआ है। तो उन्होंने कहा कि ये मेरी पड़नानी के समय के ये संदूक है, जब उनकी शादी हुई थी तब उनको ये मिला था। तो ये चीज़ों से प्यार और लगाव हमारा, इनका रख रखाव हमारा, इनको ठीक रखने की जो हमारी ड्यूटी है वो हमारी सबसे ज्यादा बनती है।
0: बिल्कुल।
1: और वहाँ की सरकारें बाहर की बहुत ही चीज के लिए पर्टिकुलर विशेष तौर पर ध्यान देती हैं, उसी तरह लोगों का जो सोच भी वही हो गई है कि अगर आप कहीं सफाई वाली जगह में जाते हैं तो आपको कितना अच्छा लगता है वहाँ सांस लेना, वहाँ बैठना उठना, है ना, तो फिर वही आके आप घर में भी मेंटेन करते हो कि हमें ऐसी सफाई वहां भी रखनी है
0: जी।
1: तो मतलब है कि इन चीजों में मेहनत लगती है, पैसा लगता है, आपकी पहचान है आपके देश की,
0: शान है।
1: हमारी शान है, तो इन चीजों को चाहे छोटा सा मंदिर ही क्यों ना हो,
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: उसको भी। अभी छोटे होते हम, एक शिव जी का मंदिर था हमारे गांव में रमेश जी, तो हमारी दादी जो है ना डेली वहाँ बाल्टी में पानी डाल के थोड़ा सा उसमें दूर कच्ची लस्सी बना के उसके साथ जाते थे।
0: अच्छा,
1: तो तब
0: अच्छा,
1: वो इतना ज्यादा नहीं था, टूटा फूटा थोड़ा, उसको कोई मेंटेन करने वाला नहीं था, लेकिन दादी को बहुत प्रेम था शिव जी भगवान से, तो वो जाती थी, हम भी उनके साथ जाते थे, है ना। तो आज जैसे 40-45 साल के बाद हमें जाना वहाँ जब होता है, मैं देखती हूँ उस मंदिर को लोगों ने खूबसूरत बना दिया, उसके आसपास दीवार दीवार बना दी, मंदिर को ठीक करवा दिया, पेंट वेंट रंग रोगन, छोटा सा पार्क बना दिया, तो ये सोच हमारी डेवलप हुई ना,
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: तो लोग वहां जाके खुश होते हैं, लोगों की ममताएं पूरी होती हैं, ये चीजें हमारे लिए जरूरी हैं,
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: इसीलिए ये दिन मनाए जाते हैं।
0: चलिए बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। आइए आगे बढ़ते हुए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, इसके बाद माधवराव सप्रे के बारे में बातें करते हैं जिनका आज जन्मदिन है, और ये बदले हरी को ये प्यारा सा भजन आपके नाम।

भजले प्यारे हरि बोल, बहुत ही प्यारा सा गीत आप सुन रहे थे और ये भजन आपके मन को कहीं ना कहीं दस्तक दे रहा होगा। तो आइए माधवराव सप्रे के बारे में बातें करते हैं और राष्ट्रभाषा हिंदी के बहुत ही प्रखर चिंतक, मनीषी संपादक और आज़ाद संग्राम सेनानी और सार्वजनिक कार्य के लिए समर्पित कार्यकर्ता में से इनकी श्रृंखला तैयार करने वाले प्रेरक मार्गदर्शक के रूप में याद किया जाता है। एक गुरु के रूप में, कर्मयोगी के रूप में माधवराव सप्रे जी को कर्तव्य पुरुष के रूप में और कलजाई के रूप में याद किया जाता है। माधवराव सप्रे जी की कहानी एक टोकरी भर मिट्टी को हिंदी का पहला कहानी होने का श्रेय भी प्राप्त है। देखिए साथियों, माधवराव सप्रे जो है लिखने में इनकी कहानी को पहला कहानी के रूप में दर्जा दिया गया, एक टोकरी भर मिट्टी। तो एक अच्छे साहित्यकार रहने के साथ साथ एक कर्मठ व्यक्ति भी थे और इनका जन्म आज ही के दिन 1871 में मध्य प्रदेश के दामोह जिले के पत्रिया ग्राम में हुआ था और बिलासपुर में मिडिल तक पढ़ाई करने के बाद मैट्रिक शासकीय विद्यालय रायपुर से पास करके 1899 में कोलकाता विश्वविद्यालय से बीए करने के बाद तहसीलदार के रूप में शासकीय नौकरी मिली और उसे करते हुए अच्छा तो लगा, लेकिन जैसे कि उस समय के देशभक्त युवाओं में एक परम्परा थी, जैसे सप्रे जी ने भी शासकीय नौकरी को परवाह न करते हुए 1900 में जब समूचे छत्तीसगढ़ में प्रिंटिंग प्रेस नहीं था तब इन्होंने बिलासपुर जिले के एक छोटे से गांव पेंड्रा में छत्तीसगढ़ मित्र नामक मासिक पत्रिका निकाली। हालांकि यह पत्रिका सिर्फ 3 साल ही चल पाई। सप्रे जी ने लोकमान्य तिलक के मराठी केसरी को यहां हिंदी केसरी के रूप में छापना शुरू किया था, साथ ही हिंदी साहित्यकार व लेखकों को एक सूत्र में पिरोने का भी काम किया और नागपुर से हिंदी ग्रंथमाला भी प्रकाशित की। इन्होंने कर्मवीर के प्रकाश

0: चन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और सप्रेत जी ने लेखन के साथ साथ विख्यात संत रामदास समर्थ रामदास के मराठी दासबोध व महत्वपूर्ण मनसा मीमांसा दत्ता भार्गव श्री रामचरित्र एकनाथ चरित्र और आत्मविद्या जैसे मराठी ग्रंथ पुस्तकों का हिंदी में अनुवाद भी बखूबी किया है।
1: जी कमलेश, और देखिए मुझे लगता है 125 साल पहले उन्होंने बीए करी थी उससे तो कितनी मतलब है पढ़ाई के प्रति उनकी रुचि थी और कितनी किताबें लिखी, कितना कुछ लिखा उन्होंने। मराठी ग्रंथों का हिंदी अनुवाद करवाना बहुत जरूरी था क्योंकि हिंदी जो है हमारी राष्ट्रभाषा होने के कारण लोग फिर पढ़ते है ना, तो इसके लिए उनको नमन है जी। ऐसी शख्सियतें जो जीवन में आती है, दूसरों का जीवन संवार के जाती है।
0: और इनको देहरादून में 1924 में हिंदी साहित्य सम्मेलन जो देहरादून अधिवेशन में सभापति के रूप में उन्होंने काम किया और 21 में रायपुर में राष्ट्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना की और साथ ही रायपुर में ही पहले कन्या विद्यालय जानकी देवी महिला पाठशाला की भी स्थापना इन्होंने की
1: जी, जी।
0: और ये दोनों विद्यालय आज भी
1: चल रहे हैं।
0: और इनका कहना था कि मैं राष्ट्रवादी हूँ पर हिंदी के विषय में मुझे उतना ही अभिमान है जितना कि किसी हिंदी भाषी को हो सकता है।
1: होना चाहिए।
0: जिस शिक्षा से स्वाभिमान की वृत्ति जागृत नहीं होती वह शिक्षा किसी काम की नहीं है। तीसरा उनका मानना ये भी था, विदेशी भाषा में शिक्षा होने के कारण हमारी बुद्धि भी विदेशी हो गई है।
1: बिल्कुल, देखिए स्वाभिमान और घमंड है ना
0: जी, जी
1: जो प्राउड, उसमें फर्क है ना,
0: बहुत फर्क।
1: स्वाभिमान जब होता है तो आपको अपने ऊपर मान होता है कि मैंने ये अच्छा काम किया, तो वो घमंड नहीं होता, उसको घमंड नहीं कहा। घमंड होता है कि आपको कुछ, आपने कुछ किया भी नहीं लेकिन आपका गुरूर आपका सिर पर चढ़ा हुआ है ना। तो ये चीजें हमें पढ़ाई लिखाई के बाद समझ आती है, ये फर्क हमें समझ आता है। बाबा भी हमें यही सिखाते हैं कि आत्माभिमानी बनो, देह अभिमानी मत बनो, आत्माभिमानी बनो। आत्मा, मैंने कल करुणा जी से हम मिले जब कल रमेश जी, तो उन्होंने बहुत अच्छी एक बात कही कि अगर आप अपने बच्चों को लाना चाहते हैं, किसी संस्था से जोड़ना चाहते हैं, तो उनसे बोलकर नहीं उनको बताइए, उनको अपने जीवन से बताइए कि आपके जीवन में खुशी है, आपके जीवन में शांति है। अगर वो देखेंगे तो वो खुद आपकी उम्र में जब आएंगे सोचेंगे कोई अच्छी जगह, हमारे माँ बाप भी जाते थे तो हमें भी वहां जाकर देखना चाहिए कि वो इतने खुश क्यों थे।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: बोलने की जरूरत नहीं है तो वो खुद अपने आप ये चीजें अपने आप उनके जीवन में आ जाती हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल। सप्रे जी के कर्म क्षेत्र की बात करें तो राजाराम मोहन राय ने आधुनिक भारतीय समाज के निर्माण में चिंगारी जगाई थी, उसके वाहक के रूप में छत्तीसगढ़ में वैचारिक सामाजिक क्रांति के आलाक जगाने का काम किसी ने पूरी प्रतिबद्धता से अगर की है तो वो सप्रे जी, और इनको याद किया जाता है। और छत्तीसगढ़ के प्रथम पत्रकार व हिंदी की प्रथम कहानी एक टोकरी भर मिट्टी के रचनाकार माधव सप्रे जी ही थे। और छत्तीसगढ़ के पेंड्रा से छत्तीसगढ़ मित्र प्रकाशन करके 1900 में सुप्रसिद्ध स्वतंत्रता संग्राम जो श्री वामन राव लखे के सहयोग से इन्होंने आरंभ किया था। इस तरह से इन्होंने पत्रकारिता और पुस्तकों के साहित्य में इन्होंने काफ़ी काम किया और इसके लिए उन्हें आज भी याद किया जाता है। और हिंदी केसरी जैसे पत्रिकाओं के संपादन के रूप में याद किया जाता है। और राष्ट्र कवि माखनलाल चतुर्वेदी जी के साहित्य गुरु के रूप में भी इनको एक अलग पहचान मिल जाती है। आप देखते हैं आज माखनलाल चतुर्वेदी का नाम बड़ा है और उनके ये गुरु रहे हैं। और इस तरह से राजा राम मोहन राय अगर आप नाम ले, ये भी एक शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा नाम है और जो भी किताबें लिखते हैं तो इंडियन स्टैंडर्ड बुक नंबर ISBN जो बोलते हैं वो इसी वेबसाइट राजा राम मोहन राय ISBN नंबर लिखेंगे तो वहाँ पर आप कोई भी किताब लिखते हैं तो उसको प्रमाणित करने के लिए उसका टाइटल को ISBN नंबर में रजिस्ट्रेशन करता है। जो 13 नंबर का अंक आपको ऑनलाइन एक 4 से 5 दिन लगते हैं उस प्रक्रिया में वो नंबर आपको मिल जाता है, तो उस किताब के साथ आप उस नंबर को रख सकते हैं जिससे एक ऑथेंटिक अथॉरिटी मिल जाती है। तो इनके सानिध्य में रहकर सप्रे जी ने काम किया तो उनकी जो बातें हैं मुझे याद आ गई तो मैंने आपको बताया। तो आइए आगे बढ़ते हैं कमलेश जी, आप क्या सुनाएंगे आप
1: तो हम सुना ही रहे हैं ज्यादा
0: कोई गीत सुनाइए अच्छा से आप।
1: गीत तो बहुत सारे हैं, लेकिन ये गीत आज मुझे सुबह कई बार ना मन में आ जाता है कि आज ये गीत गाना है।
0: हाँ हाँ।
1: गीत किशोर जी के अगर आप गीत सुने तो बड़े सिंपल तरीके से उन्होंने हमारे तक वो गीत अपने पहुंचाए, बड़े अच्छे कलाकार और बड़े ही लाइवली थे वो।
0: बिल्कुल लाइव थे।
1: हाँ जी हाँ जी। और उनका गीत है सुनने वालों को जरूर पसंद आएगा अगर आप कहें तो, उनकी नजर करूं।
0: बिल्कुल।
1: गीत है

0: वाह क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत ही बढ़िया गीत आपने सुनाया,
1: थैंक यू शुक्रिया जी। और सुनने वाले जरूर हमें कॉल करेंगे, बताएंगे बिल्कुल, बिल्कुल। हमारा प्रोग्राम कैसा लग रहा है। और कुछ आज के कुछ खास दिन की बात करना चाहेंगे आप?
0: बिल्कुल बिल्कुल, अभी श्रोताओं को जो है हमने वो सारी चीज़ें बताई हैं कि वो कॉल करके अपने विरासत, अपनी सभ्यता, संस्कृति और कलाओं के बारे में बताएं। तो
1: जी।
0: हम इंतज़ार कर रहे हैं उनके कॉल के और वो बताएंगे भी। अब बात कर रहे थे हम लोग सप्रीत जी के बारे में, हिंदी ग्रंथ माला भी उन्होंने लिखी थी और वो भी एक लंबा जो है, अलग अलग मराठी जो ग्रंथ थे उनको हिंदी में कन्वर्ट करने का श्रेय भी उनको जाता है। पत्र पत्रिका संपादन में भी उन्होंने काम किया और मुख्य उनकी जो किताबें थी वो था स्वदेशी आंदोलन और बायकॉट, इस पर उन्होंने लिखी थी, यूरोप के इतिहास से सीखने योग्य बातें, और तीसरा उन्होंने एक और किताब लिखी थी जो हमारे सामाजिक हसर के कुछ कारणों का विचार, और चौथा उन्होंने लिखा था माधवराव सप्रे की कहानियाँ। तो ये इसको जो है देवी प्रसाद वर्मा जी ने संपादन किया है। और अनुवादिक बातें अगर कहें तो हिंदी में दासबोध, जो मराठी समर्थ रामदास की मराठी लिखी हुई प्रसिद्ध ग्रंथ है, उसको हिंदी में किया है इन्होंने, और बाल गंगाधर तिलक का गीता रहस्य इन्होंने लिखा, और महाभारत के उपसंहार चिंतामणि विनायक वैद्य द्वारा मराठी में लिखी गई प्रसिद्ध पुस्तक था, उसको इन्होंने हिंदी में कन्वर्ट करके महाभारत मीमांसा करके लिखा नाम। और फिर संपादन की बात करें तो हिंदी केसरी ये जो है सामाजिक समाचार पत्र था जिसका संपादन इन्होंने किया, और छत्तीसगढ़ मित्र मासिक पत्रिका है इसका भी उन्होंने संपादन किया। और इसके साथ में सप्रे जी अपनी जो है संग्रहालय के बारे में भी बताया जाता है उनके, कि माधवराव सप्रे ने छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ मित्रा 1900 में हिंदी ग्रंथमाला और हिंदी केसरी और इसके सारे साहित्यिक जो पूरी उनकी जो इतिहास है उसको एक ग्रंथालय के रूप में छत्तीसगढ़ में बनाया गया है, और हिंदी के ये पहले कहानीकार के रूप में याद किया जाता है। और ऐसे महान कलाकार जिनका जन्मदिन आज हुआ था, और ये 1926 को ये 23 अप्रैल को इनका निधन हुआ
1: जी जी।
0: तो ये थी कुछ खास बातें सप्रे जी के बारे में, माधवराव सप्रे जी के बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं, और जैसे फूलों के बारे में आपने याद ही किया तो एक और गीत है किशोर कुमार का, वो भी फूलों के रंग से आपके लिए, अभी सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: आशा करूंगा आप सभी को ये गीत पसंद आया होगा और फूलों के रंग से ये गीत जो है विशेष किशोर दा ने गाया है। और ये जो गीत था ये खास एल्बम थी प्रेम पुजारी, इस एल्बम का है। देवानंद इसके डायरेक्टर रहे और प्रोड्यूसर भी रहे। और कास्टिंग में देवानंद, वहीदा रहमान, प्रेम चोपड़ा, जाहिदा, नाजी हुसैन, ऐसे बहुत सारे कलाकार इसमें कास्टिंग में थे। और एसडी बर्मन साहब का म्यूज़िक और नीरज जी का लिखा ये गीत आप अभी सुन रहे थे। चलिए हमारे साथ गुलाटी जी भी आ गए
1: हर रोज की तरह तो गीत सुनाएंगे ये हमें, हम सुनते हैं
0: जी बिल्कुल।
2: गीत है मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती।
0: क्या बात है,
2: इससे ये विरासत से संबंधित भी है,
0: हमारी विरासत भारत की,
2: हमारी विरासत है।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
2: तो जब देखो बैलों से जब खेती होती थी तब लोग कितने खुश थे वो मधुर संगीत होता था जब बैलों के गले में घुंघरू बजते थे।
0: सही बात है।
2: तो इस गीत में काफी कुछ है,
0: जरूर सुनाइए आप।
2: मेरे देश की धरती ओ मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। मेरे देश की धरती बैलों के गले में जब घुंघरू जीवन का राग सुनाते हैं गम को सो दूर हो जाते हैं खुशियों के कमल।

कहीं शहनाई बजे, आते ही मस्त बहारों के दुल्हन की तरह हर के सजे। ओ मेरे देश की धरती, ओ मेरे देश की धरती, सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती। जब चलते हैं इस धरती पर हल ममता अंगड़ाइयां लेती है, क्यों ना पूजे इस माटी को जो जीवन का सुख देती है। इस धरती पे जिसने जन्म लिया, इस धरती पे जिसने जन्म लिया, उसने ही पाया प्यार तेरा। यहाँ अपना पराया कोई नहीं है, सब बेमान।

0: होती ओ मेरे देश की धरती, ओ मेरे देश की धरती। थैंक यू।
1: क्या बात, क्या बात गुलाटी जी, बहुत ही बढ़िया गीत आपने सुना, थैंक यू सो मच।
2: खास उनका ये देशभक्ति का गीत ये जो विनोद क्या नाम है मनोज कुमार
1: पर पिक्चराइज किया गया था,
2: ये भारत का नाम दिया गया था क्योंकि ये देशभक्ति गीत बहुत गाते थे, है ना, बहुत सारी फिल्मों ने गीत गाया। और ये फिल्म जो अपने समय में बहुत ही प्यारी फिल्म थी और बहुत मशहूर हुई। चलिए अगला जो हमारे पास जानकारी है हमारे सुनने वाले तक पहुंचाने की, अभी कॉलर अभी कोई नहीं आ रहा। रमेश भाई क्या बात है, सब बिजी हो गए अपने काम में?
1: कभी कभी बेचारे थोड़ा सा जो है
2: चलिए
1: कामों में व्यस्त रहते हैं तो उनको लगता है कि
2: इनके आने से रौनक लगती है हमारे प्रोग्राम में।
1: हेलो जी नमस्कार। हेलो,
3: हाँ जी नमस्कार।
1: नमस्कार मदन जी, बोलिए।
3: आवाज थोड़ी कम आई थी इसलिए मैंने जल्दी नहीं बोल सका, सुन नहीं सका।
1: अच्छा,
3: आपको नमस्कार है और कमलेश बहन को नमस्कार है और हमारे सभी दोस्तों को नमस्कार है।
2: नमस्कार मदन भाई, कैसे हैं आप?
3: अरे वाह, बहुत बढ़िया हूँ। आपकी आवाज सुन के बहुत अच्छे हैं हम।
2: और
3: बस आज का दिन शुक्रवार है तो शुक्रवार का शुक्रिया आप सभी को।
2: और विरासत के बारे में बात कर रहे थे मदन भाई, हम आपको पूछेंगे कि आप कौन से गांव के रहने वाले हैं, वहाँ कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनको संभाल के रखने की आपकी जो आपके पूरे गांव की जिम्मेवारी बनती है।
3: ऐसी कौन सी चीज संभाल के रखनी पड़ती है? ऐसे तो हमारे तो शायद तो पहले तो सोने चांदी को संभाल के रखते थे, और दूसरा अनाज पानी को। और हमारे टाइम में एक रुपया भी होता था उसको बहुत संभाल के रखा करते।
2: जी जी, उसकी कीमत थी ना तब, उसकी कीमत थी, एक रुपए की भी कीमत थी।
3: एक रुपया तो मतलब बहुत मैं आप नहीं मानते होगे, मानते होगे शायद, मैं 30 रुपये पगार में नौकरी करता था।
2: नहीं, हम मानते हैं भैया, हम मानते हैं क्योंकि जब हम स्कूल में पढ़ते थे ना 10th में या कोई गांव में जाते थे तो वैसाखी का मेला लगता था पंजाब में, बहुत मशहूर है ना, तो वहां पे ना हमें खर्चने के लिए सिर्फ 25 पैसे मिला करते थे। हम भाई बहन 7-8 कजन ब्रदर बच्चे होते थे तो हमको 25-25 पैसे मिलते थे, बहुत खुश होते थे, कुल्फी खाना वो रंग वाली। हम तो 25 पैसे की भी कीमत थी, आज से तकरीबन 50 साल पहले की बात कर रही हूँ।
3: मैं आज खुद विचार करता हूँ, कभी कभी बाबे से याद करता हूँ कि मेरे जेब के अंदर 5,000 रुपया भी है तो भी मेरे बाजार के अंदर कुछ लेने का, कुछ पहनने का कुछ शौक ही नहीं है। और उसको देखता हूँ तो मैं बड़ा अच्छा ऐसा लग रहा है कि वाह वाह वाह वाह, क्या करे यार, कहाँ हम अंत में आ चुके हैं। और जब मैं अपने गाँव से आया था ना, मैं गाय भैंसे चराता था तो उसका महीने का 10 रुपया, कोई जगह 5 रुपया था, तो मैं गया था, मैं कि भाई मेरे को 10 रुपया टिकट चाहिए, मेरे को सामान लाना, तो बोले गाँव ले जाओ, उससे मैं पैसे भी नहीं देते थे, गाँव ले जाओ। मैंने बोला गाँव तो बड़ा है, दूसरी जगह गया वो भी बोले गाँव ले जाओ। तभी एक जगह गया, बहुत ऐसा बहुत पैसे वाले थे मतलब ऐसे, तो उन्होंने फिर 10 रुपया वो भी कहाँ से ला के दिया। फिर 10 रुपये में फिर तो बहुत लंबी कहानी है, बाबा हमारे साथ था और फिर हमें धरने की क्या बात था।
2: तो फिर बात करते हैं मदन भाई।
3: इन डायरेक्टर को सुनता हूँ ना, इनकी जो कहानी, इनके पास आने का भाड़ा नहीं था, बोलो दिल्ली से उस तरफ से 11 रुपया भाड़ा नहीं था, बोलो धंधे के लिए फिरते थे, बोलो इतना, जैसे ओम प्रकाश कह दो, जैसे रमेश कह दो, बहुत सारे ऐसे डायरेक्टर थे, तो बस इनके लिए गाना गाते चलते हैं। आदमी मुसाफिर है, आता है जाता है।

0: तो बस समय भी बड़ा कम है और गाना भी बड़ा अच्छा है। और हम ओम प्रकाश से ऐसे पिक्चर ए ऊपर चुनाता था, ए कोई भी पिक्चर बनाता था। और अब मैं चले जाते थे तो ये कहता हूँ, आज की मुलाकात बस इतनी कर लेना सोमवार को चाय जितनी, आज की मुलाकात बस इतनी। नमस्कार, ओम शांति, थैंक यू वेरी मच।
1: आपने जो है प्रोग्राम में शमूलियत अपनी, हाँ जी
0: आवाज आई है,
1: बिल्कुल आ रही है। और आपने बहुत अच्छा गाना सुनाया जो जीवन की सच्चाई को बयान करता है, तो इसी तरह खुश रहिए हमेशा।
0: और कल आपने भी बहुत अच्छे गाने सुनाए थे, मैं सुन रहा था और कपड़ा धो रहा था,
1: अच्छा
0: लगा था।
2: नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। हेलो जी
0: जी, नमस्कार, ओम शांति।
2: ओम शांति, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपका। तो चलिए, ये थे हमारे मदन जी जो अपनी भावनाएं विचार हमारे साथ साझा कर रहे थे और अपनी बातें बताते रहते हैं, और अच्छा लगता है इनकी भावनाओं को सुनने के बाद मन जो है रिफ्रेश हो जाता है, आपको भी अच्छा लग रहा होगा। तो चलिए, माधरो सप्रे के बाद मैं सुदर्शन अग्रवाल जी की कुछ बातें आपसे शेयर करना चाहूँगा। उत्तराखंड के सिक्किम के पूर्व राज्यपाल रह चुके हैं और वर्तमान समय में जिंदल पुरस्कार प्रदान करने वाले निर्णायक मंडल में उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त हैं। और सुदर्शन अग्रवाल के व्यक्तित्व के अनेक गौरवशाली पहलू हैं। अगर हम देखें इनके जीवन को, तो राज्यपाल उत्तर प्रदेश के 3 जुलाई 2004 से 7 जुलाई 2004 तक, राज्यपाल उत्तराखंड के जनवरी 2003 से 22 अक्टूबर 2007 तक रहे, राज्यपाल सिक्किम के 25 अक्टूबर 2007 को शपथ ग्रहण कर लिया। और सुदर्शन अग्रवाल सांस्कृतिक केंद्र सांस्कृतिक प्रतिष्ठान के ट्रस्टी भी रह चुके हैं और ये पिछले 45 वर्षों से रोटेरियन हैं, विभारत के रोटरी क्लब के पूर्व अध्यक्ष भी रह चुके हैं। तो ये उनकी विशेषता रही जो भारत के राज्यपाल के रूप में अलग अलग स्थानों पर आज भी ये काम करते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हुए मैं आप सभी को ले चलता हूँ एक और सुंदर सा गीत जो आपके मन को दिल को लुभाएगा, और ये लता मंगेशकर का बहुत ही खूबसूरत रोमांटिक गीत है आपके लिए अभी, और मुझे लगता है कि आपको पसंद आएगा। साथ ही फिल्म का ये गीत 1968 में रिलीज हुआ था, ये कौन आया ये सॉन्ग है, और मजरू सुल्तानपुरी साहब ने इस गीत को लिखा है, लता जी ने गाया है और नौशाद साहब ने संगीत से सजाया है। तो चलिए ऐसा खूबसूरत गीत अभी आपके

क्या बात। चलिए मित्रों, आज के इस एपिसोड में बहुत ही प्यारा सा गीत आपने अभी सुना साथी फिल्म का, और इसी के साथ आज के दिन जन्मे उन लोगों के बारे में बात करते हैं जिनका आज के दिन जन्मदिन है। जैसे सुदर्शन अग्रवाल जी उत्तराखंड और सिक्किम के पूर्व राज्यपाल रहे, 1931 में इनका जन्म हुआ। भारतीय नेता और भारत की संसद के सदस्य राहुल गांधी जी, 1970 में इनका जन्म हुआ, इनका भी जन्मदिन आज है। राष्ट्रभाषा हिंदी के प्रखर चिंतक, आज़ादी के दीवाने, सार्वजनिक कार्य के लिए समर्पित कार्यकर्ता माधवराव सप्रे, 1871 में इनका जन्म आज के दिन हुआ था। और ओंकार इबोबी सिंह, इनका भी जन्मदिन आज है, और भारत के राजनीतिक और मणिपुर के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, 1948 में इनका जन्म हुआ। तो चलिए आज जिनका भी जन्मदिन है उन सभी को रेडियो मधुबन करेगा हाथ।

0: सभी मित्रों आज के इस एपिसोड में बस इतना ही, फिर हम मिलेंगे कल सुबह, कल नहीं मंडे होगा, और लेकिन कल आपको पता है अगर नहीं गुड मॉर्निंग आबू में हम कभी कभी आ जाते हैं, मौका मिलते तो आएंगे, और शाम को 4 बजे सफ़र कार्यक्रम आप सुनते ही हैं और आप मैसेज करके फ़ोन करके बताते ही हैं कि आपको प्रोग्राम अच्छा लगा। तो चलिए आज के इस प्रोग्राम में बस इतना ही, कमलेश जी धन्यवाद, ओम शांति।
1: बहुत बहुत शुक्रिया सुनने वालों का, ओम शांति, नमस्कार।

समय सुबह का तब बनता है खास जब आती है उषा अशना के साथ। आप सभी को नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राम राम सा, जय श्री कृष्ण सा, खम्मा गणी सा। पहले बनती है तकदीर, फिर बनते हैं शरीर। कर्म हमारे हाथ में है, लेकिन उसका फल हमारे हाथों में नहीं है। कैसे, जरा विचार करेंगे। और जी हाँ, अगर नाक में से लोही निकलता है, अभी गर्मी का मौसम है और नकलोई चलते हो, तो उनके लिए बहुत ही सुंदर घरेलू उपाय, कारण और निवारण दोनों ही देंगे। खुशनुमा जीवन की ढेर सारी बातें भी करेंगे। तो आज आपको सिखाने वाली हूँ वेजिटेबल फिंगर, और आज का टंग ट्विस्टर भी बहुत ही सुंदर रहेगा। तो ये सब कुछ सुनेंगे आशियाना में। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 FM।

0: आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन।
1: कृपया प्लेटफॉर्म पर साफ सफाई रखें, कचरा कचरे के डिब्बे में ही डालें व स्टेशन परिसर को साफ सुथरा रखने में रेलवे को मदद करें, धन्यवाद।
0: रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए।
2: गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आशियाना में फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का सुंदर सा विचार है, पहले बनती है तकदीर फिर बनते हैं शरीर। कर्म हमारे हाथ में है लेकिन उसका फल हमारे हाथों में नहीं है। कैसे? तो आइए आज के विचार का विश्लेषण कुछ दृष्टांत के साथ आपका स्पष्ट करना चाहूँगी। अभिमन्यु के पुत्र, देखिए होनी बहुत बलवान है। अभिमन्यु के पुत्र राजा परीक्षित थे। राजा परीक्षित के बाद उनके पुत्र जन्मजय राजा बने। एक दिन जन्मजय वेदव्यास जी के पास बैठे थे। बातों ही बातों में जन्मजय ने कुछ नाराजगी से वेदव्यास जी से कहा कि जहां आप समर्थ थे, भगवान श्री कृष्ण थे, भीष्म पितामह थे, गुरु द्रोणाचार्य, कुलगुरु कृपाचार्य जी, धर्मराज युधिष्ठिर जी जैसे महान लोग उपस्थित थे, फिर भी आप महाभारत के युद्ध को होने से नहीं रोक पाए और देखते देखते अपार धन जन की हानि हो गई। यदि मैं उस समय रहा होता तो अपने पुरुषार्थ से इस विनाश को होने से बचा लेता। अहंकार से भरे जन्मेजय के शब्द सुनकर के व्यास जी शांत रहे। उन्होंने कहा, पुत्र अपने पूर्वजों की क्षमता पर शंका न करो। ये विधि द्वारा निश्चित था, जो बदला नहीं जा सकता था। यदि ऐसा हो सकता तो अकेले श्री कृष्ण में ही इतना सामर्थ्य था कि वे युद्ध को रोक सकते थे। जन्मेजय अपनी बात पर अड़े रहे और बोला, मैं इस सिद्धांत को नहीं मानता। आप तो भविष्यवक्ता है, मेरे जीवन के होने वाले किसी होने को बताइए, मैं उसे रोक कर प्रमाणित कर दूंगा कि विधि का विधान निश्चित नहीं होता। व्यास जी ने कहा, पुत्र यदि तू यही चाहता है तो सुन, कुछ वर्ष बाद तू काले घोड़े पर बैठ करके शिकार करने जाएगा। दक्षिण दिशा में समुद्र तट पर पहुंचेगा। वहां तुम्हें एक सुंदर स्त्री मिलेगी जिसे तू अपने महल में लाएगा और उसे विवाह करेगा। मैं तुमको मना करूंगा कि वे सब मत करना, लेकिन फिर भी तुम यह सब करोगे। इसके बाद उस स्त्री के कहने पर तू एक यज्ञ करेगा। मैं तुमको आज ही सचेत कर रहा हूं कि उस यज्ञ को तुम वृद्ध ब्राह्मणों से ही कराना, लेकिन वह यज्ञ तुम युवा ब्राह्मणों से कराओगे। और जन्मेजय ने हंसते हुए व्यास जी की बात काटते हुए कहा कि मैं आज के बाद काले घोड़े पर ही नहीं बैठूंगा। तो ये सब घटनाएं घटित ही नहीं होगी। व्यास जी ने कहा कि ये सब होगा और अभी आगे सुन। उस यज्ञ में एक ऐसी घटना घटित होगी कि तुम उस स्त्री के कहने पर उन युवा ब्राह्मणों को प्राण दंड दोगे, जिससे तुझे ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा और तुझे कुष्ठ रोग होगा और वही तेरी मृत्यु का कारण बनेगा। इस घटनाक्रम को रोक सके तो रोक लो। वेद व्यास जी की बात सुनकर जन्मेजय ने एहतियातवश शिकार पर जाना ही छोड़ दिया। परंतु जब होनी का समय आया तो उसे शिकार पर जाने की बलवती इच्छा हुई। उसने सोचा कि काला घोड़ा नहीं लूंगा, पर उस दिन उसे अस्त बल में काला घोड़ा ही मिला। तब उसने सोचा कि मैं दक्षिण दिशा में ही नहीं जाऊंगा, परंतु घोड़ा अनियंत्रित होकर के दक्षिण दिशा की ओर गया और समुद्र तट पर पहुंचा तो वहां पर उसने एक सुंदर महिला को देखा और उस पर मोहित हुआ। जन्मेजय ने सोचा कि इसे लेकर महल में तो जाऊंगा लेकिन शादी नहीं करूंगा। परंतु उस स्त्री को महल में लाने के बाद उस महिला से प्रेम हो गया और प्रेम में पड़ करके उसे विवाह कर लिया। फिर रानी के कहने से जन्मेजय द्वारा यज्ञ भी किया गया। उस यज्ञ में युवा ब्राह्मण ही रखे गए। किसी बात पर युवा ब्राह्मण रानी पर हंसने लगे। रानी क्रोधित हो गई और रानी के कहने पर राजा जन्मेजय ने उन्हें प्राण दंड की सजा दे दी, जिसके फलस्वरूप उसे कोढ़ हो गया। अब जन्मेजय घबरा गया और तुरंत व्यास जी के पास पहुंचा और उनसे जीवन बचाने के लिए प्रार्थना करने लगा। वेद व्यास जी ने कहा कि एक अंतिम अवसर तेरे प्राण बचाने का और देता हूँ। मैं तुझे महाभारत में हुई घटना का श्रवण करूँगा, जिसे तुझे श्रद्धा एवं विश्वास के साथ सुनना है। इससे तेरा कोड मिटता जाएगा। परंतु यदि किसी भी प्रसंग पर तूने अविश्वास किया तो मैं महाभारत का प्रसंग रोक दूंगा और फिर मैं भी तेरा जीवन नहीं बचा पाऊंगा। याद रखना, अब तेरे पास ये अंतिम अवसर है। अब तक जन्मेजय को व्यास जी की बातों पर पूर्ण विश्वास हो चुका था, इसलिए पूरी श्रद्धा और विश्वास से कथा श्रवण करने लगा। व्यास जी ने कथा आरंभ करी और जब भीम के बल के प्रसंग सुनाए, जिसमें भीम ने हाथियों को सुंडों से पकड़कर उन्हें अंतरिक्ष में उछाला, वे हाथी आज भी अंतरिक्ष में घूम रहे हैं, तब जन्मेजय अपने आप को रोक नहीं पाया और बोल उठा कि ये कैसे संभव हो सकता है, मैं नहीं मानता। व्यास जी ने महाभारत का प्रसंग रोक दिया और कहा कि पुत्र, मैंने तुझे कितना समझाया कि अविश्वास मत करना, परंतु तुम अपने स्वभाव को नियंत्रित नहीं कर पाए क्योंकि ये होने द्वारा निश्चित था। फिर व्यास जी ने अपनी मंत्र शक्ति से आह्वान किया और वे हाथी पृथ्वी की आकर्षण शक्ति में आकर नीचे गिरने लगे। तब व्यास जी ने कहा, यह मेरी बात का प्रमाण है। जितनी मात्रा में जन्मेजय ने श्रद्धा विश्वास से कथा श्रवण की, उतनी मात्रा में वे उस कुष्ठ रोग से मुक्त हुआ, परंतु एक बिंदु रह गया और वही उसकी मृत्यु का कारण बना। तो कहने का भाव यही है मेरे प्यारे श्रोता बंधु, पहले बनती है तकदीर, फिर बनते हैं शरीर। कर्म हमारे हाथ में है, लेकिन उसका फल हमारे हाथों में नहीं है। तो ये हुआ, कहते ना, होनी को टाला नहीं जा सकता, लेकिन पुण्य कर्म व ईश्वर नाम जाप से होनी के प्रभाव को कम किया जा सकता है, अर्थात रोग आएंगे परंतु पीड़ा नहीं होगी। तो ये हुआ आज का सुंदर सा विचार, जिस पर जरूर गौर करेंगे और सुनेंगे फिर से एक बहुत ही सुंदर गीत। तो सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 FM।

नमस्ते, मैं हूँ किरण शूद्र की सांगली और आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आप सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं।

आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आशियाना, और आशियाना में मेरे प्यारे श्रोता बंधुओं, गर्मी के मौसम में कई लोगों को नाक से अचानक खून आने की समस्या हो जाती है, जिसे नकसीर कहते हैं। घबराने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन इसके कारण और बचाव जानना बहुत जरूरी हो जाता है। तो नकसीर आने का मुख्य कारण है बहुत ज़्यादा गर्मी, अत्यधिक गर्मी और लू लगना। शरीर में पानी की कमी की वजह से डिहाइड्रेशन हो जाता है, इस वजह से भी नकसीर होते हैं। नाक के अंदर की त्वचा का सूख जाना ये भी कारण है। बार बार नाक को रेतना या चोट लगना, उच्च रक्तचाप, हाई बीपी कह सकते हैं इसको, एलर्जी या सर्दी जुकाम के कारण भी नाक में जलन होती है और नकसीर शुरू हो जाते हैं। तो क्या करना चाहिए, तुरंत क्या करना चाहिए अगर इस तरह नकसीर आता है? जिसके भी नाक में से लोई निकलता है, उसको तुरंत आप बिठाइए। बिठा करके सिर थोड़ा आगे की ओर करके झुकाइएगा। नाक के दूसरी बात यह है, नाक के मुलायम हिस्से को 10 मिनट तक हल्के दबाव से दबा कर रखिएगा। नाक के मुलायम हिस्से को 10 मिनट तक दबा करके, हल्के से दबा करके रखना है। तीसरा उपाय है, नाक और माथे पर ठंडी पट्टी या बर्फ की सिकाई करिए। नाक और माथे पर ठंडी पट्टी या बर्फ की सिकाई करनी है। चौथा उपाय है, मुंह से धीरे धीरे सांस लीजिए। मुंह से धीरे धीरे सांस लेना है। अब आप जानेंगे घरेलू उपाय। खूब पानी, नींबू पानी, छाछ और नारियल पानी लीजिए। देखिए, गुलाब जल के एक दो बूंदे नाक में डाल सकते हैं, ठीक है? गुलाब जल के एक दो बूंदे नाक में डाल सकते हैं। दूसरा उपाय है, खीरा, तरबूज और खरबूजा जैसे पानी से भरपूर फल खाइएगा ऐसे मौसम में, ठीक है? फिर नाक के अंदर थोड़ा सा शुद्ध घी या नारियल तेल लगाइए, इससे सूखापन कम हो सकता है। और यदि खून 15-20 मिनट से अधिक समय तक नहीं रुके, बार बार नकसीर आए या चक्कर, कमजोरी अथवा अधिक रक्तस्राव हो, तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करिएगा। संदेश यही है, गर्मी में शरीर को ठंडा रखें, भरपूर पानी पिए और स्वास्थ्य का ध्यान रखें, क्योंकि सावधानी ही सबसे अच्छा उपचार है। तो प्यारे श्रोता बंधु, ये हुए घरेलू उपाय। देखिए, कुछ दिनों से हम योगा के बारे में ही बता रहे थे, आज भी हम तो योगा के बारे में ही बताते हैं, लेकिन किसी का फ़ोन आया कि नहीं, नकसीर के बारे में दीजिए, अभी बहुत गर्मी है और ये शिकायतें बहुत हो रही है, तो फिर बीच में इसको ले लिया है, ठीक है? बाकी कल वापस योगा डे के बारे में ही सुनेंगे। तो आइए अब आज के टंग ट्विस्टर की तरफ बढ़ते हैं। आज का टंग ट्विस्टर इस प्रकार है, ध्यान से सुनिएगा और आपको अधिक से अधिक 3 बार, कम से कम 2 बार बोल के सुनाना है। योगी योग में योग्यता जोड़े, योग्यता से योग का यश मोड़े। जो योगी योग्यता से योग करे, वो योग में यश ही यश जोड़े। ये आज का टंग ट्विस्टर है। सुनाने के लिए नंबर रेडियो मधुबन के है 94-14-15-14-15, और यही पर एक गीत सुनेंगे, उसके बाद पुनः रूबरू होंगे। तो बने रहिएगा कार्यक्रम आशियाना में, सुनते रहो, मुस्कुराते रहो। रेडियो मधुबन 107.8 FM।

0: योग से तन में ऊर्जा का संचार होता है, मन में शांति और विचारों में विस्तार होता है। जो रोज योग को जीवन में अपनाता है उसका हर दिन खुशियों का त्योहार होता है। जो रोज योग को जीवन में अपनाता है उसका हर दिन खुशियों का त्योहार होता है। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आशियाना, और आशियाना में अब विषय आपके समक्ष रख चुकी हूँ, करो योगा भगाओ रोगा, करो योगा भगाओ रोगा। तो आज हम योग पर ही बात करेंगे, करिए योग और भगाइए रोग। कैसे आप सभी योग कर रहे हैं क्या? जो भी कर रहे हैं फोन कॉल्स करके बता सकते हैं कि हाँ किस किस ने एक्सरसाइज शुरू की या कभी की आपकी चालू है और क्या आपको इससे फायदा मिल रहा है, जरूर जुड़ करके बताइएगा। देखिए कितनी सुंदर शायरी आपके समक्ष रखी है कि योग से तन में ऊर्जा का संचार होता है और मन में शांति और विचारों का विस्तार होता है। बोलिए तो योगा के द्वारा भी हम अपने जीवन को खुशनुमा बना सकते हैं। अरे योग के द्वारा तो अपना जीवन बहुत ही खुशनुमा बन जाता है, जो किसी और बात से होना हो। तो एक्सरसाइज को अपने जीवन में जरूर शामिल करिएगा। और आज का टंग ट्विस्टर भी बहुत ही सुंदर है, योगी योग्य में योग्यता जोड़े, योग्यता से योग का यश मोड़े। जो योगी योग्यता से योग करे वो योग में यश ही यश जोड़े। ये आज का टंग ट्विस्टर है, आपको कम से कम दो बार, अधिक से अधिक तीन बार बोल के सुनाना है। क्या सोच रहे हैं? अरे दिल्ली तो नहीं जा रहे योग अड्डे पर 21 जून? बहुत सारे जिनको अच्छी पहचान है, जान पहचान है या अच्छे पद पोजीशन पर है, वो तो जाने वाले है। तो सोचा कि आप लोग भी कहीं जाने की तैयारी तो नहीं कर रहे हैं, जुड़ नहीं रहे तो। हेलो
1: दीदी नमस्ते, गुड मॉर्निंग, ओम शांति, सुरेश भाई बोलता हूँ जटाना से।
0: हाँ जी नमस्ते सुरेश भाई, ओम शांति, कैसे हो आप?
1: बस अच्छे हैं, बैठे हैं, काम कर रहे हैं और सबके सुन रहे हैं
0: जी।
1: और टंग ट्विस्टर सुना दिया तो चलो मैं पहले टंग ट्विस्टर सुना दूँ आपको।
0: जी सुना दीजिए
1: जी। योगी योग में योग्यता जोड़े, योग्यता से योग का यश मोड़े। जो योगी योग्यता से योग करे वो योग में यश ही यश जोड़े। योगी योग्यता में योग्यता जोड़े, योग्यता से योग का यश मोड़े। जो योगी योग्यता से योग करे वो योग में यश ही यश जोड़े। योगी योग में योग्यता जोड़े, योग्यता से योग का यश मोड़े। जो योगी योग्यता से योग करे वो योग में यश ही यश जोड़े।
0: बहुत सुंदर। हाँ जी, और हाँ जी, आप रोज योगा करते हैं?
1: योगा तो दीदी हम बस सुबह में थोड़ा सा बैठ जाते हैं, मैं तो जल्दी उठता हूँ, सुबह में 4:30 बजे से उठ जाता हूँ। उठते में दीदी बस ऐसे जो हम कहते हैं ना पलौटी वाल के मैं बैठता हूँ, और जो दो ही हाथ जो बिछन पे रख के बस मैं सांसें लेता हूँ,
0: भद्रासन
1: करता हूँ मैं, बस
0: भद्रासन की तरह।
1: हाँ बस वही वही करता हूँ मैं सुबह में, 5-10 मिनट वही करता हूँ बस।
0: अच्छा,
1: बाकी तो सुबह से तो मेरा काम रूटीन का शुरू हो जाता है रात तक, क्योंकि हाथ पैर हिलाना ये तो हमारा जो काम है ऐसा है, तो बस ये तो चलता ही रहता है, कसरत तो चलती ही रहती है।
0: जी जी बिल्कुल, सिलाई में भी बहुत।
1: सुबह में मैं 5-10 मिनट बैठ के योग करता हूँ सुबह में।
0: जी जी,
1: इसमें नीचे बैठ के अच्छा रहता है दीदी।
0: जी बहुत अच्छा है। आप भले 10-20 मिनट निकाले, कम से कम 20 मिनट खुद को देना चाहिए
1: जी।
0: तो आप
1: 10 मिनट तो मैं आराम से बैठता हूँ
0: जी,
1: हर रोज बैठता हूँ, या फिर एक दिन की योग की कि चलो योग का दिन आया तो योग करे, नहीं हर रोज मैं ये करता हूँ सुबह में
0: जी। ये तो देखिए एक दो दिन करने से फायदा नहीं होगा, रोज की प्रैक्टिस चाहिए
1: जी।
0: तो 10 मिनट आप करते ही हैं, 10 मिनट और बढ़ा दीजिए
1: जी, इसलिए तो हाथ और पैर की भी एक्सरसाइज अच्छी होती है
0: जी।
1: और जो हमारी सांसें नहीं दे दी बताऊँ तो आज मुझे 2 किलोमीटर चलना हो तो पैदल में चल सकता हूँ, जोर से चल सकता हूँ, दौड़ भी सकता हूँ
0: जी।
1: तो इसे मुझे कई सारे फायदे रहते हैं।
0: बहुत बढ़िया।
1: और जल्दी उठना भी फायदा है, जल्दी
0: अरे जल्दी उठना तो सबसे बेस्ट है।
1: हाँ,
0: उस समय प्रकृति बहुत सुंदर होती है भाई, प्रकृति का पूरा लाभ लेना हो तो जल्दी उठ जाइए।
1: और सुबह सुबह में तो दीदी जो मेरा काम है ना, मैं सुबह में बाहर गांव से बाहर जाता हूँ तो ठंडी ठंडी हवा, इतनी प्रकृति का जो नजारा देखने को मिलता है, ठंडे ठंडे हवाएं आती है और शुद्ध हवाएं आती है। कहते हैं गांव से बाहर जाते हैं तो
0: जी
1: तो हवाएं भी शुद्ध आती है, तो इसमें कई सारे फायदे। और मैं पैदल ही जाता हूँ, मैं कोई ऐसे कोई साधन लेके नहीं जाता हूँ, मैं 2-3 किलोमीटर जाता हूँ लेकिन पैदल ही जाता हूँ।
0: बहुत बढ़िया।
1: तो पैदल चलना भी अच्छा रहता है और जल्दी उठना भी फायदा है, इसलिए मैं आज मैं फिट हूँ एकदम अच्छी अच्छा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने बताया ना एक बार मैं गिर गया था, फिर भी मैंने कुछ नहीं किया है, मैं दवाई भी नहीं ली कुछ, और मैं जो ऐसे बस चल के फिर से मेरा इधर मिट गया है।
0: जी जी जी जी।
1: तो बस इससे कई सारे फायदे हैं योग करने से। तो
0: जी बहुत सुंदर। हाँ जी, बहुत बहुत आभार आपका। तो ये थे सुरेश भाई झोटाना से, आपने भी बहुत अच्छी बात बताई कि देखे आप ऐसे जल्दी उठते हैं और पंछी पक्षियों के लिए इतना काम करते, मोहल्ले को साफ करना, झाड़ू लगाना, इतना काम हो जाता है और फिर 10 मिनट आप एक ही मुद्रा में बैठते हैं पलाटी मार करके। ये भी बहुत अच्छी बात है क्योंकि आजकल तो नीचे बैठ कर पलाटी मारना भी बहुत मुश्किल होता जा रहा है लोगों के लिए, तो ये भी एक बहुत अच्छे एक्सरसाइज है। तो देखिए हम भले काम करते हैं, सब करते हैं, लेकिन फिर भी योग को अपने जीवन में शामिल करना बहुत ज़रूरी है अगर हम स्वस्थ रहना चाहते हैं तो। और समय देखिए किसी के पास नहीं होता है, समय को निकाला जाता है। आप हो, हम है, हम यही कहते हैं क्या करें समय नहीं मिलता है, लेकिन जैसे आप 6 बजे उठते हो तो आप 5:30 उठिए, 5:30 उठते हैं तो 5 बजे उठिए, अपने उठने के थोड़े से टाइम टेबल को चेंज करिए, लेकिन योग को जीवन में शामिल करिए, ठीक है। वो कहते हैं ना पहला सुख निरोगी काया, तो शरीर स्वस्थ है तो सब कुछ अच्छा लगेगा। देखिए घर में 56 प्रकार की मिठाइयाँ बनी है या बहुत सारी वैरायटी खाना बना है, लेकिन हमारा स्वास्थ्य अच्छा नहीं है तो हमें वो रस नहीं देगा, अरुचि रहेगी, नहीं नहीं भले बने हो भाई आप खाओ, मेरी तबीयत ठीक नहीं, मुझे कुछ भी नहीं खाना है ना। तो पहला सुख निरोगी काया है। हेलो।
2: हाँ नमस्ते ओम शांति।
0: नमस्ते सगुना बेन, कैसे हैं आप?
2: बहुत अच्छे हैं
0: जी। तो आज का टंग ट्विस्टर भी सुना सकते हैं, आज के विषय में भी आप अपनी बात रख सकते हैं।
2: विषय तो योग का ही है।
0: हाँ जी।
2: हाँ तो योग तो करते हम, देखो पहले कम करते थे योग, पहले करते थे लेकिन कम करते थे तो थोड़ा टेंशन आ जाती थी तो दिमाग काम नहीं करता था, ऐसे हो जाता था। और जब योग बढ़ाया है अभी मैंने तो बहुत आत्मा को शांति मिलती है, नेगेटिविटी आती नहीं है और पूरा दिन मेरा खुशी खुशी से जाता है।
0: जी जी। तो आप योग माने मेडिटेशन करते हैं या एक्सरसाइज करते हैं?
2: नहीं मेडिटेशन करती हूँ मैं।
0: मेडिटेशन बहुत अच्छी बात है, लेकिन योग और योगा, वो कहते हैं ना कि योग और राजयोगा, राजयोग और योग दोनों ही आप करिए तो और भी डबल फायदा मिलेगा। मेडिटेशन तो नो डाउट, मेडिटेशन तो बहुत अच्छा है।
2: तो दीदी क्या है कि अभी देखो ऐसा बताया है कि किसी का ऑपरेशन हुआ है कुछ,
0: हाँ जी हाँ जी,
2: तो उसको नहीं करना है।
0: जी जी जी।
2: देखो मेरा 2 साल हो गया है ऑपरेशन कराया, तो मैं बोला करूँ या नहीं करूँ, दीदी से बात करके फिर मैं
0: आपका ऑपरेशन किसका हुआ था?
2: मेरे पेट में थोड़ी गांठ है, थी वो गांठ निकाली थी और
0: तो बिल्कुल हम देखे अभी नुस्खे में आज नहीं दिया है, कल वापस देंगे। तो नुस्खे में हम फायदा और नुकसान दोनों ही बता रहे हैं कि भाई पेट में उदर यानी कि पेट, ठीक है, पेट में सर्जरी हुई हो, पेट की कई अन्य प्रकार की तकलीफ हो तो कौन से प्राणायाम, कौन से आसन करना चाहिए, कौन से नहीं करना चाहिए, दोनों ही बता रहे हैं ना। तो आप पेट वाला मत करिए जो पेट को नुकसान पहुंचाए, बाकी हल्का फुल्का दूसरा आप कर सकते हैं। और बाकी ठीक है, आप मेडिटेशन कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है।
2: हाँ बहुत अच्छा है दीदी, पूरा दिन मेरा इतना खुशी खुशी जाता है। तो
0: जी।
2: मैं तो अभी देखो 3 बजे कभी आँख खुल जाती है तो मैं 3 बजे बैठ जाती हूँ, कभी 2:30 बजे बैठ जाती हूँ, कभी 4 बज जाता है।
0: क्या बात
2: लेकिन
0: है?
2: हाँ पूरा 1-1.5 घंटा कभी 2 घंटा भी बैठ जाती हूँ मैं, बहुत अच्छा लगता है मेरे को।
0: वाह वाह बहुत बढ़िया, हम आपके लिए तालियां बजाना चाहेंगे, बहुत अच्छा है।
2: और टंग ट्विस्टर सुनाऊंगी, देखो कोशिश करती हूँ।
0: हाँ जी हाँ जी जरूर।
2: हाँ योगी योग में योग्यता जोड़े, योग्यता से योग का यश मोड़े। जो योगी योग्यता से योग करे, वो योग में यश यश जोड़े। योगी योग में योग्यता जोड़े, योग्यता से योग का यश मोड़े। जो योगी योग्यता से योग करे, वो योग में यश यश मोड़े, यश यश जोड़े।
0: क्या बात है, बहुत सुंदर सगुना बहन, बहुत बहुत आभार आपका। हाँ जी, ओम शांति। तो ये थे सगुना बहन झोटाना से। आपने भी देखिए टंग ट्विस्टर बोल के सुनाया है, और आप भी मेडिटेशन करते हैं। आप बता रहे थे 2:30-3 बजे जब भी आँख खुलती है आप 1.5-2 घंटा मेडिटेशन करते हैं, भी बहुत अच्छी बात है। मेडिटेशन करना माने ईश्वर से संवाद करना, परमात्मा के अंदर खो जाना, ध्यान करना, बातें करना मीठी मीठी, जैसे हम आपस में बात कर रहे हैं ऐसे ही ईश्वर से बातें करना, बहुत अच्छा। और फिर भी स्वास्थ्य अच्छा रहता है तो बहुत बढ़िया बात है। बाकी हल्का फुल्का जो पेट को तकलीफ न दे, ऐसा आप योग या प्राणायाम कर सकते हैं, डॉक्टर की राय ले सकते हैं। ठीक है, हम भी बताते रहते हैं कि किन किन को नहीं करना है, क्योंकि हम जो बताते हैं वो भी डॉक्टर के द्वारा ही दिया गया है। वही मैटर हम अभी आपको सुना रहे हैं, ठीक है, कि भाई कौन से योगा में क्या बेनिफिट है और क्या नुकसान है, तो ये सब आपको बताते रह रहे हैं। इसलिए आप ऐसा मत सोचिए कि ये दीदी अपने मन से सुना रहे हैं, पता नहीं फ़ायदा होगा या नुकसान होगा। हम अपने मन से नहीं सुना रहे हैं, ठीक है, और हम खुद भी कर रहे हैं, आप भी करिएगा। बस डेली अगर करेंगे तो अच्छा रहेगा। 4 दिन 8 दिन करके छोड़ दिया तो उसका वो फ़ायदा नहीं होगा। आप 1-2 महीना करिए लगातार, फिर आप छोड़ेंगे ना तो ये बॉडी अपने आप मांगेगी एक्सरसाइज के, नहीं नहीं और ये हाथ पैर क्यों झकड़ रहे आज, हाथ पैर क्यों दर्द कर रहे, फिर हम वापस एक्सरसाइज करेंगे तभी वो हाथ पैर वापस हमारे खुलेंगे और अच्छे हो जाएंगे। आदत पड़ जाती है ना, फिर बॉडी अपने आप मांगती है कि भाई थोड़ी देर हिला लो मुझे। तो जीवन में मेडिटेशन जरूरी है, जिसको राजयोग कहते हैं। तो योग और राजयोग दोनों ही जीवन में सम्मिलित हो जाए तो फिर तो क्या कहना, सोने पर सुहागा, फिर तो चांदी ही चांदी। तो चलिए और भी इस विषय पर बात करेंगे, लेकिन समय हो चला है एक गीत सुनने का। तो एक गीत सुनकर के पुनः लौट रहे हैं, बने रहिएगा कार्यक्रम आशियाना में, सुनते रहो मुस्कुराते रहो रेडियो मधुबन 107.8 FM।
3: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा बेटा नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in। हर घर

0: ओए रुका,
1: रुक।
2: हाँ कहिए।
0: और जी कहना सुनना आपकी शादी में कर लेंगे, फिलहाल तो ये बताइए कि आपकी बेल्ट कहाँ
2: है। तो ये देखिए।
0: ओए कमर की नहीं, मैं सीट बेल्ट की बात कर रहा हूँ। हवलदार कड़क से मजाक मत करो, बहुत महंगा पड़ेगा। हाँ, और उससे ज्यादा महंगा पड़ेगा ये बिना सीट बेल्ट की गाड़ी का चलान। ओए जल्दी ऊपर जाने का बहुत शौक है, हैं? ओ छोटू फाइन काटो इनका, 1200 रुपए सीट बेल्ट नहीं पहनने का और 2400 रुपए हवलदार कड़क से मजाक करने का। और ये है मेरी सड़क, मुझे कहते हैं हवलदार कड़क।
3: कार चलाते समय सीट बेल्ट का उपयोग करना चाहिए, इससे आप बड़ी दुर्घटना से बच सकते हैं। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी, सुनते रहो मुस्कुराते रहो।

0: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आशियाना, और आशियाना में खुशनुमा जीवन की बातें हो रही है। न धन की चाह न वैभव का शोर, योग सिखाता है आत्मा का ठोर। सांसों में जब संतुलन आ जाता है, जीवन में सुख का सवेरा छा जाता है। तो बहुत ही सुंदर आज का विषय है। आप जुड़ सकते हैं और अपनी बात को रख सकते हैं कि योग करने के क्या फ़ायदा है और क्यों करना चाहिए, ये बताइए आप। और आज का टंग ट्विस्टर भी बड़ा अच्छा है, जिसको मैं फिर से दोहरा रही हूँ। ध्यान दीजिएगा, योगी योग में योग्यता जोड़े, योग्यता से योग का यश मोड़े। जो योगी योग्यता से योग करे, वो योग में यश ही यश जोड़े। तो ये आज का टंग ट्विस्टर है। 3 बार आपको सुनाना है, अधिक से अधिक, कम से कम आपको 2 बार तो बोलना ही है। और देखिए, ये शायरी अपने आप में स्पष्ट है कि क्या फ़ायदा है योग करने का। तो देखिए, क्यों करना चाहिए? इसलिए करना चाहिए कि पहले, अभी थोड़ी देर पहले कोई बता रहा था कि बहन जी पहले कहाँ योग वोग था, कुछ भी नहीं, घर का काम करते वो ही योग हो जाता है। बिल्कुल आपने सही कहा है, घर का काम में सारे ही योगा आ जाता था। पहले देखे, हाथ से झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, पानी भरना, और घर में ही गेहूँ पीसना, ये सारी एक्सरसाइज हो जाती थी। पुरुष लोग भी देखे बहुत मेहनत करते थे, खेत को ऊपर जाना और खेतों का काम करना, घर पर भी हाथ बटाना। तो पहले इतना क्रेज़ नहीं था, पहले बीमारियां नहीं थी। बीमारियां इसलिए नहीं थी कि कड़ी मेहनत थी, पूरे दिन धूप में काम करना, तो वैसे ही विटामिन डी तो आपको मिल ही रहा है, और खेतों के ताज़ा ताज़ा फल सब्जियां खाना, कैल्शियम भी मिल जाता है उसमें, और शुद्ध चीज़ें खा रहे तो वो फ़ायदा करते थे। लेकिन समय के साथ परिवर्तन आया है ना, हर चीज़ इलेक्ट्रॉनिक हो गई, अभी तो इलेक्ट्रिक हो गई। पहले तो आटा भी हाथ से पीसा जाता था, तो वो आटा फ़ायदा करता है, हाथ से पीसा हुआ। आज तो हम चक्की पर पिसवाते हैं, तो वो भी इलेक्ट्रिक के द्वारा हो गया ना, पीसी हुई कोई भी चीज़। देखिए, पहले चटनी हम खरल में बांटते थे, आज मिक्सर में पीसते हैं, तो तत्व तो ख़त्म हो ही जाते हैं, थोड़े बहुत बचते, आधे ऊपर ख़त्म हो जाते हैं, तो 100% फ़ायदा नहीं करता है। हेलो
1: जी, नमस्कार।
0: हाँ जी नमस्कार, मदन भाई, क्या बात है, आज समय के अनुसार फोन किया आपने।
1: अभी देखा घड़ियाल में, 10:55 हो रही है, कि 5 मिनट अभी भी देर है, फिर बाद में तो बंद हो जाता है। और कैसे दीदी जी?
0: जी हम अच्छे हैं, आप सुनाइए।
1: बढ़िया, आज तो मौसम बड़ा ठंडी हवा है, कहीं आस पास में बारिश गिर गई है, ये अच्छी हवा है
0: जी।
1: और क्या बनाया है?
0: बनाएंगे बाद में, बनाएंगे बाद में, अभी खुशनुमा जीवन की बातें हो रही है। अभी योगा डे आ रहा है 21 जून, और योग का तो देखिए जीवन पर प्रभाव पड़ता ही है, तो आप क्या कहेंगे किस तरह पड़ता है? एक दिन योग करके चले रुक जाएंगे, या रोज इसको हम रूटीन बनाएंगे, अपने जीवन में शामिल करेंगे, क्या कहेंगे?
1: मैं तो रोज ही करूंगा योग।
0: अच्छा, आपने शुरू किया क्या, करते हैं आप?
1: मैं करता हूँ ना, सुबह उठ के करता हूँ, मगर फिर कभी ऐसा आस पास में वो होता है तो थोड़ा कम कर देता हूँ। क्या हुआ तो कोई भी जगते आना तो
0: जी जी,
1: योग तो रोज ही करने।
0: अच्छा, क्या फायदा मिल रहा है आपको
1: उससे? मतलब एकदम शांत रहते हैं, अच्छे विचार रहते हैं, और सभी की तरह बहुत अच्छे विचार के अपने आंखों से, अच्छी आंखों से देखना, शांत रहना, और बस किसी को भी कोई किस्सा कर रहा था उसकी तरफ भी ऐसे नहीं तो खुलत कर रहा, क्यों कर रहा, उसके सामने भी ऐसे शांत होके ही देखने का है कि भाई ये भी शांत हो जाओ, ये भी योग करे, ऐसा हमको महसूस होता है इसमें, और बहुत अच्छा लगता है।
0: जी जी, तो आप मेडिटेशन करते हैं? हाँ जी, और एक्सरसाइज भी करते हैं?
1: वो नहीं करता हूँ।
0: मैं समझ गई, आप बोल रहे थे ना उससे मैं समझ गई कि आप मेडिटेशन करते हैं, योगा जो शारीरिक व्यायाम है वो नहीं करते आप, है ना?
1: नहीं करते, नहीं करते
0: जी। तो कहते हैं ना कि राजयोग के साथ साथ अगर हम शारीरिक व्यायाम भी शुरू करते हैं, ये वाला योग भी करते हैं, तो मन तो हमारा मेडिटेशन के द्वारा हेल्दी रहता ही है, तन भी रहेगा।
1: जी जी जी। और जैसे देखिए समय नहीं, बाकी मैं हर चीज करने के लिए मुझे सर्विस का भी बहुत शौक है, क्या करूं, मगर ये सर्विस भी करता हूं मैं। और सभी आते हैं तो मैं रास्ते में चलते हुए शाम को 5 बजे छूटता हूँ तो भी बातचीत करता रहता हूँ सभी से, और अच्छा लगता है, लोग बहुत खुश रहते हैं। तो आपको नमस्कार करता हूँ और थोड़ा
0: अच्छा टंग ट्विस्टर सुनाएंगे? टंग ट्विस्टर
1: क्या कहता है?
0: अच्छा हाँ, टंग ट्विस्टर आपको बोल के सुनाती हूँ। योगी योग में योग्यता जोड़े, योग्यता से योग का यश मोड़े। जो योगी योग्यता से योग करे वो योग में यश ही यश जोड़े। क्या कहेंगे, बोल के सुनाएंगे? चलिए कोई बात नहीं, आप कंपनी में है चलेगा।
1: जी जी जी
0: हाँ जी, बहुत बहुत आभार। तो ये थे मदन भाई मेहसाना से। देखिए कंपनी में काम कर रहे फिर भी जुड़े हैं, तो आप क्या सोच रहे हैं? मेरे को लगता है आप लोग नहीं करते हैं मेडिटेशन। कोई बात नहीं, फिर भी जुड़िएगा भाई। नहीं करते हैं तो क्या आप नहीं जुड़ेंगे? जुड़ करके आप बात रख सकते हैं अपनी, आज का टंग ट्विस्टर भी बोल के सुना सकते हैं। तो आपको बता रहे थे कि देखिए जो हम प्राणायाम करते हैं जो भी मुद्रा में, तो कहूँगी 20 मिनट खुद के लिए दीजिएगा 24 घंटे में से। पूरे दिन हम घर परिवार के लिए लगे रहते हैं, है ना, लेकिन स्वयं के लिए हम समय नहीं निकाल पाते हैं। और 20 मिनट कोई नहीं निकाल सके ऐसा कभी नहीं हो सकता है, इसलिए 20 मिनट स्वयं को दीजिए। पूरे दिन में समय नहीं मिलता है तो आप सुबह ही सुबह कर लीजिए, सुबह वैसे ही अच्छे रहता है। चलिए हमारे श्रोता बंधु जुड़ना चाहेंगे। हेलो,
2: जय माता दी, जय श्री हरि।
0: जय श्री हरि, नमस्ते, स्वागत आपका रेडियो मधुबन में। कैसे हैं आप?
2: नमस्ते, रेडियो मधुबन सुनने सुनाने वाले सभी भक्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जय माता दी, जय श्री हरि
0: जी।
2: और आप सब भी बहुत खैरियत से होंगे?
0: बिल्कुल हम अच्छे हैं।
2: टॉपिक क्या है
0: आज का? टॉपिक योग। देखिए योगा डे आ रहा है 21 जून, तो हमारे जीवन में योग क्या मायने रखता है? हमें भी इसको अपने जीवन में शामिल करना चाहिए या जैसे जी रहे वैसे ही जिएंगे? क्या कहेंगे आप?
2: देखिए योग दो तरह के होते हैं, एक तो मतलब शरीर को और मन को स्वस्थ रखने के लिए, एक शरीर को तन को और एक मन को स्वस्थ रखने के लिए।
0: जी,
2: तो तन को स्वस्थ रखने के लिए रोज योगा करना जरूरी है, क्योंकि योगा करने से मतलब आपके पास बीमारी कोई नहीं आएगी, बीमारियों से आप मतलब छुट्टी कर दोगे, तो इसलिए योग जरूरी है जिंदगी में। भले मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आप 2 घंटे निकालिए, 3 घंटे कीजिए, वो नहीं बोल रहा हूँ, भले आप अच्छी तरीके से 15-20 मिनट भी कर लो, मगर वो नियम होना चाहिए, करना है तो करना ही है
0: जी।
2: कि आप 2 घंटे कर रहे हो और आज किया और 2 दिन किया और आज के नहीं करना, तो वो फिर मजा नहीं आता है। आप 15-20 मिनट आधा घंटा करो मगर वो कंटिन्यू रखो
0: जी, बिल्कुल
2: तन को फायदा मिलेगा, शरीर को फायदा मिलेगा, और दूसरी बात मन को स्वस्थ रखने के लिए राजयोग भी करना जरूरी है। अगर तन राजयोग करोगे तो मन को स्वस्थ रख पाओगे, और तन और मन दोनों स्वस्थ रहेंगे तो आदमी मतलब एकदम स्वस्थ रहेगा, क्योंकि आदमी को आंतरिक और भीतर दोनों से स्वस्थ रहना
0: जी। ना दीदी? हाँ जी। और आज का हाँ जी,
2: हाँ आज का टंग ट्विस्टर है।
0: हाँ जी,
2: टंग ट्विस्टर के नहीं सुना।
0: अच्छा चलिए ठीक है। आप करते हैं एक्सरसाइज? करते हैं आप?
2: हाँ चालू ही है ना।
0: चलिए बहुत बढ़िया, डेली करते हैं?
2: हाँ डेली के रूटीन में चालू ही है
0: जी।
2: आपको मैं ज्यादा तो नहीं करता हूँ, राजयोग मेरे जीवन में पानी है वो गंदा डेढ़ घंटा हो जाता है
0: जी,
2: मगर ये योगा 30-40 मिनट हो जाता है।
0: अच्छा,
2: सूर्य नमस्कार हो गया सब कुछ।
0: अरे बाप, 30-40 मिनट तो बहुत हो गए, बहुत हो गए।
2: हाँ
0: बहुत अच्छी बात है।
2: बाकी राजयोग

0: पहले ही ये सब कुछ करना चाहिए
1: जी।
0: आपने कल प्रश्न भी पूछा था, तो वो सांस वाला वो पहले पूछी थी, तो सांस वाला योगा भी सूर्य उदय से आप पहले करोगे ना तो शुद्ध वायु मिलेगी
1: जी। उस समय पेड़ पौधे ऑक्सीजन छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, तो शुद्ध हवा।
0: और दूसरी बात ये होती है कि सुबह सुबह कोई व्हीकल नहीं चलते है ना
1: जी,
0: तो प्रदूषण नहीं होता है
1: जी,
0: तो उसकी वजह से मतलब शुद्ध वायु अपने शरीर के अंदर प्रवेश करेगी तो अपना शरीर वैसे भी स्वस्थ रहेगा
1: जी।
0: बस मैं तो यही कहना चाहता हूँ, जो भी करना है योगा करो या राजयोग करो, वो सुबह सूर्य उदय होने से पहले करो
1: जी। हाँ जी,
0: जय माता।
1: हाँ जी, जय श्री हरि, बहुत बहुत आभार। तो ये थे सुरेश भाई पिंडवाड़ा से, आपने भी अपनी बात को रखे और स्वयं के लिए आप 40 मिनट निकालते हैं, साथ ही साथ एक डेढ़ घंटा राजयोग भी करते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। तो मैं तो हर एक अपने सुनने वाले सभी भाई बहनों को कहना चाहूँगी कि जीवन में एक्सरसाइज को, व्यायाम को ज़रूर शामिल करिए, ताकि आजकल तो क्या है, बीमारियां बढ़ती जा रही है और देख रहे हैं कितनी दवाइयां जाते हैं हॉस्पिटल, तो कितनी सारी दवाइयां दे देते हैं, तो इससे अच्छा है कि योग के द्वारा हम निरोगी बनने की कोशिश करें, फिर थोड़ा बहुत कुछ होता है तो दवाइयां लीजिए, ठीक है। बाकी योग जिसको व्यायाम भी कहते हैं, एक्सरसाइज कहते हैं, उसको आप अपने जीवन में शामिल करिए और अपने आप को हमेशा प्रसन्नचित रखिए। आइए अब आज के टंग ट्विस्टर की तरफ बढ़ते हैं। आज का टंग ट्विस्टर है, योग में योग्यता जोड़े, योगी योग में योग्यता जोड़े, योग्यता से योग का यश मोड़े, जो योगी योग्यता से योग करे वो योग में यश ही यश जोड़े। तो ये हुआ आज का टंग ट्विस्टर, आपको कम से कम दो बार, अधिक से अधिक तीन बार बोल के सुनाना है। अभी यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे, उसके बाद पुनः लौटेंगे, तो बने रहिएगा कार्यक्रम आशियाना में, सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 FM।

0: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आशियाना और आशियाना में समय हो चला है आप सभी को नए नए व्यंजन सिखाने का। तो आज हम आपको सिखाएंगे वेजिटेबल फिंगर। पेन और डायरी ले लीजिएगा और लिखिएगा सामग्री। ब्रेड ले लीजिए, 4-5 स्लाइस ब्रेड की, ठीक है। फिर आप लीजिए गाजर, मटर, मशरूम, शिमला मिर्च, पत्ता गोभी, भुट्टे के दाने, ये सब मिलाकर 2.5 कप। कॉर्नफ्लोर लीजिएगा 2 छोटे चम्मच। नमक अपने स्वाद के अनुसार लीजिएगा, तलने के लिए तेल लेना है। और सोडियम ग्लूकामेट ले लीजिए 1/4 छोटा चम्मच। ये हो गई वेजिटेबल फिंगर की सामग्री, जिसको मैं फिर से दोहरा रही हूँ। 4-5 स्लाइस ब्रेड की लीजिएगा। गाजर, मटर, मशरूम, शिमला मिर्च, पत्ता गोभी, भुट्टे के दाने, ये सब मिलाकर ले लीजिए 2.5 कप। अब आप लीजिए 2 छोटे चम्मच कॉर्नफ्लोर, नमक आप अपने स्वाद के अनुसार लीजिए, तलने के लिए तेल लेना है, और 1/4 छोटा चम्मच लेना है सोडियम ग्लूकामेट। अब बनाने का तरीका भी आपको साथ ही साथ सिखा रही हूँ। एक बर्तन में आप कॉर्न फ्लोर और 2 बड़े चम्मच पानी डाल करके घोल बनाइए इसका। अब इसमें ये सब्जियाँ आपको धुलाई करके कटी हुई 2.5 कप ली है, ये सब्जियाँ, नमक, अजीनोमोटो, ये सब डाल करके अच्छी तरह मिलाइएगा। ब्रेड के स्लाइस पर तैयार मिश्रण फैलाइएगा। गरम तेल में दोनों तरफ हल्का सुनहरा होने तक सेक लीजिए। फिर इसे तेज छुरी या पिज्जा कटर से लंबे टुकड़ों में काट लीजिए और तैयार स्वादिष्ट वेजिटेबल फिंगर को सॉस या चटनी के साथ आप सर्व कर सकते हैं। तो इस तरह वेजिटेबल फिंगर बनाया जाता है, जिसको मैं विधि फिर से दोहरा रही हूँ। कैसे आप वेजिटेबल फिंगर बनाएंगे, ध्यान से सुनिएगा। ये चीज़ें भी बच्चे बहुत पसंद करते हैं और रोज़ नहीं बनानी है, कभी कभार, ठीक है। तो एक बर्तन में कॉर्नफ्लोर और 2 बड़े चम्मच पानी डालकर इसका घोल तैयार करिए। इसमें कटी हुई सब्जियाँ, नमक, अजीनोमोटो डाल करके अच्छी तरह मिला दीजिए। अब ब्रेड के स्लाइस पर तैयार मिश्रण को फैलाइए। गरम तेल में दोनों तरफ हल्का सुनहरा होने तक सेक लीजिए। फिर इसे तेज छुरी या पिज्जा कटर से लंबे टुकड़ों में काटिए। तैयार स्वादिष्ट वेजिटेबल फिंगर को सॉस या चटनी के साथ आप सर्व कर सकते हैं। तो इस तरह वेजिटेबल फिंगर बनाया जाता है। ऐसी चीज़ें बच्चे बहुत पसंद करते हैं, तो भाई बच्चों की पसंद भी रखनी चाहिए ना, उनकी पसंद की भी चीज़ें कभी कभी बनानी चाहिए। तो इस तरह वेजिटेबल फिंगर बन चुकी है। आप अपने इष्ट देव को भोग लगा करके ही स्वीकार करिएगा। और सुनिएगा फिर से एक गीत, तो सुनते रहो, मुस्कुराते रहो। रेडियो मधुबन 107.8 FM।
1: जानते हैं, कुवैत जैसे देश की जीडीपी से करीब 3 गुना पैसा तो हमने सिर्फ अपने देश के छोटे उद्यमियों को दिया है, वो भी गारंटी फ्री, 40 लाख करोड़ से भी अधिक के मुद्रा लोन से।
2: करोड़ों छोटे उद्यमियों को मुद्रा योजना से लोन मिला, उन्हें आज महसूस होता है कि डेमोक्रेसी कैन डिलीवर।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

0: प्यारे श्रोता बंधु, समय हो चला है आप सभी से अनुमति लेने का, फिर भी एक बहन ने सुनाया है टंग ट्विस्टर, तो उनके आवाज भी सुना देते हैं।
1: थोड़ी गलती हो गई, सुनना।
0: चलिए।
2: योगी योग्य में
0: बोलिए बोलिए।
2: योग्यता जोड़े, योग्यता से योग का यश मोड़े, जो योगी योग्यता से योग करे वो योग में यस यस यस जोड़े।
0: चलिए, अच्छी कोशिश की है लेकिन पूरा नहीं सुना पा रहे हैं, जाने दीजिए। और आज का कार्यक्रम आपने सुना ही है, काफ़ी अच्छा रहा है, सुंदर सा जो विचार दिया है उस पर जरूर गौर करेंगे, नुस्खे भी बहुत ही अच्छे दिए हैं। अगर नक्सीर चलती है गर्मी के मौसम में तो किस तरह आप अपना सावधानी बरतेंगे, खुशनुमा जीवन की बातें भी बहुत ही अच्छी हुई, और रेसिपी में जो वेजिटेबल फिंगर आपको बनाना सिखाया है ज़रूर बना करके खाइएगा। और आज का टंग ट्विस्टर बड़ा अच्छा था, जिसको मैं बोल के सुनाना चाहूँगी। योगी योग में योग्यता जोड़े, योग्यता से योग का यश मोड़े, जो योगी योग्यता से योग करे वो योग में यश ही यश जोड़े। योगी योग में योग्यता जोड़े, योग्यता से योग का यश मोड़े, जो योगी योग्यता से योग करे वो योग में यश ही यश जोड़े। योगी योग में योग्यता जोड़े, योग्यता से योग का यश मोड़े, जो योगी योग्यता से योग करे वो योग में यश ही यश जोड़े। तो हम अपने लिए भी तालियां बजाना चाहेंगे, और आप सभी ने भी बहुत अच्छी कोशिश की है। ज़्यादा हमारे श्रोता बंधु जुड़े नहीं हैं, सुरेश भाई जोटाना से, सगुना बहन जोटाना से, आप दोनों ने सुनाया है। बाकी मदन भाई मेहसाना से जुड़े लेकिन उन्होंने भी नहीं सुनाया, और सुरेश भाई पिंडवाड़ा से, आपने भी नहीं सुनाया, लेकिन आप चारों ने विषय में भाग लिया और खुशनुमा जीवन में अपनी बात को रखी, इसके लिए ढेर सारी तालियां। आज का मीठा मोती भी सुनाना चाहूंगी। जितनी हम दूसरों की कमी देखेंगे और आलोचना करेंगे उतनी ही हमारे जीवन से शांति समाप्त होती जाएगी। अब मैं आपको प्यारा सा भजन सुनाऊंगी, आप लेंगे भजन का आनंद और मुझे देंगे अनुमति। कल फिर मिलेंगे, कल क्या है, आप सभी जानते हैं कल शनिवार है, अंताक्षरी कार्यक्रम रहेगा, तो कल विवाह के गीत और रात्रि जागरण के, ठीक है, क्योंकि जेठ महीना चल रहा है, रात्रि जागरण भी चल रहे है, वैसाख जेठ में रात्रि जागरण चलता है, तो रात्रि जागरण और विवाह के गीत सम्मिलित मिक्स होंगे, ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़ करके भाग जरूर लीजिएगा। और अभी के लिए आप सभी को राम राम सा, जय श्री कृष्ण सा, गणी खम्मा सा, सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 FM।

है अखियन में, मेरी उम्र बीत गई गोकुल में, क्षमा आप बसो वृंदावन में, मेरी उम्र बीत गई गो

0: क्या बात है, आज आप जल्दी आ गए।
1: हाँ विमला, आज डॉक्टर से तुम्हारे सोनोग्राफी के लिए अपॉइंटमेंट जो लिया है। जाओ जल्दी, तैयार हो जाओ।
0: सोनोग्राफी वो किस लिए?
1: मुझे लड़का चाहिए, लड़की नहीं। वैसे भी महंगाई बढ़ती ही जा रही है।
0: पढ़े लिखे होकर भी आप कैसी बातें करते हैं। मेरी सहेली कमला को ही देख लीजिए, वो अपने माता पिता का ख्याल अपने बूते अभी तक रख रही है। स्कूल में प्रिंसिपल है, अच्छे पोस्ट पर है, क्या कमी है? वो अभी तो एक लड़की ही है ना।
1: फिर तुम शुरू हो गई।
0: सच ही तो कह रही हूँ। अब अपने दोस्त अनिल को ही देख लीजिए, अपने माता पिता को घर से निकाल कर वृद्धा आश्रम में छोड़कर आ गया है।
1: हाँ तुम ठीक कह रही हो, मुझे माफ कर देना, आज तुमने मेरी आंखें खोल दी। भगवान अब मुझे लड़की ही देना, एक प्यारी सी नन्ही मुन्नी गुड़िया रानी, बिल्कुल विमला जैसी।

0: नमस्कार दोस्तों, रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जीना इसी का नाम है कार्यक्रम लेकर के आप सभी के बीच में आते हैं। हर बार एक नए अनुभव और एक नए व्यक्तित्व से मिलते हैं और जानने की कोशिश करते हैं आध्यात्मिक पथ पर चलते हुए जीवन को कब और कैसे उन्होंने महसूस किया कि यही जीना है और इसे ही कहते हैं जीना इसी का नाम है। चलिए दोस्तों, अपने जीवन की कहानी से हम सभी को एक उदाहरण देने के लिए हमारे बीच में आ पहुंचे हैं श्रीकांत भाई जी। आप शांतिवन ब्रह्म कुमारीज की हेडक्वार्टर्स के परिसर में कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट की स्टोर संभालने की निमित्त हैं। दोस्तों, श्रीकांत भाई जी 1996 में सबसे पहली बार ब्रह्म कुमारीज के संपर्क में आए हैं और उसके बाद की जो जर्नी हुई है उनकी, उन्हीं की जुबानी हम सुनेंगे। सबसे पहले स्वागत करते हैं श्रीकांत भाई जी को आज के इस कार्यक्रम जीना इसी का नाम है और रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर। नमस्कार भाई जी।
1: नमस्कार।
0: बहुत बहुत खुशी हो रही है एक ऐसी योगी जीवन दो दशकों से जीने वाले एक ऐसे अनुभवी व्यक्ति से आज रूबरू होना। हर किसी की तरह एक प्रोफेशन को संभालते हुए समर्पित जीवन जीना और एक योगी जीवन जीना और उसको जीते हुए कार्य को करना, कैसे ये सभी चीज़ें समन्वय है, वो सभी चीज़ें तो हम आपसे बाद में जानते हैं, लेकिन आपसे सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं कि आपका जो बचपन, आप कहाँ जन्मे और आपकी घर की माहौल कैसे थी, आपके परिवार के बारे में। आप धार्मिक परिवार से हैं और आपके भाई बहनें आध्यात्मिकता के प्रति कितना रुचि रखते थे, ये सारी कहानियाँ हम सबसे पहले आपसे जानना चाहते।
1: मेरा जन्म पटना के कनेक्शन में अरवल डिस्ट्रिक्ट में जो है अरवल डिस्ट्रिक्ट में हुआ था और अरवल डिस्ट्रिक्ट में जन्म होने के बाद एक छोटे से गांव में हमारा जन्म हुआ और बहुत ही साधारण परिवार में। हमारे माता पिता किसान थे और चार भाई और दो बहनें थे। लगभग 4-5 वर्ष की आयु में ही मुझे घर पे जब बच्चों के साथ खेलता रहता था तो मुझे ये एहसास होता था कि ये मेरा घर नहीं है, मेरा घर कहीं और है। मैं अपनी बहन को, बड़ी बहन को भी कहता था कि मेरा घर कहीं और है, तो वो बार बार कहती थी नहीं, यही तुम्हारा घर और है
0: जी।
1: और मैं गांव के बच्चों में मैं इंटरेस्ट नहीं लेता था और ना ही किसी परिवार में, बुद्धि कहीं और लगी रहती थी कि कहीं और जाना है। खेलता था लेकिन मन कहीं और था। कुछ समय के बाद हमारे अंकल जो जमशेदपुर में, अभी जो वर्तमान में झारखंड में है, तो जमशेदपुर में टाटा कंपनी में एम्प्लॉई थे, तो वो मुझे पढ़ाई के लिए बोले चलो हमारे साथ, तो वो फिर अपने साथ लेकर के जमशेदपुर टाटा नगर चले गए। तो टाटा नगर लगभग 1983 के आसपास में लेके गए थे और फिर 10 साल की पढ़ाई मैंने वहाँ टाटा नगर में ही की। और वहाँ भी बार बार होता था कि कहीं और घर है हमारा, ये बार बार स्मृति आती रहती थी। फिर वहाँ टाटा नगर के बिष्टुपुर एरिया में जब 7th क्लास में मैं पढ़ रहा था DN कमानी स्कूल में, तो वहाँ स्कूल के टीचर थे, जो साइंस के टीचर थे, वो बार बार कहते थे कि आप मेडिटेशन करो और इससे आपको पढ़ाई में अच्छी रुचि मिलेगी। संस्था की ओर वो धीरे धीरे मुझे आकर्षित करते थे। और 7th क्लास में था और 9th क्लास में दो क्लास सीनियर हमारे एक भाई थे त्रिलोकी भाई, वो इस संस्था से अच्छी तरह से जुड़े हुए थे, तो वो भी कहते थे कि भगवान

0: ज्ञान सुनोगे, समझोगे तो मेडिटेशन करोगे तो बुद्धि अच्छी बढ़ेगी, पढ़ाई में अच्छा रिजल्ट होगा। तो जब मैं 7th क्लास में था तो मेरे मन में संकल्प आया, जब हमारे टीचर बार बार कहते थे तो मैंने भगवान को कहा कि अगर भगवान है इस धरा पे तो मेरी क्लास में 1st या 2nd पोजीशन आनी चाहिए, तो मैं मानूंगा कि भगवान है, नहीं तो मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है भगवान है या नहीं है। तो उस समय मैं 4th या 5th पोजीशन रहते थे क्लास में, तो उसी वर्ष मुझे क्लास में 2nd नंबर आया। तो फिर मुझे समझ में आ गया कि हाँ भगवान है और भगवान सुनते हैं। फिर धीरे धीरे सेंटर पे जो आदित्यपुर 2 जमशेदपुर का आदित्यपुर 2 एरिया है जहाँ मैं रहता था, और आदित्यपुर 1 में सेंटर था, तो क्लास से छूटने के बाद सीधा आदित्यपुर 1 में सेंटर में चला जाता था। वही भाई जो 2 क्लास सीनियर थे त्रिलोकी भाई, उनके साथ में चला जाता था। और सेंटर पर भी दीदी बहुत स्नेह प्यार देती थी और टोली फ्रूट प्रतिदिन खिलाती थी, तो बस मुझे ज्ञान तो समझ नहीं होती थी, बस उनका स्नेह प्यार होने के कारण प्रतिदिन मैं जाता था। और ऐसे लगभग 96 तक ये चलता रहा, लगभग 3 साल तक ये चलता रहा, 7th क्लास में था और 10th क्लास तक। फिर कुछ समय के बाद मुझे वहाँ से पटना आना पड़ा, और फिर पटना में आगे की पढ़ाई के लिए फिर मैं जब यहाँ आया तो यहाँ धीरे धीरे मैं ब्रह्मा कुमारी संस्था को ढूंढने लगा। थोड़ी समझ हुई तो ढूंढ लिया, 3 दिन मुझे पटना में संस्था को ढूंढने में लगा कि संस्था के ब्रांच कहाँ हैं। फिर संस्था के ब्रांच में आया तो फिर एक भाई मुझे बोर्ड देखा, तो एक भाई मुझे अपने स्कूटर में बैठा के मेन सेंटर में ले गए कि आप वहाँ चलो, वहाँ बहनें रहती हैं और एक क्लास मेडिटेशन होता है। फिर धीरे धीरे मैं इस संस्था के संपर्क में आया। फिर 96 में जब पटना आया तो फिर आगे की पढ़ाई मैंने पूरी की, इंटर किया, फिर ग्रेजुएशन किया, फिर प्राइवेट जॉब करना शुरू किया। तो जॉब करते करते एक अच्छी कंपनी में भी जॉब लग गई, तो जो इंडिया का नंबर 2 कंपनी है हिंदुस्तान पेट्रोलियम, उसके रीजनल ऑफिस जो झारखंड और बिहार दोनों को कंट्रोल करते थे, तो वहाँ भी जॉब लगी। उसके बाद धीरे धीरे
1: भाई जी, कहानी आगे बढ़ने से पहले हम ये जानना चाहते हैं, वो बाल्यकाल में आपको सेंटर में जो बहनें हैं उनके स्नेह प्यार और वो माहौल आपको अच्छा लगा, आपको कुछ कुछ खाने को मिलता है टोली वगैरह, तो फिर लेकिन वो कौन सा मोमेंट था जब आपको लगा कि ये सत्य ज्ञान है और यही है मैं जिसको तलाश रहा था, और जब आपने अपनी घर परिवार में कहा तो उस समय उनका क्या रिएक्शन था, क्या वो भी इस ज्ञान को समझने लगे हैं?
0: नहीं, मैं जब 7th क्लास में धीरे धीरे जब ज्ञान में संपर्क में आया तो लगभग 1-2 वर्ष के बाद जब दीदियों के स्नेह प्यार और ज्ञान थोड़ा सुना तो समझ में आया, तो वो कहते थे कि भाई लहसुन प्याज नहीं खाओ, और घर में वो सारा भेज नॉन भेज सब कुछ चलता था। तो मैं और हम लोग के घर में था कि संडे को ना फिक्स था कि सभी लोग नॉन भेज खाएंगे, क्योंकि अंकल की छुट्टी होती थी, तो फिर सब लोग हम लोग मैं भी खाता था। तो जब ज्ञान धीरे धीरे संपर्क में थोड़ा थोड़ा बुद्धि में बैठने लगा तो हम अपनी बहन जी को कहें कि भाई वो तो सब खाते हैं तभी क्या करना है, तो बोले सलाद खाते हो तो उसमें प्याज अलग कर देना, टमाटर खा लेना आप। तो मैं ऐसे करता था। फिर हमारी आंटी का ध्यान गया कि भाई ये तो कुछ थोड़ा चेंज हो रहा है इसका, तो फिर वो बाद में बोले कि भाई ये प्याज क्यों नहीं खाता, सलाद में सिर्फ टमाटर ही खाता है। तो फिर ऐसे ऐसे थोड़ी थोड़ी बातें आगे बढ़ती गई। फिर एक दिन सपने में क्या हुआ कि मैं रात को सो रहा था तो मछली ना मुझे जिंदा निगल गई, और मछली जब मुझे जिंदा निगल गई तो मैंने मछली को हाथ जोड़ के प्रार्थना किया कि मुझे छोड़ दो, अब मैं तुझे कभी नहीं खाऊंगा। तो उसके बाद से मैंने खाना छोड़ दिया, मैंने नॉनवेज मुझे और मीट खाता था तो एकदम घृणा हो गई, और मांस मछली सब छोड़ दिया। उसके बाद फिर खाना बिल्कुल बंद कर दिया। फिर मैंने आंटी जो गायत्री परिवार से संपर्क में थी तो उन्होंने भी बताया कि जब आपको अच्छा नहीं लगता तो भले नहीं खाओ, तो सबके लिए फिर नॉन भेज बनता था संडे को, और फिर भेज हमारे लिए आंटी हमारे अलग से बना देती थी। इस प्रकार से धीरे धीरे थोड़ी हमारी आध्यात्मिकता में रुचि बढ़ने लगी। और एक दिन स्कूल से सीधा सेंटर पे जब गया था तो उस दिन दीदी ने मधुबन माउंट आबू का सारा वीडियो दिखा रहे थे कि कैसे माउंट आबू है, कोई प्रोग्राम दिखा रहे थे, मुझे उसमें तो इतनी जानकारी नहीं थी लेकिन अच्छा लग रहा था तो मैं देखता रहा। तो देखते देखते 5 बजे से लेकर रात्रि 8 बजे तक देखता ही रह गया, और स्कूल से घर नहीं गया था, सीधा वहाँ चला गया। तो हमारे अंकल आंटी बहुत परेशान थे, तो जब घर गया तो हमारी आंटी थी, वो हमारी जो साथ में वाली जो बहन थी, वो चचेरी बहन जो थी, वो बोली कि अगर तुम थोड़ा देर पहले आते तो तुम्हारी जम की पिटाई होती, क्योंकि पापा बहुत नाराज थे। तो मैंने देखा कि आध्यात्मिक मार्ग, और मैं इतना मतलब इनोसेंट था कि दीदी ने जो टोली दिया वो भी घर पर ले जाके बताया यहाँ ये दीदी ने टोली दिया और मुझे ये नहीं पता कि ये टोली के माध्यम से मैं पकड़ा जाऊँगा कि मैं सेंटर से ही आया हूँ। और बहुत प्यार से फिर सब लोगों ने हैंडल किया और बाबा ने एकदम सहज रीति से मक्खन से बाल की तरह एकदम बचा लिया और चाचा जी चले गए। तब फिर मैं उस समय घर पहुंचा और फिर बिल्कुल नॉर्मल, फिर सबके गुस्से ठंडे हो गए, फिर सब कुछ नॉर्मल हो गया। फिर धीरे धीरे बुद्धि थोड़ा आकर्षित होती थी लेकिन पढ़ाई होने के कारण ज़्यादा सेंटर पर समय नहीं देता था। फिर जब पटना आ गया तो फिर मुझे स्वतंत्र हो गया, क्योंकि किराए के मकान पर लेके पढ़ता था, दो भाई थे साथ में, और तो फिर ज़्यादा बंदिश भी नहीं थी और अपने हिसाब से फिर माता पिता कहने लगे तो तीन भाई थे तो फिर मैं सारे बर्तन अलग अपना खरीदा। फिर मैं कहा कि अभी उस प्रकार की भोजन नहीं करना है, जो ईश्वरीय मर्यादाएं हैं उस ढंग से भोजन करना था। दो भाई अलग भोजन बनाते थे और मैं अपना भोजन अलग बनाता था। इस प्रकार से पढ़ाई होती थी। फिर पढ़ाई होने के बाद फिर जॉब हुई, जॉब में भी इसी तरह से सब आगे की दिनचर्या चलती रही।
1: तो जब आप अपनी लौकिक माता पिता से मिलने के लिए आए हैं जमशेदपुर से, पढ़ाई के बाद वापस उनके साथ रहे, तो फिर वो लोगों को ये ज्ञान समझ में आया आप कहाँ जा रहे, क्यों जा रहे हैं, फिर वो आपको स्वीकृति दी?
0: नहीं, शुरू में जब वो हम माता पिता संपर्क में आए तो माता पिता को मैंने बताया कि ऐसे ऐसे है तो बिल्कुल नाराज़ थे। माँ तो हर प्रकार से बच्चे के सपोर्ट में खड़ी रहती है लेकिन पिताजी बिल्कुल नाराज़ थे। तो पिताजी नाराज़ थे और नाराज़ इतने थे कि वो जो पढ़ने के लिए जो स्कूल कॉलेज की जो फ़ी थी उन्होंने बोला कि भाई हम नहीं देंगे आपको। फिर जब मैं घर पे गया फिर पिताजी को मिला तो उन्होंने एक कंडीशन रखा कि आप तो या तो आप संस्था छोड़ दो और या तो फिर आप अपनी पढ़ाई खुद करो, हम आप पैसा नहीं देंगे। तो फिर हमने कहा कि ठीक है। फिर हमने कहा कि उनको तो हमने बोल दिया कि ठीक है संस्था में नहीं जाएंगे, लेकिन रुचि इतनी गहरी हो चुकी थी कि छोड़ना हमारे लिए मुमकिन नहीं था। और सब बातें देखा मैंने कि उसके फ़ायदे क्या होते हैं। फिर उन्होंने पैसा देना जो स्कूल की कॉलेज की जो फीस थी उन्होंने बंद कर दिया बोले, तो मैंने कहा ठीक है ट्यूशन पढ़ा करके हम कवर कर लेंगे। तो काफ़ी मेहनत हुई, बहुत स्ट्रगल हुआ, फिर जा करके कवर किया। तो धीरे धीरे उनकी रुचि, फिर एक जब हिंदुस्तान पेट्रोलियम में एक अच्छे प्राइवेट में ही जॉब लग गई तो फिर उनको थोड़ा धीरे धीरे स्नेह प्यार हुआ।
1: श्रीकांत भाई ये बताइए कि वो कौन सी बात थी जो आपको इतना आकर्षित कर दिया इस राजयोग के ज्ञान में, आपको इतना तक भी कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ा, आपने अपना खान पान छोड़ दिया, बदल दिया और अपना खुद का खाना खुद बनाने लगे, और माता पिता के साथ भी आपने ये कि मैं अपना पैरों पे खड़ा रहूँगा लेकिन मैं इस ज्ञान को आध्यात्मिक जीवन को नहीं छोड़ूंगा।
0: मुझे ये खुद नहीं समझ में आता था कि मैं ऑटोमेटिक खींचा चला जाता, जैसे कोई चुंबक है वो खींचा जा रहा है उस प्रकार से मैं खींचा चला गया और मुझे एक सुकून मिला। जो मेरा बहुत बचपन का क्वेश्चन था कि ये घर मेरा नहीं है, तो वो सेंटर पे जाने के बाद मुझे एहसास हुआ कि ये मेरा अपना घर है और धीरे धीरे मुझे आध्यात्मिकता की ओर खींचा होता गया। और धीरे धीरे इतना खींचा हो गया कि जब मैं घर पे गया तो एक रात्रि ठंड के मौसम में वहाँ व्यवस्था सारी नहीं थी तो बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही थी और रात को 12-1 बजे के आसपास स्नान करना था। तो मैं स्नान करने गया तो बाबूजी कहे कि स्नान करने जा रहे हो ना, बीमार पड़ोगे तो तुम्हारा ट्रीटमेंट नहीं कराएंगे। और फिर रात को स्नान किया जो हमारी मर्यादाएं हैं, तो उसके बाद दूसरे दिन हमारे बाबूजी दो रजाई लेकर के वो रात को सोए थे लेकिन सुबह उठते ही उनको ठंडी लग गई और हमें कुछ नहीं हुआ। तब उन्होंने समझ में आ गया उनको कि ये लड़का सही रास्ते पे चल रहा है। और मैं इतना दृढ़ था कि हम किसी व्यक्ति के या किसी संस्था के जो उनके निमित्त है उनके आधार से नहीं चल रहा हूँ, मैं भगवान के डायरेक्शन को फॉलो कर रहा हूँ। तो मुझे कुछ भी सहन करना पड़ेगा करेंगे। और उसका सबूत पिताजी को और घर परिवार को धीरे धीरे मिलने लगा। एक दिन हैंडपम्प पे भी स्नान कर रहा था तो पहले पानी उसमें चला गया था, बहुत पानी का लेवल नीचे चला गया था, जब मैं घर गया तो पानी का लेवल नॉर्मल हो गया। तो पिताजी को भी एहसास होने लगा कि ये कुछ अलग है और ये गलत नहीं है, ये सही है। फिर गाँव घर के लोग भी साधु साधु कर करके संबोधित करने लगे कि साधु जी आए, महात्मा जी आए। फिर उनको एक दो चीज ऐसे एहसास हुए कि इनको ठंड का असर इसको नहीं होता, ये नियम पे चलता है तो चलता है। और दूसरा घर के जो पानी के लेवल जब ऊपर आ गए नॉर्मल तो उनको एहसास हो गया कि लड़का कुछ अलग है। फिर माँ का तो सपोर्ट होता ही था। और फिर
1: तो फिर जब आपने समर्पित जीवन जीने का निर्णय लिया माउंट आबू आने का, तो वो कैसा हुआ?
0: उस समय जब मैं पटना में प्राइवेट में जॉब करता था तो कंपनी इंडिया की नंबर टू थी, तो हर प्रकार की उसमें सुविधाएं थी और सब प्रकार की बातें थी, लेकिन वो हमारे नियम को, संस्था को फॉलो नहीं करते थे। उसमें एक ऑफिसर थे, उनकी युगल जो थी वो संस्था से अच्छी तरह से कनेक्टेड थी और उन्हीं के माध्यम से मुझे ये नौकरी मिला था, तो उन्होंने ऑफर किया था कि आप आ सकते हो। तो जब मैं गया, सारी बातें हुई, फिर एक डेढ़ साल नौकरी करता था। उस नौकरी का टाइम सुबह 9 बजे से 6:45 बजे तक था, और 9:45 बजे से होते होते और रात को कभी कभी 10-11 बज जाता था, और ये रेगुलर धीरे धीरे होने लगा। और उनकी हर सप्ताह में मीटिंग होती थी और होटलों में जाना होता था। होटलों में फिर एक दिन शराब और ये ड्राई फ्रूट की सारे कार्टून सब बहुत सारे थे, तो उन्होंने बोला कि आप हेल्प करो। तो मैं समझा कुछ खाने पीने की चीज़ें, तो हाथ लगाया मैंने। बाद में मालूम पड़ा कि वो सब कार्टून में शराब की बोतलें। तो उसी दिन से संकल्प चल गया कि ये नौकरी अच्छी चीज़ नहीं है, ये गंदी नौकरी है। और सभी लोग पार्टी पिकनिक करते रहते थे, तो मैं कुछ भी नहीं कर रहा था। तो हमारे जब रात को 11 बज गए, तो उसमें से एक ऑफिसर बोला कि ये लड़का भूखा है और ये कुछ भी नहीं लेता, इसको घर जाने दो, नहीं तो इसकी ना मतलब तकलीफ हम लोग को भारी पड़ेगी। तो उनको भी एहसास हो गया कि इतने सारे वैरायटी, इतनी सारी चीज़ें, लेकिन लड़का पानी तक को भी हाथ नहीं लगाया, तो इनको स्वेच्छा से जाने दो। तो सब सहज रीति से सब फिर घर गया। और फिर हमारी जो संस्था की जो हेड थी दादी कुंजी, उनके आगे रिक्वेस्ट रखा, सेवा करना चाहता हूँ। और मन में मुझे बार बार यह ख्याल आता था कि जब मैं ब्रह्मा कुमार, क्योंकि मुझे जब पहली पेमेंट मिली तो मैं अपनी माँ को दिया, तो माँ ने कहा कि तुम्हारे पैसे की मुझे ज़रूरत नहीं है, तुम अपना जीवन अच्छी तरह से जियो। तो हमको लगा कि जब हमारे पैसे की ज़रूरत किसी को नहीं है, तो फिर हम अपना जीवन अच्छी तरह से जिएंगे। और अच्छी तरह से जीने का संकल्प आया कि हम 8 घंटा वहाँ नौकरी करने के बाद बाकी समय सेंटरों पे समय सेवा में सहयोग देता था। तो हमने कहा क्यों नहीं पूरा जीवन, जैसे मधुबन वाले पूरा जीवन अपना समय बाबा की सेवा में देते, उसी प्रकार से हम भी अपना जीवन बाबा के घर में दें। तो इस प्रकार से फिर मधुबन कुंज दादी से परमिशन लेकर के फिर माउंट आबू आना हुआ। तो माउंट आबू आने के बाद भी पहले तो 6 मास सेवा में यहाँ रुका, और दादी ने कहा, लेकिन उसी समय अकाउंट के कारोबार के कारण दादी कहे कि वापस पटना चले जाना पड़ेगा। उस समय कंप्यूटराइज अकाउंटिंग शुरू हो गई थी, और चूंकि मैं कंप्यूटर वर्क करता था तो दादी ने कहा कि आप चलो वापस, लेकिन जाने की मेरी दिल एक रति नहीं थी। फिर दादी ने टिकट के पैसे दिए, फिर वहाँ अकाउंट ऑफिस में गोलक भाई जो है ऑडिट करते थे उस समय, उनसे मिलवाए और बोले इनको 7 दिन की ट्रेनिंग देना। तो चूंकि मैं एक्सेल सीट और अकाउंट सब जानता, कंप्यूटर जानता था, तो मेरी 3 दिन में ट्रेनिंग पूरी हो गई। लेकिन फिर ड्रामा अनुसार जब मैं वापस नहीं गया, तो फिर दादी वापस जब आई तो बोली आप आए नहीं। तो मैंने कहा दादी हम मुझे यहीं रहने का संकल्प। तो फिर बोली दादी बोली कि मेरी तरफ से छुट्टी है और मैं चाहता हूँ कि बाबा का हर बच्चा सुखी रहे। तो उस दिन की खुशी थी, उसको कहते खुमारी खुशी, मुझे रात को नींद तक नहीं आई थी कि इतना मैं खुश था कि सहज रीति से सारे बंधन छूट गए।
1: तो जब आप पहली बार परमात्मा के घर में आए, माउंट आबू आए थे, तब आपको ये समझ में आया था कि बचपन में जो घर में ढूंढ रहा था यही मेरा
0: जी? बिल्कुल, वो एहसास मुझे हो गया था। वैसे तो 2005 में आने से पहले मैं 2001 में और 2003 में भी आया था, तो कुमारों की भट्टी थी, तो उस समय दादी प्रकाशमणि जी भट्टी की क्लास में जब आई थी, तो उस समय लगभग 3,000 कुमार थे सभा में, और उन्होंने बताया कि ये सभी कुमारों को ताज पहनाओ। तो मुन्नी दीदी जी ने कहा कि दादी जी सब सूक्ष्म रूप में पहने हुए, क्योंकि 3,000 ताज उसी समय तुरंत प्रबंध करना मुश्किल काम था, लेकिन दादी का संकल्प था कि नहीं, ये सारे पवित्र कुमार हैं, इनको ताज पहनाओ। तो उसके कारण वो तुरंत 2-3 दिन में प्रबंध करके किया, और फिर इतना दादी का स्नेह प्यार देखा तो फिर लगा कि ऐसा संसार और कहीं नहीं मिलेगा। तो सभी को एक समान प्यार और सभी को एक रीति से, फिर जो दादी का संकल्प था ताज माला तिलक सब वो सब पूरा हुआ। उसके बाद फिर धीरे धीरे संस्था से जुड़ता गया, गहरी रुचि होती गई, और 2005 में तो फिर फाइनली कर लिया कि अभी नौकरी छोड़ करके बाबा के घर में ही सेवा करनी। उसमें तो पैसे हैं लेकिन सम्मान नहीं है, आपकी जो आध्यात्मिक की जो
1: शुद्धता
0: है वो सब समाप्त हो जाती है
1: जी। तो आप जब 2005 से, मतलब लगभग अभी 20 साल हो रहे हैं, दो दशक। यहाँ पे आपने बहुत सारे योगियों के साथ, तपस्वी आत्माओं के साथ आपने अपना वक्त बिताया है। और जैसे आपने कहा कि जब संस्था में आप आए थे तो अकाउंट्स में आपने मेंटेन करने का, अकाउंट्स वगैरह आपने सीखा और कार्य करना शुरू किया। ये दो दशकों में को अगर आप देखते हैं, क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आपने उपलब्धि की है और आपको लगता है कि अगर मैं दुनिया में होता तो ये उपलब्धियाँ कभी मैं नहीं कर सकता?
0: दुनिया में सांसारिक उपलब्धियाँ होती है तो सांसारिक बातें भी रहती हैं, और आध्यात्मिक मार्ग में आप आते हैं और संस्था के हेडक्वार्टर में आए हैं तो यहाँ भी जैसे आपको वहाँ फेस करना पड़ता है, यहाँ भी आपको फेस करना पड़ेगा। चाहे कहीं भी आप रहें तो फेस करना ही पड़ता है, हमें भी फेस करना पड़ा। तो मुझे एक बात की पक्का थी कि कुंज दादी जी ने पक्का कराया था कि आप जो भी पैसे है आपके पास, एक तो अकाउंट क्लोज कर देना और पैसे एक रुपया भी नहीं रखना। तो इस रीति से मेरी बाहरी बुद्धि नहीं जाती थी कि ये चीज़ पहनूं, ये चीज़ खरीदूं या ये चीज़ अपने पास रखूं। और आज तक उस दादी जी का जो संकल्प था उसको मैं आज तक कायम करके रखा कि जो भी यज्ञ से मिले, दादी जी ने कहा था कि यज्ञ मन इच्छित फल देता है, आपके जो संकल्प है सब कुछ पूरा हो जाएगा, लेकिन आप अपने पास एक रुपये भी नहीं रखना क्योंकि ये पैसे आपको बाहर लेके चले जाएगा। तो ऐसी शुद्धता, ऐसा शांत वातावरण और इतना स्वच्छ वातावरण जो दुनिया में, तो इतनी आकर्षण है माया कि वो कहीं ना कहीं खींच लेती है। बड़े बड़े पद पे लोग रहने वाले, कुछ ना कुछ बातें ऐसी हो जाती है तो वो फिर उनको लेके बाहर चली जाती है। और संस्था में भी आप हैं तो संस्था की कुछ मर्यादाओं को अगर आपने पकड़ के रखा है तो वो आपकी नैया को पार ले जा देगा। और बातें तो आएंगी, परीक्षाएँ देनी पड़ेगी, सहज रीति से आपको सब कुछ नहीं मिल जाएगा, लेकिन आप अगर उस मर्यादा पर पकड़े हुए, जिस भी मर्यादा को आपने पालन किया, पकड़ लिया, तो वो एक मर्यादा ही आपको जीवन का उद्धार करने के निमित्त बनेगी। और ये ऐसा निमित्त बनेगी कि आपके संपर्क में जो भी आएंगे वो आपसे प्रसन्न होकर के, खुश होकर के जाएंगे कि हाँ, कोई बाबा का बच्चा है, भगवान का एक बच्चा है जो मर्यादाओं पे पक्का है और ये दूसरों को प्रेरणा देने के निमित्त बन सकता है।
1: कुछ ऐसी बातें कह सकते हैं जो आपने सीखा है आपके जीवन में ये दो दशकों में, जिससे आपको लगा कि हाँ, मैंने अपने जीवन में प्रोग्रेस किया है, स्वउन्नति किया है?
0: इस अध्यात्म मार्ग में आया तो मुझे सबसे अच्छी चीज़ लगता है सहयोग करना। कोई भी व्यक्ति आपके संपर्क में आए तो उसको आप सहयोग दीजिए। और जाति धर्म भाषा भेद की तो यहाँ बात ही नहीं होती है, ये पूरे भारतवर्ष के लोग प्लस विश्व के लोग भी आते हैं। जो भी भाई बहने आते हैं, अगर हमारे संपर्क में कोई आते हैं, या सेंटर की बहने या भाई या कुछ अकाउंट के कारोबार के संबंध में भी, तो निसंकोच उन्हें हर प्रकार से मैं मदद करने की कोशिश करता हूँ। और मेरा उद्देश्य यही रहता है कि समय नहीं देखता कि हाँ ये समय ऐसा हो रहा है, इस समय अभी हमारा रेस्ट टाइम है, या इस समय दूसरे कोई कारोबार है। अगर मैं कर सकता हूँ तो उस काम के लिए उस व्यक्ति को दोबारा, उनका संकल्प न चले, मैं कोशिश ये करता हूँ कि वो काम उसी समय पूरा हो जाए। अगर मैं नहीं कर सकता तो कम से कम उसको सही गाइडलाइन कर देता कि भाई इस व्यक्ति से या इस विभाग से आप संपर्क करेंगे तो आपका कार्य सहज हो जाएगा। क्योंकि हमारे पास कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है तो एकदम अगर आप खाली हैं और खाली रहना चाहते हैं तो दूसरे को भी व्यर्थ बातों से खाली रखेंगे तभी आप खाली रह पाएंगे। और जो व्यक्ति व्यर्थ बातों से खाली रहता है तभी वो अच्छे कार्यों में या मेडिटेशन में या दूसरे की सेवा में वो सहयोगी बन सकता है। अगर मन में किसी भी बात की कचड़ा या कुछ भी कमी पकड़ लेते किसी की, तो वो फिर हमें अच्छे कार्य करने में मदद नहीं करता, वो बाधा बन जाता है।
1: भाई जी, जब से आप मधुबन में हैं आज दिन तक, क्या सीखा आपने? आप व्यक्तिगत जीवन में क्या प्रोग्रेस किया? मतलब जैसे गुस्सा करते थे तो गुस्सा वो मुक्त हो गया है, या व्यर्थ से मुक्त हो गए हैं, या फिर ज्ञान की गहराई में जाना हुआ है? ऐसा क्या चीज़ें हैं जो आपने व्यक्तिगत जीवन में सीखा है, इम्प्रूव किया है, या आपने सिद्धियाँ कुछ प्राप्त की है, या फिर ऐसी चीज़ें हैं जिसके ऊपर आपने कंट्रोल, जो भी आपके जीवन की?
0: यहाँ मधुबन में रहने के बाद जो मैं ये समझा कि जो भी कोई बातें हो जाती है, अगर कभी कोई घटना घट गई, आप कभी कड़े आवाज़ में, ऊंचे आवाज़ में बोल दिए, तो उसको आप माफ़ी मांग के बात को ख़त्म कर दीजिए, उसको दूसरे दिन पे नहीं रखना है। दूसरी चीज़, कोई भी आए तो उनको आप सहयोग दीजिए। तीसरी चीज़ की कोई क्रोध करता है तो आप सहज रीति से विजय प्राप्त करने के लिए शांत हो जाइए, क्योंकि उस जितना देर हम शांत रहते हैं ना, उतने देर में वो व्यक्ति का जितना अग्नि उसके अंदर है वो सब निकल जाता है, और शांत रहने के कारण फिर उसको आगे बढ़ने का मौका नहीं मिलता। तो ये दो तीन चीज़ें मैंने पक्की करके रखी है कि कोई व्यक्ति क्रोध करता है तो एकदम साइलेंस में रहना है, दूसरी चीज़ कोई सहयोग मांगता है तो सहयोग दे देना, तीसरी चीज़ ये है कि हम अपना जो दिनचर्या उसको मेंटेन करके रखें तो सब काम सहज हो जाता है। और जीवन में है कि हम किसी को खुशी दे सकते हैं, तो खुशी का आधार है कि कोई व्यक्ति की कोई चीज़ ज़रूरत है तो उसमें हम सहयोगी बन जाए तो सहज हो जाता है।
1: वर्तमान समय में आप किस विभाग में हैं और क्या कार्य करते हैं?
0: मैं कंस्ट्रक्शन विभाग में, कंस्ट्रक्शन स्टोर में हमारी सेवाएं होती है, जो संस्था की ओर से जो भवन निर्माण का कार्य होता है या मेंटेनेंस का कार्य होता है उसमें हमारा रोल होता है, जो भी मटेरियल है कंस्ट्रक्शन टूल्स है उसकी देखरेख की सेवाएं हमारी होती है।
1: तो आपको समर्पित जीवन जीने की प्रेरणा कहाँ से आई? आपके जीवन में रोल मॉडल कौन थे?
0: मैं ब्रह्मा कुमार भाई बहनों को देखता था, और जब मधुबन में आया तो देखता था कि मधुबन में भाई बहनें अपना लौकिक घर छोड़ करके बाबा के घर में सेवाएं कर रहे हैं। और जब मुझे मेरी मम्मी ने कहा कि आपके पैसे की मुझे ज़रूरत नहीं है, तभी मुझे प्रेरणा आ गई कि अभी भगवान के घर मधुबन में ही रहना, माउंट आबू ही रहना, और जो सेंटरों पे 2-4 घंटे सेवाएं में समय दे पाता था तो फुल डिवोटी हो करके पूरे 24 घंटे भगवान के घर में सेवा दे सकूं, ऐसा मुझे बार बार ख्याल आता था। और दूसरी चीज़ मुझे ध्यान में रहता था कि कोई भी जो बाबा के घर में मिलता था, एक जो हमारे सेंटर में एक भाई थे वो बाबा के घर लगभग अपने जीवन काल में 20-25 बार वो मिल चुके थे, तो मैंने कहा कि इनसे आगे जाने का आधार क्या है, मैं तो साल में एक ही बार भगवान से मिल सकता हूँ, एक ही बार भगवान के घर में सेवा कर सकता हूँ। तो फिर मैंने कहा कि ये तो पूरे जीवन काल में 20-25 बार मिले और मैं तो 2 साल में ही कवर कर सकता हूँ। तो इस रीति से इसका आधार यही है कि मुझे इस लंगर को छोड़ करके उस नाव पे चढ़नी पड़ेगी, तभी हम इस क्षेत्र में आगे जा सकते हैं।
1: बहुत इंटरेस्टिंग। सो जब आप समर्पित हो गए हैं, आपकी माता पिता ने स्वीकृति दी और आपके भाई बहन ने आपको रोकने की कोशिश नहीं की?
0: क्योंकि मैं वहाँ जॉब करता था तो मैंने डायरेक्ट नहीं कहा कि मैं माउंट आबू जा रहा हूँ, मैंने उनको ये कहा कि मेरा वहाँ ट्रांसफ़र हो गया है, थोड़े दिन मैं वहाँ रहूँगा फिर उसके बाद। तो माता पिताजी को बताया, फिर माँ को, छोटा भाई मुझे स्टेशन भी छोड़ने आया था और बाबूजी को नहीं बताया था, इनडायरेक्टली मम्मी को बता रखा था कि ऐसे ऐसे है। तो फिर बाबूजी बोले वो कहाँ गया, तो फिर ऐसे ऐसे बताया उनको कि ऐसे ऐसी बातें हैं और संस्था में आया हूँ, ये उनको नहीं बताया था, मैं जॉब करने के हिसाब से आया हूँ, ट्रांसफ़र हुआ है इस हिसाब से बताया। फिर धीरे धीरे उनको बाद में बताया कि मुझे बाहर में रहने खाने पीने में बहुत दिक्कत होती है, अब मैं संस्था में आ चुका हूँ और मैं यहीं रह रहा हूँ। तो धीरे धीरे उन्होंने समझा, फिर उनको अच्छा तो नहीं लगता था, और ख़ास करके हमारे बाबूजी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, उनको लगता था कि हमने पढ़ाया लिखाया और सारा पैसा ही इसने बर्बाद कर दिया, वो क्योंकि उनको था कि पढ़ाया लिखाया तो वो फिर हमें रिटर्न करेंगे, और हम तो इस कंडीशन में आ गए थे कि रिटर्न करने की कंडीशन में थे नहीं। तो फिर जब बाबूजी को, जब उन मुझे बार बार संकल्प चलता था कि माँ और बाबूजी को एक बार माउंट आबू दिखा देवे, तो फिर जब बाबूजी आए तो फिर कहे कि हमारा बेटा तो स्वर्ग में है, अब उनकी सारे संकल्प शांत हो गए। और बाबूजी का तो एक बार ही आना हुआ और माँ 3 बार आई, तो माँ बाबूजी के भी सारे प्रश्न खत्म हो गए। फिर जब संस्था की ओर से जब कहा जाता है कि आप अपने माता पिता की स्वीकृति पत्र लाइए, तो फिर मैं वो पत्र लेने गया तो बड़ा भाई थे घर पे ही, तो उन्होंने कहा कि जब ये इस रास्ते पे चला गया है तो इसको वापस नहीं बुलाइए। फिर बड़े भाई के सहयोग से पिताजी ने फिर सहज रीति से और माताजी ने स्वीकृति पत्र भी दे दिया और फिर आगे की कार्य सहज हो गया।
1: बहुत सुंदर। अगर आप अपनी पूरी कहानी को अगर एक शब्द में एक नाम देना चाहते हैं तो क्या दे सकते हैं?
0: निस्वार्थ भाव से सभी आत्माओं को आप सहयोग देते रहे, यही जीवन का सार है। जीवन में अगर कुछ आपकी संतुष्टि के लिए चाहते हैं कि आपने कुछ किया, तो जो भी आपके संपर्क में आत्माएं आ रही हैं उनको आप सहयोग देते रहें।
1: थैंक यू सो मच भाई जी। जीना इसी का नाम है, जितना सरल है कहना और उतनी ही सरलता से आप अपनी जीवन को एक उदाहरण के रूप में हमारी श्रोताओं के सामने रखा। बहुत बहुत धन्यवाद। आज की आपकी इस जीवन कहानी से ये सीखने को मिलता है कि कठिनाइयाँ परिस्थितियाँ कितना भी आए, अगर आप अपनी जीवन मूल्यों को साथ रखेंगे वो आपकी वैल्यू को बढ़ाते हैं और आपसे अन्य लोगों की सेवा होती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। दोस्तों यहीं पे विराम लेते हैं, आप सभी से फिर मिलेंगे अगली कड़ी में एक नए मेहमान या एक नए अनुभव के साथ। तब तक के लिए सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए रेडियो मधुबन 107.8 FM।
2: अभी बजे हैं दोपहर के 12, एक मिनट का हो आत्मचिंतन।

0: नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जीवन रोशनी कार्यक्रम के अंतर्गत आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वैसे दोस्तों, मान लीजिए 2026 में जो प्रॉमिसेस हमने अपने आप के साथ किया था कि हम ये करेंगे 2026 में, क्या दृढ़ निश्चय के साथ हम वो कर पा रहे, या फिर जो हमारे लक्ष्य है उसके लिए हम पहला कदम उठा चुके हैं, निरंतर प्रयास कर रहे हैं, ये चेक करने के लिए आज का ये कार्यक्रम है। क्योंकि दृढ़ निश्चय अगर हमारे अंदर होगा तभी ही हम उसे पूरे तरीके से कंप्लीट कर सकते हैं। तो आइए, आज हमारे मध्य हमारे एक्सपर्ट हैं प्रिया दीदी जी, जिनको आप जानते हैं, आप उन्हें कई बार सुन चुके हैं। तो इनसे बेहतर एक्सपर्ट कौन हो सकते हैं जो हमें दृढ़ संकल्प के इस मूल्य के बारे में सरल शब्दों में, सरल तरीके से हमें एक्सप्लेन करेंगे। दीदी ने MBA कंप्लीट किया है, लेकिन स्पिरिचुअलिटी उनके नस नस में बचपन से ही था, और उसे बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने समझा है और औरों को भी समझा रहे हैं। यूथ हो, चाहे वो एडल्ट्स हो, चाहे वो घर में रहने वाले पेरेंट्स हो, सबको वो सिखाते हैं कि आध्यात्मिकता को अपने जीवन में अपनाते हुए अपने जो निजी लाइफ है उसे कैसे जीना है बेहतर तरीके से, पॉलिश्ड तरीके से। तो प्रिया दीदी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में।
1: थैंक यू सो मच
0: जी। तो सबसे पहले तो आपसे जानना चाहेंगे, जो हम बात कर रहे हैं आज जो मूल्यों के बारे में, क्योंकि सपनों को अगर हकीकत में लाना है तो दृढ़ निश्चय होना बहुत जरूरी है
1: जी।
0: तो अगर हम दृढ़ निश्चय ये बात कहते हैं, ये तो बहुत भारी भरकम सा लग रहा है, आप इसे सरल तरीके से कैसे समझाना चाहेंगे?
1: जी, बहुत अच्छा जो मैंने सुन रही हूँ शुरू से ही आपने लिया है कि जनवरी में हम लोगों ने बहुत सारे रेजोल्यूशंस लिए हैं, प्रॉमिसेस किए हैं, खुद से किए हैं, लोगों से किए हैं, शायद खुदा से भी किए हैं।
0: फरवरी महीने में भी हमने किया है, जैसे प्रॉमिस डे और भी डेज थे।
1: हाँ जी बिल्कुल। लेकिन बात वही है कि दृढ़ निश्चय कितना है। तो सिंपल वर्ड्स में अगर हम देखें कि दृढ़ निश्चय माना कोई भी चीज पक्का करना, और पक्का करना इतना कि उसके ऊपर हमें पूरा निश्चय भी हो कि हाँ ये मैं करूंगा या करना ही है
0: जी।
1: तो इसको हम कहें कि कोई भी चीज जो मैं ठान लेता हूँ या अपने अंदर पक्का कर लेता हूँ तो उसको हम कह सकते हैं कि दृढ़ निश्चय है। और दृढ़ निश्चय के लिए जैसे कि हम देखते हैं कि आज जो कमिंग जनरेशन है जिसको हम Gen Z कहते हैं
0: जी,
1: तो इनमें हमने देखा है खास, हालांकि ये पहले से ही हो रहा है, सिर्फ इन जनरेशन में नहीं आया है, उनके फादर मदर उनसे भी पहले से ये चीज शुरू हो गई है कि हमारे अंदर ये दृढ़ता की कमी बहुत ज्यादा आने लग गई है
0: जी।
1: हम बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट करने लगे हैं अपने संकल्पों में, जो हम सोचते हैं वो हम बोलते नहीं, जो हम बोलते हैं वो हम करते नहीं हैं
0: जी।
1: तो ये चेंजेस अगर आते हैं तो एक मानवीय जो कैरेक्टर होता है, जो कि बहुत श्रेष्ठ अगर हम किसी का देखते हैं, चाहे वो स्वामी विवेकानंद जी का है या किसी भी व्यक्तित्व जो आज हम देखते हैं जो बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है और बहुत जो लोगों के दिलों पे है, तो उनका हमने देखा है कि दृढ़ निश्चय बहुत ज्यादा होता है
0: जी।
1: वो जो कहते हैं वो करते हैं, जो सोचते हैं वो करते हैं
0: जी।
1: तो एक ये बहुत बड़ा कारण है उनके जीवन का, दृढ़ निश्चय, जिसकी वजह से वो आज जहां हैं उनको आज पूरी दुनिया जो है सम्मान करती है
0: जी। दृढ़ निश्चय मतलब एक मानसिक स्तर पे हम सोच लेते हैं, संकल्प लेते हैं, जैसे आजकल कहते हैं कि आप अफर्मेशंस लो, आप ही मैनिफेस्ट करो, ये तो हम करते हैं कि हमें ये अचीव करना है, और उसके लिए बोलते हैं कि आप फेक उन चीजों को अपने दिमाग में लूप मोड में रिपीट करो जब तक आप इसको कर सकते हो, मेक कर सकते हो।

0: उसे निकला है कि ये फेक हम अभी कर रहे हैं जब तक कि ये अचीव हो जाए. और दूसरा सेंटेंस जो आपने कहा कि ये करेंगे हो जाएगा, लेकिन इसको प्रेजेंटली फील करना होता है कि ये मेरे साथ हो रहा है.
1: ओके, उसको फील करना. लेकिन वही माइंड जानता है ना कि फेक कर रहे हैं, लेकिन
0: माइंड जानता है, लेकिन तभी जानता है जब आप इसको कह दो कि फेक कर रहा है. फॉर एग्जाम्पल, जो हम देखते हैं, जो बोला गया है कि लॉ है एक दुनिया का, जिसको हम कहते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन, गुरुत्वाकर्षण का केंद्र कह सकते हैं, जो धरती के लिए भी बोला जाता है. तो आकर्षण का सिद्धांत ये कहता है कि आप जो सोच रहे हैं या चाहते हैं भविष्य में अचीव करने को, उसको इतना महसूस करें कि वो आपको प्रेजेंट में फील होने लगे कि वो आप कर रहे हैं.
1: जी,
0: फॉर एग्जाम्पल, जो एक रियल एग्जाम्पल भी था इसमें, कि एक व्यक्ति थे और उनका जो बेटा है वो बेसमेंट में जाता है, विदेश में बेसमेंट में स्टोर होता है
1: जी.
0: तो बच्चा नीचे जाता है और नीचे कुछ गंद सा, बहुत पुराने टाइम का एक बास्केट है, डब्बा है, कार्टन टाइप है, उसको वो खोलता है कि क्या है इसमें. बच्चा छोटा ही है, अभी 5-7 साल का होगा. तो उसमें से वो एक पिक्चर उठाकर ले आता है, जो पिक्चर उसके घर की है जिसमें वो रह रहा है
1: जी.
0: तो वो मिट्टी मिट्टी हो रखा था, तो उसको बहुत वो क्लीन करता है कि मेरे घर का पिक्चर इतना सुंदर है, यहाँ क्यों पड़ा है. तो वो बहुत कॉन्शियस है पापा से पूछने के लिए कि ये गंद में क्यों पड़ा है. तो वो ऊपर जाता है और पापा से पूछता है कि पापा ये नीचे क्यों है
1: जी.
0: तो पापा थोड़ी देर के लिए सुन हो जाते हैं और सुन होने के बाद बच्चे को एक कहानी सुनाते हैं कि बच्चे आज से 20 साल पहले
1: जी,
0: या कुछ साल पहले, एग्जैक्टली नॉट द 20, लेकिन कुछ साल पहले, काफी साल पहले, जहां मैं शून्य पे खड़ा था, तो तब मैंने ये घर देखा था, ये पिक्चर मुझे मिली थी
1: जी.
0: और ये पिक्चर मैंने अपने बेड के आगे लगा दी थी
1: जी.
0: ठीक है, और उसके बाद डेली जब उठता था, इस घर का देखता था और विजुलाइज करता था, मैं इस घर में घूम रहा हूँ और वो जो सी शोर फेसिंग था ऐसा कुछ, तो मैं वहां खड़ा हूँ और समुद्र की लहरों को देख रहा हूँ. और वो घर फिर उसके बाद मैंने बहुत मेहनत भी की, ऐसा नहीं कि सिर्फ सोचा, देखा, विजुलाइज किया, मैंने डाई हार्ड मेहनत की है और आज मैं उसी घर में खड़ा हूँ.
1: ओके,
0: तो यू हैव टू फील इट कि इट इज गोइंग ऑन प्रेजेंटली, वो मेरे साथ अब भी हो रहा है. ये माइंड को सूचना देना बहुत जरूरी है
1: जी.
0: उसके लिए आपको विजुअलाइज, सिर्फ बोलना इज नॉट कंप्लीट टास्क, यू हैव टू फील इट
1: जी.
0: ठीक है, कोई भी चीज अगर जिसको एफर्मेशन आप वर्ड दे रहे हैं, यू डोंट हैव टू अटर दैट कि आपने रिपीट कर लिया बार बार, मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन अंदर से आंसू आ रहे हैं. तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ही फेक है और आपको खुद भी फील हो रहा है और माइंड को पता नहीं फेक हो रहा है, क्योंकि इमोशंस उसके अकॉर्डिंग नहीं है
1: जी.
0: यू हैव टू क्रिएट द इमोशंस अकॉर्डिंग टू दैट कि वाकई में मैं बहुत खुश हूँ.
1: तो उसके लिए कुछ करना होगा
0: ना, उसके लिए विजुलाइज करना स्टार्ट कर दीजिए. आपको किस चीज से खुशी होती है, कि गुलाबों के बीच में मैं बैठा हूँ, गार्डन में हूँ, अगर आपको गार्डन पसंद है. लेकिन अगर आपको खेलना पसंद है, तो बहुत सारे बच्चों के बीच में हूँ, क्रिकेट खेल रहा हूँ, एंड आई एम एंजॉयिंग,
1: ओके,
0: आई एम लिविंग द बेस्ट.
1: उसको विजुलाइज करना,
0: विजुलाइजेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. और इमोशंस उसके अकॉर्डिंग जनरेट हो, वो उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है. तो तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है. हालांकि हाँ, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन तीन चीजें कि जो आपने बोला वही आप देखें और वैसा ही फील करें. ठीक है, जैसे मैंने बोला मैं बहुत खुश हूँ, पर मेरे चेहरे पे एक भी स्माइल ही नहीं है, तो मेरा जो इमोशन है वो मैच नहीं हो रहा है. ठीक है, तो मेरे को फील करना है कि यस मैं बहुत खुश हूँ. मेरे पास कोई रीजन नहीं है, लेकिन यू हैव टू क्रिएट इट. मैं खुश हूँ बिकॉज आई एम अलाइव.
1: Right.
0: मैं खुश हूँ बिकॉज मैं आपके साथ हूँ, रेडियो में हूँ, लोगों के बीच में हूँ, आई एम वेरी हैप्पी. तो यू हैव टू क्रिएट दैट इमोशन.
1: ओके,
0: तो ये जो टास्क होगा जो 10 साल में होने वाला है, वो बहुत फास्ट होगा.
1: ओके जी, तो कुछ और चीजों के बारे में पूछने से पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि जैसे हम खुश रहने की बात कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये
0: जी.
1: बाकी चीजें तो अचीवमेंट्स है, स्थूल रूप में जॉब, ये सब हम कोशिश करते हैं और मिल भी जाता है, लेकिन खुश रहना बहुत इंपॉर्टेंट है. और हम चाहते हैं हर दिन खुश रहें जो भी परिस्थिति हो, लेकिन नहीं रह पाते. तो जब परिस्थिति ऐसे हो प्रैक्टिकल लाइफ में
0: जी,
1: किसी की डेथ हो गई, परिवार में झगड़ा चल रहा है, कोई जमीन वगैरह की विवाद चल रहे हैं, तो उस बीच में कैसे खुश रह सकता है कोई?
0: जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है. मेरा सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस मैं किसी की डेथ का ही दूंगी, क्योंकि ये एक ऐसी चीज है जो लौट के नहीं आती है
1: जी.
0: क्योंकि जो जमीन का विवाद है, उसमें भी कुछ ना कुछ हल निकल जाता है, या कहीं ना कहीं रास्ता मिल जाता है. चाहे जमीन नहीं मिलती है, लेकिन कुछ तो मिलता है. नहीं मिलता है तो कम से कम एक तसल्ली मिलती है
1: जी.
0: लेकिन स्टिल यू आर अलाइव. लेकिन जब व्यक्ति ही जीवन से चला जाता है, तो ये एक बहुत बड़ा धक्का है किसी के लिए. लेकिन उस समय भी हम ये जरूर सोच सकते हैं कि जो जैसे स्पिरिचुअल कंसेप्ट जो होता है, जो हम ब्रह्मा कुमारी इसमें भी समझाते हैं, और

0: ब्रह्मा कुमारी इसमें नहीं, पूरे वर्ल्ड वाइड में है। आप शास्त्रों में देखें, आप बाइबल में देखें, कुरान में देखें, तो सदा ही लिखा गया है कि जो मेरा था वो शारीरिक रूप में जीवित नहीं है, ओके फाइन आई लॉस्ट हिम, ठीक है, या हर, लेकिन वो जिंदा है
1: जी।
0: ये मानना एक खुशी दे देता है।
1: Okay.
0: जब हम किसी ऐसे घर में जाते हैं, सीरियसली जब हम किसी से मिलते हैं जिसका नियर एंड डियर वन जिन्होंने शरीर छोड़ा होता है, तो हम उनको यही कहते हैं कि वो जिंदा है, बस उन्होंने घर चेंज किया है। और अगर जैसे एक माता पिता होते हैं और उनका बच्चा जब बहुत ज्यादा पढ़ लिख जाता है, विदेश में जॉब लग जाती है, तो माता पिता को खमी तो खलती है
1: जी।
0: लेकिन दे फील हैप्पी कि हाँ मेरा बच्चा विदेश में डेवलपमेंट कर रहा है, प्रोग्रेस कर रहा है।
1: तो ये एक थॉट अपने मन में लाना बहुत जरूरी है।
0: यस, लेकिन उसके लिए थर्ड पर्सन ही जो है वो ज्यादा हेल्पफुल होता है, सेकेंड पर्सन थर्ड पर्सन वो ज्यादा हेल्पफुल होता है, बिकॉज वो बहुत ज्यादा इमोशनली वीक एंड डाउन है। तो उस समय हम उनको यही बोलते हैं कि वो जिंदा है, बस घर छोड़ा है, किसी और के घर में प्रवेश किया है, वहां ढोल नगाड़े बज रहे हैं लेकिन आप रो रहे हो, और ये बहुत बड़ा अपशगुन है। तो जब ये बात वो पूरी तरह से अंडरस्टैंड करते हैं, दे अंडरस्टैंड्स कि आपका बेटा वहां जन्म ले रहा है और वहां तो बड़े नगाड़े बज रहे हैं, बड़े ढोल नताशे शुरू हो चुके हैं, और आप यहाँ रो रहे हो, तो वहां उसके लिए अपशगुन क्रिएट होगा।
1: ओके,
0: और वहां क्या हो सकता है उसके साथ प्रॉब्लम, वो आप यहाँ नहीं जान सकते क्योंकि हमें नहीं पता वो किस घर गया, लेकिन गया है। तो जब ये चीज वो समझते हैं तो दे ट्राई टू स्टॉप देमसेल्फ, एटलीस्ट कम होता है उनका,
1: क्योंकि जो जाता है उसको हमें हैप्पी जर्नी, सेफ जर्नी जो हम कहते हैं,
0: yes.
1: तो दिल से निकलना
0: चाहिए। हाँ, तो हम यही उनको बोलते हैं कि जैसे अभी महाली में अगर डेथ हुई है एक दो दिन में, तो हम उनको यही समझाते हैं कि 13 दिन तक 15 दिन तक सोल जो है वो आसपास है, आप रोकर दूसरे व्यक्ति के साथ दुख साझा कर रहे हैं, ठीक है, आप रो रहे हैं, आपको दुनिया समझा रही है, आपके पास कोई है जो आपके साथ बैठा है, ठीक है, आपका रोना देख रहा है, लेकिन उसके पास कोई नहीं है, वो आपको देख रहा है और वो बहुत रो रहा है, क्योंकि वो अपना रोना आपको शेयर भी नहीं करा सकता, आपको चुप भी नहीं करा सकता। तो इसीलिए आपको उसको फील करके ये याद रखिए कि आपको रोता हुआ देखकर वो कैसा कर रहा होगा फील। तो जब ये बात भी वो समझते हैं कि हाँ मेरे रोने से नेचुरली मेरे से प्यारा था, चाहे वो जवान बेटा है, चाहे वो पति है या पत्नी है, तो जब वो ये चीज समझते हैं तो भी उनको थोड़ा सा लगता है कि हाँ कि मुझे थोड़ा मतलब जो है कंट्रोल अपना करना चाहिए। तो उसके बजाय, क्योंकि वो जा रहा है, उसको जाना ही पड़ेगा बिकॉज अभी वो उस मोड पे है
1: जी।
0: तो जब कोई घर से जाता है तो आप उसको गंदा बक्सा, गंदे कपड़े, गंदे खाना, ये बासी खाना ऐसा पैक करके देंगे?
1: बिल्कुल नहीं, नहीं।
0: जब भी जाएगा तो आप उसको बढ़िया बेस्टेस्ट आप देंगे। तो अभी भी वो जा रहा है तो यू हैव टू गिव योर बेस्टेस्ट कि बेस्ट फीलिंग्स, बेस्ट थॉट्स, जो भी है उसको एनर्जी की जरूरत है बिकॉज ही इज इन अ चेंज मोड। और जब हम चेंज मोड में होते हैं तो हमें एनर्जी चाहिए होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका प्रमोशन भी हुआ है, यू आर बिकमिंग द बॉस ऑफ दिस एफएम, ओके, तो भी आपको एनर्जी चाहिए
1: जी।
0: यू हैव टू अंडरस्टैंड द थिंग्स मोर, आपको और पेशेंस चाहिए, तो एनर्जी चाहिए होता है। तो ही इज ऑल्सो चेंजिंग द प्लेस, हर चीज चेंज होने वाला है, उसका कॉस्ट्यूम, उसका रिलेशंस, उसका घर, उसका प्लेस, उसकी ओनरशिप, हर चीज चेंज हो रही है। तो ही नीड्स द एनर्जी मोस्ट, उसको उस टाइम बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए। तो जब ये चीज भी समझते हैं जब वो, तो फिर वो अंडरस्टैंड करते हैं। हालांकि ऐसा मैं नहीं कहती कि वेरी फर्स्ट डे ही वो रोना बंद कर देते हैं, लेकिन फिर भी वो संभलते हैं
1: जी। बिल्कुल, तो ये संकल्प जो है ये बहुत ज़रूरी है। इस 2026 शुरुआत में ही हमें ये सारी चीज़ें दीदी से जानने को मिला कि कैसे कोई पर्सनल लॉस है, कोई चला गया है आपके लाइफ से, तो किस तरीके से आप उसके साथ सूक्ष्म रूप में, स्थूल रूप में पेश आएंगे, कैसे थॉट्स आप क्रिएट करेंगे, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़रूरी है। आइए जानते हैं दृढ़ निश्चय के बारे में। डिटर्मिनेशन बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में कोई भी चीज़ अचीव करने के लिए। तो दीदी से जानना चाहूँगी कि बहुत से श्रोता हैं और जो भी हमारे दोस्त जॉब करते हैं, तो ये कहते हैं कि 2-3 बार असफल होने के बाद वो हार मान लेते हैं
0: जी।
1: तो असफलता के बाद भी दृढ़ निश्चय को कायम रखना कितना ज़रूरी है और कैसे रखें?
0: अब इसके लिए तो मैं यही कहूँगी कि बस 4 घर मिलाइए,
1: 4
0: लोगों से,
1: ओके,
0: और किसी का भी पता कर लीजिए जो कई बार असफल ना हुआ हो, एक ही बार में टॉप लेवल पे, हर चीज में टॉप लेवल पे रहा हो, ऐसा कोई व्यक्ति आपको नहीं मिलने वाला है
1: जी।
0: सबके साथ फेलियर्स अटैच्ड है, ठीक है। जैसे हम देखते हैं कि जिन्होंने बल्ब इजाद किया है तो वो 10,000 बार फेल हुए हैं
1: जी,
0: ठीक है। तो एक बहुत बड़ी संख्या है जो हम समझ सकते हैं, हम तो 10 ही बार हुए हैं, लेकिन क्या 10 बार फेल हुए तो फिर क्या लगे रहें? यस, लगे रहें इफ यू थिंक द थिंग इज राइट, ये जो मेरा लक्ष्य है वो सही है, मैं सही दिशा पे हूँ, तो लगे रहने में कोई बुराई तो है ही नहीं। इसीलिए फेलियर हो रहा है तो ये भी एक चैप्टर है जो मुझे समझना है। तो जो एडिसन वॉटसन थे उन्होंने भी यही कहा था कि 10,000 बार फेल होने से मुझे ये पता चला कि 10,000 तरीके जो मैंने यूज किए थे उससे बल्ब नहीं बनता, उससे बल्ब नहीं जलता
1: जी।
0: तो उन्होंने उस फेलियर को भी चैप्टर काउंट किया कि इट वॉज अ लेसन फॉर मी कि इससे बल्ब नहीं जलेगा,
1: राइट
0: ओके। तो अगर हम हर फेलियर को फेलियर वर्ड ना लें, दिस इज अगेन द फर्स्ट जो हमने बात किया कि मैं वर्ड्स को कैसे ले रहा हूँ। आई हैव गिवन माय माइंड कि मैं फेल हो गया हूँ, तो माइंड उसको और इमोशनली मुझे डाउन कर देगा,
1: ओके, डिप्लीट होता है। तो उसमें कोई मतलब हार्मोन्स और ये सब
0: सब कुछ पता नहीं, मल्टी मिलियन सेल्स हैं, आप गूगल कर सकते हैं कितना, वो सारे सेल्स आपके एक वर्ड से चेंज होने लग जाते हैं, वो सारे सेल्स नेगेटिवली चार्ज होने लगते हैं, हार्मोन्स भी नेगेटिव होने लगता है, सारा जो केमिकल सिक्रेशन है, आपका स्टमक है, सब कुछ नेगेटिव होने लगता है। और अगर आप बहुत दिन तक हैं तो डॉक्टर्स के पास जाना ही पड़ जाता है। तो इट्स अ वेरी बिग आपका साइन है ये
1: जी,
0: कि आप फेलियर फेलियर फेलियर में ही सोच रहे हैं, तो डॉक्टर फिर मेडिसिन देने लगता है कि बच्चा ये खाओ। फिर धीरे धीरे डिप्रेशन आ रहा है, तो दैट मींस यू आर चार्जिंग योर बॉडी फुल्ली नेगेटिव, आपने कर दिया है। तो इसीलिए फेलियर को फेल कहकर माइंड को नहीं खिलाएं, उसको यही कहें कि इट वाज अ चैप्टर एंड आई लर्नड इट,
1: ओके,
0: तो फिर मुझे आगे बढ़ना है। जैसे कहा कि लक्ष्य मेरा सही है तो मुझे आगे बढ़ना है
1: जी।
0: हाँ, लक्ष्य में मुझे अगर लगता है कि नहीं तो फिर सलाह लेकर के हम आगे बढ़ सकते हैं, या जो उस लक्ष्य को प्राप्त कर चुके हैं मैं उनसे सीख सकता हूँ, सीख करके फिर मुझे आगे बढ़ना है
1: जी।
0: तो इसलिए अभी जो मुझे करना है कि विशेष जो मेरा फेलियर आ रहा है, आगे भी होगा, लाइफ इज लाइक अ फेलियर एंड सक्सेस मिक्सचर है। कोई भी व्यक्ति एक बार में कोई भी टॉप पे नहीं बैठा है, कोई भी नहीं, चाहे वो विवेकानंद स्वामी जी हैं, चाहे वो हमारे प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर, कोई भी एक बार में ऊपर नहीं पहुंचा है
1: जी।
0: इनफैक्ट भगवान भी अगर हम देखते हैं तो वो भी पूरी दुनिया से गालियां जो हम देखते हैं वो इंसानों से खा रहे हैं, ठीक है, लेकिन भगवान भी फिर उनको अपना बच्चा समझ करके माफ करके आगे बढ़ते हैं, इसलिए ही इज वेरी पॉजिटिव
1: जी।
0: और हम भगवान तक को गाली दे रहे हैं इसलिए आई एम टोटली नेगेटिव। इसलिए अपना चेंज करना, इट्स टाइम टू चेंज आवर सेल्फ
1: जी,
0: कि मैं अपना वर्ड्स क्या बोल रहा हूँ, मैं सोच कैसा रहा हूँ, मैं देख क्या रहा हूँ, मैंने फेलियर सोचा है और अपने कमरे में फिर वही ऑरा एंड वही जो है मैं वाइब्रेशंस रिलीज कर रहा हूँ, तो वो मुझे वापस टकराएगा क्योंकि मैं बंद कमरे में हूँ। हाँ, ओपन में बैठा हूँ तो ओपन जैसे गार्डन या टॉप ऑफ द हिल बैठा हूँ और वहाँ कुछ सोच रहा हूँ, तो जो नेचर है वो मुझे गुड वाइब्स भेजती है आज भी, ठीक है, हालांकि नेचर बहुत डिस्टर्ब है लेकिन अब भी उसमें बहुत पावर है। तो जब ऐसा डाउन फील करते हैं तो जो चीज आपको पसंद है, पेट्स हैं, डॉग्स हैं, स्ट्रीट डॉग्स हैं, कुछ भी है, आपको क्रिकेट पसंद है, आपको टीवी पसंद है, आपको खाना पसंद है, हैव इट, उसके साथ बैठे और फेलियर को यही चैप्टर है और अब मुझे आगे बढ़ना है।
1: ओके, जैसे आज हम एक कॉलेज में गए थे तो कुछ स्टूडेंट्स ने ये शेयर किया कि फेल हो गए 10वीं में, 12वीं में, सुइसाइडल जो थॉट्स थे वो भी आए कि सुइसाइड कर लेते हैं क्योंकि ताना माने लगते हैं लोग पड़ोसी, लेकिन उन्होंने ओवरकम किया और आज वो पढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन हर बच्चे के साथ ऐसा नहीं होता, क्योंकि बहुत सारे केसेस हम देख रहे हैं कि जस्ट कुछ परसेंटेज के कुछ मतलब 0.01 भी कम है तो भी वो लोग ये कदम उठा लेते हैं। तो उनको कैसे, क्या कहेंगे, कैसे दृढ़ निश्चय के साथ फिर से चैप्टर शुरू करें नए?
0: इसमें बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं जो मैं समझती हूँ, क्योंकि मेरे 99.9 आए हैं लेकिन मेरा उम्मीद था कि 100 आ जाए, तो इसमें बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हैं कि मेरा जो मैंने मेरी मम्मी पापा ने मेरे लिए सोचा था, ठीक है, तो पेरेंट्स का बहुत बड़ा एक रोल होता है बच्चों के लिए। बच्चों के लिए हमेशा पेरेंट्स को बोलना चाहिए, जो मैंने अभी एक देखा था, मैं कहीं गई थी, आई फॉरगॉट द प्लेस, लेकिन वहाँ साइंटिस्ट हैं, मम्मा भी साइंटिस्ट हैं, फादर भी साइंटिस्ट हैं
1: जी।
0: और उन्होंने अपने बेटे को बोला हुआ है, इट वॉज इन 10th आई गेस, तो उन्होंने अपने बेटे को बोला था डोंट टेक द टेंशन, बच्चा थोड़ा स्ट्रेस में था बिकॉज ऑफ द मैथ्स
1: जी।
0: तो मम्मी पापा तो बहुत इंटेलिजेंट है, हेल्प भी होती ही होगी, स्टिल ही वॉज नॉट सो गुड इन मैथ्स, तो वो इतना स्ट्रेस में था और नहीं पता, वो अपने मम्मी पापा को पूरा शेयर नहीं किया एंड ही डाइड, ही जंप्ड ऑफ द बिल्डिंग. तो पेरेंट्स शॉक में है क्योंकि उन्होंने कह दिया था कि स्ट्रेस नहीं लेना
1: जी.
0: तो ऐसे भी बच्चे हैं, लेकिन चीजें फिर भी जुड़ी हुई हैं. एक अकेले का थॉट उसके साथ काम नहीं कर रहा है. पेरेंट्स हैं लेकिन वो बहुत हायर लेवल पे बैठे हैं, साइंटिस्ट हैं. बच्चा देख रहा है कि भाई मैं तो जीरो हो रहा हूँ और मेरे मम्मी पापा क्या है. तो वो गैप को फील करना एक बहुत बड़ी जरूरी है
1: जी.
0: मेरे पापा बहुत बड़े मल्टीनेशनल कंपनी के मालिक हैं, आई एम डूइंग नथिंग. तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा स्ट्रेस की बात हो जाती है
1: जी.
0: फिर मेरा फ्रेंड सर्कल क्या बोल रहा है, तेरे मम्मी पापा तो साइंटिस्ट है
1: जी.
0: और तू ऐसा, तो ये क्या चल रहा है. तो वो अकेला नहीं होता है जब वो ऐसे थॉट्स में पहुंचता है, बहुत सारी चीजें जुड़ी हैं. लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि बच्चे डिस्कस कई बार करते हैं, कई बार नहीं करते हैं
1: जी.
0: कुछ स्ट्रांग होते हैं कि खुद ही कोप अप कर लेते हैं, कुछ नहीं होते हैं. लेकिन मेरी यही रिक्वेस्ट है कि शेयर करें
1: जी.
0: अगर मेरे कम मार्क्स आए हैं, जीरो आए हैं, तो भी मुझे शेयर करना है, क्योंकि लाइफ मुझे पढ़ाई में जीरो चाहती है, शायद स्पोर्ट्स में हीरो चाहती है. लेकिन हो सकता है मैथ्स में जीरो चाहती है, लेकिन कॉमर्स सेक्शन में टॉपर बनाना चाहती है. लाइफ कभी भी किसी को जीरो नहीं देती, कभी भी नहीं. हमने बेगर्स भी देखे हैं जो करोड़पति निकले हैं. तो लाइफ कभी किसी को जीरो नहीं देती है, ये हो ही नहीं सकता. क्योंकि परमात्मा की वाणी है कि मेरा हर बच्चा, नालायक से नालायक भी, मैंने उसको एक गुण जरूर दिया है, यानी उसके लिए उसको दिया है ताकि वो सर्वाइव कर सके. इसीलिए अगर मैं ऐसे मोड पे हूँ तो आई मस्ट शेयर, ठीक है, किसी से भी जिससे आप अच्छा फील करते हैं. और मेरा कोई शेयरिंग सर्कल नहीं है, हेल्दी सर्कल नहीं है, तो फिर आप गॉड से बात करें. लेकिन लोगों को गॉड से बात करने में सबसे ज्यादा टफेस्ट लगता है.
1: तो गॉड को कुछ और रिलेशनशिप,
0: फ्रेंड फ्रेंड, लेकिन वही है, ये लिंक लाने में ना टाइम लगता है, एक दिन से तो नहीं बनता है. तो इसीलिए हम उन्हें कहते हैं थोड़ा स्पिरिचुअल बने, स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े, या कुछ भी. आज ऑनलाइन इतना कुछ अवेलेबल है, दे डोंट नीड टू गो एनीवेयर. कोई टेंपल में जाकर आपको मेंबरशिप नहीं लेने की जरूरत है, या कहीं भी नहीं. आप गूगल करें एंड यू कैन गेट द वर्जन्स, यू कैन गेट द टाइप ऑफ मेडिटेशंस.
1: एआई से भी बात कर सकते हैं,
0: बिल्कुल कर सकते हैं. बट मैं उसको उतना अच्छा नहीं लेती हूँ, बिकॉज इतनी दुनिया में इंसान है एंड स्टिल आई एम टॉकिंग टू अ कंप्यूटर. तो मेरा लेवल जो आगे,
1: इंसान ढूंढना बहुत जरूरी,
0: बहुत जरूरी है हमारी लाइफ में, है हमारी लाइफ में. हाँ, यू हैव टू चेक. पर मैं नहीं कर रहा हूँ, ये भी एक बहुत बड़ी मिस्टेक है कि मैं नहीं कर रहा हूँ,
1: क्योंकि हम शायद इंसानों को फेस करना नहीं चाहते.
0: हाँ, कर नहीं पा रहे हैं, करना नहीं चाहते हैं, उन्हें अपनी बात बताने से डरते हैं कि कहीं लीक आउट ना हो जाए.
1: लीक आउट के साथ साथ वो जज करते हैं हमें, उस तरीके से देखते हैं. हाँ, हर बार.
0: बिल्कुल, तो इसलिए एआई से बेटर है भगवान, कहीं ज्यादा बेटर.
1: राइट राइट, कोई तुलना ही नहीं है,
0: कोई तुलना ही नहीं है. क्योंकि एआई कहीं ना कहीं एक ह्यूमन मेड ही है. और इसका जो आज भी साइंस ये कहता है कि वो एआई जो है वो बहुत एक बुरा जो है जगह बनाने वाला है, एक डिजास्टर क्रिएट कर देगा, एक आने वाले टाइम में बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है
1: जी, क्योंकि सबकी इंफॉर्मेशन से.
0: यस, सबकी इंफॉर्मेशन. तो इट्स बेटर टू क्रिएट मतलब एक हेल्दी सराउंडिंग. हम फ्रेंड सर्कल बना लें, ठीक है. लोग तो अपने डॉगी से भी बात करके खुश हो लेते हैं, ठीक है ना. तो यू हैव टू क्रिएट समथिंग, यू हैव टू फाइंड अ प्लेस कि कहाँ आप अपना शेयर कर सकते.
1: भगवान जवाब देते हैं क्या?
0: बिल्कुल देते हैं,
1: तुरंत, जैसे एआई देता है.
0: तुरंत चाहिए तो, तुरंत चाहिए तो, जैसे एआई आपके लिए एक्सेस इजी कर लिया है आपने,
1: अब प्रैक्टिस करके किया है,
0: किया है, है ना. फॉर एग्जांपल, अगर मैं मोबाइल में नेट ही रिचार्ज नहीं कराऊं तो फिर मैं एआई से कुछ मांग सकता हूं?
1: नहीं
0: नहीं. तो आई हैव डन समथिंग टू गेट द एआई. तो भगवान के आंसर्स लेने के लिए मैंने कुछ किया है, वो तो मैं चाहता हूँ तुरंत दे दे, पर मैं कुछ ना करूँ तो ऐसा नहीं.
1: मेरे लाइन भी क्लियर होना चाहिए,
0: मेरे जवाब आने चाहिए, मैं कुछ नहीं करूँ, ऐसा नहीं होता दुनिया में, नहीं होता. आपको कुछ करना ही पड़ता है. एक डॉगी भी, उसको आप रोटी देते हैं तब वो पूछ हिलाता है.
1: राइट,
0: इसलिए कुछ तो करना होगा तो आपको आंसर जरूर मिलते हैं.
1: जी जी, उसके बारे में तो हम आगे जानते रहेंगे. अभी मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जैसे अगर किसी युवा का सपना अलग है, उसके घर वाले अलग चाहते हैं, जैसे हम थोड़ा बहुत बात भी कर चुके हैं इसके बारे में, तो फिर क्या करें, कैसे समझाएं, कैसे दृढ़ निश्चय रखें उस परिस्थिति में.
0: मैक्सिमम हम देखते हैं कि युवा जो है वो थोड़ा हटके ही पेरेंट्स से सोचती है. कई युवा इसका बहुत अच्छा कर भी लेते हैं, जैसे अब मैं क्या नाम लूँ, बहुत सारी हस्तियाँ हैं समाज में हम देखते हैं कि जिन्होंने पेरेंट्स ने कुछ और सोचा था, लेकिन भाई ने या बहन ने जो भी बच्चे ने हैं वो डिफरेंट सोचा और बहुत अच्छे लेवल पे पहुँच गए हैं। लेकिन कई हम जिनके हमारे पास न्यूज़ नहीं है, कई ऐसे भी हैं जो पेरेंट्स के अगेंस्ट गए हैं और गड़बड़ हो गई है, उनका लाइफ ही थोड़ा ऊपर नीचे हो गया है। तो इसीलिए मेरा ये जो मानना है कि ठीक है, अगर आप पूरे दृढ़ संकल्प धारी हैं, आपको पक्का है कि आई विल डू इट 100%, तो कि फिर आप वो संकल्प को पूरा करने का अपने पेरेंट्स को भी, मैं तो कहूँ कि उनको समझाएं,
1: कन्विंस
0: करने की ताकत रखें। लेकिन जो इंडियन टेंडेंसी है कि पेरेंट्स जल्दी कन्विंस नहीं होते हैं, दैट्स टू आई अग्री, लेकिन ये है कि कोशिश करें कि मम्मी को कन्विंस कर लें, क्योंकि मम्मियाँ हो जाती हैं। तो पेरेंट्स को ज़रूर आपकी पता हो तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि समाज आज की डेट में सेफ नहीं है। तो इसलिए एक पेरेंट को ज़रूर अपने उसमें कॉन्फिडेंस में रखें। पापा भी मान जाते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। आपको अगर पूरा पक्का 100% है कि मैं ये करूँगा, तो फिर पेरेंट्स को बोलकर आप उस चीज़ को ज़रूर पक्का पूरा कीजिए। लेकिन अगर आपको ही 100% नहीं है, तो फिर आपको थोड़ा सा पेरेंट्स को साथ में लेकर चलना चाहिए, उनकी भी बात माननी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आई वॉन्ट टू प्ले क्रिकेट, लेकिन दे आर फोर्सिंग मी टू फॉर द गवर्नमेंट जॉब्स, तो आप पढ़े भी
1: जी,
0: लेकिन क्रिकेट भी खेलें। ठीक है, क्रिकेट खेलने की भी वो भी टाइम देंगे, अगर वो देख रहे हैं कि आप पढ़ रहे हैं तो आपको वो क्रिकेट खेलने के लिए भी भेजेंगे। वो इतने भी नहीं है कि भाई नहीं जी पढ़ो ही, क्रिकेट को फेंकी दो, ऐसा नहीं है। कोई भी पेरेंट ऐसा नहीं है आज की डेट में। इसलिए पैरेलल में अगर लेके चलते हैं वो सबसे बेस्टेस्ट है
1: जी।
0: तो आप जहाँ अपना बढ़िया बेस्ट करेंगे तो वहाँ आप आगे बढ़ सकते हैं। आपने क्रिकेट में अगर दिखाया कि आई कैन बी द टॉपर, ठीक है, अर्जुन अवार्ड या जो भी अवार्ड, आई डोंट नो मच अबाउट इट, तो जो भी आप चीज़ हासिल करेंगे तो फिर वो आपके साथ आ ही जाएंगे, रह ही जाएंगे
1: जी। बात क्रिकेट की हो रही है तो मैं पूछना चाहूंगी कि कई बार समाज तुलना करते हैं, आजकल तो बोलते हैं देखो वो लड़की कितना अच्छा क्रिकेट खेल रही है और तुम नहीं खेल पा रहे हो, तुम क्रिकेट में नाम नहीं कमा पा रहे हो, क्योंकि अभी आईपीएल भी है, बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज है इंडिया के लिए, तो आप नहीं कर पा रहे हो, तो उस समय कैसे रिएक्ट करना चाहिए, क्या रिस्पॉन्ड करना चाहिए?
0: बिल्कुल बिल्कुल, ये इंडियन पेरेंट, मैं यही कहूँगी, लेकिन हैट्स ऑफ टू देम, मैं सलाम करती हूँ इंडियन पेरेंट को, क्योंकि इंडियन पेरेंटिंग जैसी पेरेंटिंग मैंने पूरे विश्व में नहीं देखी है।
1: बिल्कुल,
0: उनके ताने ही हमारे आगे जाने का रास्ता है, जो मेरे साथ है। ताने किसको नहीं मिले हैं, सबको मिलते हैं। वो माँ बाप शायद इसी जो कहें तलवार है उनका, यही उनका चाकू है, यही उनका तीर है, जिससे फिर वो बोल बोल के अपने बच्चे को तैयार कर रहे होते हैं आगे के तानों के लिए। अगर हम अपने पेरेंट्स के ताने सह जाते हैं तो समाज ताना नहीं देगा, और अगर पेरेंट्स के ताने हमसे सहे नहीं जा रहे हैं तो बी रेडी फॉर द समाज, वो ताना जरूर देगा। तो इसलिए पेरेंट्स को ऐसा नहीं समझिए कि वो शत्रु हैं, उनके ताने भी अगर वो आपके लाइफ के लिए, मैं देखती हूँ कि आपका मोटिव अचीव करने के लिए कह रहे हैं, तो उनके ताने भी फूल हैं। आप उनके तानों को समझिए कि वो क्यों दे रहे हैं, वो आपको कुछ बनाना चाहते हैं, वो आपका बिगाड़ने के लिए ताना नहीं दे रहे हैं। माएँ कहेंगी घुसा रहे मोबाइल में, यू नो ना मोबाइल में घुसने से तो लाइफ में कुछ बनेंगे नहीं। लेकिन हाँ, आज टिकटॉकर भी बहुत सारे रील्स बना करके लाखों कमा रहे हैं,
1: राइट,
0: ठीक है ना। लेकिन जब आप लाखों कमा रहे होते तब तो नहीं वो ताना दे रहे,
1: नहीं,
0: ठीक है ना।
1: बोलते क्या मोबाइल पे घुसे रहते हो, लेकिन जब रील्स बना रहे, जब पैसे आते हैं और अच्छे क्रिएटिविटी के साथ रील्स बनाते
0: हैं। कॉमेडियन सेड सो कि पहले मैंने छुपाया था कि मैं कॉमेडी करता हूँ, तो मेरे मम्मी पापा को लगता था जॉब जाता है, और मैं जॉब जा भी रहा था। लेकिन जब कॉमेडी में पैसे आने लगे तो पेरेंट्स को जब मैंने दिया तो उन्होंने पूछा क्या करते हो आप, तो बोला मैं कॉमेडी करता हूँ। तो पेरेंट्स ने कहा कि कुछ भी करो, बस पैसे कमा रहे हो तो ठीक है। तो अब वो आ गए ना आपके ट्रैक पे, तो इट्स नेसेसरी कि यू आर प्रोग्रेसिंग। तो पेरेंट्स कहीं नहीं जाते, वो आपके साथ ही आएंगे।
1: जी जी बिल्कुल। तो अगर आपको विश्वास है अपने ऊपर और आप दृढ़ संकल्प रखते हैं तो आगे बढ़ते जाइए, सब एक्सेप्ट करेंगे आपको। तो दृढ़ संकल्प और जिद, तो इस दोनों में क्या अंतर है? जिद करके हम बहुत सारी चीज़ें अचीव करना चाहते हैं, लेकिन कई बार जैसे आप कह रहे थे कि असफल भी हो जाते हैं, मम्मी पापा की बात नहीं मानते, तो दोनों में क्या अंतर है और कैसे पहचाने?
0: जिद आप देखिए नेगेटिव है, और दृढ़ संकल्प उसका ऑपोजिट है, टोटली पॉजिटिव है, ठीक है ना। तो मेरी दृढ़ निश्चय कब जिद बन जाती है, तो ये कई बार मुझे नहीं पता चलता, लेकिन मेरा सराउंडिंग मुझे बताता है। क्योंकि जो जिद है वो इगोइस्टिक है
1: जी,
0: और जो दृढ़ संकल्प है वो नॉन इगोइस्टिक है। तो लोग मुझे बता देंगे कि आप, वो बोलेंगे पीठ पीछे भी बोलेंगे, मुंह पे भी बोलेंगे कि क्या है आपकी तो जिद है। तो ठीक है, एक ने कहा इट्स ओके, दो ने कहा इट्स ओके, लेकिन इफ एवरीवन इज सेइंग
1: ओके
0: तो फिर समझ जाइए कि मैं ये बहुत ज्यादा रिजिडनेस क्रिएट कर रहा हूँ अपने में,
1: अगर हर कोई वही सेम फीडबैक दे रहा है.
0: हाँ, सेम फीडबैक दे रहा है. दूसरा, आपको वो रिस्पॉन्स गलत दे रहे हैं, यानी उतना वो आपके साथ मधुर बिहेवियर नहीं है उनका. और आपको भी लग रहा है कि मैं अपनी चीज़ों को जो कर रहा हूँ तो उसमें मुझे निगेटिव ज़्यादा फील होता है. आपको भी होगा, लेकिन प्रॉब्लम बस यही होती है कि मुझे नहीं पता चलता है कई बार
1: जी.
0: तो आपका सराउंडिंग आपको बताता है, कुछ चीज़ें जो आपके साथ हो रही हैं वो आपको इशारा करती हैं कि जो ट्रैक है वो थोड़ा सा टिल्ट हो गया है
1: जी,
0: यानी पॉजिटिव से हल्का सा

0: नेगेटिव की ओर अग्रसर हो रहा है, तो चीजें आपको बताती हैं, लेकिन चाहिए महसूस करने की शक्ति। इतना ओपन माइंडेड बनिए कि अगर किसी ने व्यू दिया है तो उसके व्यू को आपने समझने की क्षमता होनी चाहिए, क्योंकि जहां दृढ़ संकल्प को लेकर आप आगे बढ़ना चाहते हैं उसके लिए आपका ओपन माइंडेड होना बहुत जरूरी है।
1: ओपन माइंडेड का एक्चुअली क्या डेफिनेशन है?
0: माना आपको हर चीज सुनकर समझने की क्षमता।
1: ओके
0: एक है कि मैंने बस अपनी जो कहते हैं ना कि बस लठ गाड़ दी कि खूंटा यहीं गड़ेगा, मींस मैंने जो कह दिया सो कह दिया, अब मुझे नहीं पता, अब मैं किसी की नहीं सुनूंगा, तो इट इज रिजिडनेस, ये जिद्दीपना है।
1: ओके
0: ओके तो ये चीज नहीं चाहिए। आपने लाठी यहीं गाड़नी है, ओके फाइन, लेकिन कोई एक व्यक्ति आया है कि बच्चे नीचे पत्थर है, आपकी लाठी ज्यादा गहरे में नहीं जाने वाली है, ठीक है, दूसरा व्यक्ति आया बोला कि यहाँ लाठी गाड़ोगे तो फलाना आ जाएगा, उल्टा लड़ाइयां होंगी
1: जी,
0: तो उनकी इन्फॉर्मेशन को मुझे समझना है। सिर्फ अपनी रिजिडनेस की मैं यहीं गाड़ू तो ये रिजिडनेस है
1: जी,
0: ठीक है, लेकिन उन्होंने कहा कि जो बातें बोली है वो इन्फो को आप समझिए, उनको टेक्निकली आप चेक कीजिए, लेकिन मैं सुन ही नहीं रहा हूँ, मुझे परवाह ही नहीं है, अब बोलते जाओ, मेरा दृढ़ संकल्प है कि मैं गाड़ूंगा, तो इट इज रॉन्ग।
1: ओके
0: ठीक है ना, तो ओपन माइंडेड मीन सबको मुझे देखना है, सुनना है, समझना है, टली करना है। ऐसा नहीं जो कह रहे हो कि भाई तुम गधे हो तो मैं स्वीकार कर रहा हूँ, नहीं स्वीकार मत करें
1: जी।
0: लेकिन चेक जरूर करें कि उन्होंने मुझे गधा बोला है तो किस बेसिस पे बोला है, व्हाट आई हैव डन रॉन्ग, मैंने कहा ऐसा नेगेटिव किया, चेक करना बहुत जरूरी है
1: जी,
0: तभी जो है एक टॉप पोजीशन पे बैठ पाएंगे, नहीं तो अगर अपने को चेक नहीं करेंगे, आप देखिए जो भी बहुत हायर लेवल पे है वो सुनते ज्यादा है और बोलते बहुत कम है।
1: अच्छा, लिसनिंग करना,
0: लिसनिंग पावर उनकी बहुत है, और लिसनिंग के लिए बोला गया है गोल्ड, और बोलने वाली पावर, टॉकिंग इज सिल्वर एंड लिसनिंग इज गोल्ड बोला गया है, तो मुझे सुनना है, सुन, हाँ मैं स्वीकार नहीं कर रहा हूँ लेकिन सुन जरूर रहा हूँ, समझ जरूर रहा हूँ। उन्होंने गधा बोला, मैंने स्वीकार नहीं किया कि मैं गधा हूँ, उनके कहने से मैं गधा नहीं बन जाता, लेकिन चेक जरूर करना है मेरे से क्या रॉन्ग हुआ।
1: ओके कई बार हम कहते हैं कि ओपननेस या ओपन माइंड का मतलब ये है कि आप हर किसी को एक्सेप्ट करो, या जैसे आपने कहा स्वीकार कर लो, जो जैसा कहा अच्छा ठीक है।
0: okay. मैंने कहा स्वीकार नहीं करना,
1: हाँ, नहीं करना
0: है। सुनना है,
1: हाँ, सुनना है,
0: हाँ,
1: पर हम ये समझ लेते कई बार, लेकिन ये नहीं है।
0: ओपन माइंडेडनेस अपना सबका अपना अपना मीनिंग है डेफिनेशन से, लेकिन जो मेरा डेफिनेशन है कि मैंने सुनना सबका है,
1: ओके,
0: समझना सबका है,
1: करना,
0: हाँ, करना जो सही है,
1: सही है,
0: हाँ, उसके लिए भी मैं टेली कर लूं, जो मेरे फ्रेंड सर्कल है, मेरे फादर मदर है, या जो भी मैं समझती हूँ कि इंटेलिजेंट है, उनसे मैं टेली कर लूं। मैं शायद इतनी इंटेलिजेंट नहीं हूँ कि ठीक है मैं सुन ली, समझ ली, बट मैं तो वही करूंगी, तो इट इज नॉट इंटेलिजेंट बना, इट इज लाइक रिजिडनेस। ठीक है, तो आप एक
1: सलाह भी लेना,
0: सलाह भी लेनी है
1: जी। ओके अभी हम बात करते हैं कि कई लोग लक्ष्य तय करते हैं लेकिन बीच में उमंग गुस्सा जो है वो खत्म हो जाता है। मान लीजिए मुझे चाय छोड़ना है, क्योंकि कई बार मुझे लगता है कि दूध जो है वो मेरे बॉडी को सूट नहीं होता, तो उसमें क्या करें? दृढ़ निश्चय भावना रखना है, अनुशासन रखना है,
0: दोनों ही चाहिए,
1: दोनों ही चाहिए,
0: दोनों ही चाहिए, क्योंकि अनुशासन बहुत जरूरी है, इसीलिए बच्चों को स्कूल में शुरू से, नर्सरी क्लास से इनफैक्ट घर से
1: जी
0: अनुशासन, बड़ों का पैर भी छूना है, ठीक है, लेकिन अनुशासन की बस ऐसे भाग लिए दौड़ घर से ही शुरू हो जाता है
1: जी।
0: दृढ़ संकल्प अपनी जगह है, उसके लिए बहुत जरूरी है, और हम देखते हैं कि मैं जो भी सोचती हूँ कि मुझे, जैसे अपने एग्जांपल लिया कि मुझे चाय छोड़ना है बिकॉज दूध मेरे लिए ठीक नहीं है बॉडी के लिए, तो वाकई में अगर मैं इस कंसेप्ट को माइंड को डाइजेस्ट करा देती हूँ कि दूध पीते ही नेगेटिव होता है, बाउलिंग सिस्टम गड़बड़ हो जाता है, या फिर डाइजेस्टिव सिस्टम मेरा ठीक नहीं होता है, वॉट एवर, इसको बहुत अच्छे से अगर मैं खिला देती हूँ तो ये हेल्प करता है।
1: okay.
0: तो मैं नहीं कहती कि एक दिन में छूट जाएगी, लेकिन अपने अंदर ये पक्का करिए कि मैं नहीं छोड़ रहा, ठीक है, नहीं छोड़ा जा रहा तो ओके, लेकिन कम तो कर सकता हूँ
1: जी,
0: तो एक स्टेप धीरे धीरे आगे बढ़ाइए। हम क्या एक बहुत बड़ा स्टेप फर्स्ट डे ले लेते हैं, वो किला हम सोच लेते हैं, अरे वाह इतना बड़ा किला बनाना है, मुझे छोड़ना है, ठीक है, तो एक दिन में किला नहीं बनता, ठीक है, छोटा छोटा स्टेप रखिए कि मैं, अच्छा मैं एक कप पीता था, अब मैं हाफ कप पीऊंगा या और पौना कप पीऊंगा, मैं एक चम्मच शुगर और एक चम्मच टी डालता था, लीव्स डालता था, अब मैं आधा आधा डालूंगा या पौना पौना डालूंगा, मतलब उसकी ना पावर को, इंटेंसिटी को कम कर दूंगा।
1: ओके
0: ओके फिर ऐसे धीरे धीरे धीरे आप बढ़े तो वो किला जो है वो फिर जल्दी बन जाएगा, अदरवाइज एक पूरा किला एक ही दिन में लेने की कोशिश में शायद दिक्कत आ सकती
1: है। कई बार दीदी ऐसा होता है कि हम ना बहुत सारे ट्रिगर्स के बीच में रहते हैं, फ्रेंड सर्कल में रहते हैं, और फ्रेंड्स के साथ मिलके क्या करेंगे, चाय पियेंगे, बातें करेंगे, तभी बॉन्डिंग स्ट्रांग होती है, ऐसे कहते हैं।
0: हाँ, आज का तो यही है।
1: और बाकी थोड़ा एक्सट्रीमिटी में जाते हैं तो लोग बोलते हैं कि साथ में बैठ के दारू पी लीजिए, अल्कोहल की सेवन करते हैं लोग। तो उन ट्रिगर्स को कैसे समाप्त करें अपने मन से भी, मतलब ट्रिगर्स होते हुए भी हम ट्रिगर ना हो, वो कैसे करें?
0: तो आज का तो यही बहुत ज्यादा है, ठीक है। इनफैक्ट मैं अभी कहीं थी और उन्होंने कहा, शी इज क्वाइट, शी केम फ्रॉम जर्मनी एंड बहुत अच्छा है वो प्रोफेशन में, तो शी सेड कि आज की डेट में अगर हम पीते नहीं है मीन्स अल्कोहल, तो आई एम नोवेयर, शी सेड सो, ठीक है। बट मेरा ये मानना है एक दिन ऐसा आएगा कि जो ये बोलेगा ना कि मैं नहीं पीता, तो लोग उसको बहुत अप्रिशिएट करने वाले हैं, ठीक है। ये दिन आएगा और बहुत जल्दी ही आएगा, क्योंकि आज समाज में ये अल्कोहल ऐसे घुल गया है जैसे खून बॉडी में होता है ना, ऐसा अल्कोहल हो गया है। और अल्कोहल एक फैशन हर जगह बन चुका है, चाहे वो बर्थडे पार्टीज है। मैंने सुना एक 2 साल का बच्चा, 2-4 साल में भी होगा उसका बर्थडे है, लेकिन अल्कोहल इज देयर। अब वो बच्चा क्या देख रहा है, ठीक है, वो तो ये देख रहा है कि मेरे होटल में मेरा बहुत बढ़िया सा बर्थडे मनाए, बट अल्कोहल इज देयर, ठीक है। तो ठीक है, आज आपने उसे नहीं दिया बिकॉज ही इज इन योर कंट्रोल, 4 साल का बच्चा तो मम्मी पापा के कंट्रोल में है, लेकिन जब वो 14 का होगा तो वेयर वुड ही स्टैंड,
1: जी,
0: ठीक है ना। और मैं तो एक मेरा खुद का एग्जाम्पल है, सिस्टर है एक नोन है, वो मतलब तो पहाड़ों की है, तो कहती दादी हमें दिया करती थी कि बीड़ी सुलगा के ले आओ, तो हम 1-2 सुट्टा मार के उनको दिया करते थे
1: जी।
0: तो कहाँ से मारा, क्यों मारा, बिकॉज दादी मार रही है, तो दादी ने दिया कि जला के लेके आओ, पी के लेके आओ नहीं बोला है। लेकिन बड़ों में अगर ये सेंस हो कि अगर बच्चों को दे रहा हूँ तो बच्चा क्या ही करके रास्ते तक आएगा, इनफैक्ट वो जान भी रही है कि ये छोटी कैसे हो गई, तो बच्चा कहता है जलाते लाते लाते जल गई,
1: झूठ भी बोलने लगा।
0: हाँ, तो किसको क्रेडिट देना चाहिए, बच्चे को नहीं, बड़ों को। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा पिए तो फिर ठीक है, कैरी ऑन द बिजनेस, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि नहीं, ठीक है, एक टाइम आएगा, या मैं तो कहूंगी कभी भी नहीं पिए, इट्स नॉट अ गुड थिंग, ये हमारे भारत का कल्चर नहीं है, ठीक है, इट केम फ्रॉम आउटसाइड, और इसीलिए हम सभी चीजें जो कर रहे हैं वो गड़बड़ गड़बड़ कर रहे हैं। तो जो बाहर की है वो
1: एनवायरमेंट को भी सूट नहीं होता,
0: क्योंकि बाहर ये नेसेसिटी शायद बन गई है बिकॉज ऑफ द टेम्परेचर, ठीक है। हमारे भारत में ऐसा कुछ नहीं है, इतना टेम्परेचर आईसी वो नहीं है जो हमें इसकी एक नेसेसिटी हो, ठीक है। तो हम चीजों को समझें, क्या चीज जरूरी है, और मेरा बच्चा, खास मेरा बच्चा, मेरी फैमिली, वो क्या हो रहा है। लोग बड़े खुश होते हैं, मैं तो अपने बेटे के साथ बैठ के पीता हूँ, तो बहुत अच्छी बात है, आप बेटे के साथ बैठे पीते हैं तो पोता क्या दिख रहा है, वो क्या देखेगा, या जो आने वाले बच्चे हैं वो क्या देखेंगे। बड़ी हैप्पी फैमिली है, दोनों बैठ के पी रहे हैं, लेकिन बाकी लोग क्या सोच रहे हैं, क्या करेंगे, वो भी पियेंगे, ठीक है। तो हमें अपने को रोकना होगा, इफ आई वॉन्ट चेंजेस इन द कमिंग जनरेशन देन आई हैव टू चेंज माई सेल्फ,
1: जी। लेकिन कई बार मन साथ नहीं देता है, क्योंकि मन हो जाता है, हम कंट्रोल नहीं कर पाते, सिर्फ अल्कोहल की बात नहीं है, बहुत सारी चीजें जो हमने दृढ़ संकल्प रखा है शायद उसमें भी हम गड़बड़ कर देते हैं, मन में उमंग उत्साह कम हो जाती है या कंट्रोल नहीं कर पाते, तो कैसे करें?
0: वही सारी चीजें जुड़ी हुई है, एक दिन में किला नहीं बनेगा,
1: स्टेप बाय स्टेप,
0: स्टेप बाय स्टेप, एक छोटे छोटे बेबी स्टेप्स लीजिए, ठीक है। जैसे जिनको छुड़ाया जाता है, जो वहाँ जाते हैं ट्रेनिंग सेक्टर सेक्शंस में भी जाते हैं, जिनको अल्कोहल ड्रग्स वगैरह छुड़ाई जाती हैं, एक दिन में उन्हें ड्रग्स बंद नहीं करते, वो ड्रग्स देते हैं, लेकिन एक लिमिटेड अमाउंट में देते हैं, और धीरे धीरे उस लिमिट को भी कम करते चले जाते हैं, इस तरीके से उनकी ड्रग्स छुड़ाई जाती है। तो हम भी अगर छोड़ना चाहते, इट्स ऑल अबाउट द दृढ़ संकल्प, अगर मैं छोड़ना चाहता हूँ, जैसे कितने ही आते हैं आश्रम में, आते हैं हमारे सेंटर्स पे आते हैं, एंड दे वांट टू लीव इट बट दे आर नॉट एबल टू,
1: जी,
0: ठीक है। तो आपको उसके लिए पहले अपने आप को चैप्टर्स देने होंगे कि मैं छोड़ना क्यों चाहता हूँ,
1: क्योंकि क्वेश्चंस पूछना,
0: हाँ, क्यों मेरे को इफेक्ट कर रहा है, मेरी बॉडी को इफेक्ट कर रहा है, ठीक है, चलो ठीक है। दूसरा मेरा बच्चा, ये भी तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा वो पैसा जो मैं इनमें स्पेंड कर रहा हूँ, मैक्सिमम लोग यही कर रहे हैं, अगर वो मैं घर में देता हूँ तो घर की चीजों में और बरकत होती है, चाहे वो किसी सेंस में आपने खाने पीने की चीजों में खर्च कर लिया, बच्चों के लिए आप रसगुल्ले ले आए उसी पैसों से, तो बच्चे कितने खुश हैं, ठीक है, नहीं तो आपने उनके लिए सेविंग कर दी, चलिए मत खिलाइए रसगुल्ला
1: जी,
0: डेली मत लाइए कुछ भी, लेकिन आप उसे अमाउंट को सेव कर दीजिए
1: उनके फ्यूचर के लिए,
0: पढ़ाई के लिए। कभी भी मंथ में उनका कुछ ना कुछ करिकुलम एक्टिविटीज होता है, वहां खर्चा पड़ जाता है, और जब पैसे बचे होंगे तो डोंट हैव टू थिंक मच। ठीक है, तो पहले मुझे अपने आप को कुछ चैप्टर्स देने होंगे, कुछ अपने लाइन्स बनाने होंगे, व्हाई आई वांट टू लीव इट, और उसको जब मैं इतना अच्छे से समझ जाऊंगा, ये मेरी ही तैयारी होगी
1: जी।
0: बाहर की दुनिया पूरी लगी रहे, लेकिन जब तक मैं नहीं छोड़ना चाहती, वो मुझसे नहीं छुड़ा सकती। दिस और दैट वे आई विल गेट माय अल्कोहल, ठीक है। लेकिन मैंने अगर पक्का कर लिया कि यहाँ यहाँ यहाँ यहाँ चार पॉइंट्स हैं जो मेरे को नहीं पीना चाहिए, फर्स्ट डे नहीं छोड़ूंगा, इट्स वेरी मच ओके एंड अंडरस्टूड कि नहीं छूटता है। पीयर प्रेशर पड़ जाता है कि दोस्तों के बीच बैठ गए, मैंने कहा नहीं पीता हूँ, अरे थोड़ी तो पी लो, कल तक तो पूरी बॉटल पी रहा था, आज क्या हो गया। तो दे विल टॉक लाइक इट बिकॉज आप पीते थे एंड दे आर नॉट रॉन्ग, तो पिलाएंगे ही। लेकिन आप कुछ दिन के लिए या तो सर्कल को अवॉइड करें जब तक कि आप इतने एम्पावर हो जाएं कि उनको फेस कर सके, ठीक है। और अगर आप इतने एम्पावर नहीं है तो मैं तो यही कहूंगी कि उनको थोड़ा दिन अवॉइड ही करें, यही सबसे बेस्टेस्ट जो तरीका हो सकता है। उस पार्टीज में नहीं जाएं जहां अल्कोहल है, क्योंकि आई एम नॉट एबल टू कंट्रोल माई सेल्फ। जब मेरे को आ गया कि मैं अब चार पेग नहीं, सिर्फ एक पेग पे मैं कंट्रोल कर पा रहा हूँ, देन यू कैन ज्वाइन इट, लेकिन फिर भी बहुत गैप में, क्योंकि फिर वो हैबिट बनवा देंगे, ठीक है ना। तो ये अवॉइड करना पड़ेगा, अपने आप को रोकना पड़ेगा, सारी चीजों को छोड़ना पड़ेगा, फ्रेंड्स हैं, पार्टीज हैं,
1: थोड़े टाइम के लिए किनारा करना पड़ेगा,
0: अदरवाइज ये चीजें नहीं छूटती हैं।
1: तो ये सारे स्टेप्स हैं जिसमें आप अपने आप को दृढ़ता के साथ आगे बढ़ा सकते हैं आप जी। दीदी, अभी हम बात करना चाहेंगे आपसे कि जो ऑफिसेस हैं, कार्यस्थल जहाँ पे हम कार्य करते हैं, वहाँ पर कई बार हमारे मेहनत का श्रेय किसी और को चला जाता है। कई बार हमें सब कुछ करने के बाद प्रमोशंस नहीं मिलते हैं, फिर स्ट्रेस है, उसके उस बीच में लक्ष्य पर टिके रहने का क्या तरीका है, सकारात्मक खुद को कैसे रखें और फिर दृढ़ता के साथ
0: कैसे आगे बढ़े। तो पक्का है कि आपको उसी जॉब में रहना है, पहले तो यही पक्का कर लीजिए, क्योंकि मुझे कुछ भी नहीं मिल रहा, ना प्रमोशन मिल रही है, ना फिर कोई इस तरह से मेरे को इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीमेंट, कोई भी चीज ऐसा नहीं हो रहा है,
1: तो स्विच करने की जरूरत है कि नहीं, हाँ, वो भी सोचना। हाँ,
0: क्योंकि दृढ़ता का मतलब ही है कि मुझे वहीं टिकना है, कोई भी जो आपने सोचा है। तो अगर पक्का है कि मुझे यहाँ टिकना है बिकॉज ऑफ मेनी थिंग्स, इट कैन बी अकॉर्डिंग टू योर लिस्ट कि बेस्टेस्ट कंपनी है, टाइम लगाती है लेकिन इससे बेस्ट कंपनी मुझे नहीं मिलने वाली है,
1: टाइम टू टाइम घर जाते हैं,
0: हाँ मुझे अपना हॉलीडे, अपना मैं घर मैनेज कर लेता हूँ इस जॉब के साथ, फॉर एग्जाम्पल टीचिंग जॉब, तो वाई गर्ल्स डू दैट, क्योंकि उनको लगता है मैं हाफ ऑफ द डे आई कैन स्पेंड विद माई फैमिली, मैं घर भी मैनेज कर सकती हूँ, दैट्स व्हाई दे जॉइन इट। हालांकि टीचिंग जॉब इज नॉट सो ईजी जो हमें दिखती है, इट इज अ टफेस्ट,
1: प्रिपरेशन चाहिए
0: बहुत, लेकिन मुझे पता है कि ये मेरे लिए गुड इसलिए है क्योंकि मेरा और भी चीजें जो है वो पार्लर में गुड हो रहा है। तो पहले तो अपने आप को ये पक्का कर लीजिए कि हाँ यही मुझे रहना है, ये बहुत जरूरी है। अगर आपको ये पक्का नहीं है देन यू कैन गो ऑन, आप चेंज करें, लेकिन अगर मुझे पक्का है कि हाँ मुझे करना ही है, तो इंक्रीज योर एफिशिएंसी,
1: ओके,
0: फिर अपने पे काम करें, फिर अब बाहर नहीं कुछ करना है, कुछ ढूंढने या करने की जरूरत नहीं, अपने पे काम करना है कि मुझे मेरा क्रेडिट नहीं मिला, मुझे मेरा प्रमोशन नहीं मिला, मुझे लोगों का जो भी मुझे मिलना चाहिए था वो नहीं मिला है, लेकिन मैं अब इससे कुछ ऐसा आगे करूं जो मिले, तो उसके लिए मैं क्या करूं, वो पहले आप सोचें कि क्या करना है, और पॉजिटिव सेंस में ही सोचें तो वो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि वो लॉन्ग टाइम के लिए आपके साथ रहेगी
1: जी।
0: अगर नेगेटिव सेंस में कुछ करते हैं तो वो शॉर्ट टर्म पीरियड का होता है,
1: ओके,
0: तो इसलिए मैं पॉजिटिव सोचूं और अपने लिए ही कुछ एफिशिएंसी को या किसी भी तरीके से अपना लेवल जो बढ़ाने का है, मैं कोई कोर्स ज्वाइन कर सकता हूँ जिससे मेरा लेवल, या मैं एग्जाम्स दे सकता हूँ, जैसे गवर्नमेंट जॉब्स होते हैं तो उसमें एक आता है कि आप और फर्दर एग्जाम्स देते हैं तो यू कैन आगे आप प्रमोट हो सकते हैं। तो मैं अगर मुझे अभी नहीं मिला है तो कभी नहीं मिलेगा, ये कहाँ लिखा है,
1: ओके, मतलब अप्रिसिएशन में भी ऐसा ही है, आप काम कर रहे हो आपको अप्रिसिएट नहीं किया जा रहा है, तो वो दृढ़ संकल्प और हैप्पीनेस वो कम हो जाती है,
0: बिल्कुल कम हो जाती है, ये मैं मानती हूँ। लेकिन यही बात याद रखिएगा कि क्या किसी और की अप्रिसिएशन की वजह से मैं जिंदा हूँ,
1: नहीं
0: नहीं। जंगल में जब फूल खिलता है उसे कोई नहीं देख रहा है, कोई भी नहीं, बट स्टिल वो खिल रहा है, अपनी पूरी ब्यूटी के साथ खिल रहा है, उसने उतने ही रंग बिखेरे हैं, उतनी खुशबू बिखेरी है, लेकिन उसे कोई नहीं देख रहा है, ठीक है। मैं भी फूल हूँ, एनर्जेटिक हूँ, बहुत अच्छा हूँ, आज मुझे कोई नहीं देख रहा है, ओके फाइन, हैव अफर्मेशंस कि आई विल प्रूव इट कि आई एम द बेस्ट.
1: ओके, हमारे जंगल में भले फूल खिल रहे हैं लेकिन हमारे इकोसिस्टम के लिए वो उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना गार्डन में फूल खिलते हैं.
0: बिल्कुल बिल्कुल, आपने बहुत सही बात की है कि एक फूल का खिलना भी इस नेचर में कहीं ना कहीं जरूरी है
1: जी,
0: उसको बैलेंस करने के लिए. तो मैं यहाँ हूँ तो मैं हूँ क्योंकि फिर कोई ना कोई चीज मैं कर रहा हूँ जिसके लिए वो उनको मेरी जरूरत है.
1: मेरी हैप्पी रहना भी बहुत
0: ये मेरे लिए बहुत जरूरी है. काम तो मैं कर ही रहा हूँ ना, तो खुश रहकर करने में प्रॉब्लम क्या है?
1: अपने आप को समझाना है. हाँ, समझाना या
0: समझाना नहीं है, ये करना ही है.
1: करना ही है
0: कि जब करना ही है तो रो के क्यों करूँ, हंस के भी तो कर सकता हूँ. उन्होंने आज मुझे प्रमोट नहीं किया है लेकिन अगर मैं अपना EQ बैलेंस रखता हूँ, आज बड़ी कंपनीज में EQ बहुत काउंट होता है, इमोशनल क्वेश्चन, यानी इमोशनली हाउ स्ट्रॉन्ग यू आर
1: जी.
0: अगर आप उस चीज को बैलेंस कर पाते हैं तो क्या पता, क्योंकि आपने अपने अंदर अफर्मेशंस दिए हैं फॉर द सक्सेस, गुड थिंग्स, पॉजिटिविटी, और आप मुस्कुरा रहे हैं, यू आर डूइंग योर वर्क. कौन सा मिरेकल, इस दुनिया में तो मरे भी जिंदा हो जाते हैं
1: जी,
0: ठीक है ना. तो आप तो बहुत जिंदा हैं, बहुत अच्छी कंपनी में हैं, बहुत कमा रहे हैं, हेल्थ वाइज बहुत अच्छे हैं, आपके आगे स्कोप ही स्कोप है. ये आप पक्का अंदर कीजिए, आज नहीं मिला है कभी नहीं मिलेगा ऐसा नहीं है.
1: नहीं, कई बार हम दृढ़ संकल्प रखते हैं और पढ़ाई करते हैं, मेहनत करते हैं, अचीव भी कर लेते हैं. इन जनरल मैं पूछना चाहूँगी, जब PI की बात आती है तो कई बार लुक्स में मात खा जाते हैं, कई बार इंग्लिश में मात खा लेते हैं, फिर हम अपने कॉन्फिडेंस लूज कर लेते हैं. तो उस सिचुएशन में कैसे अफर्मेशंस रखना चाहिए?
0: PI
1: पर्सनल इंटरव्यू.
0: ओके ओके ओके, तो लुक्स में मात खाया और किस में मात खाया?
1: लुक्स में, इंग्लिश में, लैंग्वेज में,
0: ये दो बेसिस आपने लिए हैं. ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका. खास जैसे जब हम खास इंटरव्यूज देते हैं और लुक्स में हम नहीं हैं, लेकिन हमने बहुत सारे IAS ऑफिसर्स को देखा है, कंपनी के मालिकों को देखा है
1: जी.
0: लुक्स में जीरो है लेकिन स्टैंडिंग स्ट्रांग, बहुत बहुत शानदार खड़े हैं. तो लुक्स आर नॉट एवरीथिंग. हम देखते हैं लुक्स बहुत आगे अप्रिशिएट किए जाते हैं, जो बहुत सुंदर दिख रहा है उसको प्रेफरेंस बहुत जल्दी मिलती है, अप्रिसिएशन बहुत जल्दी मिलता है, लोग उसकी तरफ देखना पहले स्टार्ट कर देते हैं. लेकिन मैंने ये भी देखा है कि जो सुंदर नहीं है, इस लैंग्वेज में अगर मैं कहूँ, सुंदर तो हर कोई है, भगवान ने अगर बनाया है तो कुरूप कोई नहीं है, सुंदर हर कोई है. और आज की डेट में तो ब्लैक ब्यूटी भी है जो बहुत टॉप लेवल पे है.
1: हाँ, बहुत तो सारे मिस इंडिया, मिस वर्ल्ड कॉम्पिटिशन्स
0: भी. हाँ, तो ब्लैक कलर को भी बहुत आज की डेट में अप्रिशिएट किया जाता है. हैव प्राउड ऑन योरसेल्फ. मुझे मेरी ही चीजों पे शक है तो फिर मैं आगे क्या करूंगा. जो भगवान ने मुझे दिया है, फॉर एग्जाम्पल, आई एम हैविंग अ वेरी शॉर्ट हाइट, ठीक है, तो ऑफकोर्स यू कैन अज्यूम कि लोगों का, मैं दिखती ही नहीं हूँ जब भीड़ में होती हूँ, तो एवरीबॉडी सेज आप कहाँ हो, तो आई से प्राउडली कि मुझे देखने के लिए नजरें झुकानी पड़ती है
1: जी.
0: तो हैव समथिंग फॉर योरसेल्फ कि मैं काली हूँ तो क्या हुआ, दिल वाली हूँ. हैव समथिंग फॉर योरसेल्फ, डोंट फील डाउन. आपको बनाया है, आप गुणों को तो बढ़ा सकते, कलर को नहीं कर सकते. ओके फाइन, ठीक है ठीक है, बहुत सारी चीजें आ गई हैं, मेलानिन को हम कम कर सकते हैं, गो फॉर इट इफ यू कैन. लेकिन उससे भी कहीं ज्यादा आपके अंदर अगर वो कॉन्फिडेंस है, आपके अंदर वो पावर है, वो एनर्जी है, वो गुण है, तो आप बहुत आगे, अपने कलर को बहुत पीछे छोड़कर आगे बढ़ सकते हैं
1: जी.
0: और इंग्लिश अगर स्ट्रांग नहीं है तो ठीक है, मैं समझती हूँ आज के MNCs में ना प्रॉब्लम्स तो आती हैं, तो इंग्लिश के लिए तो बहुत सारी चीज़ें हैं, ऐप्स भी हैं, सीखो आप, बहुत सारी चीज़ें. आई एम नॉट प्रमोटिंग एनीथिंग, ठीक है, लेकिन सीखो सीखो, लाइफ इज टू सीखो, ठीक है, इसलिए सीखो. ठीक है, छोटा छोटा इंग्लिश सीखो, बड़ा एक दिन बन जाता है. और मैं जो मानती हूँ, पूरी इंग्लिश तो कहीं कोई नहीं बोल रहा भारत में, जो बोले कॉन्फिडेंस के साथ बोले, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. आप इंग्लिश हिंदी मिक्स करें, ठीक है, मिक्स करके अपना बोलना शुरू करें, लेकिन जो बोले कॉन्फिडेंस से बोले. आज आप देखिए, कई हैं जो फॉरनर्स मेनली मैं देखती हूँ, दे वॉक इन बरमुडास विद चप्पल्स
1: जी,
0: लेकिन कॉन्फिडेंटली
1: जी,
0: उनका कॉन्फिडेंस देखिए, ठीक है, बनियान में है, बनियान पहनी हुई है, लेकिन कॉन्फिडेंस. कॉन्फिडेंस इज इम्पॉर्टेंट, नॉट योर आउटफिट, नॉट योर कलर, नॉट योर लैंग्वेज. आप कॉन्फिडेंट हैं, वो कंपनी देख रही है. ठीक है, आप इमोशनली बहुत स्ट्रांग है, वो कंपनी आपको मेजर करने वाली है. और हायर लेवल में तो ये सारी चीज़ें जो हायर कंपनीज हैं जो मैं देखती हूँ वो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंस देती हैं कि आपका EQ कहाँ है, कितना है, आप कितना बैलेंस्ड रहते हैं, आपका कितना अच्छा बोलने का कैपेसिटी है. इफ़ इट इज़ नॉट इन इंग्लिश देन मेरा हिंदी कितना स्ट्रांग है. मैं बोलते सामने आपको देखते ही मेरा शटर हो गया, हिंदी भी शटर हो गया. तो इट्स ना, तो फिर यानी फिर इंग्लिश तो आप भूल ही जाइए. आप बोल ही नहीं पा रहे हैं तो पहले अपना बोल सुधारें. जैसे बचपन में कहते हैं शीशे के आगे बोने, जोर जोर से पढ़ करके बोने, न्यूज़पेपर पढ़ें. ठीक है, तो इस तरीके से आप शुरू कर सकते हैं. आपका स्पीकिंग एबिलिटी शुड बी गुड,
1: मतलब दृढ़ संकल्प के साथ स्किल्स को भी बढ़ाएं.
0: हाँ, स्किल्स को भी बढ़ाएं, ये बहुत जरूरी है.
1: ओके जी, इस कार्यक्रम से विदा लेने से पहले एक आखिरी सवाल कि अगर हम दृढ़ निश्चय को मजबूत करना चाहते हैं और निखारना चाहते हैं, सबसे पहला कदम क्या लेना चाहिए?
0: टॉक टू योरसेल्फ, अपने से बात करें.
1: ओके.
0: क्योंकि मुझे ही करना है जो करना है. बाहर वाले मुझे आइडियाज देने वाले हैं, बाहर वाले मुझे गिराने वाले भी हैं, बाहर वाले मुझे अप्रिशिएट भी करेंगे, लेकिन मेरे ही कदमों पे तो करेंगे जो करेंगे जो मैंने कदम लिया है. तो टॉक टू योरसेल्फ, व्हाट वुड बी माय नेक्स्ट स्टेप, मुझे क्या करना है. तो मेरी मेरे से बात होना ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट.
1: मी टाइम,
0: मी टाइम, यस, वेरी नाइस वर्ड, मी टाइम. आई हैव कॉन्फिडेंस ऑन माई सेल्फ, आई हैव फेथ, आई शुड हैव फेथ ऑन माई सेल्फ. मुझे मेरे पे विश्वास होना चाहिए. जब मेरे को मेरे पे ही विश्वास नहीं है तो लोगों पे क्या होगा, या लोग मेरे पे क्या विश्वास करेंगे, मेरे को खुद पे ही नहीं है. तो ये मी टाइम बहुत जरूरी है, मुझे मेरे लिए जीना है पहले.
1: अगर मैं बार बार हार खाती हूँ तो मेरे पे विश्वास तो उठ ही जाता है, फिर खुद को कैसे समझे, क्या मतलब कैसे देखे कि मेरे अंदर कुछ है अच्छा ही कि नहीं.
0: वही मैंने जो कहा कि अगर हार हो रही है तो ये मुझे सिखाने के लिए हो रही है, लेकिन सदा ही हार नहीं होने वाली.
1: तो अलग अलग तरीका देखें.
0: हाँ, बिल्कुल बिल्कुल. हार आपके पास आती है आपको हराने के लिए, मारने के लिए नहीं आई है,
1: कुछ सिखाने के लिए.
0: सिखाने के लिए आई है, लेकिन आप उसको सीखने के अंदाज से देख रहे हो या आप उसको हार ही देख रहे हो, ये इम्पोर्टेंट. आपका नजरिया इज इम्पोर्टेंट. आप 4 बार फेल हुए हैं लेकिन फिर भी मेरे अंदर एक निश्चय है. ठीक है, जैसे अभी मुझे कोई हमारे एक ओम शांति रिट्रीट सेंटर है दिल्ली में, गुड़गांव में, तो वहाँ मुझे एक यूथ मिले और वो कहते हैं कि मेरे पास इतना फेलियर्स है, इतना फेलियर्स है, आई वॉज इन डिप्रेशन. तो उन्होंने कहा कि माई मम्मा गोज इन ब्रह्म कुमारीज, तो मैंने भी सोचा चलो मैं चल कर देखता हूँ. तो आई एम फीलिंग क्वाइट ओके राइट नाउ, मैं बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ, डिप्रेशन से बाहर आ चुका हूँ, अभी भी मैं सक्सेसफुल नहीं हुआ हूँ. He said so, कि मैं अभी भी सक्सेसफुल नहीं हुआ हूँ, लेकिन अब मेरे अंदर फिर से वो विश्वास आ गया है कि हाँ मुझे करना है और सक्सेस को हासिल करना है.
1: करना है.
0: तो बी लिटिल स्पिरिचुअल. आपको स्पिरिचुअलिटी इज हैविंग ट्रिमेंडस एनर्जी. वो पत्थर को पारस करने की शक्ति रखती है. तो मैं तो बहुत एक अजीज या भगवान का बहुत नियरेस्ट बच्चा हूँ, प्यारा बच्चा हूँ. उसने मुझे धरती पे नहीं फेंका है, उसने मुझे धरती पे भेजा है.
1: जी,
0: अब हमेशा यही कहते हैं ना, भगवान ने भेजा है. तो भगवान ने मुझे भेजा है, फेंका नहीं है. तो मैं कुछ करने के लिए ही मुझे भेजा है. भेजा माना कुछ करने के लिए. तो मेरे डेस्टिनी में है. हाँ, वो पेजेस बहुत पीछे हैं और अभी मुझे उन्हें टर्न करने है.
1: करना है. कई बार क्या हमारे लक्ष्य को हमें फिर से रिवाइज करके देखना है और चेंज भी करना चाहिए?
0: करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए. आपको देखना है कि क्या चीजें मेरे से नेगेटिव हो रही हैं और चीजें कहाँ से कैसे जोड़ी जा रही हैं. तो कई बार हम देखते हैं कि जैसे जो इंजीनियर होते हैं वो किसी लाइन को ज्वाइन करते हैं लेकिन जॉब किसी और लाइन में लगती है. मेरा लौकिक भाई है जो मेरे बायोलॉजिकल ब्रदर है, तो ही वॉज इन डिफरेंट लाइन एंड नाउ ही इज डूइंग डिफरेंट जॉब.
1: लाइक हम इंजीनियर की पढ़ाई करने के बाद अब रेडियो
0: रेडियो में है, है ना. तो इस ऐसा नहीं है कि चेंजेस लाइफ में आएंगी ही.
1: जी.
0: आपकी डेस्टिनी में है जो ना, वो आपको उस तरफ खींच रही है. तो वहाँ आपके कम नंबर हैं या वहाँ आप फेलियर हैं या यहाँ गड़बड़ हो गई है, लाइफ की डेस्टिनी में जो है वो आपको खींच रही है, वहाँ जीरो कर रही है ताकि आप इधर आ सकें.
1: ओके. तो इसलिए आपको रिवाइज करना भी
0: जरूरी है.
1: तो यहीं पर रुकते हैं हम. आज का कार्यक्रम आपको कैसा लगा आप हमें कॉल करके या मैसेज करके बता सकते हैं. 94-14-15-14-15. थैंक यू सो मच प्रिया दीदी, आपका
0: ओम शांति. थैंक यू सो मच, आपका भी और हमारे लिसनर्स का भी. थैंक यू,
1: धन्यवाद.
2: ये तंबाकू क्या होता है?
3: अरे तिकुनी पता क्या, इसमें पता है लोग धुएं में अपनी फिक्र उड़ा देते. अरे गाना नहीं सुना क्या तूने?
4: हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया.
2: अच्छा, तो फिर मेरे नंबर कम आए तो क्या मैं भी ऐसा कर सकता हूँ?
3: अरे कोई भी कर सकता है, तंबाकू तो बड़ा ही कूल होता है।
4: ऐसी बातें बचपन में होती हैं, युवावस्था में या और बड़े होने के बाद भी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि तंबाकू या धूम्रपान व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य के साथ शारीरिक सेहत पर बहुत बुरा असर डालता है। बीड़ी, सिगरेट, गुटखा इत्यादि के सेवन से कई तरह की बीमारियां हो सकती हैं। धूम्रपान करने से

धमनियां कमजोर होने लगती हैं और कोरोनरी हार्ट डिजीज या स्ट्रोक भी हो सकता है। सलाह लीजिए डॉक्टर की और हिम्मत बढ़ाइए अपनों की। रेडियो मधुबन द्वारा जानकारी जनहित में जारी।

0: जी नमस्कार, आप सभी का स्वागत है बातें मुलाकातें इस कार्यक्रम में। आशा करता हूँ आप बिल्कुल हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे। आइए आपकी खुशी को बढ़ाने के लिए आज हम लोग विशेष टॉपिक पर बात करते हैं, पर्सनल फाइनेंस मैनेजमेंट के बारे में। फाइनेंस मैनेजमेंट को लेकर अलग अलग विषय को हमने क्लियर किया है, बच्चों के लिए क्या हो सकता है या प्रॉपर्टी का डील करते वक्त एग्रीमेंट की बात होती है वो सारी चीजें, और शेयर मार्केट की बातें भी हमने की है। तो आज हम लोग देखेंगे कि विल विल जैसे करते हैं, वसीयत नामा जिसको, उसके ऊपर शायद आज बात होगी। तो हमारे साथ आज विशेष बी के ब्रह्म कुमार ललित भाई हमारे साथ है, और आप ब्रह्म कुमारी इसके विशेष अकाउंट डिपार्टमेंट को हैंडल करते हैं और बहुत सारे संस्थाओं के आप ट्रस्टी भी हैं। तो बड़ा अच्छा लगता है जब भी आपको सुनते हैं, तो आपके इस फाइनेंस को समझाने के पीछे या फाइनेंस पे जब आप बात करते हैं तो कहीं ना कहीं उसमें एक स्पिरिचुअल टच है, और परमात्मा का जो वे ऑफ उनका जो लाइफस्टाइल हमको दिया है उस लाइफस्टाइल में हम अपने फाइनेंस को कैसे देखते हैं वो सारी बातें आप बताते हैं। और बड़ा अच्छा लगा मुझे, पिछली बार भी आपने कहा कि मुझे जो ईश्वर के माध्यम से जो श्रीमत मिला हुआ है उस अनुसार मैं चीजें बताऊंगा, दुनिया के हिसाब से नहीं। तो ये मुझे बड़ा अच्छा लगा कि कहीं ना कहीं एक स्पिरिचुअल वे में आप इस विषय को लेकर बातचीत करेंगे, तो और एक नया जो है लाइफस्टाइल के बारे में और फाइनेंस के बारे में दोनों चीजों का एक विजन हम सभी को मिलने वाला है। तो आइए, ललित भाई का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में, और साथ में शिवा भाई भी हैं, इनका भी बहुत बहुत स्वागत है। शिवा भाई कैसे हैं आप?
1: मैं ठीक हूँ रमेश भाई जी, आज मुझे भी बहुत खुशी है कि हम ऐसे एक ऑथोरिटी जो काफी अनुभव भी है और इस फील्ड में उनकी काफी एक्सपीरियंस है, तो वो हमें कुछ बात शेयर करेंगे। मेरे ख्याल से क्वेश्चंस पुट करते रहे, उनको भी काफी जानकारी मिलेंगे। थैंक यू रमेश भाई, हम सबको एक प्लेटफॉर्म में इकट्ठे कर।
0: जी जी जी, तो आइए अब ललित भाई से मैं सीधे जुड़ना चाहूंगा थोड़ी देर के लिए, और मैं चाहूंगा कि अभी वर्तमान में ललित भाई जी आप कहां पर है थोड़ा वहाँ के बारे में बताइए।
2: वैसे तो हमारे आज के सभी दर्शकों को और श्रोताओं को ओम शांति।
0: ओम शांति।
2: मुझे भी बहुत खुशी है कि इस शो के माध्यम से आपसे मिलन मुलाकात करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। आज के अभी समय तो मैं आबू रोड शांतिवन में ही हूँ, और यहीं से जो ब्रह्मा कुमारी का इंटरनेशनल हेडक्वार्टर है यहीं से बैठकर अपनी सेवाएं भी दे रहा हूँ और आपके साथ अभी जुड़ा हुआ भी।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। या शिवा भाई, मैं चाहूंगा कि कुछ प्रश्न जो आप विचार कर रहे हैं मैं चाहूंगा कि ललित भाई से जरूर पूछिएगा।
1: थैंक यू रमेश भाई जी, आज थोड़ा ये टॉपिक थोड़े काफी गंभीर है, इसमें कई लोग इस बातों पे फंस जाते हैं, चाहे प्रॉपर्टी डील हो, रियल इस्टेट डील हो, वसीयतनामा जैसे विल डॉक्यूमेंट हो। तो इसपे हम दो पहलू पे बात करेंगे। पहले तो प्रॉपर्टी और रियल इस्टेट डील में क्या क्या बातों पर ध्यान देना बहुत जरूरी है, नहीं तो कई बार क्या होता है हम पैसे दे देते हैं और हम जो ओनर से जो डेवलपर है उसके हम काफी इंतजार भी करते हैं कि हमारी प्रॉपर्टी ओनरशिप हमारे नाम पे आए, लेकिन कई बार लेट हो जाता, नहीं तो फ्रॉड होता, और उसमें कई सारी बातें हैं। तो शुरू में मैं फर्स्ट ये प्रश्न मेरे मन में ख्याल में आया, अगर कोई प्रॉपर्टी हम डील करते हैं, चाहे सेंटर के लिए हो, सेंटर की हम कोई जमीन या कोई घर खरीदते हैं, या नहीं तो कोई बीके भाई बहने अपनी रहने के लिए भी पर्सनल कोई अगर लैंड लेके घर बनाने की प्लान कर रहे हैं या कोई घर बनाने की प्लान कर रहे, तो उनको किस किस डॉक्यूमेंट पे ध्यान देना चाहिए, थोड़ा सा विस्तार पे आप बोलेंगे तो मेरे ख्याल से इसको अगर नोट डाउन करें आगे उनको काफी धोखे और बदमाशों से आप बच सकते हैं।
2: ओम शांति। जीवन की जरूरतों में से कुछ जो बेसिक जरूरतें हैं जिसके बिना जीवन यापन संभव नहीं है, उसमें से एक जरूरत है मकान। कहते भी हैं रोटी कपड़ा और मकान, यानी मकान एक व्यक्ति की जरूरत है क्योंकि व्यक्ति सामाजिक प्राणी है, इसलिए मकान में रहना और वहां से अपना जीवन यापन करना यह एक सभी की बेसिक नीड है। यह लग्जरी नहीं है लेकिन नीड है। हाँ, वो मकान किस साइज का है वो एक अलग

0: खरीदने का कारोबार करते हैं। अब इसमें खरीदा भी जा सकता है और गिफ्ट में भी लिया जा सकता है, और आपके पूर्वजों से, आपके माता-पिता से या आपके परिवार के सदस्यों से भी वो प्राप्त हो सकता है, जिसको हम वसीयत कहते हैं, विल के द्वारा भी प्राप्त हो सकता है। तो ये अलग-अलग विधियां हैं मकान या जमीन या फ्लैट प्राप्त करने की। उसमें भी जो खरीदना है उसमें दो प्रकार से विशेष, एक तो अपने पास जमा रकम है, हमारे खाते में पेमेंट पड़ा हुआ है, बैलेंस है, और उससे हम पेमेंट करके खरीद सकते हैं। दूसरा जो अधिकतर केस में होता है कि कुछ जो हमारी जमा पूंजी होती है वह लगाते हैं और बाकी का लोन लेकर हम जो है मकान खरीदते हैं। अब लोन में भी दो प्रकार का होता है, एक है ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर से लोन लेना, जिसमें बैंक्स हैं, हाउसिंग कंपनीज हैं, इस प्रकार की जो है वो ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर से लोन लेकर खरीद खरीदना है, और एक है अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर से, यानी किसी साहूकार से ब्याज पर पैसे ले लिए, किसी दोस्त से पैसे ले लिए, किसी रिलेटिव से लोन ले लिया, वो अनऑर्गेनाइज्ड वे में भी लेकर जो है मकान खरीदा जा सकता है। तो ये जितने अलग अलग इक्वेशंस बनते हैं उन हर एक परिस्थितियों में कुछ कागजी कार्रवाई का प्रारूप थोड़ा बहुत परिवर्तन हो जाता है कि आप किस मोड के द्वारा यह जमीन, मकान, फ्लैट आदि आप लेने का प्रयत्न कर रहे हैं, उस अनुसार थोड़े से पेपर चेंज हो जाएंगे। कुछ बेसिक पेपर तो रहेंगे, बाकी कुछ पेपर जो है वो चेंज हो जाएंगे। ये अलग अलग विधियां हैं जिसके द्वारा व्यक्ति का अपना मकान हो सकता है, और एक व्यक्ति के जीवन में जब आशियाना उसका अपना हो जाता है तो बड़ा सुख मिलता है, चाहे वो उसकी साइज छोटी भी क्यों नहीं हो। आप बॉम्बे में देखेंगे तो 500 स्क्वायर फीट का फ्लैट भी एक बहुत बड़ा फ्लैट माना जाता है, और आप अपने गांव में तो आप 5-7 हजार स्क्वायर फीट का बना हुआ है तो भी छोटा ही माना जाता है। सो ये रिलेटिव टर्म है, छोटा या बड़ा, लेकिन अपना, अपने नाम पर आशियाना होना ये एक बहुत बड़ी बात होती है, ये हर एक का एक स्वप्न होता है।
1: ललित भाई जी, आप रोटी कपड़ा मकान और भिन्न भिन्न प्रकार से कैसे हर कोई अपनी मेहनत से या अपनी बाप दादा या नहीं तो माता पिता से अपने अधिकार के नाते, उत्तराधिकार के नाते वो उनको मिलता है। और हमने देखा कि प्रॉपर्टी कुछ भी हो, अपना तो अपना ही है, लेकिन डॉक्यूमेंटेशन में कई बार ना भाई साहब, जब कोई बनाता है या खरीदता है कई बार काफी हड़बड़ी हो जाता है, क्योंकि उसको एक सपना होता है और उसको पूरा करने में इतनी जल्दबाजी करता है, तो उसमें कई सारी बातों का वो थोड़ा सा ध्यान देना वो चूक हो जाता है। तो कौन से बातों पे वो ध्यान दे, और अगर प्रॉपर्टी डीलर अगर बहुत जल्दबाजी करे, और मुझे भी पता है कि प्रॉपर्टी अगर थोड़ा मैं जल्दबाजी नहीं करूँ तो ये डीलिंग जो मेरे हाथ से जा सकता है, तो इस पहलू पे हमें कैसे, क्या किस बातों पर ध्यान देना चाहिए जब भी हम प्रॉपर्टी का डील करते हैं या जमीन या कोई खरीदते हैं, तो किस बात पर ध्यान दे?
0: आपने बहुत पते की बात पूछी है, क्योंकि प्रायः मकान का मूल्य, जमीन, मकान या फ्लैट, जिसको हम अचल संपत्ति कहते हैं, इमूवेबल प्रॉपर्टीज, इनका जो आज की तारीख में जो भाव है वो इतने ज्यादा बढ़े हुए हैं, गांव से लेकर शहरों तक, महानगरों तक इतने बढ़े हुए हैं कि कभी कभी तो व्यक्ति के जीवन भर की कमाई इमूवेबल प्रॉपर्टी में लग जाती है। उसको लेने में या उसका ब्याज चुकाने में, उसका लोन चुकाने में, उसका जीवन जो है उसी में चला जाता है। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि ये सौदा करते समय हम बहुत ज्यादा सावधानी बरतें, और अंडर लीगल गाइडेंस, मतलब किसी से कानूनी परामर्श लेकर ये सौदा करें, ये बहुत जरूरी है। इतने प्रकार के कानून हैं और इतने प्रकार की धोखाधड़ियां होने की संभावना इसमें रहती है कि एक आम व्यक्ति को तो पता भी नहीं चलता है। भारत में अभी भी कुछ राज्य ऐसे हैं कि जहां पर एक ही प्रॉपर्टी तीन तीन व्यक्तियों को बेच दी जाती है, तब भी पता नहीं चलता है। जब उसका एक्चुअल पजेशन लेने जाते हैं और तब कोई दूसरा ओनर आके खड़ा होता है, तब पता लगता है कि अरे ये तो डिस्प्यूटेड है, ये तो पहले से किसी को बेची हुई है। तो ये संभावनाएं तो रहती ही है, इसलिए जिनको भी इमूवेबल प्रॉपर्टी, अचल संपत्ति खरीदने का प्लान कर रहे हो तो जल्दीबाजी करने की कोई जरूरत नहीं है। वो कहीं नहीं जाने वाला है, वो हमको थोड़ा सा अपने किस्मत पर भी विश्वास रखना चाहिए कि वो हमें मिले।

0: हमारी किस्मत में होगा तो हमें जरूर मिलेगा, लेकिन अनावश्यक जल्दीबाजी करके हमारी पूरी जमा पूंजी कहीं फंस जाए ऐसा हमको नहीं करना चाहिए, क्योंकि मकान खरीदते समय कई चीजें ध्यान में देनी होती, उन सभी बातों को ध्यान में रख कर फिर जो है जमीन मकान का सौदा करना चाहिए। उसमें पानी की क्या व्यवस्था है, पड़ोसी कौन से हैं, एरिया कौन सा है, अगर आप वास्तु में मानते हैं तो वो वास्तु के हिसाब से ठीक है या नहीं है, आपका फंड मैनेजमेंट उसमें कैसे बैठ रहा है, लोन का सेटिंग कैसे हो रहा है, और उसके अलावा जो बेचने वाला है उसका टाइटल क्लियर है या नहीं है। टाइटल क्लियर मतलब मैं कहूँ कि ये ताजमहल का मैं सौदा कर लेता हूँ तो मैं ताजमहल का सौदा नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास ताजमहल का टाइटल मेरे नाम पर नहीं है। तो मैं वही संपत्ति बेच सकता हूँ जिसका टाइटल मेरे नाम पर है, जिसका अधिकार पत्र सब मेरे नाम पर है और जिसका लीगल पोजीशन मेरे पास है, उसी को मैं बिक्री कर सकता हूँ। दूसरे की संपत्ति मैं नहीं बेच सकता हूँ, वो बेनामी ट्रांजेक्शन हो जाता है, वो पूरा एक अलग एपिसोड है जिस पर कभी हम चर्चा करेंगे। लेकिन इन सब बातों पर ध्यान देने के बाद ही जो है हम ये जमीन मकान का सौदा करना चाहिए। जल्दीबाजी तो जो ब्रोकर होते हैं वो अपनी तरफ से जल्दीबाजी कराते ही हैं, क्योंकि उनका हित उससे जुड़ा हुआ होता है, और जो बेचने वाले हैं वो भी जल्दीबाजी कराते हैं, क्योंकि उनको जितना जल्दी धन मिलेगा उतना उनकी इनकम शुरू हो जाएगी या वो दूसरा सौदा कर सकेंगे, इसलिए वो भी जल्दीबाजी करते हैं। लेकिन हमें जल्दीबाजी करने की जरूरत नहीं है, सारी चीजें ठीक करने के बाद उसके बाद ही जाना है। अगर सपोज आप किसी नई स्कीम में जा रहे हैं कि जहां नई स्कीम डेवलप हुई है, तो उस स्कीम में जा रहे हैं तो सरकार की ओर से एक रेरा कानून आया है, RERA रेरा कानून आया हुआ है, तो हमें सबसे पहले ये चेक करना है कि ये स्कीम रेरा के अंतर्गत रजिस्टर्ड है या नहीं है, ये हमें सबसे पहले चेक करना है। आपको ध्यान में रहे कि सरकार ने इस कानून को इतना ट्रांसपेरेंट बनाया है कि अचल संपत्ति खरीदने वालों के साथ जो धोखाधड़ियां होती थी वो बहुत कुछ इस कानून के आने के बाद कम हुई है। और आप जब बिल्डर के पास जाते हैं या जो स्कीम की साइट है वहां पर आप जाके कोई फ्लैट खरीदने के लिए या बंगलो खरीदने के लिए बात करते हैं, तो वहां पर आप उनसे पूछिए कि क्या ये रेरा में रजिस्टर्ड है। अगर आप रेरा में रजिस्टर्ड है तो ही आप वहां लेने के लिए अपना मन बनाइए, अगर रेरा में रजिस्टर्ड नहीं है तो मैं समझता हूं कि कुछ दूसरे ऑप्शन में जाना चाहिए। हाँ, लेकिन अगर आप किसी का पुराना बंगलो ले रहे हैं, किसी का पुराना फ्लैट ले रहे हैं, या पुरानी कॉलोनी बनी हुई है उसमें कुछ ले रहे हैं, तो उसमें रेरा नहीं होगा। तो उस समय आपको किसी कानूनी परामर्शक, किसी वकील जो जमीन मकान का काम करता है, उनकी आपको मदद लेनी पड़ेगी। इसमें एक बहुत अच्छी बात ये है कि सपोज 25 लाख का मकान है और आपके बैंक बैलेंस भी 25 लाख रुपया है और आप वह पैसा खर्च करके जमीन मकान ले सकते हैं, फिर भी हम ये सलाह देंगे कि आप उसमें 2 लाख का या 5 लाख का भी आप लोन ले लीजिए, 20 लाख अपना दे दीजिए, 5 लाख का लोन ले लीजिए। लोन लेने का क्या फायदा होगा कि बैंक जब किसी मकान पर लोन देता है तो वह अपने एडवोकेट के द्वारा टाइटल क्लियर कराने के बाद ही लोन देता है, तो पेपर ठीक है या नहीं है उस झंझट से आप बच जाएंगे और वो जो बैंक के द्वारा जो है वो सारी चीजें चेक हो जाएगी। हो सकता है कि उसमें आपको 10-15 हजार 20 हजार रुपए का एक्स्ट्रा खर्चा लग जाए, तो वो वर्थ है खर्च करना, लेकिन ये आप इस प्रकार से कानूनी चेक करके आप लेंगे तो वो आपके लिए जो है बहुत ही भविष्य में परेशान नहीं करने वाला, निश्चिंत रखने वाला सौदा हो सकेगा। तो जल्दीबाजी बिल्कुल नहीं करें, आपके किस्मत का आपको ही मिलने वाला है। सावधानी पूर्वक पेपर्स चेक करने के बाद, संतुष्टि होने के बाद, उसके बाद ही आप सौदा करने के लिए आगे कदम बढ़ाएं।
1: पर ललित भाई जी, कई बार ये होता है, मैंने भी देखा है और मैंने भी अपने लाइफ में एक्सपीरियंस किया है, कोई अगर आपके बहुत क्लोज हो और पहचान के हो, और जैसे कोई एकदम बहुत क्लोज जो फ्रेंड हो, पहचान वाले हो, वो बोल रहे हम जमीन ले रहे हैं, आप भी साथ में ले लो तो हमारा इकट्ठा रहेगा और आप चिंता नहीं करो, मैंने सारा पढ़ा हुआ है और मुझे इस बात का अनुभव है, आप खाली बस पैसे दे दो आज डिपॉजिट और आप कर लो, फिर हम देखेंगे। और उसमें जैसे बोलते हैं ना नॉन एग्रीकल्चर लैंड होता है, तो कहीं बोलते नहीं कुछ हर्जा नहीं, ग्राम पंचायत का भी जो दस्तावेज वो जो देंगे डॉक्यूमेंट देंगे तो उससे भी आपको वो ओनरशिप आ जाएगा। तो कई बार क्या हो जाता है ना, लोग जैसे बड़े बड़े सिटियों में तो पूरी रेरा और वो डॉक्यूमेंट और उस सर्टिफाइड जगह लेने जाए तो लाखों करोड़ों लग जाता है, लेकिन अगर इस तरह से गांव की कोई नॉन एग्रीकल्चर लैंड हो और उस पर कोई बिल्डिंग बना है और ग्राम पंचायत ओनरशिप ग्रांट कर रहा है उसमें अगर आप ले लो तो काफी थोड़ा आपको 1/3 में भी आप वो खरीद सकते हैं। तो इस पॉइंट पे क्या करना चाहिए और कैसे आप उस बातों को हमें क्या हैंडल कैसे करना चाहिए?
0: एक्चुअली हर जमीन का अपना एक इतिहास होता है, हर अचल संपत्ति की एक जन्म पत्री होती है, जैसे जीवित व्यक्ति की जन्म पत्री होती है ऐसे ही हर अचल संपत्ति की भी जन्म पत्री होती है। और ये भी मैं अपने अनुभव से कह सकता हूँ क्योंकि पिछले 15-17 सालों से तो सक्रिय रूप से इस एक्टिविटीज में मेरा इन्वॉल्वमेंट रहा है, तो ये मैं कह सकता हूँ कि वह जन्म पत्री चेक करके ही उस सौदे में आप आगे बढ़े, क्योंकि कई लोगों को जमीन मकान लेने के बाद अच्छी उन्नति हुई है, मानसिक शांति मिली है, घर में खुशियां आई है, और कईयों का हमने देखा है कि जमीन मकान लेने के बाद मानसिक शांति भी खत्म हो गई है और खुशियां भी चली गई है और धन का भी बहुत नुकसान हो गया है। तो उस जन्म पत्री को जानने के लिए हमें थोड़ा तो धैर्यता रखनी ही पड़ेगी, और हर व्यक्ति कोई भी आपको कह देता है कि हाँ हमने देख लिया है और आप ले लीजिए, तो कुछ हद तक तो विश्वास कर सकते हो अगर वो बहुत विश्वसनीय व्यक्ति है तो, पर फिर भी मेरी व्यक्तिगत राय पूछे तो मैं यही कहूंगा कि भले वकील को 5-10 हजार रुपया उसकी फीस का खर्च करना पड़े, लेकिन एक बार सारे पेपर्स उनसे चेक करवाए जाए और अगर बड़ा सौदा है तो फॉर्मली टाइटल क्लियरेंस रिपोर्ट वो वकील से ली जाए और उसके बाद ही सौदा करे। तो ये जो 25 लाख 50 लाख की प्रॉपर्टी में अगर 20 हजार रुपया एक्स्ट्रा खर्च हो गया तो ये खर्च आपके लिए भविष्य में आपको सिक्योर बनाने वाला खर्च होगा, इसलिए इसमें कहीं केवल विश्वास करके चलने की बात नहीं है, लेकिन खुली आंखों के साथ, ये शरीर की आंखें भी खुली और बुद्धि की आंख भी खुली हो, उन आंखों के साथ हमें ये अचल संपत्ति का सौदा करना चाहिए, ऐसा मैं समझता हूँ।
1: भाई साहब आपने एक बहुत अच्छी बात बताई, मैंने भी ये अनुभव किया। मेरा एक दोस्त है तो उसने जैसे पुणे में उसको बहुत एक फ्लैट लेने थे तो उन्होंने कई 20 प्रॉपर्टी करीबन उन्होंने बोला कि मैंने 20 से ज्यादा प्रॉपर्टी देखा। पर एक बात ये कि अगर आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से कोई अगर लोन लेना चाहता है तो स्टेट बैंक बहुत ज्यादा वो पूरी डिटेल देखता है और वो इतनी वो इंश्योर कर लेता है कि हाँ प्रॉपर्टी करेक्ट है, उसकी ओनरशिप करेक्ट है, कोई लीगल इश्यूज नहीं है। तो उसने स्टेट बैंक के एग्जांपल तो दिए, हो सकता है कि सारे नेशनलाइज बैंक और काफी अच्छे प्राइवेट बैंक्स भी इस डॉक्यूमेंट पर काफी वो थोरो होंगे और काफी आपको ये जो बात मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपके पास पूरे धन होने के बावजूद अगर आप कैश से भी डील कर सकते हो या चेक से ले सकते हो पूरी अमाउंट दे के, तब भी आप थोड़े से अमाउंट आप लोन से जरूर ले, क्योंकि लोन से जब लेते हैं तो जो बैंक है और जो लोन ग्रांटिंग इंस्टीट्यूशन है वो इस बातों को काफी डिटेल में जाते हैं, सो दैट आपको डॉक्यूमेंटेशन या ओनरशिप या लीगल इश्यू जो वो टाइटल ट्रांसफर उसमें आपको कोई फ्यूचर में प्रॉब्लम नहीं होंगे। तो ये बात मुझे बहुत अच्छा लगा और आपने बहुत अच्छा ये बात बताया कि कितनी भी आपकी पहचान के हो पर जल्दबाजी में आके ना करके 10,000-20,000 लगे लेकिन 10-15,000 हमें लीगल या लॉयर्स को देके वो डॉक्यूमेंटेशन चेक करके उससे आपने जैसे बोला कि वो जो टाइटल क्लैरिफिकेशन की उसकी जो सर्टिफिकेट से जो राइट टर्म्स आप बोल सकते तो वो लेने के बावजूद ही उस डील में। कई बार मैंने तो हर बार ये देखा हुआ है कोई भी प्रॉपर्टी ब्रोकरर्स होते हैं, चाहे घर भाड़े देने हो चाहे बेचने हो चाहे कुछ हो, तो बोलते जल्दी डिसीजन लो, जल्दी आपको 2 मिनट का टाइम है, 1 दिन का टाइम है और आप कुछ एडवांस दे दो नहीं तो कुछ तो टोकन दे दो। तो इस तरह से बहुत सारे फंसने फंसाने की बहुत सारे बात होता है। तो मेरे ख्याल से इन सब बातों का हमें बहुत ध्यान देना चाहिए। पर रेरा की आपने भी बहुत अच्छा एक हमने हमें एग्जाम्पल दिए आप रेरा का। बट मैं आगे थोड़ा सा इस बात पर पूछूंगा। रमेश भाई जी, आप जब भी हमें ब्रेक करना चाहे बोलेंगे तो हम थोड़ा छोटा
2: बिल्कुल
1: ब्रेक ले।
2: बिल्कुल, एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं और बड़ा अच्छा जो है कन्वर्सेशन चल रहा है इस बीच। कैसे तेरा जो है एक ऐसा कानून आया है जिसमें आप पूरे विश्वास के साथ संपत्ति खरीद सकते हैं, और उसमें है तो वो थोड़ा पैसा ज्यादा जाएगा लेकिन आपके लिए सिक्योरिटी बढ़ता है और आगे चल के भी वो आपको पैसा रिटर्न ज्यादा देगा, तो इसलिए इस बात पे थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो ये चेक करने के लिए अच्छा चीज बताया आपने ललित भाई, थैंक यू सो मच। रेखा जी उपस्थित है हमारे बीच में, रेखा नागपुरी जी बहुत बहुत स्वागत है, और मैं चाहूंगा कि एक छोटा सा गीत आप सुनाइए। स्वागत है आपका ललित भाई एंड शिवा भाई।
3: एक प्रेयर सॉन्ग है ये।

0: ओम शांति।
1: ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया रेखा जी, बहुत ही प्यारा संगीत आपने सुना है, बहुत बहुत साधुवाद आप, थैंक यू। आइए शिवा भाई। यस
0: सब एक मैंने देखा तो मुझे जो डिस्प्यूट्स और जो प्रॉब्लम देखे कि कहीं कोई प्रॉपर्टी कभी बेचने जाता है, कई बार उनके लोन रिपे नहीं होते, उनके वो प्रॉपर्टी कहीं लीज में दिया हुआ होता है, कहीं तो उसके मॉर्गेज या नहीं तो कुछ लीगल उसमें डिस्प्यूट चलते रहते, कई सारी बातें पता नहीं चलता है। जब कोई टाइटल तो क्लियर है, सब कुछ क्लियर है, बट इन एन अराउंड वो किसी को लीज में दिया गया है या नहीं तो लोन्स उसके रिपेमेंट की प्रॉब्लम है या नहीं तो आपके बहुत सारे ये सारे छोटे छोटे जो प्रॉब्लम्स है वो सब कुछ आइडेंटिफाई करना इतना इजी नहीं होता है। तो इन चीजों को किस तरह से हम आइडेंटिफाई करें और किस तरह से इन चीजों को हम क्लारिफाई ले?
1: जब हम कोई भी अचल संपत्ति खरीदना चाहते हैं, स्पेशली जमीन, मकान, फ्लैट, तो वहां सबसे पहले ये चेक करना चाहिए कि वो किसके पजेशन में है। मकान मालिक जो बेचने वाला है वो खुद वहां रह रहा है या किराए पर दिया हुआ है। अगर वह किराए पर दिया हुआ है या मकान मालिक के ही कोई सर्वेंट वहां रहते हैं, झोपड़ी बना के रह रहे हैं, या एक कमरा पूरे बंगलो खाली और एक कमरे में एक सर्वेंट रह रहे हैं, तो उस केस में भी सौदा करने से पहले हमें उस विक्रेता से ये जरूर कंफर्म करना पड़ेगा कि हम आपको तभी एडवांस दे सकते हैं या ये सौदा हम तभी कर सकते हैं कि जब यह प्रॉपर्टी वेकेट हो जाए, खाली हो। अगर वहां किराएदार है या कुछ है और आपने सौदा कर लिया, आपने पेमेंट कर लिया और फिर उन्होंने खाली नहीं किया, तो उनको खाली करवाने के लिए जो भी धन देना पड़ेगा वह सब आपकी जवाबदारी में आ जाएगा और आपको वो सब खर्च करना पड़ेगा जो बहुत बड़ी रकम हो सकती है, शायद आपने सोची भी नहीं। इसलिए ये एक बहुत बड़े ध्यान में देने की बात है कि वह प्रॉपर्टी वेकेट हो, पूरी खाली हो और उसके बाद ही उसका हमको सौदा फाइनल करना चाहिए। या अगर आप कोई 2-5% एडवांस दे रहे हैं और उसका सेल एग्रीमेंट तैयार कर रहे हैं तो उस एग्रीमेंट में स्पष्ट लिखा हुआ हो कि बाकी का भुगतान हम तभी करेंगे, रजिस्ट्री हम तभी करेंगे जब हमें प्रॉपर्टी का वेकेट पजेशन मिल जाएगा, खाली पूरा पजेशन होगा उसके बाद ही हम करेंगे। तो यह तो एक बहुत जरूरी बात हो गई। उसके अलावा उस प्रॉपर्टी पर किसी का कोई दूसरा हक है, जैसे किसी ने उस पर लोन दिया हुआ है, किसी ने उसको गिरवे रखा हुआ है, किसी का उस पे कोई इंस्टॉलमेंट्स चल रहे हैं, किसी ने गारंटी के रूप में उस प्रॉपर्टी को रखा हुआ है, ऐसे कई प्रकार के उस पे दूसरों के हक हो सकते हैं। ऐसी कंडीशन में इवन ये भी हो सकता है कि किसी दूसरे से भी एडवांस लिया हुआ हो उस प्रॉपर्टी के लिए,
0: अच्छा
1: सेल डीड अभी नहीं रजिस्टर किया है लेकिन उनसे भी एडवांस ले लिया हो, ऐसा भी पॉसिबल है। तो ऐसी परिस्थिति में जो ये टाइटल क्लियरेंस रिपोर्ट किसी अनुभवी एडवोकेट से हम लेते हैं तो टाइटल क्लियरेंस रिपोर्ट में ये सारी चीजें कवर होती, जिसमें कोई बैंक का लोन है, कोई ऑर्गेनाइज्ड वे से लोन है। हाँ, अगर कोई अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर से, अगर मकान मालिक ने अपने मित्र संबंधी से, किसी परिवार के सदस्य से या किसी साहूकार से लोन लिया हुआ है तो वह जो है हमको पता नहीं चल पाएगा, पर ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर से है तो वह पता रहेगा क्योंकि उस केस में जो उस प्रॉपर्टी के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट हैं वो उस मकान मालिक के पास नहीं होंगे। तो जब आप सेल एग्रीमेंट बना रहे हो तब यह अनिवार्य रूप से ध्यान रखें कि उस प्रॉपर्टी के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आप अपनी आंखों से देखें कि वह मकान मालिक के पास है या नहीं है। वो आपको हैंडओवर तो तभी करेगा जब रजिस्ट्री होगी, तब आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट हैंडओवर करेगा, लेकिन उसके पजेशन में भी है या नहीं है वह चेक करने के लिए आपको ये शर्त रखनी चाहिए कि हम तभी सेल एग्रीमेंट करेंगे जब आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की फाइल आप हमको बताएंगे। वो नहीं बताएगा इसका मतलब है कि वो उसने कहीं कहीं से लोन ले रखी है और जिसने लोन दी हुई है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सारे उसके पास पड़े हुए हैं, तो ये एक कंफर्मेशन हो जाता है। इसके अलावा जब हम टाइटल क्लियरेंस के लिए एडवोकेट को देते हैं तो वो पिछले 30 ईयर का रिकॉर्ड चेक करता है सब रजिस्ट्रार ऑफिस में जाके। उसको 200-400 रुपया फीस देनी पड़ती है सब रजिस्ट्रार ऑफिस में फीस जमा करा के, और फिर वो 30 ईयर के रिकॉर्ड चेक करते हैं कि पिछले पिछले 30 सालों में इस प्रॉपर्टी पर किस किस का हक बना था और वह हक कब खाली हुआ और आज की तारीख में किस किस का हक उस प्रॉपर्टी पर है, तो ये सब वो एडवोकेट करेगा जो टाइटल क्लियरेंस कर रहा है। इसके अलावा उसका जो शेयर सर्टिफिकेट है उस पर भी लिखा हुआ होता है कि ये हाइपोथिकेटेड है, कहीं कहीं गिरवी रखी हुई है, वो भी देखना होता है। तो ये कुछ जरूरी कागजात होते हैं जिसका हमें पहले से ही ध्यान रख के हमको आगे के सौदे के लिए बढ़ने से पहले इनको हमें देखना होता है।
0: क्या आप कभी भी कोई प्रॉपर्टी डील करें अगर आपने सारे बातों को नोट नहीं कर पाए तो सारे एक एक पॉइंट जो है आपकी करोड़ों की एक सेफगार्ड देगा और अभी धोखेदारी या दुख या नहीं तो किसी ना किसी स्कैम या नहीं तो लीगल फाइटिंग कोर्ट की बार बार दरवाजा खटखटाना पड़े और उस ये मोड में आप जाओ उससे पहले आप कई बातों से आप चक्कर से बच जाएंगे। तो इसमें दो बातें हैं, किसी ने अगर नॉन ऑर्गेनाइज सेक्टर से लोन लिया है अपनी कोई रिलेटिव या कोई अपनी जमींदार से तो उसके खरीदने वालों पर क्या इम्पैक्ट है, उसने 30 लाख का लोन लिया है उस प्रॉपर्टी के ऊपर तो देन क्या है। सेकंड है कि अगर फर्जरी डॉक्यूमेंट है तो मुझे तो ओरिजिनल देखना है, मुझे तो पता नहीं सब बात, तो फर्जी डॉक्यूमेंट है तो उस बातों को दोनों ये बातों का जो आपने बताया ये दोनों बातों की हमें थोड़ा क्लैरिटी देंगे।
1: पहली बात जो है कि अगर उन्होंने अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर से लोन लिया है, अपने मित्र संबंधी से, अपने दोस्त से या किसी साहूकार से लोन लिया हुआ है, तो उस केस में ये हो सकता है कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जिससे लोन लिया हो उसने अपने पास रखा हुआ हो, तो आप जब इन पार्टी से कंफर्म करने जाएंगे तो वह ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो है आपको नहीं बता पाएगा, तब आपको डाउट जा सकता है कि हो सकता है कि इन्होंने कहीं से लोन लिया हुआ हो। दूसरा,

0: इसमें हम और तो कुछ अंदाज नहीं लगा सकते हैं, लेकिन जब वो सेल एग्रीमेंट बनाते हैं उस सेल एग्रीमेंट में हमको ये लिखवाना होता है कि ये संपत्ति पर किसी भी प्रकार से किसी भी व्यक्ति से लोन लिया हुआ नहीं है, गिरवी रखा हुआ नहीं है, किसी को बिक्री किया हुआ नहीं है, इसका सौदा किया हुआ नहीं है, आदि आदि बातें जो है हमको उनसे पहले ही कंफर्म लिखवानी होती है। फिर भी अगर हम मकान मालिक झूठ बोलकर हमारे से सौदा करते हैं और ये चीज नहीं देते हैं, लिखित में भी दे दिया लेकिन वो सूचना नहीं दिया कि सचमुच उसने कहीं से लोन ले रखा है, और उस केस में आप सौदा करते हैं, रजिस्ट्री करते हैं, तो लीगल टाइटल तो आपको मिल जाएगा, पजेशन भी खाली है तो आपको मिल जाएगा, लेकिन अगर जिससे उन्होंने लोन लिया हुआ है और वह व्यक्ति कोई दबंग है और जो अलग किस्म के लोग होते हैं उस प्रकार से है, तो वह आपको परेशान कर सकता है, ऐसी संभावनाएं रहती है। तो इसके लिए जिनसे आप मकान ले रहे हैं उनका क्रेडिट वर्दीनेस वो भी चेक कर लेना जरूरी होता है। आजकल जिसकी सिबिल रेटिंग कहते हैं, तो वो सिबिल रेटिंग अगर आप निकलवा लेते हैं और उनको कहते हैं कि आप अपना सिबिल स्कोर जो है आप सिबिल रिपोर्ट मुझे दीजिए, तो उस सिबिल रिपोर्ट के आधार पर भी उसकी फिनेंशियल हेल्थ का पता चल जाता है। तो ये एक बहुत ही अच्छी बात है कि आप उसका भी सहारा ले सकते हैं और अपने आप को थोड़ा उसके लिए सेफगार्ड कर सकते हैं।
1: बोलिए भाई साहब।
0: नहीं, आपका जो दूसरा क्वेश्चन था मैं उसको रिप्लाई करूं, उसके पहले अगर इस संबंध में कुछ है तो आप पूछ सकते हैं।
1: हाँ, ये आपने बहुत अच्छा एक बात बोली कि सिविल रिपोर्ट उनकी क्रेडिट वर्दीनेस को बताएगा, या नहीं तो उनके कोई आसपास रिलेटिव या पहचान या फ्रेंड, उन सर्कल से अगर कुछ बातें हो तो थोड़ा सा अगर पूछताछ करे। क्योंकि आपने जैसे बताया कि ये सही बात है कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर से बड़ी अमाउंट का लोन लिया हो और अगर वो कोई दबंग हो और आपने मकान ले लिया, तो भले मकान तो पोजेशन और टाइटल आपको आ गया, लेकिन अगर वो बार बार आपको आके परेशान करे, थ्रेट देवे, वो करे, तो उस बातों को तो डील करना इतना ईजी नहीं है। क्योंकि उसके लिए कोई हम किसी के भी सहारा ले तो भी प्रॉब्लम होने वाला है। तो क्रेडिट वर्दीनेस और लोग उसकी जो आसच व्यवहार है और लोगों से जो डील है, अगर अंदर से थोड़ा सा वो हम डिटेल थोड़ा ले लेवे तो मेरे ख्याल से वो ज्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन फिर भी थोड़ा मैटर थोड़ा सा ट्रिकी है, जिसमें पेशेंसली काम करना जरूरी होगा, मैं समझता हूँ। बाकी फर्जी डॉक्यूमेंट ये
0: मैं
1: बहुत बड़ी
0: एक और
1: आजकल की
0: युक्ति
1: दिया।
0: इसमें एक और युक्ति अपना सकते हैं। सपोज
1: जी
0: आप कोई जमीन खरीद रहे हैं, प्लॉट खरीद रहे हैं, तो उसने करने वालों ने जो है सपोज 50 प्लॉट हैं, उसमें से आप एक खरीद रहे हैं। अब बहुत बार पता भी नहीं होता है कि 50 प्लॉट में से जो है वो कौन सा डिस्प्यूटेड है या कौन सा बिक गया है, या अपने को तो जो वो बताते हैं, या बहुत बार तो लोग अब उस स्थान पर भी देखने नहीं जाते हैं, पेपर पर ही देख के फाइनल कर देते हैं। पर मेरा ऐसा मानना है कि आप थोड़ा प्रोएक्टिव बनकर वो प्लॉट जो खरीद रहे हैं, सपोज 50 लाख का प्लॉट है और आपने 2 लाख रुपया अभी उसको जैसे बाना खत के लिए एडवांस के रूप में दे दिया, तो आप उनसे रिक्वेस्ट करिए कि जो प्लॉट हम खरीद रहे हैं उसके आसपास हम बाउंड्री बनाना चाहते हैं। तो आप जैसे ही बाउंड्री बनाएंगे उस प्लॉट के आसपास, तो अगर किसी दूसरे व्यक्ति का उसमें हक होगा और उसको कहीं से भी पता लगेगा उसने विजिट किया, तो वो तुरंत आके डिस्प्यूट खड़ा करेगा कि भाई ये मैंने लिया हुआ है और आप इसमें कैसे बाउंड्री बना सकते हो। तो उस विधि से भी हम सेफ हो सकते हैं। ये भी हम जब इंस्टीट्यूशन के लिए खरीदते हैं तो हम इस चीज का ध्यान देते हैं और ऐसी युक्ति भी अपनाते हैं, ताकि किसी का अगर हक बनता है तो तुरंत उसके पास सूचना तो चली जाती है किसी न किसी रूप में, और वो आके डिस्प्यूट करेगा तो हमारा बाकी का पैसा बच जाएगा। तो ऐसी भी कुछ युक्तियां अपनानी पड़ती है। और एक मैं अपने निजी अनुभव से बताता हूँ, क्योंकि जैसे बताया कि कई वर्षों से इस प्रकार की जो अचल संपत्ति का कारोबार है उसमें मेरी सेवाएं हैं। तो जब हम परमात्मा पिता की याद में होते हैं, जब हमारी बुद्धि की लाइन क्लियर होती है, एक भगवान को हम हम अपना साथी बनाकर, कंपेनियन बनाकर, खुदा दोस्त बनाकर उसकी सलाह लेते हैं। ऐसा नहीं कि वो भगवान है, ऊपर रहने वाला है, पता नहीं कौन उसको देखेगा, कैसे उससे मिले, क्या करे, वो नहीं, लेकिन वो मेरा मित्र है और मैं अब इस सौदे के बारे में अपने मित्र के साथ सारी चर्चा करूंगा और सारी चर्चा करने के बाद मैं इसमें आगे बढ़ूंगा। उस विश्वास के साथ आप उसके साथ सारा शेयरिंग करते हैं, पेपर्स भी उसके सामने रखते हैं, उसको बताते हैं। तो मुझे तो अपना अनुभव है कि कई बार ऐसी चीजें मेरे सामने आती है कि जिसके बारे में किसी ने भी नहीं सोचा है और मेरी अंगुली उस पेपर के उसी लाइन पर जाती है। मैंने कहा ये जो लिखा हुआ है इसका क्या मतलब है वो आप बताइए, या इसके रिलेटेड मुझे पेपर लाके दीजिए। सामने वाले को आश्चर्य होता है कि अरे इतने पेपर में से आपने यही पॉइंट क्यों निकाला, और उसी पॉइंट में कुछ न कुछ प्रॉब्लम होती है। तो ये अगर हम भगवान का साथ लेने का अगर हमको आ गया, ये युक्ति हमने सीख ली, तो हम इस प्रकार के धोखे से बच सकते हैं, ये मैं अपने अनुभव से कह सकता।
1: ललित भाई, आपने बात बताई कि एक जो इंट्यूशन है, इंट्यूशन से भी ज्यादा हम बोलेंगे कि जो परमात्मा से हमारी क्लीन और क्लियर इंटेलेक्ट है, वो कई बार उनके भी एक सूक्ष्म प्रेरणा और एक फोर्स रहता है जो बार बार हमें प्रेशराइज करते रहता है कि आप राइट डायरेक्शन में चलो, कहीं तो रंग गए, आपको कुछ तो टचिंग या विजुअलाइजेशन होता है, और उस पॉइंट को लेके आप जब डील करते हैं तो कई बार आप सही माना आपकी जो एग्रीमेंट या जो सही आपके कॉन्ट्रैक्ट हो, आप उसमें आप आ सकते हैं। लेकिन इसमें और एक मैं थोड़ा सा लीगल बात पूछना चाहता हूँ। कई बार क्या होता है ना कि मकान मालिक आपको मकान बेचना चाहता है, पर उसने 2 साल से इलेक्ट्रिसिटी नहीं दिया है, या पानी का यूटिलिटी बिल्स वगैरह पेमेंट में वो कमजोर है, या नहीं तो उन्होंने जो टैक्स होता है, जो म्युनिसिपैलिटी टैक्स, उसको उसने पेमेंट किया है नहीं किया है, उसके भी इश्यूज होते हैं। तो कई बार इस तरह का प्रॉपर्टी भी हम ले लेते हैं और कई दिनों से वैकेंट पड़ा हुआ है और किसी ने उसको बेच डाला, ओनर तो यूएस में बैठा है और किसने उसके डॉक्यूमेंट बना के उसके बेच डाला। तो ऐसे फर्जरी डॉक्यूमेंट या नहीं तो जो यूटिलिटी बिल्स है उसको अगर किसने, या म्युनिसिपैलिटी टैक्स है उसको अगर ठीक से पेमेंट नहीं किया है, तो उन बातों को हम किस तरह से ठीक से ध्यान दें।
0: कोई भी प्रॉपर्टी का सौदा करते समय हमें जो डॉक्यूमेंट्स की फाइल मकान मालिक से या उस प्रॉपर्टी के मालिक से लेनी होती है, उसमें इनवेरिएबली लास्ट इलेक्ट्रिसिटी पेमेंट की रसीद, लास्ट म्युनिसिपल टैक्स पेमेंट की रसीद, लास्ट वाटर टैक्स पेमेंट की रसीद, इस प्रकार से जो भी टैक्सेस या चीजें होती हैं उनके पेमेंट की लास्ट रिसिप्ट जो है वो हमें जरूर लेनी ही चाहिए। और ऑनलाइन आजकल तो आप इलेक्ट्रिसिटी में कंज्यूमर नंबर डालो तो ऑनलाइन बता देगा कि वो बिल पेमेंट हुआ है या नहीं हुआ है। तो ऐसा लगभग फोर्जरी होना संभव नहीं है कि वो फोर्ज पेमेंट की रसीद हमको दे देवे, लेकिन वो ओरिजिनल रसीदें हमको जरूर मांगनी ही चाहिए, देखनी ही चाहिए और अपने पास उसकी कॉपी लेनी ही चाहिए। इसके अलावा भी जब रजिस्ट्री लिखते हैं, सेल डीड का ड्राफ्ट करते हैं, तो उसमें भी स्पष्ट लिखा जाता है कि जिस दिन सेल डीड साइन किया है उस दिन तक का कुछ भी बकाया रकम भविष्य में नोटिस आता है तो उसके लिए जो विक्रेता है वह जवाबदार होगा, ये लिखा जाता है। हालांकि ये बात सही है कि एक बार सौदा हो जाने के बाद, पजेशन मिल जाने के बाद, फुल पेमेंट हो जाने के बाद पुराने ड्यूज के लिए विक्रेता से पैसा निकलवाना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन वो लिखना तो जरूर है ही है और उसके पहले सारी लास्ट पेमेंट्स की ओरिजिनल जो है वो हमको लेना भी बहुत बहुत जरूरी है। पर जो जाली या फोर्जरी डॉक्यूमेंट्स के आधार पर सौदा करने की बात है तो ये पहले आम बात, ये बहुत हो जाता था ऐसा, लेकिन अब इसकी संभावनाएं बहुत कम हो गई है क्योंकि जब हम रजिस्ट्री करते हैं तो उस रजिस्ट्री में भी हमारे बायोमेट्रिक्स भी लिए जाते हैं, क्रेता के विक्रेता के दोनों के बायोमेट्रिक्स भी लेते हैं, प्रॉपर्टी के फोटो भी लगते हैं और जो ROR होता है, रेवेन्यू रिकॉर्ड्स, उसमें जो पेपर्स होते हैं जिसमें 7-12 बोलते हैं, 6A बोलते हैं, 8A बोलते हैं, इंडेक्स 2 बोलते हैं, ये सारे पेपर्स जो हैं उसमें भी हमें चेक करना होता है कि किसका नाम चढ़ा हुआ है। अगर सपोज एक व्यक्ति ने एक मकान पहले किसी को बेच दिया और एक साल के बाद वो आपको भी वही मकान वापिस बेचने जा रहा है, लेकिन पहले जिसने बेचा उसने जरूर वो जो ROR है उसमें उसका नाम चढ़ गया होगा, तो आप ये टाइटल क्लियरेंस जब एडवोकेट करने जाएगा तो वो सारी चीजें उसमें क्लियर हो जाएगी, तो वो फोर्जरी होने की संभावनाएं बहुत कम हो जाती है ऐसी संजोगों में। फिर भी हमें तो सावधानी रखकर ये सारी चीजें ओरिजिनल में आप देखेंगे, चेक करेंगे, तो बचने की पूरी पूरी संभावनाएं हैं।
1: थैंक यू भाई साहब। तो इसमें आपने जैसे बताया कि जो फॉर्जरी है और काफी आजकल ऑनलाइन हो चुका है, तो कोई भी प्रॉपर्टी का जो नो रजिस्ट्रेशन जो नंबर्स होंगे वो होंगे, उससे भी कोई जाके शायद इन डिटेल भी शायद देख भी सकते हैं। आज के समय में कई जगह ई फॉर्मेट में हो चुका है, तो मेरे ख्याल से ये सारी चीज आप ई फॉर्मेट में हम प्रॉपर्टी के डिटेल देख सकते हैं क्या, जैसे इलेक्ट्रिसिटी का आपने बताया, यूटिलिटी बिल्स के बारे में?
0: आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा और इसके बारे में हम एक अलग से भी पूरा सेशन करेंगे। ये सरकार ने ट्रांसपेरेंसी हर क्षेत्र में लाया है और उसी लिए जमीन मकान के सौदों में भी ट्रांसपेरेंसी के लिए इस सरकार ने बहुत प्रयत्न किया है, और उसके लिए सरकार ने यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर ULPIN 14 डिजिट का, जैसे आधार नंबर होता है व्यक्ति का, ऐसे जमीन मकान के लिए यह यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर ये जारी किया है, और इसके साथ जो रिकॉर्ड्स मेंटेनेंस है वह नेशनल जेनेरिक डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन सिस्टम NGDRS ये सिस्टम भी सरकार ने लागू किया है। अभी अभी सेंट्रल मिनिस्टर गिरिराज सिंह जी ने 2 दिन पहले ही इसकी ई बुक लॉन्च की है जिसमें इसके बारे में विस्तार से बताया हुआ है। भारत में अभी तक 14 स्टेट्स में ये सिस्टम लागू हो चुका है और बाकी के स्टेट्स में भी बहुत जल्दी ये सिस्टम लागू हो जाएगा। तो जैसे आपकी बैंक की पासबुक होती है जिसमें आपका बैंक अकाउंट नंबर और उसमें हुए ट्रांजेक्शन बताए जाते हैं, उसी प्रकार से प्रॉपर्टी की पासबुक कई स्थानों पर बन गई है। गूगल मैप के द्वारा भारत सरकार का अपना एक प्रोग्राम है, उसके द्वारा ड्रोन के द्वारा उसका पूरा मैपिंग करा के उसकी पासबुक बनवाई है, और उस पासबुक के आधार पर आपको उस प्रॉपर्टी की जन्म पत्री पूरी उसमें मिल जाती है। तो इसके प्रयोग से भी, इसकी जानकारी से भी हम धोखाधड़ी से बच सकते हैं।
1: भाई साहब, आपने जो दो टर्म बताए, ULPI और NGTRS, मेरे ख्याल से ये दोनों तो नोट करके रख लेना चाहिए, और यूनिक लैंड जैसे पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर या NGTRS का फुल फॉर्म जो आपने बताया अभी, मेरे ख्याल से ये दोनों चीजों को थोड़ा सा नोट करें, अंडरलाइन कर ले। पर समय की सीमा को देखते हुए रमेश भाई जी हमें थोड़ा सा इन जो बातों को थोड़ा सा समराइजेशन देंगे। मेरे ख्याल से आज जैसे जैसे बातें आगे और इंटरेस्टिंग बनते जा रहा था, तो समय की एक पाबंदी आ गई, तो इसको हम 2-3 कड़ी में हम पूरा करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आपने विल डॉक्यूमेंट, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और काफी इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है जो दस्तावेज कैसे बनाए और विल कैसे किया जाए, तो इसमें काफी चीजें हैं जो हम इन डिटेल आगे समझेंगे। तो रमेश भाई जी आप जो भी, बट थैंक यू ललित भाई साहब, मैं तो ये बताऊंगा, हमने तो काफी सारा डॉक्यूमेंट भी पढ़े और वीडियोस भी देखे, लेकिन जिस तरह से आपने हर बातों को इतनी कम समय में इन डिटेल बताए, मेरे ख्याल से ये बात कोई देखने के बाद तो मेरे ख्याल से काफी उसको एक क्लियर डायरेक्शन मिल जाए कि जिन्होंने हजारों प्रॉपर्टी का डील किया हुआ है पिछले 17 साल में, और मेरे ख्याल से रमेश भाई साहब के बाद जितने भी सारे हमारे प्रॉपर्टी डील हुए ब्रह्मा कुमारीज में, ललित भाई साहब उसमें नहीं होंगे या उनकी जो अप्रूवल नहीं हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो इतने अनुभवों के आधार पर आपने थोड़े समय में जितनी हमें ज्ञान दिए, तो मेरे ख्याल से ये काफी दुनिया की और बाबा के बच्चों की काफी अनमोल जो पैसे है और खजाना है, और जो मानसिक खजाना, जो अननेसेसरी थॉट और लीगल और जो एंजाइटी और पैनिकनेस, उससे हम बच जाएंगे। थैंक यू भाई साहब, हम जरूर आपको ये अनुरोध करेंगे कि हम आगे की एपिसोड में आप हमारे साथ जुड़े रहे। मेरे ख्याल से और 3 एपिसोड लगेंगे जिससे ये सारे बात और डिटेल क्लियर हो जाएंगे। ओम शांति,
2: ओम शांति।
1: नमस्ते।
2: शिवा भाई बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। काफी अच्छा इन्फॉर्मेशन आपने गैदरिंग किया ललित भाई से, और बड़े अच्छे सवाल पूछे आपने। प्रॉपर्टी डीलिंग में खरीदी और बिक्री का जो डॉक्यूमेंटेशन है उसके बारे में आपने बताया, और इसमें जो फ्रॉड होता है उन चीजों को बहुत ही क्लियर और स्पष्ट किया, और साथ में ललित भाई ने भी उसका बहुत ही अच्छी तरह से जवाब दिया कि फ्रॉड से बचने के कौन कौन से तरीके हैं, और उसमें बहुत सारी चीजें उन्होंने बताया। और लेटेस्ट में उन्होंने वो आधार कार्ड जैसा जो है पासबुक का, जमीन का आपका नंबर मिल जाएगा, पासबुक हो जाएगा, और काफी स्टेट्स में हो गए हैं, अब पूरे ही भारत में ये चीजें लागू हो जाएगी। तो निश्चित तौर पे एक बैंक का जिस तरह से हम लोग स्टेटमेंट देख सकते हैं, पैसों का लेन देन देखते हैं और बचत देखते हैं, वैसे ही आपके पास अगर प्रॉपर्टी का बुक होगा और उसमें भी सारी चीजें जो है आप देख सकेंगे। तो ये बहुत ही स्पष्ट चीज है और अच्छी चीज है जो आगे चल के आएगा, और भारत सरकार इस पर अच्छी तरह से काम कर रहा है, तो हमें भी अच्छा लगा। और साथ में रेरा वाला जो कानून की बात आपने बताई वो भी एक बहुत अच्छा प्रॉपर्टी सिक्योरिटी का एक अच्छा माध्यम है जिससे हम लोग चीजों को खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं। तो आइए आगे चल के हम लोग जो एपिसोड्स में बातें करने वाले हैं वो विल कैसे लिखना है या वसीयतनामा जिसको कहते हैं उसके बारे में, और भी अलग अलग आपके मन में भी कोई सवाल होगा प्रॉपर्टी को लेकर, फाइनेंस को लेकर, या इस तरह से कुछ डॉक्यूमेंटेशन जब हम लोग करते हैं उसको कैसे करना चाहिए, फ्रेम कैसा होना चाहिए, पर्टिकुलर किस विषय को लेकर आप करना चाहते हैं, और जमीन जायदाद खरीदते वक्त कौन कौन सी चीजें हैं जो आपको देखनी चाहिए, वो सारी चीजें हम लोग आगे और भी विस्तार से जानेंगे ललित भाई से। तो एक बार ललित भाई के लिए ये चंद तालियां मेरी आपसे, बहुत सारी शुक्रिया। थैंक यू सो मच ललित भाई। तो चलिए दोस्तों आज के इस एपिसोड में बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक आप बने रहिए हमारे साथ। सलाम नमस्ते खमा गणिसा, जय हिंद जय भारत,
0: थैंक यू,
2: शांति।

0: रेडियो मधुबन पर आइए सुनते हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी के प्रेरणादायी विचार।
1: गर्मी होगी तो आई एम फाइन विद इट, लेकिन ठंड मेरे से जहन नहीं होती। ठंड में तो मैंने बीमार पड़ना ही है, तो मैंने अपने आप को कंडीशनिंग दे दी कि गर्मी में आई विल बी फाइन, लेकिन ठंड में तो मैंने बीमार पड़ना ही है। विच मीन्स मैं अपना ध्यान नहीं रखूंगी, ठंड में बीमार पड़ना अलाउड है। तो अब एक महीना दो महीना मैंने अपने आप को बीमार रहना अलाउड हुआ। अगले साल ठंड 6 महीने रही और मेरी प्रोग्रामिंग मैंने चेंज नहीं की और मैंने अपने आप को प्रोटेक्ट भी नहीं किया, तो अगले साल मैं 6 महीने बीमार रही। उसके 2 साल के बाद इतनी ठंड आई, और क्योंकि मेरा इम्यूनिटी सिस्टम हर साल बीमार होते होते होते होते कमजोर होता जा रहा था, उसके 4 साल बाद इतनी ठंड आई दैट आई जस्ट कुडंट टेक इट। एंड देन वी से डिप्रेशन, नर्वस ब्रेकडाउन, दिस। क्योंकि करते करते करते करते ताकत तो कम होती जाएगी और दुनिया की परिस्थितियां बढ़ती जाएंगी।
0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए।

0: नमस्ते दोस्तों, आज मुझे अपने स्कूल की बहुत याद आ रही है। वो दोस्तों के साथ मिलके पढ़ना, खेलना, मजे करना, आधी छुट्टी में साथ मिलके खाना खाना। लो, खाने का नाम लिया और वो देखो अपनी मीना, दीपू और सुनील भी आधी छुट्टी के समय स्कूल में खाना खाने वाले हैं।
1: अरे पराठे दूंगा।
2: मीना, दीपू, मैं अभी आता हूँ।
3: कहाँ जा रहे हो सुनील?
2: अपनी प्लेट धोने।
3: आओ सुनील, पता है रामू काका ने आज बनाया है तुम्हारा मनपसंद दलिया।
4: तुम अपनी प्लेट धोने क्यों गए थे सुनील? क्या वो गंदी थी?
2: गंदी तो नहीं थी, लेकिन तुम तो जानते ही हो मुझे साफ सफाई कितनी पसंद है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि हर चीज बिल्कुल साफ हो।
5: बिल्कुल साफ हो, भूल चूक माफ हो।
0: और स्कूल की छुट्टी के बाद
2: कहाँ जा रही हो मीना? घर नहीं चलना?
3: सुनील, मुझे स्कूल की लाइब्रेरी से एक किताब लेनी है, इसीलिए।
2: अपने लाइब्रेरी की किताबें भी कोई किताबें हैं? सब की सब बेकार।
3: अच्छा सुनील, एक बात बताओ, तुमने राजा मुसद्दी की कहानियाँ पढ़ी है?
2: राजा मुसद्दी, वो कौन है?
3: इसका मतलब तुमने राजा मुसद्दी की कहानियों वाली किताब नहीं पढ़ी। एक काम करती हूँ, आज मैं लाइब्रेरी से वही किताब लेती हूँ, तुम भी पढ़ना, देखना तुम्हें बहुत मजा आएगा।
2: हो ही नहीं सकता, मुझे बिल्कुल मजा नहीं आएगा।
3: और अगर मजा आया
2: तो फिर मैं भी स्कूल की लाइब्रेरी से हर रोज एक किताब लेकर पढ़ा करूँगा।
5: पढ़ा करूँगा, नखरी नहीं करूँगा।
2: लेकिन अगर मुझे मजा नहीं आया तो पूरे एक महीने तक तुम कहानी की कोई किताब नहीं पढ़ोगी। बोलो, मंजूर है?
3: मंजूर है।
0: मीना ने सुनील की चुनौती स्वीकार करते हुए उसे राजा मुसद्दी की कहानियों वाली किताब पढ़ने को दी और अगले दिन स्कूल में आधी छुट्टी के समय,
2: ये लो मीना, तुम्हारी किताब। मैंने सिर्फ पहले दो पन्ने ही पढ़े और मुझे बिल्कुल मजा नहीं आया।
3: लेकिन सुनील, इसमें तो
2: मैं खेलने जा रहा हूँ।
3: सुनील सुनो तो। ओहो, ये तो चला गया।
6: अब क्या होगा मीना, क्या तुम एक महीने तक कोई कहानी की किताब नहीं पढ़ोगी?
7: मीना, दीपू,
8: बहन जी, आप?
7: अरे क्या हुआ, तुम दोनों इतने उदास क्यों लग रहे हो?
2: बहन जी, वो सुनील और मीना ने।
0: जब बहन जी को पूरी बात पता चली तो उन्होंने कहा,
7: आखिर उस कहानी में ऐसी क्या बात थी जो सुनील को पसंद नहीं आई? मीना, जरा वो कहानी पढ़ के सुनाओ तो।
3: जी बहन जी, राजा मुसद्दी की एक बेटी थी, राजकुमारी सोनिया, जिसे वो बहुत प्यार करते थे। लेकिन राजा मुसद्दी कुछ ज्यादा समझदार नहीं थे, इसीलिए वो अपने हर फैसले में अपने बुद्धिमान मंत्री गोपीराम की मदद लिया करते थे।
4: मीना, हो सकता है सुनील को राजा मुसद्दी की ये बात ना अच्छी लगी हो।
3: नहीं दीपू, ऐसा नहीं हो सकता, राजा रानी की कहानियों में बुद्धिमान मंत्री तो होते ही हैं।
7: मीना ठीक कह रही है दीपू, आगे पढ़ो मीना।
3: जब राजकुमारी सोनिया थोड़ी बड़ी हुई तो राजा मुसद्दी ने उसे स्कूल भेजने की बात सोची। बुद्धिमान मंत्री गोपीराम सोनिया को लेकर स्कूल गए। सोनिया बहुत उदास थी क्योंकि वो स्कूल नहीं जाना चाहती थी।
4: समझ गया, सुनील को इस कहानी में यही बात अच्छी नहीं लगी होगी क्योंकि शुरू शुरू में उसे भी स्कूल आना अच्छा नहीं लगता था।
3: लेकिन अब तो सुनील को स्कूल बहुत पसंद है। नहीं दीपू, कोई और बात है।
7: तुम आगे पढ़ो मीना।
3: गोपीराम ने सोनिया को बहुत समझाया कि स्कूल में उसके बहुत से दोस्त बनेंगे जो उसके साथ खेलेंगे, बातें करेंगे, पढ़ेंगे और स्कूल में मिलने वाला खाना भी साथ में खाएंगे। राजकुमारी सोनिया स्कूल जाने के लिए मान

0: नहीं दीपू।
1: सुनील,
2: आओ सुनील, मीना, दीपू और मैं यही सोच रहे हैं कि आखिर तुम्हें इस कहानी में कौन सी बात अच्छी नहीं लगी।
0: बहन जी, मुझे इस कहानी में घसीटा मल की बात अच्छी नहीं लगी।
2: वो क्यों?
0: राजकुमारी सोनिया ने उससे सिर्फ इतना ही तो पूछा था कि क्या वो खाना बनाने से पहले अपने हाथ साबुन से धोता है। इसमें प्रिंसिपल साहिबा से शिकायत लगाने वाले क्या बात थी।
3: घसीटा मल को बुरा इसलिए लगा होगा क्योंकि वो तो खाना बनाते हुए रसोई में ही रहता था, वहाँ उसके हाथ गंदे थोड़ी होते होंगे।
2: ऐसी बात नहीं दीपू, हाथ कहीं भी गंदे हो सकते हैं, रसोई में भी। राजकुमारी सोनिया ने घसीटा मल से वो सवाल पूछकर कुछ गलत नहीं किया था, आखिर वही खाना इतने सारे बच्चों ने भी खाना था।
1: बहन जी, अपने रामू काका भी तो इतने सारे बच्चों के लिए खाना बनाते हैं, क्या उनके हाथ भी?
2: ये बात तुम उन्हीं से क्यों नहीं पूछते?
3: अगर वो भी हमारी बात का बुरा मान गए तो?
2: दीपू, अगर हम किसी से भी प्यार से कोई सवाल करें तो वो कभी बुरा नहीं मानेंगे, समझे?
3: जी बहन जी।
4: मीना, दीपू और सुनील रामू काका के पास पहुँचे।
0: रामू काका?
5: आओ सुनील बेटा।
0: काका, वो ये लीजिए।
5: ये क्या, साबुन?
0: जी, वो हमने सोचा कि आप हम सबके लिए खाना बनाते हैं तो आपको हाथ धोने के लिए साबुन की जरूरत तो होगी ही।
5: तुमने बिल्कुल ठीक सोचा सुनील, लेकिन ये देखो, मैं अपने साथ हमेशा साबुन रखता हूँ और अपने हाथ दिन में कई बार धोता हूँ।
3: काका, जब आप हमारी प्लेट में खाना डालते हैं तो क्या उससे पहले भी अपने हाथ धोते हैं?
5: हाँ दीपू बेटे, हमेशा। खाना बनाने और खाना परोसने से पहले मैं हमेशा अपने हाथ साबुन से धोता हूँ अच्छी तरह। आखिर इतने सारे बच्चों की सेहत का सवाल जो है।
4: और फिर अगले दिन क्लास में।
0: एक बात कहूँ मीना, मैंने कल राजा मुसद्दी की पूरी कहानी पढ़ी, मुझे बहुत मजा आया।
3: अच्छा जी, कल तो तुम कह रहे थे कि मुझे ये कहानी बिल्कुल अच्छी नहीं लगी।
0: दीपू, वो इसलिए क्योंकि पूरी कहानी पढ़ के मुझे पता लगा कि कैसे गंदे हाथों से बना खाना खाकर राजकुमारी सोनिया बीमार पड़ी और तब राजा मुसद्दी को सारी बात का पता चला।
1: सुनील, अब तो तुम्हें लाइब्रेरी से रोज एक किताब लेके पढ़नी पड़ेगी।
0: हाँ मीना, जरूर पढ़ूंगा, लेकिन सिर्फ राजा मुसद्दी की कहानियाँ।
4: देखा दोस्तों, सिखा गई ना बातों बातों में फिर एक नई बात। यही तो है अपनी प्यारी मीना की करामात। चलो अब देखते हैं कि आज हमारे कवि और कवित्री क्या कर रहे हैं। मेरा मतलब है, अब समय है मीना और मिट्ठू की नई कविता सुनने का।
1: स्कूल में खाना बनाने वाले याद रखें ये बात,
6: नगर की साबुन झाग बना के धोना अपने हाथ।
4: वाह वाह वाह वाह, क्या कविता लिखी है अपनी मीना और मिट्ठू ने, मजा आ गया। चलो अब सुनते हैं इस कविता जितना मजेदार एक गाना।

0: गाना गाना मजेदार। अब बोलो कहाँ चले? क्या कहा? अरे जरा जोर से कहो भाई। हाँ बिल्कुल ठीक कहा, अब चलते हैं खेलने।
1: बच्चों आज हम खेलेंगे दिमाग लगाओ शब्द बनाओ। मैं आप सबको एक शब्द बताऊंगी और आपको उस शब्द के हर एक अक्षर से एक नया शब्द बनाना है और हर नए शब्द से जुड़ा एक मुहावरा बताना है। ठीक है
2: जी बहन जी।
1: तो आज का शब्द है जंगल।
3: जंगल में मंगल।
1: दीपू पहले जंगल के हर अक्षर से शब्द तो बनाओ, तुमने तो खेल शुरू होने से पहले ही जंगल में मंगल कर दिया। चलो कौन बनाएगा पहला शब्द?
3: बहन जी जंगल का पहला अक्षर है ज और ज से होती है जूती।
1: शाबाश मिली। और जूती से जुड़ा मुहावरा कौन बताएगा?
4: जूती चाटना।
1: हाँ रोशनी, और इस मुहावरे का मतलब?
5: बहन जी इस मुहावरे का मतलब होता है किसी की खुशामद करना।
1: बिल्कुल ठीक। चलो अगले अक्षर से शब्द कौन बनाएगा?
6: ज के बाद जंगल में आता है ग और ग से होती है गर्दन।
1: सही जवाब गोलू। और मुहावरा?
6: गर्दन झुकाना यानी बहुत शर्मिंदा होना।
1: शाबाश।
7: बहन जी अगला शब्द मैं बताऊं?
1: हाँ मीना बताओ।
7: ज और ग के बाद जंगल में आता है ल और ल से होता है लाल।
1: शाबाश मीना। और लाल से जुड़ा मुहावरा?
7: लाल पीला होना, और इस मुहावरे का मतलब है बहुत गुस्से में आ जाना।
1: शाबाश मीना। मजा आया ना बच्चों?
2: बहुत मजा आया बहन जी।
0: मजा तो आपको भी खूब आया होगा है ना? फिर ठीक है, जल्दी मिलते हैं एक नई कहानी नए गीत और एक नए खेल के साथ। तब तक अपनी प्यारी मीना को चिट्ठी लिखना मत भूलना, चाहे वो आपके सुझाव हो, आपके विचार हो या आपके अनुभव।
8: और मेरा पता है मीना की दुनिया यूनिसेफ पोस्ट बॉक्स नंबर 3008 लोधी रोड HPO नई दिल्ली 110003।

0: जय हिंद। पिछले एक दशक में आपने एक बदलाव नोटिस किया? अब भारत आतंकवाद की जड़ों पर कड़ा प्रहार करने लगा है। नक्सलवाद को तो खत्म ही कर दिया है। डिफेंस के हथियार पहले हम बाहर से मंगाते थे, अब रिकॉर्ड नंबर में एक्सपोर्ट करते हैं। अब भारत चुप नहीं रहता, अब नहीं सहता।
1: हमें गर्व है कि पिछले एक दशक में हमारी सेनाएं तेजी से आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ा रही है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

अगर कहीं भी आग लगने की देनी हो जानकारी तो तुरंत कॉल कीजिए फायर ब्रिगेड के इमरजेंसी नंबर पर. डायल कीजिए 101 अपने फोन से. सजग रहिए, सुरक्षित रहिए. रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी.

0: रेडियो मधुबन पर आइए सुनते हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी के प्रेरणादायी विचार।
1: हम खुश बैठे हैं, हम प्यार से वो चीज खा रहे हैं जो हमें पसंद है, तो पूरी सिचुएशन तो हमारी है एक्चुअली। सी द सिचुएशन इज ऑल अबाउट मी। मैं आराम से इस कुर्सी पे बैठी हूँ, मेरे सामने मेरी फेवरेट मिठाई है, मैं प्यार से खा रही हूँ, एवरीथिंग इज परफेक्ट, हैप्पी हैप्पी। और सामने से कोई आया, किसी ने एक लाइन बोल दी। इस केस में लाइन इतनी बहुत ज्यादा कड़वी भी नहीं है, लेकिन हो सकता किसी ने कोई कड़वी लाइन भी बोल दी, कोई अब्यूजिव लैंग्वेज यूज कर ली, किसी ने झूठ बोल दिया, किसी ने डांट दिया। इस केस में तो कुछ भी नहीं था, इस केस में थोड़ा सा बोला कि आपको थोड़ी परहेज करनी चाहिए थी। हियर माई वर्ल्ड वॉज परफेक्ट, सब कुछ मेरे अनुसार था, लेकिन सामने से कोई आया, सामने से किसी ने एक लाइन बोली और वो एक लाइन ने मेरे पूरे वर्ल्ड को आउट ऑफ कंट्रोल कर दिया। मन डिस्टर्ब्ड, फीलिंग्स डिस्टर्ब्ड, फिर वर्ड्स डिस्टर्ब्ड, काफी देर तक डिस्टर्ब्ड। मीनिंग वन लाइन, किसी की एक लाइन मेरी इस दुनिया को एक घंटे के लिए डिस्टर्ब कर सकती है। और ये भी हो सकता है कि अगली बार जब आप उनसे मिलेंगे तब भी आपको वो वाली बात याद आ जाएगी। सो इट विल नॉट इवन रिस्ट्रिक्ट टू दिस वन आवर। ये हो सकता है कि इट स्टेज ऑन माई माइंड एंड इट कम्स बैक टू माई माइंड लेटर ऑन। शायद कभी जब वो लड्डू खा लिया तब वो बात याद आ जाएगी, या शायद वो बहन सामने कभी आ जाएगी तो वो बात याद आ जाएगी। मतलब माई माइंड, ये हमारा एक्सरे है।
0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए।
2: हेलो स्टूडेंट्स, अगेन दिस इज संदीप त्रिवेदी। प्रिय छात्रों, मैं संदीप त्रिवेदी आपको इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ रेडियो के माध्यम से। और हम लोग आजकल क्वेश्चन आंसर्स कर रहे हैं जो हमारे रह गए थे, एंड अभी तक फोर्थ लेसन हमने कंप्लीट कर लिया। फिफ्थ लेसन की बात, जो गोल्डन रेस बुक है क्लास टेंथ की, RBSE, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की, जिसका नाम है गोल्डन रेस। और अब फिफ्थ लेसन जो है वो उसका नाम है अ हीरो। लेसन हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, सो आज हम क्वेश्चन आंसर शुरू करते हैं। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे सी जो सेक्शन है एक्टिविटी वन में, ए और बी को छोड़ने के बाद, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन नॉट मोर देन 30 to 40 words। ओके, तो ये हमारे इसमें टोटल 15 क्वेश्चंस हैं, तो कुछ हम इनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट डिड द पैराग्राफ ऑफ द न्यूज़पेपर डिस्क्राइब अबाउट। मैंने आपको पहले ही बताया कि क्वेश्चन जब WH से पूछा जाए, जैसे यहाँ पे व्हाट है सबसे पहले, दैट मीन्स WH, तो शुरू के दो शब्द हटाने हैं हमें और आंसर हमारा शुरू होगा द पैराग्राफ ऑफ द न्यूज़पेपर्स। डिस्क्राइब वर्ब है तो डिस्क्राइब की सेकेंड फॉर्म होगी, क्योंकि पास सिंपल में क्वेश्चन पूछा गया है और पास सिंपल में वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगती है अफर्मेटिव। द पैराग्राफ ऑफ द न्यूज़पेपर डिस्क्राइब्ड अबाउट, अभी हम आंसर उठाएंगे यहां से, ठीक है, शुरू में ही यहां पे लिखा हुआ है, देखिए आप, द अबाउट अबाउट द ब्रेवरी ऑफ ए विलेज lad who while returning home by the jungle path came face to face with a tiger. फिर ये सीधा आंसर भी दिया हुआ है यहाँ पे, the paragraph described the fight the boy had with the tiger and his flight up a tree where he stayed for half a day till some people came that way and killed the tiger. ये है पूरा आंसर इसका। ओके, इट्स वेरी इजी, आई थिंक ज्यादा इसमें दिक्कत नहीं है सोचने की। सो अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा ये हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत इजी है, डिड स्वामी एग्री विद द थ्योरी ऑफ करेज गिवन बाय द फादर। पिताजी ने जो साहस की परिभाषा दी या साहस के बारे में जो कुछ कहा, क्या स्वामी उससे सहमत था? तो वी नो दैट स्वामी सहमत नहीं था। तो इस तरह के क्वेश्चन देखिए यहाँ पे इंट्रोगेटिव है, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब है और पास्ट सिंपल है। डिड स्वामी एग्री, आपको तो इन तीन बातों का ध्यान रखना है, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट और वर्ब। वर्ब है एग्री, हेल्पिंग वर्ब से क्वेश्चन शुरू है, तो ऐसे क्वेश्चंस का आंसर आपको यस या नो में देना होता है। तो नो स्वामी एग्री नहीं था, नो स्वामी डिड नॉट एग्री, सेम टू सेम आंसर रहेगा विद द थ्योरी ऑफ करेज गिवन बाय द फादर। बस आपको केवल क्या करना था, सेंटेंस का अफर्म, सेंटेंस का नेगेटिव बना के शुरू में नो लगाना था, बस वेरी सिंपल। थर्ड क्वेश्चन, व्हाट डिड स्वामी थिंक ऑफ द बॉय हु वाज रिपोर्टेड इन द न्यूज़पेपर टू हैव फॉट विद द टाइगर। भाई क्वेश्चन कहता है कि स्वामी उस लड़के के बारे में क्या सोचता था जिसके बारे में अखबार में लिखा गया और जो

बाघ से लड़ा, तो आपको याद आ जाना चाहिए तुरंत कि स्वामी ने तो सोचा था, अरे यार टाइगर ने मार क्यों नहीं दिया इसको, टाइगर मार देता तो कम से कम आज मेरी जान को तो ये आफत नहीं होती। तो आंसर वही व्हाट डिड कोलकाता, स्वामी थॉट थिंका ऑफ द बॉय हु वाज रिपोर्टेड इन द न्यूज़पेपर टू हैव फॉट विद द टाइगर दैट। अब हम देखते हैं शुरू में, फर्स्ट पेज पे आ जाइए, आंसर देखते हैं आपका, दैट द बॉय मस्ट हैव बीन अ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड ग्रोन अप पर्सन, नॉट एट ऑल अ बॉय। ये आंसर होगा कि वो कहता था, स्वामी ने कहा कि अरे वो तो छोटा मोटा बच्चा नहीं होगा, मजबूत बालक होगा, अच्छा खासा हट्टा कट्टा। और साथ में उसने भी कहा था, हाउ कुड अ बॉय फाइट अ टाइगर। तो ये आपका आंसर इसका भी मिल गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन इज सेइंग दैट व्हाई डिड स्वामीज फादर वांट हिम टू स्लीप अलोन। स्वामी बच्चे को अकेला क्यों सुलाना चाहते थे, स्वामी के पिताजी बच्चे को यानी खुद स्वामी को अकेले क्यों सुलाना चाहते थे। वाई डब्ल्यू एच से शुरू है क्वेश्चन, दो हटा दो। स्वामीज फादर वांटेड हिम टू स्लीप अलोन बिकॉज, बिकॉज से आंसर आ जाएगा। देखते हैं हम यहाँ पे इसका आंसर नीचे की तरफ दिया हुआ है, स्वामी डिस्प्यूटेड थ्योरी, देखते हैं आगे हाउ कैन इट बी। सपोज ये सब ठीक है, हो गया, अभी तक हमें स्लीप वाली बात नहीं मिली है। बिकॉज स्वामीज फादर वॉन्टेड टू सी द करेज ऑफ स्वामी, सो ही सेड टू स्वामी टू स्लीप अलोन इन हिज ऑफिस रूम। ये आंसर इसका हो जाएगा। ओके, फोर्थ क्वेश्चन का। नाउ मूव टुवर्ड्स द फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन कहता है, व्हाट डिड स्वामी डू टू अवॉइड स्लीपिंग इन हिज फादर्स ऑफिस रूम। हाँ देखिए, वो चुपचाप चला गया था ना उठ करके, स्वामी ने क्या क्या किया कि भाई उसके पिताजी दोबारा नहीं बोले। वही डब्ल्यू एस से शुरू है, तो स्वामी इसको टू से शुरू कर सकते हैं, टू अवॉइड स्लीपिंग इन हिज फादर्स रूम ऑफिस रूम स्वामी। ओके, प्रिटेंडेड कुछ बहाने वहाने बनाए थे स्वामी ने। स्वामी रोज साइलेंटली एंड टिपटोड अवे टू हिज बेड इन द पैसेज। स्वामी थ्रू हिमसेल्फ ऑन हिज बेड एंड पुल्ड द ब्लैंकेट ओवर हिज फेस। ये सब उसने किया था। ये भी कह सकते हो उसके अलावा कि उसने ये भी कहा था, फ्रॉम द फर्स्ट ऑफ द नेक्स्ट मंथ आई विल स्लीप अलोन फादर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। सिक्स्थ क्वेश्चन है, हाउ डिड स्वामीज मदर ट्राई टू प्रोटेक्ट हिम फ्रॉम हिज फादर्स एंगर। तो इसको भी हम डब्ल्यू एच की तरह ट्रीट करके शुरू के दो वर्ड्स हटा देंगे। स्वामीज मदर ट्राइड टू प्रोटेक्ट हिम फ्रॉम हिज फादर्स एंगर बाय बाय सेइंग दैट हिज ग्रैंड मदर इज स्पॉइलिंग हिम, टेल हर सो एंड डोंट लुक एट मी शी सेड एंड टर्न्ड अवे। ये है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज सेवेंथ, व्हाट डिड स्वामी से टू हिज फादर व्हेन ही वाज टेकन टू द ऑफिस रूम फॉर स्लीप। तो स्वामी सेड टू हिज फादर, इसको वेन से शुरू करिए, वेन स्वामी फादर वाज टेकन टू द ऑफिस रूम, वेन स्वामी वाज टेकन टू द ऑफिस रूम फॉर स्लीप, स्वामी सेड टू हिज फादर दैट लेट हिम स्लीप इन द हॉल हिज ऑफिस रूम
is very dusty and there may be scorpions behind his law box. ये उसने कहा था स्वामी ने. Okay? Next question है, what did Swami feel in the office room in the night? Office room में कैसा लगा स्वामी को? Swami felt in the office room in the night. देखते हैं, cut off humanity, he was pained and angry, he did not like the strain of cruelty he saw in his father's nature, he hated the newspaper for printing the tiger's story, he wished that the tiger had not spared the boy who did not appear to be a boy after all but a monster. Ninth question, what thoughts came into the minds of Swami when he was sleeping alone in the office room? इसको when से शुरू करेंगे हम. When he was sleeping alone in the office room, Swami remembered all the stories of devils and ghosts he had heard in his life. How often had his chum, Mani, seen the devil in the banyan tree at his street end? And what about poor Munisami's father who spat out blood because the devil near the river's edge slapped his cheek when he was returning home late one night? And so on his thoughts. Okay, यहीं तक आएगा, ठीक है? Very easy, सीधा सीधा आंसर दिया हुआ है बुक में. टेंथ क्वेश्चन देखिए, why did Swami sleep under the bench? तो Swami slept under the bench because ये आंसर पूरा पूरा दिया हुआ है. It seemed to be a much safer place, more compact and reassuring. He shut his eyes tight and encased himself in his blanket once again and, unknown to himself, fell asleep. यहां तक आ जाएगा. Okay, next question देखते हैं. 10th question हो गया, 11th question है, what dream did Swami see in his sleep? Very easy, Swami saw in his sleep, देखिए, a tiger was chasing him, his feet stuck to the ground, he desperately tried to escape but his feet would not move, the tiger was at his back and he could hear its claws scratch the ground, scratch, and then a light thud. Swami tried to open his eyes but his eyelids would not open and the nightmare continued. Ye sab katha hota hai. Okay, 12th question, why did Swami attack the burglar? Because Swami attacked the burglar because he thought that before something attack on him, he should have attack on that thing. Okay. 13th question, how did Swami's classmates and reacted to the, so ye sab bahut easy hai, Swami's classmates and all over ye tha na, sab congratulations came showering on Swami. Next day his classmates looked at him with respect and his teacher patted his back. The headmaster said that he was a true Scot. Okay, so ye 13th question tha. 14th aur 15th question to assume karne ke hain. 14th to khair important nahi hai. What indicates Swami's
स्लीपिंग बिसाइड ग्रैनी अगेन, ये 15th क्वेश्चन है। तो इसको ये स्वामी जब दादी के पास दोबारा सोने लग गया इससे क्या पता चलता है, तो इट शोज दैट स्वामी वॉज नॉट कम्प्लीटली फियरलेस बॉय। ओके अब है डी, इसमें टोटल 5 क्वेश्चंस हैं तो मैं पढ़ देता हूं, इनको आपको करना है। व्हाट काइंड ऑफ ए पर्सन स्वामी वॉज एंड व्हाट द पीपल टुक हिम टू बी, डू यू एग्री विद द थ्योरी। सेकेंड क्वेश्चन, डिस्क्राइब स्वामीज कैरेक्टर ऑन द बेसिस ऑफ द स्टोरी, अ हीरो। ये इस तरह के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, कैरेक्टर स्केच एक तरह से। थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इंप्रेशन डू यू गेट ऑफ स्वामीज फादर। फोर्थ क्वेश्चन, डू यू थिंक द टाइटल अ हीरो इज अप्रोप्रिएट इन द लाइट ऑफ स्वामीज कैरेक्टर, डिस्कस। और लास्ट क्वेश्चन है फिफ्थ क्वेश्चन, व्हाट हैव यू कम टू नो अबाउट द कैरेक्टर ऑफ स्वामीज मदर। यानी ऑलमोस्ट सबके सब क्वेश्चन मिलते जुलते हैं। ओके सो आज के लिए इतना ही, कल हम आगे देखेंगे इस लेसन के बाकी की एक्सरसाइजेस, बाकी के जो एक्टिविटीज हैं वो।

0: नहीं, पहले 10 तक काउंट करो फिर आना।
1: 10, 9, 5, 3, 1, 0। मैं आ रही हूँ।
2: ये चुपो चुपो चुपो आ रही आ रही है।
0: अरे यहाँ पे क्या हो रहा है?
1: हाइड एंड सीक दी थी।
0: और ये आकाश कहाँ छुप गया? वो तो दिखाई नहीं दे रहा।
1: बिस्तर के नीचे।
0: अच्छा, तो यहाँ छुपन छुपाई खेली जा रही है।
1: हाँ दीदी।
0: चलो आकाश बाहर आ जाओ।
1: पकड़ लिया।
0: भुवना ने तो पकड़ लिया, सबको ढूंढ लिया। तो मतलब तुम लोग को हाइड एंड सीक खेलना इतना अच्छा लगता है, क्यों भुवना?
1: हाँ दीदी।
0: ओके, तो चलो आज हम गेम्स के बारे में ही बात करते हैं, क्योंकि बच्चों का फेवरेट पास टाइम तो गेम्स ही होते हैं।
3: हाँ दीदी,
4: सही बोला दीदी।
0: है ना? तो सैंडी को सबसे अच्छा गेम कौन सा लगता है? सैंडी,
5: मुझे ना बैडमिंटन और क्रिकेट अच्छा लगता है।
0: बैडमिंटन और क्रिकेट अच्छा लगता है। अच्छा, बैडमिंटन किसके साथ खेलते हो सैंडी?
5: मैं पापा के साथ कभी कभी खेलता हूँ।
0: पापा के साथ कभी कभी खेलते हो? और उसमें जीतता कौन है?
5: पापा, मुझे ज्यादा नहीं आता।
0: अच्छा ऐसा, पापा जीत जाते हैं।
3: आखिर पापा है वो तुम्हारे।
5: सही बात।
0: भुवना, तुम्हें बैडमिंटन अच्छा लगता है?
1: हाँ दीदी, मैं टेनिस भी खेलती हूँ।
0: टेनिस भी खेलते हो? अरे वाह, तो टेनिस के बारे में हमें कुछ बताओ।
1: टेनिस बॉल से खेलते हैं और बैडमिंटन शटल कॉक से खेलते हैं।
0: अच्छा, और कितने प्लेयर्स होते हैं टेनिस में?
1: दीदी जब रैली खेलते हैं दो खेल सकते हैं और टीम भी खेल सकते हैं, दो लोग, दो दो।
0: तो आप स्कूल में टेनिस खेलते हो?
1: स्कूल में नहीं, मैं टेनिस कोर्ट पे खेलती।
0: अच्छा, तो क्या आपने कभी किसी कॉम्पिटिशन में पार्ट लिया है?
1: कॉम्पिटिशन में नहीं, लेकिन मैं रैलीज खेली।
0: अरे वाह, मतलब आपको टेनिस खेलना बहुत अच्छा लगता है।
1: हाँ।
0: और बैडमिंटन खेलना यहाँ पे और किसे अच्छा लगता है?
1: मुझे।
5: मेरे को थोड़ा थोड़ा।
0: सैंडी को तो अच्छा लगता है। और भुवना, भुवना आप किसके साथ खेलते हो बैडमिंटन?
1: मेरी बुआ के साथ, तीन बुआ के साथ।
0: तीन बुआ के साथ?
1: हाँ।
0: और उसमें जीतता कौन है?
1: मैं।
0: अरे वाह, मतलब भुवना तो बैडमिंटन चैंपियन है।
5: कहीं चीटिंग तो नहीं करती तुम?
1: मैं चीटिंग नहीं कर।
0: और आकाश को क्या अच्छा लगता है?
4: छुपन छुपाई, हाइड एंड सीक।
0: अच्छा, तो छुपन छुपाई जो अभी खेली जा रही थी वो अच्छी लगती है?
4: हाँ।
0: क्यों अच्छी लगती है छुपन छुपाई?
4: क्योंकि मैं ऐसी जगह छुप जाता हूँ ना जो प्लेयर ढूंढते ढूंढते परेशान हो जाता है और हाथ जोड़ के सामने कह देता है, भाई सामने आ जा, मैंने हार मान ली है।
0: अब ऐसी सीक्रेट जगह के बारे में तो हम सब जानना चाहेंगे, है ना? तो आकाश, कहाँ कहाँ छुपते हो तुम?
4: जो कोर्ट बनाया होता है ना, जहाँ तक छुपना नहीं होता है, मैं उसके बाहर जाके छुप जाता हूँ।
5: तो चीटिंग हुई।
4: लेकिन चीटिंग की क्या, पकड़ में तो नहीं आता ना।
5: ये बात भी है।
0: लेकिन फिर जिसने आंखें बंद की उसे तो पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि वहाँ तो जाना अलाउड ही नहीं है।
4: और क्या, तभी तो मैं वहाँ छुपता हूँ, क्योंकि डैनर तो वहाँ आएगा नहीं।
5: तुम हाइड एंड सीक दिन में खेलते हो या रात में?
4: दोनों टाइम। दिन में खेलता हूँ तब भी जीत जाता हूँ, रात को खेलता हूँ तब भी जीत जाता।
5: रात में मजा आता खेलने में।
4: हाँ, छुप जाते हैं ना तो दिखते भी नहीं है,
5: अंधेरा में कुछ दिखता नहीं है, लाइट बंद कर दो फिर मजा आता है।
3: लेकिन रात में हमें छुपने में बहुत सारी सावधानियां रखनी चाहिए, क्योंकि रात में अगर हम गलियों में या कहीं और छुपते हैं तो वहाँ कीड़े हो सकते हैं,
4: पेड़ों के वहाँ पे।
5: हाँ पंकज भैया।
0: हाँ पंकज ने बिल्कुल सही बात कही, क्योंकि रात को ना हमें ठीक से दिखाई देता है, और अगर छुपने के जिसमें जैसे आकाश कहीं चले जाते हैं बाहर भी, तो अगर वैसे चले गए तो कोई हम तक पहुंच भी नहीं पाएगा, और कोई प्रॉब्लम हुई तो किसी को पता भी नहीं चलेगा।
4: और एक सबसे सीक्रेट जगह है डैनर को वापस टिप मारने की, वो जैसे आंख बंद के काउंट करता है उसके पीछे जाके खड़े हो जाओ, वो जैसे ही बंद जवाब उसका जैसे ही काउंट पूरा होगा उसको टिप कर दे।
5: ये अच्छा आइडिया है।
1: इसमें क्या मजा आएगा फिर?
4: उनको बार बार डैन मिलता रहेगा।
0: लेकिन एक बार में तो उसे पता चल जाएगा कि आकाश तो पीछे से आता है।
5: तो अगली बार दूसरी आइडिया, नेक्स्ट टाइम डिनर आँख खोल के काउंट करेगा।
4: तो उसको वापस डैन देना पड़ेगा, क्योंकि आँख खोल के काउंट करना अलाउड ही नहीं है।
5: जब तुम चीटिंग कर रहे हो तो वो करेगा करेगा।
0: अच्छा, और कौन सी ऐसी सीक्रेट जगह है जो तुम लोग जाके छुपते हो जब छुपन छुपाई खेलते हो?
5: मैं तो टंकी में जाके छुप जाता हूँ।
0: अच्छा, सैंडी टंकी में जाके छुप जाते हो?
4: गीले नहीं होते?
5: नहीं, हमारी खाली टंकी ना। अच्छा। जो देखते खाली टंकी हो।
0: और भुवना?
1: मैं क्या करती हूँ ना, जहाँ हम क्लोथ सब डालते हैं एक बकेट में, मैं और मेरे भैया जाते हैं और मेरे भैया सारे क्लोथ निकालते, मैं अंदर घुस जाती हूँ और सारे क्लोथ मेरे ऊपर डाल देते हैं, और मेरे भैया पीछे चुप जाते हैं और मुझे साइंस देते मत, आओ हिलो मत, इतना मजा आता है।
0: अरे वाह, यानी छुपने में भैया मदद करते हैं। और पंकज?
3: मैं तो जब हाइड एंड सीक खेलता हूँ तो मैं छुपता ही नहीं, क्योंकि मैं हमेशा अंधेरे में हाइड एंड सीक खेलता हूँ। और जब डैन सामने आता है तो मैं उसके सामने अपने शर्ट उतार लेता हूँ और ऐसा अपना लुक चेंज कर लेता हूँ थोड़ा, तो उसे पता ही नहीं चलता कि है कौन सामने।
4: ये काफ़ी अच्छी बात कही, अब से मैं भी ये ट्रिक आजमाऊंगा।
3: हाँ, ट्राई करना, मजा आता है। हाँ।
0: मतलब पंकज को ढूंढने निकले तो पंकज को मिले ही नहीं।
3: हाँ दीदी, और मैं उसके सामने ही होता हूँ।
0: अरे वाह, ये तो काफी इंटरेस्टिंग तरीका निकाला है पंकज ने।
5: हाँ दीदी।
0: और हाइड एंड सीक खेलते वक्त तो मजा तो आता ही है, क्या कभी कुछ ऐसा हुआ है जो अभी तक आपको याद हो?
1: हाँ दीदी।
0: क्या?
1: एक दिन मैं काउंट करके ना, मैं इतनी धीरे से आती हूँ, जब मेरे भैया मेरे साथ नहीं होते ना, मैं डिनर होती इतनी धीरे से आती हूँ, क्योंकि मुझे पक्का पता है कि मेरे भैया मुझे आउट करेंगे। तो मैं स्लोली स्लोली रूम के अंदर जाती हूँ। एक दिन क्या हुआ, मैं स्लोली जा रही थी, फिर बिस्तर के नीचे मेरे भैया छुप गए, तो सडनली मेरे पैर को पकड़ ली, इतना चिल्ला रही थी दीदी, सडनली आके पकड़ लिया, इतना डर गई मैं दीदी, चिल्लाने लगी।
0: हाँ, आपका ध्यान कहीं और था और भैया ने नीचे से पैर पकड़ लिया तो अचानक से डर गए।

0: ऐसे कौन से गेम्स हैं जो आप लोग सबसे ज्यादा एंजॉय करते हो? आकाश, हाइड एंड सीक तो घर पे खेलते हैं, स्कूल में कौन से गेम्स खेलते हो?
1: स्कूल में मैं कोई गेम ही नहीं खेलता।
0: लेकिन स्कूल में तो गेम्स पीरियड होता है सबकी क्लास में, तो उस टाइम आप क्या करते हो?
1: सारे बच्चे जो अपने अपने गेम्स खेलने लगते हैं, कोई क्रिकेट खेलता है, कोई वॉलीबॉल, कोई फुटबॉल, उसके बीच में मैं फंस जाता हूँ। मेरे को मन भी करता है क्रिकेट भी खेलूं, मन करता है फुटबॉल भी खेलूं, मन करता है वॉलीबॉल भी खेलूं, इसलिए सबसे अच्छा तरीका मैं कोने में जाके बैठ जाता हूं।
0: लेकिन इससे तो कोई फायदा ही नहीं हुआ, आपका मन करता है तीनों गेम्स खेलने का,
2: सारे
0: तीनों
2: गेम्स थोड़े थोड़े देर खेल लेने के।
0: हाँ, नहीं तो एक गेम तो खेलना चाहिए।
1: गेम में ही नहीं रखता ना, उसके बाद जैसे बैठ जाता हूँ ना आराम से, जो मुझे चाहता है ना टीम में लाने के लिए, वो अपने पास अपने आप आ जाता है। चलना यार टीम में खेलते हैं यार।
0: लेकिन ये भी अच्छा तरीका है, बैठ जाते हैं तो बुला ही लेगा कोई ना कोई,
1: लेकिन फोर्स देते हैं,
0: सर फोर्स करते हैं,
2: मतलब तुम्हारे भाव बढ़ जाते हैं।
0: नहीं, लेकिन कोई ना कोई गेम हमें जरूर खेलना चाहिए। फिर कौन सा गेम है जो तुम्हारा फेवरेट है जो खेलते हो ऊपर जाके
1: स्कूल में? स्कूल में मेनली मैं सब बच्चों के साथ वॉलीबॉल ही खेलता हूँ।
0: वॉलीबॉल खेलते हो? वॉलीबॉल में कितने प्लेयर्स होते हैं आकाश?
1: ये तो पता नहीं, लेकिन
0: नाइन प्लेयर्स
1: मैं जिन बच्चों के साथ खेलता हूँ हम लोग चार चार की टीम बना के खेलते हैं।
0: अच्छा, अरे वाह, वैसे वॉलीबॉल खेलने में भी बहुत मजा आता है ना,
2: उससे हमारे हाथ स्ट्रांग होते हैं।
0: हाँ, हाथ हमारे उससे स्ट्रांग होते हैं।
2: पर मुझे वॉलीबॉल नहीं आती, मुझे आती है
3: यार, मैं रग्बी खेलती हूँ।
0: रग्बी? ओहो, ये तो इंटरेस्टिंग गेम है काफी।
2: ये कौन सा गेम है?
1: रग्बी मतलब उसके अंदर एक ओवल बॉल होती है जिसको हमको,
3: इसको ना हम बास्केटबॉल जैसे नीचे गिरने नहीं देते, हमको पकड़ के भागना चाहिए ताकि दूसरी टीम वो बॉल हमसे छीन ले।
0: और हमें गोल तक पहुंचानी होती है?
3: हाँ। गोल तक पहुंचानी चाहिए,
1: और दूसरी टीम बहुत कोशिश करती है हम उससे बॉल ले ले।
0: किसी को चोट लग गई तो फाउल हो जाएगा। और सैंडी को कौन सा गेम पसंद है आउटडोर में?
2: गिल्ली डंडा। सैंडी ग्रो अप।
0: नहीं नहीं, गिल्ली डंडा भी बहुत अच्छा गेम है। गिल्ली डंडा कैसे खेलते और क्या मजा आता है सैंडी को गिल्ली डंडा खेलने में, बताओ।
2: दीदी ना, गिल्ली डंडा में ना डंडे से गिल्ली को मारते हैं, फिर दूर तक फेंकते हैं, फिर वहाँ से जो सामने वाली टीम होती है फिर गिल्ली फेंकती है, अगर उस डंडे में टच हो गया तो आउट, नहीं तो फिर बाद में गिल्ली सॉस मारते दूर भेजते फिर पॉइंट मिलता है।
0: अरे वाह, मतलब ये गेम तो हम में से कोई भी खेल सकता है।
2: हाँ।
0: और कितने लोग खेलते हैं ये गेम मिलके?
2: इसमें जितना चाहे उतना खेल सकता है टीम वाइज,
4: पर एक से ज्यादा।
2: एक से ज्यादा?
0: एक से ज्यादा। तो ये गेम स्कूल में भी खेला जाता है?
2: हम तो घर पे खेलते हैं।
0: ये तो बहुत पुराना गेम है, मेरे ख्याल से हमारे मम्मी पापा ने भी ये गेम खेला होगा।
2: और पंकज हमारा चैंपियन है इस गेम में।
0: अच्छा, पंकज गिल्ली डंडा चैंपियन है?
4: चैंपियन था दीदी, अब तो नहीं खेलता मैं।
0: अब क्या खेलते हो पंकज?
4: अब तो ज्यादा टाइम क्रिकेट ही खेलते हैं।
0: क्रिकेट अच्छा लगता है?
4: हाँ दीदी।
0: और क्रिकेट में आप क्या करते हो, बैटिंग बॉलिंग क्या पसंद है?
4: मुझे तो तीनों पसंद है, आप चाहे फील्डिंग करवा लो या बैटिंग या बॉलिंग।
0: अच्छा, तो आप स्पिनर हो कि फास्ट बॉलर?

0: फास्ट बॉलर, लेकिन स्पिन भी आती है।
1: स्पिन भी आती है, स्पिन कराना तो काफी डिफिकल्ट होता है।
0: हाँ, है मुझे ना? तो इजी लगता दीदी।
1: अच्छा, बैटिंग यहाँ पे कौन कौन करता है?
0: मैं भी।
1: सैंडी? अच्छा, मतलब सैंडी को बैटिंग ज्यादा पसंद है। अच्छा, और अभी अभी कुछ क्रिकेट मैच भी चल रहे हैं ना आप लोगों के?
0: हाँ हाँ दीदी, हमारे टूर्नामेंट चल रहे हैं।
1: अच्छा, उसके बारे में हमें कुछ बताओ तो।
0: हाँ दीदी, ये टूर्नामेंट मैच हम और पंकज ने ऑर्गेनाइज कराया है। इसमें कुछ टीमों को इनवाइट किया है क्रिकेट के लिए, और अभी चल रहे हैं। अभी आज तो मैच पे मैच नहीं था, शाम को मैच है दो टीमों का। उसमें जो जो टीमें अच्छे से खेलेगी, फाइनल में पहुंचेगी, उन्हें प्राइज देंगे विनिंग टीम को।
1: अच्छा, अरे वाह, आप दोनों ने मिलके क्रिकेट टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया है।
0: हाँ दीदी।
1: कितनी टीम्स आ रही हैं उसमें?
0: अभी तो उम्मीद थी कि ज्यादा टीमें आएगी, बट अभी 8-9 टीमें हुई, कम ही टीमें आई।
1: अरे वाह, ये भी बहुत अच्छी बात है। और गेम्स के टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करना तो और भी मजेदार चीज है।
0: हाँ, पर थोड़ी हालत भी खराब होती है, मेहनत तो करनी पड़ेगी।
1: बात तो सही है, लेकिन आप दोनों मिलके मेहनत करोगे तो फिर तो सफलता जरूर मिलेगी, और मिल ही रही है।
0: हाँ
1: है ना?
0: दीदी मिल रही है।
1: और आकाश, अब हम बात करते हैं इंडोर गेम्स की। आउटडोर गेम्स में तो बास्केटबॉल खेला, थ्रो बॉल खेला, वॉलीबॉल, क्रिकेट। अब ये बताओ, इंडोर गेम्स आप लोग कौन कौन से खेलते हो? जब बहुत धूप होती है बाहर तो हमें इंडोर भी खेलना पड़ता है, तो फिर इंडोर गेम्स में कौन कौन से खेलते हो आकाश?
2: मैं इंडोर गेम्स में बॉलिंग प्रैक्टिस करता हूँ, मतलब बॉल को दीवार से मार के उसको कैच करने की।
1: अच्छा, मतलब बॉल को कैच करने की प्रैक्टिस करते हो, तो ये तो हम अकेले भी कर सकते हैं।
3: कुछ बोर्ड गेम्स खेलते हो?
2: हाँ, लाइक लूडो, स्नेक्स एंड लैडर्स, चेस।
1: ओके, आकाश को चेस पसंद है।
0: मुझे चेस समझ में नहीं आती।
3: मैं भी खेलती हूँ दीदी, मेरी ग्रैनी के साथ
1: चेस। अरे वाह, आपकी ग्रैनी के साथ आप चेस खेलते हो, ये तो बहुत अच्छी बात है।
3: इंटेलिजेंट है कि हर बार वही जीतती है।
1: अरे वाह, लेकिन चेस तो काफी अच्छा गेम है, उसमें माइंड की भी अच्छी एक्सरसाइज हो जाती है।
0: हाँ दीदी,
1: है ना? और सैंडी, अगर आपको नहीं आता तो आप सीख सकते हो।
2: मैं हूँ ना, मैं सिखा दूंगा आपको।
0: ठीक है आकाश, तुम सिखा देना मुझे।
1: तो आकाश डन, फिर आप सैंडी को चेस सिखाओगे। और पंकज, आपको आता है कि?
0: मुझे भी नहीं आता दीदी।
1: ठीक है, कोई नहीं, आप दोनों सीख सकते हो, और फिर साथ में जब टाइम मिले तो फिर चेस भी खेल सकते हो। और कौन से इंडोर गेम्स है जो सैंडी खेलता है?
0: कैरम बोर्ड।
1: कैरम बोर्ड? अच्छा, और कैरम बोर्ड में क्या मजा आता है?
0: मजा इसलिए आता है क्योंकि हमेशा चैंपियन में होता और मैं हार जाता।
1: अच्छा, मतलब हारने में भी अपना अलग मजा है नहीं? हाँ, सैंडी।
0: मेरी बस ये टारगेट रहती है कि मैं इसे हरा दूं, और वो पूरा होता नहीं, तो हम खेलते रहते हैं।
1: ये भी अच्छी बात है।
0: हम तीन बेस्ट फ्रेंड है, हर्षित, सैंडी और मैं, लेकिन हमेशा मैं ही चैंपियन हूँ और हमेशा मैं थर्ड आता हूँ।
1: और क्वीन कौन लेके जाता है?
0: क्वीन को तो मैं ले जाता हूँ। बस तू क्वीन के पीछे भागता है। हाँ, मैं पीछे तो भागता रहता हूँ।
1: अच्छा, मतलब सैंडी की कोशिश जारी रहती है, लेकिन
0: एंड के चक्कर में गेम हार जाता हूँ।
1: एंड में क्वीन मिल जाती है पंकज को।
0: हाँ दीदी।
1: ठीक है बच्चों, अभी हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, और फिर ब्रेक से वापस आते हैं और फिर बातें करते हैं कुछ और इंडोर और आउटडोर गेम्स की। रेडियो मधुबन सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: ब्रेक के बाद वापस आ गए हैं हम लेके बच्चों की दुनिया रेडियो मधुबन पर। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और बहुत सारे बच्चों से हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, भुवना, सैंडी, पंकज और आकाश इंडोर और आउटडोर गेम्स की बात कर रहे हैं। अब ये बताओ, जब तुम लोग की समर हॉलीडेज होती हैं तो कौन से गेम्स खेलते हो?
1: हम लोग क्रिकेट खेलते हैं।
0: क्रिकेट खेलते हो? उसके लिए पूरी टीम मिल जाती है क्योंकि स्कूल की तो छुट्टियाँ हो गई होती हैं।
1: हाँ।
0: तो मतलब आसपास के बहुत सारे फ्रेंड्स इकट्ठा होकर खेलते हो?
1: हाँ।
0: और भुवना?
2: मैं चॉकलेट बॉक्स खेलती हूँ, स्टॉप एंड पार्टी, डिमेंडॉल, फिर कंफ्यूजन।
0: कंफ्यूजन?
3: हम भी कंफ्यूज हो गए, ये कैसा गेम है?
2: इसमें एक टेनर होता है दीदी, तो एक को पकड़ने चलता है, फिर उसका नाम सपोज ऋषिता है, वो बोले कि हेल्प शांति, तो शांति आएगा मुझे पकड़ने।
0: ओके।
2: तो फिर मैं बोलूँगी हेल्प पूजा, तो पूजा आएगी शांति को पकड़ने।
0: अच्छा, मतलब ऐसे सब लोग हेल्प लेते रहेंगे और नए नए लोग नए नए लोगों को पकड़ते रहेंगे।
2: कंफ्यूज हो जाएंगे ना दीदी
0: लास्ट में, तो कंफ्यूज हो जाएंगे। मतलब कितना ज्यादा टेंशन रखना पड़ेगा। और आकाश?
4: दीदी मैं तो एक ही गेम खेलता हूँ, सोने का।
0: सोने का गेम?
1: ये कौन सा गेम है?
4: देखो क्या होता है कि स्कूल के टाइम में हम ढंग से सो नहीं पाते।
3: अच्छा, तो रात को सोते सोते गेम खेलते हो?
4: नहीं नहीं, स्कूल से आके फिर नाश्ता करके, खाना खा के ट्यूशन जाना होता है, उसके बाद आके स्कूल का वर्क करना पड़ता है, फिर सुबह को जल्दी उठ के पढ़ाई करनी पड़ती है, फिर स्कूल जाना होता है। इसीलिए मैं क्या करता हूँ समर वेकेशन में, जितना मुझसे हो सकता है ना मैं उतना सोता हूँ, पूरे साल की कसर एक पूरे घर में छुट्टियों में निकालता हूँ।
1: और जीतता कौन है?
4: जीतता स्कूल है।
1: अच्छा,
0: मतलब फाइनली स्कूल खुल जाता है और नींद टूट जाती है।
3: हमें छुट्टियों में सोना नहीं चाहिए, कुछ नया ट्राई करना चाहिए,
1: कुछ ना कुछ अलग करना चाहिए।
4: हाँ। इसीलिए मैं जून में नहीं सोता, सिर्फ मई में सोता हूँ।
0: हाँ, क्योंकि छुट्टियों का टाइम हमें साल में एक ही बार मिलता है, जिसमें हम और नई नई चीजें सीख सकते हैं और इन्हें ट्राई कर सकते हैं, है ना सैंडी?
1: दीदी मैंने ना आइस वाटर भी गेम खेले।
2: हाँ, मैं भी खेलती हूँ दीदी।
1: बर्फ पानी,
2: आइस एंड वाटर।
0: और उसमें क्या होता है?
4: एक बच्चा होता है, आइस लेके आता है, दूसरे बच्चे के ऊपर डाल देता है, और जब तक वो आइस
1: ऐसा नहीं करते
4: और जो बाकी ऑडियंस होते है ना वो बच्चे के ऊपर पानी डाल देता है, तो वो पानी आ जाता है।
3: आकाश कश्मीर से लाते हो आइस?
4: नहीं नहीं, फ्रीजर से।
0: भाई ये तो नाम पे चलेगा आकाश, लेकिन एक्चुअली हम ये आइस वाटर कैसे खेलते हैं हमें कौन बताएगा?
4: नहीं भूगना दीदी आप बताओ।
0: अच्छा सैंडी बताओ।
1: इस गेम में एक होता है, एक डिनर होता है और बाकी सब खेलने वाले होते हैं, तो ट्रेनर किसी को बोल देगा ना कि आइस, तो वो जिस पोजीशन में है उस पोजीशन में खड़ा रहेगा,
4: उसको टच भी करना होता है।
1: हाँ, स्टेचू बन जाएगा, फिर बाकी जो होंगे ना उसे टच करेंगे तो वो आइस से हट जाएगा, मतलब आवाज वाटर बन जाएगा।
0: अच्छा, तो इस गेम में बहुत मजा आता है यानी?
2: हाँ, दीदी बहुत आता है।
0: और अपने स्कूल में दोस्तों के साथ खेलते हो कि घर पे?
1: कभी कभी हम लंच में भी खेलते हैं। ऐसा
0: लंच में खेलते हो?
3: हाँ दीदी।
0: और बहुत तेज तेज भाग के जब पकड़ना होता है, क्या कभी किसी को चोट लगी है कोई गेम खेलते खेलते?
1: हाँ, हमने इसी गेम में, मैंने
2: बहुत सावधान रहते हैं।
0: बहुत सावधान रहते हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है। और सैंडी?
1: मैंने इसी गेम में सर को एक बार गिरा दिया था। भागते भागते
0: सर को गिरा दिया था? मतलब भागते भागते आप उनसे टकरा गए थे?
1: हाँ, फिर सर ने मुझे एक थप्पड़ मार गिरा दिया।
3: दीदी मुझे क्रिकेट में चोट लगी थी जब मैं कीपिंग कर रहा था।
0: कीपिंग करते टाइम?
3: हाँ दीदी।
0: तो आपके पास ग्लव्स होते हैं कि नहीं?
3: नहीं, हम बिना ग्लव्स के ही करते हैं।
1: खतरों के खिलाड़ी हम लोग।
4: मेरे पास ग्लव्स पड़े हैं लेकिन मुझे कीपिंग करनी नहीं आती।
3: लेदर की बॉल से नहीं खेलते ना, टेनिस की बॉल से खेलते, इसलिए ज्यादा
4: चोट लग सकती है। सॉफ्ट टेनिस या हार्ड टेनिस भैया?
3: हार्ड टेनिस होती है।
4: अच्छा,
3: लेकिन फिर भी उससे कीपिंग कर सकते हैं, लेकिन अगर हम कुछ मिस्टेक्स कर देते हैं तो चोट लग जाती है।
4: हाँ, मेरा एक फ्रेंड बता रहा था, उनके अंकल गुजरात की तरफ से खेल रहे थे, तो हार्ड टेनिस की बॉल से वो लोग खेलते हैं, तो जैसे ही बॉल आई तो उनकी लिटिल फिंगर पे कट लग के बॉल चौका लग गया और उनकी लिटिल फिंगर टूट गई।
0: मतलब ये सब गेम्स खेलते टाइम हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि गेम जीतने से इम्पोर्टेंट ये है कि कभी भी किसी को चोट ना लगे, है ना बच्चों?
3: हाँ दीदी।
4: हाँ दीदी।
0: अच्छा, तो ये तो हुई बातें जो हम स्कूल में गेम्स खेलते हैं। अब मुझे ये बताओ, आप जब मम्मी के साथ या पापा के साथ होते हो तो उनको कौन से गेम्स खेलना पसंद है? क्या वो आप लोगों के साथ कभी कोई गेम्स खेलते हैं?
4: मेरे साथ तो नहीं,
1: मेरे साथ भी नहीं।
2: खेलते हैं
3: सैंडी के पापा, खेलते हैं ना बैडमिंटन।
0: हाँ सैंडी के पापा तो सैंडी के साथ बैडमिंटन खेलते हैं
1: जब कभी कभी फ्री होते तो।
3: अच्छा मूड पे डिपेंड,
1: मूड के ऊपर डिपेंड करता हूँ।
0: अच्छा और मम्मी के साथ तुम लोग कोई गेम खेलते हो कि नहीं?
2: हाँ दी।
0: क्या भुवना?

0: आता है ना वो पांच कंकर पत्थर होते हैं।
1: हाँ
0: क्या कहते
1: क्या कहते उसको गट्टे गट्टे की गोटियां ऐसे कुछ।
2: अच्छा तुम लोगों ने कभी पिट्ठू फोड़ खेला है? ये कैसे
3: ये कौन सा गेम है दीदी?
2: नहीं खेला नहीं। इसमें क्या करते हैं हम सात पत्थर लेते हैं जिनको हम बड़े से छोटे और एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक रख देते हैं।
1: सतोलिया।
2: अच्छा उसे सतोलिया बोलते हो?
0: हाँ दीदी।
2: हाँ मतलब उसे खेलने में तो बहुत मजा आता है ना।
1: बहुत।
3: जब एक दूसरे को मारते है ना
1: पॉट पॉट
3: मजा आता है।
2: लेकिन धीरे धीरे मारो किसी के चोट नहीं लगनी चाहिए।
3: हम तो जोर जोर से मारते हैं
0: पूरी कसर निकाल
3: देते बोले। कल मुझे छेड़ रहा था ना ले
1: ले काले मार।
2: अच्छा तुम लोग कभी किसी टीम में कोई टूर्नामेंट खेलने के लिए बाहर गए हो?
1: हाँ दीदी मैं सिंगिंग की टीम के लिए टूर्नामेंट खेलने के लिए बाहर गया था सिंगिंग के लिए।
2: किसी गेम के लिए गए हो क्या?
1: गेम के लिए एक बार गया था स्कूल से बैडमिंटन के लिए सिलेक्ट होकर मैं जोधपुर गया था खेलने के लिए। तो वहाँ पे जितने बच्चे थे ना तो सर ने मेरा नंबर लास्ट में लगा दिया तो आगे के आगे सब लोग आउट होते जा रहे थे। और उस टाइम मेरा लक ऐसा था ना कि जब हवा मेरे तरफ की थी तो मैं जैसे मार रहा था ना वो सीधा उसके पाले में आके गिर रहा था और हवा थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी थी तो उसको परेशान हो जा रहा था बेचारा कोक किधर से मारूं इसलिए बार बार उसका गिर रहा था। लेकिन अंत में मैं आउट हो गया लेकिन हमारी टीम जीत गई।
2: अरे वाह आपकी टीम जीत गई। और सैंडी पंकज तुम लोग कभी गए हो?
3: हाँ दीदी मैं जिम्नास्टिक में गया हूँ।
2: अच्छा
3: जिम्नास्टिक में बहुत बार गया हूँ 5-6 बार गया हूँ। मेरे को 5 सर्टिफिकेट जिम्नास्टिक के।
2: अच्छा जिम्नास्टिक के 5 सर्टिफिकेट्स आपके पास हैं। अरे वाह। और भुवना इसी बात पे हम सब क्या करेंगे सैंडी के लिए तालियां हो जाएंगे।
3: थैंक यू।
2: भुवना आप कभी किसी गेम के लिए गए हो?
4: मैं गेम के लिए नहीं थी पर कराटे इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन में।
1: हाँ
2: कराटे। अरे वाह। और आकाश
1: मेरे साथ कभी ऐसा नहीं हुआ। दीदी आपके साथ कभी ऐसा हुआ है
2: गेम खेलते समय कुछ फनी?
1: हाँ
3: हाँ दीदी
2: हमने तो बहुत डांट खाई है क्योंकि हम गेम जब खेलना शुरू करते थे तो फिर चाहे रात हो जाए और लेट हो जाए खेलते ही रहते थे। सबकी मम्मियाँ बुलाती रहती थी और हम लोग घर ही नहीं जाते थे। फिर सबकी मम्मियाँ आके धीरे धीरे एक एक को कान पकड़ के लेके जाती थी।
0: दीदी आपने इमोशनल कर दिया हमने फनी पूछा था।
2: लेकिन वो हमारे लिए फनी होता था क्योंकि डांट खा के भी हम लोग गेम खेलते रहते थे।
3: तो हम लोगों ने भी बहुत मार खाई है
2: डांट खाई है।
3: मैंने मार खाई है
0: बस।
1: बस पुरानी यादें मत ताजा करो पप्पू भैया।
2: और भुवना
4: नहीं दीदी इतना फनी इंसिडेंट नहीं हुआ।
2: ठीक है तो आज के इस गेम्स के ऊपर करी बातचीत को हम यही समाप्त करते हैं। एक बार फिर अगले एपिसोड में मिलेंगे आपसे नए टॉपिक के साथ और इसी के साथ लेते हैं आपसे अलविदा। तब तक के लिए बाय बाय।

0: आठवीं कक्षा में पढ़ता हूँ। कल जब मैं स्कूल से घर आ रहा था तो पता है मैंने क्या देखा? एक अंकल सड़क पे कचरा फेंक रहे थे। मैंने उनको जाकर बोला कि अंकल सड़क पे कचरा नहीं फेंकना चाहिए, तो पता है उन्होंने क्या बोला?
1: अरे बड़ा है मुझे सिखाने वाला।
0: उन्होंने मेरी बात नहीं मानी और वो चले गए, लेकिन मैंने खुद ही कचरा उठाकर कचरे के डब्बे में डाल दिया।
2: स्वामी विवेकानंद के आदर्शों और विचारों पर केंद्रित कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद।

0: स्वामी विवेकानंद एक महान आध्यात्मिक दिग्गज थे। उनकी बौद्धिक प्रतिभा भी किसी भांति कम न थी। मनुष्यों और अन्य बातों का वे सूक्ष्म पर्यवेक्षण करते थे। नव भारत के जन्म तथा विकास में उनके विचारों का सर्वाधिक योग रहा है। भारत के कोटि कोटि संघर्षरत मानवों के प्रति उनका प्रेम और सहानुभूति केवल गहरी ही नहीं, अपूर्व भी थी।
1: एक और आध्यात्मिक जगत में उनकी पहुंच तथा उपलब्धियां इतनी महान थीं, तो दूसरी ओर निर्धनों तथा असहायों के लिए उनका हृदय रोता था। दीन दुखियों के प्रति इसी करुणा ने स्वामी जी को आर्थिक प्रश्नों तथा समस्याओं पर सतत चिंतन करने को बाध्य कर दिया था। इसीलिए जो लोग स्वामी जी की विचार सारिणी का सुव्यवस्थित अध्ययन करना चाहते थे, उन्हें इस महान हिंदू संत के अर्थनीतिक विचारों से भी परिचित होना पड़ेगा।
0: आधुनिक विज्ञान, भौतिकी, रसायन शास्त्र, इंजीनियरिंग आदि के विकास ने आधुनिक अर्थशास्त्र और अधुनातन धार्मिक जीवन को जन्म दिया है। अतः आज के अर्थशास्त्र के प्रति इन महान सन्यासी के दृष्टिकोण को समझने के लिए हमें पहले आधुनिक विज्ञान, इंजीनियरिंग आदि के प्रति उनके दृष्टिकोण को देखना होगा। ये उद्धरण इस दृष्टिकोण के अध्ययन में सहायक होंगे।
2: आज हमारे राष्ट्र को जरूरत है कार्य में क्षिप्रता की, ऐसी प्रतिभा की जो वैज्ञानिक आविष्कार कर सके। इसलिए मेरी इच्छा है कि हमारे युवा इलेक्ट्रीशियन बने, भले ही वो उसमें सफल न हो सके, पर मुझे इसी बात पर प्रसन्नता होगी कि उन्होंने बड़ा बनने का और अपने देश के लिए उपयोगी सिद्ध होने का प्रयत्न किया। मैं तो ऐसा सोचता हूं कि आधुनिक विज्ञान से अपरिचित एक नीम हकीम के हाथों चंगा होने की आशा रखने के बदले किसी वैज्ञानिक प्रशिक्षण प्राप्त चिकित्सक के हाथों मर जाना अधिक अच्छा है।
1: सर जगदीश चंद्र बसु के प्रति स्वामी जी के मुख निर्गत उद्गार भी यहाँ उल्लेखनीय है। सन 1900 ईस्वी में पेरिस प्रदर्शनी के दौरान हुए वैज्ञानिकों के सम्मेलन में आमंत्रित होकर गए बसु महाशय को देखकर स्वामी जी ने लिखा था,
2: और मेरी जन्मभूमि इस जर्मन, फ्रांसीसी, अंग्रेज, इटली आदि बुद्ध मंडली मंडित महाराजधानी में तुम कहां हो बंग भूमि? कौन तुम्हारा नाम लेता है? कौन तुम्हारे अस्तित्व की घोषणा करता है? उन अनेक गौरांग प्रतिभा मंडली के भीतर से बंगभूमि, हमारी मातृभूमि के यशस्वी वीर युवा ने अपने नाम की घोषणा की। वो वीर संसार प्रसिद्ध वैज्ञानिक डॉक्टर जगदीश चंद्र बसु हैं। अकेले इस बंगाली युवा वैज्ञानिक ने आज विद्युत वेग से पाश्चात्य मंडली को अपनी प्रतिभा से मुग्ध कर दिया। वो विद्युत संचार जिससे उन्होंने मातृभूमि के मृत प्राय शरीर में नवजीवन का तरंग संचार कर दिया, संपूर्ण वैज्ञानिक मंडली के शीर्ष स्थानीय है जगदीश चंद्र बसु, भारतवासी, बंगवासी, धन्य है वीर।
0: यूरोप के मार्ग से दूसरी बार अमेरिका जाते समय स्वामी जी ने अपनी यात्रा के रोचक संस्मरणों को परिव्राजक नामक पुस्तक में निबद्ध किया है। इन संस्मरणों में ऐसे प्रसंग हैं जिनसे मशीन, यंत्र आदि के प्रति स्वामी जी के दृष्टिकोण का पता चलता है। इस प्रकार के कुछ विचारों को हम सुनेंगे।
2: जहाज का आविष्कार किसने किया? किसी व्यक्ति विशेष ने नहीं। तात्पर्य ये है कि उन सभी मशीनों की भांति जो मनुष्यों के लिए अनिवार्य है, जहाज भी सामूहिक श्रम की उपज है। इस सामूहिक श्रम के बिना क्षण भर के लिए भी मनुष्यों का काम नहीं चल सकता, और कारखानों की तरह तरह की मशीनें इसी श्रम के परस्पर योग और अदल बदल से जन्मी हैं। उदाहरण के लिए चक्कू को लो, कितने अनिवार्य हैं वे, चरमराती बैलगाड़ी से लेकर जगन्नाथ के रथ तक, करघे से लेकर कारखानों की भीमकाय मशीनों तक, सब जगह चक्के की उपयोगिता है। मशीनों का थोड़ा सा अनुपात अच्छा है, पर उसकी अधिकता मनुष्य की कार्य प्रेरणा को खत्म कर देती है और उसे भी निर्जीव मशीन बना देती है। कारखानों में मनुष्य दिन पर दिन, रात पर रात, वर्ष भर वही एक सा प्राणहीन कार्य किए जा रहे हैं, उनका एक एक दल कार्य के अंश विशेष में जुटा हुआ है, जैसे पिन की घुंडियां बनाना या धागे के दो छोरों को जोड़ना अथवा तागे बाने के साथ आगे पीछे आना जाना, और यह क्रम सारा जीवन चलता रहता है। परिणाम यह होता है कि यदि वो विशेष काम बंद हो जाए तो उन्हें जीविकोपार्जन का दूसरा कोई तरीका नहीं सूझता और वे भूखों मरती हैं। मशीन के समान एक सा कार्य करते रहने से मनुष्य स्वयं निर्जीव मशीन सा हो जाता है।
1: इन उद्धरणों से स्पष्ट है कि स्वामी जी मशीनों के अंधभक्त न थे। उन्होंने मशीनों के पक्ष में जो कुछ कहा वो सर्वथा विचारपूर्ण है। स्वामी जी की ये निश्चित धारणा थी कि भारतीयों को पश्चिम की भौतिकवादी सभ्यता को भी अपनाना होगा। स्वामी जी के इसी दृष्टिकोण की पृष्ठभूमि में हमें इन उद्धरणों पर विचार करना होगा।
0: आधुनिक जीवन में व्यापार के महत्व के प्रति विवेकानंद पूरी तरह सजग थे। 1895 ईस्वी में न्यूयॉर्क से एक पत्र में लिखते हैं,
2: देवबाबू से कहना कि इंग्लैंड और अमेरिका में मूंग तथा अरहर दाल का अच्छा खासा व्यापार चल सकता है। यदि बनी हुई दाल उनके सामने ठीक ढंग से रखी जाए तो उसका काफी चलन हो जाएगा। यदि दाल के छोटे छोटे पुड़े बना दिए जाएं और उन पुड़ों में दाल बनाने की विधि छाप दी जाए, यदि इन पुड़ों को ग्राहकों के घर पर भेजा जाए और कहीं पर छोटी सी दुकान खोल ली जाए तो अच्छा खासा व्यापार चलाया जा सकता है। यदि कोई एक व्यापारिक संघ बना ले और भारत से इस देश में विक्रयार्थ वस्तुएं ले आए तो उसका व्यापार उत्तम रीति से चल सकता है।
1: शरद चंद्र चक्रवर्ती स्वामी जी के एक शिष्य थे। वे लड़कों को ट्यूशन पढ़ाया करते थे। स्वामी जी ने उन्हें किसी व्यापार में लग जाने को प्रेरित किया था। स्वामी जी ने कहा था,
2: यदि तुम सांसारिक मनुष्य की भांति रहना चाहते हो और पैसे कमाना चाहते हो तो अमेरिका चले जाओ, मैं तुम्हें आवश्यक निर्देश दे दूंगा। तुम देखोगे कि 5 ही साल में तुमने काफी कमा लिया है।
1: इस पर शिष्य ने पूछा था,
3: मैं वहां किस चीज का व्यापार करूंगा? मेरे पास तो पैसा ही नहीं है, पैसा कहां से आएगा?
1: तब स्वामी जी ने उनसे कहा था,
2: क्या मूर्खता की बातें करते हो, तुम में अदम्य शक्ति भरी है। केवल मैं कुछ नहीं हूं करते रहने से तुम सचमुच निर्बल हो गए। तुम्हारी अकेले की ही बात नहीं, सारी हिंदू जाति वैसी हो गई है। एक बार विश्व का भ्रमण करके तो देखो, देखोगे कि दूसरे देशों का जीवन प्रवाह कितनी उद्दामता से बह रहा है और तुम लोग क्या कर रहे हो। इतना पढ़े लिखे होने के बाद भी नौकरी दो, मुझे नौकरी दो चिल्लाते हुए तुम दूसरों का दरवाजा खटखटाते फिरते हो।
1: उसी दौरान स्वामी जी ने यह भी कहा था,
2: तुम्हारे पास टिकट का पैसा नहीं है तो खलासी का काम करते हुए विदेशों में जाओ। भारत में बने कपड़े, तौलिए, बांस का सामान और अन्य देशी चीजें ले जाओ और यूरोप एवं अमेरिका की सड़कों पर फेरी लगाओ। तुम देखोगे कि आज भी विदेशी बाजारों में भारतीय चीजों की कितनी पूछ है। मुझे अमेरिका में हुगली जिले के कुछ लोग मिले जो इसी प्रकार भारत में बनी चीजों की फेरी लगा लगा कर आज धनी बन गए हैं। तुम में क्या उन लोगों से भी कम बुद्धि है? उदाहरण के लिए सुंदर बनारसी साड़ियों को ले लो। संसार के अन्य किसी भी भाग में उस प्रकार की साड़ी नहीं बनती। अमेरिका में उन साड़ियों को ले जाओ और साड़ियों के वस्त्र के गाउन बना बना कर बेचो, फिर देखना कि तुम कितना कमाते हो।
0: इन उदाहरणों से ये पूर्णतः स्पष्ट है कि यद्यपि स्वामी जी एक सन्यासी थे, आध्यात्मवादी थे और जीवन के कुछ पहलुओं के प्रति यथार्थ अर्थों में रूढ़िवादी प्रवृत्ति के थे, फिर भी विज्ञान, इंजीनियरिंग, मशीन, वाणिज्य आदि के प्रति उनका दृष्टिकोण नितांत आधुनिक था। परिवारजत पुस्तक के इस उदाहरण से इस तथ्य की पुष्टि होती है।
2: प्राचीन काल से मानवीय सभ्यता को उसके अधुनातन स्वरूप पर ले जाने में जो बातें कारण स्वरूप रही हैं, उनमें भारत के वाणिज्य का स्थान कदाचित सबसे महत्वपूर्ण है। स्मरणातीत काल से भारत उपज और उद्योग वाणिज्य के क्षेत्र में विश्व के अन्य सभी क्षेत्रों की अपेक्षा सबसे आगे रहता आया है। एक ही शताब्दी पूर्व की बात है, सूती वस्त्र, कपास, जूट, नील, लाख, चावल, हीरे, मोती आदि संबंधी विश्व की समूची आवश्यकता एकमात्र भारत ही पूरी करता रहा है। भारत के समान उत्कृष्ट कोटि के रेशमी और किनखाब जैसे ऊनी वस्त्र बनाने वाला देश और कोई नहीं रहा है। यहाँ की लौंग, इलायची, काली मिर्च, जायफल और जावित्री आदि प्रसिद्ध रही है। अतः स्वभावतः बहुत पुरातन काल से जो भी देश जिस किसी युग में सभ्यता के आलोक से आलोकित हुआ, तब उसे उन सब सामग्रियों के लिए भारत पर ही निर्भर रहना पड़ा। ऐ भारत के श्रमिक वर्गों, ये तुम्हारे ही निरंतर नीरव श्रम का फल है कि बाबिल, फारस, सिकंदरिया, यूनान, रोम, वेनिस, जिनोवा, बगदाद, समरकंद, स्पेन, पुर्तगाल, फ्रांस, डेनमार्क, हॉलैंड और इंग्लैंड क्रम से प्रभुत्व और प्रतिष्ठा के शिखर पर पहुंचे हैं।
1: भारत के आर्थिक जीवन का जो पहलू स्वामी जी के ध्यान को सबसे अधिक आकर्षित करता है, वो है गरीबों की समस्या। वे कहते हैं, भारत में सारी विपत्तियों की जड़ है यहाँ के जनसाधारण की गरीबी।
2: पूर्व की ज्वलंत आवश्यकता धर्म नहीं है, धर्म उनके पास यथेष्ट है, वो तो रोटी है जिसके लिए भारत के लाखों विपन्न लोग सूखे गले से चिल्ला रहे हैं। वे मांगते हैं रोटी और हम उन्हें देते हैं पत्थर। अनाहार से पीड़ित लोगों के समक्ष धर्म परोसना उनका अपमान करना है। अपने धर्म के क्रिया अनुष्ठानों को फिलहाल ताक पर रख दो और पहले जीवन संग्राम के लिए तैयारी करो। भूखे पेट धर्म की साधना नहीं हो सकती। हम में से जो लोग अभी उच्चतम सत्यों के लायक नहीं हुए हैं, उनमें से अधिकांश के लिए अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप एक तरह का विष रहित हुआ भौतिकवाद वरदान सिद्ध होगा।
0: स्वामी जी का मत था कि लोगों के लिए केवल साधारण भोजन, वस्त्र और आवास अर्थात अनिवार्य आवश्यकताओं की ही व्यवस्था न हो, अपितु उन्हें सुखोपभोग के अवसर भी प्राप्त होने चाहिए। वे कहते थे कि आध्यात्मिक दृष्टि से भी ये वांछनीय है। जो लोग मन से भोगों और सुखों की लालसा करते रहते हैं, उन पर आध्यात्मिक उन्नति थोपी नहीं जा सकती।
2: वस्तुओं की असारता देखकर और अनुभव करके उन्हें त्याग देना होगा, यही आदर्श है। जब ये देख लिया कि भौतिक जगत निस्सार और खोखला है, केवल राख से भरा है, तब उसका त्याग करके वापस चले जाना चाहिए। मन मानो वृत्ताकार में इंद्रियों की ओर जा रहा है, इसी को प्रवृत्ति कहते हैं। इस मन को पीछे आना चाहिए, वापस आना चाहिए, इसे निवृत्ति कहते हैं। प्रवृत्ति को बंद होना चाहिए और निवृत्ति को कार्यरत, यही आदर्श है। पर इस आदर्श की अनुभूति जीवन के सुखों का कदाचित अनुभव हो जाने के पश्चात ही हो सकती है।
1: एकदम से संपूर्ण त्याग का जीवन अपनाने का जिनमें सामर्थ्य और साहस नहीं है, उन्हें सांसारिक सुखों के खोखलेपन के अनुभव और अनुभूति के लिए अवसर देना चाहिए।
2: परंतु जीवन के प्रति इस मोह को त्यागना बड़ा कठिन है, बहुत कम लोग ही ऐसा कर सकते हैं। हमारे शास्त्रों में इसके लिए दो उपाय बताए गए हैं, एक है नेति नेति का मार्ग और दूसरा इति का। पहला निषेधात्मक है और दूसरा विधेयात्मक। निषेध अर्थात नेति नेति का रास्ता सबसे कठिन है, वो केवल इन्हें गिने बहुत उदात्त मानस वाले प्रबल इच्छा शक्ति संपन्न व्यक्तियों द्वारा ही साधता है। अधिकांश लोग तो इति का, संसार में से होकर जाने का ही रास्ता अपनाते हैं। ये वैसे ही है जैसे कांटे से कांटा निकालना, बंधनों की सहायता से स्वयं उन्हीं बंधनों को काट डालना।
0: उन्होंने पूरब और पश्चिम की तुलना करते हुए देशवासियों को फटकारा था।
2: पश्चिम के लोगों में रजोगुण का आधिक्य है और इसलिए आज वे सुखोपभोग की सीमा तक पहुंच गए हैं। क्या तुम समझते हो कि उनके बदले तुम योग में सिद्धि प्राप्त करोगे? तुम जो पेट भरने के लिए इधर उधर भटकते फिरते हो।
1: हम कह चुके हैं स्वामी जी महान आध्यात्मिक दिग्गज थे। उनमें ये घोषणा करने का साहस था, अंतर्दृष्टि और गहराई थी कि भौतिक प्रगति और आध्यात्मिक उन्नति में कोई मौलिक विरोध नहीं है। वे कहते हैं,
2: जब आत्मा की उन्नत शक्ति जड़ पर अपना कार्य करती है तो उससे भौतिक प्रगति होती है, जब वो विचारों पर कार्य करती है तो उससे बौद्धिक विकास होता है, और जब वो शक्ति स्वयं आत्मा पर ही कार्य करती है तब मनुष्य देवता बन जाता है।
0: ये उक्ति उन महान आत्मा विवेकानंद के सबसे गंभीरता तथा उद्बोधक उद्गारों में से एक है। हमारी महान मातृभूमि की उन्नति बहुत कुछ इस बात पर निर्भर है कि हम स्वामी जी के इस महत्वपूर्ण कथन के गूढ़ मर्म को कहां तक समझते और क्रियान्वित करते हैं।
1: जैसा हमने देखा कि स्वामी जी के मतानुसार भौतिकवाद और आध्यात्मवाद में कोई अंदरूनी या मौलिक विरोध नहीं है, उसी प्रकार उनके मत से पूर्व और पश्चिम की सभ्यताओं में भी विरोध नहीं है। वे दोनों एक दूसरे के पूरक हैं और भविष्य की आदर्श सभ्यता उन दोनों के मिलन से जन्म लेगी।
2: पश्चिम की वर्तमान सभ्यता दिन पर दिन मनुष्यों की इच्छाओं तथा विपदाओं को बढ़ा रही है। दूसरी ओर भारत की प्राचीन सभ्यता लोगों को आध्यात्मिक उन्नति का रास्ता बता करके उनकी भौतिक जरूरतों को पूरी तौर से सदा के लिए भले न सही पर बहुत अंश में दूर करने में निसंदिग्ध रूप से सफल हुई है। वर्तमान युग में भगवान श्री राम कृष्ण का आविर्भाव इन दोनों सभ्यताओं को एक में मिला देने के लिए हुआ है। आज के युग में मानव को एक ओर जहां अत्यंत व्यवहारिक बनना है, वहीं दूसरी ओर उसे गूढ़ अध्यात्म विद्या भी प्राप्त करनी है। भारत को यूरोप से बाह्य प्रकृति पर विजय प्राप्त करना सीखना है और यूरोप को भारत से आंतर प्रकृति को जीतने की कला सीखनी है। तब न हिंदू रहेंगे न यूरोपियन, तब रहेगी वो आदर्श मानवता जो बाह्य और अंतर दोनों प्रकृतियों पर विजय प्राप्त कर चुकी होगी।
0: हम पुनः गरीबी के प्रश्न पर आते हैं। स्वामी जी ने गरीबी के पाप को दूर करने के लिए कौन से उपाय सुझाए हैं? ये उपाय क्रमबद्ध रूप से विवेचित हुए हैं क्योंकि स्वामी जी ने एक अर्थशास्त्री की भांति उन पर वैज्ञानिक ढंग से विवेचन करने का दावा नहीं किया है। तथापि इस प्रश्न पर उनके दृष्टिकोण को हम उनके भाषणों और लेखों से जान सकते हैं।
1: उनके मतानुसार जो प्रथम दो उपाय हम देखते हैं वे हैं पराविद्या अर्थात आध्यात्म विद्या का प्रसार, जिससे वेदांत को व्यावहारिक धरातल पर लाकर लोगों के दिन प्रतिदिन के जीवन में उतारा जा सके, और अपराविद्या का प्रसार। वे कहते हैं,
2: हमने ये अन्नदान बहुत किया, अब हम अन्य दो का दान करें, परा और अपरा विद्या का दान। कुछ कैमरे, नक्शे, ग्लोब और कुछ रासायनिक द्रव्य इकट्ठा करो, इसके बाद एक बड़ी झोपड़ी, फिर निर्धन जनता को इकट्ठा करो और उन्हें भूगोल एवं खगोल विद्या आदि संबंधी चित्र दिखाओ तथा रामकृष्ण परमहंस की बातें बताओ। संसार में क्या हो रहा है, संसार क्या है, इस विषय में उनकी आंखें खोलने का प्रयत्न करो। गरीब अपढ़ लोगों के बीच जाओ, उनके घरों में पहुंचो, दोपहर में जाओ, शाम को जाओ, जब भी वे मिल जाएं उनकी आंखें खोलो। पुस्तकें किसी काम की नहीं, उन्हें मौखिक शिक्षा दो।
0: इसी बात को उन्होंने समझाकर कहा है,
2: अद्वैत का एक दोष रहा है कि अब तक आध्यात्मिक स्तर पर ही उसका कार्य होता रहा है, जीवन के अन्य किसी स्तर का उसने स्पर्श नहीं किया, पर अब उसको व्यवहारिक बनाने का समय आ गया है। अब वो और रहस्य बना हुआ ना रहेगा, अबोर हिमालय की ग्रीक कंदराओं में निभृत वनों में सन्यासियों के साथ न रहेगा। उसे अब लोगों के प्रतिदिन के जीवन में उतरना होगा। राजा के महल में और तपस्वी की कुटिया में समान रूप से उसका कार्य होगा, गरीब की झोपड़ी में और सड़क के भिखारी में, सर्वत्र सब में अब उसकी क्रिया होगी। अद्वैत को व्यवहार में लाने का समय अब आ गया है। आओ उसे स्वर्ग के सिंहासन के मर्त्य की भूमि पर ले आए। यही इस युग के लिए ईश्वरी योजना है।
0: स्वामी जी की राय में हमारी गरीबी का एक मुख्य कारण है आलस्य। राजसिक प्रवृत्ति का प्रसार ही उसको दूर करने का उपाय है। वे कहते हैं, असल पाप तो ये आलस्य है जो हमारी गरीबी का मुख्य कारण है।
2: किंतु क्या ये सब जीवन की आवश्यकताओं को प्राप्त करना, उद्योग, वाणिज्य, व्यापार और यातायात आदि को बढ़ावा देना कभी संभव हो सकता है यदि मनुष्यों में यथार्थ रजोगुण ना जागे? मैंने सारे भारत का भ्रमण किया पर मुझे इस राजस की अभिव्यक्ति कहीं भी नहीं मिली। सब ओर मैंने तमस ही तमस देखा। लोग तमोगुण से घिरे पड़े हैं। केवल सन्यासियों में ही मैंने इस रजस और सत्व का प्रकाश देखा है।
1: स्वामी जी देशवासियों को शक्तिशाली देखना चाहते थे। उन्हें जगाने के लिए उन्होंने कहा,
2: हर व्यक्ति को बताओ कि उसमें अनंत शक्ति भरी है, कि वो अक्षय आनंद का भागीदार है। इस प्रकार लोगों में राजसिक भाव जागृत करो, उन्हें जीवन संग्राम के योग्य बनाओ और तत्पश्चात उनसे मुक्ति की बात करो।
0: स्वामी जी के अनुसार गरीबी के उन्मूलन का उपाय है वैज्ञानिक उत्पादन के लिए पाश्चात्य अर्थात आधुनिक तरीकों को अपनाना। हमें पश्चिम से वो सब सीखना चाहिए जो हमें जीवन संग्राम के लिए मजबूत बनाएगा। पर इसका तात्पर्य ये नहीं कि अपने को शूद्र समझते हुए याचना के स्वर में, मानो उनके उपकारों से दबे हुए से, हम उनसे सब सीखें, क्योंकि हम भी पश्चिम को अध्ययन ज्ञान की शिक्षा दे सकते हैं और इस क्षेत्र में उनके गुण बना सकते हैं।
2: तो क्या हमें पश्चिम से कुछ नहीं सीखना है? क्या हम पूर्ण हो चुके हैं? हमें अभी भी कई बातें सीखनी है। मरते दम तक हमें नई और उच्चतर बातों के लिए प्रयत्नशील रहना चाहिए। मैं एक कट्टर की तीव्रता चाहता हूं और साथ ही भौतिकवादी का विस्तार भी। मैं ऐसे विस्तार चाहता हूं जो समुद्र के समान अथाह हो और अनंत आकाश के समान सीमाहीन। हम विश्व के किसी भी देश की भांति उदार विचार वाले हों, पर साथ ही अपनी परंपराओं के प्रति उतने ही सच्चे संरक्षणशील भी हों जितना केवल एक हिंदू ही रह सकता है। हमें पश्चिम से उसकी कलाओं और भौतिक विज्ञानों की शिक्षा लेनी होगी। पश्चिम के विज्ञान की सहायता से भूमि को खोदो और अनाज उत्पन्न करो, पर दूसरों की दास्ता करते हुए नहीं, बल्कि पाश्चात्य विज्ञान के सहयोग से अपनी भुजाओं के बल पर उत्पादन के नए तरीकों का आविष्कार करके।
1: गरीबी की समस्या हल करने के लिए स्वामी जी ने अगला उपाय बताया, नए व्यवसाय खोलना। वे कहते हैं,
2: हम मूर्खों के समान बाह्य सभ्यता के विरुद्ध आवाजें उठाते हैं, और उठाएं क्यों ना, अंगूर खट्टे जो हैं। बाह्य सभ्यता जरूरी है, यही नहीं ये भी आवश्यक है कि हम जरूरत से अधिक और दूसरी वस्तुओं का भी उपयोग करें जिससे गरीबों के लिए नए व्यवसाय खोल सके। भौतिक सभ्यता ही क्यों, ऐशो आराम भी जरूरी है ताकि गरीबों को काम मिल सके।
0: स्वामी जी ने हमें बताया है कि भारत के आर्थिक जीवन में कुछ ऐसी बातें हैं जिनके कारण यहां असीम आर्थिक प्रगति हो सकती है। जैसे भारत के गरीब दूसरे देशों की तुलना में अच्छे हैं, भारतीय आत्मा की शक्ति में विश्वास करते हैं, जबकि पश्चिम के लोग भुजाओं की शक्ति में। भारत में प्रचुर प्राकृतिक साधन पाए जाते हैं।
2: मैं गरीब हूं, गरीबों से प्यार करता हूं। मैं अमेरिका के गरीब कहलाने वाले लोगों को देख रहा हूं, उनकी व्यवस्था मेरे देश के गरीबों की अपेक्षा बहुत अच्छी है, तो भी उनके लिए अमेरिका के न जाने कितने हृदय रोते हैं, और हमारे देश में वहां के सदा से पद दलित 20 कोटि स्त्री पुरुषों के लिए भला किसका हृदय रोता है? उनकी मुक्ति का क्या उपाय है? कौन रोता है उनके लिए? वे अंधकार से प्रकाश में नहीं आ पाते, उन्हें शिक्षा नहीं मिल सकती, कौन उन्हें आलोक दिखाएगा?
1: उन्होंने और भी कहा है,
2: जब मैं पश्चिमी देशों में था तो जगन माता से प्रार्थना किया करता था, मां यहां के लोग फूलों की सेज पर सोते हैं, भांति भांति के उत्तमोत्तम भोजन करते हैं, और कोई ऐसा सुख नहीं है जो वे नहीं भोगते, जबकि मेरे देश के लोग भूखों मर रहे हैं। अंबे, क्या उनके लिए कोई उपाय नहीं है? पश्चिम में जाकर धर्म का प्रचार करने का एक कारण मेरा यह भी था कि मैं अपने देश भाइयों के पेट भरने का कोई उपाय ढूंढना चाहता था।
1: स्वामी जी भारत के स्वर्णिम भविष्य के प्रति आस्थावान थे। वे कहते थे, भावी भारत अतीत के भारत की पुनरावृत्ति नहीं होगा। वे कहते हैं,
2: कोई अपने ग्रंथों के भारत को, अपने अध्ययन और सपनों के भारत को पुनः देखने की इच्छा भले ही कर सकता है, पर मेरी आशा फिर से उस भारत को देखने की है जिसके अतीत की विशेषताएं इस युग की विशेषताओं के द्वारा विशेष रूप से संवर्धित हुई है। भविष्य का भारत अतीत के भारत की अपेक्षा अनंत गुना महिमान्वित होने वाला है। अद्भुत गौरवशाली भावी भारत आने वाला है। मुझे निश्चय है कि वो आ रहा है, वो महत्तर भारत जैसा वो पहले कभी नहीं था।
1: विवेकानंद के भाषण और लेख उस लक्ष्य की प्राप्ति के अमूल्य सुझावों से भरे पड़े हैं, और यदि हम अपने सपनों में संजोए हुए भविष्य के महान भारत को प्रत्यक्ष अपनी आंखों के सामने महिमान्वित सत्य के रूप में साकार करना चाहते हैं, तो स्वामी जी के सुझावों के अनुसार हमें कार्य करने होंगे।

अभी आप सुन रहे थे स्वामी विवेकानंद के विचारों और आदर्शों पर केंद्रित कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद। अब हमें आज्ञा दीजिए, हम आपसे मिलते रहेंगे अपने इस कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद में।

0: बेकार
1: प्रकृति बेटा, पृथ्वी पर तुम्हें क्या करना है तुम्हें पता है ना?
2: मुझे लोगों को प्यार से इंस्पायर और लाइफ के लिए एजुकेट करना है, ताकि वो नेचुरल रिसोर्सेज का उपयोग कर इस पृथ्वी को बचाए रखें।
1: इसमें तुम्हारी मदद करेंगी ये तीन चीजें। पहली टियारा ऑफ फ्लावर्स, जो तुम्हें हमेशा हैप्पी और एनर्जेटिक रखेंगे। दूसरा ये बैज ऑफ लाइफ, जो लोगों को पर्यावरण के लिए लाइफ जीवन शैली की याद दिलाएगा। जब वे प्रकृति की रक्षा करेंगे तो प्रकृति उनकी रक्षा करेगी। तुम ये बैज उन लोगों को भी दे सकती हो जो हमारे प्लैनेट की बेहतरी के लिए योगदान करते हैं। और तीसरा ये बैग ऑफ होप, जब भी कोई एनवायरनमेंट को हार्म करे तो तुम इसमें से इको सस्टेनेबल अल्टरनेटिव निकाल कर उसे देना।
2: ओके, अब मैं अपने मिशन पर चलती हूँ।

नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ मंगल कामनाएं करते हैं और बड़ा ही अच्छा लग रहा है आज विशेष आप सभी से जुड़ने का फिर मौका मिला है। तो आइए 19 जून की कुछ खास बातें आपसे शेयर करना चाहूँगा और विशेष विशाखा नक्षत्र आज है और सुदर्शन अग्रवाल, माधव राव स्प्रे और राहुल गांधी, ओमकार बेबी सिंह, इन सभी का जन्मदिन है। तो इनके बारे में हम लोग जानेंगे कुछ खास बातें इनके बारे में और कुछ अच्छे अनुभवों को आपके साथ साझा करने का बहुत ही कोशिश मेरी जारी रहती है। तो आज इन चार लोगों के बारे में ज़रूर बताना चाहूँगा। आइए सुदर्शन अग्रवाल, माधव राव स्प्रे, राहुल गांधी और नेरुला वेणु माधव, सुभाष मुखोपाध्याय और गुरुप्रसाद महापात्रा, इन सभी का जो है पुण्य दिवस है। आप सुना है रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर। जी हाँ, सफ़र इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं और एक सुंदर विचार के साथ कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं आपके लिए खास। कई लोग मुझको गिराने में लगे हैं, सरेआम चिराग बुझाने में लगे हैं। उनसे कह दो कतरा नहीं मैं, समंदर हूँ, डूब गए वो खुद जो डुबाने में लगे हैं। आप सुनाए हैं रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर। सफर इस कार्यक्रम को सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन।
1: चलती हुई गाड़ी में बिना किसी उचित कारण के चैन खींचना कानूनी अपराध है। कृपया उचित कारण के बगैर चैन ना खींचे। रेल यात्रा के दौरान किसी भी मदद के लिए रेलवे कर्मचारी या पुलिस की सहायता लें।
0: रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ। आइए, एक मित्र हमारे साथ जुड़ गए हैं आज और स्टूडियो में आए हैं पूना से, तो उनसे भी बातें कर लेते हैं, है ना। नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर। आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। सफर इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ मंगल कामनाएं करते हैं। आइए, हमारे साथ स्टूडियो में विशेष महाराष्ट्र से कुछ मेहमान आए हुए हैं, उनसे हम लोग बातें कर रहे हैं। तो विशेष हमारे साथ
3: अरुण कुमार देवड़ेकर,

0: फिर 7 दिन का क्लास कंप्लीट किया
1: जी,
0: क्लास कंप्लीट करने के बाद मुझे समझ में आया कि बाबा जो मैंने ब्रह्म कौन से कनेक्ट हो गया, ये तो कुछ तो ऐसा परमात्मा से कनेक्ट हो गया, ऐसा मुझे फील हो रहा था अंदर से, ऐसे हो रहा था। तो बाद में मैंने क्या किया, मेरे घर वालों को बोला है, तो घर वालों को पहले कुछ मालूम नहीं हो रहा था, तो मैंने उनको सेंटर में लेके आया रटने के, अपने वर्षा दीदी है वहाँ पे, दीदी ने एक दिन उनको 15-20 मिनट का थोड़ा बेसिक नॉलेज दिया, बाद में उनको अच्छा लगा तो उन्होंने क्लास किया। तो ऐसे क्लास करते करते हमारे 10-20 ये हम सोसाइटी के लोग है ना, कनेक्ट हो गए, और उनको इतना अच्छा महसूस हो रहा ना ये ब्रह्म कुमारी कनेक्ट होने के बाद, कि जो अपन बचपन से करते आए
1: जी जी जी,
0: कौन से स्कूल में किधर भी नॉलेज नहीं मिला अभी आज तक, मंदिर में भी गए तो दो तीन घंटे का कुछ तो रहता है ना, उतना नॉलेज मिलता है, मगर यहाँ से डायरेक्ट परमात्मा से कनेक्ट कैसे होते ये नॉलेज मिलता है। तो हर आदमी को जो ऑफिस लो घर पे रहो, कुछ ना कुछ हाई टेम्परेचर लेके ट्रेस में आते हैं ना
1: जी, जी।
0: किसी बात किया, किसने ये बोला वो बोला, तो ये अभी ब्रह्म कुमारी कनेक्ट होने के बाद वो सब कूल हो जाते हैं। अब मेरे घर में ऐसा वातावरण अभी फिलहाल कुछ भी नहीं है, ट्रेस का कोई लेता है भी नहीं।
1: सही बात है।
0: हाँ, नहीं तो ऐसा बहुत दिक्कत आती थी पहले जब कनेक्ट नहीं थे ना, तो हर कोई झगड़े में होता था, ट्रेस में होता था घर पे, थोड़ा कुछ गली में बोला, कुछ इसने बोला उसने बोला ना, ये होता था। मगर मैं अभी कोविड के पहले भी मेरा टिकट बुक हो जाता था, मगर वो कोविड की वजह से अपना सब प्रोग्राम कैंसिल हो गए थे ना, इसलिए आ नहीं सका। तो अभी दीदी ने टिकट बुक करने के बाद ये चांस मिला है मुझे, इधर आके ऐसा लग रहा है कि मैं कुछ
1: स्वर्ग
0: तो
1: में आ गया।
0: स्वर्ग में आया और कुछ तो पुण्य किया था पहले, कर्म अच्छे किए इसलिए मैं यहाँ तक आया हूँ। तो यहाँ से आगे ऐसा करूंगा कि बाबा मैं जो पत्रकारिता करता हूँ, तो मैं हर दीदी का जो कुछ लेख मिख रहता है ना,
1: बिल्कुल
0: हर महाराष्ट्र में मेरा पेपर जाता है, सबको वहाँ पे हाईलाइट कर देता हूँ।
1: बहुत बढ़िया।
0: हाँ, और अभी कल परसों के दिन ही दीदी को अपना आप्पा बार ने खासदार मावल के उनके यहाँ से उनको पुरस्कार भी मिला है, वर्षा दीदी को राटने सेंटर में।
1: बहुत बढ़िया, बहुत।
0: तो ऐसे अपने को जितना अच्छा लगता है अपने ब्रह्म कुमार के जो सब कनेक्टिविटी है, जो आगे चल के काम अच्छा करते हैं। और इसका एक मुझे अभी समझ में, आप भी बात बोल रहे थे कि ये रेडियो का भी वहाँ पे हम स्टूडियो भी देखे, और जो आने वाली पीढ़ी को है ना इसमें बहुत स्कोप भी है।
1: बिल्कुल।
0: हाँ, अभी मैं देखता हूँ ना ये सामाजिक काम करते समय खेड़े पाड़े में जाता हूँ वाड़ी बस्ती में,
1: जी,
0: तो उनको कुछ मालूम नहीं रहता।
1: सही बात है।
0: और उनको क्या, मम्मी पापा उनके पढ़े लिखे नहीं रहे, इसलिए वो बच्चों को आगे पढ़ा नहीं सकते और उनको ध्यान नहीं देते, वो खेती में काम करते और उधर ही रहते, तो बच्चों को आगे क्या करना ये नहीं मालूम रहता। तो हमारे जो संगठन है, तो हम वहाँ एक्टिविटी करते हैं, एनजीओ से हो गए, वहाँ पे लड़कों को बुक, स्कूल में नहीं जाते तो उनको ड्रेस हुआ ऐसे ये देख के उनको स्कूल में लाने का प्रयत्न करते हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: हर बच्चों को, तो ये सबसे ज़्यादा नांदेड़ में है ना, जो वाड़ी बस्ती है ना वो भाग में आदिवासी एरिया ज़्यादा है, उधर भी बहुत दिक्कत आती है। मगर वो आश्रम शाला है बहुत है, मगर क्या मालूम है क्या, वो ये नहीं होता जो बोलते हैं मार्केटिंग करते, वो कुछ तो कम गिरती है वहाँ पे, उसकी वजह से वो बच्चे नहीं आ सकते। तो अभी मेरा तो मेरे ग्रुप है वहाँ पे नांदेड़ में, सब युवा हमारे कॉलेज के सब बच्चों का, तो ग्रुप की वजह से हम क्या करते हैं, किधर भी कौन से वाड़ी में कुछ दिक्कत आए किसी को, कि किसी की गरीब परिस्थिति आर्थिक परिस्थिति हो, या किसी को बुक नहीं चाहिए, बुक चाहिए नए वाले, नोटबुक चाहिए, हर स्कूल में जब स्टार्टिंग होता है ना स्कूल,
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: तो हम हमारे इधर से 20 और नांदेड़ के 10, ये 30 मिला के हम हर साल है ना प्रत्येक 10,000 रुपये डिस्ट्रीब्यूट करते
1: हैं,
0: और सबके एरिया में नोटबुक क्या कपड़े देते, यूनिफॉर्म वो को सब दे देते वहाँ पे जाके, पेन वो सब हम, तो उसके कुछ एक आनंद मिलता है हमें ऐसा ही नहीं कि हम किसी को देखा नहीं करते कुछ भी नहीं, खाली अंदर से मन को शांति मिलती है।
1: बिल्कुल।
0: हाँ, जब अभी मैं इधर आया और ब्रह्म कुमारी का जो मैंने देखा है, अभी राटने का भी देखा है, जो आप प्रोग्राम करते हैं वो तो बहुत मुझे दिल को छूते बहुत, और ऐसे लगता है कि मैं सब इधर ही ऐसे छोड़ दूँ।
1: सही बात, सही
0: सब
1: बात।
0: ध्यान में सब ऐसा इधर ही कि बाबा चलो मन लगा के इधर सब कुछ करने का चाहिए।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: ऐसे
1: चलिए, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस आपने शेयर किया हमारे साथ। मैं आशा करूंगा हमारे सभी श्रोताओं को भी अच्छा लग रहा है, और नांदेड़ पूना के पास में जो नांदेड़ है वहाँ से आप आए हैं, और आपकी पूरी जो है भावनाएँ और ब्रह्म कुमारी से जुड़कर जो है आपको बेहद खुशी मिल रहा है। तो आइए आगे बढ़ते हुए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, सुनते हैं एक बहुत ही प्यारा सा गीत। आप सुनाए हैं रेडियो माधुबन, सुनते रहो मस्कराते रहो।

0: पता है, जो नॉर्थ ईस्ट कभी दूर लगता था वो हमारे दिलों के और करीब आ गया है पिछले 12 सालों में, जब से नॉर्थ ईस्ट के नेशनल हाईवे की लंबाई बढ़कर 16,200 किलोमीटर हुई है। सिक्किम और अरुणाचल को पहली बार एयर कनेक्टिविटी मिली है, तब से नॉर्थ ईस्ट से दूरियां घटी हैं।
1: नॉर्थ ईस्ट अब दूर नहीं रहा, नॉर्थ ईस्ट अब दिल के भी पास है, दिल्ली के भी पास है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो 107.8 FM पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ मंगल कामनाएं करते हैं। चलिए, अरुण जी की बातें सुनकर आपको बड़ा अच्छा लग रहा होगा, तो आइए अब एक शख्सियत के बारे में बात करते हैं जिन्हें आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। जी हाँ, राहुल गांधी का आज जन्मदिन है। 19 जून 1970 को इनका जन्म हुआ। बहुत ही पॉपुलर राजनेता और देश के पुराने राजनीतिक दल से कांग्रेस से अध्यक्ष, कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, और 2017 में विशेष राष्ट्रीय अध्यक्ष इनको बनाया गया और संसद के निचले सदन लोकसभा के केरल स्थित वायनाड चुनाव क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं और परिवार से बिलोंग करते हैं, गांधी परिवार से, और नेहरू गांधी इन परिवार से इनका ताल्लुक है जो भारत का मुख्य राजनीतिक परिवार रहा है। और आम चुनाव में राहुल गांधी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और उसमें मिली भारी सफलता का श्रेय उन्हें मिलता है। फिर जीवन में उन्होंने भारत की ग्रामीण जनता से बहुत निकट का संबंध स्थापित करके विशेष मजबूती उनको प्राप्त हुई थी और उनकी राजनीतिक रणनीति में जमीनी स्तर की सक्रियता को बल देना, ग्रामीण भारत के साथ गहरे संबंध स्थापित करना और फिर आंतरिक लोकतंत्र को मजबूत करने की कोशिश उनका मुख्य ध्येय है। सतह से जुड़ने, अनुभव प्राप्त करने और भारत को निकट से जानने के लिए उन्होंने मनमोहन सिंह के नेतृत्व की सरकार में कई पदों पर रहे और राहुल गांधी ने 2004 में अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की और उत्तर प्रदेश में अमेठी से अपने पिता राजीव गांधी के निर्वाचन क्षेत्र से पहला लोकसभा चुनाव लड़ा था। अब वे अपना सारा ध्यान राजनीतिक अनुभव प्राप्त करने और पार्टी को जड़ से मजबूत करने में केंद्रित कर रहे हैं। तो चलिए, ये थी कुछ खास बातें राहुल गांधी के बारे में। और 19 जून 1970 को नई दिल्ली में एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई श्रीमती इंदिरा गांधी जी को, जिनका नाम बहुत प्यार से और उम्मीदों के साथ राहुल रखा गया। वो अपने पिता की दो संतानों से बड़े और उनकी छोटी बहन प्रियंका गांधी वडेरा है। राहुल की दादी भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी है। तो ये थी कुछ खास बात इनके बारे में। चलिए आगे बढ़ते हुए मैं आप सभी को ले चलता हूँ एक और गीत की तरफ। आप सुनाए हैं रेडियो माधुबन 107.8 FM। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

अंडर रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। और आज के दिन 19 जून को जन्मे उन खास मनुष्यों के बारे में बात कर रहा हूँ जिनका जन्मदिन है, और थोड़ा सा अपना विषय वस्तु को लेकर अपने जीवन को सर्वश्रेष्ठ बनाने में या समाज के कार्य में लगे हुए हैं। ऐसे ही माधव सप्रे के बारे में, माधव राव सप्रे जी के बारे में बात करना चाहूँगा। राष्ट्रभाषा हिंदी के उन्नायक, प्रखर चिंतक, मिनीसी संपादक, आज़ादी के दीवाने और सार्वजनिक कार्य के लिए समर्पित कार्यकर्ताओं की श्रृंखला तैयार करने वाले लेखक, प्रेरक, मार्गदर्शक, गुरु, कर्म योगी पंडित माधवराव सप्रे का अवधान कल जाई है। माधवराव सप्रे जी की कहानी एक टोकरी भर मिट्टी को हिंदी की पहली कहानी होने का श्रेय भी प्राप्त है। तो अब देखिए, ये कहानी शायद आपने सुनी भी होगी, अगर नहीं सुनी हो तो ज़रूर मुझे लगता है कि आप सभी को सुनना चाहिए। ये हिंदी की पहली कविता का जो श्रेय है खास इनको मिला हुआ। तो आइए आगे बढ़ते हैं और उस कहानी का सारांश मैं कोशिश करूँगा कि आपको बता पाऊँ, लेकिन अब उनके बारे में जानकारी और आपको देता हूँ। आज ही के दिन 19 जून 1871 को मध्य प्रदेश के दामोह जिले के पत्रिया गांव में इनका हुआ जन्म, और बिलासपुर में मिडिल तक की पढ़ाई पूरी करने के बाद मैट्रिक शासकीय विद्यालय रायपुर से पास हुए और 1899 में कोलकाता विश्वविद्यालय से बीए करने के बाद उन्हें तहसीलदार के रूप में शासकीय नौकरी मिली। लेकिन जैसा कि उस समय के देशभक्त युवाओं में एक परंपरा थी, सप्रे जी ने भी शासकीय नौकरी की परवाह न की और 1900 में जब समूचे छत्तीसगढ़ में प्रिंटिंग प्रेस नहीं था, तब उन्होंने बिलासपुर जिले के एक छोटे से गांव पेड्रा में छत्तीसगढ़ मित्र नामक मासिक पत्रिका की शुरुआत की। हालांकि ये पत्रिका सिर्फ 3 साल तक ही चल पाए, लेकिन सप्रे जी की कोशिश जो है अच्छी रही और लोकमान्य तिलक ने फिर मराठी केसरी को ही यहाँ हिंदी केसरी के रूप में छापना शुरू कर दिया। फिर तो बड़ा मंच उनको मिल गया और साथ ही हिंदी साहित्यकारों और लेखकों को एक सूत्र में बांधने का प्रयास नागपुर से हिंदी ग्रंथालय के प्रकाशन को शुरू किया गया। कर्मवीर के प्रकाशन में भी इनकी विशेष भूमिका थी। और इस तरह से सप्रे जी के जीवन के कुछ विशेष कथन ये है कि मैं महाराष्ट्रियन हूँ पर हिंदी के विषय में मुझे अपना उतना ही अभिमान है जितना कि किसी हिंदी भाषा को हो सकता है, हिंदी भाषी को हो सकता है। जिस शिक्षा से स्वाभिमान की वृत्ति जागृत नहीं होती वह शिक्षा किसी काम का नहीं है। विदेशी भाषा में शिक्षा होने के कारण हमारी बुद्धि भी विदेशी हो गई है। ये सप्रे जी का कथन था और कहीं ना कहीं ये सही भी है ना। तो आइए आगे बढ़ते हुए मैं आप सभी को ले चलता हूँ एक और गीत की तरफ, उसके बाद सप्रे जी की कुछ और बातें आपसे जरूर शेयर करूंगा। आप सुनाए हैं रेडियो मधुबन पर सफर, इस कार्यक्रम को सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: Hi, this is Ravina Tandon, and I take this opportunity to wish Brahma Kumaris with all the success in their love that they've been giving to the world and the social service that they have been spreading all over our planet. I wish you all the best, and I wish that more and more people become aware and follow this true path of what Brahma Kumari teaches of only love and peace. God bless humanity. God bless the Brahma Kumaris.
1: Namaskar, aap sun rahe Radio Madhuban 107.8 FM par. Aap sabhi ka fir se ek baar swagat hai. Dher sari shubhkamnaon ke saath mangal kamnaen karte hain. और हाँ, ये माधव राव सप्रे के बारे में बातें चल रही थी। 1890 में रायपुर के असिस्टेंट कमिश्नर की पुत्री से विवाह के बाद विशेष अनुशासित नायब तहसीलदार की नौकरी को ठुकरा कर अपने कर्मपंथी की ओर बढ़ गए। पहले रॉबस्टन कॉलेज जबलपुर, फिर 1894 में विक्टोरिया कॉलेज ग्वालियर और 1896 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से MA पास किया। इस बीच उनकी पत्नी का देवासन हो गया और शिक्षा में कुछ बाधा भी आ गए। इसके बाद भी वो डटे रहे और हारे नहीं, और फिर आगे चलकर मराठी भाषी होने के बावजूद इन्होंने हिंदी के विकास के लिए बहुत ज़्यादा काम किया और 1905 में हिंदी ग्रंथ प्रकाशन मंडल का गठन कर तत्कालीन विद्वानों के हिंदी के उत्कृष्ट रचनाओं व लेखों का प्रकाशन धारावाहिक ग्रंथमाला के रूप में आरंभ कर दिया। और इस तरह से सभी हिंदी भाषियों को मंच भी प्राप्त हुआ और उनकी लिखत को एक अच्छा मंच और एक अच्छा संकलन करने का मौका भी मिला। तो पत्र पत्रिकाओं का संपादन भी इन्होंने किया और इनकी मुख्य खुद भी कुछ विशेष किताबें लिखी और इसके बाद एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी बन गई माधव राव सप्रे का। और 1900 में छत्तीसगढ़ मित्रा हिंदी ग्रंथमाला, 1906 में और हिंदी केसरी 1907 में का संपादन प्रकाशन कर हिंदी पत्र पत्रिकाओं और साहित्य को नए संस्कार प्रदान किए। इस तरह से नागरी प्रचारणी सभा काशी की विशाल जो शब्दकोश योजना के अंतर्गत शब्दावली के निर्माण का महत्वपूर्ण कार्य सप्रे जी ने ही किया। और मराठी की सर्वाधिक महत्वपूर्ण कृतियों में से दासबोध, गीता रहस्य और महाभारत मीमांसा के प्रमाणिक हिंदी अनुवाद सप्रे जी ने किया और कर्मवीर का प्रकाशन उन्होंने कराया और उसके संपादक के रूप में माखनलाल चतुर्वेदी जैसे तेजस्वी संपादक हिंदी संसार को उन्होंने दिया। तो ये थी कुछ खास बातें हिंदी जगत से जुड़ी हुई माधव राव सप्रे के बारे में। और हिंदी के पहले कहानीकार माधव राव सप्रे का निधन 23 अप्रैल 1926 को हो गया। तो चलिए आगे बढ़ते हुए मैं आप सभी को ले चलता हूँ एक और गीत की तरफ। लेकिन उसके पहले आप सोच रहे होंगे कि जिस माधव राव सप्रे के बारे में बात कर रहे थे और उन्होंने हिंदी की पहली कहानी लिखी, तो उसका सारांश तो कम से कम बता दो। जी जरूर बता देते आपको। टोकरी पर मिट्टी हिंदी की पहली कहानी से दुही। इस कहानी में एक विधवा स्त्री के माध्यम से जमींदारों द्वारा गरीब जनता पर होने वाले अन्याय को दर्शाया गया है। विधवा सती की दयनीय अवस्था और नियति द्वारा उसकी पारिवारिक सदस्यों का निधन होना उसके दुर्भाग्य को व्यक्त करता है। तो ये विशेष रूप से कहानी जो है इस तरह का है, ये सार है। और एक टोकरी भर मिट्टी माधव राव सप्रे की बहुत ही सुंदर कहानी में से एक आता है, जहाँ पर ये कहानी अगर आपको मिल जाए तो ज़रूर पढ़िएगा, और मेरे को अगर मिल जाता है तो मैं ज़रूर आपको सुनाऊंगा। और ये पूरा 103 पेज का इनका संग्रहालय है, और कभी हमें प्राप्त हो जाए तो हम भी आपको जो है उसमें से कुछ अंश ज़रूर सुनाएंगे। आप सुनाए हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM पर। सफर इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, सुनते रहो, मस्कराते रहो।

0: मैं हूं जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी ओंकारानंद सरस्वती जी परमात्मा मठ प्रयागपीठ से आप सभी सुन रहे श्रोताओं को ब्रह्मा कुमारी इसका सामुदायिक रेडियो स्टेशन से रेडियो मधुबन सुनते रहो मुस्कुराते रहो। आप सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं ढेर सारा शुभ प्रेम।
1: नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 107.8 FM पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ आइए एक और शख्सियत के बारे में बात करते हैं। मादर और सप्रे की कहानी सुनकर बड़ा अच्छा लगा और बहुत सारी चीज़ें उन्होंने लिखी और मराठी भाषी होते हुए भी हिंदी भाषा के लिए काम करना ये अपने आप में एक भारतीय का सबसे बड़ा धर्म उन्होंने निभाया है। आइए बात करते हैं एक और शख्सियत के बारे में, सुदर्शन अग्रवाल के बारे में। जी हाँ, उत्तराखंड और सिक्किम के पूर्व राज्यपाल रह चुके हैं ये। वर्तमान समय में ये जिंदल पुरस्कार प्रदान करने वाले निर्णायक मंडल में उपाध्यक्ष के पद पर नियुक्त हैं और सुदर्शन अग्रवाल जो है विशेष रूप से ऐसे व्यक्तित्व के अनेक गौरवशाली पहलू हैं। सुदर्शन अग्रवाल अपने जीवन के कई ऐसे चीज़ों को उन्होंने छुए जिससे लगता है कि इतना मल्टी टैलेंट व्यक्ति भी हो सकते हैं। सुदर्शन अग्रवाल ने पहले श्रेणी में कानून की डिग्री प्राप्त की और 1981 से 93 तक राज्यसभा के महासचिव के पद को सुशोभित कर चुके हैं और दिल्ली जिमखाना क्लब के अध्यक्ष भी रहे। यही नहीं, वे सांस्कृतिक केंद्र संस्कृति प्रतिष्ठान के ट्रस्टी भी रह चुके हैं। सुदर्शन अग्रवाल पिछले 45 वर्षों से रोटरियन भी है और भारत के रोटरी क्लब के पूर्व अध्यक्ष हैं और डिस्ट्रिक्ट गवर्नर तथा रोटरी इंटरनेशनल की कई समितियों के सदस्य और अध्यक्ष के पद को भी सम्मानित कर चुके हैं और अंतर्राष्ट्रीय मानवीय और शैक्षणिक कार्यों के संबंध में उनकी अनुकरणीय सेवाओं और इनका समर्थन करने के लिए रोटरी फाउंडेशन द्वारा उन्हें अनेक प्रशस्ति पत्रों से सम्मान प्राप्त किया है दिया है। तो पूर्व राज्यपाल के रूप में इन्होंने अपना कार्यकाल को अच्छी तरह से संभाला और सिक्किम का राज्यपाल नियुक्त कर दिया गया था बाद में ने, और तब इन्होंने 22 अक्टूबर 2007 को उत्तराखंड के राज्यपाल का पद छोड़ दिया और 25 अक्टूबर 2007 को सिक्किम के रूप राज्यपाल के रूप में इन्होंने शपथ ग्रहण की। फिर इस तरह से उच्चतम न्यायालय में न्यायमूर्ति की हैसियत से भी सुदर्शन अग्रवाल 3 वर्षों तक राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के सदस्य बने थे। तो ये थी कुछ खास बातें सुदर्शन अग्रवाल के बारे में। आइए इसके साथ ही मैं आपको सीधे ले चलता हूँ एक सुंदर विचार के साथ, कार्यक्रम को पूरा करते हैं। आप सुनाए हैं रेडियो मधुबन पर सफ़र। कहते हैं, वही है जिंदा जिसकी आस जिंदा है, वही है जिंदा जिसकी प्यास जिंदा है। श्वास लेने का नाम ही जिंदगी नहीं, जिंदा वही है जिसका विश्वास जिंदा है। है ना कमाल की बात। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन पर सफर, इस कार्यक्रम को सुनते रहो मुस्कुराते रहो।

0: आए प्यार के जमाने
1: आज कहां लगे यानी
0: आए प्यार के जमाने
1: आज कहां लगे यानी
0: दुल्हन को मनाने
1: चल हट रे दीवानी
0: दुल्हन को मनाने
1: चल हट रे दीवानी।

मैं हूं सुनील खरे, मैं ग्लोबल हॉस्पिटल आबू रोड में काम करता हूं। अब सुनिए आपके अपने सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन को 107.8 FM पर। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: बातें तो बहुत होती हैं लेकिन कुछ बातें याद रखने लायक होती हैं।
1: भगवान के साथ संबंध, the relationship with God. And friends, believe me, शायद हमने भगवान को सही अर्थ में नहीं पहचाना। Two good reasons. एक तरफ भगवान को कहते वो प्रेम का सागर है और दूसरे तरफ आज हम उस प्रेम के सागर से सबसे ज्यादा डरते हैं। We have become God fearing rather than God loving. आप कहेंगे सर नो वी डोंट फियर गॉड। देन देयर इज अ सेकंड गुड रीजन व्हाई वी हैव नॉट अंडरस्टूड गॉड, बिकॉज़ फ्रेंड्स मोर देन 80% ऑफ द वॉर दैट इज फॉट टुडे इज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन द नेम ऑफ गॉड। चाहे वो अमेरिका अफगानिस्तान वॉर हो, अमेरिका इराक वॉर हो, जम्मू कश्मीर प्रॉब्लम हो, गुजरात प्रॉब्लम हो, दिल्ली ब्लास्ट हो, हैव वी रियली अंडरस्टूड गॉड? किसी ने क्या खूब कहा है, काबा है घर रहीम का, काशी है घर राम का, दोनों ही बात तो एक है, झगड़ा है बस नाम का। We are fighting in the name of God and we call ourselves intellectuals. Friends, let's understand the name very clearly. Hindus मनाते हैं दिवाली और हमारे इस्लाम भाई बहने मनाते हैं रमजान, लेकिन थोड़ा सा कॉमन सेंस तो हम समझ सकते हैं। अरे दिवाली में है अली ALI तो रमजान में है राम RAM। दिवाली में है अली, रमजान में है राम। दिवाली में है दिल DIL तो रमजान में है जान ZAN। अरे उस प्रेम के सागर को दिल व जान सिख व प्रेम से याद करना है, ना कि उसके नाम पर युद्ध करना है। तो परमात्मा के साथ वो संबंध जोड़ना जरूरी है। हमें ये समझ होनी चाहिए कि हम सभी जो आत्माएं हैं उस एक परमात्मा के संतान हैं। And that is a beautiful relationship that we can establish with the Almighty God. And this is what is very, very important. और उस परमात्मा पर संपूर्ण निश्चय भी होना बहुत बहुत जरूरी है। जब हम परमात्मा के साथ संबंध जोड़ लेते हैं तो उनका जो स्नेह है, क्योंकि परमात्मा को कहते हैं वो स्नेह और प्रेम का सागर है, तो ऑटोमेटिकली वो स्नेह और प्रेम हमारे में आने लगती है और हमारा जीवन फिर से प्रेममय, सुखमय और शांतिमय बन जाता है। तो हम सबको एक ऐसा कार्य करना है जिससे समाज जो है फिर से ऐसे सुखमय बन जाए।
2: Hi, this is music composer Ricky Cage and you're listening to Radio Madhuban. Keep listening, keep smiling.

होंगे हम तो विघ्न हार जाएंगे, विघ्न हार जाएंगे। शिक्षा बनेगी बल, स्वस्थ होगा कल। सहयोग की ईंटों से सफलता बन

0: सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन।
1: गाड़ी में सफर करते समय कोई भी अनजान व्यक्ति से किसी भी प्रकार के खाने पीने की चीजें स्वीकार न करें, इससे आपके जान व माल दोनों का नुकसान हो सकता है।
0: रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: रेडियो मधुबन 107.8 एफएम सुन रहे हैं आप, कार्यक्रम है युवा मंच। और दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हम, आप वाकिफ हैं इससे कि हम बना रहे हैं नशा मुक्ति सप्ताह और कह रहे हैं कि भाई नशा मुक्त भारत यानी विकसित भारत कैसे होगा, क्या असर पड़ता है, वो भी हम सभी जान रहे हैं। और आज हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं प्रहलाद जी। प्रहलाद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है रेडियो मधुबन पर। आप सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, वक्त निकालने के लिए आपका। हम सभी नशा मुक्त वीक मना रहे हैं, इस हफ्ते को सेलिब्रेट कर रहे हैं प्रहलाद जी, तो हम थोड़ा सा आपसे भी जानना चाहेंगे क्या नशे का प्रभाव रहा आपके जीवन पर या क्या स्टोरी रही आपकी।
1: मैं जब 25 साल का था तभी से मैं बीड़ी पीता था।
0: अच्छा।
1: मेरी पास मुझे व्यसन था, उसके बाद मैं बम्बई में गया। बम्बई में जाने के बाद मुझे थोड़ा थोड़ा शराब का भी लग चला पार्टी वार्टी में जाने की वजह से।
0: तो
1: ये मेरा सफर लगभग 25-30 साल तक रहा।
0: अच्छा।
1: शराब हो, बीड़ी का हो, और पैसे की बर्बादी जहाँ भी जाए तो हमारा अपमानजनक शब्द सुनना पड़ता था। बीड़ी पीते थे, कहीं जाते थे, ट्रैवलिंग करते थे, तो कई ना कई बार अपमानजनक रहना पड़ता था। पैसों की तो बर्बादी होती थी और समाज में भी हमारा नाम खराब होता था। घर में भी हमारे कई बार दिक्कतें होती थी, तो चार लोगों के बीच में बैठ के बीड़ी पीते थे तो भी हमारा अपमानजनक होता था। बहुत कोशिश की मैंने छोड़ने की, लेकिन छोड़ नहीं पाता था, बहुत कमजोर आता था। और 1996 में
0: जी
1: मैं बम्बई में जो जॉब कर रहा था, तो वो टाइम पे मैं बीड़ी पीता था।
0: अच्छा।
1: तो वो ऑफिस में बीड़ी पीना की सख्त मनाई थी, तो मैं बीड़ी के बिना रह नहीं सकता था।
0: अच्छा।
1: तो वो सेठ ने मुझे बोला कि अगर आपको बीड़ी छोड़ो या नौकरी छोड़ो।
0: ओह।
1: तो बीड़ी नहीं पीने का, तो मैंने नौकरी छोड़ दिया लेकिन बीड़ी को नहीं छोड़ा।
0: अच्छा जी। इतना
1: घर में भी ऐसा होता था, कई बार ऐसा हुआ मेरे साथ
0: जी।
1: मतलब जो भी लोग व्यसन करते हैं, मैं तो उसको वही संदेशा दूंगा कि अगर कोई ना कोई तरीके से अगर आपका व्यसन छूट जाता है
0: जी,
1: तो अच्छी बात है। हम व्यसन हम लोग करते हैं
0: जी,
1: लेकिन तकलीफ पूरे परिवार में रहता है,
0: परिवार को
1: हमारे व्यसन की वजह से
0: जी जी,
1: पूरा परिवार दिक्कत होती है कोई ना कोई वजह से, देरी से आना, नींद नहीं आना, पैसों की बर्बादी होना, टाइम पे कोई काम नहीं कर सकते हम, इससे व्यसन का प्रभावित हुआ।
0: तो प्रहलाद जी, उस समय कैसा था, मतलब कितना, जैसे दिन में कितना बीड़ी पी लेते थे आप या क्या होता था?
1: दिन में मेरे को 40 रुपए, वो टाइम पे तो 40 रुपया होता था बीड़ी का रोज का।
0: अच्छा।
1: और जब मैं पार्टी में जाता था तो खर्चा ज्यादा रहता था, कभी कभी चलो संडे के दिन महीने में 2-3 दिन तो खर्चा ज्यादा रहता था।
0: अच्छा। तो आपको लेकिन लगता था कि मैं छोड़ दूं, आपको मतलब शुरू से लगता था?
1: लगता था छोड़ दूं, लेकिन छोड़ नहीं पाता था, लगता था कि मैं छोड़ दूं।
0: अच्छा।
1: कई बार कोशिश की लेकिन नहीं छोड़ सकता था।
0: क्या आपको परेशानी लगती थी अगर छोड़ने की कोशिश करते थे?
1: परेशानी, बहुत तलब लगती थी। किसी भी स्थिति में मुझे बीड़ी चाहिए, कुछ भी हो जाए।
0: अब प्रहलाद जी, मैं क्या ये पूछ सकती हूँ आपसे कि आदत लगी कैसे, शुरू कैसे हुआ ये?
1: चूरे जब से एक दोस्त मिला था मुझे, जो हम लोग स्कूल में पढ़ते थे वो टाइम पे
0: जी,
1: फिर मैं डायमंड का काम करता था बम्बई में।
0: अच्छा।
1: तो वो लोग जलाते थे, बीड़ी पीते थे तो मुझे भी देते थे, तो मेरी खांसी होती थी, लेकिन धीरे धीरे सब साथ में रहते थे तो लत लग गई, कुछ नहीं होता है। तो ये जो हमको बाद में पता चला, हमारे में जो व्यसन में प्रवेश करता है ना, ये अपने संग दोष की वजह से होता है
0: जी,
1: आपस में जो मित्र होते हैं, संबंधी होता है, उसकी वजह से होता है।
0: बिल्कुल सही बात है, मतलब शुरुआत ऐसी होती है कि थोड़ा ले लो, कुछ नहीं होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता।
1: कोई फर्क पड़ता नहीं है।
0: और फिर धीरे धीरे जैसे आपको टेंशन होती थी तब लेते थे, ऐसे आदत हो गई?
1: टेंशन नहीं, ऐसे ही
0: बस
1: आधे आधे घंटे की बात, टेंशन की वजह से टेंशन मतलब ज्यादा रहते थे।
0: अच्छा।
1: टेंशन जब भी होता था तभी ज्यादा होता था।
0: अच्छा अच्छा जी। आपके परिवार वालों को तो बहुत खराब लगता होगा? या
1: बहुत खराब लगता था, मेरी बेटी थी
0: जी जी,
1: तो वो कई बार मेरी बीड़ी छुपा देते थे।
0: अच्छा।
1: तो मेरे पिताजी बीड़ी छोड़ देते, छुपा देते, तो कई मैं उसके ऊपर गुस्सा भी होता था कई बार, मुझे बीड़ी दे दे। कई बार मेरे को उसके साथ तो मैं होता था
0: जी। अच्छा प्रहलाद जी, क्या असर पड़ा, मतलब आपके स्वास्थ्य पे इसका कैसा असर पड़ा? क्या
1: मुझे टीबी हुआ था बेटे?
0: अच्छा जी जी।
1: 1970 में मुझे टीबी हुआ था, 1980 में।
0: अच्छा जी।
1: तो मैंने एक साल तक उसका दोष किया था।
0: अच्छा। तो मतलब स्वास्थ्य पे बहुत बुरा असर पड़ा आपके?
1: हाँ, तबीयत पे बहुत बुरा असर पड़ा।
0: तो भूख भी कम लगती थी उस वक्त या खाना पीना वैसे ही था?
1: भूख भी कम लगती थी, चाय और भी बस। खाना बहुत कम, समझो कि 2 रोटी खाता था
0: पूरे दिन में।
1: अभी वो टाइम पे मेरा वेट था 50 के आजूबाजू।
0: अच्छा,
1: अभी मेरा वेट है 65।
0: मतलब काफी कम हो गया था
1: वो टाइम पे, बट मतलब एकदम सिंगल है। वो पुराना तस्वीर और अभी का तस्वीर आप देखोगे तो यकीन भी नहीं कर सकते मेरा ऐसी हालत थी,
0: इतना
1: सिंगल सुकुब जैसा।
0: जी जी जी।
1: लेकिन ज्ञान में आने के बाद मेरा तबीयत सुधरा।
0: क्या आपको ऐसी बात लगी जो आपको लगा कि मतलब जिसने मदद किया? क्योंकि लगता तो आपको पहले भी था छोड़ना है, पर छोड़ नहीं पाते थे, तो वो ताकत कैसे आई आपके अंदर कि छोड़ दिया आपने?
1: मैं संकल्प से नहीं छूटा। मेरा 2017 में मेरे साथ थोड़ा प्रॉब्लम हुआ था घर का।
0: अच्छा,
1: तो बहुत ज्योतिष को दिखाया, बहुत भुआ के पास गया, एक साल तक मैंने उसके पास 1.5 लाख रुपए खर्च किया, कुछ हुआ नहीं।
0: अच्छा,
1: फिर मेरी क्लास टीचर था, तो क्लास में माता जी थे, वो ब्रह्मा कुमारी में जाते थे।
0: अच्छा जी।
1: तो मुझे उसने बताया कि आप ब्रह्मा कुमारी को जाओ तो आपका जो सब प्रॉब्लम है बाबा दूर कर देगा।
0: अच्छा।
1: तो मैंने एक साल तक उसमें नजरअंदाज किया, नहीं गया मैं। तो वो मुझे फोन करके टॉर्चर कर बोला तुम जाओ एक महीने के लिए जाओ। फिर मैं सेंटर पर पहुंचा और सेंटर पर जाकर दीदी को बताया मुझे क्लोज करना है। तो बोला ठीक है बैठ जाओ। तो पहले दिन मुझे आत्मा का परिचय दिया। तो बोला शाम को आओगे? हमें शाम को भी आऊंगा। तो एक दिन में मुझे आत्मा और परमात्मा का परिचय मिला और मुझे ऐसा बाणा लगा दीदी, 8 दिन तक मुझे बहुत अच्छा लगा। वो टाइम पे हम लोग 5-7 लोग आते थे।
0: अच्छा।
1: 7 दिन का कोर्स के लिए
0: जी।
1: लेकिन 7वें दिन में अकेला ही था, सब बंद हो गए। और मैंने पूरा कोर्स ज्वाइन किया, योग किया, सुबह में उठने का शुरू किया। तो वो जो माता जी मुझे ज्ञान मिला थे बम्बई रहते थे।
0: अच्छा जी।
1: 3-4 महीने के उसमें संकल्प किया गया, ये भाई अगर ज्ञान में आएगा तो मेरे खर्चे से मैं उसको आबू लेकर जाऊंगा बाबा के घर।
0: अच्छा।
1: तो आबू में शिविर चल रहा था वो टाइम पे, अप्रैल में था कुछ।
0: अच्छा।
1: तो मुझे पूरा घुमाया, पूरा समझाया और वो दिन से दीदी मैंने झोपड़ी में जाके बाबा के सामने संकल्प किया कि अच्छे बाबा मेरा 5 एकड़ में आपको दे देता हूँ, मेरे पास जो 5 खोटे सिक्के है। वो दिन आज का दिन, उसके बाद मैंने योग किया, ये किया तो फिर बीड़ी छूट गया, कोई व्यसन छूट गया, कांदा लहसुन छूट गया, जो मेरे घर में प्रॉब्लम चलता था वो भी छूट गया। बाबा मिलने के बाद जो मुझे फायदा हुआ है
0: जी,
1: शायद वो फायदा बहुत कम लोगों को होगा। जब भी आज भी बाबा को पुकारता हूँ बाबा आओ मेरी मदद करो तो 10 मिनट में मेरी मदद हो जाती है।
0: क्या बात है।
1: बाबा के शायद मुझे और कुछ चाहिए नहीं, बस एक बाबा, दूसरा न कोई।
0: इतना घनिष्ठ संबंध आपका,
1: घनिष्ठ संबंध मुझे मेरा चलो बाबा ने कहता है कमल परिवार में रहते भी ग्रस्त व्यवहार में कमल को समान, मैं घर में रहता हूँ लेकिन मेरी बुद्धि आबू में, मेरी बुद्धि सेंटर पे। मित्रों संबंधी क्या दिशा देता हूँ, कोई व्यसन करता तो उसको समझाता हूँ, आत्मा परमात्मा का परिचय देता हूँ, कोई मिलता है तो गाड़ी हो या ट्रेन हो बस हो कहीं भी हो
0: जी।
1: मैं 24 घंटे में ये बेच अपने सीने में लगाए रखता हूँ।
0: क्या बात है।
1: तो देख देख करके लोग बोलते कि क्या है, तो उसके बाद अपना चल पड़ता है क्या है उसके बारे में समझाने का।
0: तो
1: हमारे गांव में हमने पाठशाला किया नया साल हुई, 2 साल हुआ है
0: जी,
1: 15 लाख के खर्चे में ही पाठशाला की है। अभी 20-25 लोग आ रहे हैं माता जी
0: जी जी।
1: और मैं क्लास कराता हूँ, सेवा करता हूँ, आबू आता हूँ, दो महीना तक सेवा करता हूँ।
0: तो
1: सब जगह पे है।
0: आपको कभी दोबारा जैसे आपने मेडिटेशन शुरू किया है ना, ईश्वर को याद करना शुरू किया, तो दोबारा कभी वो जैसे आपको तलब होती थी वो परेशानी नहीं हुई आपको दोबारा?
1: नहीं, कुछ नहीं, जैसे
0: कुछ भी नहीं
1: मेरे साथ।
0: अच्छा।
1: मेरा ऐसा संकल्प है ना, मुझे नहीं चाहिए, एक सेकंड में मैं छोड़ सकता हूँ, मुझे नहीं चाहिए।
0: क्या बात।
1: एक हमारे सेंटर में परिवार में एक शर्त लगी थी
0: जी
1: कि अगर आप बीड़ी पियो और कांदा लहसुन खाओ, कांदा लहसुन का, तो मैं हमारा जो समाज है
0: जी
1: लगभग 1000-1500 का, वो पूरा समाज मैं ब्रह्मा भोजन मेरे खर्चे से कराऊ।
0: अच्छा।
1: मैं बोला मैं पूरे समाज की बात नहीं, पूरे भारत को आप खिलाओ ना
0: जी,
1: फिर भी जो मेरी धारणा है वो टूटेगी नहीं।
0: अच्छा।
1: पूरे भारत में भंडारा कराओ आप
0: जी। क्या बात।
1: मेरा निश्चय बुद्धि
0: निश्चय था साहब। हाँ, क्या बात।
1: पेपर भी आया दीदी मेरे साथ, पेपर भी आया, ये भी बता दो आपको।
0: अच्छा।
1: परिवार में पापा ने कहा पेपर तो आया तो आएगी ना,
0: पेपर तो आता है, मुश्किल तो आती है।
1: लसन लसन लूंगने की वजह से आए, पवित्रता की वजह से आए जी यहाँ तक कि मेरा तलाक का छोटा छोटा का भी प्रश्न हो गया
0: था। अच्छा जी,
1: यहाँ तक पहुँच गए बात, लेकिन बाबा को मैंने सब समझ दिया था बाबा, तो जो रास्ता बताया कि वही तो अपना रहा हूँ
0: जी।
1: मेरा परिवार वाले मेरे विरुद्ध हो गए थे, लेकिन अभी तो सब सहयोगी बन गए हैं धीरे धीरे धीरे धीरे
0: जी।
1: मेरा लड़का के अंदर में माता दिया था, झोलता था, बाबा का पानी चार्ज कर कर मैंने उसको बंद कर दिया।
0: क्या बात है, मतलब बहुत इंस्पिरेशनल कहानी है। मुझे लगता है जो हमारे श्रोता मित्र सुन रहे होंगे, जिन्हें आज तक ये असंभव लगता था कि नशा नहीं छूट सकता, उन्हें ये समझ में आ जाएगा कि छूट सकता है और इतनी परेशानी जो आप सोच रहे हैं वो भी नहीं होगी आपको।
1: एक बाबा की, भगवान की, परमात्मा की याद ही छोड़ा,
0: परमात्मा की याद
1: छोड़ा,
0: ये समझ जाए बस।
1: परमात्मा जो है, परमात्मा उसकी याद,
0: उसकी
1: याद नहीं है, विधि कुछ नहीं उसमें।
0: जी जी जी, बस
1: आत्मा समझकर परमात्मा को, भगवान को याद करो
0: जी,
1: सब खत्म।
0: क्या बात है, बहुत बहुत कमाल की बात है। और प्रहलाद भाई, आपने शेयर किया हमारे साथ, आप जुड़े, इसके लिए आपका विशेष आभार है, विशेष धन्यवाद है। क्योंकि मुझे लगता है जो सुन रहे होंगे, जिनको ये लगता होगा कि शायद नहीं होगा, उन्हें एक होप तो ज़रूर मिली होगी कि हो सकता है, संभव है, बस एक बार करना ही है, एक कदम आगे बढ़ाना ही है बस। सौ कदम बढ़ाएगा, क्या बात है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका रेडियो मधुबन से जुड़ने के लिए।
1: आप मेरे साथ बात की, इसलिए आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया, जो लोग सुन रहे हैं उसको भी बहुत बहुत शुक्रिया जो हमारी बात सुन रहे हैं।
0: जी जी, धन्यवाद, धन्यवाद प्रहलाद जी। और दोस्तों, फिलहाल तो आपको लिए चलते हैं एक छोटे से ब्रेक की ओर, एक बहुत सुंदर गीत की ओर, लौट कर आएंगे। और जैसा कि आपको बताया था दोस्तों, रेडियो मधुबन पर हम मना रहे हैं नशा मुक्त सप्ताह। जी हाँ, नशा मुक्ति से अब की बार हमें ये प्रेरणा लेनी है कि हमें अपने घर, अपने आप और अपने आसपास के गांव को नशा मुक्त बनाना ही है, और उसके लिए एक कदम बढ़ाना है। और जैसा अभी देखिए, कितना सुंदर अनुभव सुनाया प्रहलाद जी ने, अपनी कहानी सुनाई कि किस प्रकार से उन्होंने छोड़ा। और अगर परमात्मा को याद करते हैं तो वो ऐसी ताकत देता है कि आपको उतनी परेशानी भी नहीं होती है, बस आप हिम्मत रखिए और आगे बढ़ाइए अपना ये कदम, संभव है एक बेहतर जीवन। चलिए सुनते हैं अगला नगमा, लौट कर आएंगे, कार्यक्रम युवा मंच जारी रहेगा, रेडियो मधुबन से जुड़े रहिए, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपने दोषों पर ध्यान देने की बजाय अपनी अच्छाइयों को पहचाने और उन्हें विकसित करें। मैं हूं आपका हम सफर आरजे रमेश। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।
1: पुनः आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। रेडियो मधुबन 107.8 एफएम सुन रहे हैं आप। कार्यक्रम है युवा मंच और दोस्तों, नशा मुक्त भारत की बात हो रही है, एक अभियान की बात हो रही है, एक संकल्प की बात हो रही है। दोस्तों, ये सिर्फ सरकार द्वारा चलाया जाने वाला एक अभियान ही नहीं है, परंतु ये वो सत्य है हमारे जीवन का जो सब कुछ बदल के रख देता है कई बार। और हम जानते हैं, जैसा कि प्रहलाद जी ने भी कहा, कि परिवार बहुत सफ़र करता है जब कोई व्यक्ति नशे से ग्रस्त होता है।

तो दोस्तों, जैसा कि आपने प्रहलाद जी से आज बात करी थी और उन्होंने बताया था अपने जीवन का अनुभव, अपनी सत्यता को इस प्रकार से रखना भी हिम्मत की बात होती है, बड़ी बात होती है। और आज उनकी सुपुत्र

0: हमारे साथ जुड़ गई हैं फोन लाइन पर। निलपा जी हमारे साथ हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है रेडियो मधुबन पर।
1: थैंक यू मैम।
0: सबसे पहले तो मैं बहुत मतलब खुशी महसूस कर रही हूँ कि आप यहाँ जुड़े हैं, क्योंकि आपके जो पिताजी हैं उन्होंने भी बहुत बखूबी अपना अपनी बात रखी। हिम्मत की बात होती है अपना अनुभव शेयर करना, और वो दूसरों को भी सिखाना चाहते थे डेफिनेटली कि ये संभव है। नशा मुक्ति की जब बात होती है तो कई बार असंभव सा या दर्दनाक सा प्रतीत होता है, तो थोड़ा हम आपसे भी चाहेंगे निपा जी कि आपका क्या अनुभव रहा, क्या आप पे किस प्रकार से असर डाला था नशे ने, या फिर उस वक्त जब आपके पिताजी नशा करते थे तो आप छोटे थे तब, कितने बड़े थे या क्या आपको लगता था उस वक्त?
1: मैं इतनी छोटी भी नहीं थी, मैं उस टाइम में कॉलेज कर रही थी।
0: अच्छा जी।
1: तो वो सब पता चलता था मुझे। अभी उसको बहुत इम्प्रूवमेंट है, जिसमें पहले तो वो बीड़ी पीते थे तो इतना गुस्सा करता था, मैं कुछ बोलती तो मारने आते थे, डांटते थे, सब कुछ करते थे। अभी उसका इतना बिहेव चेंज हुआ है कि इसमें ओम शांति में आने के बाद उसने वो व्यसन मुक्ति छोड़ा है, तो उसमें बहुत चेंज है, खान पीन में चेंज है उसका। वो फिर नशा बीड़ी तो बिल्कुल छूट गई है उससे, बहुत रिलीफ। जब मैं बोलती तो वो मुझे क्या बोलते, तुम सब मेरे साथ छोड़ दोगे पर मेरी बीड़ी मुझे साथ नहीं छोड़ेगी, वो मेरी स्वर्ग की सीढ़ी है, वो ऐसे बोल के हमको चुप करवाते थे।
0: अच्छा।
1: हाँ।
0: तो उस वक्त आप भी क्या, आप क्या बोलते थे उनको फिर?
1: तो मैंने बोला था, मुझे बीड़ी आप बहुत ज्यादा बहुत पीते, बोले तो दिन की एक दो गड्डी तो खत्म कर देते थे, वो 30 नंबर की बीड़ी थी। मैंने ये बीड़ी आपके लिए अच्छी नहीं, सेहत के लिए अच्छी नहीं है, आपको कुछ होगा तो हम क्या करेंगे, अपने बच्चों को तो सोचे थे कि कुछ होने वाला नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसा करके हमको डांट के चुप करवाते थे कि आप सब मुझे साथ छोड़ के चले जाओगे पर मेरी बीड़ी कभी साथ नहीं छोड़ेगी, वो मुझे स्वर्ग की सीढ़ी तक लेके जाएगी, ऐसा ऐसा बोल के हमको चुप करवा देते थे।
0: मतलब उनको ऐसा लगता था कि वही है उनकी साथी और वही उनके साथ रहने वाली है।
1: हाँ, कि मरूं मैं तब तक के लिए वो मेरे साथ रहेगी, ऐसा।
0: तो आपको तो बहुत दुख होता होगा, लेकिन अपने पिता को ऐसे देखना कितना मुश्किल होता है।
1: हाँ, बहुत परेशान रहते थे उसको, क्योंकि मिडिल क्लास के घर था, इतने फिर रोज की वो ऐसी बीड़ी में चले जाते थे, ऐसा करते थे। तो फिर मैंने कितनी बार बोला आप छोड़ो, प्रैक्टिस तो करो रोज की, आप जब 50 बीड़ी पीते हैं तो 10 तो दिन की छोड़ दो, तो आपको ऐसे करके धीरे धीरे आदत हो जाएगी। पर उसने छोड़ा नहीं है, फिर धीरे धीरे ऐसे वो ओम शांति में भक्ति कीर्तन में जाने लगे, फिर उसको वहां से उनको मिला के व्यसन मुक्ति में, तो वहां पे वो जुड़े, उसको धीरे धीरे से वो हैबिट उनकी छूट गई धीरे धीरे से, इसलिए अभी तो बहुत अच्छा रहे, घर में भी बहुत अच्छा रहता है।
0: क्या बात
1: अभी
0: है?
1: उसका उसका स्वभाव में चेंज आया है, गुस्सा नहीं करना, सबके साथ के मिलजुल बोलना, खान पीन में सुधार, बाहर की चीज नहीं खाना, वो बहुत सा सुधारा किया,
0: बहुत सुधारा किया। वो बता रहे थे कि कैसे आप छुपा भी देते थे उनकी बीड़ी को, या फिर उनके पिताजी से छुपा देते थे?
1: मैं छुपा देती थी, फेंक देती थी, तो वो वापस से मेरे भाई के साथ मंगवा लेते थे।
0: मतलब छोड़ नहीं पाते थे उसको बिल्कुल भी,
1: छोड़ नहीं पाते। मैं कितनी बार उसकी हर रोज ऐसी तो बीड़ी में उसको तोड़ के फेंक देती थी, सब जगह फेंकी हुई बीड़ी भी लेके आके पीते थे, ऐसा उसका बहुत ज्यादा व्यसन हो गया था।
0: ये तो बहुत मुश्किल परिस्थिति हो जाती है परिवार के लिए ऐसे में, कि किसी अपने को हम
1: परिस्थिति में गुजरे ऐसा, पर ऐसे व्यसन मुक्ति में गए, ओम शांति में गए, वहां से उसको बहुत अच्छा रहा, उसको सेहत के लिए भी अच्छा रहा है, जीवन में कुछ नया सीखने के लिए उनको अच्छा है। पहले गुस्सा भी बहुत करते थे, अभी वहाँ पे जाते तो गुस्सा बहुत कम हो गया, करते ही नहीं है बिल्कुल, मतलब ऐसे।
0: क्या बात है, ये तो बहुत मतलब बड़ा परिवर्तन है। बहुत बहुत ही बड़ा परिवर्तन है,
1: बहुत अच्छा हुआ है वहाँ पे जाने से।
0: तो आप तो बहुत खुश महसूस करते होंगे ना, आपके पिताजी ठीक है, स्वास्थ्य ठीक है?
1: अभी हमारी जिंदगी सवर गई, मतलब उसका व्यसन मुक्ति चेंज हुआ, क्योंकि अभी तो व्यसन ऐसे बहुत बीमारी होती है, ये बीमारी कब कहाँ हो जाए वो पता ही नहीं चलता है। हाँ, उसी किसी से तो इससे हम बहुत खुश है। तो अभी वो छूट गया तो उसका सब कुछ बहुत अच्छा, पहले वो शरीर भी उसका हेल्दी नहीं था, अभी व्यसन छूने के बाद उसका शरीर भी तंदुरुस्त हो गया है, मतलब
0: पहले वो बीमार भी बहुत पड़े थे उन्होंने बताया।
1: हाँ, बीमार उसका सांस चढ़ना फूलना बीपी वो सब कुछ रहता, अभी उसको कुछ बीपी बीपी सांस फूलना कुछ नहीं, अभी इतनी एज है तो वहाँ भी जाना होता है तो अभी चल के भी जा सकते, 10 किलोमीटर चलना तो खुद पैदल चल सकते हैं, साइकिल लेके, अभी इतनी उम्र में भी वो साइकिल चला के आना जाना रहा, उसको एक्टिवा गाड़ी पे शौक नहीं, वो उनको आती भी नहीं है।
0: अच्छा, क्या उम्र है इस वक्त उनकी?
1: उनकी 70।
0: और बताइए, इस उम्र में भी मतलब वो 70 के हैं और साइकिल चलाते हैं और सब कुछ करते हैं, वॉक करते हैं।
1: हाँ, वो भी सब कुछ उतना काम खुद करते हैं, कभी कोई घर पे नहीं होते तो खाना भी बना लेते हैं, वो उसका काम झाड़ू पोछा बर्तन सब कभी कर लेते हैं। मतलब कोई ना कहीं आना जाना हो तो गाड़ी में, मैं रिक्शा में नहीं जाते, वो खुद की साइकिल लेके ही जाते हैं।
0: क्या बात है, बहुत
1: अभी इतनी उम्र में वो भी करते है, इतना हेल्दी तंदुरुस्त। जो मैंने आप बोला गया, आपने वो बीड़ी नहीं छोड़ी होगी तो आप इतना नहीं कर पाते।
0: बिल्कुल संभव ही नहीं है इतना, क्या इतना तो क्या थोड़ा भी नहीं कर सकते इतना।
1: हाँ, थोड़ा भी बहुत नहीं करता है, व्यसन तो कितने अपने शरीर को पूरा खराब कर देती है, धीरे धीरे से कर देती है।
0: बिल्कुल सही बात है। तो नित्या जी, जाते जाते मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि जो आपको सुन रहे हैं, जो अभी भी नशे से ग्रस्त हैं, बहुत से मतलब स्टूडेंट्स हैं, दोस्त बोलते हैं शुरू कर देते हैं नशा करना, एक पी लो उससे क्या हो जाएगा ना, आप कुछ कहना चाहेंगे उन सभी से?
1: हाँ, मैं कहूंगी ना, तो उनको बोलना चाहिए कि एक अभी से आप एक बोलो, एक करने से कुछ नहीं होगा, पर एक ही आपको उसी लत लगाते कि आपको फिर छोड़ने पे आप मजबूर नहीं हो पाते, आपको वो लेना ही पड़ता है। तब मैं बोल रही हूँ, दिल से बोल रही हूँ, जो भी नशा करते हो उसको अभी से थोड़ा थोड़ा प्रयत्न करोगे तो आगे जाके बहुत कुछ छोड़ पाओगे। ऐसा अभी नहीं छोड़ पाओगे, पर बाद में बहुत छोड़ पाओगे, ताकि फैमिली के लिए भी अच्छा रहेगा।
0: नहीं तो परिवार के परिवार बर्बाद हो जाते हैं इस नशे के कारण।
1: हाँ, परिवार वो नशा में तो परिवार बहुत सारे बर्बाद हो जाते हैं, उसके बच्चे, फैमिली, माता पिता सब बहुत परेशान रहते हैं। ऐसा हम देखते हैं कि कोई भी नया छोटा मोटा व्यसन में तो उसका पूरा घर खराब हो जाता है। हम देखते हैं इतने सारे वीडियो में तो कितना होता है बहुत। इससे पहले मैं वो कहूंगी कि आप ऐसा करो कि अभी नहीं छोड़ पाते, थोड़ा थोड़ा आप कोशिश तो करो तो छूट जाएगा, क्यों नहीं छूटेगा, हमें मजबूत बन के वो छोड़ना तब छोड़ जाएगा वो।
0: बिल्कुल सही कह रहे हैं और बिल्कुल प्रैक्टिकल बात है ये कोई ऐसी कही सुनी थी किताबी बात भी नहीं है, बिल्कुल सही।
1: नहीं, वो किताबी नहीं, वो मेरे घर का ही है, मेरे शाम का ही है। वो मेरे पिता बहुत डांटती थी, मैं भी उनकी बहुत डांट खाती थी, फिर भी मैं उनको परेशान बोलती थी कि आप छोड़ दो, पर नहीं छूटा। वहाँ पे गए ओम शांति में, व्यसन मुक्ति का उसने भाग लिया तो छूट गया उसका। घर आके उसको महीनों तकलीफ हुई थी, पर उसके बाद बहुत अच्छा हो गया था उसको।
0: चलिए, हम बहुत कामना करते हैं कि वो हमेशा ऐसे ही स्वस्थ रहें, बहुत मस्त रहें, आप सब भी स्वस्थ रहें और जो हमारे सुनने वाले हैं उनको भी इससे प्रेरणा मिले, और जो छोड़ना के सोच रहे हैं वो तो अभी छोड़ पाएं, जो नहीं सोच रहे हैं वो आज ही से सोचना शुरू कर दें कि ये गलत है,
1: आज ही से सोचना शुरू कर दें। सही है
0: ना? बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय निकाला हमारे लिए, हमसे बात की, बहुत अच्छा लगा नीता जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।
1: थैंक यू मैम,
0: थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, आपने सुना, एक पिता ने भी अपनी बात रखी जो व्यसन से ग्रस्त थे पूरी तरीके से, और एक बेटी जो अपने पिता को उस व्यसन से ग्रस्त हालत में देखकर कितना तड़पती थी, परेशान होती थी, कोशिश करती थी कि वो छोड़ दें, पर उनको ही डांट खानी पड़ती थी, उनको ही मुश्किल होती थी, बहुत दर्दनाक स्थिति हो जाती है। कई बार व्यक्ति चाहता है अंदर से कि वो छोड़ दे, लेकिन उस आवाज़ को और दबा देती है वो नशा, और उसकी जो उलझन है या उसके बिना जो तलब होती है वो ऐसा लगता है कि नहीं, यही जीवन, इसी से शायद ठीक चलेगा। लेकिन सच कहूँ, ये जीवन जीवन ही नहीं है दोस्तों, और इसका ये अर्थ नहीं है कि आपके पास जीने के लिए अब कुछ नहीं, करने के लिए कुछ नहीं, बल्कि बहुत कुछ है, लेकिन बस एक कदम दूसरे डायरेक्शन में आपको लेना है, आपको एक हिम्मत का कदम बढ़ाना है। और सच में, कल भी हम सुन रहे थे, डॉक्टर बनारसी लाल जी हमारे साथ जुड़े हुए थे और उन्होंने भी एक बताया कि एक कहानी नहीं है ऐसी, बहुत सारी कहानियां हैं जिसमें लोगों ने व्यसन को छोड़ दिया है, चाहे वो स्टूडेंट्स हों, चाहे वो युवक हों, चाहे वो बुज़ुर्ग हों, कोई भी हो, कोई भी किसी भी उम्र में हो, लेकिन उन्होंने छोड़ दिया है। उन्होंने ये भी कल बताया था, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ थी, कि जो हमारे केमिकल्स रिलीज़ होते हैं बॉडी में जिसके कारण तलब होती है, हमें लगता है चाहिए ही चाहिए, वो वही अगर आध्यात्मिकता की ओर हम झुकते हैं, योग करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, खुद को समझते हैं कि मैं कौन हूँ, अपने सत्य परिचय को जानते हैं, परमात्मा को याद करते हैं, और जैसे वो तार जुड़ जाता है तो वो जो वो जो केमिकल्स की नीड है या जो भी आपको ज़रूरत होती है बॉडी को, जैसे जो तलब होती है, परेशानी होती है, उसमें बहुत गहरी मदद मिलती है और वो इतनी खुशी आपको मिलती है या इतना हेल्प मिलती है कि आपको नशा छोड़ना आसान हो जाता है। साथ साथ दवाओं का भी अगर साथ चाहिए तो दवाएं भी उपलब्ध यहाँ होती हैं, कराई जाती हैं। उन्होंने भी बताया कि किस प्रकार से आप दवा भी ले सकते हैं, होम्योपैथी मेडिसिन भी इसके लिए मिलती है, तो दोनों का साथ ले सकते हैं। लेकिन अगर आप छोड़ने का सोच रहे हैं तो कल पे मत डालिएगा, कल कभी नहीं आता है दोस्तों, कल आपको और मुश्किल होगी। एक कदम और आप सोचिए, अगर हम किसी रास्ते जा रहे हों और हमें पता चले कि गलत रास्ते पे हम जा रहे हैं और मुझे मुड़ के वापस आना पड़ेगा, तो जितना आगे जाते जाएंगे उतना लंबा मुड़ना पड़ेगा। इसलिए जितना चले गए हैं बस आप एक भी कदम और नहीं बढ़ाइए, रुक जाइए, थम जाइए। अब यहाँ से आपको पलटना है, अपनी ज़िंदगी को बदल देना है, अपने परिवार को सुखी बनाना है, खुद के जीवन को प्रेरणादायक बनाना है और नशे को छोड़ देना है। मुझे तो इस कहानी ने बहुत ज़्यादा प्रेरित किया है कि किस प्रकार से उन्होंने अपने नशे को धक से छोड़ दिया, जहाँ वो इसको छोड़ते ही नहीं थे, लगातार पीते ही रहते थे, और वहाँ उनका इतना जीवन परिवर्तन हो गया कि आज 70 की उम्र में वो 10-10 किलोमीटर साइकिल चला रहे हैं, पैदल जा रहे हैं, खाना पीना अपना अच्छा बना लिया है, दूसरों को समझा रहे हैं। ऐसा परिवर्तन आया कि बस क्या ही पूछें। तो सोचिए, अगर उनके साथ हो सकता है ये, तो आपके साथ क्यों नहीं। और दोस्तों, अगर आपके पास कोई सवाल है, कोई बात है कहने की, तो आप बिल्कुल कह सकते हैं। रेडियो मधुबन आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन है। हमारा नंबर है 94-14-15-14-15, यानी कि 9414-15-14-15। हमेशा जब भी नशे की बात होती है दोस्तों, वो शुरुआत वहीं से होती है। एक ले लो ना, इससे क्या होगा, थोड़ा सा ले ले, ठीक हो जाएगा सब। दोस्त यानी संगत से शुरू होता है। जो गलत संगत में ले जाए वो आपका दोस्त नहीं है, ये आज ही समझ लीजिए दोस्तों। कल जाके आपको हो सकता है समझ में आ जाए, लेकिन तब तक नशे की लत आपको लग चुकी होगी। जो नशे की ओर ले जाए वो दोस्त दोस्त नहीं है। जो आपके जीवन को बेहतर बनाए वही सच्चा दोस्त है। चाहे उस दोस्ती के लिए इंतज़ार क्यों ना करना पड़े, कर लीजिए, लेकिन ऐसे दोस्त को साथ मत रखिए जो आपकी ज़िंदगी को नरक बना दे। तो दोस्तों, फिलहाल तो वक्त हो गया है आपसे इजाज़त लेने का, और मैं यही कहूँगी कि नशा मुक्ति सप्ताह में हमारे साथ बने रहिए और नशा छोड़ने की ओर ये प्रयत्न और आगे लेकर जाइए। आपकी भी कहानी हम तक पहुँचाइए। रेडियो मधुबन का नंबर है 94-14-15-14-15, यानी कि 9414-15-14-15। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, रेडियो मधुबन सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन।
1: कृपया जब गाड़ी प्लेटफॉर्म पर खड़ी हो तब मेहरबानी करके शौचालय का उपयोग ना करें, जिससे स्टेशन परिसर में गंदगी फैलती है। इसमें रेलवे की सहायता करें।
0: रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए।
2: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए।

0: पढ़ना सीखा, लिखना सीखा, जीना सीखा। रेडियो मधुबन की छोटी सी पाठशाला।
1: लाइफ इज अ बुक, जीवन एक बहुत सुंदर किताब है। रीड इट, उसको पढ़ो, है ना। कुछ एक अच्छी अच्छी किताबें आपको पढ़नी चाहिए। एक किताब रिसेंटली जो मैंने पढ़ी है और वो है द मॉन्क हू सोल्ड हिज फरारी। और एक और किताब मुझे अभी रिसेंटली बहुत अच्छी लगी थी, एंड दैट वाज हु वुड क्राई व्हेन यू वुड डाई। जब हमारी मृत्यु होगी ना तो कौन कौन लोग रोएंगे। जब मैं किताब पढ़ने लगा तो मुझे ये एहसास हुआ, मृत्यु के नजदीक जब हम हैं और अगर हमने अपने लाइफ को रिवाइंड करके देखा, अगर हमारे जीवन के प्रति हमारी बहुत अच्छा पॉजिटिविटी आया, तो मींस माय लाइफ इज अ वेरी रियल सक्सेस। हमें इस जीवन को देखकर खुशी में रहना चाहिए। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, कुछ एक बातों को फॉलो करना है। हो सके ना तो बीच बीच में उपवास करने का। कौन सा उपवास करना है? कोई शरीर को कष्ट देने की बात नहीं है, लेकिन उपवास करना है दो बातों का, और एक है न्यूज़पेपर्स का। हफ्ते में एक दिन न्यूज़पेपर को थोड़ा बंद करो, हफ्ते में एक दिन टीवी को थोड़ा बंद करो, और हो सके तो अच्छी अच्छी किताबें पढ़िए। मैं आपको कुछ एक अच्छे और किताबों का सजेशन करूंगा, अगर हो सके तो वो किताबों को जरूर पढ़ना। एंड दैट इज नंबर वन इज इटर्नल वर्ल्ड ड्रामा, जो आपको ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय से मिलेगा। इटर्नल वर्ल्ड ड्रामा रिटन बाय आदरणीय जगदीश भाई जी, बहुत अच्छी किताब है। एक और किताब मैं आपको सजेस्ट करूंगा और वो है साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी। ये भी किताब हो सके तो आप जरूर खरीदना और पढ़ना। और एक जो सबसे अच्छी किताब मुझे लगी है वो आप जरूर पढ़ना, और वो है आदिदेव ब्रह्मा। हिंदी में अवेलेबल है, और वो है ब्रह्मा बाबा की जीवन कहानी, वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2। और जैसे जैसे आप ये किताबें पढ़ेंगे, आपको ये समझ में आएगी कि यस, दुनिया जो है किस तरफ बढ़ रही है, और कैसे ये दुनिया परिवर्तन हो रहा है, और कैसी एक सुंदर दुनिया की स्थापना होगी।

सुनो गौर से दुनिया वालों। वेल दोस्तों, सुनो गौर से। और दुनिया वालों, क्या आप दोस्त भी सुन लो। गुड इवनिंग, नमस्ते। रेडियो मधुबन 107.8 एफएम में आप जुड़ चुके हैं आपके फेवरेट कार्यक्रम उड़ान के साथ। मैं हूँ आपकी दोस्त मोरा। आप दोस्तों के बीच प्यार के साथ, मस्ती के साथ गुनगुनाते खूबसूरत शाम बिताने आ गई हूँ। लेकर आई हूँ आज सवाल भी। इसके साथ साथ आपको जोड़ के रखूंगी कहानी, कविता और अमेजिंग जानकारी के साथ। तो चलिए दोस्तों, जुड़े रहना, सुनते रहना, मुस्कुराते रहना।

0: आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन।
1: कृपया चलती गाड़ी में चढ़ने का प्रयास ना करें, यह जानलेवा हो सकता है। रेल के डिब्बों की छत पर बैठकर यात्रा ना करें, क्योंकि ओवरहेड वायर्स में 25,000 वोल्ट का करंट है। इनके संपर्क में आने से आपकी जान को खतरा हो सकता है।
0: रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
2: रेडियो मधुबन 107.8 एफएम में आप जुड़े हैं उड़ान कार्यक्रम के साथ। मैं हूं आपकी दोस्त मोना। आगे बढ़ते हैं और आज की अमेजिंग जानकारी या विशेषता के बारे में आप तक। आज का दिन क्यों विशेष है? आज है विश्व एथनिक दिवस, अर्थात वर्ल्ड एथनिक डे। प्रतिवर्ष 19 जून को मनाया जाने वाला ये निर्णय विशेष विश्व संस्कृति के संरक्षण और उसे सुरक्षित रखने के उद्देश्य से किया गया। भारतीय हिंदी फिल्मों की सुप्रसिद्ध अभिनेत्री विद्या बालन को एथनिक उत्पादकों की ऑनलाइन craftsivil.com के ने इस दिवस का ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया है। और विश्व एथनिक दिवस में के माध्यम से हम जड़ों से दोबारा जुड़ने का अवसर मिलता है और इसी को हर इंसान या हर भारतीय या दुनिया के हर मनुष्य तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। धूमिल हुई हथकरघा या बड़ी बड़ी ऐसी कलाकृतियां जो अब पलायन हो रही है, जिसकी वजह से उनका संस्कृति से नामो निशान मिट जा रहा है, उन्हें पुनः स्थापित करने का उद्देश्य लेकर विश्व एथनिक डे सेलिब्रेट होने लगा है। विश्व भर में अलग अलग क्षेत्रों में ऐतिहासिक विरासत, सभ्यता, मानव जाति, विज्ञान, कला और संस्कृति के संरक्षण और इसे सजोने के लिए ये विशेष दिन चुना गया है। तो चलिए, इससे जुड़ी एक कविता थोड़ी देर में जरूर होगी, लेकिन आज का सवाल उससे पहले है। सरायघाट की लड़ाई में किस साम्राज्य ने मुगलों के

जब रण में सिंह गरजते हैं तो इतिहास बदल जाते हैं, ये गाथा है एक शूरवीर की।

वीरों का सम्मान रहेगा। भारत ने सदा वीरों का सम्मान किया है। कला और संस्कृति हमारी पहचान बनी है, आत्मा और इतिहास का प्रतिबिंब भी यही है। पीढ़ियों से चली आ रही परंपराओं, मूल्यों, भावनाओं या वो कलाकृतियां हमारे रग रग में बसी हुई है। माटी से गढ़ी मूरत में जब प्राण कोई भरता है, तब जाकर वह एक कलाकार कहलाता है। रंग तुलिका और शब्दों के ये अनमोल मेल हैं, संस्कृति की छाव में होते हैं अद्भुत खेल ये। मिट्टी के खिलौने से लेकर शास्त्र संगीत की लय है, हर शिल्प में बसी है अपनी हमारी अपनी कोई विजय है। मंदिरों की नक्काशी हो या हाथों की बुनाई हो, मंदिरों की नक्काशी हो या हाथों की बुनाई हो, ये पूर्वजों के आशीर्वाद की ही तो गहराई है। त्योहारों के रंग और लोक नृत्य की उमंग, त्योहारों के रंग और लोक नृत्य की उमंग संस्कृति के धागे पिरोते हैं जीवन के ये हर प्रसंग। यही है तो है वो दर्पण जो हमें हमसे मिलाता है, हमारी कला ही तो भारत का गौरव बढ़ाता है। आधुनिकता की दौड़ में अपनी विरासत को सहेज ले, संस्कृति और कला ही हमारे सबसे अनमोल खजाने हैं। जी हाँ, इस खजाने को जरूर मैंने संजो के रखें और इस गीत को साथ ही साथ जरूर सुन ले। साथ ही साथ आज का सवाल एक बार पुनः हम आप तक बहुत दोहरा देते हैं। सवाल था, सरायघाट की लड़ाई किस साम्राज्य ने मुगलों के विरुद्ध लड़ी।

ए मराठा, ए विजयनगर, बी मेवाड़, सी अहोम। सही जवाब झटपट देना 9414154154 पर देना।

0: पूरा रशिया का जनसंख्या कितना है बताओ? 14 करोड़ जितनी। बहुत बड़ा नंबर है ना? पर बड़ा नंबर तो ये है कि भारत में लगभग इतने ही घरों में लगे हैं नल पिछले 12 सालों में। 16 करोड़ घरों में हर दिन हर मौसम आता है नल से निर्मल जल, जिससे करोड़ों महिलाओं को पानी ढोने से तो मुक्ति मिली ही, साथ गाँव में जल व्यवस्थापन की शक्ति भी मिली।
1: जल जीवन मिशन का विजन सिर्फ लोगों तक पानी पहुंचाने का ही नहीं है, ये डिसेंट्रलाइजेशन का, विकेंद्रीकरण का उसका भी एक बहुत बड़ा मूवमेंट है। ये विलेज ड्रिवन, विमेन ड्रिवन मूवमेंट है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जनकल्याण।
2: वेल, चलिए होमवर्क भी अब आप तक पहुंचा देते हैं। आज का होमवर्क बिस्कुट है।

0: जब घर वाले हुए परेशान और समाज ने ठुकराया तो लगा
1: थी जो पीली है, चोरी तो नहीं की है।
0: और जब इस आदत को पहचान न पाने के कारण दुखी हुए, परेशान हुए, रोए चिल्लाए, दिल टूट गया, जग छूट गया, तो आवाज

गम में पिए या दुख में धुआं उड़ाए। तंबाकू के सेवन से कई गंभीर और जानलेवा बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। फेफड़ों के कैंसर, लिवर कैंसर, मुंह का कैंसर, कोलन कैंसर और गर्भाशय का कैंसर होने का भी जोखिम होता है। इसलिए आप कहिए नो टू टोबैको, धूम्रपान को कहिए अलविदा और कह

दोस्तों बात करते हैं फटाफट आज के होमवर्क की। आज का विषय है गंभीर तो है, किस बात के लिए? उपभोक्ताओं के बात के लिए। उपभोक्ता कल भारत में यह संभव हो सकता है अमेरिका में जो आज है, कल वह भारत में भी आ सकता है। प्रतिष्ठा के अनेक रूप होते हैं, चाहे वे हास्यप्रद ही क्यों ना हो। यह है एक छोटी सी झलक उपभोक्तावादी समाज की। यह विशिष्ट जन का समाज है, पर सामान्य जन भी इसे ललचाई निगाहों से देखते हैं। उनकी दृष्टि में एक विज्ञापन की भाषा में यही राइट चॉइस। अब विषय तो गंभीर पक्ष की ओर आए, इस उपभोक्ता संस्कृति का विकास भारत में क्यों हो रहा है? सामंती संस्कृति के तत्व भारत में पहले भी रहे हैं, उपभोक्ता इस संस्कृति से जुड़ रहा है। आज सामंत बदल गए हैं, सामंती संस्कृति का मुहावरा भी बदल गया है। हम सांस्कृतिक अस्मिता की बात नहीं कर रहे हैं, परंपराओं का अवमूलन हुआ है, आस्थाओं का शरण हुआ है। कड़वा सच तो यह है कि हम बौद्धिक दास्ता स्वीकार कर रहे हैं, पश्चिम के सांस्कृतिक उपनिवेश बन रहे हैं। हमारी नई संस्कृति अनुकरण की संस्कृति है। हम आधुनिकता के झूठे प्रतिमान अपनाते जा रहे हैं, प्रतिष्ठा की अंधी प्रतिस्पर्धाओं में जा रहे हैं और उसे खोकर छद्म आधुनिकता की गिरफ्त में आते हैं। सांस्कृतिक की नियंत्रक शक्तियों के क्षीण हो जाने के कारण हम भ्रमित हो रहे हैं। हमारा समाज ही अन्य निर्देशित होता जा रहा है। विज्ञापन और प्रसार के सूक्ष्म तंत्र हमारी मानसिकता बदल रहे हैं। उनमें सम्मोहन की शक्ति है, वशीकरण भी है। चलिए दोस्तों, आज का अगला गीत आपके लिए और फिर सीधे चलते हैं आज की कहानी की तरफ।

0: सूरज अभी गुरु नहीं हुआ था कि भेड़िया और लगर बिघा एक खतरनाक मंसूबा बना रहे थे।
1: क्या तुमने हड्डियां फेंक दी हैं शेर की गार के सामने?
2: हाँ, फेंक दी हैं। अब बस हमने गधे को उल्लू बनाना है।
1: चलो चलते हैं, अभी सूरज गुरूब नहीं हुआ, वो घास ही खा रहा होगा।
2: हाँ हाँ, चलो चलते हैं।
0: वो दोनों गधे के करीब पहुंचे और जानबूझकर बातें करने लगे।
1: कुछ सुना तुमने?
2: क्या?
1: शेर अब दूसरे जानवरों को छोड़कर अपने वफादार जानवरों का शिकार कर रहा है।
2: ये कैसे हो सकता है?
1: ऐसा ही है, कल मैंने उसे देखा, उसने हिरन को मारा और खा गया। उसकी हड्डियां अभी भी उसकी गार के बाहर मौजूद हैं।
0: गधा ये सब सुन रहा था। उसने सोचा,
3: शेर क्यों हमें मारेगा? हम तो इसके बहुत वफादार साथी हैं। क्यों ना शेर की गार के बाहर देखा जाए कि क्या वाकई हड्डियां पड़ी हैं या ये दोनों झूठ बोल रहे हैं।
0: गधा शेर की गार के बाहर पहुंचा। उसने देखा वहां हड्डियां वाकई मौजूद थी।
3: अरे बाप रे, वो तो दोनों सही कह रहे हैं, हड्डियां तो वाकई पड़ी हैं। इसका मतलब है कि अब शेर बूढ़ा हो गया है, बाहर जाकर शिकार नहीं कर सकता। जो वफादार साथी उसकी गार में आते हैं हाल पूछने या खाना देने, अब उन्हीं को मारता है। इसका मतलब है इसने मुझे भी मारना है, सो अब मैं इससे दूर रहूंगा।
0: दूसरी तरफ कार में शेर और लोमड़ी बातें कर रहे थे।
4: अरे यार, आज कुछ मजेदार चीज खाने का दिल कर रहा है।
5: क्यों, अभी कल ही तो मैंने आपको सांप की यखनी पिलाई है।
4: अरे यार, सांप की यखनी से काम नहीं चलता, मेरा तो दिल ताजा गोश्त खाने को कर रहा है।
5: ताजा गोश्त? महाराज, आपने तो जंगल में शिकार पर पाबंदी लगाई हुई है, ना खुद शिकार करते हैं ना किसी को करने देते हैं, तो ताजा गोश्त कहाँ से खाएंगे?
4: मैं जा रहा हूँ दूसरे जंगल, वहाँ किसी ना किसी जानवर का शिकार करके ताजा गोश्त खा लूंगा। तुम इस तरह करो, गधे को बुलाओ, उसे कहो कि बादशाह सलामत दूसरे जंगल जा रहे हैं, सो वो कहते हैं कि मेरी गार में बैठ जाओ ताकि कोई मेरी कीमती चीजें चोरी ना कर ले।
0: लूमड़ी गधे को बुलाने चली गई।
5: अरे सुस्त और कायल जानवर, उठ, बादशाह सलामत तुझे बुला रहे हैं।
3: इतनी सुबह सुबह मुझे क्यों बुला रहे हैं? इतनी सुबह तो उन्होंने कभी नहीं बुलाया।
5: अरे पागल, वो दूसरे जंगल जा रहे हैं शिकार करने, तो कहते हैं कि गधे को मैं अपनी गार में छोड़ के जाऊंगा ताकि कोई चीज चोरी ना हो।
0: गधे ने सोचा, अब इससे कैसे जान छुड़ाई जाए, चुनांचे उसने फौरन बहाना बनाया।
3: नहीं नहीं, मैं नहीं आऊंगा, मैं जा रहा हूँ, अपनी बीवी बच्चों का पेट पालना है, सुबह सुबह गार में जाकर नहीं बैठ सकता।
0: लोमड़ी ने वापस आकर शेर को बताया कि गधा ये कह रहा है।
4: गधे की इतनी जुर्रत कि उसने आने से इनकार कर दिया, मैं खुद जाता हूँ उसके पास।
0: शेर खुद गधे के पास पहुंचा।
4: क्यों भाई गधे, मैंने तुम्हें बुलाया और तुम नहीं आए?
3: जी मिराज, मैं नहीं आऊंगा, अपनी बीवी बच्चों का पेट पालना है, सो सुबह सुबह काम पर जाऊंगा।
4: भाई तुम्हें काम पर जाने की क्या जरूरत, जितना खाना चाहिए जाओ नदी के पास से ले लो, इतनी घास वहां उगी है, मैंने आप लोगों के लिए उगाई है।
3: नहीं नहीं मिराज, इस घास से मेरे बच्चे बीमार हो जाते हैं, सो मैं आज कहीं और से घास लेने जाऊंगा।
0: शेर को बहुत दुख लगा, वो शिकार पर जाने के बजाय वापस अपनी गार में चला गया और सोचने लगा कि गधे ने ऐसा क्यों किया। साजिशी टूला फिर से इकट्ठा हुआ।
1: पहला निशाना सही ठिकाने पर लगा है।
2: गीदड़ अभी तक नहीं आया।
1: वो दिन टाइम मिला था और कह रहा था कि मगरिब के बाद आऊंगा।
0: गीदड़ के पीछे किसान और कुत्ते लगे हुए थे।
6: मालिक, तेरा लाख लाख शुक्र है मैं पहुंच गया, वरना उन कुत्तों ने तो मेरा तीमा बना देना था।
1: यार अभी तक गीदड़ नहीं आया।
6: माफ करो यारू, मेरे पीछे कुत्ते लगे थे सो रास्ता भटक गया था।
7: लो, नाम लिया और शैतान हाजिर।
6: मैं शहर से दवा ले आया हूं।
7: वही दवाई लाए हो ना, कहीं अपनी निस्वार वाली दवा तो नहीं ले आए?
6: नहीं नहीं, वही लाया हूं, बस अब आपने उस घास वाली जगह पर ये डाल देनी है जहां गधा घास चरता है, खासकर जहां शेर की गार के बहुत करीब हो, वो उसे खाते ही नागन डांस करने लगेगा।
0: भेड़िये और लगड़बगे ने शेर की गार के करीब वाली घास में दवा मिला दी। गधा सुबह से शाम तक घास ढूंढता रहा, लेकिन उसे वैसी घास ना मिली जो शेर की गार के करीब थी।
3: अब घास तो मुझे ना मिली तो घर क्या ले जाऊंगा, चलो सूरज गुरूब होने का इंतजार करता हूँ। जब शेर गार के अंदर चला जाएगा तो फिर मैं उसके गार के बाहर वाली घास खा लूंगा और अपनी बीवी बच्चों के लिए भी ले जाऊंगा।
0: सूरज गुरूब होने के बाद जो ही गधे ने घास खानी शुरू की, दवाई ने असर किया। गधा उछलने लगा, कूदने लगा, आवाजें निकालने लगा। ये सुनकर शेर गार से बाहर आया। जो ही शेर बाहर आया, गधा अछलते कूदते शेर की तरफ बढ़ा। शेर ने समझा, ये मुझे मारने आया है। शेर वापस गार में घुस गया और बाकी जानवरों को हुक्म दिया कि गधे को फौरन पकड़कर कैद कर दिया जाए। गधे को फौरन पकड़कर जेल में डाल दिया गया।
2: क्यों भाई गधे, बताओ अब कैसा महसूस कर रहे हो?
3: मुझे क्यों बंद किया गया? मैंने क्या किया है? मैंने कभी किसी का बुरा नहीं सोचा, फिर मेरे साथ ये क्यों? मेरी वफादारी का यही सिला मिला।
2: मासूम बनने की जरूरत नहीं, तुमने शेर को मारने की कोशिश की, इसीलिए शेर ने हुक्म दिया कि तुम्हें जेल में बंद कर दिया जाए।
3: मैं ऐसा क्यों करूंगा?
2: शाप बकवास बंद।
1: बकवास तुम कर रहे हो, मुझे गुस्सा मत दिलाओ। शेर ने हुक्म दिया है कि अगर ये जरा सी भी ऐसी वैसी बात करे तो उसे मारना शुरू कर दो।
2: तुम मुझे मारोगे?
0: उसके बाद लगड़बगे ने गधे को मारना शुरू किया और इतना मारा कि उसे बेहोश कर दिया। भेड़िये ने जंगल में अफवाह फैला दी कि गधे ने शर्मिंदगी की वजह से खुदकुशी कर ली। शेर के सामने एक ऐसी लाश लाई गई जिसका चेहरा पहचानना नामकिन था। शेर, जो पहले ही गधे के बर्ताव से दुखी था, गधे की मौत की खबर सुनकर बेहोश हो गया। होश में आने के बाद उसने कहा,
4: मेरी ज़हनी सेहत को बहुत ठेस पहुंची है। मेरा दिमाग इतना काबिल नहीं रहा कि जंगल चला सकूं, सो मैं अपने बाद लगड़बगे को उस जंगल का महाराज बनाता हूं। जब तक मैं दुखों और ज़हनी अज़ियत से निकल न जाऊं, तब तक जंगल का बादशाह लगड़बगा ही रहेगा।
0: इसके बाद उसने लगड़बगे के हवाले हुकूमत कर दी और खुद गार के अंदर रहने लगा। इधर सब कुछ ठीक चल रहा था। लगड़बगा और भेड़िया दोनों बहुत मौज मस्ती में थे। शेर का ज़हनी तवाज़ुन ठीक न था, सो ये जिस जानवर का चाहते शिकार कर लेते। कोई जानवर एहतजाज करने वाला न था, जो भी आवाज़ उठाता ये सबसे पहले उसका शिकार कर लेते। जंगल में बहुत वहशत का माहौल था। एक दिन भेड़िये ने ऐलान किया,
1: अब जंगल में कोई जानवर मुझसे पूछे बगैर नहीं आएगा। अगर कोई आया तो फौरन उसे शिकार बना लूंगा।
8: लेकिन हमारे रिश्तेदार दूसरे जानवर जंगल में रहते हैं, वो आते जाते रहते हैं, तो उनका क्या कसूर?
1: बस मैंने कह दिया है, जो कोई आएगा मुझसे पूछ कर आएगा, अगर बगैर पूछे आया तो उसे खा जाऊंगा। और आज से मैं लगड़बगों और भेड़ियों को जंगल की सरहद पर तैनात कर रहा हूं, और हर आने वाला अब टैक्स देकर अंदर आएगा।
0: जंगल के एक कोने में एक समझदार रीच रहता था, जो हमेशा तन्हाई में रहता और सबसे दूर रहता। वो उन मजालिम को देख रहा था मगर चुप था।
9: अरे बेटा, पहाड़ी के दूसरी तरफ मत जाना, वो दूसरे शेर का इलाका है, वो तुम्हें खा जाएगा। यहाँ मेरी नजरों के सामने खेलो।
10: मैं यही सामने खेलूंगा, पहाड़ी के दूसरी तरफ नहीं जाऊंगा।
0: इतना कहकर रीच सो गया। रीच का बच्चा खेलते खेलते पहाड़ी के ऊपर चला गया। उसने देखा कि दूसरी तरफ एक बहुत प्यारा गेंद पड़ा है। वो गेंद उठाने के लिए दूसरी तरफ चला गया। जब वो गेंद के पास पहुंचा तो उसे किसी जानवर के कराहने की आवाज आई। करीब जाकर देखा तो वहां एक गधा जंजीरों से बंधा हुआ एक गड्ढे में पड़ा था और आखिरी सांसें ले रहा था। रीच का बच्चा बहुत डर गया। उसने गेंद ना उठाई और फौरन वापस आ गया। उसने सारी बात रीच को बताई।
9: क्या देखा? कौन सा जानवर था?
10: बाबा, एक गिधा था, जंजीरों से जकड़ा हुआ, आखिरी सांसें ले रहा है।
9: तुमने उसे हाथ तो नहीं लगाया?
10: नहीं बाबा, चलो ना, वो बहुत मुश्किल में है, उसकी मदद करें।
9: नहीं नहीं, वो दूसरे जंगल का इलाका है, हम नहीं जा सकते, शेर खा जाएगा।
10: नहीं बाबा, कुछ नहीं होता, आओ उसे वहां से निकालते हैं। चलो चलो आओ ना बाबा, चलते हैं, वो मुश्किल में है।
0: रीच के बच्चे ने इतना इसरार किया तो रीच का दिल पिघल गया। वो भी पहाड़ी पर चढ़ा और दूसरी तरफ चला गया जहां बच्चे ने निशानदेही की थी। वहां पहुंचकर रीच ने देखा, ये तो वही गधा है जो हमारा दोस्त था, जिसके बारे में मशहूर था कि उसने खुदकुशी कर ली। रीच ने उसे बाहर निकाला और अपनी गार में ले आया।

0: अरे शेर सिंह जी, ये आपके जंगल में कैसा एसी लगा है? हवा बिल्कुल गरम गरम आती।
1: दोस्तों, आज का पुनः सवाल, सरायघाट की लड़ाई में किस साम्राज्य ने मुगलों के विरुद्ध लड़ाई की थी? ए
2: विजयनगर, ऑप्शन बी है मेवाड़, ऑप्शन सी है अहोम।
1: सही जवाब झटपट देना 9414151415 पर देना, और रंग रंगीलो राजस्थान अगला गीत आपके लिए उड़ान में। सुनते रहो,
2: मुस्कुराते रहो।

0: वेल दोस्तों, वक्त इशारा कर रहा है गुड बाय कहने का, लेकिन जाने से पहले आज के सवाल का जवाब भी जरूर दे देते हैं। सवाल हमने पूछा था, सराय घाट की लड़ाई में किस साम्राज्य ने मुगलों के विरुद्ध लड़ाई लड़ी थी? आपके सामने हमने ऑप्शन रखा था, ए विजयनगर, बी मेवाड़ और सी
1: अहोम।
0: और सही जवाब क्या है?
1: ऑप्शन सी अहोम।
0: अहोम साम्राज्य असम की ब्रह्मपुत्र घाटी में स्थित
1: एक शक्तिशाली मध्यकालीन साम्राज्य था, जिसने लगभग 600 वर्षों तक शासन किया। अपनी सैन्य शक्ति और गुरिल्ला युद्ध नीतियों के लिए प्रसिद्ध इस साम्राज्य ने शक्तिशाली मुगल साम्राज्य को कई बार हराया था।
0: 13वीं शताब्दी में चाओलुंग स्कूफा ने अहोम साम्राज्य की स्थापना की। वे आधुनिक म्यांमार अर्थात बर्मा में मोंगमाओ क्षेत्र में पटकाई पर्वतमाला पार करके ब्रह्मपुत्र घाटी आए थे।
1: अहोम साम्राज्य ने मुगल सेनाओं के सामने कभी आत्मसमर्पण नहीं किया। उन्होंने मुगलों को 17 से अधिक बार युद्ध में हराया है।
0: और अहोम सेनापति लाचित बोरफुकन के नेतृत्व में लड़ी गई इस लड़ाई में अहोम ने मुगल सेना को करारी शिकस्त दी। और
1: लाचित बोरफुकन को आज भी असम के सबसे महान वीरों में गिना जाता है।
0: तो चलिए दोस्तों, आज आपको सवाल का जवाब भी मिल गया और सोमवार को मिलने का वादा करते हैं, ठीक शाम
1: 6 बजे।
0: तब तक के लिए उड़ान से कहेंगे
1: गुड बाय।
0: सुनते रहो,
1: मुस्कुराते रहो,
0: रेडियो मधुबन 107.8 FM।

जिंदगी रात भी है सवेरा भी है जिंदगी, जिंदगी रात भी है सवेरा भी है जिंदगी, जिंदगी।

0: आज गम है तो कल है खुशी, जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है, हार के बाद ही जीत है।
1: नमस्कार, मैं हूँ साधना सरगम, आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहो मुस्कुराते रहो।

0: नमस्ते, राम राम और ओम शांति। मेरा नाम पवित्र मल्लिक और आप सुन रहे हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का सामुदायिक रेडियो रेडियो मधुबन कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल यानी मारो गांव मारो अंचल और कह सकते माय विलेज माय एरिया। इस कार्यक्रम को लेकर जब हम गांव अंचल ढाणी मगरा नरेगा सभी में जाते तो हमें बहुत खुशी मिलता है क्योंकि एक सामुदायिक रेडियो है, सामुदायिक द्वारा सामुदायिक के लिए प्रस्तुतिकरण करता है और अपना रेडियो है, खुद का रेडियो है और खुद का आवाज जन जन तक पहुंचाने के लिए एक मंच रेडियो मधुबन प्रदान करता है जिस मंच का माध्यम से अपना भाव भावना शुभकामना और टैलेंट जो प्रतिभा है और कला संस्कृति को उजागर करने के लिए एक मंच एक स्टेज देता है। आज इस कार्यक्रम को लेकर मावल ग्राम पंचायत में पहुंचे। आप सबको विदित है मावल एक स्टेशन है, रेलवे स्टेशन, जहां भी आप रोड जाना हो तो मावल स्टेशन है। तो आज मावल का आवाज ही उनका पहचान होगा, हमें बहुत खुशी है। जहाँ भी जाते चाहे स्कूल हो चाहे आंगनबाड़ी हो चाहे नरगांव चाहे सभी वर्ग से मिलते तो उनका सक्सेस स्टोरी जन जन तक पहुँचाते क्योंकि एक सामुदायिक रेडियो है। तो आज इस कार्यक्रम को सजाने के लिए मैं नरगा में पहुँचे जो माताएं बहनें भाई लोग श्रम करते हैं, सरकार का जो रोजगार गारंटी देता है उससे काम करते हैं और मनोरंजन के साथ साथ अपने खुशी जाहिर करते। तो आज इस कार्यक्रम को सजाने के लिए पहुँचे तो हमारा साथ पुष्पा जी है जो मेड है, बहुत अच्छा कार्यक्रम को लेकर आज हम सब जानते हैं और हमारा सरपंच हो चाहे प्रवीण जो बहुत सारा लोग सुनते हैं, हमारा श्रोता मित्र भी सुन रहे हैं तो हर गांव का आवाज पहुंचाते हैं रेडियो मधुबन। तो आज मावल का आवाज होगा और हमारा साथ पुष्पा जी जो मेड है तो उनको स्वागत करते हैं ग्रामवासियों की तरफ से और रेडियो मधुबन परिवार की ओर से और ईश्वरीय विश्वविद्यालय के परिवार की ओर से। तो पुष्पा जी आपको राम राम करते हैं, ओम शांति करते हैं, तो आप अपना परिचय दीजिए।
1: मेरा नाम पुष्पा देवी है और मैं 2 साल से नरेगा में काम करती हूँ।
0: क्या काम करते हैं?
1: मेट का।
0: मैं चाहता हूँ जो हर रोज आते तो क्या करते?
1: हाजिरी भरनी, ऑनलाइन करनी।
0: ओके, तो आपका मावल ग्राम पंचायत में कितना नरेगा चलता है?
1: 2 साइड चल रही है सर, दाता नाड़ी, अमृत सरोवर दाता नाड़ी।

0: कलश और अमृत तालाब है, मान सरोवर है, ज्ञान सरोवर है। तो आज ज्ञान सरोवर में और पुष्प को विमान में पुष्पा दीदी आए है ना, पुष्पा जी तो बहुत अच्छा लगा, आप भी सहयोग दिए। एक इशारा से सभी जो कर्मकर्ताओं को जो कार्यकर्ताओं को एकत्रित करके खुशी से एक कार्यक्रम तो फिर ना अचानक पाठ बजाय तो आपको कैसे लगा?
1: अच्छा लगा, व्यवहार का
0: और कुछ बोलो
1: तो सर वही बोलेंगे दसवीं तक सर,
0: और
1: आगे के लिए निकल
0: अभी भी ओपन में तो दे सकते हैं,
1: दे सकती है सर।
0: अभी मौका मिलेगा सरपंच बनने के लिए, क्या आप सरपंच में
1: लड़ने के लिए तैयार है?
0: अरे बता ले मजा भाई सकती, नारी काम नहीं है, वो जो ठान लेगी वो कर दिखाएगी। और पुष्पा जैसे नाम जैसे पुष्पुल है, कमल फूल है, इतना तो पढ़ाई कभी मम्मी पापा को बोला नहीं आप कि हमको और आगे क्यों नहीं पढ़ाए?
1: सर मम्मी पापा ने तो सातवीं तक ही पढ़ाया, दसवीं तो अभी की है मैंने ओपन से।
0: तो बालिका शिक्षा और बालक शिक्षा, लड़का और लड़की, जो भेदभाव संसार में कभी कभी देखने को मिलता है, कभी कभी मिलता है ये लड़का ये लड़का जाएगा तो उनको आप क्या कर?
1: ऐसा भेदभाव कभी नहीं रखना चाहिए, बेटा बेटी में दोनों एक समान।

0: खुद के लिए ताली बजा, नारी हो सकती है क्योंकि जहाँ महिला है जहाँ नारी सशक्त होगा, पढ़ी लिखी होगी, समझदार होगी, तो गांव आदर्श बनेगा। हमारा मेट है, सरपंच है, सरपंच भी एक महिला है ना आपका ग्राम ग्राम पंचायत का
1: महिला सरोज मीना,
0: सरोज देखो उनके ताली बजाओ कम से कम, वो भी हमारा बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप जाती थी सातवीं तक पढ़ाई की, तो आपको खेल कूद में, गीत गाने में, डांस में,
1: खेल कूद में भी अच्छा था, पढ़ाई में भी।
2: मावल में पढ़ाई की और मावल में सर्विस कर रहे हैं, और कभी सोचा था आप

0: करनी चाहिए, सास ससुर की करनी चाहिए और फिर माता पिता की,
1: सास ससुर की भी सेवा करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद पुनः मिलेंगे। सुनते रहे कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल रेडियो मधुबन।

नमस्कार, मैं हूं सिंगर सायरा मैयर और आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: नारायण की शोभा तारी, पूजो स्मरणाधारी, महिमा कहे गुरुदेव की, नदी से अपरंपार, सतगुरु बैठे आप में, न देखो दस में द्वार, देखो दस में द्वार, सुन में बाग लगावो, जो वे फल की आस प्रेम का पानी पावो, कैसो नियर सन देव दर्शन की तेमा, कटे कर्म का पाप देख लो गुरु की, पाप किया से पुन घटे, न घटे परुष की आन, अलग्योनी भटकत फिरे, कोई इन देवे मन, कोई इन देवे मन, इसका नंबर पावो, कैसो नियर सन धर्म में वो
1: अली बोल जाओ भाई, बहुत सुंदर थे। गोदावरी और पंकु दोनों इस कार्यक्रम सजा रहे थे। एक दूसरे को सहयोग देना चाहिए, क्योंकि सहयोग भावना रहेगा तो हमें खुशी मिलेगी। क्या नाम बताए? नाम मंगू देवी। बस आज हमारा मंग मन नाव का मंग होता ना, लास्ट में पूरा लीडर है, सही में उनका नाम जैसे काम उस तरह कर रही है। मंगू देवी को धन्यवाद देते हैं। और एक प्रस्तुति सुनेंगे, लेकिन अल्प विराम के बाद सुनते रहे कार्यक्रम मेरा गाँव मेरा अंचल रेडियो मधुबन।

0: जय।
1: मैं जानकी हिमलानी, मैं कुछ कहना चाहती हूँ। हम शपथ लें कि आज के बाद जब कभी भी हम गाड़ी चलाएंगे तो स्पीड का ख्याल रखेंगे, खुद का भी ख्याल रखेंगे और सामने वाले का भी ख्याल रखते हुए हेलमेट पहन करके ही अपनी गाड़ी को चलाएंगे।
2: रेडियो मधुबन

0: बोलो श्री बाबा की
1: जय हो।
2: ग्राम देवी की जय हो और माताओं की जय हो। सबका जय जय का साथ इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद लेते हैं और एक ब्रेक, ब्रेक के बाद और एक प्रस्तुति सुनेंगे वंस मोर। ये भी होगा खासकर नरोगा स्थित माताओं का और बहनों का आवाज। खुशी से अपना प्रस्तुतिकरण हो रहा है, एक दूसरे को देख कर सीख जाते हैं, हमारा बच्चे भी सीख जाते हैं क्योंकि सीखने का समय होता है। और गांव का जो संस्कृति, गांव का जो भाषा है और आस्था, विश्वास, भक्ति भावना को लेकर हम ओतप्रोत होते हैं और मनोरंजन करते हैं और प्रभु को याद करते हैं। तो आज याद का साथ एक भजन किए, लेकिन लेते हैं छोटा सा ब्रेक। ब्रेक पुनः मिलेंगे, सुनते रहे कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल रेडियो मधुबन।

किसी की जिंदगी में कोई दुर्घटना घटित न हो, ये हम सभी चाहते हैं। पर अचानक अगर कोई विपत्ति आ जाए तो घबराइए नहीं, तुरंत कॉल कीजिए अपने शहर की पुलिस को। डायल कीजिए 100 अपने फोन से। सजग रहिए, सुरक्षित रहिए। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।

0: नमस्ते कार्यक्रम को आगे बढ़ाते ब्रेक का पहले शिव जी गीत गाए भजन के रूप में गाए थे, अपना भाव को भावना को रखें। तो अगला प्रस्तुति के लिए मावल का आवाज होगा, वह भी माताओं का वंदे मातरम करते, नारी शक्तियों का जयगान करते, जहाँ नारियों का इस तरह बढ़ चढ़ कर हिस्सा देखने को मिलेगा, वो गाँव वो ढाणी वो फली वो नरेगा अच्छा बन पाएगा। और मैट को सरपंच को हमारा बीडीओ साहब को तहसीलदार को ये श्रेय धन्यवाद देते हैं। तो उनका चलते तो आज इस कार्यक्रम को लेकर जब पहुंचे नरेगा में तो सभी माताओं का भाव भावना को प्रस्तुतकरण करा रहे हैं और हमें खुशी है। चलिए अगला प्रस्तुति के लिए रेडी है, हमारा मंगू जी उपस्थित है, वो लीडर है और सबको लेकर गीत प्रस्तुत भजन कराते हैं। तो और एक प्रस्तुति होगा, ये अंतिम प्रस्तुति।
1: नई संज्ञा जर दान नई भेख में पंत, नई पत्थर को पूजते नई विगरते संत, नई विगरते संत कड़ा तो भोने फेरी, गुप्ती पाप कराया जीव को कीदा जेरी, कैसो नी रेसन अस्त्री नी धारती कंत, नई संज्ञा जर दान नई भेख में पंत।

0: जय जय गान का साथ और सबका जय हो, इसमें सबका जय समा हुआ है और परमात्मा का जय का साथ साथ हम सभी का जय है। जय गान करने से ही पूरा वातावरण सुकून मिलता है, शांति मिलता है, आनंद मिलता है। जय में ही हमारा जय है। तब सभी को धन्यवाद देते हैं आज का कार्यक्रम को सुंदर रूप में सजाए। सभी का नाम मुझे तो मालूम नहीं, हमारा मैट जी शायद बताएंगे सभी का नाम। मंगू का मालूम है और कौन कौन नाम आए सबको?
1: गंगा देवी,
0: हाथ उठा। गंगा देवी कौन है? हाथ उठा। वाह,
1: शारदा देवी, सविता देवी, लस्सू देवी, मंगू देवी, जतना देवी, शारदा देवी, दो है,
0: दो शारदा, वेरी गुड।
1: सायरी देवी,
0: सायरी देवी, हाथ उठा। वाह, ये तो बहुत खुशनसीब है।
1: हाऊ देवी,
0: हाऊ देवी, वाह, हाऊ लगा।
1: अंशी देवी, मुमताई देवी, नसीबा देवी और गोदावरी देवी,
0: गोदावरी। सभी के लिए ताली, धन्यवाद सभी को नाम का साथ। जैसे हमारा मैट जी पुष्पा जी ने बताया, सभी अपना अपना भाव को, भावना को प्रस्तुत किए रेडियो मधुबन कार्यक्रम में सजाए। तो आज के लिए हमें दीजिए इजाजत, फिर कल मिलेंगे इसी वक्त इसी समय और किसी बात को लेकर। सुनते रहे कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल। ये गांव का आवाज, हमारा माताओं का आवाज, उनका आवाज ही आज जन जन तक पहुंचा और हमारा श्रोता मित्र लिसनर और ग्रामवासी सुनकर अपने मन को बुद्धि को परमात्मा तक पहुंचाए, क्योंकि सबको ओत प्रेत करा दे आस्था विश्वास भक्ति में, क्योंकि हम सब आस्था विश्वास भक्ति में ओत प्रेत हो जाते हैं। इस तरह संगठन रूप में जब होता है, गांव में घर में जब रहते थे, चार दीवार में रहते, जब इस तरह कार्यक्रम में आते, सामूहिक रूप में अपना मन को प्रफुल्लित करते हैं। तो आज के लिए हमें दीजिए इजाजत, फिर कल मिलेंगे इसी वक्त इसी समय। सभी को राम राम, ओम शांति।

अरे भाई साहब क्या कर रहे हैं आप? जिसे आप जानते भी नहीं उसकी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली और अब वीडियो कॉल रिसीव करने जा रहे थे। किसी भी अनजान व्यक्ति की फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट ना करें। आपका सोशल मीडिया अकाउंट हमेशा प्राइवेट या लॉक्ड रखें। किसी भी अनजान व्यक्ति की वीडियो कॉल कभी ना उठाएं। कोई भी व्यक्ति आपके प्राइवेट फोटोग्राफ्स या वीडियोस को लीक करने की धमकी दे या ब्लैकमेल करे तो बिना किसी डर या संकोच के तुरंत पुलिस का संपर्क करें। आपकी सुरक्षा आपके हाथ में।

0: रेडियो मधुबन पर आइए सुनते हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी के प्रेरणादायी विचार।
1: गर्मी होगी तो आई एम फाइन विद इट, लेकिन ठंड मेरे से जहन नहीं होती। ठंड में तो मैंने बीमार पड़ना ही है, तो मैंने अपने आप को कंडीशनिंग दे दी कि गर्मी में आई विल बी फाइन, लेकिन ठंड में तो मैंने बीमार पड़ना ही है। विच मीन्स मैं अपना ध्यान नहीं रखूंगी, ठंड में बीमार पड़ना अलाउड है। तो अब एक महीना दो महीना मैंने अपने आप को बीमार रहना अलाउड हुआ। अगले साल ठंड 6 महीने रही और मेरी प्रोग्रामिंग मैंने चेंज नहीं की और मैंने अपने आप को प्रोटेक्ट भी नहीं किया, तो अगले साल मैं 6 महीने बीमार रही। उसके 2 साल के बाद इतनी ठंड आई, और क्योंकि मेरा इम्यूनिटी सिस्टम हर साल बीमार होते होते होते होते कमजोर होता जा रहा था, उसके 4 साल बाद इतनी ठंड आई दैट आई जस्ट कुडंट टेक इट। एंड देन वी से डिप्रेशन, नर्वस ब्रेकडाउन, दिस। क्योंकि करते करते करते करते ताकत तो कम होती जाएगी और दुनिया की परिस्थितियां बढ़ती जाएंगी।
0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: रेडियो मधुबन पर आइए सुनते हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी के प्रेरणादायी विचार।
1: प्यार से काम करना और प्यार से काम करवाना, क्योंकि आई बिलीव एट लीस्ट कि अगर काम प्यार से नहीं हो सकता तो डांट कर जबरदस्ती करवाने का उसमें बहुत ज़्यादा फायदा नहीं है। यू नो योर रिलेशनशिप इज़ ब्रेकिंग डाउन एंड मोर इम्पोर्टेंट इज़ रिलेशनशिप नॉट द वर्क। लेकिन फिर भी अगर काम करवाने के लिए आपको वो असर्टिवनेस का आधार लेना है तो इनर बिल्कुल एंगर नहीं होना चाहिए, नहीं तो आप उसको असर्टिवनेस नहीं कह सकते। से आई एम एंग्री, डोंट से आई एम नॉट एंग्री, आई एम जस्ट बींग असर्टिव, ये चीटिंग है अपने आप से, दूसरे से भी। तो आप पहले तो अंदर बिल्कुल स्टेबल है और फिर आपको जो कुछ कहना है उसको अथॉरिटी से और बहुत डिसिप्लिन्ड एंड असर्टिव। डजेंट हैव टू बी लाउड, यू नो इट डजेंट हैव टू बी लाउड। हम सोचते हैं जोर से बोल दिया तो दैट इज असर्टिव, दैट इज अ ट्रेस ऑफ एंगर। आपका वॉल्यूम बढ़ ही नहीं सकता है जब तक वो एनर्जी अक्यूमुलेट नहीं हुई है अंदर। तो इवन जब हमारा वॉल्यूम इस तरह से जोर से बढ़ जाता है, दैट एनर्जी हैज बीन क्रिएटेड इनसाइड। बहुत आराम से, स्टेबिलिटी मीन्स स्टेबिलिटी एवरीवेयर, यू नो थॉट्स, वर्ड्स एंड एक्शंस। तो अंदर वो स्टेबिलिटी होगी, वो बाहर अपने आप आएगी, वी विल नॉट हैव टू डू इट। एंड फिर डिसिप्लिन करने के लिए आपको जो डायरेक्शन देना है उसको आप देते हैं, तो आई थिंक एनर्जी एक्सचेंज विल बी वेरी कंफर्टेबल बिटवीन द टू पीपल।
0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए।

0: For more entertainment, log on and subscribe to www.youtube.com/.
1: मैं हूं संजय कुमार और आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन 107.8 FM पर। सुनते रहो और मुस्कुराते रहो।

ओम शांति, मैं हूँ ग्रेसी सिंह और आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: रुक रुक रुक। कुछ सुनाई नहीं देती? और ये पुकार है आपकी गड्डी की, तो कह रही है कि बिना पिए मेरे को चलाओ। और ये पुकार आपके बच्चों की भी हो सकती है, तो जो सलामत घर पहुंचना हो तो बिना पिए गाड़ी चलाना, समझे? चलो निकल लो आप। और हाँ, हैप्पी जर्नी मेरी तरफ से अवलदार कड़क। हाँ, जो आपको कहता है डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव। और ठीक ना? ठीक।
1: ब्रह्मा कुमारीज के सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।

मटक मटक एक नार नवेली गोरी गोरी ग्वाल नकी छोरी चली चोरी छोरी मुख मोरी मोरी मुस्काए अलबेली कंकरी गली में मारी कंकरी कन्हई ये ने पकड़ी बांह और की अटखेली भरी पिचकारी मारी सरा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा भोली परी हारी भोली।

मैं कमलेश माउंट आबू ढूंढे गाँव की रहने वाली भूसा और मैं सुन रही हूँ रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनता रहो और मुस्कुराता रहो।

मैं हूं श्रवण राठौर ऑफ नदीम श्रवण टीम और आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारी का कम्युनिटी रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन। सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए।

0: रेडियो मधुबन पर आइए सुनते हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी के प्रेरणादायी विचार।
1: ट्रैक्स बने होते हैं एंड पानी उसमें बह रहा है, ठीक है, गार्डन है, रास्ते हैं, ट्रैक, सपोज इधर ही इस सड़क पर एक ट्रैक बना हुआ है। अब वो रोज पानी उसी में बहता है, ठीक है। अब पानी का बहते बहते उस एरिया के अंदर वो एक ट्रैक बन ही गया ना। अब जैसे ही पानी आएगा वो दूसरी साइड पे कहीं जाएगा ही नहीं, राइट। वो ऑटोमेटिकली उसी ट्रैक में फ्लो होगा। होते होते होते वो ट्रैक उस पानी के लिए एक परमानेंट पाथ बन चुका है, राइट। अब अगर हम आज से चाहते हैं कि वो उस ट्रैक में नहीं जाए, उस डायरेक्शन में वो पानी नहीं जाए, लेकिन वो एक नए तरह से जाए, तो हमें थोड़े दिन के लिए, सिर्फ ज्यादा नहीं, थोड़े दिन के लिए जैसे ही वो पानी आता है, फ्लो होने लगता है, हमें उसको चैनलाइज करके एक डिफरेंट डायरेक्शन में जाना है। ऐसे ही माइंड भी जब एक थॉट क्रिएट करता है, फिर अगले दिन वही थॉट क्रिएट करता है, फिर अगली बार वो सिचुएशन आती है, फिर वो उसी तरह रिस्पॉन्ड करता है, तो एक फिक्स्ड पैटर्न बन जाएगा अंदर, जिसको हम कहते हैं ब्रेन में भी उसका एक ग्रूव बन जाता है। अब नेक्स्ट टाइम जब वो सिचुएशन आएगी तो आप चूज नहीं करते, आपकी थिंकिंग ऑटोमेटिकली उस पैटर्न से ही होती है, एंड करते करते करते वो ग्रूव एक बहुत स्ट्रॉन्ग पैटर्न बन जाएगा, जिसको हम कहेंगे ब्रेन की मैपिंग, वो पैटर्न्स बन जाते हैं। अब हम एक जीवन अनेक जन्म उसी पैटर्न उसी मैपिंग से काम करते जा सकते हैं, लेकिन अगर हम आज डिसाइड करें तो हम आज चेंज कर सकते हैं।
0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए।
2: पढ़ना सीखा, लिखना सीखा, जीना सीखा, रेडियो मधुबन की छोटी सी पाठशाला।
3: हमारी मन की क्वालिटी कैसे है, और अक्सर करके डॉक्टर्स कहते हैं मोर देन 85% डिजीजेस है वो साइकोसोमैटिक है, मन से आरंभ होता है, और अक्सर करके जो तनाव भी होता है इट इज देयर इन द माइंड। और अक्सर करके देखते हैं कि पेरेंट्स को अपने बच्चों के प्रति इतनी शुभ भावना होती है कि जब बच्चों का एग्जाम्स होता ना तो उस समय मम्मी डैडी का प्यार बच्चों के प्रति कुछ ज्यादा ही बढ़ जाता है, और एग्जाम के दिन में मम्मी डैडी आकर कहेंगे बच्चा आज तेरा एग्जाम है तो है ना हॉर्लिक्स भी पी, बॉर्नविटा भी खा, ये भी कर वो भी कर, है ना, उसको बहुत जबरदस्ती खिलाएंगे। शरीर को तो हमने बहुत भोजन दिया, जरूरत है उसको मन को अच्छा भोजन देने के लिए। मन का भोजन क्या है? विचार। मन का भोजन है विचार, बहुत पुराने विचार, बासी विचार, अगर उसको बार बार हम अपने मन में लेकर आएंगे तो ऑटोमेटिकली धीरे धीरे मन जो है वो कमजोर हो जाता है, धीरे धीरे द माइंड विल आल्सो बिकम वीक। तो फ्रेंड्स इस बात को चेक करना कि सारे दिन में हमने अपने मन में जो विचार आ रहे हैं उसकी क्वालिटी कैसी है। देखिए सोचने की बात है, आज हर एक व्यक्ति के पास मोबाइल है और हम बहुत ध्यान रखते हैं कि मोबाइल को चार्ज करना है, और जिस दिन रात को सोए और मोबाइल चार्ज करना भूल गए तो रात के 2 बजे उठेंगे और उसको चार्ज करेंगे, क्योंकि हमको ये बात महसूस होती है कि अगर हमने मोबाइल को चार्ज नहीं किया तो शायद दूसरे दिन हमारा कम्युनिकेशन नहीं हो सकेगा। उसी तरह हमें अपने मन को भी अच्छे विचार से सुबह सुबह चार्ज करना बहुत बहुत जरूरी है।
4: अभी बजे हैं रात के 9, 1 मिनट का समय स्वयं को दे

0: रेडियो मधुबन 107.8 FM सुन रहे हैं आप। कार्यक्रम है लव यू जिंदगी। और जब हम किसी से कहते हैं कि हम उनसे प्यार करते हैं तो बड़े दिल से कहते हैं, क्या जिंदगी से सच में इतने दिल से कह पाते हैं? आइए जानते हैं। पिछले एपिसोड में हमने बात की थी खुद को माफ करने, दूसरों को माफ करने के बारे में। आज उसी कड़ी को आगे बढ़ाएंगे और हमारे साथ जुड़ गए हमारे दो एक्सपर्ट्स। हमारे साथ ग्लोबल अस्पताल से जुड़ गई हैं कल्पना जी, जो कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, स्पिरिचुअल काउंसलर हैं, और साथ साथ हमारे साथ जुड़ गए श्रीनिधि जी, जो कि एक एंकर हैं और साथ साथ एक मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद।
2: शुक्रिया आपका ऋषि जी।
0: हम गाने सुनते हैं कि भाई मुझसे भूल हो गई, मुझे माफ कर दो, और इस तरह के बड़े सारे गाने हमें आजकल सुनाई दे, लेकिन खुद को माफ करने के लिए कोई गाना नहीं पता है, या कोई ऐसी लाइन्स शायद होती होगी पर इतनी ज्यादा सुनाई नहीं देती। लेकिन अगर खुद से गलती हो जाए तो वो गिल्ट कभी कभी बड़ा लंबा समय तक हमारे साथ रहता है कि मैंने ये कैसे कर दिया, मुझसे ये कैसे हो गया, तो वो भी एक बहुत बड़ा बोझ बन जाता है। तो मैं ये जानना चाहूंगी आप दोनों से, पिछले एपिसोड में बहुत सारी बातें की थी दूसरों को कैसे माफ करें, क्यों माफ करना जरूरी है, खुद को माफ करना जरूरी है क्योंकि कई बार कहते हैं कि याद रखेंगे गलती को तो दोबारा नहीं होगी, तो अगर माफ कर दिया तो शायद भूल जाएंगे वो गलती, क्या जरूरी है खुद को माफ करना भी?
1: आरुषि जी, बहुत सुंदर बात पर हम चर्चा कर रहे हैं और बहुत इम्पोर्टेंट बात पर चर्चा कर रहे हैं। जो भी लोग डिप्रेशन, एंग्जाइटी आदि आदि के शिकार होकर आते हैं, उनके केसेस में जब देखा जाता है तो गिल्ट, शेम, रिग्रेट्स, ये सारी चीजें जो नेगेटिव इमोशंस है वो देखी जाती है, और उसका कारण ही है कि वो खुद को माफ नहीं कर पाते हैं। धीरे धीरे ये जो माफ नहीं कर पाना अपने आप को छोटी छोटी बातों के लिए या बड़ी बातों के लिए, ये पाइल अप होता जाता है, माइंड में भी उसकी फाइल्स बढ़ती जाती है, और फिर जब एक वक्त ऐसा आता है जब वो सहन करना मुश्किल हो जाता है नेगेटिव फीलिंग्स को, जो गिल्ट है, शेम है, रिग्रेट है, खुद को कोसना है, खुद को क्रिटिसाइज करना है, वो चीज जब आपे से बाहर हो जाती है, ओवरलोडेड हो जाती है, तो फिर वो किसी न किसी फिजिकल या मेंटल बीमारी के रूप में हमारे सामने आती है। इसलिए कहा जाता है ना, समय पर लगाया गया एक स्टिच आगे लगने वाले हजारों स्टिचेस से हमें बचाता है। उसी तरह से हमारी लाइफ में कदम कदम पर हमसे जो गलती होती है उससे सीख लेकर हम अपने आप से वादा करके कि आगे इस चीज को, इस गलती को मैं फिर कभी नहीं दोहराऊंगा, अपने आप को माफ करना एक बहुत सुंदर मेडिटेटिव प्रैक्टिस है, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है। इसी के परिणाम स्वरूप भक्ति में आप देखते हैं कि लोग जब भगवान के सामने जाते हैं मंदिर में, तो अपने कान पकड़कर उठक बैठक करते हैं, वहां जाकर वो माफी मांगते हैं और ये सोच लेते हैं कि परमात्मा ने हमें माफ कर दिया और अब हमें इस गिल्ट से, इस दुख भरी बातों से बाहर निकलने का रास्ता मिल गया।
0: ओके, बिल्कुल, हम भगवान से माफी मांगते हैं और बहुत सारी प्रार्थना भी करते हैं कि मैं तो ऐसी हूं, मैं तो वैसी हूं, मुझसे तो बहुत गलतियां हुई हैं, मुझे माफ कर दें, लेकिन फिर भी कभी कभी खुद को माफ नहीं कर पाते और कभी कभी तो वो गलती बार बार भी होती है, तो ऐसा लगता है कि मैं हूं ही ऐसी, ये स्वीकार कर लेते हैं, अब ठीक है मैं ऐसी हूं, मुझसे होती है गलती, लेकिन वो भी ऊपर ऊपर से मतलब बोल दिया, स्वीकार कर लिया, बट वो अंदर से बेटर फील नहीं किया अभी तक। तो माफ करने के बाद तो हमने देखा था दूसरों को माफ किया तो मुझे हल्का लगा, मुझे इजी लगा, बट खुद के साथ वो नहीं हो पा रहा है। आप कुछ कहना चाहेंगे श्री जी इस बारे में?
2: मैं समझता हूँ अभी कल्पना जी जो बात कह रहे थे, मुझे अचानक याद आया कि हम अक्सर मंदिरों में जाते हैं तो हम ये देखते हैं कि लोग अपने कान खुद पकड़ते हैं, उठक बैठक करते हुए धीरे देखते हैं, अगर उठक बैठक नहीं करते तो कम से कम लोग अपने कान जरूर पकड़ते हैं भगवान के सामने खड़े होके मंदिर में, कान पकड़ते हुए तो मैंने लोगों को देखा है, कई लोग तो अपने आप को थप्पड़ भी लगाते हैं, ऐसे ऐसे थप्पड़ लगाते हुए मैंने लोगों को देखा है और कहते हैं भगवान माफ करो हमसे जो भी गलतियां हुई होंगी। और तो ये बहुत ही मशहूर आरती है जो हम सभी गाते हैं, जय जगदीश हरे, उसमें ये बात कही जाती है कि भगवान के सामने खड़े होकर हम ये कह रहे हैं कि हम मूरख खल कामी, मतलब हम अपने आप को मूर्ख कह रहे हैं, खल धोखेबाज कह रहे हैं, कामी बुरी नजर वाले कह रहे हैं, तो एक एक एडमिशन है हमारी गलतियों का कि भाई हमसे गलतियां होती हैं। और बहुत सारे लोग अगर लिटरेचर पढ़ते हैं तो अंग्रेजी में ये बात कही जाती है, टू एयर इज ह्यूमन टू फॉरगिव इज डिवाइन, यानी गलतियां करना इंसान का स्वभाव है मगर माफ करना एक दैवी संपदा का लक्षण है, एक दैवत्व की निशानी है, ये बात कही जाती है। तो जब हम अपने आप को नहीं माफ कर पा रहे होते हैं तो हम जाकर ईश्वर के सामने ये बात कहते ही हैं कि हम जो हैं जैसे हैं, तुम्हारे सामने तो हम कोई आडंबर नहीं कर सकते, तुम तो हमारे अंतर को जानते हो, तुम्हारे सामने हम अंदर बाहर एक होकर सामने नजर आ सकते हैं, ट्रांसपेरेंसी के साथ तुम्हारे सामने खड़े हो सकते हैं, इस भाव के साथ व्यक्ति जाता है। और वो भी एक तरीका है कि हाँ हम अपने आप को अपनी खामियों के साथ ईश्वर के सामने खड़े कर रहे हैं और अपनी कमियों को, अपनी जो भी गलतियां हैं उन सबको उसके सामने अर्पित कर रहे हैं। और ये बात सही है कि खुद को माफ करने के बारे में हम कभी ध्यान से सोचते नहीं हैं, शायद ये चीज सिखाई नहीं जाती बचपन में। मैं समझता हूँ कल्पना जी ज्यादा इस चीज पे बेहतर प्रकाश दे पाएंगी, क्योंकि हम देखते हैं चाइल्ड साइकोलॉजी की अगर हम बात करें तो जैसे छोटे बच्चे थोड़े थोड़े बड़े होते जाते हैं तो हम उनको ये तो कहना सिखा देते हैं कि बेटा सॉरी बोलो, सॉरी बोलो, सॉरी बोलने से पहले ये चीज नहीं मिलेगी तुमको, तुमने गलती की ना, सॉरी बोलो फिर ये चीज मिलेगी। तो बच्चे सॉरी बोलना सीखते हैं और धीरे धीरे हम उनमें ये आदत कल्टिवेट करते हैं कि वो सॉरी बोलना सीखें। मगर अपनी गलतियों के लिए अपने आप को कैसे माफ किया जाता है, मैं नहीं समझता किसी स्कूल में या किसी भी पेरेंटिंग स्टाइल में वो चीज सिखाई जाती हो। आपको क्या लगता है कल्पना जी? मेरे अनुभव में तो मैंने कभी भी ये चीज कहीं एक उदाहरण के रूप में नहीं देखा है।
1: जी, नहीं सिखाया जाता है, लेकिन ये बचपन से ही सीखने वाली बात है कि हम अपने आप को माफ कर सके। एक सीन मैं आपको बताती हूँ। एक छोटा बच्चा खेलते खेलते किचन में जाता है और मम्मी उसकी एक तरफ काम कर रही होती, वो दूसरी तरफ अपने छोटे से हाथों से वो किचन के प्लेटफॉर्म के ऊपर हाथ बढ़ाता है, उसको कुछ खाने के लिए चाहिए होता है, और वो अचानक वहां जो कांच के गिलास में पड़ी हुई चीज उससे उसको हाथ लग जाता है और वो गिरा देता है। अब उसके सामने गिरा हुआ गिलास का कप है बिखरे हुए और उसमें से चीज पड़ी है। माँ उसकी तरफ गुस्से से देखती है, वो कहता है मैंने नहीं गिराया मैंने नहीं गिराया, गलती से गिरा। सो वो जो मैंने नहीं गिराया, गलती से गिरा, ये बात उसने जब स्वीकार कर ली तभी उसने अपने आप को माफ करना सीख लिया। दूसरा एक उदाहरण मेरे सामने है। दो भाई थे, बड़ा भाई और छोटा भाई, दोनों हमेशा साथ साथ खेला करते थे, बहुत बहुत प्यार था उनका आपस में। एक दिन खेलते खेलते छोटे भाई के हाथ से कुछ ऐसी गलती हो गई जिसके कारण बड़ा भाई गिर गया और उसको बहुत बहुत ज्यादा चोट लगी। अब इस बात के लिए छोटे भाई ने खुद को जिम्मेदार समझा और बहुत उसको फील हुआ। उसके बाद उसने चुप रहना, बातचीत नहीं करना, धीरे धीरे उसके अंदर वो चीज बैठती गई कि मेरे कारण मेरे बड़े भाई को नुकसान हुआ। सभी ने उसको बहुत समझाया कि गलती से हुआ, आपने नहीं किया, पर वो अपने आप को माफ नहीं कर सका। वो चीज

0: लगा हूं। खुद को माफ न करने से कितना अधिक नुकसान खुद के लिए, रिश्तों के लिए हो सकता है, इससे बड़ा उदाहरण नहीं हो सकता। सो खुद को हर छोटी और बड़ी गलती के लिए माफ करना, लेकिन जैसा मैंने पहले कहा कि गलती को रियलाइज करने के बाद दोबारा वो गलती ना हो, इसका ध्यान रखने के लिए कुछ बातें हमें अपने आप को सिखाने की जरूरत है। फॉर एग्जाम्पल, यही केस हम ले कि बड़े भाई को गलती से उनके द्वारा हर्ट हुआ। अब सावधानी के साथ चलने की आदत अगर वो अपने आप में डेवलप करे तो ना कोई और भी उनके कारण हर्ट हो सकता है। इसका ये तरीका नहीं है कि मैं दूर हो जाऊं उस व्यक्ति से ताकि मेरे से नुकसान ना पहुंचे। ये सारी छोटी छोटी चीजें हमारे लाइफ में जो होती है वो हमें बहुत बड़े बड़े लेसन्स सिखा कर जाती है, तो इसलिए खुद को माफ करना बहुत जरूरी है।
1: यहाँ पे मैं एक चीज पूछना चाहूंगी, जैसे कई बार रिलेशनशिप्स टूट जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं, दो लोग साथ नहीं रह पाते, कई रीजंस होते हैं उसके, लेकिन कुछ ऐसे केसेस भी होते हैं जहाँ पता होता है कि सामने वाले ने गलत किया या वो अब्यूजिव थे या कुछ और प्रॉब्लम्स थी साथ में, लेकिन वो सालों से साथ में थे और फिर एकदम से जब वो कनेक्शन टूटता है तो कई बार खुद को माफ करना मुश्किल होता है कि हमने उनको उस हालात में छोड़ दिया, वो तो पेन में है। भले उनका एक साइड ऐसा था कि मेरे साथ गलत किया, लेकिन एक दूसरा साइड भी था जिससे हम बहुत प्यार करते हैं, जिनकी हम बहुत केयर करते हैं, तो वो गिल्ट होता है खुद को कि मैंने उनको नहीं देख पा रहे, अब उनकी तबीयत खराब है, उनको प्रॉब्लम हो रही है। क्या उस समय खुद को माफ करना जरूरी है या वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन हो जाती है कि समझ में नहीं आता कि क्या रिएक्ट करें, कैसे करें खुद को इस सिचुएशन माफ की किसी को ऐसे हालात में छोड़ दिया और पता है कि छोड़ना जरूरी भी था तब भी।
2: मैं समझता हूँ यहाँ पर दो एस्पेक्ट्स हैं, जैसे आप कह रहे हैं, खासकर जब ऐसे संबंधों में जहाँ पर हम देखते हैं कि वो एक अब्यूजर रिलेशनशिप रहा है या हम दोनों एक दूसरे से तालमेल बिठाकर नहीं चल पाए, या हमने कोशिशें बहुत की मगर हमने देखा लॉन्ग रन में कि हमारी खींचातान ज्यादा हो रही है और जो चीजें स्मूथ और आसानी से जो चीजें हो रही थी वो कम हो रही हैं, तो इसमें कभी कभार व्यक्ति स्वयं को भी दोषी पाता है कि शायद मुझे थोड़ी और कोशिश करनी चाहिए थी तो शायद ये चीज ठीक होती। तो ये भी एक तरीके से अपने बारे में गलत सोचने वाली चीज हो जाती है, और ऐसे समय पर अपने आप को माफ करने का एक तरीका यही है कि मैं अपनी कोशिशों को याद करूंगी, देखिए मेरे से हो सकता था, वो प्रयास मैंने किए, मैं भी अच्छा इंसान हूं, वो भी अच्छे इंसान है, मगर हमारे और उनके बीच तालमेल नहीं बैठ सकता। इसका मतलब ये नहीं कि वो कोई बुरे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि मैं कोई बुरा, सिर्फ ये है कि हम एक दूसरे के लिए फिट नहीं बैठते हैं, वी आर नॉट अ गुड मैच फॉर ईच अदर। और टीम्स में भी हम देखते हैं जब हम एक जगह काम करते हैं तो हम अक्सर लोगों के गुणों को देखते हैं, लोगों के स्किल सेट्स को देखते हैं। कई लोग अकेले काम करने में बहुत होशियार होते हैं, अगर उनको आप 10 लोगों के साथ मिलकर काम करने बिठाओ तो उनकी एफिशिएंसी कम हो जाती है या वो ठीक से परफॉर्म नहीं कर पाते, वो प्रेशर में आ जाते हैं। कई लोग टीम प्लेयर्स नहीं होते, तो ये व्यक्ति की विशेषताओं को समझना भी जरूरी है। और अपने आप को माफी करने की जब बात कही जाती है तो हम अपने पॉजिटिव्स के बारे में सोचने की जरूरत है। मैं समझता हूं जैसे कल्पना जी कह रहे थे अभी कि हम अपने आप को माफ करना सीखें, और एक बहुत अच्छा चीज जो है वो है जर्नलिंग का अभ्यास। बहुत सारे जितने महान लोग हुए हैं, पहले लोग अपनी जीवनी लिखा करते थे, कई लोग आज भी अपनी डायरी लिखते हैं रात को कि आज हमने ये चीजें की, अपने आप की तरफ रिफ्लेक्ट करके एक नजर घुमाते हैं कि आज मेरे में क्या कमी पेशियां हुई, क्या चीजें मैंने आज ठीक नहीं की, वो लिखते हैं। और वो लिखते हुए ये नहीं सोचते कि आज तो मैं तो गलतियों का भंडार हूं, अपने आप को ये नहीं कहते, वो ये याद दिलाते हैं कि आज मेरे से गलतियां हुई हैं, कल गलतियों को मैं रिपीट नहीं करूंगा, इन गलतियों को दोबारा ना हो इसके लिए मैं ख्याल रखूंगा। ये अपने आप को एक पॉजिटिव थॉट देते हैं, और मैं समझता हूँ अपने आप को फॉरगिव करने के लिए ये रिफ्लेक्शन इंट्रोस्पेक्शन आवश्यक है, और साथ साथ पॉजिटिवली हम उस चीज को बदलेंगे, अगले दिन उस चीज को बेहतर करने का प्रयास करेंगे, ये अपने आप को फिर से वो पॉजिटिव रीइन्फोर्समेंट देना भी आवश्यक है। और मैं समझता हूँ

0: ये एक तरह से अपने ऊपर मरहम लगाने जैसी बात है।
1: कई बार एक और चीज है, जैसे मुझे ये लगता है कि मैं गुस्सा करती हूँ, मुझे बाद में गिल्ट होता है इस बात का कि मैंने गुस्सा किया, लेकिन एक टाइम ऐसा हुआ कि इतनी बार गुस्सा कर लिया कि मुझसे नहीं बदला जा रहा, तो मैंने ये कर लिया, मैं हूं ही ऐसी, मैं हूं गुस्से वाली, मैं करती हूँ बस, अब ऐसी ही हूं मैं, ऐसे एक्सेप्ट करूं मुझे, मैं भी ऐसे, मैंने खुद को ऐसे एक्सेप्ट कर लिया। तो एक्सेप्ट वर्ड तो मैं यूज कर लेती हूँ दूसरों के साथ कि अब मुझे ऐसे ही एक्सेप्ट करो, लेकिन अंदर से वो गिल्ट तो नहीं जा रहा है अभी, शायद वो खुद को एक्सेप्टेंस भी पूरी तरह से नहीं आ रही है, क्योंकि अनईजी लग रहा है, हमें लग रहा है कि मैंने खुद को एक्सेप्ट कर लिया ऐसे ही, लेकिन वो अनईजी है, वो वेट लग रहा है, वो भारीपन लग रहा है, या वो अच्छा नहीं लग रहा है कुछ, तो यानी कहीं ना कहीं मैंने खुद को माफ नहीं किया है, खुद को एक्सेप्ट किया है पर माफ नहीं किया है, क्या ऐसा होता है?
2: बिल्कुल ऐसा होता है कई केसेस में। यहाँ पर जो श्री जी ने कहा कि सेल्फ रिफ्लेक्शन, इंट्रोस्पेक्शन और जो एनालिसिस है, वो जो प्रक्रिया होती है वो बहुत जरूरी होती है, जो कि मेडिटेशन में होती है। हम अक्सर लोगों से घिरे हुए होते हैं और अपने बारे में सोचने का, खुद के साथ समय बिताने का हमें जरा भी टाइम नहीं मिलता। परंतु मेडिटेशन, हमें किसी भी प्रकार का मेडिटेशन अगर हम करते हैं तो हमें एकांत में, साइलेंस में, बाहर के वातावरण से खुद को डिटैच करते हुए जब हम भीतर की ओर चले जाते हैं तो रियलाइजेशन की प्रक्रिया शुरू होती है। तब मुझे रियलाइज होने लगता है कि जो, जैसे आपने कहा, मुझे गुस्से की आदत है और मैंने उसे एक्सेप्ट कर लिया है, लेकिन कहीं ना कहीं मैं अशांत हूं, सुकून नहीं है, डिस्कम्फर्ट है मेरी लाइफ में गुस्से की वजह से। जब मैं सेल्फ रिफ्लेक्शन के उस स्टेज में चली जाती हूँ, तब मैं अपने आप को सिखा सकती हूँ, खुद का टीचर बन सकती हूँ। और जब मैं अपने आप को सिखाती हूँ कि देख, गुस्सा करने के बाद तुम्हें खुद को तो सुकून नहीं मिल रहा है ना, शांति नहीं मिल रही है ना, तो ये आदत तुम्हें अब बदलने की जरूरत है। क्या तुम बदल सकती हो? क्योंकि जब इंसान खुद के साथ बात करता है तो या तो वो सेल्फ क्रिटिकल हो सकता है या सेल्फ कंपैशनेट हो सकता है। कंपैशन और क्रिटिसिज्म दो ऑपोजिट शब्द हैं। जहां पर सेल्फ कंपैशन की बात आती है, कंपैशन माना दया और करुणा, जो हम अपने ऊपर करते हैं, तब मुझे रियलाइज होता है कि अरे, गुस्से ने मुझे दिया ही क्या लाइफ में। मेरी इमेज खराब हुई, मेरी पर्सनैलिटी गलत तरीके से लोग समझते हैं मुझे, मेरे नजदीक आते नहीं है, मेरे से बात नहीं करना चाहते हैं और मैं भी अशांत हूं, तो क्यों ना मैं धीरे धीरे इस आदत को बदलू। जब ये रियलाइजेशन होता है, रियलाइजेशन पहली स्टेप है टुवर्ड्स ट्रांसफॉर्मेशन। ऐसे व्यक्ति को रियलाइज होना बहुत जरूरी है। और फिर जैसे कि आपने कहा, अगर रियलाइज ही नहीं हुआ तो सारी उम्र उनकी चली जाती है, वो लाइफ में अपने आप को बदल नहीं सकते। लेकिन जब हम कहते हैं कि बदलाव ही जिंदगी की वास्तविकता है, तो हर रोज हमें पॉजिटिव चेंज की तरफ अपने आप को ले जाना, यही है सेल्फ फॉरगिवनेस।
0: मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा। जैसे कल्पना जी ये बात कह रहे थे, अर्श जी आपने प्रश्न किया कि कभी कभार मैं समझ लेता हूं कि मैं हूं ही गुस्से वाला, मेरा स्वभाव ही ऐसा है, बस मैं तो ऐसा ही हूं। तो एक तरीके से मैं अपने आप को उस नेगेटिव ट्रेट से एसोसिएट कर रहा हूं। मैंने अपनी नेगेटिव पर्सनैलिटी को एक री इन्फोर्समेंट दे दिया बार बार ये कह के कि मैं ऐसा ही हूं, मैं ऐसा ही हूं, मैं ऐसा ही हूं। कभी कभार हम लोग देखते हैं कि ये उदाहरण फिल्मों में हम देखते हैं, कभी कभार हम सड़कों पर भी ये चीजें देखने को मिलती हैं, रियल लाइफ सिचुएशंस में भी लोग ये कहते हैं, तू जानता नहीं है मैं कौन हूं, मैंने तो अच्छे अच्छों को मारा है, मैं तो इतना गुस्से वाला हूं कि लोग मेरे सामने थर थर कांपते हैं। लोग अपने बारे में नेगेटिव इमेज बिल्डिंग करते हैं अपनी किसी गलती की वजह से, या बार बार मैं उस नेगेटिव एटीट्यूड को जो कल्टीवेट करते आया हूं उसकी वजह से मैंने एक फॉल्स आइडेंटिटी क्रिएट कर ली है, और उस आइडेंटिटी की वजह से मैं अपने आप को बदलने का प्रयास ही नहीं कर रहा हूं। तो इसलिए भी ये जरूरी है कि मैं इंट्रोस्पेक्ट करूं और एक पॉजिटिव चेंज की तरफ आगे बढ़ूं, जो कल्पना जी अभी कह रहे थे, एक पॉजिटिव लाइट में अपने आप को देखना शुरू करूं। अगर मैं वो प्रोसेस प्रयास ही नहीं करूंगा तो शायद मेरे अंदर वो सकारात्मक परिवर्तन आ भी नहीं सकते कि अगर मैं अपने आप को उसी नकारात्मक चीज से जोड़ के रखूं तो।
1: ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो आप दोनों ने बात बोली कि हमने खुद को ऐसा ही मान लिया, और जैसा अतिथि ने कहा कि कंपैशनेट वर्ड और क्रिटिसिज्म एक दूसरे का ऑपोजिट है, और हम कई बार बहुत क्रिटिकल होते हैं दूसरों को, फिर भी हम चलो गलती हो गई, लेकिन खुद से नहीं बोल पाते कि चलो गलती हो गई कोई बात नहीं। लेकिन दूसरों से बात करना आसान है, फिर वही लगता है खुद से बात करना मुश्किल लगता है। खुद से मैं बात करना शुरू करती हूँ फिर मैं कहीं और चली जाती हूँ, कुछ और सोचने लगती हूँ, फिर कहीं और चली जाती हूँ, फिर कहीं और चली जाती हूँ, तो बात बड़ी ऐसी हो जाती है कि पूरी नहीं हो पाती है ठीक से। तो अगेन अगर आप कुछ तरीका, कोई मे बी जैसे आप मेडिटेशन की बात कर रहे थे, तो जाते जाते कुछ हम मेडिटेशन करें या कोई अफर्मेशंस या कोई तरीका हो बात करने का खुद से, जो मुझे समझ में आए कि हाँ ये बारे में खुद से बात कर ली है अब और ये कंपैशन वाली फीलिंग आए मुझे।
2: जी, एक तरीका मेडिटेशन है, एक तरीका श्री जी ने बताया जर्नलिंग है, लिखना बहुत बहुत अच्छा है। सेल्फ फॉरगिवनेस के कई प्रैक्टिकल तरीके हो सकते हैं लिखना और मेडिटेशन के साथ साथ। जब आप नेचर के साथ जुड़ना शुरू करते हैं तब आपको अपने भीतर का एहसास होने लगता है और परिवर्तन की प्रक्रिया शुरू होती है। प्रकृति के 5 तत्व है, उसमें से ग्रीनरी जब आप जाते हैं उसके पास तो आपको महसूस होता है कि ये कितनी उदार है, कितनी देने वाली है नेचर। तो वो जो प्रकृति के पास जाने के बाद जो हमें एहसास होता है वो भी सेल्फ फॉरगिवनेस को बढ़ाने में और मदद करता है। हम कई बार उदाहरण देखते हैं कि किसी फल से भरे हुए पेड़ पर लोग जब पत्थर मारते हैं तो वो रिटर्न में फल देता है, तो उसकी उस उदारता को हम महसूस कर पाते हैं तो हमारा दिल बड़ा होता है, और बड़े दिल के साथ हम अपने आप को एम्बेरेस मतलब अपने आप को गले लगाना शुरू करते हैं। तो सेल्फ टॉक को इम्प्रूव करने के लिए नेचर के साथ वक्त बिताना भी एक अच्छा तरीका हो सकता है। नेचर को आपने देखा होगा वो बहुत ज्यादा आवाज नहीं करती, ग्रीनरी पत्ते बहुत ज्यादा शोर नहीं करते, परंतु साइलेंटली हमें कुछ ना कुछ दे रहे होते हैं। तो उस जगह पर जाकर जब आप गार्डनिंग करते हैं, नेचर के बीच में टाइम बिताते हैं, तब वो रियलाइजेशन, खुद के साथ बातें करना अच्छा लगने लगता है। हम लोग अक्सर खुद को अकेला महसूस करते हैं, अकेलापन के शिकार लोग मेरे पास आते हैं कि मुझे बहुत अकेलापन लगता है। क्यों अकेलापन लगता है? क्योंकि हमेशा मैं दूसरों के साथ ही होता हूं, कोई ना कोई मेरे आसपास रहे। लेकिन अकेले होना ये बहुत बड़ा मेडिटेटिव प्रैक्टिस है। मैं खुद के साथ अकेले में समय बिता सकूं, जब मैं ऐसा कर पाती हूं तो मैं अपने आप के साथ बातें करना, खुद को सिखाना, जो हमारा सेल्फ लव का टॉपिक शुरू से चला, उसके लिए भी अपने प्रति प्रेम करुणा की भावना को बढ़ाने के लिए मुझे खुद के साथ लंबा समय अकेले में बिताने की आदत डालनी चाहिए। उसके शुरुआत में थोड़ा थोड़ा समय मैं अकेले में खुद के साथ साइलेंस में केवल चुपचाप बैठकर बिना कुछ किए बिताऊं, 5 मिनट से 2 मिनट से शुरुआत कर सकते हैं। धीरे धीरे आपको मजा आने लगेगा। अरे, और मेरे साथ तो अक्सर ऐसा होता है कि मैं सारे दिन में लोगों के साथ होती हूँ और हमेशा इंतजार करती हूँ कि मैं कब अकेली होंगी। सो मैं वो जो इंजॉयमेंट खुद के साथ होती है उसके लिए मैं इंतजार करती हूँ। वो मी टाइम जो मैं खुद के साथ बिताती वो मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि अब मैंने खुद के साथ बातें करना सीख लिया है। मेडिटेशन का ये भी एक तरीका है कि मैं अपने आप से बातें करूं, खुद के साथ समय बिताऊं, तो वो कंपैशन खुद के लिए बढ़ेगा, क्रिटिसिज्म खुद के लिए खत्म होगा, एंड सेल्फ फॉरगिवनेस स्टार्ट्स विद सेल्फ लव, सेल्फ एक्सेप्टेंस, सेल्फ एस्टीम, और फिर सेल्फ फॉरगिवनेस तक हम पहुंच सकते हैं।
1: ओके तो ये तरीका है, मतलब शुरुआत वहां से करनी होगी। हम सीधा सीधा कभी कभी थर्ड स्टेप या फोर्थ स्टेप को एक्सपेक्ट करते हैं कि आ जाए जल्दी से, लेकिन शुरुआत यहाँ से करनी है। पहले खुद को समय देना है, खुद से प्यार करना है, खुद को माफ करना है, खुद को कंपैशन तब हम दे पाएंगे। पहले समय तो दे, समय नहीं देते हम पहले। तो ये तो बहुत अच्छी बात आज क्लियर हो गई, वो स्टेप्स भी समझ में आ गए। तो जाते जाते क्या हम कुछ 2 मिनट मेडिटेशन प्रैक्टिस कर सकते हैं, जहां हम खुद को क्षमा कर पाए, जो भी पुराना जमा है, गलतियां हमसे हुई हैं, किसी से हमने गलत व्यवहार कर दिया है, माफी उसकी नहीं मांगी है, कुछ रह गया है, तो उसको आज थोड़ा खाली कर पाए।
2: वंडरफुल, यस। पिछली बार भी हमने दूसरों को फगीव करने के लिए एक चिंतन अपने भीतर में चलाया। अभी भी हम उसी चिंतन को आगे बढ़ाते हुए फिर से मैं अनुरोध करूंगी आप सभी से कि आप बाहर की दुनिया से खुद को आजाद करके अपने भीतर की दुनिया में लौट आएं। महसूस करें कि सारे स्ट्रिंग्स जो बाहर से जुड़े हुए थे वो कट हो रहे हैं और मैं अपने आप के साथ जुड़ रही हूं। बाहर की दुनिया से जी करे तो आंखें बंद कर ले और अपने भीतर की दुनिया में चले जाए। याद दिलाए अपने आप को, मैं खुद को अपनी पिछली बहुत सारी गलतियों के लिए माफ करती हूं। मैं अपनी पिछली गलतियों के लिए खुद को दिल से माफ करती हूं। भूल जाती हूं मैं उन बातों को जिसने मुझे दुख दिया, जिसने किसी और को दुख दिया। उन बातों ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है, मुझे अनुभवी बनाया है। उन बातों का होना मेरे लिए आगे बढ़ने का साधन बना है। याद दिलाए अपने आप को, मैं सीख रही हूं और सीखने में गलतियां होना स्वाभाविक है। मैं खुद को दोष देने की बजाय खुद पर दया और करुणा को चुनती हूं। गहरी और लंबी सांस लेते हुए रिपीट करें मन में, मैं अपनी कमजोरियों को स्वीकार करती हूं और खुद को लगातार बेहतर बना रही हूं। गहरी और लंबी सांस लेते हुए उस एहसास को अंदर तक उतरने दे, मैं अपने आप को एक नया मौका देती हूं। आज पूरी तरह से दिल से मैं अपराध बोध को छोड़ रही हूं। मैं आजाद हूं, मैं निर्भय हूं, निश्चिंत हूं। भीतर से गहरे सुकून और शांति का एहसास करें, हल्केपन का एहसास करें। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं अपने आप से अनकंडीशनल, सेल्फलेस प्यार करती हूं। धन्यवाद।
1: थैंक यू सो मच दीदी। मुझे लगता है ये महसूस करने के बाद कुछ बोलने का तो मन नहीं करता, थोड़ी देर लगता है उस एहसास में टिक जाए, वो जो मन में बातें हो रही हैं वो, क्योंकि इतना हल्कापन लगता है। लेकिन जो आपने बात कही लास्ट में, जो आपने मेडिटेशन कराते वक्त कहा कि मैं निर्भय महसूस कर रही हूँ, तो कई बार हम डरे हुए होते हैं, कई बार हमें गुस्सा आता है, इरिटेशन होता है, समझ नहीं आता क्यों, तो वो शायद इसलिए कि हमने खुद को माफ नहीं किया है और वो हमारे साथ इन रूपों में वो हमारे सामने आ रहा है। तो आज खुद के साथ बैठें, उन पुरानी बातों को छोड़ें और एक कदम आगे बढ़ाएं खुद से प्यार करने की ओर, जिंदगी से प्यार करने की ओर। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया उतनी सारी गुत्थियों को सुलझाने के लिए, जीवन को आसान बनाने के लिए। थैंक यू सो मच।
2: बहुत बहुत धन्यवाद आरुषि जी, आपका भी और सभी श्रोताओं का।
1: तो दोस्तों फिलहाल वक्त हो गया है इजाजत लेने का। लव यू जिंदगी में मुलाकात होगी अगली कड़ी में, कुछ और बातें करेंगे, जिंदगी से प्यार थोड़ा और करेंगे। रेडियो मधुबन से जुड़े रहिए, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: भारत की स्वाधीनता से पूरे 40 वर्ष पहले जब आजादी एक सपना थी और तिरंगा केवल कल्पना, तब सात समंदर पार जर्मनी के स्टटगार्ड में भारत की स्वतंत्रता को लेकर पहली सुगबुगाहट हुई। वो एक घोषणा थी कि भारत झुका नहीं है बल्कि वो जाग रहा है। स्टटगार्ड में देश की एक निडर महिला क्रांतिकारी भीकाजी कामा ने वो कर दिखाया था जो कल्पना से परे था। तभी तो अंग्रेज भी उन्हें एक खतरनाक विद्रोही कहते थे, सरकार उन्हें राजद्रोही मानती थी। भीकाजी कामा ने विदेश की धरती पर भारत का पहला तिरंगा झंडा सप्तऋषि ध्वज फहराया था, जो स्वतंत्रता की यात्रा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर था। उसने भारत को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाने में सहायता की। भीकाजी ने न सिर्फ सप्तऋषि ध्वज डिजाइन किया बल्कि उसे जर्मनी में फहराया भी।
1: गीत, जब पूरा देश अंग्रेजों से डरता था, तब एक औरत अकेले इतनी दूर जाकर झंडा कैसे लहरा सकती थी?
2: क्योंकि बन्नो, कुछ लोग हालात से नहीं डरते, हालात उनसे डरते हैं। चलो, तुम्हें ले चलती हूँ थोड़ा अतीत में।

0: ये कहानी है 1885 के मुंबई की तंग गलियों की, घोड़ा गाड़ी की आवाजें और अंग्रेजी हुकूमत की कड़ी निगरानी। इसी शहर में रहती थी भीकाजी कामा अपने पति रुस्तम जी कामा के साथ। रुस्तम जी कामा एक अमीर प्रतिष्ठित और ब्रिटिश सरकार के समर्थक वकील थे। राजनीति में प्रवेश करने का सपना देखने वाले, व्यवस्था के भीतर रहकर आगे बढ़ने वाले व्यक्ति। 1885 में दोनों का विवाह हुआ था। कागजों पर एक सम्मानित दंपत्ति थे, लेकिन विचारों में दो बिल्कुल अलग व्यक्तित्व के मालिक, जिनकी दिशाएं अलग थी। भीकाजी कामा जरूरतमंदों एवं गरीबों के बीच रहकर उनकी सेवा करती थी, लेकिन उनके मन में जल रही थी स्वराज की ज्वाला, जबकि रुस्तम जी सत्ता के करीब रहना चाहते थे।
1: आखिरकार आ गई तुम विद्रोहियों से मिलकर। मिल गई तुम्हें फुर्सत। कम से कम तुम्हें ये तो याद रहा कि तुम्हारा एक पति भी है।
2: रुस्तम, वो विद्रोही नहीं, क्रांतिकारी हैं। और अगर आप किसी का सपोर्ट नहीं कर सकते तो कम से कम उनकी इंसल्ट तो मत करो।
1: तो क्या कहूं इन लोगों को, रेवोल्यूशनरी? पूरा सिस्टम बिगाड़ दिया है इन लोगों ने क्रांति के नाम पर।
2: प्लीज रुस्तम, आपको भी पता है ये लोग कौन हैं और क्या कर रहे हैं। जस्ट बिकॉज इट डजंट सूट योर नैरेटिव, इसका मतलब ये नहीं ना कि आप उन्हें डिग्रेड करो।
1: ये रेवोल्यूशन, क्रांति सबके दिमाग में छिड़ने लगी है। नो वंडर दुनिया इतनी आगे बढ़ चुकी है, बट भारतीय अभी भी अनसिविलाइज्ड हैं।
2: ओ, तो ये लोग हमको सिविलाइज्ड बनाएगा। प्लीज रुस्तम, आपको भी पता है कि इन लोगों ने हमारी कंट्री को कितना लूटा है।
1: लूटा है? What are you saying? Trains, roads, schools बनाने को लूटना कहते हैं?
2: ट्रेन्स और रोड्स इन्होंने खुद के लिए बनवाया है, हमारे पैसों से बनवाया है, हमारे लोगों से बनवाया है, ताकि ये लोग एक जगह से दूसरी जगह आसानी से जा सकें, अपना व्यापार करने के लिए सामान पहुंचा सकें। और रुस्तम, स्कूल्स का बात तो आप बोलो ही मत, ये स्कूल्स इन्होंने अपने बच्चों के लिए बनवाया है। और इनकी ऑफिस में काम करने के लिए ना अंग्रेजी जानने वाले भारतीय नागरिकों की जरूरत थी, इसलिए हमें अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं। इन्होंने हमें कोई ज्ञान नहीं दिया, उल्टा अपना फायदा के लिए ही हमारा एजुकेशन सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर दिया है। इनका सिविलाइजेशन का तो नाम तक नहीं था, तब हमारे देश में नालंदा विक्रमशिला जैसा इंस्टीट्यूशन बन चुका था। साइंस, लैंग्वेज, फिलोसफी पढ़ने के लिए पूरा विश्व का स्टूडेंट्स आता था।
1: ओ मैडम, ये तुम्हारी कोई क्रांतिकारियों की मीटिंग नहीं चल रही है, प्लीज स्पेयर मी। और वैसे भी ये मत भूलो कि ये जो तुम अपने रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज पर खर्चा करती हो, ये पैसा कहां से आता है? तुम्हारे परिवार और मेरे परिवार के बनाए हुए बिजनेस से आता है। ये कॉन्ट्रैक्ट देख रही हो तुम? कुछ ही दिनों में मैं ये कॉन्ट्रैक्ट अंग्रेज सरकार के साथ साइन करने वाला हूँ।
2: मेरा देश मेरा बिजनेस के ऊपर है। अब मेरा एक ही सपना है, अपने देश को आजाद देखना, और वो सपना मैं पूरा करके रहूंगी।
3: दीदी, क्या उनका रिश्ता कभी सच्चे अर्थों में बन पाया? उनकी क्रांति यहीं से शुरू हुई?
0: नहीं बन्नो, उनकी शादीशुदा जिंदगी खुशहाल नहीं थी। भीकाजी का जीवन परोपकारी कार्यों, समाज सेवा और राष्ट्र के लिए समर्पित था। इसी से उनके रिश्ते में दरार बढ़ती गई। घर की दीवारों के भीतर खामोश संघर्ष चल रहा था, और बाहर वो एक क्रांति की राह पर तेजी से बढ़ रही थी। ये तो केवल पहला अध्याय था। आगे उन्होंने निर्वासन झेला, विदेश की धरती पर गुप्त सभाएं की, और यहां तक कि सप्तऋषि तिरंगा झंडा भी लहराया।
4: रुस्तम कामा एक उद्योगपति थे। वो अंग्रेजों से भिड़ने का जोखिम बिल्कुल उठाना नहीं चाहते थे, लेकिन भीकाजी को ना अंग्रेजों का डर था, ना उनसे होने वाले नुकसान का। इसी बीच साल 1896 में मुंबई में सदी की सबसे बड़ी महामारी फैली, ब्यूबोनिक प्लेग। भिकाजी ने बिना जान की परवाह किए खुद को पीड़ितों की सेवा में झोंक दिया। वो पहुंच गई मुंबई के ग्रांट मेडिकल कॉलेज में।
0: डॉक्टर, कितने और दिन लगेंगे इन्हें ठीक होने में?
5: अभी कुछ कह नहीं सकते। We are trying our best. अगर पूरी तरह से ठीक नहीं हुए तो इन्हें डिस्चार्ज करना पड़ेगा। इतने सारे मरीजों को एक साथ मैनेज कर पाना बहुत मुश्किल है।
0: ओह, फिर इन्हें घर पे ट्रीटमेंट कैसे मिलेगा? Can you do something about it? कोई मेकशिफ्ट हॉस्पिटल क्रिएट कर सकते हैं जहां लेस क्रिटिकल पेशेंट्स को रख सकें?
5: मैडम, आप और आपकी टीम पहले ही कितना कुछ कर रही है इन प्लेग अफेक्टेड पेशेंट्स के लिए। सच कहूं तो आप और आपकी टीम यहां नहीं होती तो हम इतने सारे मरीजों को मैनेज नहीं कर पाते। आपने डॉक्टर्स, नर्सेस और मरीजों की बहुत मदद की है। अब मुझे लगता है कि आपको भी आराम की जरूरत है।
4: डॉक्टर से बात करते हुए अचानक भिकाजी बेहोश हो जाती हैं। सही से आराम ना करने के कारण उनका शरीर उनका साथ छोड़ दे रहा था।
5: नर्स, देखो इधर। कामा, आप लगातार प्लेग मरीजों की सेवा कर रही हैं। ये भयंकर महामारी अब आपके लिए घातक साबित हो रही है। आपका शरीर कब तक इस माहौल से लड़ पाएगा? आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता जवाब दे रही है। इस बार मुझे आपकी हालत बिल्कुल ठीक नहीं लग रही।
4: उसके बाद डॉक्टर साहब रुस्तम कामा से कहते हैं,
5: रुस्तम जी, अब भी वक्त है। इनके बेहतर इलाज के लिए आप इन्हें अपने साथ ले जाइए। इन्हें यहां से चले जाना चाहिए। कुछ भी कीजिए, इन्हें मनाइए। इन्हें लंदन भेज दीजिए। जगह और मौसम बदलने से तबीयत में जल्दी सुधार आता है। मैं वहां के कुछ डॉक्टर्स का आपको पता दे दूंगा। जब तक जाने का इंतजाम ना हो, मेरी सख्त हिदायत रहेगी कि इनके खाने पीने का बहुत ध्यान रखिए और प्लीज इन्हें वहां मरीजों के पास दोबारा बिल्कुल मत जाने दीजिए। मैं चलता हूं।
6: जी डॉक्टर साहब, शुक्रिया। सुना तुमने डॉक्टर साहब क्या कह रहे हैं? मैंने तुम्हें पहले ही मना किया था कि उन झोपड़ी वालों के बीच मत जाओ। तुम्हें हमारी स्टेटस की चिंता तो है नहीं, अब कम से कम अपनी हेल्थ, अपनी जिंदगी का तो ध्यान रखो प्लीज।
7: मेरी बीमारी से तो तुम्हारा काम आसान हो गया ना रुस्तम। मैं लंदन चली जाऊंगी तो तुम्हें यहाँ कोई परेशान करने वाला नहीं होगा। तुम आराम से अंग्रेजों के प्रति अपनी लॉयल्टी निभाना। ठीक है रुस्तम, मैं लंदन जाकर इलाज कराने को तैयार हूँ।
4: उस दिन डॉक्टर के जाने के बाद रुस्तम और भिकाजी में बहुत बहस हुई। साल 1902 का समय, लंदन में भिकाजी कामा अपने बैठक कक्ष में बैठी किताब पढ़ रही थी, तभी उनकी नौकरानी आती है।
8: मैडम, आपसे मिलने कोई आया है?
0: यहाँ मुझसे मिलने? तुम चलो, मैं आती हूँ।
4: भिकाजी अपनी किताब रख उठती है और दरवाजे की तरफ बढ़ती है कि उन्हें दरवाजे की चौखट पर नीला कुर्ता पहने सफेद दाढ़ी वाले, आंखों में चश्मा और सर पर टोपी पहने हुए 65 से 70 साल के व्यक्ति हाथों में छड़ी लिए खड़े दिखाई देते हैं। उन्हें देखते ही उनके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ जाती है। वो व्यक्ति और कोई नहीं, दादा भाई नारोजी थे।
0: दादा भाई, आपको यहाँ पर देखकर मुझे बहुत खुशी हुई।
9: हाँ, क्या करूं, तुम्हारे कामों ने इतना प्रभावित किया कि तुमसे मिलने आना ही पड़ा।
4: अपने कार्य के बारे में प्रशंसा सुन भिकाजी थोड़ा हैरान होती हैं और उनसे पूछती हैं,
0: मेरे काम? आपको पता है मेरे कामों के बारे में?
9: हाँ हाँ,
0: मैंने आपको कई सारे लेटर्स लिखे पर किसी का भी जवाब नहीं आया, तो मुझे लगा आपने कोई भी लेटर पढ़ा ही नहीं।
9: सारे लेटर्स पढ़े मैंने। बहुत गुस्सा है तुम्हारे मन में, सोचा कि खुद ही जाकर मिल लूं। मिलकर बात करने से सारे कंफ्यूजन दूर हो जाते हैं।
0: कंफ्यूजन्स?
9: बताता हूँ, बैठो।
4: दोनों बैठते हैं। फिर दादा भाई कहते हैं,
9: शायद तुम इस बात से नाराज हो कि कांग्रेस की पहली बैठक में मैंने अंग्रेजों के खिलाफ क्यों नहीं कुछ कहा। तुम समझती हो कि मैं अंग्रेजों का साथी हूँ, भारत में अंग्रेज शासन का समर्थक हूँ। अगर तुमने गौर किया होता तो तुम देखती कि मैं उनका सबसे बड़ा आलोचक भी हूँ।
0: मुझे लगता है आप अपने भाषणों से भारत की क्रांति को बल दे सकते हैं, लेकिन आपके भाषणों में बहुत नरमी होती है। आप अंग्रेजों के विरुद्ध प्रहार करने के बजाय मैंने कई बार आपको उनके समर्थन में बोलते सुना है, लेकिन आपकी किताब पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पढ़ने के बाद मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गई हूँ। उस किताब में आपने अंग्रेजों की जिस तरह से पोल खोली है, उससे पूरी दुनिया को ये पता चल चुका है कि किस तरह उन्होंने हमारे देश का सांस्कृतिक और आर्थिक शोषण किया है। और अगर भारत में गरीबी के लिए कोई जिम्मेदार है तो सिर्फ अंग्रेज। पर मुझे समझ में नहीं आता कि आपका अंग्रेजों के लेकर क्या मत है।
9: भीका जी, तुम बहुत जल्दी गुस्सा हो जाती हो। कोई भी लड़ाई जीतने के लिए सिर्फ दिल की नहीं दिमाग की भी जरूरत होती है। बात और वॉर दोनों के लिए सही समय का इंतजार करना पड़ता है। इसलिए मैं हमेशा से बीच का रास्ता अपनाना चाहता हूँ, जिससे कि उन्हें यह लगे कि हम उनके प्रति नर्म हैं, जबकि असल में यह एक दिखावा होगा। इस वक्त अंग्रेजों पर हर तरह का दबाव बनाया जा रहा है, इसलिए तो इंडियन होम रूल लीग बनाई गई है। उसे श्याम जी कृष्ण वर्मा चलाएंगे, और जिसके लिए तुम जैसे प्रखर वक्ता और क्रांतिकारियों की जरूरत है। भीका जी, अगर तुम चाहो तो ज्वाइन कर सकती हो।
4: इतना कहकर दादा भाई टेबल पे रखी चाय का कप उठाकर पीने लगते हैं। भारतीयों के इस लीग में ज्वाइन होने के प्रस्ताव को सुन भीका जी मन ही मन अत्यंत खुश होती हैं, पर मुस्कुराने के अलावा कुछ नहीं बोलती। फिर दादा भाई चाय की आखिरी चुस्की लगाते हुए कहते हैं,
9: भीका जी, इंडियन होम रूल लीग पूरी तरह से स्वतंत्र संस्था होगी, जो बिना किसी दबाव के भारत का पक्ष पूरे विश्व के सामने रखेगी।
7: और हम अपना पक्ष रखेंगे, पूरी दुनिया को बताएंगे कि भारत भारतीयों का है, ब्रिटिशर्स का नहीं।
9: बेशक,
0: हमें अंग्रेजों का शासन नहीं बल्कि स्वराज चाहिए।
9: भीका जी, मुझे पूरा यकीन है भारत से दूर रहकर तुम यहाँ एक जबरदस्त योगदान दे सकती हो। और हाँ, अब जबकि हम दोनों ये समझ गए हैं कि हमारा लक्ष्य और उद्देश्य एक है, अगर तुम चाहो तो यहाँ मेरे कामों में मेरी सहायता कर सकती हो। भीका जी, मैं इंडियन नेशनल कांग्रेस के ब्रिटिश कमेटी का अध्यक्ष होने के नाते तुम्हें अपने सहायक की जॉब ऑफर करता हूँ।
0: अगर मेरे किसी भी काम से मेरे देश का भला होता है तो मैं खुशी खुशी करने के लिए तैयार हूँ, और इंडियन होम रूल लीग के लिए भी काम करने में मुझे खुशी होगी। मैं आपकी सहायक बनने के लिए भी तैयार हूँ।
4: इस बैठक के बाद दादा भाई चले गए, मगर भिकाजी के मन में अपने देश के लिए फिर से कुछ कर दिखाने की एक नई आस जाग उठी। आखिरकार वो दिन आया जब भिकाजी इंडियन होम रूल लीग की मीटिंग में पहुंची और अपने प्रभावशाली शब्दों से सबका मन जीत लिया।
7: श्री श्याम जी कृष्ण वर्मा ने इंडियन होम रूल लीग की स्थापना करके अंग्रेजों के विरुद्ध एक नए युद्ध का आरंभ किया है। वी आर लकी कि हमें इसमें जुड़ने और इसके लिए काम करने का मौका मिल रहा है। इंडियन होम रूल लीग के प्रेसिडेंट श्री श्याम जी कृष्ण वर्मा को आमंत्रित करना चाहूंगी।
4: भिकाजी की ये कहते ही आगे की कुर्सी पर बैठे कोट पैंट पहने आंखों में ऐनक और घनी काली दाढ़ी वाले व्यक्ति खड़े हो जाते हैं। ये थे इंडियन होम रूल लीग के संस्थापक श्याम कृष्ण वर्मा। वो एक वकील, पत्रकार, प्रखर वक्ता और सच्चे राष्ट्रवादी थे।
10: धन्यवाद मेरे प्रिय भाइयों। जैसा कि अभी मैडम भीका जी कामा ने कहा कि उनका सौभाग्य है हमारे साथ इंडियन होम रूल लीग के साथ जुड़ने का, ठीक उसी तरह हमारा भी एक सौभाग्य है कि हमें प्रखर राष्ट्रवादी भीका जी कामा जी मिली। कहते हैं ना कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, तो नारी शक्ति का बल यहां भी हमें स्वराज्य की लड़ाई में बल देगा। साथियों, मेरा विश्वास है कि अंग्रेजों से बातचीत करके या संतुलन कायम करके हमें स्वतंत्रता नहीं मिलेगी। अपने अधिकारों की भीख मांगकर हम अपनी गरिमा और स्वाभिमान को खो देंगे। इसलिए अब समय है इन लोगों पर गहरी चोट करने का।
4: चारों तरफ तालियों की गूंज फैल जाती है। श्याम जी वर्मा एक बार फिर से हाथ जोड़कर धन्यवाद देते हैं और वहां से अपने स्थान पर प्रस्थान करते हैं। तभी भिकाजी एक बार फिर से बोल उठती है,
7: मैं एक सूचना देना चाहूंगी। अंग्रेजों ने हमारे बंगाल को विभाजित करने का निर्णय लिया है। भारत में जगह जगह इसे लेकर क्रांति छिड़ गई है। जनता सड़क पर उतर आई है और अंग्रेजों के विरुद्ध रैलियां और सभाएं कर रही है। हमारे क्रांतिकारियों ने देश के अंदर मोर्चा संभाल रखा है और हम यहाँ दूसरा मोर्चा संभालेंगे। पूरे यूरोप विश्व का हम समर्थन एकत्रित करेंगे और इसके लिए हमें एक ध्वज चाहिए होगा, एक ऐसा ध्वज जो हमारे समूचे भारत का सच्चा प्रतीक है। वो ध्वज प्रतीक होगा नए भारत का, जो परतंत्र से मुक्त है, स्वतंत्र है, किसी के अधीन नहीं। ये ध्वज हमारी लड़ाई की गर्जना होगा, जिससे हम अत्याचारी ब्रिटिश शासन को खत्म करेंगे। वंदे मातरम,
11: वंदे मातरम, वंदे मातरम,
7: वंदे मातरम।
4: वंदे मातरम की गूंज के बीच भिकाजी और दूसरों ने ध्यान ही नहीं दिया कि उनके बैठक में एक गुप्तचर भी मौजूद है। उसने सारी जानकारी अपनी डायरी में लिख ली।
3: क्या हो सकता है उस घुसपैठिए का इरादा? कीट, आपको क्या लगता है डायरी में क्या लिखा होगा?
0: मुझे भी नहीं पता, चलो आगे सुनते हैं।
4: इस सभा के बाद भिकाजी कामा ने अपने देश के कुछ अहम स्टूडेंट्स के साथ एक गुप्त सभा आयोजित की।
12: इस अहम सभा में अपने देश के युवा विद्यार्थियों को देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। अब सबको देखकर लगता है कि हम सब ने चाहे जिस भी वजह से अपना वतन छोड़ा हो, लेकिन हमारा यहाँ आना बेकार नहीं गया। अब मैं खास तौर पर अभिनंदन करना चाहूंगी विनायक दामोदर सावरकर जी का। वंदे मातरम।
4: विनायक दामोदर सावरकर एक जवान सुपुरुष सूट बूट पहनकर सभा में बैठे थे।
12: इंडिया हाउस में स्कॉलरशिप के लिए इन्हें खुद तिलक जी ने रेकमेंड किया है।
4: विनायक दामोदर अपने स्थान से खड़े होते हैं और बोलते हैं,
13: मैडम कामा जी ने मेरे लिए बहुत भारी शब्द कहे हैं। मुझे नहीं पता कि मैं इनके काबिल हूं या नहीं। पंडित श्याम जी ने और आपने मुझे जो अवसर दिया है, मुझे और मुझ जैसे नए विद्यार्थियों और क्रांतिकारियों को इंडिया हाउस में रहने की जो जगह दी है, अभिनव भारत संगठन को स्थापित करने में जो सहायता की है, इसके लिए बधाई और आभार के पात्र तो आप लोग हैं जो इतना बड़ा जोखिम ले रहे हैं। हाँ, मैं आप लोगों के उम्मीदों पर खरा उतर पाऊँ इसकी कोशिश जरूर करूँगा। एक बार फिर लंदन में अभिनव भारत संगठन की स्थापना कराने में मेरी सहायता करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
4: तालियों के इस गूंज के बीच कोई सुन नहीं पाया वक्त के पहिए की आवाज। लंदन की धरती पर आज सिर्फ भाषण नहीं हुए थे, आज बीज बोए गए थे एक ऐसी क्रांति के जो हिंदुस्तान की मिट्टी पर ब्रिटिश हुकूमत को हिला देने वाली थी। एक ओर वंदे मातरम की गर्जना और दूसरी ओर अंग्रेजी हुकूमत की साजिशें। जिस सभा में स्वराज का स्वप्न बुना जा रहा था, उसी सभा में एक गुप्त नजर हर शब्द को कैद कर रही थी।
3: गीत, क्या अंग्रेजों को पता चल गया भिकाजी का अगला कदम?
0: शायद बन्नो, शायद इस बार सिर्फ शब्द नहीं, एक ध्वज लहराने वाला है।
4: एक ध्वज जो विदेशी धरती पर भारत का परिचय बनेगा। एक गीत जो पूरी दुनिया को बताएगा कि भारत गुलाम नहीं है। लेकिन उससे पहले होगी गिरफ्तारी की साजिश, होगा निर्वासन और आएगा वो ऐतिहासिक क्षण जब वंदे मातरम विदेशी आसमान में गूंजेगा। तो क्या भिकाजी कामा अपने इरादे में सफल होंगी? कौन था वो गुप्तचर और कैसे पहली बार विदेश की धरती पर लहराया जाएगा भारत का ध्वज? इन सभी सवालों के जवाब एक गीत एक नारा राष्ट्रगीत हमारा के अगले अध्याय में।

जब आती है उषा अशना के साथ। आप सभी को नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राम राम सा, जय श्री कृष्ण सा, खम्मा गणी सा। पहले बनती है तकदीर, फिर बनते हैं शरीर। कर्म हमारे हाथ में है, लेकिन उसका फल हमारे हाथों में नहीं है। कैसे, जरा विचार करेंगे। और जी हाँ, अगर नाक में से लोही निकलता है, अभी गर्मी का मौसम है और नकलोई चलते हो, तो उनके लिए बहुत ही सुंदर घरेलू उपाय, कारण और निवारण दोनों ही देंगे। खुशनुमा जीवन की ढेर सारी बातें भी करेंगे। तो आज आपको सिखाने वाली हूँ वेजिटेबल फिंगर, और आज का टंग ट्विस्टर भी बहुत ही सुंदर रहेगा। तो ये सब कुछ सुनेंगे आशियाना में। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 FM।

0: आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन।
1: कृपया प्लेटफॉर्म पर साफ सफाई रखें, कचरा कचरे के डिब्बे में ही डालें व स्टेशन परिसर को साफ सुथरा रखने में रेलवे को मदद करें, धन्यवाद।
0: रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए।
2: गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आशियाना में फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का सुंदर सा विचार है, पहले बनती है तकदीर फिर बनते हैं शरीर। कर्म हमारे हाथ में है लेकिन उसका फल हमारे हाथों में नहीं है, कैसे? तो आइए आज के विचार का विश्लेषण कुछ दृष्टांत के साथ आपका स्पष्ट करना चाहूंगी। अभिमन्यु के पुत्र, देखिए होनी बहुत बलवान है। अभिमन्यु के पुत्र राजा परीक्षित थे। राजा परीक्षित के बाद उनके पुत्र जन्मजय राजा बने। एक दिन जन्मजय वेदव्यास जी के पास बैठे थे। बातों ही बातों में जन्मजय ने कुछ नाराजगी से वेदव्यास जी से कहा कि जहां आप समर्थ थे, भगवान श्री कृष्ण थे, भीष्म पितामह थे, गुरु द्रोणाचार्य, कुलगुरु कृपाचार्य जी, धर्मराज युधिष्ठिर जी जैसे महान लोग उपस्थित थे, फिर भी आप महाभारत के युद्ध को होने से नहीं रोक पाए और देखते देखते अपार धन जन की हानि हो गई। यदि मैं उस समय रहा होता तो अपने पुरुषार्थ से इस विनाश को होने से बचा लेता। अहंकार से भरे जन्मेजय के शब्द सुनकर के व्यास जी शांत रहे। उन्होंने कहा, पुत्र अपने पूर्वजों की क्षमता पर शंका न करो, ये विधि द्वारा निश्चित था, जो बदला नहीं जा सकता था। यदि ऐसा हो सकता तो अकेले श्री कृष्ण में ही इतना सामर्थ्य था कि वे युद्ध को रोक सकते थे। जन्मेजय अपनी बात पर अड़े रहे और बोला, मैं इस सिद्धांत को नहीं मानता, आप तो भविष्यवक्ता है, मेरे जीवन के होने वाले किसी होनी को बताइए, मैं उसे रोक कर प्रमाणित कर दूंगा कि विधि का विधान निश्चित नहीं होता। व्यास जी ने कहा, पुत्र यदि तू यही चाहता है तो सुन, कुछ वर्ष बाद तू काले घोड़े पर बैठ करके शिकार करने जाएगा, दक्षिण दिशा में समुद्र तट पर पहुंचेगा, वहां तुम्हें एक सुंदर स्त्री मिलेगी जिसे तू अपने महल में लाएगा और उसे विवाह करेगा। मैं तुमको मना करूंगा कि वे सब मत करना, लेकिन फिर भी तुम ये सब करोगे। इसके बाद उस स्त्री के कहने पर तू एक यज्ञ करेगा। मैं तुमको आज ही सचेत कर रहा हूं कि उस यज्ञ को तुम वृद्ध ब्राह्मणों से ही कराना, लेकिन वह यज्ञ तुम युवा ब्राह्मणों से कराओगे। और जन्मेजय ने हंसते हुए व्यास जी की बात काटते हुए कहा कि मैं आज के बाद काले घोड़े पर ही नहीं बैठूंगा, तो ये सब घटनाएं घटी थी नहीं होगी। व्यास जी ने कहा कि ये सब होगा और अभी आगे सुन, उस यज्ञ में एक ऐसी घटना घटित होगी कि तुम उस स्त्री

सोचा कि मैं दक्षिण दिशा में ही नहीं जाऊंगा, परंतु घोड़ा अनियंत्रित होकर के दक्षिण दिशा की ओर गया और समुद्र तट पर पहुंचा तो वहां पर उसने एक सुंदर महिला को देखा और उस पर मोहित हुआ। जन्मेजय ने सोचा कि इसे लेकर महल में तो जाऊंगा लेकिन शादी नहीं करूंगा, परंतु उस स्त्री को महल में लाने के बाद उस महिला से प्रेम हो गया और प्रेम में पड़ करके उसे विवाह कर लिया। फिर रानी के कहने से जन्मेजय द्वारा यज्ञ भी किया गया। उस यज्ञ में युवा ब्राह्मण ही रखे गए। किसी बात पर युवा ब्राह्मण रानी पर हंसने लगे। रानी क्रोधित हो गई और रानी के कहने पर राजा जन्मेजय ने उन्हें प्राणदंड की सजा दे दी, जिसके फल स्वरूप उसे कोड हो गया। अब जन्मेजय घबरा गया और तुरंत व्यास जी के पास पहुंचा और उनसे जीवन बचाने के लिए प्रार्थना करने लगा। वेद व्यास जी ने कहा कि एक अंतिम अवसर तेरे प्राण बचाने का और देता हूँ। मैं तुझे महाभारत में हुई घटना का श्रवण करूंगा, जिसे तुझे श्रद्धा एवं विश्वास के साथ सुनना है। इससे तेरा कोड मिटता जाएगा, परंतु यदि किसी भी प्रसंग पर तूने अविश्वास किया तो मैं महाभारत का प्रसंग रोक दूंगा और फिर मैं भी तेरा जीवन नहीं बचा पाऊंगा। याद रखना, अब तेरे पास ये अंतिम अवसर है। अब तक जन्मेजय को व्यास जी की बातों पर पूर्ण विश्वास हो चुका था, इसलिए पूरी श्रद्धा और विश्वास से कथा श्रवण करने लगा। व्यास जी ने कथा आरंभ करी और जब भीम के बल के प्रसंग सुनाए, जिसमें भीम ने हाथियों को सुंडों से पकड़कर उन्हें अंतरिक्ष में उछाला, वे हाथी आज भी अंतरिक्ष में घूम रहे हैं, तब जन्मेजय अपने आप को रोक नहीं पाया और बोल उठा कि ये कैसे संभव हो सकता है, मैं नहीं मानता। व्यास जी ने महाभारत का प्रसंग रोक दिया और कहा कि पुत्र, मैंने तुझे कितना समझाया कि अविश्वास मत करना, परंतु तुम अपने स्वभाव को नियंत्रित नहीं कर पाए क्योंकि ये होने द्वारा निश्चित था। फिर व्यास जी ने अपनी मंत्र शक्ति से आह्वान किया और वे हाथी पृथ्वी की आकर्षण शक्ति में आकर नीचे गिरने लगे। तब व्यास जी ने कहा, यह मेरी बात का प्रमाण है। जितनी मात्रा में जन्मेजय ने श्रद्धा विश्वास से कथा श्रवण की, उतनी मात्रा में वे उस कुष्ठ रोग से मुक्त हुआ, परंतु एक बिंदु रह गया और वही उसकी मृत्यु का कारण बना। तो कहने का भाव यही है मेरे प्यारे श्रोता बंधु, पहले बनती है तकदीर, फिर बनते हैं शरीर। कर्म हमारे हाथ में है लेकिन उसका फल हमारे हाथों में नहीं है। तो ये हुआ, कहते ना, होनी को टाला नहीं जा सकता, लेकिन पुण्य कर्म व ईश्वर नाम जाप से होनी के प्रभाव को कम किया जा सकता है, अर्थात रोग आएंगे परंतु पीड़ा नहीं होगी। तो ये हुआ आज का सुंदर सा विचार, जिस पर जरूर गौर करेंगे और सुनेंगे फिर से एक बहुत ही सुंदर गीत। तो सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 FM।

नमस्ते, मैं हूँ किरण शूद्र की सांगली और आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आप सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं।

आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आशियाना, और आशियाना में मेरे प्यारे श्रोता बंधुओं, गर्मी के मौसम में कई लोगों को नाक से अचानक खून आने की समस्या हो जाती है, जिसे नकसीर कहते हैं। घबराने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन इसके कारण और बचाव जानना बहुत जरूरी हो जाता है। तो नकसीर आने का मुख्य कारण है बहुत ज़्यादा गर्मी, अत्यधिक गर्मी और लू लगना। शरीर में पानी की कमी की वजह से डिहाइड्रेशन हो जाता है, इस वजह से भी नकसीर होते हैं। नाक के अंदर की त्वचा का सूख जाना ये भी कारण है। बार बार नाक कुरेदना या चोट लगना, उच्च रक्तचाप, हाई बीपी कह सकते हैं इसको, एलर्जी या सर्दी जुकाम के कारण भी नाक में जलन होती है और नकसीर शुरू हो जाते हैं। तो क्या करना चाहिए, तुरंत क्या करना चाहिए अगर इस तरह नकसीर आता है? जिसके भी नाक में से लोई निकलता है उसको तुरंत आप बिठाइए, बिठा करके सिर थोड़ा आगे की ओर करके झुकाइएगा। नाक के दूसरी बात यह है, नाक के मुलायम हिस्से को 10 मिनट तक हल्के दबाव से दबा कर रखिएगा। नाक के मुलायम हिस्से को 10 मिनट तक दबा करके, हल्के से दबा करके रखना है। तीसरा उपाय है, नाक और माथे पर ठंडी पट्टी या बर्फ की सिकाई करिए। नाक और माथे पर ठंडी पट्टी या बर्फ की सिकाई करनी है। चौथा उपाय है, मुंह से धीरे धीरे सांस लीजिए। मुंह से धीरे धीरे सांस लेना है। अब आप जानेंगे घरेलू उपाय। खूब पानी, नींबू पानी, छाछ और नारियल पानी लीजिए। देखिए, गुलाब जल के एक दो बूंदे नाक में डाल सकते हैं, ठीक है? गुलाब जल के एक दो बूंदे नाक में डाल सकते हैं। दूसरा उपाय है, खीरा, तरबूज और खरबूजा जैसे पानी से भरपूर फल खाइएगा ऐसे मौसम में, ठीक है? फिर नाक के अंदर थोड़ा सा शुद्ध घी या नारियल तेल लगाइए, इससे सूखापन कम हो सकता है। और यदि खून 15-20 मिनट से अधिक समय तक नहीं रुके, बार बार नकसीर आए या चक्कर, कमजोरी अथवा अधिक रक्त स्त्राव हो, तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करिएगा। संदेश यही है, गर्मी में शरीर को ठंडा रखे, भरपूर पानी पिए और स्वास्थ्य का ध्यान रखे, क्योंकि सावधानी ही सबसे अच्छा उपचार है। तो प्यारे श्रोता बंधु, ये हुए घरेलू उपाय। देखिए, कुछ दिनों से हम योगा के बारे में ही बता रहे थे, आज भी हम तो योगा के बारे में ही बताते हैं, लेकिन किसी का फोन आया कि नहीं नकसीर के बारे में दीजिए, अभी बहुत गर्मी है और ये शिकायतें बहुत हो रही है, तो फिर बीच में इसको ले लिया है, ठीक है? बाकी कल वापस योगा डे के बारे में ही सुनेंगे। तो आइए अब आज के टंग ट्विस्टर की तरफ बढ़ते हैं। आज का टंग ट्विस्टर इस प्रकार है, ध्यान से सुनिएगा और आपको अधिक से अधिक 3 बार, कम से कम 2 बार बोल के सुनाना है। योगी योग में योग्यता जोड़े, योग्यता से योग का यश मोड़े। जो योगी योग्यता से योग करे, वो योग में यश ही यश जोड़े। ये आज का टंग ट्विस्टर है। सुनाने के लिए नंबर रेडियो मधुबन के है 94-14-15-14-15, और यही पर एक गीत सुनेंगे, उसके बाद पुनः रूबरू होंगे। तो बने रहिएगा कार्यक्रम आशियाना में, सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 FM।

0: योग से तन में ऊर्जा का संचार होता है, मन में शांति और विचारों में विस्तार होता है। जो रोज योग को जीवन में अपनाता है उसका हर दिन खुशियों का त्योहार होता है। जो रोज योग को जीवन में अपनाता है उसका हर दिन खुशियों का त्योहार होता है। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आशियाना और आशियाना में अब विषय आपके समक्ष रख चुकी हूँ, करो योगा भगाओ रोगा, करो योगा भगाओ रोगा। तो आज हम योग पर ही बात करेंगे, करिए योग और भगाइए रोग। कैसे आप सभी योग कर रहे हैं क्या? जो भी कर रहे हैं फोन कॉल्स करके बता सकते हैं कि हाँ किस किसने एक्सरसाइज शुरू की या कभी की आपकी चालू है और क्या आपको इससे फायदा मिल रहा है, जरूर जुड़ करके बताइएगा। देखिए कितनी सुंदर शायरी आपके समक्ष रखी है कि योग से तन में ऊर्जा का संचार होता है और मन में शांति और विचारों का विस्तार होता है। बोलिए तो योगा के द्वारा भी हम अपने जीवन को खुशनुमा बना सकते हैं। अरे योग के द्वारा तो अपना जीवन बहुत ही खुशनुमा बन जाता है, जो किसी और बात से हो ना हो। तो एक्सरसाइज को अपने जीवन में जरूर शामिल करिएगा। और आज का टंग ट्विस्टर भी बहुत ही सुंदर है, योगी योग्य में योग्यता जोड़े, योग्यता से योग का यश मोड़े। जो योगी योग्यता से योग करे वो योग में यश ही यश जोड़े। ये आज का टंग ट्विस्टर है, आपको कम से कम दो बार, अधिक से अधिक तीन बार बोल के सुनाना है। क्या सोच रहे हैं? अरे दिल्ली तो नहीं जा रहे योग अड्डे पर 21 जून? बहुत सारे जिनको अच्छी पहचान है, जान पहचान है या अच्छे पद पोजीशन पर है वो तो जाने वाले है, तो सोचा कि आप लोग भी कहीं जाने की तैयारी तो नहीं कर रहे है, जुड़ नहीं रहे तो। हेलो
1: दीदी नमस्ते, गुड मॉर्निंग, ओम शांति, सुरेश भाई बलकार जताना से।
0: हाँ जी नमस्ते सुरेश भाई, ओम शांति, कैसे हो आप?
1: बस अच्छे हैं, बैठे हैं, काम कर रहे हैं और सबसे सुन रहे हैं
0: जी।
1: और टंग ट्विस्टर सुना दिया तो चलो मैं पहले टंग ट्विस्टर सुना दूँ आपको।
0: जी सुना दीजिए
1: जी। योगी योग में योग्यता जोड़े, योग्यता से योग का यश मोड़े। जो योगी योग्यता से योग करे वो योग में यश ही यश जोड़े। योगी योग्यता में योग्यता जोड़े, योग्यता से योग का यश मोड़े। जो योगी योग्यता से योग करे वो योग में यश ही यश जोड़े। योगी योग में योग्यता जोड़े, योग्यता से योग का यश मोड़े। जो योगी योग्यता से योग करे वो योग में यश ही यश जोड़े।
0: बहुत सुंदर। हाँ जी, और हाँ जी, आप रोज योगा करते हैं?
1: योगा तो दीदी हम बस सुबह में थोड़ा सा बैठ जाते हैं, मैं जल्दी उठता हूँ सुबह में 4:30 बजे से उठ जाता हूँ। उसके में दीदी बस ऐसे जो हम कहते ना पलौठी वाल के मैं बैठता हूँ और जो दो ही हाथ जो बिछन पे रख के बस में सांस लेता हूँ,
0: भद्रासन
1: करता हूँ मैं, बस
0: भद्रासन की तरह।
1: हाँ बस वही योग करता हूँ मैं सुबह में, 5-10 मिनट वही करता हूँ बस।
0: अच्छा अच्छा।
1: तो सुबह से तो मेरा काम रूटीन का शुरू हो जाता है रात तक, क्योंकि हाथ पैर हिलाना ये तो हमारा जो काम है ऐसा है, तो बस ये तो चलता ही रहता है, कसरत तो चलती ही रहती है।
0: जी जी बिल्कुल, सिलाई में भी बहुत।
1: सुबह में मैं 5-10 मिनट बैठ के योग करता हूँ सुबह में।
0: जी जी,
1: इसमें नीचे बैठ के अच्छा रहता है दीदी।
0: जी बहुत अच्छा है। हाँ भले 10-20 मिनट निकाले, कम से कम 20 मिनट खुद को देना चाहिए
1: जी।
0: तो आप
1: 10 मिनट तो मैं आराम से बैठ देता हूँ
0: जी,
1: हर रोज बैठता हूँ, ऐसे नहीं एक दिन की योग की चलो योग का दिन आया तो योग करे, नहीं हर रोज मैं ये करता हूँ सुबह में
0: जी। ये तो देखिए एक दो दिन करने से फायदा नहीं होगा, रोज की प्रैक्टिस चाहिए
1: जी।
0: तो 10 मिनट आप करते ही हैं, 10 मिनट और बढ़ा दीजिए
1: जी, इसलिए तो हाथ और पैर की भी एक्सरसाइज अच्छी होती है
0: जी।
1: और जो हमारी सांसें लेते थे बताऊँ तो आज मुझे 2 किलोमीटर चलना हो तो पैदल में चल सकता हूँ, जोर से चल सकता हूँ, दौड़ भी सकता हूँ
0: जी।
1: तो इससे मुझे कई सारे फायदे रहते हैं।
0: बहुत बढ़िया।
1: और जल्दी उठना भी फायदा है, जल्दी।
0: अरे जल्दी उठना तो सबसे बेस्ट है।
1: हाँ,
0: उस समय प्रकृति बहुत सुंदर होती है भाई, प्रकृति का पूरा लाभ लेना हो तो जल्दी उठ जाइए।
1: हाँ, और सुबह सुबह में तो दीदी ये जो मेरा काम है ना, मैं सुबह में बाहर गांव से बाहर जाता हूँ तो ठंडी ठंडी हवा, इतनी प्रकृति का जो नजारा देखने को मिलता है, ठंडे ठंडे हवाएं आती है और शुद्ध हवाएं आती है। कहते हैं गांव से बाहर जाते हैं तो
0: जी
1: तो हवाएं भी शुद्ध आती है, तो इसमें कई सारे फायदे। और मैं पैदल ही जाता हूँ, मैं कोई ऐसे कोई साधन लेके नहीं जाता हूँ, मैं 2-3 किलोमीटर जाता हूँ लेकिन पैदल ही जाता हूँ।
0: बहुत बढ़िया।
1: तो पैदल चलना भी अच्छा रहता है और जल्दी उठना भी फायदा है, इसलिए आज मैं फिट हूँ एकदम अच्छी अच्छा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने बताया ना एक बार मैं गिर गया था, फिर भी मैंने कुछ नहीं किया है, मैं दवाई भी नहीं ली कुछ, और मैं जो ऐसे बस चल के फिर के मेरा इधर मिट गया है।
0: जी जी जी जी।
1: तो बस इससे कई सारे फायदे हैं योग करने से। तो
0: जी बहुत सुंदर। हाँ जी, बहुत बहुत आभार आपका। तो ये थे सुरेश भाई झोटाना से, आपने भी बहुत अच्छी बात बताई कि देखे आप ऐसे जल्दी उठते हैं और पंछी पक्षियों के लिए इतना काम करते, मोहल्ले को साफ करना, झाड़ू लगाना इतना काम हो जाता है, और फिर 10 मिनट आप एक ही मुद्रा में बैठते हैं पलाटी मार करके। ये भी बहुत अच्छी बात है क्योंकि आजकल तो नीचे बैठकर पलाटी मारना भी बहुत मुश्किल होता जा रहा है लोगों के लिए, तो ये भी एक बहुत अच्छे एक्सरसाइज है। तो देखिए हम भले काम करते हैं, सब करते हैं, लेकिन फिर भी योग को अपने जीवन में शामिल करना बहुत ज़रूरी है अगर हम स्वस्थ रहना चाहते हैं तो। और समय देखिए किसी के पास नहीं होता है, समय को निकाला जाता है। आप हो, हम है, हम यही कहते हैं क्या करें समय नहीं मिलता है, लेकिन जैसे आप 6 बजे

0: सोचते हो तो आप 5:30 उठिए, 5:30 उठते हैं तो 5 बजे उठिए, अपने उठने के थोड़े से टाइम टेबल को चेंज करिए, लेकिन योग को जीवन में शामिल करिए, ठीक है। वो कहते हैं ना, पहला सुख निरोगी काया। तो शरीर स्वस्थ है तो सब कुछ अच्छा लगेगा। देखिए, घर में 56 प्रकार की मिठाइयाँ बनी है या बहुत सारी वैरायटी खाना बना है, लेकिन हमारा स्वास्थ्य अच्छा नहीं है तो हमें वो रस नहीं देगा। अरुचि रहेगी, नहीं नहीं भले बने हो भाई, आप खाओ, मेरी तबीयत ठीक नहीं, मुझे कुछ भी नहीं खाना है ना। तो पहला सुख निरोगी काया है। हेलो,
1: नमस्ते, ओम शांति।
0: नमस्ते सगुना बेन, कैसे हैं आप?
1: बहुत अच्छे हैं
0: जी। तो आज का टंग ट्विस्टर भी सुना सकते हैं, आज के विषय में भी आप अपनी बात रख सकते हैं।
1: विषय तो योग का ही है।
0: हाँ जी,
1: हाँ, तो योग तो करते हम, देखो पहले कम करते थे योग, पहले करते थे लेकिन कम करते थे, तो थोड़ा टेंशन आ जाती थी, तो दिमाग काम नहीं करता था, ऐसे हो जाता था। और जब योग बढ़ाया है अभी मैंने, तो बहुत आत्मा को शांति मिलती है, नेगेटिविटी आती नहीं है, और पूरा दिन मेरा खुशी खुशी से जाता है।
0: जी जी, तो आप योग माने मेडिटेशन करते हैं या एक्सरसाइज करते हैं?
1: नहीं, मेडिटेशन करती हूँ मैं।
0: मेडिटेशन बहुत अच्छी बात है, लेकिन योग और योगा, वो कहते हैं ना कि योग और राजयोग, राजयोग और योग दोनों ही आप करिए तो और भी डबल फायदा मिलेगा। मेडिटेशन तो नो डाउट, मेडिटेशन तो बहुत अच्छा है।
1: तो दीदी क्या है कि अभी देखो ऐसा बताया है कि किसी का ऑपरेशन हुआ है कुछ,
0: हाँ जी हाँ जी,
1: तो उसको नहीं करना है।
0: जी जी जी,
1: देखो मेरा 2 साल हो गया है ऑपरेशन कराया, तो मैं बोला करूँ या नहीं करूँ, दीदी से बात करके फिर मैं करूँ।
0: आपका ऑपरेशन किसका हुआ था?
1: मेरे पेट में थोड़ी गांठ थी, वो गांठ निकाली थी। और
0: तो बिल्कुल हम देखे, अभी नुस्खे में आज नहीं दिया है, कल वापस देंगे। तो नुस्खे में हम फायदा और नुकसान दोनों ही बता रहे हैं कि भाई पेट में उदर यानी कि पेट, ठीक है, पेट में सर्जरी हुई हो, पेट की कई अन्य प्रकार की तकलीफ हो, तो कौन से प्राणायाम, कौन से आसन करना चाहिए, कौन से नहीं करना चाहिए, दोनों ही बता रहे हैं ना। तो आप पेट वाला मत करिए जो पेट को नुकसान पहुंचाए, बाकी हल्का फुल्का दूसरा आप कर सकते हैं। और बाकी ठीक है, आप मेडिटेशन कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है।
1: हाँ, बहुत अच्छा है दीदी, पूरा दिन मेरा इतना खुशी खुशी जाता है। तो मैं तो अभी देखो 3 बजे कभी आँख खुल जाती है तो मैं 3 बजे बैठ जाती हूँ, कभी 2:30 बजे बैठ जाती हूँ, कभी 4 बज जाता है।
0: क्या बात
1: लेकिन
0: है?
1: हाँ, पूरा 1-1.5 घंटा, कभी 2 घंटा भी बैठ जाती हूँ मैं, बहुत अच्छा लगता है मेरे को।
0: वाह वाह, बहुत बढ़िया, हम आपके लिए तालियां बजाना चाहेंगे, बहुत अच्छा है।
1: और टंग ट्विस्टर सुनाऊंगी, देखो कोशिश करती
0: हूँ। हाँ जी हाँ जी, जरूर।
1: हाँ, योगी योग में योग्यता जोड़े, योग्यता से योग का यश मोड़े, जो योगी योग्यता से योग करे वो योग में यश यश जोड़े। योगी योग में योग्यता जोड़े, योग्यता से योग का यश मोड़े, जो योगी योग्यता से योग करे वो योग में यश यश यश जोड़े।
0: क्या बात है, बहुत सुंदर सगुना बहन, बहुत बहुत आभार आपका। हाँ जी, ओम शांति। तो ये थे सगुना बहन झोटाना से, आपने भी देखिए टंग ट्विस्टर बोल के सुनाया है, और आप भी मेडिटेशन करते हैं, आप बता रहे थे 2:30 बजे 3 बजे, जब भी आँख खुलती है आप 1.5-2 घंटा मेडिटेशन करते हैं, भी बहुत अच्छी बात है। मेडिटेशन करना माने ईश्वर से संवाद करना, परमात्मा के अंदर खो जाना, ध्यान करना, बातें करना मीठी मीठी, जैसे हम आपस में बात कर रहे हैं ऐसे ही ईश्वर से बातें करना, बहुत अच्छा। और फिर भी स्वास्थ्य अच्छा रहता है तो बहुत बढ़िया बात है, बाकी हल्का फुल्का जो पेट को तकलीफ न दे ऐसा आप योग या प्राणायाम कर सकते हैं, डॉक्टर की राय ले सकते हैं, ठीक है। हम भी बताते रहते हैं कि किन किन को नहीं करना है, क्योंकि हम जो बताते हैं वो भी डॉक्टर के द्वारा ही दिया गया है, वही मैटर हम अभी आपको सुना रहे हैं, ठीक है, कि भाई कौन से योगा में क्या बेनिफिट है और क्या नुकसान है। तो ये सब आपको बताते रह रहे हैं, इसलिए आप ऐसा मत सोचिए कि ये दीदी अपने मन से सुना रहे हैं, पता नहीं फायदा होगा या नुकसान होगा। हम अपने मन से नहीं सुना रहे हैं, ठीक है, और हम खुद भी कर रहे हैं, आप भी करिएगा। बस डेली अगर करेंगे तो अच्छा रहेगा, 4 दिन 8 दिन करके छोड़ दिया तो उसका वो फायदा नहीं होगा। आप महीना 2 महीना करिए लगातार, फिर आप छोड़ेंगे ना तो ये बॉडी अपने आप मांगेगी एक्सरसाइज के, नहीं नहीं और ये हाथ पैर क्यों झकड़ रहे आज, हाथ पैर क्यों दर्द कर रहे, फिर हम वापिस एक्सरसाइज करेंगे तभी वो हाथ पैर वापिस हमारे खुलेंगे और अच्छे हो जाएंगे। आदत पड़ जाती है ना, फिर बॉडी अपने आप मांगती है कि भाई थोड़ी देर हिला लो मुझे। तो जीवन में मेडिटेशन जरूरी है, जिसको राज योग कहते हैं। तो योग और राजयोग दोनों ही जीवन में सम्मिलित हो जाए तो फिर तो क्या कहना, सोने पर सुहागा, फिर तो चांदी ही चांदी। तो चलिए और भी इस विषय पर बात करेंगे, लेकिन समय हो चला है एक गीत सुनने का। तो एक गीत सुनकर के पुनः लौट रहे हैं, बने रहिएगा कार्यक्रम आशियाना में, सुनते रहो मुस्कुराते रहो रेडियो मधुबन 107.8 FM।
2: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल 0 आ सकता है। मैंने कहा बेटा नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल 0 आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in।

0: अरे रुक रुक।
1: हाँ कहिए।
0: जी कहना सुनना आपकी शादी में कर लेंगे, फिलहाल तो ये बताइए कि आपकी बेल्ट कहाँ है?
1: है तो ये देखिए।
0: ओए कमर की नहीं, मैं सीट बेल्ट की बात कर रहा हूँ। हवलदार कड़क से मजाक मत करो, बहुत महंगा पड़ेगा। हाँ और उससे ज्यादा महंगा पड़ेगा ये बिना सीट बेल्ट की गाड़ी का चलान। ओए जल्दी ऊपर जाने का बहुत शौक है, हैं? ओ छोटू फाइन काटो इनका, 1200 रुपए सीट बेल्ट नहीं पहनने का और 2400 रुपए हवलदार कड़क से मजाक करने का। तो ये है मेरी सड़क, मुझे कहते हैं हवलदार कड़क।
2: कार चलाते समय सीट बेल्ट का उपयोग करना चाहिए, इससे आप बड़ी दुर्घटना से बच सकते हैं। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी, सुनते रहो मुस्कुराते रहो।

0: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आशियाना और आशियाना में खुशनुमा जीवन की बातें हो रही है। न धन की चाह न वैभव का शोर, योग सिखाता है आत्मा का ठोर। सांसों में जब संतुलन आ जाता है, जीवन में सुख का सवेरा छा जाता है। तो बहुत ही सुंदर आज का विषय है। आप जुड़ सकते हैं और अपनी बात को रख सकते हैं कि योग करने के क्या फायदा है और क्यों करना चाहिए, ये बताइए आप। और आज का टंग ट्विस्टर भी बड़ा अच्छा है, जिसको मैं फिर से दोहरा रही हूँ। ध्यान दीजिएगा, योगी योग में योग्यता जोड़े, योग्यता से योग का यश मोड़े। जो योगी योग्यता से योग करे, वो योग में यश ही यश जोड़े। तो ये आज का टंग ट्विस्टर है। 3 बार आपको सुनाना है, अधिक से अधिक, कम से कम आपको 2 बार तो बोलना ही है। और देखे, ये शायरी अपने आप में स्पष्ट है कि क्या फायदा है योग करने का। तो देखिए, क्यों करना चाहिए? इसलिए करना चाहिए कि पहले, अभी थोड़ी देर पहले कोई बता रहा था कि बहन जी पहले कहाँ योग वोग था, कुछ भी नहीं, घर का काम करते वो ही योग हो जाता है। बिल्कुल आपने सही कहा है, घर का काम में सारे ही योगा आ जाता था। पहले देखे, हाथ से झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, पानी भरना, और घर में ही गेहूं पीसना, ये सारी एक्सरसाइज हो जाती थी। पुरुष लोग भी देखे बहुत मेहनत करते थे, खेत को ऊपर जाना और खेतों का काम करना, घर पर भी हाथ बटाना। तो पहले इतना क्रेज नहीं था, पहले बीमारियां नहीं थी। बीमारियां इसलिए नहीं थी कि कड़ी मेहनत थी, पूरे दिन धूप में काम करना, तो वैसे ही विटामिन डी तो आपको मिल ही रहा है, और खेतों के ताज़ा ताज़ा फल सब्जियां खाना, कैल्शियम भी मिल जाता है उसमें, और शुद्ध चीज़ें खा रहे तो वो फायदा करते थे। लेकिन समय के साथ परिवर्तन आया है ना, हर चीज़ इलेक्ट्रॉनिक हो गई, अभी तो इलेक्ट्रिक हो गई। पहले तो आटा भी हाथ से पीसा जाता था, तो वो आटा फायदा करता है, हाथ से पीसा हुआ। आज तो हम चक्की पर पिसवाते हैं, तो वो भी इलेक्ट्रिक के द्वारा हो गया ना, पीसी हुई कोई भी चीज़। देखिए, पहले चटनी हम खरल में बांटते थे, आज मिक्सर में पीसते हैं, तो तत्व तो खत्म हो ही जाते हैं, थोड़े बहुत बचते, आधे ऊपर खत्म हो जाते हैं, तो 100% फायदा नहीं करता है। हेलो
1: जी, नमस्कार।
0: हाँ जी नमस्कार, मदन भाई, क्या बात है, आज समय के अनुसार फोन किया आपने।
1: अभी देखा घड़ियाल में, 10:55 हो रही है, कि 5 मिनट अभी भी देर है, फिर बाद में तो बंद हो जाता है। और कैसे दीदी जी?
0: जी हम अच्छे हैं, आप सुनाइए।
1: बढ़िया, आज तो मौसम बड़ा ठंडी हवा है, कहीं आसपास में बारिश गिर गई है, ये अच्छी हवा है
0: जी।
1: और क्या बनाया है?
0: बनाएंगे बाद में, बनाएंगे बाद में, अभी खुशनुमा जीवन की बातें हो रही है। अभी योगा डे आ रहा है 21 जून, और योग का तो देखिए जीवन पर प्रभाव पड़ता ही है, तो आप क्या कहेंगे, किस तरह पड़ता है? एक दिन योग करके चले रुक जाएंगे, या रोज इसको हम रूटीन बनाएंगे, अपने जीवन में शामिल करेंगे, क्या कहेंगे?
1: मैं तो रोज ही करूंगा योग।
0: अच्छा, आपने शुरू किया क्या, करते हैं आप?
1: मैं करता हूँ ना, सुबह उठ के करता हूँ, मगर फिर कभी ऐसा आस पास में वो होता है तो थोड़ा कम कर देता हूँ। क्या हुआ तो कोई भी जगते आना तो
0: जी जी,
1: योग तो रोज ही करने।
0: अच्छा, क्या फायदा मिल रहा है आपको
1: उससे? मतलब एकदम शांत रहते हैं, अच्छे विचार रहते हैं, और सभी की तरह बहुत अच्छे विचार के, अपने आंखों से, अच्छी आंखों से देखना, शांत रहना, और बस किसी को भी कोई किस्सा कर रहा था उसकी तरफ भी, ऐसे नहीं तो खुलत कर रहा, क्यों कर रहा, उसके सामने भी ऐसे शांत होके ही देखने का है कि भाई ये भी शांत हो जाओ, ये भी योग करे, ऐसा हमको महसूस होता है इसमें, और बहुत अच्छा लगता है।
0: जी जी, तो आप मेडिटेशन करते हैं?
1: हाँ करता हूँ ना।
0: हाँ जी, और एक्सरसाइज भी करते हैं?
1: वो नहीं करता हूँ।
0: मैं समझ गई, आप बोल रहे थे ना उससे मैं समझ गई कि आप मेडिटेशन करते हैं, योगा जो शारीरिक व्यायाम है वो नहीं करते आप, है ना?
1: नहीं करते, नहीं करते
0: जी। तो कहते ना कि राजयोग के साथ साथ अगर हम शारीरिक व्यायाम भी शुरू करते हैं, ये वाला योग भी करते हैं, तो मन तो हमारा मेडिटेशन के द्वारा हेल्दी रहता ही है, तन भी रहेगा।
1: जी जी जी। और जैसे देखिए समय नहीं, बाकी मैं हर चीज करने के लिए मुझे सर्विस का भी बहुत शौक है, क्या करूँ, मगर ये सर्विस भी करता हूँ मैं, और सभी आते हैं तो मैं रास्ते में चलते हुए शाम को 5 बजे छूटता हूँ तो भी बातचीत करता रहता हूँ सभी से, और अच्छा लगता है, लोग बहुत खुश रहते हैं। तो आपको नमस्कार करता हूँ और थोड़ा
0: अच्छा टंग ट्विस्टर सुनाएंगे, टंग ट्विस्टर
1: क्या कहता है?
0: अच्छा हाँ, टंग ट्विस्टर आपको बोल के सुनाती हूँ। योगी योग में योग्यता जोड़े, योग्यता से योग का यश मोड़े। जो योगी योग्यता से योग करे वो योग में यश ही यश जोड़े। क्या कहेंगे, बोल के सुनाएंगे? चलिए कोई बात नहीं, आप कंपनी में है चलेगा।
1: जी जी जी
0: हाँ जी जी, बहुत बहुत आभार। तो ये थे मदन भाई मेहसाना से। देखिए कंपनी में काम कर रहे फिर भी जुड़े हैं, तो आप क्या सोच रहे हैं? मेरे को लगता है आप लोग नहीं करते हैं मेडिटेशन। कोई बात नहीं, फिर भी जुड़िएगा भाई। नहीं करते हैं तो क्या आप नहीं जुड़ेंगे? जुड़ करके आप बात रख सकते हैं अपनी, आज का टंग ट्विस्टर भी बोल के सुना सकते हैं। तो आपको बता रहे थे कि देखिए जो हम प्राणायाम करते हैं जो भी मुद्रा में, तो कहूँगी 20 मिनट खुद के लिए दीजिएगा 24 घंटे में से। पूरे दिन हम घर परिवार के लिए लगे रहते हैं, है ना, लेकिन स्वयं के लिए हम समय नहीं निकाल पाते हैं। और 20 मिनट कोई नहीं निकाल सके ऐसा कभी नहीं हो सकता है, इसलिए 20 मिनट स्वयं को दीजिए। पूरे दिन में समय नहीं मिलता है तो आप सुबह ही सुबह कर लीजिए, सुबह वैसे ही अच्छे रहते हैं। चलिए हमारे श्रोता बंधु जुड़ना चाहेंगे। हेलो,
2: जय माता दी, जय श्री हरि।
0: जय श्री हरि, नमस्ते, स्वागत आपका रेडियो मधुबन में। कैसे हैं आप?
2: नमस्ते, रेडियो मधुबन सुनने सुनाने वाले सभी भक्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जय माता दी, जय श्री हरि
0: जी।
2: और आप सभी बहुत खैरियत से होंगे?
0: बिल्कुल हम अच्छे हैं।
2: टॉपिक क्या है
0: आज का? टॉपिक योग। देखिए योगा डे आ रहा है 21 जून, तो हमारे जीवन में योग क्या मायने रखता है, हमें भी इसको अपने जीवन में शामिल करना चाहिए या जैसे जी रहे वैसे ही जिएंगे, क्या कहेंगे आप?
2: देखिए योग दो तरह के होते हैं, एक तो मतलब शरीर को और मन को स्वस्थ रखने के लिए, एक शरीर को तन को और एक मन को स्वस्थ रखने के लिए।
0: जी,
2: तो तन को स्वस्थ रखने के लिए रोज योगा करना जरूरी है, क्योंकि योगा करने से मतलब आपके पास बीमारी कोई नहीं आएगी, बीमारियों से आप मतलब छुट्टी कर दोगे, तो इसलिए योग जरूरी है जिंदगी में। भले मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आप 2 घंटे निकालिए, 3 घंटे कीजिए, वो नहीं बोल रहा हूँ, भले आप अच्छी तरीके से 15-20 मिनट भी कर लो, मगर वो नियम होना चाहिए, करना है तो करना ही है।
0: जी,
2: कि आप 2 घंटे कर रहे हो और आज किया और 2 दिन किया और आज के नहीं करना, तो वो फिर मजा नहीं आता है। आप 15-20 मिनट आधा घंटा करो, मगर वो कंटिन्यू रखो।
0: जी बिल्कुल,
2: तो तन को फायदा मिलेगा, शरीर को फायदा मिलेगा, और दूसरी बात मन को स्वस्थ रखने के लिए राजयोग भी करना जरूरी है। अगर तन राजयोग करोगे तो मन को स्वस्थ रख पाओगे, और तन और मन दोनों स्वस्थ रहेंगे तो आदमी मतलब एकदम स्वस्थ रहेगा। आदमी को आंतरिक और विषय दोनों से स्वस्थ रहना
0: जी, हाँ जी। और आज का, हाँ जी,
2: हाँ आज का टंग ट्विस्टर,
0: हाँ जी
2: टंग ट्विस्टर के नाम।
0: अच्छा चलिए ठीक है, आप करते हैं एक्सरसाइज? करते हैं आप?
2: हाँ चालू ही है ना।
0: चलिए बहुत बढ़िया, डेली करते हैं?
2: हाँ डेली के रूटीन में चालू ही है
0: जी।
2: आपको मैं ज्यादा तो नहीं करता हूँ, क्योंकि राजयोग मेरे जीवन में पारी है वो घंटा डेढ़ घंटा हो जाता है
0: जी,
2: मगर ये योगा 30-40 मिनट हो जाता है।
0: अच्छा,
2: सूर्य नमस्कार हो गया सब कुछ।
0: अरे बाप, 30-40 मिनट तो बहुत हो गए, बहुत हो गए।
2: हाँ,
0: बहुत अच्छी बात है।
2: बाकी राजयोग
0: बहुत बढ़िया, खुद के लिए समय निकाल करके 40 मिनट दे रहे हैं खुद को, तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप, और राजयोग भी कर रहे हैं साथ ही साथ, बहुत बढ़िया।
2: हाँ, और फिर उसके बाद में तो अपना दिनचर्या तो आपको पता ही है, भक्ति वगैरह सब कुछ चालू ही है।
0: जी जी,
2: सुबह 4-4:30 बजे उठ जाते
0: हैं। जी, बहुत बढ़िया,
2: रूटीन चालू होता है।
0: आधी बीमारियां तो अगर हम जल्दी उठ जाते हैं तो आधी बीमारियां तो वैसे ही खत्म हो जाती है।
2: देखिए, मैं ये कहना चाहूंगा कि आपको राजयोग या योगा करना है तो सूर्य उदय होने से पहले ये सब कुछ करना चाहिए।
0: जी,
2: आप आपने कल प्रश्न भी पूछा था, तो वो सांस वाला वो पहले पूछी थी, तो सांस वाला योगा भी सूर्य उदय से आप पहले करोगे ना तो शुद्ध वायु मिलेगी
0: जी। उस समय पेड़ पौधे ऑक्सीजन छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, तो शुद्ध हवा।
2: और दूसरी बात,

0: होती है कि सुबह सुबह कोई व्हीकल नहीं चलते है ना
1: जी,
0: तो प्रदूषण नहीं होता है
1: जी,
0: तो उसकी वजह से मतलब शुद्ध वायु अपने शरीर के अंदर प्रवेश करेगी तो अपना शरीर वैसे भी स्वस्थ रहेगा
1: जी।
0: बस मैं तो यही कहना चाहता हूँ, जो भी करना है योगा करो या राजयोग करो, वो सुबह सूर्य उदय होने से पहले करो
1: जी। हाँ जी,
0: जय माता जी।
1: हाँ जी, जय श्री हरि, बहुत बहुत आभार। तो ये थे सुरेश भाई पिंडवाड़ा से, आपने भी अपनी बात को रखे और स्वयं के लिए आप 40 मिनट निकालते हैं, साथ ही साथ एक डेढ़ घंटा राजयोग भी करते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। तो मैं तो हर एक अपने सुनने वाले सभी भाई बहनों को कहना चाहूँगी कि जीवन में एक्सरसाइज को, व्यायाम को ज़रूर शामिल करिए, ताकि आजकल तो क्या है, बीमारियाँ बढ़ती जा रही है और देख रहे हैं कितनी दवाइयाँ जाते हैं हॉस्पिटल, तो कितनी सारी दवाइयाँ दे देते हैं, तो इससे अच्छा है कि योग के द्वारा हम निरोगी बनने की कोशिश करें, फिर थोड़ा बहुत कुछ होता है तो दवाइयाँ लीजिए, ठीक है। बाकी योग, जिसको व्यायाम भी कहते हैं, एक्सरसाइज कहते हैं, उसको आप अपने जीवन में शामिल करिए और अपने आप को हमेशा प्रसन्नचित रखिए। आइए अब आज के टंग ट्विस्टर की तरफ बढ़ते हैं। आज का टंग ट्विस्टर है, योग में योग्यता जोड़े, योगी योग में योग्यता जोड़े, योग्यता से योग का यश मोड़े, जो योगी योग्यता से योग करे वो योग में यश ही यश जोड़े। तो ये हुआ आज का टंग ट्विस्टर, आपको कम से कम दो बार, अधिक से अधिक तीन बार बोल के सुनाना है। अभी यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे, उसके बाद पुनः लौटेंगे, तो बने रहिएगा कार्यक्रम आशियाना में, सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 FM।

0: ये हो गई वेजिटेबल फिंगर की सामग्री, जिसको मैं फिर से दोहरा रही हूँ। 4-5 स्लाइस ब्रेड की लीजिएगा। गाजर, मटर, मशरूम, शिमला मिर्च, पत्ता गोभी, भुट्टे के दाने, ये सब मिलाकर ले लीजिए 2.5 कप। अब आप लीजिए 2 छोटे चम्मच कॉर्नफ्लोर, आधा, हाँ, नमक आप अपने स्वाद के अनुसार लीजिए। तलने के लिए तेल लेना है और 1/4 छोटा चम्मच लेना है सोडियम ग्लूकामेट। अब बनाने का तरीका भी आपको साथ ही साथ सिखा रही हूँ। एक बर्तन में आप कॉर्न फ्लोर और 2 बड़े चम्मच पानी डाल करके घोल बनाइए इसका। अब इसमें ये सब्जियाँ आपको धुलाई करके कटी हुई 2.5 कप ली है, ये सब्जियाँ, नमक, अजीनोमोटो, ये सब डाल करके अच्छी तरह मिलाइएगा। ब्रेड के स्लाइस पर तैयार मिश्रण फैलाइएगा। गरम तेल में दोनों तरफ हल्का सुनहरा होने तक सेक लीजिए। फिर इसे तेज छुरी या पिज्जा कटर से लंबे टुकड़ों में काट लीजिए और तैयार स्वादिष्ट वेजिटेबल फिंगर को सॉस या चटनी के साथ आप सर्व कर सकते हैं। तो इस तरह वेजिटेबल फिंगर बनाया जाता है, जिसको मैं विधि फिर से दोहरा रही हूँ। कैसे आप वेजिटेबल फिंगर बनाएंगे, ध्यान से सुनिएगा। ये चीज़ें भी बच्चे बहुत पसंद करते हैं और रोज़ नहीं बनानी है, कभी कभार, ठीक है। तो एक बर्तन में कॉर्न फ्लोर और 2 बड़े चम्मच पानी डालकर इसका घोल तैयार करिए। इसमें कटी हुई सब्जियाँ, नमक, अजीनोमोटो डाल करके अच्छी तरह मिला दीजिए। अब ब्रेड के स्लाइस पर तैयार मिश्रण को फैलाइए। गरम तेल में दोनों तरफ हल्का सुनहरा होने तक सेक लीजिए। फिर इसे तेज छुरी या पिज्जा कटर से लंबे टुकड़ों में काटिए। तैयार स्वादिष्ट वेजिटेबल फिंगर को सॉस या चटनी के साथ आप सर्व कर सकते हैं। तो इस तरह वेजिटेबल फिंगर बनाया जाता है। ऐसी चीज़ें बच्चे बहुत पसंद करते हैं, तो भाई बच्चों की पसंद भी रखनी चाहिए ना, उनकी पसंद की भी चीज़ें कभी कभी बनानी चाहिए। तो इस तरह वेजिटेबल फिंगर बन चुकी है। आप अपने इष्ट देव को भोग लगा करके ही स्वीकार करिएगा और सुनिएगा फिर से एक गीत। तो सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 FM।
1: जानते हैं, कुवैत जैसे देश की जीडीपी से करीब 3 गुना पैसा तो हमने सिर्फ अपने देश के छोटे उद्यमियों को दिया है, वो भी गारंटी फ्री 40 लाख करोड़ से भी अधिक के मुद्रा लोन से।
2: करोड़ों छोटे उद्यमियों को मुद्रा योजना से लोन मिला, उन्हें आज महसूस होता है कि डेमोक्रेसी कैन डिलीवर।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

0: प्यारे श्रोता बंधुओं, समय हो चला है आप सभी से अनुमति लेने का, फिर भी एक बहन ने सुनाया है टंग ट्विस्टर, तो उनकी आवाज भी सुना देते हैं।
1: थोड़ी गलती हो गई, सुनना।
0: चलिए।
2: योगी योग्य में
0: बोलिए बोलिए।
2: योग्यता जोड़े, योग्यता से योग का यश मोड़े, जो योगी योग्यता से योग करे वो योग में यस यस यस जोड़े, यस जोड़े।
0: चलिए, अच्छी कोशिश की है लेकिन पूरा नहीं सुना पा रहे हैं, जाने दीजिए। और आज का कार्यक्रम आपने सुना ही है, काफ़ी अच्छा रहा है, सुंदर सा जो विचार दिया है उस पर जरूर गौर करेंगे, नुस्खे भी बहुत ही अच्छे दिए हैं। अगर नक्सीर चलती है गर्मी के मौसम में तो किस तरह आप अपना सावधानी बरतेंगे, खुशनुमा जीवन की बातें भी बहुत ही अच्छी हुई, और रेसिपी में जो वेजिटेबल फिंगर आपको बनाना सिखाया है ज़रूर बना करके खाइएगा। और आज का टंग ट्विस्टर बड़ा अच्छा था, जिसको मैं बोल के सुनाना चाहूँगी। योगी योग में योग्यता जोड़े, योग्यता से योग का यश मोड़े, जो योगी योग्यता से योग करे वो योग में यश ही यश जोड़े। योगी योग में योग्यता जोड़े, योग्यता से योग का यश मोड़े, जो योगी योग्यता से योग करे वो योग में यश ही यश जोड़े। योगी योग में योग्यता जोड़े, योग्यता से योग का यश मोड़े, जो योगी योग्यता से योग करे वो योग में यश ही यश जोड़े। तो हम अपने लिए भी तालियां बजाना चाहेंगे, और आप सभी ने भी बहुत अच्छी कोशिश की है। ज़्यादा हमारे श्रोता बंधु जुड़े नहीं हैं, सुरेश भाई जोटाना से, सगुना बहन जोटाना से, आप दोनों ने सुनाया है। बाकी मदन भाई मेहसाना से जुड़े लेकिन उन्होंने भी नहीं सुनाया, और सुरेश भाई पिंडवाड़ा से आपने भी नहीं सुनाया, लेकिन आप चारों ने विषय में भाग लिया और खुशनुमा जीवन में अपनी बात को रखी, इसके लिए ढेर सारी तारीफ। आज का मीठा मोती भी सुनाना चाहूंगी। जितनी हम दूसरों की कमी देखेंगे और आलोचना करेंगे उतनी ही हमारे जीवन से शांति समाप्त होती जाएगी। अब मैं आपको प्यारा सा भजन सुनाऊंगी, आप लेंगे भजन का आनंद और मुझे देंगे अनुमति। कल फिर मिलेंगे, कल क्या है, हाँ आप सभी जानते हैं कल शनिवार है, अंताक्षरी कार्यक्रम रहेगा, तो कल विवाह के गीत और राती जागरण के, ठीक है, क्योंकि जेठ महीना चल रहा है, रात्रि जागरण भी चल रहे, वैसाख जेठ में रात्रि जागरण चलता है, तो रात्रि जागरण और विवाह के गीत सम्मिलित मिक्स होंगे, ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़ करके भाग जरूर लीजिएगा। और अभी के लिए आप सभी को राम राम सा, जय श्री कृष्ण सा, गणी खम्मा सा, सुनते रहो मुस्कुराते रहो रेडियो मधुबन 107.8 FM।

0: अरे क्या बात है, आज आप जल्दी आ गए।
1: हाँ विमला,
2: 5 YouTube वीडियो को लाइक करके 5 लोगों को स्क्रीनशॉट भेजने से पर वीडियो 500 रुपए अर्न करे।
3: क्या बात कर रहा है?
2: हाँ देख,
3: तुझे क्या लगता है ये जेन्यून है?
2: अरे हमें कहाँ पैसे देने हैं, ट्राई करके देखते हैं ना। ला देख। अरे हाँ यार, मुझे 500 रुपए मिल गए, इट मींस ये जेन्यून है।
3: अरे अब तो मुझे भी ये करना है।
2: 20,000 रुपए में प्राइम मेंबरशिप लेने से 50,000 तक अर्न कर सकते हैं। क्या बात है यार।
4: अरे ठहरो, ये क्या करने जा रहे हो?
2: ऑनलाइन टास्क से पैसे कमा रहे हैं।
4: अननोन लिंक पर क्लिक करके पैसे देकर ऐसा नहीं करना चाहिए। SMS, WhatsApp, ईमेल या टेलीग्राम पर आने वाले किसी भी अननोन लिंक को क्लिक ना करें। ऑनलाइन टास्क के जरिए ज्यादा पैसा कमाने के लालच देने वाले विज्ञापनों से दूर रहें। आपकी सुरक्षा आपके हाथ में।
5: नमस्कार दोस्तों, रेडियो मधुबन 107.8 FM पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जीना इसी का नाम है कार्यक्रम लेकर के आप सभी के बीच में आते हैं। हर बार एक नए अनुभव और एक नए व्यक्तित्व से मिलते हैं और जानने की कोशिश करते हैं आध्यात्मिक पथ पर चलते हुए जीवन को कब और कैसे उन्होंने महसूस किया कि यही जीना है और इसे ही कहते हैं जीना इसी का नाम है। चलिए दोस्तों, अपने जीवन की कहानी से हम सभी को एक उदाहरण देने के लिए हमारे बीच में आ पहुंचे हैं श्रीकांत भाई जी। आप शांतिवन ब्रह्म कुमारी की हेडक्वार्टर्स के परिसर में कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट की स्टोर संभालने की निमित्त हैं। दोस्तों, श्रीकांत भाई जी 1996 में सबसे पहली बार ब्रह्म कुमारी के संपर्क में आए हैं और उसके बाद की जो जर्नी हुई है उनकी, उन्हीं की जुबानी हम सुनेंगे। सबसे पहले स्वागत करते हैं श्रीकांत भाई जी को आज के इस कार्यक्रम जीना इसे का नाम है और रेडियो मधुबन 107.8 FM पर। नमस्कार भाई जी।
6: नमस्कार।
5: बहुत बहुत खुशी हो रही है एक ऐसी योगी जीवन दो दशकों से जीने वाले एक ऐसे अनुभवी व्यक्ति से आज रूबरू होना। हर किसी की तरह एक प्रोफेशन को संभालते हुए समर्पित जीवन जीना और एक योगी जीवन जीना और उसको जीते हुए कार्य को करना, कैसे ये सभी चीज़ें समन्वय है, वो सभी चीज़ें तो हम आपसे बाद में जानते हैं, लेकिन आपसे सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं कि आपका जो बचपन, आप कहाँ जन्मे और आपकी घर की माहौल कैसी थी, आपके परिवार के बारे में। आप धार्मिक परिवार से हैं और आपके भाई बहनें आध्यात्मिकता के प्रति कितना रुचि रखते थे, ये सारी कहानियां हम सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे।
6: मेरा जन्म पटना के कनेक्शन में अरवल डिस्ट्रिक्ट में जो है अरवल डिस्ट्रिक्ट में हुआ था और अरवल डिस्ट्रिक्ट में जन्म होने के बाद एक छोटे से गांव में हमारा जन्म हुआ और बहुत ही साधारण परिवार में। हमारे माता पिता किसान थे और 4 भाई और 2 बहनें थे। लगभग 4-5 वर्ष की आयु में ही मुझे घर पे जब बच्चों के साथ खेलता रहता था तो मुझे ये एहसास होता था कि ये मेरा घर नहीं है, मेरा घर कहीं और है। मैं अपनी बहन को, बड़ी बहन को भी कहता था कि मेरा घर कहीं और है, तो वो बार बार कहती थी नहीं यही तुम्हारा घर है। तो हमने कहा कि नहीं, मेरा घर बड़ा है और कहीं और है। तो
5: ये अच्छा, मतलब ये क्या उम्र रही होगी जब आपको ये भासना हुई?
6: 5-6 वर्ष।
5: अच्छा, 5 साल की उम्र में ही आपको ये लगता था कि मेरा घर
6: कहीं और है
5: जी।
6: और मैं गाँव के बच्चों में मैं इंटरेस्ट नहीं लेता था और ना ही किसी परिवार में, बुद्धि कहीं और लगी रहती थी कि कहीं और जाना है। खेलता था लेकिन मन कहीं और था। कुछ समय के बाद हमारे अंकल जो जमशेदपुर में, अभी जो वर्तमान में झारखंड में है, तो जमशेदपुर में टाटा कंपनी में इम्प्लॉय थे, तो वो मुझे पढ़ाई के लिए बोले चलो हमारे साथ, तो वो फिर अपने साथ लेकर के जमशेदपुर टाटा नगर चले गए। तो टाटा नगर लगभग 1983 के आसपास में लेके गए थे और फिर 10 साल की पढ़ाई मैंने वहाँ टाटा नगर में ही की। और वहाँ भी बार बार होता था कि कहीं और घर है हमारा, ये बार बार स्मृति आती रहती थी। फिर वहाँ टाटा नगर के बिष्टुपुर एरिया में जब 7th क्लास में मैं पढ़ रहा था DN कमानी स्कूल में, तो वहाँ स्कूल के टीचर थे, जो साइंस के टीचर थे, वो बार बार कहते थे कि आप मेडिटेशन करो और इससे आपको पढ़ाई में अच्छी रुचि मिलेगी। संस्था की ओर वो धीरे धीरे मुझे आकर्षित करते थे। और सेवन्थ क्लास में था और नाइन्थ क्लास में दो क्लास सीनियर हमारे एक भाई थे, त्रिलोकी भाई, वो इस संस्था से अच्छी तरह से जुड़े हुए थे। तो वो भी कहते थे कि भगवान क्या ज्ञान सुनोगे, समझोगे तो मेडिटेशन करोगे तो बुद्धि अच्छी बढ़ेगी, पढ़ाई में अच्छा रिजल्ट होगा। तो जब मैं सेवन्थ क्लास में था तो मेरे मन में संकल्प आया, जब हमारे टीचर बार बार कहते थे तो मैंने भगवान को कहा कि अगर भगवान है इस धरा पे तो मेरी क्लास में फर्स्ट या सेकेंड पोजिशन आनी चाहिए, तो मैं मानूंगा कि भगवान है, नहीं तो मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है भगवान है या नहीं है। तो उस समय मैं फोर्थ या फिफ्थ पोजिशन रहते थे क्लास में, तो उसी वर्ष मुझे क्लास में सेकेंड नंबर आया। तो फिर मुझे समझ में आ गया कि हाँ भगवान है और भगवान सुनते हैं। फिर धीरे धीरे सेंटर पे जो आदित्यपुर टू, जमशेदपुर का आदित्यपुर टू एरिया है जहाँ मैं रहता था, और आदित्यपुर वन में सेंटर था, तो क्लास से छूटने के बाद सीधा आदित्यपुर वन में सेंटर में चला जाता था। वही भाई जो दो क्लास सीनियर थे त्रिलोकी भाई, उनके साथ में चला जाता था। और सेंटर पर भी दीदी बहुत स्नेह प्यार देती थी और टोली फ्रूट प्रतिदिन खिलाती थी, तो बस मुझे ज्ञान तो समझ नहीं होती थी, बस उनका स्नेह प्यार होने के कारण प्रतिदिन मैं जाता था। और ऐसे लगभग 96 तक ये चलता रहा, लगभग 3 साल तक ये चलता रहा, सेवन्थ क्लास में था और 10th क्लास तक। फिर कुछ समय के बाद मुझे वहाँ से पटना आना पड़ा, और फिर पटना में आगे की पढ़ाई के लिए फिर मैं जब यहाँ आया तो यहाँ धीरे धीरे मैं ब्रह्मा कुमारी संस्था को ढूंढने लगा। थोड़ी समझ हुई तो ढूंढ लिया, 3 दिन मुझे पटना में संस्था को ढूंढने में लगा कि संस्था के ब्रांच कहाँ हैं। फिर संस्था के ब्रांच में आया तो फिर एक भाई मुझे बोर्ड देखा, तो एक भाई मुझे अपने स्कूटर पर बैठा के मेन सेंटर में ले गए कि आप वहाँ चलो, वहाँ बहने रहती और एक क्लास मेडिटेशन होता है। फिर धीरे धीरे मैं इस संस्था के संपर्क में आया। फिर 96 में जब पटना आया तो फिर आगे की पढ़ाई मैंने पूरी की, इंटर किया, फिर ग्रेजुएशन किया, फिर प्राइवेट जॉब करना शुरू किया। तो जॉब करते करते एक अच्छी कंपनी में भी जॉब लग गई, तो जो इंडिया का नंबर 2 कंपनी है हिंदुस्तान पेट्रोलियम, उसके रीजनल ऑफिस जो झारखंड और बिहार दोनों को कंट्रोल करते थे, तो वहाँ भी जॉब लगी। उसके बाद धीरे धीरे,
5: भाई जी कहानी आगे बढ़ने से पहले हम ये जानना चाहते हैं, वो बाल्यकाल में आपको सेंटर में जो बहने हैं उनका स्नेह प्यार और वो माहौल आपको अच्छा लगा, आपको कुछ कुछ खाने को मिलता है टोली वगैरह, तो फिर लेकिन वो कौन सा मोमेंट था जब आपको लगा कि ये सत्य ज्ञान है और यही है मैं जिसको तलाश रहा था, और जब आपने अपनी घर परिवार में कहा तो उस समय उनका क्या रिएक्शन था, क्या वो भी इस ज्ञान को समझने लगे हैं?
6: नहीं, मैं जब सेवन्थ क्लास में धीरे धीरे जब ज्ञान में संपर्क में आया तो लगभग 1-2 वर्ष के बाद जब दीदियों के स्नेह प्यार और ज्ञान थोड़ा सुना तो समझ में आया। तो वो कहते थे कि भाई लहसुन प्याज नहीं खाओ, और घर में वो सारा भेज नन भेज सब कुछ चलता था। तो मैं और हम लोग के घर में था कि संडे को ना फिक्स था कि सभी लोग नन भेज खाएंगे, क्योंकि अंकल की छुट्टी होती थी, तो फिर सब लोग हम लोग मैं भी खाता था। तो जब ज्ञान धीरे धीरे संपर्क में थोड़ा थोड़ा बुद्धि में बैठने लगा तो हम अपनी बहन जी को कहें कि भाई वो तो सब खाते हैं तभी क्या करना है, तो बोले सलाद खाते हो तो उसमें प्याज अलग कर देना, टमाटर खा लेना आप। तो मैं ऐसे करता था। फिर हमारी आंटी का ध्यान गया कि भाई ये तो कुछ थोड़ा चेंज हो रहा है इसका, तो फिर वो बाद में बोले कि भाई ये प्याज क्यों नहीं खाता, सलाद में सिर्फ टमाटर ही खाता है। तो फिर ऐसे ऐसे थोड़ी थोड़ी बातें आगे बढ़ती गई। फिर एक दिन सपने में क्या हुआ कि मैं रात को सो रहा था तो मछली ना मुझे जिंदा निगल गई, और मछली जब मुझे जिंदा निगल गई तो मैंने मछली को हाथ जोड़ के प्रार्थना किया कि मुझे छोड़ दो, अब मैं तुझे कभी नहीं खाऊंगा। तो उसके बाद से मैंने खाना छोड़ दिया, मैंने नॉनवेज मुझे और मीट खाता था तो एकदम घृणा हो गई, और मांस मछली सब छोड़ दिया। उसके बाद फिर खाना बिल्कुल बंद कर दिया। फिर मेरी आंटी जो गायत्री परिवार से संपर्क में थी तो उन्होंने भी बताया कि जब आपको अच्छा नहीं लगता तो भले नहीं खाओ, तो सबके लिए फिर नॉन वेज बनता था संडे को, और फिर भेज हमारे लिए आंटी हमारे अलग से बना देती थी। इस प्रकार से धीरे धीरे थोड़ी हमारी आध्यात्मिकता में रुचि बढ़ने लगी। और एक दिन स्कूल से सीधा सेंटर पे जब गया था तो उस दिन दीदी ने मधुबन माउंट आबू का सारा वीडियो दिखा रहे थे कि कैसे माउंट आबू है, कोई प्रोग्राम दिखा रहे थे, मुझे उसमें तो इतनी जानकारी नहीं थी लेकिन अच्छा लग रहा था तो मैं देखता रहा। तो देखते देखते 5 बजे से लेकर रात्रि 8 बजे तक देखता ही रह गया, और स्कूल से घर नहीं गया था, सीधा वहाँ चला गया। तो हमारे अंकल आंटी बहुत परेशान थे, तो जब घर गया तो हमारी आंटी थी, हमारी जो साथ में वाली जो बहन थी, वो चचेरी बहन जो थी, वो बोली कि अगर तुम थोड़ा देर पहले आते तो तुम्हारी जम की पिटाई होती, क्योंकि पापा बहुत नाराज थे। तो मैंने देखा कि आध्यात्मिक मार्ग, और मैं इतना मतलब इनोसेंट था कि दीदी ने जो टोली दिया वो भी घर पे ले जाके बताया कि हाँ ये दीदी ने टोली दिया, और मुझे ये नहीं पता कि ये टोली के माध्यम से मैं पकड़ा जाऊँगा कि मैं सेंटर से ही आया हूँ। और बहुत प्यार से फिर सब लोगों ने हैंडल किया, और बाबा ने एकदम सहज रीति से मक्खन से बाल की तरह एकदम बचा लिया, और चाचा जी चले गए। तब फिर मैं उस समय घर पहुंचा और फिर बिल्कुल नॉर्मल, फिर सबके गुस्से ठंडे हो गए, फिर सब कुछ नॉर्मल हो गया। फिर धीरे धीरे बुद्धि थोड़ा आकर्षित तो होती थी, लेकिन पढ़ाई होने के कारण ज़्यादा सेंटर पर समय नहीं देता था। फिर जब पटना आ गया तो फिर मुझे स्वतंत्र हो गया, क्योंकि किराए के मकान पे लेके पढ़ता था, दो भाई थे साथ में, और तो फिर ज़्यादा बंदिश भी नहीं थी, और अपने हिसाब से फिर माता पिता कहने लगे। तो तीन भाई थे तो फिर मैं सारे बर्तन अलग अपना खरीदा, फिर मैं कहा कि अभी उस प्रकार की भोजन नहीं करना है, जो ईश्वरीय मर्यादाएं हैं उस ढंग से भोजन करना था। दो भाई अलग भोजन बनाते थे और मैं अपना भोजन अलग बनाता था। इस प्रकार से पढ़ाई होती थी, फिर पढ़ाई होने के बाद फिर जॉब हुई, जॉब में भी इसी तरह से सब आगे की दिनचर्या चलती रही।
5: तो जब आप अपने लौकिक माता पिता से मिलने के लिए आए हैं जमशेदपुर से, पढ़ाई के बाद वापस उनके साथ रहे, तो फिर वो लोगों को ये ज्ञान समझ में आया आप कहाँ जा रहे, क्यों जा रहे हैं, फिर वो आपको स्वीकृति दी?
6: नहीं, शुरू में जब वो हम माता पिता संपर्क में आए तो माता पिता को मैंने बताया कि ऐसे ऐसे है, तो बिल्कुल नाराज थे। माँ तो हर प्रकार से बच्चे के सपोर्ट में खड़ी रहती है, लेकिन पिताजी बिल्कुल नाराज थे। तो पिताजी नाराज थे, और नाराज इतने थे कि वो जो पढ़ने के लिए जो स्कूल कॉलेज की जो फी थी, उन्होंने बोला कि भाई हम नहीं देंगे आपको। फिर जब मैं घर पे गया, फिर पिताजी को मिला, तो उन्होंने एक कंडीशन रखा कि आप तो या तो आप संस्था छोड़ दो, और या तो फिर आप अपनी पढ़ाई खुद करो, हम आप पैसा नहीं देंगे। तो फिर हमने कहा कि ठीक है, फिर हमने कहा कि उनको तो हमने बोल दिया कि ठीक है संस्था में नहीं जाएंगे, लेकिन रुचि इतनी गहरी हो चुकी थी कि छोड़ना हमारे लिए मुमकिन नहीं था। और सब बातें देखा मैंने कि उसके फ़ायदे क्या होते हैं। फिर उन्होंने पैसा देना जो स्कूल की कॉलेज की जो फीस थी उन्होंने बंद कर दिया बोले, तो मैंने कहा ठीक है ट्यूशन पढ़ा करके हम कवर कर लेंगे। तो काफ़ी मेहनत हुई, बहुत स्ट्रगल हुआ, फिर जा करके कवर किया। तो धीरे धीरे उनकी रुचि, फिर एक जब हिंदुस्तान पेट्रोलियम में एक अच्छे प्राइवेट में ही जॉब लग गई, तो फिर उनको थोड़ा धीरे धीरे स्नेह प्यार हुआ।
5: श्रीकांत भाई, ये बताइए कि वो कौन सी बात थी जो आपको इतना आकर्षित कर दिया इस राजयोग के ज्ञान में? आपको इतना तक भी कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा, आपने अपना खान पान छोड़ दिया, बदल दिया, और अपना खुद का खाना खुद बनाने लगे, और माता पिता के साथ भी आपने ये कि मैं अपना पैरों पे खड़ा रहूँगा, लेकिन मैं इस ज्ञान को, आध्यात्मिक जीवन को नहीं छोड़ूंगा।
6: मुझे ये खुद नहीं समझ में आता था कि मैं ऑटोमेटिक खींचा चला जाता, जैसे कोई चिंबक है वो खींचा जा रहा है, उस प्रकार से मैं खींचा चला गया, और मुझे एक सुकून मिला। जो मेरा बहुत बचपन का क्वेश्चन था कि ये घर मेरा नहीं है, तो वो सेंटर पे जाने के बाद मुझे एहसास हुआ कि ये मेरा अपना घर है, और धीरे धीरे मुझे आध्यात्मिकता की ओर खींचा होता गया, और धीरे धीरे इतना खींचा हो गया कि जब मैं घर पे गया तो एक रात्रि ठंड के मौसम में, वहाँ व्यवस्था सारी नहीं थी तो बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही थी, और रात को 12-1 बजे के आसपास स्नान करना था, तो मैं स्नान करने गया तो बाबू जी कहे कि स्नान करने जा रहे हो ना, बीमार पड़ोगे तो तुम्हारा ट्रीटमेंट नहीं कराएंगे। और फिर रात को स्नान किया जो हमारी मर्यादाएं हैं, तो उसके बाद दूसरे दिन हमारे बाबूजी दो रजाई लेकर के वो रात को सोए थे, लेकिन सुबह उठते ही उनको ठंडी लग गई और हमें कुछ नहीं हुआ। तब उन्होंने समझ में आ गया उनको कि लड़का सही रास्ते पे चल रहा है, और मैं इतना दृढ़ था कि हम किसी व्यक्ति के या किसी संस्था के जो उनके निमित्त है उनके आधार से नहीं चल रहा हूँ, मैं भगवान के डायरेक्शन को फॉलो कर रहा हूँ, तो मुझे कुछ भी सहन करना पड़ेगा करेंगे। और उसका सबूत पिताजी को और घर परिवार को धीरे धीरे मिलने लगा। एक दिन हैंडपम्प में भी स्नान कर रहा था तो पहले पानी उसमें चला गया था, बहुत पानी का लेवल नीचे चला गया था, जब मैं घर गया तो पानी का लेवल नॉर्मल हो गया, तो पिताजी को भी एहसास होने लगा कि ये कुछ अलग है और ये गलत नहीं है, ये सही है। फिर गाँव घर के लोग भी साधु साधु कर करके संबोधित करने लगे कि साधु जी आए, महात्मा जी आए। फिर उनको एक दो चीज़ ऐसे एहसास हुए कि इनको ठंड का असर इसको नहीं होता, ये नियम पे चलता है तो चलता है। और दूसरा घर के जो पानी के लेवल जब ऊपर आ गए नॉर्मल, तो उनको एहसास हो गया कि लड़का कुछ अलग है। फिर माँ माँ का तो सपोर्ट होता ही था। और फिर
5: तो फिर जब आपने समर्पित जीवन जीने का निर्णय लिया माउंट आबू आने का, तो वो कैसा हुआ?
6: उस समय जब मैं पटना में प्राइवेट में जॉब करता था, तो कंपनी इंडिया की नंबर टू थी, तो हर प्रकार की उसमें सुविधाएं थी और सब प्रकार की बातें थी, लेकिन वो हमारे नियम को, संस्था को फॉलो नहीं करते थे। उसमें एक ऑफिसर थे, उनकी युगल जो थी वो संस्था से अच्छी तरह से कनेक्टेड थी, और उन्हीं के माध्यम से मुझे ये नौकरी मिला था। तो उन्होंने ऑफर किया था कि आप आ सकते हो, तो जब मैं गया सारी बातें हुई। फिर एक डेढ़ साल नौकरी करता था, नौकरी का टाइम सुबह 9 बजे से 6:45 बजे तक था, और 9:45 बजे से होते होते और रात को कभी कभी 10-11 बज जाता था, और ये रेगुलर धीरे धीरे होने लगा। और उनकी हर सप्ताह में मीटिंग होती थी और होटलों में जाना होता था। होटलों में फिर एक दिन शराब और ये ड्राई फ्रूट की सारे कार्टून सब बहुत सारे थे, तो उन्होंने बोला कि आप हेल्प करो। तो मैं समझा कुछ खाने पीने की चीज़ें, तो हाथ लगाया मैंने। बाद में मालूम पड़ा कि वो सब कार्टून में शराब की बोतलें हैं। तो उसी दिन से संकल्प चल गया कि ये नौकरी अच्छी चीज़ नहीं है, ये गंदी नौकरी है। और सभी लोग पार्टी पिकनिक करते रहते थे, तो मैं कुछ भी नहीं कर रहा था। तो हमारे जब रात को 11 बज गए, तो उसमें से एक ऑफिसर बोला कि ये लड़का भूखा है और ये कुछ भी नहीं लेता है, इसको घर जाने दो, नहीं तो इसकी ना मतलब तकलीफ हम लोग को भारी पड़ेगी। तो उनको भी एहसास हो गया कि इतने सारे वैरायटी, इतनी सारी चीज़ें, लेकिन लड़का पानी तक को भी हाथ नहीं लगाया, तो इनको स्वेच्छा से जाने दो। तो सब सहज रीति से सब फिर घर गया। और फिर हमारी जो संस्था की जो हेड थी दादी कुंजी, उनके आगे रिक्वेस्ट रखा सेवा करना चाहता हूँ। और मन में मुझे बार बार ये ख्याल आता था कि जब मैं ब्रह्मा कुमार, क्योंकि मुझे जब पहली पेमेंट मिली तो मैं अपनी माँ को दिया, तो माँ ने कहा कि तुम्हारे पैसे की मुझे ज़रूरत नहीं है, तुम अपना जीवन अच्छी तरह से जियो। तो हमको लगा कि जब हमारे पैसे की ज़रूरत किसी को नहीं है, तो फिर हम अपना जीवन अच्छी तरह से जिएंगे। और अच्छी तरह से जीने का संकल्प है कि हम 8 घंटा वहाँ नौकरी करने के बाद बाकी समय सेंटरों पे समय सेवा में सहयोग देता था। तो हमने कहा क्यों नहीं पूरा जीवन, जैसे मधुबन वाले पूरा जीवन अपना समय बाबा की सेवा में देते, उसी प्रकार से हम भी अपना जीवन बाबा के घर में दें। तो इस प्रकार से फिर मधुबन कुंज दादी से परमिशन लेकर के फिर माउंट आबू आना हुआ। तो माउंट आबू आने के बाद भी पहले तो 6 मास सेवा में यहाँ रुका, और दादी ने कहा, लेकिन उसी समय अकाउंट के कारोबार के कारण दादी कहे कि वापस पटना चले जाना पड़ेगा। उस समय कंप्यूटराइज अकाउंटिंग शुरू हो गई थी, और चूंकि मैं कंप्यूटर वर्क करता था तो दादी ने कहा कि आप चलो वापस, लेकिन जाने की मेरी दिल एक रति नहीं थी। फिर दादी ने टिकट के पैसे दिए, फिर वहाँ अकाउंट ऑफिस में गोलक भाई जो है ऑडिट करते थे उस समय, उनसे मिलवाए और बोले इनको 7 दिन की ट्रेनिंग देना। तो चूंकि मैं एक्सेल सीट और अकाउंट सब जानता, कंप्यूटर जानता था, तो मेरी 3 दिन में ट्रेनिंग पूरी हुई। लेकिन फिर ड्रामा अनुसार जब मैं वापस नहीं गया, तो फिर दादी वापस जब आई तो बोली आप आए नहीं। तो मैंने कहा दादी हम मुझे यहीं रहने का संकल्प। तो फिर बोली दादी बोली कि मेरी तरफ से छुट्टी है और मैं चाहता हूँ कि बाबा का हर बच्चा सुखी रहे। तो उस दिन की खुशी थी, उसको कहते खुमारी खुशी, मुझे रात को नींद तक नहीं आई थी कि इतना मैं खुश था कि सहज रीति से सारे बंधन छूट गए।
5: तो जब आप पहली बार परमात्मा के घर में आए, माउंट आबू आए थे, तब आपको ये समझ में आया था कि बचपन में जो घर में ढूंढ रहा था यही मेरे
6: जी? बिल्कुल, वो एहसास मुझे हो गया था। वैसे तो 2005 में आने से पहले मैं 2001 में और 2003 में भी आया था, तो कुमारों की भट्टी थी, तो उस समय दादी प्रकाशमणि जी भट्टी की क्लास में जब आई थी, तो उस समय लगभग 3,000 कुमार थे सभा में, और उन्होंने बताया कि ये सभी कुमारों को ताज पहना हो। तो मुन्नी दीदी जी ने कहा कि दादी जी सब सूक्ष्म रूप में पहने हुए, क्योंकि 3,000 ताज उसी समय तुरंत प्रबंध करना मुश्किल काम था, लेकिन दादी का संकल्प था कि नहीं, ये सारे पवित्र कुमार हैं, इनको ताज पहनाओ। तो उसके कारण वो तुरंत 2-3 दिन में प्रबंध करके किया, और फिर इतना दादी का स्नेह प्यार देखा तो फिर लगा कि ऐसा संसार और कहीं नहीं मिलेगा। तो सभी को एक समान प्यार और सभी को एक रीति से, फिर जो दादी का संकल्प था ताज माला तिलक सब वो सब पूरा हुआ। उसके बाद फिर धीरे धीरे संस्था से जुड़ता गया, गहरी रुचि होती गई, और 2005 में तो फिर फाइनली कर लिया कि अभी नौकरी छोड़ करके बाबा के घर में ही सेवा करनी। उसमें तो पैसे है लेकिन सम्मान नहीं है, आपकी जो आध्यात्मिक की जो
5: शुद्धता नहीं,
6: शुद्धता है वो सब समाप्त हो जाती है
5: जी। तो आप जब 2005 से, मतलब लगभग अभी 20 साल हो रहे हैं, दो दशक यहाँ पे आपने बहुत सारे योगियों के साथ, तपस्वी आत्माओं के साथ आपने अपना वक्त बिताया है। और जैसे आपने कहा कि जब संस्था में आप आए थे तो अकाउंट्स में आपने मेंटेन करने का, अकाउंट्स वगैरह आपने सीखा और कार्य करना शुरू किया। ये दो दशकों में को अगर आप देखते हैं, क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आपने उपलब्धि की है और आपको लगता है कि अगर मैं दुनिया में होता तो ये उपलब्धियाँ कभी मैं नहीं कर सकता?
6: दुनिया में सांसारिक उपलब्धियाँ होती है तो सांसारिक बातें भी रहती हैं, और आध्यात्मिक मार्ग में आप आते हैं और संस्था के हेडक्वार्टर में आए हैं तो यहाँ भी जैसे आपको वहाँ फेस करना पड़ता है, यहाँ भी आपको फेस करना पड़ेगा, चाहे कहीं भी आप रहें तो फेस करना ही पड़ता है, हमें भी फेस करना पड़ा। तो मुझे एक बात की पक्का थी कि कुंज दादी जी ने पक्का कराया था कि आप जो भी पैसे है आपके पास, एक तो अकाउंट क्लोज कर देना और पैसे एक रुपया भी नहीं रखना। तो इस रीति से मेरी बाहरी बुद्धि नहीं जाती थी कि ये चीज़ पहनूं, ये चीज़ खरीदूं या ये चीज़ अपने पास रखूं। और आज तक उस दादी जी का जो संकल्प था उसको मैं आज तक कायम करके रखा कि जो भी यज्ञ से मिले, दादी जी ने कहा था कि यज्ञ मन इच्छित फल देता है, आपके जो संकल्प है सब कुछ पूरा हो जाएगा, लेकिन आप अपने पास एक रुपये भी नहीं रखना क्योंकि ये पैसे आपको बाहर लेके चले जाएगा। तो ऐसी शुद्धता, ऐसा शांत वातावरण और इतना स्वच्छ वातावरण जो दुनिया में, तो इतनी आकर्षण है माया कि वो कहीं ना कहीं खींच लेती है। बड़े बड़े पद पे लोग रहने वाले, कुछ ना कुछ बातें ऐसी हो जाती है तो वो फिर उनको लेके बाहर चली जाती है। और संस्था में भी आप हैं तो संस्था की कुछ मर्यादाओं को अगर आपने पकड़ के रखा है तो वो आपकी नैया को पार ले जा देगा। और बातें तो आएंगी, परीक्षाएँ देनी पड़ेगी, सहज रीति से आपको सब कुछ नहीं मिल जाएगा, लेकिन आप अगर उस मर्यादा पर पकड़े हुए, जिस भी मर्यादा को आपने पालन किया, पकड़ लिया, तो वो एक मर्यादा ही आपको जीवन का उद्धार करने के निमित्त बनेगी। और ये ऐसा निमित्त बनेगी कि आपके संपर्क में जो भी आएंगे वो आपसे प्रसन्न होकर के, खुश होकर के जाएंगे कि हाँ, कोई बाबा का बच्चा है, भगवान का एक बच्चा है जो मर्यादाओं पे पक्का है और ये दूसरों को प्रेरणा देने के निमित्त बन सकता है।
5: कुछ ऐसी बातें कह सकते हैं जो आपने सीखा है आपके जीवन में ये दो दशकों में, जिससे आपको लगा कि हाँ, मैंने अपने जीवन में प्रोग्रेस किया है, स्वउन्नति किया है?
6: इस अध्यात्म मार्ग में आया तो मुझे सबसे अच्छी चीज लगता है सहयोग करना। कोई भी व्यक्ति आपके संपर्क में आए तो उसको आप सहयोग दीजिए। और जाति धर्म भाषा भेद की तो यहाँ बात ही नहीं होती है, ये पूरे भारतवर्ष के लोग प्लस विश्व के लोग भी आते हैं। जो भी भाई बहने आते हैं, अगर हमारे संपर्क में कोई आते हैं, या सेंटर की बहनें या भाई या कुछ अकाउंट के कारोबार के संबंध में भी, तो निसंकोच उन्हें हर प्रकार से मैं मदद करने की कोशिश करता हूँ। और मेरा उद्देश्य यही रहता है कि समय नहीं देखता कि हाँ ये समय ऐसा हो रहा है, इस समय अभी हमारा रेस्ट टाइम है या इस समय दूसरे कोई कारोबार है, अगर मैं कर सकता हूँ तो उस काम के लिए उस व्यक्ति को दोबारा, उनका संकल्प न चले, मैं कोशिश ये करता हूँ कि वो काम उसी समय पूरा हो जाए। अगर मैं नहीं कर सकता तो कम से कम उसको सही गाइडलाइन कर देता कि भाई इस व्यक्ति से या इस विभाग से आप संपर्क करेंगे तो आपका कार्य सहज हो जाएगा। क्योंकि हमारे पास कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है तो एकदम अगर आप खाली हैं और खाली रहना चाहते हैं तो दूसरे को भी व्यर्थ बातों से खाली रखेंगे तभी आप खाली रह पाएंगे। और जो व्यक्ति व्यर्थ बातों से खाली रहता है तभी वो अच्छे कार्यों में या मेडिटेशन में या दूसरे की सेवा में वो सहयोगी बन सकता है। अगर मन में किसी भी बात की कचड़ा या कुछ भी कमी पकड़ लेते किसी की, तो वो फिर हमें अच्छे कार्य करने में मदद नहीं करता, वो बाधा बन जाता है।
5: भाई जी, जब से आप मधुबन में हैं आज दिन तक, क्या सीखा आपने? अब व्यक्तिगत जीवन में क्या प्रोग्रेस किया? मतलब जैसे गुस्सा करते थे तो गुस्सा वो मुक्त हो गया है, या व्यर्थ से मुक्त हो गए है, या फिर ज्ञान की गहराई में जाना हुआ है, ऐसा क्या चीज़ें हैं जो आपने व्यक्तिगत जीवन में सीखा है, इम्प्रूव किया है, या आपने सिद्धियाँ कुछ प्राप्त की है, या फिर ऐसी चीज़ें हैं जिसके ऊपर आपने कंट्रोल, जो भी आपके जीवन की?
6: यहाँ मधुबन में रहने के बाद जो मैं ये समझा कि जो भी कोई बातें हो जाती है, अगर कभी कोई घटना घट गई आप कभी कड़े आवाज में, ऊंचे आवाज में बोल दिए तो उसको आप माफी मांग के बात को खत्म कर दिए। उसको दूसरे दिन पे नहीं रखना है। दूसरी चीज, कोई भी आए तो उनको आप सहयोग दीजिए। तीसरी चीज, की कोई क्रोध करता है तो आप सहज रीति से विजय प्राप्त करने के लिए शांत हो जाइए, क्योंकि जितना देर हम शांत रहते हैं ना, उतने देर में वो व्यक्ति का जितना अग्नि उसके अंदर है वो सब निकल जाता है, और शांत रहने के कारण फिर उसको आगे बढ़ने का मौका नहीं मिलता है। तो ये दो तीन चीज़ें मैंने पक्की करके रखी है कि कोई व्यक्ति क्रोध करता है तो एकदम साइलेंस में रहना है, दूसरी चीज़ कोई सहयोग मांगता है तो सहयोग दे देना है, तीसरी चीज़ ये है कि हम अपना जो दिनचर्या है उसको मेंटेन करके रखें तो सब काम सहज हो जाता है। और जीवन में है कि हम किसी को खुशी दे सकते हैं, तो खुशी का आधार है कि कोई व्यक्ति की कोई चीज़ ज़रूरत है तो उसमें हम सहयोगी बन जाए तो सहज हो जाता है।
5: वर्तमान समय में आप किस विभाग में हैं और क्या कार्य करते हैं?
6: मैं कंस्ट्रक्शन विभाग में, कंस्ट्रक्शन स्टोर में हमारी सेवाएं होती है। जो संस्था की ओर से जो भवन निर्माण का कार्य होता है या मेंटेनेंस का कार्य होता है उसमें हमारा रोल होता है। जो भी मटेरियल है, कंस्ट्रक्शन टूल्स है, उसकी देखरेख की सेवाएं हमारी होती है।
5: तो आपको समर्पित जीवन जीने की प्रेरणा कहाँ से आई? आपके जीवन में रोल मॉडल कौन थे?
6: मैं ब्रह्म कुमार भाई बहनों को देखता था, और जब मधुबन में आया तो देखता था कि मधुबन में भाई बहनें अपना लौकिक घर छोड़ करके बाबा के घर में सेवाएं कर रहे हैं। और जब मुझे मेरी मम्मी ने कहा कि आपके पैसे की मुझे ज़रूरत नहीं है, तभी मुझे प्रेरणा आ गई कि अभी भगवान के घर मधुबन में ही रहना, माउंट आबू ही रहना। और जो सेंटरों पे 2-4 घंटे सेवाएं में समय दे पाता था तो फुल डिवोटी हो करके पूरे 24 घंटे भगवान के घर में सेवा दे सकूं, ऐसा मुझे बार बार ख्याल आता था। और दूसरी चीज़ मुझे ध्यान में रहता था कि कोई भी जो बाबा के घर में मिलता था, एक जो हमारे सेंटर में एक भाई थे वो बाबा के घर लगभग अपने जीवन काल में 20-25 बार वो मिल चुके थे। तो मैंने कहा कि इनसे आगे जाने का आधार क्या है, मैं तो साल में एक ही बार भगवान से मिल सकता हूँ, एक ही बार भगवान के घर में सेवा कर सकता हूँ। तो फिर मैंने कहा कि ये तो पूरे जीवन काल में 20 से 25 बार मिले और मैं तो 2 साल में ही कवर कर सकता हूँ। तो इस रीति से इसका आधार यही है कि मुझे इस लंगर को छोड़ करके उस नाव पे चढ़नी पड़ेगी, तभी हम इस क्षेत्र में आगे जा सकते हैं।
5: बहुत इंटरेस्टिंग। सो जब आप समर्पित हो गए हैं, आपके माता पिता ने स्वीकृति दी और आपके भाई बहने आपको रोकने की कोशिश नहीं की?
6: क्योंकि मैं वहाँ जॉब करता था तो मैंने डायरेक्ट नहीं कहा कि मैं माउंट आबू जा रहा हूँ, मैंने उनको ये कहा कि मेरा वहाँ ट्रांसफर हो गया है, थोड़े दिन मैं वहाँ रहूँगा, फिर उसके बाद तो माता पिताजी को बताया, फिर माँ को, छोटा भाई मुझे स्टेशन भी छोड़ने आया था और बाबूजी को नहीं बताया था, इनडायरेक्टली मम्मी को बता रखा था कि ऐसे ऐसे है। तो फिर बाबूजी बोले वो कहाँ गया, तो फिर ऐसे ऐसे बताया उनको कि ऐसे ऐसी बातें है और संस्था में आया हूँ, ये उनको नहीं बताया था। मैं जॉब करने के हिसाब से आया हूँ, ट्रांसफ़र हुआ है, इस हिसाब से बताया। फिर धीरे धीरे उनको बाद में बताया कि मुझे बाहर में रहने खाने पीने में बहुत दिक्कत होती है, अब मैं संस्था में आ चुका हूँ और मैं यहीं रह रहा हूँ। तो धीरे धीरे उन्होंने समझा, फिर उनको अच्छा तो नहीं लगता था, और ख़ास करके हमारे बाबूजी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। उनको लगता था कि हमने पढ़ाया लिखाया और सारा पैसा ही इसने बर्बाद कर दिया, वो क्योंकि उनको था कि पढ़ाया लिखाया तो वो फिर हमें रिटर्न करेंगे, और हम तो इस कंडीशन में आ गए थे कि रिटर्न करने की कंडीशन में थे नहीं। तो फिर जब बाबूजी को, जब उन मुझे बार बार संकल्प चलता था कि माँ और बाबूजी को एक बार माउंट आबू दिखा देवे, तो फिर जब बाबूजी आए तो फिर कहे कि हमारा बेटा तो स्वर्ग में है, अब उनकी सारे संकल्प शांत हो गए। और बाबूजी का तो एक बार ही आना हुआ और माँ 3 बार आई, तो माँ बाबूजी के भी सारे प्रश्न खत्म हो गए। फिर जब संस्था की ओर से जब कहा जाता है कि आप अपने माता पिता की स्वीकृति पत्र लाइए, तो फिर मैं वो पत्र लेने गया तो बड़ा भाई थे घर पे ही, तो उन्होंने कहा कि जब ये इस रास्ते पे चला गया है तो इसको वापस नहीं बुलाइए। फिर बड़े भाई के सहयोग से पिताजी ने फिर सहज रीति से और माताजी ने स्वीकृति पत्र भी दे दिया, फिर आगे की कार्य सहज हो गया।
5: बहुत सुंदर। अगर आप अपनी पूरी कहानी को अगर एक शब्द में एक नाम देना चाहते हैं तो क्या दे सकते हैं?
6: निस्वार्थ भाव से सभी आत्माओं को आप सहयोग देते रहें, यही जीवन का सार है। जीवन में अगर कुछ आपकी संतुष्टि के लिए चाहते हैं कि आपने कुछ किया, तो जो भी आपके संपर्क में आत्माएं आ रही हैं उनको आप सहयोग देते रहें।
5: थैंक यू सो मच भाई जी। जीना इसी का नाम है, जितना सरल है कहना और उतनी ही सरलता से आप अपनी जीवन को एक उदाहरण के रूप में हमारी श्रोताओं के सामने रखा। बहुत बहुत धन्यवाद। आज की आपकी इस जीवन कहानी से ये सीखने को मिलता है कि कठिनाइयाँ परिस्थितियाँ कितना भी आए, अगर आप अपनी जीवन मूल्यों को साथ रखेंगे वो आपकी वैल्यू को बढ़ाते हैं और आपसे अन्य लोगों की सेवा होती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। दोस्तों यहीं पे विराम लेते हैं आप सभी से, फिर मिलेंगे अगली कड़ी में एक नए मेहमान या एक नए अनुभव के साथ। तब तक के लिए सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए रेडियो मधुबन 107.8 FM पर।

नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ मंगल कामनाएं करते हैं और बड़ा ही अच्छा लग रहा है आज विशेष आप सभी से जुड़ने का फिर मौका मिला है। तो आइए 19 जून की कुछ खास बातें आपसे शेयर करना चाहूँगा और विशेष विशाखा नक्षत्र आज है और सुदर्शन अग्रवाल, माधव राव स्प्रे और राहुल गांधी, ओमकार बेबी सिंह, इन सभी का जन्मदिन है। तो इनके बारे में हम लोग जानेंगे कुछ खास बातें इनके बारे में और कुछ अच्छे अनुभवों को आपके साथ साझा करने का बहुत ही कोशिश मेरी जारी रहती है। तो आज इन चार लोगों के बारे में ज़रूर बताना चाहूँगा। आइए सुदर्शन अग्रवाल, माधव राव स्प्रे, राहुल गांधी और नेरुला वेणु माधव, सुभाष मुखोपाध्याय और गुरुप्रसाद महापात्रा, इन सभी का जो है पुण्य दिवस है। आप सुना है रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर। जी हाँ, सफ़र इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं और एक सुंदर विचार के साथ कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं आपके लिए खास। कई लोग मुझको गिराने में लगे हैं, सरेआम चिराग बुझाने में लगे हैं। उनसे कह दो कतरा नहीं मैं, समंदर हूँ, डूब गए वो खुद जो डुबाने में लगे हैं। आप सुनाए हैं रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर। सफर इस कार्यक्रम को सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन।
1: चलती हुई गाड़ी में बिना किसी उचित कारण के चैन खींचना कानूनी अपराध है। कृपया उचित कारण के बगैर चैन ना खींचें। रेल यात्रा के दौरान किसी भी मदद के लिए रेलवे कर्मचारी या पुलिस की सहायता लें।
0: रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
2: नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ। आइए, एक मित्र हमारे साथ जुड़ गए हैं आज और स्टूडियो में आए हैं पूना से, तो उनसे भी बातें कर लेते हैं, है ना। नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर। आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। सफर इस कार्यक्रम को सुन रहे, ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ मंगल कामनाएं करते हैं। आइए, हमारे साथ स्टूडियो में विशेष महाराष्ट्र से कुछ मेहमान आए हुए हैं, उनसे हम लोग बातें कर रहे हैं। तो विशेष हमारे साथ
3: अरुण कुमार देवलेकर नागपुर।
2: जी जी, अरुण कुमार देवलेकर नागपुर से हमारे बीच में आए हुए हैं। और
4: नांदेड़
2: से रुकमा जी कामले नांदेड़ से हमारे बीच में पहुंच गए हैं और बड़ा अच्छा लग रहा है उनसे बात करने का। और मैं चाहूँगा कि रुकमा जी, आप अपने बारे में थोड़ा सा बताएं, क्या करते हैं।
4: मैं फिलहाल अभी जॉब करता हूँ और सोशल वर्क भी करता हूँ, संगठन का काम करता हूँ और बाद में पत्रकारिता भी करता हूँ।
2: अरे वाह, मल्टी टैलेंट है आपके पास।
4: दो साल पहले मैं पुणे में दोस्त के साथ ऐसे ब्रह्म कुमार से कनेक्ट हो गया। हाँ
2: हाँ हाँ।
4: तो पहले मालूम नहीं था, दो दिन थोड़ा कुछ मालूम नहीं था। हाँ क्या होता है क्या। हाँ
2: हाँ
4: हाँ। नहीं, फिर 7 दिन का क्लास कंप्लीट किया।
2: जी, जी।
4: क्लास कंप्लीट करने के बाद मुझे समझ में आया कि बाबा, जो मैंने ब्रह्म कुमार से कनेक्ट हो गया, ये तो कुछ तो ऐसा परमात्मा से कनेक्ट हो गया।
2: हाँ।
4: ऐसा मुझे फील हो रहा था अंदर से, ऐसे हो रहा था। तो बाद में मैंने क्या किया, मेरे घर वालों को बोला है। तो घर वालों को पहले कुछ मालूम नहीं हो रहा था, तो मैंने उनको सेंटर में लेके आया राटने के, अपने वर्षा दीदी है वहाँ पे।
2: जी, जी जी जी।
4: दीदी ने एक दिन उनको 15-20 मिनट का थोड़ा बेसिक नॉलेज दिया।
2: जी, जी जी।
4: बाद में उनको अच्छा लगा तो उन्होंने क्लास किया। तो ऐसे क्लास करते करते हमारे 10-20 ये हमने सोसाइटी के लोग हैं ना, कनेक्ट हो गए। और उनको इतना अच्छा महसूस हो रहा ना ये ब्रह्म कुमार कनेक्ट होने के बाद, कि जो अपन बचपन से करते आए।
2: जी जी जी।
4: कौन से स्कूल में किधर भी नॉलेज नहीं मिला अभी आज तक। मंदिर में भी गए तो दो तीन घंटे का कुछ तो रहता है ना, उतना नॉलेज मिलता है। मगर यहाँ से डायरेक्ट परमात्मा से कनेक्ट कैसे होते, ये नॉलेज मिलता है। तो हर आदमी को, जो ऑफिस लो, घर पे रहो, कुछ ना कुछ हाई टेम्परेचर लेके ट्रेस में आते हैं ना।
2: जी, जी।
4: किसी बात किया, किसने ये बोला वो बोला, तो ये अभी ब्रह्म कुमारी कनेक्ट होने के बाद वो सब कूल हो जाते हैं। अभी मेरे घर में ऐसा वातावरण अभी फिलहाल कुछ भी नहीं है, ट्रेस का कोई लेता है भी नहीं।
2: सही बात
4: है। हाँ, नहीं तो ऐसा बहुत दिक्कत आती थी पहले। हाँ। जब कनेक्ट नहीं देना तो हर कोई झगड़े में होता था, ट्रेस में होता था घर पे, थोड़ा कुछ गली में बोला, कुछ इसने बोला उसने बोला ना, ये होता था। मगर मैं अभी कोविड के पहले भी मेरा टिकट बुक हो जाता था, मगर वो कोविड की वजह से अपना सब प्रोग्राम कैंसिल हो गए थे ना, इसलिए आ नहीं सका। तो अभी दीदी ने टिकट बुक करने के बाद ये चांस मिला है मुझे, इधर आके ऐसा लग रहा है कि मैं कुछ
2: स्वर्ग
4: तो स्वर्ग में आया और कुछ तो पुण्य किया था पहले, कर्म अच्छे किए, इसलिए मैं यहाँ तक आया हूँ। तो यहाँ से आगे ऐसा करूँगा कि बाबा, मैं जो पत्रकारिता करता हूँ तो मैं हर दीदी का जो कुछ लेख मिख रहता है ना,
2: बिल्कुल,
4: हर महाराष्ट्र में मेरा पेपर जाता है, सब वहाँ पे हाईलाइट कर देता हूँ।
2: बहुत बढ़िया।
4: हाँ, और अभी कल परसों के दिन ही दीदी को अपना आप्पा बार ने खासदार मावल के उनके यहाँ से उनको पुरस्कार भी मिला है, वर्षा दीदी को राटने सेंटर में।
2: बहुत बढ़िया, बहुत।
4: तो ऐसे अपन को जितना अच्छा लगता है अपने ब्रह्म कुमार के जो सब कनेक्टिविटी है, जो आगे चल के काम अच्छा करते हैं। और इसका एक मुझे अभी समझ में, आप भी बात बोल रहे थे कि ये रेडियो का भी, वहाँ पे हम स्टूडियो भी देखे, और जो आने वाली पीढ़ी को है ना, इसमें बहुत स्कोप भी है।
2: बिल्कुल।
4: हाँ, अभी मैं देखता हूँ ना, ये सामाजिक काम करते समय खेड़े पाड़े में जाता हूँ, वाड़ी बस्ती में,
2: जी, जी,
4: तो
2: जी।
4: उनको कुछ मालूम नहीं रहता।
2: सही बात है।
4: और उनको क्या, मम्मी पापा उनके पढ़े लिखे नहीं रहे, इसलिए वो बच्चों को आगे पढ़ा नहीं सकते,
2: पढ़ा नहीं सकते,
4: और उनको ध्यान नहीं देते। वो खेती में काम करते और उधर ही रहते, तो वो बच्चों को आगे क्या करना ये नहीं मालूम रहता। तो हमारे जो संगठन है, तो हम वहाँ एक्टिविटी करते हैं, एनजीओ से हुए, वहाँ पे लड़कों को बुक, स्कूल में नहीं जाते तो उनको ड्रेस हुआ ऐसे ये देख के उनको स्कूल में लाने का प्रयत्न करते हैं।
2: बिल्कुल बिल्कुल।
4: हर बच्चों को, तो ये सबसे ज़्यादा नांदेड़ में है ना, जो वाड़े बसते हैं ना वो भाग में आदिवासी एरिया ज़्यादा है, उधर भी बहुत दिक्कत आती है। मगर वो आश्रम शाला मिश्रम शाला है बहुत है, मगर क्या मालूम है क्या वो ये नहीं होता जो बोलते हैं मार्केटिंग करते वो कुछ तो कम गिरती है वहाँ पे, उसकी वजह से वो बच्चे नहीं आ सकते। तो अभी मेरा तो मेरे ग्रुप है वहाँ पे नांदेड़ में सब युवा हमारे कॉलेज के सब बच्चों का, तो ग्रुप की वजह से हम क्या करते हैं किधर भी कौन से वाड़ी में कुछ दिक्कत आए किसी को कि किसी की गरीब परिस्थिति आर्थिक परिस्थिति हो या किसी को बुक नहीं चाहिए, बुक चाहिए नए वाले नोटबुक चाहिए, हर स्कूल में जब स्टार्टिंग होता है ना स्कूल
2: बिल्कुल
4: तो हम हमारे इधर से 20 और नांदेड़ के 10 ये 30 मिला के हम हर साल है ना प्रति 10,000 रुपये डिस्ट्रीब्यूट करते
2: हैं
4: और सबके एरिया में नोटबुक क्या कपड़े रहते यूनिफॉर्म वो को सब दे देते हैं वहाँ पे जाके पेन वो सब हम तो उसके वजह से एक आनंद मिलता है हमें, हमें ऐसा ही नहीं कि हम किसी को देखा हुआ नहीं करते कुछ भी नहीं, खाली अंदर से मन को शांति मिलती है। हाँ जब अभी मैं इधर आया और ब्रह्म कुमारी का जो मैंने देखा है अभी राटनी का भी देखा है जो आप प्रोग्राम करते हैं वो तो बहुत मुझे दिल को छूते बहुत, और ऐसे लगता है कि मैं सब इधर ही ऐसे छोड़ दूँ।
2: सही बात है, सही
4: सब ध्यान में सब ऐसा इधर ही कि बाबा चलो मन लगा के इधर सब कुछ करने का चाहिए।
2: बिल्कुल बिल्कुल
4: ऐसे।
2: चलिए बहुत अच्छा एक्सपीरियंस आपने शेयर किया हमारे साथ में, आशा करूंगा हमारे सभी श्रोताओं को भी अच्छा लग रहा है। और नांदेड़

0: ब्रह्म कुमारी संस्था के साथ बहुत पुराना हमारा रिश्ता है, मेरे ख्याल से 25 साल से भी ज़्यादा हो रहे होंगे, और बहुत अच्छा लगता है। इतने सिंपल लोग हैं, सबसे मिलके बहुत अच्छा लगता है। इतनी शांत प्रकृति के लोग हैं, इतनी दुनिया में शांतता हो सकती है ये उनको देख के महसूस होता है और अच्छा लगता है। उनकी सीख में सबसे बड़ी बात है कि अपने अंदर किस तरह शांति पैदा की जाए, इसलिए उनका लोगो भी है ओम शांति। जब भी किसी को मिलते तो ओम शांति बोलते हैं। और सबसे बड़ा दुनिया का वुमेन लेड ऑर्गेनाइजेशन है ये, और मैं फिर से बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूँ इस संस्था को।
1: नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 107.8 FM पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ मंगल कामनाएं करते हैं। चलिए, अरुण जी की बातें सुनकर आपको बड़ा अच्छा लग रहा होगा, तो आइए अब एक शख्सियत के बारे में बात करते हैं जिन्हें आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं।

जी हाँ, राहुल गांधी का आज जन्मदिन है। 19 जून 1970 को इनका जन्म हुआ। बहुत ही पॉपुलर राजनेता और देश के पुराने राजनीतिक दल से कांग्रेस से अध्यक्ष कांग्रेस के अध्यक्ष हैं और 2017 में विशेष राष्ट्रीय अध्यक्ष इनको बनाया गया और संसद के निचले सदन लोकसभा के केरल स्थित वायनाड चुनाव क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं और परिवार से बिलोंग करते हैं, गांधी परिवार से, और नेहरू गांधी इन परिवार से इनका ताल्लुक है जो भारत का मुख्य राजनीतिक परिवार रहा है। और आम चुनाव में राहुल गांधी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और उसमें मिली भारी सफलता का श्रेय उन्हें मिलता है। फिर जीवन में उन्होंने भारत की ग्रामीण जनता से बहुत निकट का संबंध स्थापित करके विशेष मजबूती उनको प्राप्त हुई थी और उनकी राजनीतिक रणनीति में जमीनी स्तर की सक्रियता को बल देना, ग्रामीण भारत के साथ गहरे संबंध स्थापित करना और फिर आंतरिक लोकतंत्र को मजबूत करने की कोशिश उनका मुख्य ध्येय है। सतह से जुड़ने, अनुभव प्राप्त करने और भारत को निकट से जानने के लिए उन्होंने मनमोहन सिंह के नेतृत्व की सरकार में कई पदों पर रहे और राहुल गांधी ने 2004 में अपनी राजनीतिक करियर की शुरुआत की और उत्तर प्रदेश में अमेठी से अपने पिता राजीव गांधी के निर्वाचन क्षेत्र से पहला लोकसभा चुनाव लड़ा था। अब वे अपना सारा ध्यान राजनीतिक अनुभव प्राप्त करने और पार्टी को जड़ से मजबूत करने में केंद्रित कर रहे हैं। तो चलिए, ये थी कुछ खास बातें राहुल गांधी के बारे में। और 19 जून 1970 को नई दिल्ली में एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई श्रीमती इंदिरा गांधी जी को, जिनका नाम बहुत प्यार से और उम्मीदों के साथ राहुल रखा गया। वो अपने पिता की दो संतानों से बड़े और उनकी छोटी बहन प्रियंका गांधी वडेरा है। राहुल की दादी भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी है। तो ये थी कुछ खास बातें इनके बारे में। चलिए आगे बढ़ते हुए मैं आप सभी को ले चलता हूँ एक और गीत की तरफ। आप सुनाए हैं रेडियो माधुबन 107.8 FM। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

सुन रहे रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। और आज के दिन 19 जून को जन्मे उन खास मनुष्यों के बारे में बात कर रहा हूँ जिनका जन्मदिन है, और थोड़ा सा अपना विषय वस्तु को लेकर अपने जीवन को सर्वश्रेष्ठ बनाने में या समाज के कार्य में लगे हुए हैं। ऐसे ही माधव सप्रे के बारे में, माधव राव सप्रे जी के बारे में बात करना चाहूँगा। राष्ट्रभाषा हिंदी की उन्नायक, प्रखर चिंतक, मिनीसी संपादक, आज़ादी के दीवाने और सार्वजनिक कार्य के लिए समर्पित कार्यकर्ताओं की श्रृंखला तैयार करने वाले लेखक, प्रेरक मार्गदर्शक, गुरु कर्म योगी पंडित माधवराव सप्रे का अवधान कल जाई है। माधवराव सप्रे जी की कहानी एक टोकरी भर मिट्टी को हिंदी की पहली कहानी होने का श्रेय भी प्राप्त है। तो अब देखिए, ये कहानी शायद आपने सुनी भी होगी, अगर नहीं सुनी हो तो ज़रूर मुझे लगता है कि आप सभी को सुनना चाहिए। ये हिंदी की पहली कविता का जो श्रेय है खास इनको मिला हुआ। तो आइए आगे बढ़ते हैं और इस कहानी का सारांश मैं कोशिश करूंगा कि आपको बता पाऊँ, लेकिन अब उनके बारे में जानकारी और आपको देता हूँ। आज ही के दिन 19 जून 1871 को मध्य प्रदेश के दामोह जिले के पत्रिया गांव में इनका हुआ जन्म, और बिलासपुर में मिडिल तक की पढ़ाई पूरी करने के बाद मैट्रिक शासकीय विद्यालय रायपुर से पास हुए और 1899 में कोलकाता विश्वविद्यालय से बीए करने के बाद उन्हें तहसीलदार के रूप में शासकीय नौकरी मिली। लेकिन जैसा कि उस समय के देशभक्त युवाओं में एक परंपरा थी, सप्रे जी ने भी शासकीय नौकरी की परवाह न की और 1900 में जब समूचे छत्तीसगढ़ में प्रिंटिंग प्रेस नहीं था, तब उन्होंने बिलासपुर जिले के एक छोटे से गांव पेड्रा में छत्तीसगढ़ मित्र नामक मासिक पत्रिका की शुरुआत की। हालांकि ये पत्रिका सिर्फ 3 साल तक ही चल पाए, लेकिन सप्रे जी की कोशिश जो है अच्छी रही और लोकमान्य तिलक ने फिर मराठी केसरी को ही यहाँ हिंदी केसरी के रूप में छापना शुरू कर दिया। फिर तो बड़ा मंच उनको मिल गया और साथ ही हिंदी साहित्यकारों और लेखकों को एक सूत्र में बांधने का प्रयास नागपुर से हिंदी ग्रंथालय के प्रकाशन को शुरू किया गया। कर्मवीर के प्रकाशन में भी इनकी विशेष भूमिका थी। और इस तरह से सप्रे जी के जीवन के कुछ विशेष कथन ये है कि मैं महाराष्ट्रियन हूँ पर हिंदी के विषय में मुझे अपना उतना ही अभिमान है जितना कि किसी हिंदी भाषा को हो सकता है, हिंदी भाषी को हो सकता है। जिस शिक्षा से स्वाभिमान की वृत्ति जागृत नहीं होती, वह शिक्षा किसी काम का नहीं है। विदेशी भाषा में शिक्षा होने के कारण हमारी बुद्धि भी विदेशी हो गई है। ये सप्रे जी का कथन था और कहीं ना कहीं ये सही भी है ना। तो आइए आगे बढ़ते हुए मैं आप सभी को ले चलता हूँ एक और गीत की तरफ, उसके बाद सप्रे जी की कुछ और बातें आपसे जरूर शेयर करूंगा। आप सुनाए हैं रेडियो मधुबन पर सफर, इस कार्यक्रम को सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: Hi, this is Ravina Tandon, and I take this opportunity to wish Brahma Kumaris with all the success in their love that they've been giving to the world and the social service that they have been spreading all over our planet. I wish you all the best, and I wish that more and more people become aware and follow this true path of what Brahma Kumari teaches of only love and peace. God bless humanity. God bless the Brahma Kumaris.
1: नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 107.8 FM पर. आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है. ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ मंगल कामनाएं करते हैं. और आइए, माधव राव सप्रे के बारे में बातें चल रही थी. 1890 में रायपुर के असिस्टेंट कमिश्नर की पुत्री से विवाह के बाद विशेष अनुशासित नायब तहसीलदार की नौकरी को ठुकरा कर अपने कर्मपंथी की ओर बढ़ गए. पहले रॉबस्टन कॉलेज जबलपुर, फिर 1894 में विक्टोरिया कॉलेज ग्वालियर और 1896 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से MA पास किया. इस बीच उनकी पत्नी का देहावसान हो गया और शिक्षा में कुछ बाधा भी आ गए. इसके बाद भी वो डटे रहे और हारे नहीं. और फिर आगे चलकर मराठी भाषी होने के बावजूद इन्होंने हिंदी के विकास के लिए बहुत ज़्यादा काम किया. और 1905 में हिंदी ग्रंथ प्रकाशन मंडल का गठन कर तत्कालीन विद्वानों के हिंदी के उत्कृष्ट रचनाओं व लेखों का प्रकाशन धारावाहिक ग्रंथमाला के रूप में आरंभ कर दिया. और इस तरह से सभी हिंदी भाषियों को मंच भी प्राप्त हुआ और उनकी लिखत को एक अच्छा मंच और एक अच्छा संकलन करने का मौका भी मिला. तो पत्र पत्रिकाओं का संपादन भी इन्होंने किया और इनकी मुख्य खुद भी कुछ विशेष किताबें लिखी. और इसके बाद एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी बन गई माधव राव सप्रे का. और 1900 में छत्तीसगढ़ मित्रा हिंदी ग्रंथमाला 1906 में और हिंदी केसरी 1907 में का संपादन प्रकाशन कर हिंदी पत्र पत्रिकाओं और साहित्य को नए संस्कार प्रदान किए. इस तरह से नागरी प्रचारणी सभा काशी की विशाल जो शब्दकोश योजना के अंतर्गत शब्दावली के निर्माण का महत्वपूर्ण कार्य सप्रे जी ने ही किया. और मराठी की सर्वाधिक महत्वपूर्ण कृतियों में से दासबोध, गीता रहस्य और महाभारत मीमांसा के प्रमाणिक हिंदी अनुवाद सप्रे जी ने किया. और कर्मवीर का प्रकाशन उन्होंने कराया और उसके संपादक के रूप में माखनलाल चतुर्वेदी जैसे तेजस्वी संपादक हिंदी संसार को उन्होंने दिया. तो ये थी कुछ खास बातें हिंदी जगत से जुड़ी हुई माधव राव सप्रे के बारे में. और हिंदी के पहले कहानीकार माधव राव सप्रे का निधन 23 अप्रैल 1926 को हो गया. तो चलिए आगे बढ़ते हुए मैं आप सभी को ले चलता हूँ एक और गीत की तरफ. लेकिन उसके पहले आप सोच रहे होंगे कि जिस माधव राव सप्रे के बारे में बात कर रहे थे और उन्होंने हिंदी की पहली कहानी लिखी, तो उसका सारांश तो कम से कम बता दो. जी जरूर बता देते आपको. टोकरी पर मिट्टी हिंदी की पहली कहानी से दुही. इस कहानी में एक विधवा स्त्री के माध्यम से जमींदारों द्वारा गरीब जनता पर होने वाले अन्याय को दर्शाया गया है. विधवा सती की दयनीय अवस्था और नियति द्वारा उसकी पारिवारिक सदस्यों का निधन होना उसके दुर्भाग्य को व्यक्त करता है. तो ये विशेष रूप से कहानी जो है इस तरह का है, ये सार है. और एक टोकरी भर मिट्टी माधव राव सप्रे की बहुत ही सुंदर कहानी में से एक आता है, जहाँ पर ये कहानी अगर आपको मिल जाए तो ज़रूर पढ़िएगा. और मेरे को अगर मिल जाता है तो मैं ज़रूर आपको सुनाऊंगा. और ये पूरा 103 पेज का इनका संग्रहालय है. और कभी हमें प्राप्त हो जाए तो हम भी आपको जो है उसमें से कुछ अंश ज़रूर सुनाएंगे. आप सुनाए हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM पर. सफर इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं. सुनते रहो, मस्कराते रहो.

0: सड़क है ठंडी सड़क, एक ठंडी सड़क है ठंडी सड़क।
1: मैं हूँ जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी ओंकारानंद सरस्वती जी परमात्मा मठ प्रयागपीठ से आप सभी सुन रहे श्रोताओं को ब्रह्मा कुमारी इसका सामुदायिक रेडियो स्टेशन से रेडियो मधुबन सुनते रहो मुस्कुराते रहो। आप सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारा शुभ प्रेम।
2: नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 107.8 FM पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ। आइए एक और शख्सियत के बारे में बात करते हैं। मादर और सप्रे की कहानी सुनकर बड़ा अच्छा लगा और बहुत सारी चीज़ें उन्होंने लिखी और मराठी भाषी होते हुए भी हिंदी भाषा के लिए काम करना, ये अपने आप में एक भारतीय का सबसे बड़ा धर्म उन्होंने निभाया है। आइए बात करते हैं एक और शख्सियत के बारे में, सुदर्शन अग्रवाल के बारे में। जी हाँ, उत्तराखंड और सिक्किम के पूर्व राज्यपाल रह चुके हैं ये। वर्तमान समय में ये जिंदल पुरस्कार प्रदान करने वाले निर्णायक मंडल में उपाध्यक्ष के पद पर नियुक्त हैं और सुदर्शन अग्रवाल जो है विशेष रूप से ऐसे व्यक्तित्व के अनेक गौरवशाली पहलू हैं। सुदर्शन अग्रवाल अपने जीवन के कई ऐसे चीज़ों को उन्होंने छुए जिससे लगता है कि इतना मल्टी टैलेंट व्यक्ति भी हो सकते हैं। सुदर्शन अग्रवाल ने पहले श्रेणी में कानून की डिग्री प्राप्त की और 1981 से 93 तक राज्यसभा के महासचिव के पद को सुशोभित कर चुके हैं और दिल्ली जिमखाना क्लब के अध्यक्ष भी रहे। यही नहीं, वे सांस्कृतिक केंद्र सांस्कृतिक प्रतिष्ठान के ट्रस्टी भी रह चुके हैं। सुदर्शन अग्रवाल पिछले 45 वर्षों से रोटरियन भी है और भारत के रोटरी क्लब के पूर्व अध्यक्ष हैं और डिस्ट्रिक्ट गवर्नर तथा रोटरी इंटरनेशनल की कई समितियों के सदस्य और अध्यक्ष के पद को भी सम्मानित कर चुके हैं और अंतर्राष्ट्रीय मानवीय और शैक्षणिक कार्यों के संबंध में उनकी अनुकरणीय सेवाओं और इनका समर्थन करने के लिए रोटरी फाउंडेशन द्वारा उन्हें अनेक प्रशस्ति पत्रों से सम्मान प्राप्त किया है दिया है। तो पूर्व राज्यपाल के रूप में इन्होंने अपना कार्यकाल को अच्छी तरह से संभाला और सिक्किम का राज्यपाल नियुक्त कर दिया गया था बाद में इन्हें, और तब इन्होंने 22 अक्टूबर 2007 को उत्तराखंड के राज्यपाल का पद छोड़ दिया और 25 अक्टूबर 2007 को सिक्किम के रूप राज्यपाल के रूप में इन्होंने शपथ ग्रहण की। फिर इस तरह से उच्चतम न्यायालय में न्यायमूर्ति की हैसियत से भी सुदर्शन अग्रवाल 3 वर्षों तक राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के सदस्य बने थे। तो ये थी कुछ खास बातें सुदर्शन अग्रवाल के बारे में। आइए इसके साथ ही मैं आपको सीधे ले चलता हूँ एक सुंदर विचार के साथ, कार्यक्रम को पूरा करते हैं। आप सुनाए हैं रेडियो मधुबन पर सफर। कहते हैं, वही है जिंदा जिसकी आस जिंदा है, वही है जिंदा जिसकी प्यास जिंदा है, श्वास लेने का नाम ही जिंदगी नहीं, जिंदा वही है जिसका विश्वास जिंदा है। है ना कमाल की बात। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन पर सफर, इस कार्यक्रम को सुनते रहो मुस्कुराते रहो।

0: आए प्यार के जमाने
1: आज कहां लग गया
0: आए प्यार के जमाने
1: आज कहां लग गया
0: दुल्हन को मनाने
1: चल हट रे दीवानी
0: दुल्हन को मनाने
1: चल हट रे दीवानी।

मैं हूँ सुनील खरे, मैं ग्लोबल हॉस्पिटल आबू रोड में काम करता हूँ। अब सुनिए आपके अपने सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन को 107.8 FM पर। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: बातें तो बहुत होती हैं, लेकिन कुछ बातें याद रखने लायक होती हैं।
1: भगवान के साथ संबंध, the relationship with God, and friends, believe me, शायद हमने भगवान को सही अर्थ में नहीं पहचाना। Two good reasons. एक तरफ भगवान को कहते वो प्रेम का सागर है, और दूसरे तरफ आज हम उस प्रेम के सागर से सबसे ज्यादा डरते हैं। We have become God fearing rather than God loving. आप कहेंगे सर, नो, वी डोंट फियर गॉड। देन देयर इज अ सेकंड गुड रीजन व्हाई वी हैव नॉट अंडरस्टूड गॉड, बिकॉज़ फ्रेंड्स, मोर देन 80% ऑफ द वॉर दैट इज फॉट टुडे इज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन द नेम ऑफ गॉड। चाहे वो अमेरिका अफगानिस्तान वॉर हो, अमेरिका इराक वॉर हो, जम्मू कश्मीर प्रॉब्लम हो, गुजरात प्रॉब्लम हो, दिल्ली ब्लास्ट हो, हैव वी रियली अंडरस्टूड गॉड? किसी ने क्या खूब कहा है, काबा है घर रहीम का, काशी है घर राम का, दोनों ही बात तो एक है, झगड़ा है बस नाम का। वी आर फाइटिंग इन द नेम ऑफ गॉड एंड वी कॉल आवरसेल्व्स इंटेलेक्चुअल्स। फ्रेंड्स, लेट्स अंडरस्टैंड द नेम वेरी क्लियरली। हिंदूस मनाते हैं दिवाली और हमारे इस्लाम भाई बहने मनाते हैं रमजान, लेकिन थोड़ा सा कॉमन सेंस तो हम समझ सकते हैं। अरे, दिवाली में है अली ALI तो रमजान में है राम RAM। दिवाली में है अली, रमजान में है राम। दिवाली में है दिल DIL तो रमजान में है जान ZAL। अरे, उस प्रेम के सागर को दिल व जान, सिख व प्रेम से याद करना है, ना कि उसके नाम पर युद्ध करना है। वो परमात्मा के साथ वो संबंध जोड़ना जरूरी है। हमें ये समझ होनी चाहिए कि हम सभी जो आत्माएं हैं उस एक परमात्मा के संतान हैं, एंड दैट इज अ ब्यूटीफुल रिलेशनशिप दैट वी कैन एस्टैब्लिश विद द ऑलमाइटी गॉड, एंड दिस इज व्हाट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और उस परमात्मा पर संपूर्ण निश्चय भी होना बहुत बहुत जरूरी है। और जब हम परमात्मा के साथ संबंध जोड़ लेते हैं तो उनका जो स्नेह है, क्योंकि परमात्मा को कहते हैं वो स्नेह और प्रेम का सागर है, तो ऑटोमेटिकली वो स्नेह और प्रेम हमारे में आने लगती है और हमारा जीवन फिर से प्रेममय, सुखमय और शांतिमय बन जाता है। तो हम सबको एक ऐसा कार्य करना है जिससे समाज जो है फिर से ऐसे सुखमय बन जाए।
2: Hi, this is music composer Ricky Cage and you're listening to Radio Madhuban. Keep listening, keep smiling.

0: मधुबन 107.8 FM, सुनते रहो मुस्कुराते रहो, सुनते रहो मुस्कुराते रहो।
1: युवांशु, तुम्हें पता है मुझे गेम्स बहुत पसंद है।
2: हाँ, मुझे भी बहुत पसंद है। शिक्षा, तुम्हें पसंद है गेम्स?
3: हाँ, मुझे भी गेम्स पसंद है।
1: तुम्हें कौन से गेम्स पसंद है? मुझे तो फुटबॉल और क्रिकेट ज्यादा अच्छे लगते हैं।
2: मुझे तो सारे गेम्स अच्छे लगते हैं, कुछ भी खेलने के लिए दे दो।
4: ओके, तो यहाँ पे लग रहा है खेल कूद की सिर्फ बातें हो रही हैं, पर गर्मी की छुट्टियों में तो असल में बाहर जाके खेला जाता है। क्या बातें हो रही हैं भाई?
1: गेम्स के बारे में बातें हो रही हैं।
4: गेम्स गेम्स किसको नहीं पसंद? ऐसा कोई है क्या जिसको नहीं पसंद होगा?
1: पता नहीं, हो भी सकते हैं।
4: हो सकता है। वैसे जब बड़े हो जाते हैं ना, तो सच में ऐसा लगता है कि काश बच्चे होते और सारे गेम्स खेल सकते। तो चलिए एक काम करते हैं, बच्चों की दुनिया में आज गेम्स के ऊपर ही बातें करते हैं और एक्सप्लोर करते हैं जो आप लोग गेम्स खेलते हैं उनको। तो स्वागत है आप सभी का इस कार्यक्रम में। और हमारे साथ आज कौन कौन है बच्चों की दुनिया में?
1: मेरा नाम राघव है, मैं 6th क्लास में हूँ।
3: मेरा नाम शिक्षा है, मैं 10th क्लास में हूँ।
2: मेरा नाम शिवांशी है, मैं क्लास 10th में हूँ।
4: ओके, तो आप लोग को कौन कौन से गेम्स खेलना बहुत बहुत पसंद है?
1: मुझे तो सब गेम्स अच्छे लगते हैं, पर उनमें से मुझे सबसे ज्यादा क्रिकेट और फुटबॉल ही अच्छा लगता है।
4: क्रिकेट और फुटबॉल अच्छा लगता है? ओके, और शिवांशी को?
2: दीदी, मुझे हाइड एंड सीक और क्रिकेट।
4: ओके,
3: मुझे खो खो, क्रिकेट और फुटबॉल वगैरह, ये सारे गेम अच्छे लगते हैं।
4: हाँ, खो खो भी अच्छा लगता है, और शिवांशी को तो भाई हाइड एंड सीक भी अच्छा लगता है। राघव को नहीं अच्छा लगता हाइड एंड सीक?
1: लगता है,
4: थोड़ा कम अच्छा लगता है।
1: नहीं, अच्छा लगता है मेरे को।
4: छुपना अच्छा लगता है कि पकड़ना अच्छा लगता है?
1: छुपना।
4: नई नई जगह ढूंढ लेते हो क्या छुपने की?
1: दीदी
2: दीदी, हाइड एंड सीक खेलने का तो मजा रात को ही आता है, रात को जब सारी गली की लाइटें बंद होती है और छुपे होते हैं।
4: रात को खेलते हो आप लोग?
2: हाँ जी, रात को ही खेलते हैं, दिन में हम नहीं खेलते। रात को खेलने में जो मजा आता है ना, वो तो बस कोई मिलता ही नहीं है।
4: ढूंढना बड़ा मुश्किल हो जाता होगा।
2: 1-2 घंटे तक ऐसे ढाई चलती रहती है। हाँ,
4: 1-2 घंटे तक?
2: हाँ जी, कोई मिलता ही नहीं जल्दी, पता नहीं कहाँ कहाँ छुपते हैं।
1: कभी कभी तो 1 घंटे की ढाई के बाद ढप्पा हो जाता है, तो उसको वापस 1-2 घंटे की ढाई देनी पड़ती है।
4: हाँ, फिर से वापस से करना पड़ता होगा। लेकिन अंधेरे में ऐसे कहाँ छुप जाते हो? अकेले डर नहीं लगता छुपने में?
1: नहीं, उधर नहीं लगता,
4: बिल्कुल नहीं लगता। ओके,
2: दीदी घर पे चाहे अंधेरे से डर लग जाए, पर खेलने के टाइम पे कभी नहीं लगता।
4: खेलने के टाइम नहीं लगता अंधेरे में डर?
2: खेलने के टाइम पे तो बस छुपना है, बस लाने किसी को
4: पकड़ ना पाए। कहाँ है सीक्रेट प्लेसेस आप लोगों की छुपने की?
2: दीदी बता देंगे तो फिर छुपेंगे कहाँ?
4: हाँ, ये बात भी सही है, लेकिन संभल के छिपा करो, किसी ऐसी जगह नहीं जाना जहाँ पे कोई ना हो एकदम।
1: दीदी, हमारी सब जगह ही सेफ होती है।
4: ये अच्छी बात है, सेफ्टी के साथ खेलना चाहिए ना कोई भी गेम। और शिक्षा खेलती है हाइड एंड सीक की नहीं?
3: हाँ, खेलते हैं। हम सब बच्चे इकट्ठे हो जाते हैं, फिर हम जब छुपते हैं ना, सब लोग पकड़ में आ जाते हैं, बस मैं नहीं मिलती।
4: अच्छा?
3: हाँ, क्योंकि मैं पतली हूँ, तो मैं ना किसी भी चीज के बगल में जाके खड़ी हो जाती हूँ, वहाँ पे अंधेरा होता है, और मैं ना बैठ जाती हूँ वहाँ पे, दिखाई नहीं देती किसी को।
4: तो आपको ढूंढ नहीं पाते?
3: नहीं ढूंढ पाते। तो मुझे तो मजा आता है, क्योंकि है ना कोई मुझे ढूंढ नहीं पाता, तो मुझे तो हाइड एंड सीक पसंद है बहुत।
4: हाइड एंड सीक तो हमने भी बहुत खेला है, बहुत खेलते थे हमेशा, कहीं ना कहीं छुप जाओ फिर ढूंढते रहो। और ये तो ऐसा गेम है ना कि 3-4 लोगों में भी खेल सकते हो, ज्यादा लोगों में भी खेल सकते हैं, है ना? आप लोग कौन कौन खेलता है हाइड एंड सीक जब खेलते हो तब?
1: मैं भी खेलता हूँ।
4: और किस किस के साथ खेलते हो आप?
1: मैं अपने दोस्तों के साथ खेलता हूँ।
4: अच्छा, और आप लोग?
2: हम तो दीदी गली के सारे बच्चे इकट्ठे हो जाते हैं, छोटे बड़े जो भी, मतलब खेलना चाहे। जब पहली बारी आ जाती है ना हाइड एंड सीक की बारी देने की, तब तो बुरा लगता है कि हाँ नहीं खेलना चाहिए था, पहली बारी आ गई है।
4: और कैसे सिलेक्ट करते हो कि कौन किसकी आएगी पहली बारी?
2: पूछते हैं।
4: हाँ, ओके, मतलब हम भी यही करते थे, अभी भी यही होता है। और कौन कौन से गर्मी की छुट्टियों में कौन से गेम्स खेलते हो? कोई ऐसे गेम्स है?
3: आइस वाटर।
4: आइस वाटर खेलते हो?
3: हाँ, सब बच्चे छोटे छोटे इकट्ठे कर लेते हैं।
4: हाँ?
3: जो भग नहीं पाते उनको भी इकट्ठा कर लेते हैं। वो बैठ के ताली बजाते हैं कि ये वाली दीदी जीतेंगी।
4: अच्छा?
3: हम रेस लगाते हैं, जब गली शांत हो जाती है ना, गाड़ी नहीं चलती, हम सब बच्चे रेस लगाते हैं।
4: अच्छा?
3: हाँ।
4: अरे वाह, रेस लगाना भी अच्छा है वैसे तो। और बर्फ पानी या आइस वाटर खेलते हो आप लोग?
1: हाँ खेलते हैं
2: दीदी हमारे तो लोहा लक्कड़ भी खेलते हैं गेम।
4: लोहा लक्कड़ ये क्या होता है
2: दीदी? इसमें ना गली में ना मतलब लोहा या लकड़ी को हाथ लगाना होता है
4: okay.
2: और किसी के घर का नाम बोलते हैं कि हाँ मतलब मेरे घर को जाके टच करके आओ और जब कोई लोहा या लकड़ी को छोड़ देगा तब उसको पकड़ना है, अगर उसको पकड़ लिया तो वो ढाई देगा नहीं
4: अच्छा।
2: तो जब सारे बच्चे उधर पहुंच जाएंगे फिर मैं दूसरा घर बताऊंगी। ऐसे ऐसे जब अगर वो बीच में ऐसे जंजीर भी बना सकते हैं
1: अगर वो अगर अपा उसको पकड़ रहे होंगे तो अगर अपा उसको पकड़ रहे होंगे तो ना अगर अपा लोहे को हाथ लगा लेंगे या फिर लकड़ी को हाथ लगा लेंगे तो वो हमें ढाई नहीं कर सकता।
4: अच्छा तो ये बात है, तो पकड़ के रखना पड़ता है।
2: हाँ जी लोहा या लकड़ी को ऐसे पकड़ के रखना पड़ता है।
4: ओके
1: दीदी हम तो ऐसे करते हैं, मैं तो पकड़ता ही नहीं, वो किसी और को पकड़ने में बिजी होता है, इतना मैं भाग के पकड़ के आ जाता हूँ।
4: ओके अच्छा जल्दी जल्दी भागते हो आप? और जब पकड़ना होता है तब पकड़ लेते हो?
1: हाँ पकड़ लेता हूँ।
4: आप लोगों ने वो खेला है टिप्पी टिप्पी टॉप खेला है क्या, व्हाट कलर यू वांट?
1: हाँ
2: हमारे उधर बोलते हैं कटी पतंग तेरा कौन सा रंग,
4: कटी पतंग तेरा कौन सा रंग।
2: हाँ
4: तो फिर क्या बोलते हैं उसके बाद?
2: मैं ना ऐसे जो मतलब जो
1: कलर
2: जिनमें ढाई नहीं होती ना वो बोलते हैं कटी पतंग तेरा कौन सा रंग, तो जो ढाई दे रहा होता है ना वो कलर बताता है, फिर उस कलर को टच करना होता है, अगर कोई टच नहीं कर पाता तो उसको पकड़ते हैं।
4: हाँ ये वाला गेम तो हम भी बहुत खेलते थे, लाल बोला तो लाल ढूंढ के ही लाना है कहीं से और जल्दी जल्दी भागो।
1: दीदी अगर किसी की एक टी शर्ट में लाल रंग हो तो हम तो उसको पकड़ लेते थे,
4: हर कोई उसे कहीं पकड़ लेगा ना।
2: कई बार तो वो गिर भी जाता था।
4: इतने सारे बच्चे एकदम से पकड़ेंगे
1: और हम जब खेलते हैं ना अगर मेरे पास वो कलर होता है तो मैं तो भगती हूँ क्योंकि मेरे पास है।
4: हाँ।
1: अब मैं भगती हूँ, सब मेरे पीछे भगते हैं मुझे पकड़ने के लिए।
4: हाँ तो उनको डिफिकल्ट हो जाता है वो कलर फिर पकड़ना ना, कोई ना कोई तो पकड़ा जाएगा। हाँ।
2: कलर भी ऐसा बोलना पड़ता है जो पूरी गली में बहुत मुश्किल से मिला किसी।
4: अच्छा ऐसा कौन सा कलर होता है?
2: वो तो ग्रे कलर होता है सबसे ज्यादा,
4: ग्रे मुश्किल होता है ढूंढना। आपको आसान लगता है ग्रे? हाँ तो फिर राघव की टी शर्ट में होता है तब तो आप अपनी टी शर्ट को पकड़ सकते हो, है ना? आज वाली टी शर्ट में ढूंढ रहे हो आप, आज तो पर्पल कलर की है।
2: दीदी हम तो भूतों वाले भी गेम खेलते हैं।
4: अच्छा ये कौन सा गेम है?
2: एक तो है पीपल के पेड़ की भूतनी।
4: अच्छा
2: नलके वाली भूतनी, एक अंडा भूत।
4: अच्छा ठीक है ये क्या होता है इसमें, कहते क्या
2: अंडा भूत? ऐसे है कि एक तो कोई पहले टीवी दीदी उस गेम में ना जिस मतलब जिसमें ढाई होती है ना वो पहले न्यू मतलब रिपोर्टर बनता है, वो बताता है कि आपके शहर में अंडा भूत घूम रहा है, तो रात को अपने सारे खिड़की दरवाजे बंद करके रखना, सारे इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस बंद करके रखना।
4: ओके okay.
2: फिर उसके बाद घर की लाइट चली जाती है और टीवी चलता रहता है, आज रात को 12 बजे अंडा भूत आएगा, ये लाइन बार बार रिपीट होती है।
4: अच्छा।
2: फिर उसके बाद थोड़ी एक्टिंग करनी होती है, टीवी का जो प्लग होता है उसको उतार देते हैं।
4: अच्छा
2: फिर उसके बाद पहले दूध वाला आता है। फिर दूध वाला आता है तो कहते मतलब बाहर तो भूत होता है पर अब अंदर वाले कहते कौन है, फिर बाहर वाला कहते दूध वाला, फिर ऐसे दूध दे के चला जाता है, फिर आता है सब्जी वाला, फिर तीसरी बार किसी का दोस्त बन के आता है, तो दोस्त बन के आता है तो वो गेट खोलते तो सारे एक मतलब अंडा भूत सबका नाम पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है, वो सारे अपना गलत नाम बताते हैं, पर जब सारे लोग उससे पूछते ना वो कहते अंडा भूत, फिर सारे भाग जाते तो किसी को पकड़ना होता है फिर वो बनता है।
4: अच्छा मतलब किसी को भी भूत बना सकते हो जिसको पकड़ा।
2: हाँ जी
4: ओके तो ये कौन कौन खेलता है गेम? राघव खेलता है? और ये क्या घर में खेलते हो गे ये? तो
2: नहीं गली में
1: बाहर।
4: अच्छा गली में खेलते हो।
2: नलके वाली भूतनी भी है, उसमें एक बच्चा है वो नरका बनता है।
4: अच्छा
2: एक चलाता है और सारे पानी पीते हैं, फिर जो नरका चला रहा होता है वो लास्ट में पानी पीता है, और जब वो पानी पीता है वो कहता है ये तो खून है, फिर सारे भागते हैं, फिर उनमें से कोई भूत बनता है।
4: अच्छा तो भूत कौन बनता है जो पकड़ा जाता है? ओके बाप रे इतने खतरनाक खतरनाक गेम्स कहाँ से ढूंढ के लाए हो तुम लोग?
1: दीदी खुद इन्वेंट किया है।
4: खुद इन्वेंट किए हुए गेम्स?
2: नहीं पहले से प्रथा चलती आ रही है।
4: प्रथा चलती आ रही है? बाप रे ये वाली तो मैंने नहीं सुनी।
2: कभी आप भी हमारे साथ खेलना।
4: अरे बाप रे भूत बनना पड़ेगा फिर तो। अच्छा ओके तो आप लोग के पास तो बड़े सारे गेम्स है, तो फिर सारे तो आउटडोर गेम्स है, फिर क्या घर के अंदर भी खेलते हो आप लोग?
2: हाँ जी दीदी घर के अंदर भी खेलते हैं।
4: क्या खेलते हो घर के अंदर?
1: दीदी 13-in-1 गेम है हमारे पास, उसमें ही सब खेल लेते हैं।
4: वो क्या होता है 13-in-1?
1: मतलब एक उसमें 13 गेम्स होते हैं, इन वन बॉक्स में होते हैं, वो मैग्नेटिक होते हैं, मतलब नॉर्मल से जैसे लूडो होती है वैसे।
4: अच्छा लूडो होता है मतलब उसमें?
1: लूडो होता है अलग, सांप सीढ़ी होती है, सब मतलब 13 अलग अलग गेम्स होते हैं।
4: ओके
2: कई बार घर पे बैठ के बिजनेस खेलते हैं. बिजनेस हो गया और आउटडोर गेम्स भी घर के अंदर खेलते हैं. कभी पकड़म पकड़ाई भी खेलते हैं, कभी सोफे के ऊपर चढ़ गए, कभी बेड के ऊपर चढ़ गए,
4: फिर डांटनी पड़ती है फिर सोफे पे ऊपर चढ़.
2: वो तो लड़ाई लड़ाई में होती है ना पकड़म पकड़ाई तो.
4: अच्छा अच्छा लड़ाई लड़ाई में गेम हो जाता है.
2: हाँ जी.
3: दीदी ये बीच में गंदा सा गाना गाने लग जाती है ऐसे हिम शम शाह शहनशाह, फिर मुझे पकड़ना आती है.
2: दीदी थोड़ा गेम का मूड बनाने के लिए करना पड़ता है.
4: सही बात है ना, म्यूजिक से गेम और अच्छा हो जाता नहीं रागा.
2: और फनी म्यूजिक की तो बात ही अलग है.
4: हाँ फनी म्यूजिक की तो बात ही अलग है, तो फिर आपको हंसाने के लिए करती है वो. देखो
2: कितना ध्यान रखती हूँ मैं,
4: कितना ध्यान रखती हूँ. तो आप लोग लूडो और सांप सीढ़ी वगैरह भी खेलते हो अभी?
2: हाँ जी.
4: आप लोगों ने वो खेला है क्या गिट्टियों से जो खेला जाता है, उसमें छोटे छोटे पत्थर होते हैं उसे उछालना होता है फिर हाथ पे पकड़ना होता है, वो खेला है कभी?
2: नहीं. स्टेपू में खेला है.
4: नहीं कंचे नहीं होते, छोटे छोटे पत्थर होते हैं.
3: हाँ, खेला
4: और है. उसको उछालना होता है फिर हथेली से नहीं. हाँ कौड़ियाँ होती हैं, कौड़ियाँ भी छोटे छोटे पत्थर होते हैं एक्चुअली, वो उछालना होता है फिर आपको. हाँ मतलब एक बार में चार कब पकड़ने हैं, कभी सात पकड़ने हैं, ऊपर उछाल के फिर हाथ से पकड़ने होते हैं. वो आप लोगों ने नहीं खेला होगा ना शायद.
3: हाँ, खेला
4: खेला है.
2: स्टेपू में खेला है. स्टेपू में जब होता है ना चार खाने वाला स्टेपू, उसमें खुद का घर बनाने के लिए कभी हाथ में पत्थर लेके चलना होता है, कभी उल्टे हाथ पे कभी सिर पे ऐसे. उसमें
4: वो पिट्टू फोड़ की बात कर रहे हो क्या?
2: नहीं स्टेपू.
4: उसमें क्या होता है?
2: मतलब पहले तो नॉर्मली चल रहा होता है कि पहले लंगड़ी टांग चलना है, फिर डिस्को चलना है, फिर कृष्णा चलना है, फिर खुले पैर, फिर ये सब होने के बाद फिर जब घर बनने की बारी आती है ना, सारा कंप्लीट हो जाता है. उसके बाद सात खेल होते हैं उसमें.
4: अच्छा.
2: मुंह बंद करके लंगड़ी लंगड़ी पैर से हार, कभी सीधे हाथ में पत्थर रख के, मतलब एक भी पत्थर नीचे नहीं गिरना चाहिए, पत्थर रख के फिर उल्टे हाथ पे, फिर मतलब कोनी के बीच में, कभी सिर पे कभी कंधे पे ऐसे रख के चलना होता है.
4: ओके. तो बहुत सारे गेम्स हैं आप लोगों के पास खेलने के लिए.
2: हाँ जी.
4: तो फिर वीडियो गेम्स खेलने का तो फिर टाइम ही नहीं मिलता होगा इतने सारे, तो अच्छे अच्छे गेम्स हैं आपके पास.
2: दीदी क्यों वीडियो गेम्स आके खराब करने, बाहर ही खेलते हैं हम तो.
4: है ना, बाहर खेलने में ज्यादा मजा आता है. हाँ क्या कहते हो राघव?
1: बाहर खेलने में ज्यादा मजा आता है.
4: तो फिर आप नहीं खेलते वीडियो गेम्स?
1: खेलता हूँ कभी कभी.
4: क्या खेलते हो उसमें गेम्स, क्या क्या खेलते हो कुछ
2: बताओ. दीदी माइनक्राफ्ट खेलता है, रोब्लॉक्स खेलता है, ब्लॉक्स फ्रूट खेलता है.
4: और क्या खेलते हो? तो बस राघव को पसंद है वीडियो गेम्स खेलना. अकेले खेलते हो कि साथ में खेलते हो किसी के?
1: मेरे भाई के साथ खेलता हूँ.
4: ओके. हाँ शिक्षा?
3: मुझे भी वीडियो गेम्स पसंद है. मैं भी खेलती हूँ, जैसे कि जब घर में कोई होता नहीं है, छोटे भाई लोग हैं उनके साथ खेलती हूँ. वो अगर चले जाते हैं अपने दोस्तों के साथ खेलने तो मैं वीडियो गेम ही खेलती हूँ.
4: अच्छा.
3: हाँ बाकी घर पे जैसे कि हैं भाई लोग हैं सब लोग, बहन वगैरह, तो हम लूडो चेस सांप सीढ़ी ये सब खेलते हैं घर के.
1: शिवांशी भी खेलती है, वो ऐसे ही बोल रही है. दीदी वो मेरे साथ सब खेलती है, माइनक्राफ्ट लूडो.
2: दीदी वो पहले खेलती थी.
1: दीदी अब भी खेलती है.
4: अभी इतना मजा नहीं आता
2: फोन. पहले तो मैं पूरा टाइम ऐसे फोन में ही खेलती थी, इतना बाहर खेलने में मजा नहीं आता था. फिर अब मेरी पहले जितनी भी फोन में गेम्स थी ना सारी डिलीट करती अब तो.
4: अच्छा.
2: अब बस बाहर ही खेलते.
4: बाहर खेलने में वैसे ज्यादा मजा तो आता है.
2: ना? फोन में बैठे बैठे ना ऐसे लगते कि एक तो आंखें खराब हो जाएंगी और अकेले खेल रहे, अकेले खेलने में क्या मजा.
4: हाँ ये तो है, खेलना तो सबके साथ अच्छा लगता है ना.
1: हाँ, अकेले नहीं खेलता.
4: अकेले नहीं खेलते?
1: दीदी मल्टीप्लेयर होता है.
4: मल्टीप्लेयर होता है तो किसके साथ खेलते हो फिर?
2: दीदी खेलता तो सिंगल प्लेयर है बट ऑनलाइन अपने भाई के साथ खेलता.
4: अच्छा ऑनलाइन खेलते हो. तो उसमें क्या करना होता है? आजकल तो बड़े सारे गेम्स आ गए हैं.
1: दीदी मैं तो कोई भी रैंडम सी गेम खेल लेता हूँ, जब मेरा कोई मतलब जो मैं रोज खेलता वो खेलने का मन नहीं होता तो.
4: रैंडम गेम मतलब कैसी रैंडम गेम?
1: मतलब कोई भी ऐसे
2: रैंडमली कोई भी आंख बंद करके चूज कर ली.
4: अच्छा ओके. कोई फेवरेट गेम है आपकी?
1: हाँ है.
4: कौन सी?
1: छुपन छुपाई.
4: और वीडियो गेम में?
1: माइनक्राफ्ट और रोब्लॉक्स.
4: उसमें क्या होता है?
2: बस चीजों को माइन करना होता है और क्राफ्ट करना होता है.
1: दीदी जो डाल रहे हैं उसमें बहुत सारी ग्राइंडिंग होती है, मुझे इसीलिए ग्राइंडिंग गेम्स अच्छी लगती है, मैं इसीलिए वो खेलता, वरना मैं वो भी नहीं खेलता.
4: चलो मतलब आपको अपने माइंड को यूज करना अच्छा लगता है. अच्छा घर वालों के साथ कौन कौन गेम्स खेलता है?
1: दीदी मैं खेलता हूँ.
2: दीदी मैं भी खेलती हूँ.
3: मैं भी खेलती हूँ.
4: क्या खेलते हो घर वालों के साथ?
1: मैं कभी कभी लूडो खेलता हूँ, कभी चेस खेलता हूँ.
4: अरे वाह चेस भी खेलना आता है, वेरी गुड. और आप लोग क्या खेलते हो?
3: हम तो मम्मी जब फ्री होती है ना काम करके बैठ जाती है तो मम्मी वैसे तो नहीं खेलती, मम्मी को बड़ी मुश्किल से मनाते हैं, मम्मी प्लीज आप खेलो, आप कभी खेलते नहीं हो। फिर मम्मी के साथ सांप सीढ़ी वगैरह मम्मी यही गेम खेलते हैं, तो यही खेलते हैं उनके साथ। या फिर वो 16 पर्ची होते हैं ना।
4: 16 पर्ची वो क्या होता है?
3: हाँ 16 पर्ची में ऐसा होता है कहना, उसमें 16 पर्ची बनानी होती है, चार चार पर्ची सेम होती है।
4: ओके।
3: और उन पर्चियों को बंद करके हम एक साथ मिक्स कर देते हैं, फिर उनको हम नीचे रख देते हैं। कोई चार लोग होते हैं, चार लोग उनमें से चार पर्ची उठाते हैं, अलग अलग आती है, अलग अलग पर्ची को दिखाते नहीं है, हम दूसरे को पास करेंगे, दूसरा दूसरे को पास करेगा, ऐसे करते करते जिसकी भी चार सेम हो जाती है वो बोल देता है 16 पर्ची थप। उसके फिर जितने नंबर की पर्ची होती है, पर्ची पर जैसे कि 500 लिखे हैं तो वो उतने मार्क्स हो जाते हैं उसके, जिसके अच्छा। सबसे ज्यादा होता है वो गेम जीत जाता है।
4: ये तो काफी इंटरेस्टिंग है। और ये
3: ऐसे चोर पर्ची
1: उसमें राम लक्ष्मण सीता ऐसे
3: हाँ।
4: लिख देते हैं नाम अलग अलग है ना, और एक जैसे चाहिए चारों पर्चियाँ।
2: राम आए तो 1000, सीता आए तो 900।
4: अच्छा ऐसे नंबर दे दिया जाते हैं। ओके ये तो बड़ा मजेदार है, इसमें तो कोई चीज भी नहीं चाहिए और बैठे बैठे खेल भी सकते हैं।
3: ऐसे घर पे जब मम्मी चिल्लाती है तो हम जैसे कि चार ही लोग होते हैं, कुछ खेलना नहीं है, जैसे 16 पर्ची खेलने का मन नहीं, तो उसी के जैसे चोर पर्ची खेल लेते हैं। उसमें भी चार पर्ची होती है सिर्फ, एक पे चोर सिपाही, एक पे राजा, एक पे मंत्री लिखा होता है। चोर के 0 नंबर होते हैं, राजा के 1000 होते हैं, ऐसे नंबर होते हैं।
4: चोर को ढूंढना होता है ना
3: इसमें? फिर उसमें 4 पर्ची होती है, कोई भी एक उठा लेता है। जो राजा होता है वो बोलता है, राजा पूछता है कहना मंत्री कौन है, मंत्री बोलता है जी सरकार मैं हूँ, फिर बोलता है चोर सिपाही का पता लगाओ, फिर वो अंदाजे से बोलता है कि ये चोर है। अगर वो चोर होता है तो है ना उसको मंत्री को नंबर मिलते हैं और सिपाही बच जाता है। ऐसे उसमें
1: रानी होती है तो
2: अगर उसने सिपाही को बोल दिया कि वो चोर है तो सिपाही के तो 700 ही लगेंगे पर मंत्री का 0 लग जाएंगे।
4: ये वाला गेम तो कितना पुराना है पता है, राजा वजीर चोर सिपाही, ये गेम तो मतलब हम भी खेलते थे, हमारे मम्मी पापा भी खेलते थे उनके बचपन में,
2: अकबर बीरबल के जमाने का,
4: बहुत बहुत समय से चला रहे ये गेम।
2: दीदी हम तो कप प्लेट ताजमहल भी खेलते हैं।
4: कप प्लेट ताजमहल
2: ये क्या होता है? ऐसा ही होता है, बस पेयर्स बनाने होते हैं।
4: अच्छा इसमें पेयर्स बनाते हैं
2: बस, इसमें 3 लोग चाहिए।
4: अच्छा
2: ये 3 लोग हैं, फिर उनमें से उठाएंगे एक पर्ची, तो एक का पेयर तो नीचे रहेगा, जिसका पेयर बनेगा उनको मार्क्स मिलेंगे।
4: ओके तो आप लोगों के पास बड़े इंटरेस्टिंग गेम्स हैं।
2: एट प्रेजेंट तो अभी मम्मी और के साथ तो लूडो खेलते हैं, पर जब कोविड आया था ना उस टाइम पूरे दिन हम ऐसे खेलते थे, सारे घर पे ही थे, किसी को कोई काम नहीं था, रात को खाना खाने के बाद लूडो खेलते थे, फिर हम पर्चियां बनाते, तो उस टाइम ज्यादा लोग होते थे ना तो कप प्लेट ताजमहल झाड़ू पोछा थप्पड़ मुक्का सारे ऐसे ऐड करके फिर उसको खेलते थे।
4: ओके
2: फिर रात को 12-1 बजे तक सोते थे फिर आराम से
4: खेल के
2: तो फिर सुबह उठ के वापस कैरम कभी लूडो।
4: हाँ कैरम खेलने में बड़ा मजा आता है ना, है ना? हाँ। निशाना लगाना होता है, किसका निशाना अच्छा लगता है,
1: उसकी उंगलियां टूट जाती है।
2: दीदी कभी कभी ना मतलब जो रानी की गीटी होती है ना वो चली गई होती है, बट जो उसके बाद वाली गीटी जो जानी होती है वो कभी नहीं जाती।
4: हाँ ये बड़ा मुश्किल होता है, क्वीन लेने के बाद जो कवर लेना होता है ना उसका वो ना जाए तो बड़ा बुरा लगता है।
1: दीदी वो बहुत आसान होता है।
4: आसान होता है? आपको आसान लगता है?
2: दीदी इसका तुक्का फिरता है ना, हमारी तो पूरी पॉइंट पे पड़ी होती है ना तो भी नहीं जाती हमारी तो।
1: दीदी तुक्का नहीं मिलता, अगर इधर गिरती है और पप्पा को उधर मारनी है तो इसके सीधा कोने में मारनी चाहिए तो वो उधर सीधा होल में जाएगी।
4: निशाना लगाना आता है आपको? अरे वाह, तो उसमें तो कैरम में भी मजा आता है, लूडो में भी मजा आता है, बड़े सारे गेम्स है मतलब जो घर के अंदर भी खेले जा सकते हैं विदाउट फोन। आप लोगों ने आज तो इतने सारे गेम्स बता दिए, अब मन करने लगा है कि कुछ खेल ही लिया जाए, है ना? तो जो हमारे दोस्त सुन रहे हैं हमें, अगर आपको भी अच्छे लगे इनमें से कोई गेम्स या कुछ और एडिशनल गेम्स हैं आपके पास तो आप हमें बता सकते हैं मैसेज व्हाट्सएप या टेलीग्राम पर। हमारा नंबर है 9414151415, यानी कि 9414151415। और अगर समय मिले तो फोन में मत गवाइए, आप अपनों के साथ घर वालों के साथ दोस्तों के साथ ये मजेदार गेम्स खेल लीजिए और यकीन मानिए आपको उससे कई गुना ज्यादा मजा आने वाला है ना? और ये मुझे लगता है बड़ों को भी याद आ गए होंगे ये वाले गेम्स, तो फिर अपने लिए भी समय निकालिए और खुद बच्चा बन जाइए, है ना? बच्चों की दुनिया होती ही इतनी सुंदर है। लेकिन फिलहाल वक्त हो गया है गुड बाय कहने का, तो हम लेते हैं इजाजत और दोस्तों से कहते हैं बाय बाय
5: बाय बाय।
4: रेडियो मधुबन 107.8 FM
5: सुनते रहो मुस्कुराते रहो।

0: शांति बाबा शिव इस संस्थान के प्रति जो है, मैं पीछे कवाली गाई थी
1: जी,
0: दो लाइनें सुनाता हूँ। आओ जहानवालों

0: क्या बात है।
1: जाने वालो, मैं सुभाष अरोड़ा दिल्ली NCR फरीदाबाद से हूँ। सेक्टर 11 फरीदाबाद जो हमारा BK सेंटर है, मैं उनके साथ अटैच्ड हूँ।
0: क्या बात है।
1: आई एम ए रिटायर्ड चीफ मैनेजर ऑफ बैंक ऑफ बड़ौदा और मैं 1975 से हारमोनियम पर गा रहा हूँ और मेरा शौक है भजन गाना। मैं सभी प्रकार के भजन गाता हूँ। अभी BK सेंटर शिवरात्रि वाले दिन ये हमारे बैठे हैं तो वहाँ भी हमने गाए और यहाँ आकर ऑर्गेनाइजेशन की इस संस्था की ब्रह्म कुमारी की मैं जितनी तारीफ करूँ उतना कम है। सबसे बड़ा क्या है, मेंटल स्ट्रेस से फ्री करना, शांति देना, खुशी रखना, यही उनका उद्देश्य है और यही हम सबको चाहिए। यही हम सबको चाहिए। आज धन की दौलत, धन दौलत की कमी किसी के पास है या नहीं है, लेकिन इस चीज की कमी जरूर है, दिमाग की शांति, आनंदमय जीवन व्यतीत करें। शीश माई वाइफ अरोड़ा,
0: स्वागत है।
1: शी आल्सो ए रिटायर्ड असिस्टेंट मैनेजर फ्रॉम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया।
0: अरे वाह।
1: हम दोनों धार्मिक प्रोग्राम में ही भजन गाते हैं। हमारे दोनों बच्चे बाहर हैं, उनको अपने आप में मस्त रहने दो,
0: हम अपने अपने
1: अपने आप में मस्त रहते हैं। तो यहाँ आने के लिए जो BK सेंटर सेक्टर 11 ने हमको अवसर प्रदान किया, मैं BK सेंटर 11C का भी, फरीदाबाद का भी
0: जी, जी।
1: बहुत बहुत धन्यवाद हूँ और यहाँ की संस्था का भी बहुत बहुत धन्यवाद हूँ। इतना अच्छा अरेंजमेंट, इतने वक्त, इतना साफ सुथरा, अभी शिवानी जी को सुना मजा आ गया। बहुत बहुत धन्यवाद।
0: जी जी जी, शुक्रिया। बहुत ही अच्छी बात आपने बताया। और जाते जाते एक छोटा सा मैसेज सुनने वालों को क्या देना चाहेंगे?
1: हाँ, सुनने वालों को जो मैंने अभी आपके सामने गाया,
0: जी, जी।
1: आओ जहान वालों इस दर पे सर झुकाएं।
0: जी जी,
1: जिनको नहीं भरोसा आ करके आजमाएं, अरे एक बार आके देखिए, आपको अवश्य मिलेगा, मिलेगा,
0: मिलेगा,
1: दिमाग की शांति मिलेगी, आनंदमय जीवन मिलेगा।
0: बहुत
1: बढ़िया, मेरा सबको
0: संदेश। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।
1: मुझे रेडियो मधुबन पे अवसर देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत
0: शुक्रिया।
1: मैं आगे अवसर की तलाश करूंगा कि मैं कैसे
0: जुड़ू
1: शांति वन में आऊं।
0: बस आपको तो सर भाई साहब को मिलना है और फिर बोलना है चलिए।
1: मेरा विशेष होगा, मेरी विशेष रुचि होगी कि मैं शांति वन के संगीत जो आपका डिपार्टमेंट है
0: जी, जी,
1: उसके
0: जी।
1: साथ अटैच हूँ और मैं जो भी मेरे अंदर है मैं वो
0: बिल्कुल बिल्कुल आप अपने घर से भी जुड़ सकते हैं। बाबा ने आपकी सुन ली है और ऑनलाइन भी आप जो है हमारे साथ गीत गाने के लिए जुड़ सकते हैं। रोज 5 मिनट रात को 8 से 9, ठीक है, मैं आपको जोड़ूंगा। 5 मिनट आप रोज एक गाना तैयार कर लीजिए, उसमें जोड़िएगा, ठीक है। चलिए मित्रों, आगे बढ़ते हुए बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। और आपने जो अनुभव सुनते जा रहे हैं, मुझे लगता है कि आपका भी रुचि बन गया और कि मुझे भी शांतिवन जाना है, तो स्वागत है आपका, आइए।
2: तो
0: जी जी जी
2: जी, फ्रॉम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया।
0: हाँ,
2: मैं भी इनके साथ थोड़ा थोड़ा करती हूँ, मुझे ज्यादा नहीं आता।
0: अच्छा अच्छा,
2: दो लाइन तो मैं
0: सुनाइए सुनाइए।

0: दिल से बुला के दे, दिल में तू ब्रह्म नाम की। ओम शांति।
1: ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत ही सुंदर गीत आप

0: अनिल सैनी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और मैं चाहूँगा कि आप अपने ग्लोबल सबमिट का एक्सपीरियंस शेयर कीजिए।
1: मैं एक्चुअली 2015 में पहली बार मैंने शिवानी दीदी को सुना था मुंबई में, तो उनसे थोड़ा सा काफ़ी इंस्पायर हुआ था। उसके बाद अभी दिसंबर में मैं थोड़ा सा फर्स्ट स्टेशन की तरफ जा रहा था।
0: जी जी जी जी।
1: तो मैंने कुछ सर्च करके सेक्टर 11 में मेडिटेशन के लिए प्लान किया था, मैंने वहाँ ज्वाइन किया और कुछ एक हफ्ते की क्लास ली मैंने, और उसके बाद मेरा माइंड कूल होता चला गया। फिर ये प्लान था कि भी माउंट आबू आने का, तो वो मौका भी साथ साथ ही मिल गया। और उसके बाद फिर यहाँ आने का मौका मिला तो बहुत अच्छा लगा।
0: जी जी,
1: यहाँ आने के लिए
0: बहुत ही अच्छी बात आपने बताया। और जिस तरह से आप कनेक्टेड हैं मुंबई से शिवानी दीदी को सुनने के बाद, आपका मन जो है इस तरफ आकर्षित हुआ, तो एक संदेश क्या देना चाहेंगे सबके लिए?
1: जो मैंने यह देखा आने के बाद या मैंने कभी एक्सपीरियंस लिया है कि अगर मन शांत है तो सब कुछ शांत है। तो शांति के लिए अगर किसी को चाहिए शांति तो यहाँ आके जरूर।
0: क्या बात, क्या?
1: सबसे ज्यादा सबसे संदेश।
0: शुक्रिया अनिल जी, बहुत बहुत धन्यवाद, और आपको बहुत बहुत साधुवाद। अपने जीवन में इस आध्यात्मिकता को बनाए रखें और इसका आनंद उठाइए।
1: धन्यवाद।

0: बहादुर जी अपना अनुभव साझा कीजिए ग्लोबल समिट का।
1: जी मैं यहाँ तीसरी बार आ रहा
0: हूँ। अरे वाह।
1: मैं यहाँ से इस राजयोगा में पीएचडी भी कर रहा हूँ। एक बार कोर्स और में आया, दूसरी बार बाबा मिलन में, अभी ग्लोबल समिट। जितनी बार भी आऊँ
0: उतना मजा ही करता है। क्या बात है।
1: और मुझे सबसे बड़ा अनुभव इधर क्या होता है कि घर की याद नहीं आती। जब मधुबन में होता हूँ घर की बिल्कुल याद नहीं, यही आनंद।
0: चलिए बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छी बात आपने बताया। और आपका मन यहाँ लग जाता है, आप बार बार यहाँ आना चाहते हैं, तो ये एक बहुत ही एक लगन है, परमात्मा के साथ प्यार है आपका, तो ये दर्शाता है। और एक मैसेज रेडियो सुनने वालों को क्या देना चाहेंगे आप?
1: जो सुन रहे हैं उन सभी से मैं अनुरोध करूँगा, एक बार मधुबन आइए, राजयोग का अनुभव लीजिए, अपने जीवन को सकारात्मक बनाइए, स्वच्छ बनाइए, पवित्र बनाइए, और इस भारत को, भारत वर्ष को, भारत भूमि को स्वर्ग स्थापना करने का जो कार्य था बाबा का,
0: जी जी
1: हाथ बटाइए।
0: बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।

0: तो आइए नेपाल से एक और शख्सियत से आपकी बात कराते हैं। हेमंत सिंह हेरी
1: नेपाल से,
0: नेपाल से हैं आप, तो ग्लोबल सबमिट के बारे में बताइए।
1: मैं पहली बार यहाँ आया हूँ, पहले से बहुत पहले से आने का
0: विचार था।
1: मैंने अब टाइम नहीं मिला, हम जॉब में लिमिटेड हैं, तो आने की सोच था। तो मेरे से पहले मेरे मिसेज उन्होंने ये कोर्स करके इससे पहले अगले साल वो आके गई 7 दिन के यहाँ कार्यक्रम में।
0: अच्छा,
1: उसके बाद हमारे घर में ऐसा हो गया तो फिर खान पीन हर चीज
0: बदल गया,
1: मतलब बदल गया, लाइफस्टाइल ही बदल गया। और सुबह शाम स्मरण करना और भजन कीर्तन सारा चीज
0: चालू हो गया।
1: तो मैंने भी ऐसे वो किया कि अब विश्व शांति के लिए जो ये राजयोग यहाँ से हो रहा है काम, तो इसमें थोड़ा सा हमारा भी योगदान है। जैसे स्कूलों में हम 30-35 साल से पढ़ा रहे हैं,
0: अरे वाह,
1: तो फिर भी जो दिन प्रतिदिन जो है उच्छृंखलता बच्चों में जो दिखाई दे रहा है, अनुशासनहीनता, फिर जो मन में लगा वो बोलना चलना फिरना पढ़ाई में ध्यान नहीं देना, इसके लिए इन लोगों को जो बच्चों से ही इनको पहले हमें शांति स्थापना करना है। इसके लिए कोई न कोई सूत्र होगा, कोई न कोई फॉर्मूला होगा, इसके लिए हमें ज्ञान प्राप्त हो तो हम पास सके।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: इसलिए मैं बड़ा कोशिश करके यहाँ आया। तो जब यहाँ आया मैं तो मुझे लगा ये तो स्वर्ग यही है, स्वर्ग है। स्वर्ग में आके जब मैं आने के लिए सोच रहा था कैसे कहाँ क्या, जब यहाँ आया तो ऐसा लगा। मेरे मिसेज तो कहती थी वहाँ जब हम जाते हैं तो वहाँ से आने का दिल ही नहीं करता है, तो मैं ये क्या मजाक कर रही जैसे लग रहा था उस टाइम। जब मैं खुद आया यहाँ तो मुझे ऐसा लगा कि मैं यहीं बैठ के सेवा करके बैठूंगी जैसा लग रहा है।
0: जी जी,
1: क्या करें, हम गवर्नमेंट जॉब में जुड़े हुए हैं
0: तो जाना तो पड़ेगा,
1: इसलिए ये हमारा अनुभव रहा है।
0: बहुत सुंदर एक्सपीरियंस आपने शेयर किया, बहुत बहुत साधुवाद आपको। और आप अपना फर्ज निभाते हुए वहाँ सेंटर से कनेक्ट हो जाइए तो ये जो सुख है वो आपके लिए हमेशा याद रहेगा। और जैसा समय मिलता है बीच बीच में छुट्टी लेकर जरूर आइएगा। बहुत बहुत साधुवाद, ओम शांति।

0: विकास जी बहुत बहुत स्वागत है आपका, और मैं चाहूंगा कि आप भी अपना अनुभव साझा कीजिए हमें।
1: देखो सर, आने से पहले ये सोच रहे थे पता नहीं वहाँ पर क्या है क्या नहीं है, लेकिन यहाँ आने के आज दो दिन हो गए, बहुत अच्छा फील हो रहा है। और खाना है ना बहुत ही अच्छा, ऐसे सोच रहे कि इतना बनता भी कहाँ से होगा। फिर रसोई वगैरह देख के सारा देखा, बहुत ही अच्छा। और यहाँ की जो दीदियाँ जो बातें बताती है वो बहुत ही ज्ञानवर्धक बातें हैं, जीवन में उतारनी चाहिए।
0: जी,
1: शिवानी दीदी ने बहुत अच्छा बताया, अगर वो जीवन में उतार ले तो कोई प्रकार की परेशानी मेरे हिसाब से तो आने वाली नहीं है। बहुत ही अच्छा अनुभव हुआ, और यहाँ का जो वातावरण देखा तो विश्व में कहीं पर भी नहीं है।
0: जी, चलिए, बहुत ही सुंदर अनुभव है आपका, और मैं चाहूंगा कि इस अनुभव को क्या होता है, ये आध्यात्मिक अनुभव है, ये अनसीन एनर्जी है ना, आप बता रहे हैं, लोगों को विश्वास नहीं होगा। चलो मैं यहाँ हूँ, हम सभी अनुभव कर रहे हैं, हमें अच्छा लग रहा है कि मेरा अनुभव है, लेकिन जब आप दुनिया में बताने जाएंगे तो लोग कोई भी आपके बातों पे, आप कितने भी खुशी से बताएंगे, लोगों को थोड़ा कन्फ्यूज़न होगा। तो उनके कन्फ्यूज़न का असर आप पर ना हो, आपकी जो ये खुशी है इसको बरकरार रखने का, इसको प्रोटेक्ट करने का आपका काम है। तो मैं चाहूँगा कि इस खुशी को बरकरार रखें, कोई आपको सुने या माने या ना माने, क्योंकि जब हम लोग इस चीज़ को प्रोटेक्ट करेंगे तो कुछ समय के बाद लोगों को ज़रूर पता चलेगा, नहीं ये आदमी सही था। और अगर आपके कहने पर या श्री राम जैसे लोग उनको पकड़ के लेके आए तो उसके बाद उनको एहसास होगा कि अरे उन्होंने तो बहुत पहले बता दिया था, मैं कितना लेट हो गया, ये ज़रूर उनका अनुभव होगा। लेकिन यहाँ पर हमारी अपना एक बहुत सुंदर खुद पे काम करना है, खुद की खुशियों को बना के रखना है। तो जाते जाते मैं चाहूँगा एक छोटा सा मैसेज रेडियो के माध्यम से लोग सुन रहे हैं, उनके लिए क्या बताना चाहेंगे?
1: रेडियो के माध्यम से मैं सभी लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि आप इस अनुभूति का एक्सपीरियंस कीजिए एक बार, यहाँ मधुबन आइए और फिर उसको हर जगह बताइए, हम वहाँ गए और हमारे को ये मिला, पवित्रता सब बहुत अच्छा है यहाँ पर, पीस लव हैप्पीनेस सब बहुत बढ़िया है। तो लोगों को मैं ये मेरी तरफ से संदेश देना चाहता हूँ कि एक बार इसका मधुबन का अवश्य
0: अनुभव कीजिए। जी शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।

0: नमस्कार, अभी महिपाल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। महिपाल जी कैसे हैं आप? जी जी जी, मैं चाहूँगा कि आपका ग्लोबल सबमिट का एक्सपीरियंस कैसा है, थोड़ा सा सुनाइए।
1: बहुत शानदार रहा सर, जैसी शांति और आध्यात्मिक उन्नति का आभास यहाँ करके हुआ, और पहली बार ही मेरा आना हुआ शांति।
0: जी जी जी,
1: संस्था से मैं काफी जुड़ा हुआ हूँ, आने का सहयोग नहीं बना, मगर यहाँ आकर के ऐसा महसूस हो रहा है कि बहुत पहले आना चाहिए था। और एक अच्छा संदेश जो है वो पीस का, आध्यात्मिक भक्ति का ज्ञान की बात प्राप्त हुआ।
0: जी जी जी, महिपाल जी वैसे करते क्या आप?
1: मैं प्रिंसिपल हूँ सर स्कूल का।
0: अच्छा, कौन से स्कूल में?
1: झुंझुनू से 15 किलोमीटर दूर है हमारा, 103 साल पुराना स्कूल है, शेर सिंह का स्कूल।
0: अरे वाह,
1: 1922 का फाउंडेशन।
0: क्या बात,
1: 29 साल से मैं वहाँ से रहा।
0: जी जी जी, चलिए मैं चाहूँगा कि आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि स्कूल में भी आप इस बात को ज़रूर प्रयोग में लाइए, क्योंकि आज समय है बच्चों के, अगर हम लोग दिलो दिमाग में आध्यात्मिकता का सही परिचय दे देंगे तो उनका जीवन वैसे ही सुंदर बन जाएगा और आगे चल के वो देश के काम आएंगे।
1: जी
0: जी जी, चलिए, हमने आपका बहुत ही सुंदर अनुभव आप किया है, तो ये गारंटी है कि आप जाके खाली नहीं बैठेंगे और बच्चों को निश्चित तौर पे ये अंजलि ज़रूर देंगे, ऐसी शुभ आशा के साथ बहुत बहुत साधुवाद आपको, बहुत बहुत मंगल
1: का। बहुत धन्यवाद रेडियो मधुबन का और विश्वविद्यालय शांति का, बहुत बहुत आभार।
0: शुक्रिया महिपाल जी, थैंक यू, धन्यवाद।

0: के लिए ईश्वर को यहाँ पर लाइए देवता मैं भी ईश्वर को मानता हूँ, और जो आते हैं वो बहुत ही अच्छे होते हैं।
1: जी जी जी,
0: और इसका अनुभव तो आपको क्या बताएं, बहुत ही कार्यक्रम हर एक देखने लायक, एक से सुनने लायक, एक से ग्रहण करने वाली चीज है सर।
1: जी जी जी, मुझे लगता है ज्ञान की जो बरसात
0: क्या कि मतलब हर क्लास मंगलवार को देखते हैं वीकली।
1: अच्छा,
0: वहाँ भी अटेंड करते हैं,
1: बहुत
0: मोटिवेटिव करते हैं। मैं अभी मेरे साथ में भी तीन दो बंदे आए हैं, कहना तो नहीं चाहिए लेकिन तीनों को मैंने मोटिवेट कर दिया। किशोर जी को दूसरी के टिकट पे राम जागीर को,
1: अच्छा बहुत सुंदर, बहुत ही अच्छा काम किया आपने, पुण्य का काम किया है, और मुझे लगता है उनके आने पर उनको अगर खुशी मिल रही तो वो खुशी का शेर आपको भी जा रहा है। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद श्री राम जी, बहुत सुंदर अनुभव, बहुत साधुवाद आपको, धन्यवाद। ओम प्रकाश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, और आप हरियाणा भिवानी से बिलोंग करते हैं, और इस ग्लोबल सबमीट में आकर आपको क्या अनुभव हुआ जरूर बताइए।
2: जो भी दर्शक मेरी सभा को सुन रहे हैं सबको पहले तो ओम शांति,
1: ओम शांति,
2: ओम शांति।
1: जी जी जी,
2: मेरा यहाँ ये दूसरी बार आना हुआ है, मैं लास्ट ईयर भी आया था सितंबर में मानसरोवर में रुका था, और अलौकिक रूप से मेरी एक सिस्टर बहादुरगढ़ सेंटर को समर्पित है।
1: अरे वाह,
2: उन्हीं के प्रयास से मैं यहाँ आया था। यहाँ जो भी बात बताई जाती है प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं पड़ती उसमें।
1: जी जी जी,
2: हर बात को प्रैक्टिकल करके समझाया जाता है, किसी को ये पूछने की जरूरत नहीं पड़ती कैसे हो सकता है, सिद्ध कर दिया जाता है।
1: जी जी जी,
2: मैं अक्सर गीत गाया करता हूँ, सिंगर भी हूँ।
1: अरे वाह,
2: और वो दो लाइनें मैं कहूंगा है वो इसी टॉपिक पे ही।
1: जी जी जी,
2: जान सके तो जान, तेरे मन में छुप कर बैठे, तेरे मन में

0: शब्द मैंने कहे वही आज शिवानिधि जी ने समझाया मस्तिष्क पे क्या है
1: समझो
0: वही परमपिता परमात्मा हर जीव के अंदर विराजमान है, उसकी खुद इंसान को पहचान करनी चाहिए।
1: बिल्कुल,
0: मैं आत्मा हूँ, सामने वाले आत्मा है। जब ये प्रयास करेंगे एक दूसरे को समझने का, विश्व का कल्याण होगा, अपना स्वयं का भी होगा।
1: क्या बात, क्या बात।
0: यही हमारा ब्रह्म कुमारी इंस्टीट्यूट, जो विश्व में सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट है, यही सब बातें समझाता है। इसके लिए मैं सभी बहनों का, बुजुर्गों का, माताओं का, सबका धन्यवाद करता हूँ। इतनी कोऑपरेशन देते हैं, कोई भी यात्री, कोई भी भाई यहाँ किसी भी भाव से आता है, सबकी इतनी सेवा करते हैं, इतनी कोऑपरेशन मिलती है, इतना प्यार मिलता है, मन करता है कि यहीं रुक जाएं, लेकिन गृहस्थी जीवन है, जाना पड़ता है।
1: जी जी जी, बहुत ही सुंदर अनुभव आपने सुनाया, बहुत बहुत साधुवाद आपको। और मैं चाहूँगा कि आपके द्वारा इन अनुभवों को सुनकर अन्य लोग भी ब्रह्मा कुमारी से जुड़े और अपने आप को आत्मा समझने का प्रयास। थैंक यू, बहुत साधुवाद, ओम शांति।

0: हंसते रहिए। आप सड़क पर चलते समय अपनी गाड़ी को कंट्रोल रखें और अपनी गाड़ी को धीरे धीरे चलाएं और हमेशा हेलमेट पहनते रहिए।
1: रेडियो मधुबन 90.4।

नमस्कार, मेरा नाम है अमन वर्मा और इस समय आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और मैं इतना कहना चाहूँगा कि आपका अपने घर पर कोई इंतज़ार कर रहा है, इसलिए कृपया हेलमेट लगाकर अपनी मोटरसाइकिल चलाएं। याद रखिएगा,

0: रेडियो मधुबन पर आइए सुनते हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी के प्रेरणादायी विचार।
1: किसी का एक लाइन ना, इवन अगर कल बीत गया, इट डजेंट मैटर, आज भी तो कोई ना कोई कुछ लाइन बोलेगा, आज भी तो लाइन्स आएंगी, आज भी तो बातें आएंगी। तो जब ऐसी कोई बात होती है, इवन अगर हमें उस टाइम याद नहीं रहता, हम उस पर रिफ्लेक्ट करके नेक्स्ट टाइम के लिए चेंज करते हैं अपने आप को।
0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए।
2: दिस इज अ मेडिटेशन टू टेक यू इनटू द एक्सपीरियंस ऑफ सोल कॉन्शियसनेस। To do meditation, you should sit comfortably, keeping the eyes open, the body relaxed, and you should follow these words with your mind, so that you're using the power of thought to take yourselves from body consciousness into the subtle state known as soul consciousness. First of all, I feel the energy throughout the body. And I use my thought

naturally strong. There is energy there. There is clarity.

शांति। आज 20 जून 2026 के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज के बाबा की मुरली है याद पर, और साथ साथ बाबा ने जो ज्ञान का खजाना दिया है, बाबा कहे ये सबको दान करना है। आपके दर से ज्ञान के दो वचन लेकर के कोई न जाए, ऐसा हो नहीं सकता है। बाबा के ये मधुर महावाक्य ऐसा लगता है कि जब ब्रह्मा बाबा की संपूर्ण कर्मातीत स्थिति हो रही थी उस समय के हैं, क्योंकि बाबा कर्मातीत होकर के फरिश्ता बनने वाले थे और सभी बच्चों का बुद्धि योग बाप दादा के साथ था। तो बच्चों का बुद्धि योग ब्रह्मा बाबा के साकार शरीर से भी तोड़कर सिर्फ निराकार से जुड़े, उसके लिए बार बार बाबा ने कहा, बच्चे ये देह को भी याद नहीं करना है, किसी भी देहधारी को याद नहीं करना है, वहां तक कि अपने देह को भी भूलना है और अशरीरी आत्मा बन शिव बाबा को ही याद करना है। शिव बाबा की स्थूल सूक्ष्म पालना भी जिन आत्माओं ने प्राप्त की, तो जरूर है कहीं उनका बुद्धि योग ब्रह्मा बाबा के शरीर में न अटक जाए, उसके लिए बाबा ने ये महावाक्य सुनाए थे कि हमेशा समझो शिव बाबा की पालना मिल रही है। शिव बाबा ही सर्व संबंधों की सैक्रीन है और उस सैक्रीन सर्व संबंधों के आधार से जब शिव बाबा को याद करते हैं तो सर्व संबंधों का सुख बाबा से प्राप्त होता है। तो किसी भी देहधारी में ममत्व नहीं जाएगा। तो सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, तुम्हारे पास अविनाशी ज्ञान रत्नों का अथाह खजाना है, तुम उसका दान करो, तुम्हारे दर से कोई भी वापस नहीं जाना चाहिए। आज की मुरली से प्रश्न है, सर्व संबंधों की सैक्रीन बाप अपने बच्चों को कौन सी श्रीमत देते हैं? उत्तर, मीठे बच्चे अपना बुद्धि योग सब तरफ से हटाए एक मुझे याद करते रहो। दुनिया की कोई भी वस्तु, मित्र संबंधी आदि याद न आए। क्यों? क्योंकि इस समय सब दुख देने वाले हैं। विश्व का मालिक बनना है तो जरूर 63 जन्मों का हिसाब किताब चुकतू करने की मेहनत करनी पड़े। सब कुछ भूल अशरीरी बनो तब हिसाब किताब चुकतो हो। मैं सर्व संबंधों की सैक्रीन हूं। बाबा कहते, बाबा सर्व संबंधों की सैक्रीन है। ओम शांति। बाप दादा बच्चों से पूछते हैं कि किसकी याद में बैठे हो, तो किसी ने धीरे से कहा शिव बाबा की, तो बाबा कहते बुलंद आवाज में कहना चाहिए शिव बाबा की याद में बैठे हैं। तुम बच्चे अर्थात आत्माओं का कनेक्शन है शिव बाबा से, तुम शिव बाबा के बनते हो इन द्वारा, क्योंकि शिव बाबा इनके द्वारा ही मिलते हैं। यह बीच में दलाल भी कहा जाता है। तुम्हारा दलाल से कोई कनेक्शन नहीं। ये बाबा जैसे स्वयं से भी सबका बुद्धि योग तोड़ने के लिए इस बात को शिव बाबा से जुड़े, ताकि जब बाबा अव्यक्त हो जाए तो बच्चों को फिर वो याद खींचे नहीं और उलाए नहीं। तो कितना सुंदर तरीके से बाबा बच्चों का मोह शिव बाबा के साथ लगाते हैं। तो बाबा कहते तुम्हारा दलाल से कोई कनेक्शन नहीं है, ये तो सिर्फ बीच में मार्फत है।
लेन देन का सबका हिसाब किताब बाप से होना चाहिए, इनसे नहीं। इनका भी लेन देन बाप से है। यह भी उस बाप को कहते हैं, बाबा मेरा सब कुछ आपका है। स्वयं ब्रह्मा बाबा भी कहता, बाबा मेरा सब कुछ आपका है। तुम्हें भी एक तो निश्चय यह है कि हम आत्मा है, और दूसरा यह भी निश्चय है कि हम आत्माएं अभी परमपिता परमात्मा से वर्षा ले रहे हैं। मनसा वाचा कर्मणा तन मन धन से हम शिव बाबा के मददगार बनते हैं। ये सब कुछ शिव बाबा को अर्पण किया हुआ है। फिर शिव बाबा डायरेक्शन देते हैं, ऐसे ऐसे यह करो। इनको कहा जाता है श्रीमत। जो शिव बाबा डायरेक्शन देते हैं उसको कहा जाता है श्रीमत। बाप खुद कहते हैं, मैं इस पुराने तन में प्रवेश करता हूं। यह भी पतित से पावन बन रहे हैं। ये किसने कहा? शिव बाबा ने। यह भी पावन बन रहे हैं, इनका भी मेरे साथ हिसाब किताब है। इनके साथ कोई का हिसाब किताब नहीं है। तुम चिट्ठी लिखते हो शिव बाबा केयर ऑफ ब्रह्मा, परंतु माया ऐसी है, कैसी है? बाबा कहे, परंतु माया ऐसी है जो निरंतर याद करने नहीं देती है, बुद्धि योग घड़ी घड़ी तोड़ देती है। अगर यही पक्का पुरुषार्थ करेंगे तो फिर दूसरा सब कुछ भूल जाएगा, शरीर भी भूल जाएगा। ये शरीर होगा परंतु आत्मा को इन सब चीजों से नफरत होगी, देह के कनेक्शन की सारी चीजों से बुद्धि योग पर होगा। यह अवस्था जमाने की प्रैक्टिस करनी होती है। अंत में हमको अपना शरीर भी न याद पड़े। बाबा क्या कहते, अंत में हमको अपना शरीर भी याद न पड़े। बाप कहते, अपने को अशरीरी समझ मुझ बाप को याद करो। मैं सदैव अशरीरी हूं, तुम भी अशरीरी थे, फिर तुमने पार्ट बजाया, अभी फिर तुमको पार्ट बजाना है, ये मेहनत है। विश्व का मालिक बनना कोई कम बात है क्या? मनुष्य ही विश्व का मालिक बन सकता है। ये देवताएं भी मनुष्य है, परंतु इनको दैवी गुण वाला देवता कहा जाता है। लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक थे। इन्हों को अपने बच्चे होंगे, वही उनको माँ बाप मानेंगे, परंतु आजकल मनुष्य अंधश्रद्धा से इन लक्ष्मी नारायण को त्वमेव माताश्च पिता कह देते हैं। वास्तव में यह महिमा है शिव बाबा की, त्वमेव माताश्च पिता, त्वमेव, ये महिमा है शिव बाबा की। देवताओं की महिमा गाते हैं कि आप सर्वगुण संपन्न, सोले कला संपूर्ण, परंतु उन्हों की पूजा क्यों करते हैं ये किसको भी पता नहीं है। अभी तुम ऐसी महिमा नहीं गाएंगे कि तुम मात पिता हम बालक तेरे। लक्ष्मी नारायण के सामने ये महिमा नहीं गाएंगे कि तुम मात पिता हम बालक तेरे। हाँ, तुम जानते हो शिव बाबा व निराकार परम पिता परमात्मा है, उनसे ही सुख घनेरे मिलते हैं। बाकी जो भी संबंधी आदि है उनसे दुख ही मिलता है। शरीर के संबंधों से दुख की ही प्राप्ति होती है। यह तो एक सैक्रीन है, शिव बाबा एक सैक्रीन है जिससे सर्व संबंध की रसना मिलती है। इसलिए बाप कहते, मामा काका चाचा आदि सबसे बुद्धि योग हटाए, माम एकम याद करो। तुम गाते भी हो दुख हरता सुख करता, सर्व का सदगति दाता एक ही है, वही हमारा सब कुछ है। वही दुखरता सुख करता सदगति दाता हमारा सब कुछ है। लौकिक बाप से भी दुख मिलता है, बाकी टीचर है तो किसको दुख नहीं देते। टीचर पास जाकर पढ़ने से ही तुम शरीर निर्वाह करते हो,
हुनर सिखाने वाले भी होते हैं, वह सब अल्पकाल के लिए टचिंग करते हैं। भक्ति में भी महिमा एक राम अथवा परमपिता परमात्मा की ही करते हैं, उनको ही याद करते हैं। वास्तव में भक्ति भी एक की ही करनी है, वह एक ही तुमको पूज्य बनाते हैं। तुम पहले पहले एक शिव बाबा की पूजा करते हो, उनको सतो प्रधान भक्ति कहा जाता है। फिर आत्मा भी सतो प्रधान से सतो रजो तमो बनती है। तुम समझते हो हम पुजारी बनते हैं, तुम पहले एक शिव की ही पूजा करते हो, फिर कलाएं कमती होती जाती है। भक्ति भी सतो प्रधान से सतो रजो तमो बन जाती है। सारा ड्रामा तुम्हारे ऊपर ही बना हुआ है। आपे पूज्य आपे पुजारी जो 84 जन्म पूरे लेते हैं, उनकी ही कहानी है। उनको ही बाप बैठ बताते हैं कि तुमने 84 जन्म कैसे लिए हैं। हिसाब ही उनका है। जो पहले पहले पूज्य देवी देवता बनते हैं, वही पुजारी बनते हैं। बाप कहते हैं, मैं कल्प कल्प आकर तुमको पढ़ाता हूं और देवी देवता धर्म की स्थापना करता हूं, राजयोग सिखाता हूं। भगवान तो एक ही होता है, वह तो कहते हैं ठिक्कर बित्तर कण कण में परमात्मा। भक्ति मार्ग वाले कहते हैं ठिक्कर बित्तर कण कण में परमात्मा है, परंतु ऐसा तो हो नहीं सकता। भगवान की तो महिमा अपरंपार है। कहते हैं, हे बाबा, तुम्हारी गति मत न्यारी अर्थात तुम्हारी जो श्रीमत मिलती है वह सबसे न्यारी है। बाप को कहते ही है गति सदगति दाता परम पिता परमात्मा। तो बुद्धि ऊपर में जाती है, दुख के टाइम उनकी ही याद आती है। अगर राम सीता बुद्धि में हो, फिर तो सारा रामायण बुद्धि में आ जाए। तुम तो पुकारते ही हो उस एक बाप को, सिवाय एक बाप के। बाबा कहते सिवाय एक बाप के कोई भी साकारी मनुष्य वाकारी देवता से बुद्धि नहीं लगानी चाहिए। कोई भी साकारी मनुष्य वाकारी देवता से भी बुद्धि नहीं लगानी है। पतित पावन है ही एक बाप। कोई भी सत्संग में जाकर यही गाते हैं, पतित पावन सीताराम, अर्थ कुछ नहीं। यह सब है भक्ति मार्ग का गायन। सब रावण की जेल में है, भक्ति मार्ग में बहुत भटकते हैं। यहां भटकने की कोई बात नहीं। बाप समझाते हैं बच्चों को पॉइंट्स बुद्धि में अच्छी रीति धारण करनी है, पढ़ाई रेगुलर करनी है। अगर कोई कारण से सवेरे नहीं आ सकते तो दोपहर को आ जाना चाहिए। इसको तंग भी नहीं करना है। बाबा ये भी सिखाते कैसे तोड़ निभा करके गृहस्थ व्यवहार में चलना है। सारा दिन पढ़ा है, कोई भी समय जाकर पढ़ना है। ये बच्चियां सुबह से लेकर शाम तक सर्विस पर है, सारा दिन सर्विस स्टेशन खुले हुए हैं। कोई भी आए उनको रास्ता बताना है। पहले पहले तो बताना है, विचार करो तुमको दो बाप है। दुख में पारलौकिक बाप को याद करते हैं ना। अभिष्य बाबा कहते हैं माम एकम याद करो। मौत तो सामने खड़ा है, यह वही

यह तो टेम्पररी है, नहीं तो ये सब पैसे भी चले जाएंगे, कुछ भी रहेगा नहीं, भले बनाओ। फिर उसमें गीता पाठशाला का प्रबंध रखो, जो तुम्हारे दर पर कोई भी आए उनको भिक्षा ऐसी दो जो उनको एकदम विश्व का मालिक बना दो। तुम्हारे पास अथाह ज्ञान धन है, इतना कोई के पास नहीं है। तुम्हारे पास सबसे शाहूकार वह है जिनके पास बहुत ज्ञान रत्न बुद्धि में भरे हुए हैं। कोई भी आए तो तुम उनकी झोली भर दो। तुम्हारे पास इतना खजाना है, सिर्फ ये बोर्ड लगा दो, आओ तो हम आपको सदा सुखी स्वर्ग का वर्षा पाने का रास्ता बताएं। परंतु बच्चों में वह नशा नहीं रहता, बच्चों में वह नशा नहीं रहता। यहाँ नशा चढ़ता है, बाहर जाने से भूल जाता है। शौक होना चाहिए, कोई भी आए उनको रास्ता बताएं जो बेड़ा पार हो जाए। तुम्हारे पास बहुत भारी धन है, बाबा कहते तुम्हारे पास बहुत भारी धन है। कोई भी भिखारी आए व लखपति आए तो तुम उनको भी बहुत रत्न दे सकते हो, ज्ञान रत्न दे सकते हो। बाबा यहाँ नशा चढ़ाता है, फिर बाहर गए सोडा वाटर हो जाता है। बाबा यहाँ नशा चढ़ाता है, फिर बाहर गए सोडा वाटर हो जाता है। बाबा तुम्हारी अविनाशी ज्ञान रत्नों से झोली भर देते हैं, परंतु नंबरवार है, झोली भरती है नंबरवार है। किसकी तकदीर में है तो पूरी रीति धारण कर लेते हैं। बाबा कहते कोशिश कर तुम निरंतर याद में रहो, ऐसे नहीं कि सेंटर में जाकर एक जगह बैठना है, नहीं, चलते फिरते जो भी समय मिले बाप को याद करते रहना है। अर्थ कारणे दिल, अर्थात बुद्धि का योग बाप के साथ हो। अर्थ कारणे दिल यारडे, अर्थात बुद्धि का योग बाप के साथ हो। बाप की याद से तुम्हारा बहुत कल्याण होगा, 21 जन्मों के लिए तुम शाहूकार बन जाते हो। बेहद का बाप बेहद का वर्षा देते हैं। भारत स्वर्ग था, अब नरक है। बाप कहते अब मुझे याद करो तो तुम्हारी आत्मा सतो प्रधान बन जाएंगी। बाप को याद करेंगे तो नशा चढ़ेगा, हमारे जैसा धनवान सृष्टि में कोई नहीं है। बाप ही याद नहीं होगा तो धन कहां से आएगा? अगर बाप ही याद नहीं होगा तो ज्ञान धन आदि कहां से आएगा? स्वर्ग में तो तुम बच्चों को अपार सुख मिलता है, शास्त्रों में तो कितनी दंत कथाएं लिख दी है, गाते भी है, राम राजा राम प्रजा राम शाहूकार है, बसे नगरी जिए दाता धर्म का उपकार है। कितनी सुंदर बात यहाँ श्री राम राज्य के बारे में कही गई है कि राम राज्य कैसा होगा, जहाँ राम राजा हो, प्रजा भी राम जैसी मर्यादा पुरुषोत्तम हो, वहां सब शाहूकार है। बसे नगरी जिए दाता धर्म का उपकार है, वहां हर कोई धर्म परायण है। फिर कहते हैं राम की सीता चुराई गई। अब इतनी अच्छी महिमा गा लेते हैं, फिर कहते हैं राम की सीता चुराई गई, बंदरों की सेना ली, आगे खुद भी पढ़ते थे, कुछ भी समझते नहीं थे। ये बातें खुद भी पढ़ते थे, खुद समझ में नहीं आता था, अब कितना समझ में आता है, इतनी वंडरफुल बातें लिखी है। बाप कहते मुझे प्रकृति का आधार लेना पड़ता है। त्रिमूर्ति में भी ब्रह्मा विष्णु शंकर दिखाते हैं, परंतु यह भी समझते नहीं कि विष्णु कौन है, कहां के रहने वाले हैं। विष्णु के मंदिर को नर नारायण का मंदिर कहते हैं, परंतु अर्थ कुछ भी नहीं समझते हैं। विष्णु का ये दो रूप लक्ष्मी नारायण है जो सतयुग में राज्य करते थे। अभी तुम मनुष्य से देवता बन रहे हो, कोई भी आए तो बोलो ये ब्रह्मा कुमार कुमारियां है, तो प्रजापिता ब्रह्मा

माँ सबका बाप हुआ, बहुत ढेर के ढेर प्रजा है। नाम तो सुना है ना, भगवान ने ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण रचे। बाप ने जरूर बच्चों को वर्षा तो दिया होगा ना, तुम बच्चों को विश्व का मालिक बनाते हैं। तुम शिव बाबा से वर्षा पाते हो, एक है लौकिक बाप, दूसरा है पारलौकिक बाप। अब यह तुमको अलौकिक बाप मिला है, ब्रह्मा बाबा या लौकिक बाप मिला है, यह तो जौहरी था, यह थोड़े कुछ जानता था। इनके लिए कहते हैं कि इनके बहुत जन्म के अंत के जन्म के भी अंत में इसमें प्रवेश करता हूं। वानप्रस्थी बनने का रिवाज भी भारत में है, 60 वर्ष के बाद गुरु के पास चले जाते हैं। बाप इनमें प्रवेश कर कहते हैं अब तुमको घर चलना है। मुक्ति सब चाहते हैं परंतु मुक्ति को जानते कोई भी नहीं। ब्रह्म में लीन तो कोई हो नहीं सकते, यह तो सृष्टि का चक्र फिरता ही रहता है, सबको पाठ बजाना ही है। कहते वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट, यह अनादि ड्रामा बना हुआ है, 84 जन्मों का पाठ तुमको बजाना ही है। यह ज्ञान डांस होती है, वो लोग फिर डमरू दिखाते हैं। अब सूक्ष्म वतन वासी शंकर डमरू कैसे बजाएगा? बाप ने समझाया है, तुम बंदर मिसल थे तो तुम बंदरों की सेना ली। तुम्हारे आगे बाबा ज्ञान का डमरू बजा रहे हैं, तुमको ज्ञान देते हैं। अभी तुम्हारी सूरत और सीरत दोनों पलट रही है, सूरत और सीरत दोनों पलट रहे हैं। काम चिता पर बैठ तुम काले हो गए हो, बाबा फिर तुमको ज्ञान चिता पर बिठाए, सूरत और सीरत दोनों पलटाए, सांवरे से गोरा बना देते हैं। यहां बाबा कितना नशा चढ़ाते हैं, फिर क्या होता है? नशा गुम क्यों होना चाहिए? इतना बाबा नशा चढ़ाते हैं तो नशा गुम क्यों होना चाहिए? अच्छा, मीठे मीठे सिखिलते बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, बाप ने जो अथाह ज्ञान का धन दिया है उसे धारण कर स्वयं भी शाहूकार बनना है और सबको दान भी करना है, जो भी आए उसकी झोली भर देनी है। दूसरी पॉइंट, बाप की याद से ही कल्याण होना है, इसलिए जितना हो सके चलते फिरते बाप की याद में रहना है। सर्व संबंधों की रसना एक बाप से लेनी है। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है, सदा बिजी रहने की विधि द्वारा व्यर्थ संकल्पों की कंप्लेन को समाप्त करने वाले संपूर्ण कर्मातीत भव। सदा बिजी रहने की विधि द्वारा व्यर्थ संकल्पों की कंप्लेन को समाप्त करने वाले संपूर्ण कर्मातीत भव। संपूर्ण कर्मातीत बनने में व्यर्थ संकल्पों के तूफान ही विघ्न डालते हैं। इस व्यर्थ संकल्पों की कंप्लेन को समाप्त करने के लिए अपने मन को हर समय बिजी रखो। समय की बुकिंग करने का तरीका सीखो, सारे दिन में मन को कहां कहां बिजी रखना है ये प्रोग्राम बनाओ। रोज अपने मन को 4 बातों में बिजी कर दो। कौन सा? पहला मिलन यानी बाबा से रो रिहान, दूसरा वर्णन यानी सर्विस करो, तीसरा मगन और चौथा लगन। 4 बातों में बिजी करना है मन को, पहला मिलन बाबा से रो रिहान करना, दूसरा वर्णन यानी सर्विस करना, वर्णन करके ज्ञान सुनाना, तीसरा मगन और चौथा लगन। इससे समय सफल हो जाएगा
और व्यर्थ की कंप्लेन भी समाप्त हो जाएगी। आज का स्लोगन है, सफलता को परमात्म बर्थराइट समझने वाले ही सदा प्रसन्न चित रह सकते हैं। सफलता को परमात्म बर्थराइट समझने वाले ही सदा प्रसन्न चित रह सकते हैं। आज का व्यक्ति इशारा है, सदा हर्षित रहने के लिए अपनी नेचर को सरल बनाओ, सहनशील बनो। उसके अंतर्गत बाबा कहते, सरलता लाने के लिए सिर्फ एक बात ध्यान पर जरूर रखनी है। सरलता लाने के लिए एक बात ध्यान पर जरूर रखनी है, अपनी स्थिति स्तुति के आधार पर न हो। कई बच्चे कर्तव्य के फल की इच्छा ज्यादा रखते हैं, इसलिए जब स्तुति नहीं होती तो स्थिति हलचल में आ जाती है। निंदा होती है तो निधन के बन जाते हैं, अपनी स्टेज को छोड़ धनी को ही भूल जाते हैं, इसलिए स्तुति के आधार पर स्थिति नहीं रखना। स्तुति के आधार पर स्थिति नहीं रखना, स्तुति यानी महिमा के आधार से स्थिति नहीं बनाना। अच्छा, ओम।